0: कोई बताएगा मुझे आप में से एनी वन आउट ऑफ यू कोई भी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली क्या है, मतलब या क्योंकि आप लोग काफी बच्चे ऐसे हैं आप में से जो गांवों से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने ये टर्म हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको प्राकृतिक खेती कहते हैं, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली क्या है और क्या स्कोप है ऑर्गेनिक फार्मिंग का? आज हम कहीं सामान खरीदने चले जाए, किसी मॉल में चले जाए, हमें वीट राइस कुछ भी खरीदना है, तो ऑर्गेनिक वीट मिलता है, ऑर्गेनिक राइस मिलते हैं जिनकी जो प्राइस है जनरल वीट और राइस से काफी ज्यादा होता है। तो आप में से कोई बच्चा शेयर करना चाहेगा कि उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में क्या पता है?
1: हाँ जी सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में मुझे शायद ज्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा सा मालूम है। जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो हम कोई भी सिंथेटिक यूज जो फर्टिलाइजर्स होते हैं हमारे, हम उनका यूज नहीं करते फार्मिंग करने में, और नेचुरल रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल करते हैं और नेचुरल सीड्स और हाइब्रिड नहीं यूज करते हम कुछ भी, उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। इसकी वजह से ये कॉस्टली होती है क्योंकि इसमें हम क्वांटिटी बहुत कम आती है, इसमें क्वालिटी पे ज्यादा फोकस रहता है।
0: जी जी जी जी बिल्कुल। देखिए क्या है कि जैसे आप देखिए जो इंडिया में जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया, आप सबको पता है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति थी, तो हरित क्रांति में क्या हुआ कि सीड्स आए ने, और उसके बाद फिर फर्टिलाइजर यूज करने लगे हम, यूरिया यूज करने लगे अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्शन हमारी ज्यादा हुई उससे, ठीक है। पर स्टार्टिंग में तो हमें बहुत फायदा हुआ, पर धीरे धीरे फार्मर्स जो है फर्टिलाइजर्स को ज्यादा यूज करने लगे अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, तो आज समय ऐसा आ चुका है कि जो हम एक तरह से खाना खाते हैं जिसको जहरीला खाना बोला जाता है, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि वो हमारे बॉडी को इफेक्ट कर रही है। आप देखिए आज से कुछ साल पहले किसी को कैंसर नहीं हुआ करता था, अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करें तो कैंसर नाम की जो बीमारी थी वो ओनली एक टाइप से मूवीज में आती थी, अपने आसपास में हमें कैंसर का कोई बिरला ही मरीज मिलता था। बट आज हम देखें कि आज कैंसर के जो मरीज हैं डे बाय डे काफी इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है वो हमारी जो हम खाने में जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तो खेती में फर्टिलाइजर्स को कम करना, यूरिया का कम यूज करना, मतलब एक तरह से ना के बराबर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली क्या है कि जब आप खेती करते हैं तो उसमें आप जो भी यूज करें ट्रेडिशनल चीजें यूज करेंगे, ठीक है, उसमें यूरिया ये कोई भी चीज यूज नहीं की जाती। उससे प्रॉब्लम क्या रहती है कि स्टार्टिंग में जो प्रोड्यूस है वो कम होती है कंपैरेटिवली, बट उसका प्राइस मार्केट में ज्यादा है। अगर आपकी लैंड ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, ठीक है, मतलब आपके ये अगर आपको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है कि आपके यहाँ से जो प्रोड्यूस है वो बिल्कुल टॉक्सिक फ्री है, उसमें बिल्कुल भी जहर नहीं है, तो आप देखेंगे उसका प्राइस जो है वो मार्केट में कंपैरेटिवली ज्यादा आपको मिलेगा। तो काफी लोग ऐसा है जो आजकल ऑर्गेनिक की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा स्कोप है इसके अंदर भी। और जो बहुत फार्मर्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में टाइम लगा रहे हैं, इसके साथ साथ अभी देखिए जो फार्मिंग हमारे यहाँ होती है उसमें एक तरह से जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स है उनकी की जाती है, बट आज का टाइम ऐसा है कि ट्रेडिशनल क्रॉप्स के साथ साथ भी आप अलग अलग क्रॉप्स की, मतलब उन क्रॉप्स की जिनकी मार्केट में डिमांड है। दूसरा आप देखें कि जो फार्मर है, मतलब आप लोगों में से जो लोग फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं वो भी थोड़ा इस चीज को समझ सकते हैं कि देखिए जो पैसा वही कमाता है जो फाइनल कंज्यूमर को बेचता है। अभी हमारे एग्रीकल्चर में क्या है कि फार्मर ने खेती करी, फार्मर ने प्रोड्यूस आया और प्रोड्यूस को उसने मिडल मैन को बेच दिया, ठीक है। अब जो मिडल मैन है वो आगे छोटे छोटे दुकानदारों को बेचता है और दुकानदार फिर आगे चीजों को सेल करते हैं, तो उसमें क्या है कि जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो तो जो शॉपकीपर अर्न कर रहा है, क्योंकि जो फाइनल कंज्यूमर से पैसा निकलवा रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा फार्मर जो है वो एक तरह से मंडियों पर डिपेंडेंट है ज्यादा, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा अगर आप एग्रीकल्चर आपकी फैमिली में मतलब खेती होती है। फिर आपको प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप सब जानते ही हैं कि जैसे आप कपास की खेती अगर करते हैं तो कपास की वैल्यू बहुत कम है, बट वही अगर उसी कपास से आपने ऊन बना दिया, कपड़ा बना दिया, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सेम हमारे एग्रीकल्चर के साथ में है कि हम किसी भी चीज का अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, अगर हम उसी प्रोडक्शन को ही आगे बेचते हैं तो फिर उसकी वैल्यू कम है, बट अगर हम उसकी प्रोसेसिंग करके बेचें, उसको कन्वर्ट करके बेचें किसी एक्चुअल ऐसे प्रोडक्ट के अंदर जिसको यूज किया जा सके, तो वहां से आपको ज्यादा अर्निंग होगी। तो इस तरह से ये काफी मीन्स है, बट अगर प्रोफेशनली तरीके से किया जाए एग्रीकल्चर को, तो आप ये मानेंगे भी एग्रीकल्चर भी एक ऐसा प्रोफेशन, मतलब इसको एज ए प्रोफेशन यूज किया जा सकता है। और आप देखें, आज तो मैं भी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, काफी बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में थे, अपनी जॉब छोड़ के अब वो खेती की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब ऐसे कामों की तरफ मूव कर रहे हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। आप देखें, अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो आजकल काफी एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलती होंगी कि गाय का घी, गाय का दूध, वो जो इस तरह के प्रोडक्ट है वो आपको मतलब प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द कंपनीज। कई सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, तो मतलब ये भी एक फ्यूचर का फील्ड है और उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। मतलब आपका एक तरह से जो लो इन्वेस्टमेंट का फील्ड है, बहुत लोगों को मैं ऐसे जानता हूं जिन्होंने क्या किया हुआ है कि वो एक टाइप से डेयरी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। उन्होंने 4 से 5 मतलब ऐसे लोगों से बात किया जो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, तो वहां उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया भी जैसे जो प्योर मिल्क आपको मिले, फिर वो उनसे इकट्ठा करके शहरों में आके बेच देते हैं। तो देखिए, लोग आजकल क्वालिटी कॉन्शियस काफी ज्यादा है, तो आप भी अगर इस तरह के फील्ड में काम करना चाहें बट आपको क्वालिटी मेंटेन करना रहता है, तो अच्छा स्कोप है और बहुत इजीली आप अपना करियर इसमें बना सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत वाला काम है एग्रीकल्चर का।
2: हाँ दिनेश जी, मैं इसमें है ना 2 पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ।
0: जी सर।
2: पूसा एग्रीकल्चर जैसे बिहार में है, आपको समस्तीपुर में, वहां भी लोग जैसे कि बीटेक के लिए मोतीलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कॉलेज इलाहाबाद में, वहां भी एग्रीकल्चर का बहुत ही बड़ा है स्कोप है। जैसे बीटेक करने के बाद जैसे कि कुछ कंपनियां है, जैसे कि आपने ड्यूपॉन्ट के लिए बोला, महिंद्रा एंड महिंद्रा है जो लोग महिंद्रा ये भी मैं बता दूं, आप बीटेक ना करें, आप एमएससी यदि आप बायोलॉजी में करते हैं, आप यदि बॉटनी वगैरह में करते हैं आप, तो वहां से भी आपको काफी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं जो आपको इन हाउस मतलब यू नो सो इन कैंपस में आती है, बच्चों को सिलेक्ट करके ले जाती है। पार्ट फ्रॉम जैसे कि गवर्नमेंट का भी एक, जैसे आपने बताया ही है कि स्टेट गवर्नमेंट हो वो ऑलरेडी आपको एक वैकेंसी भी निकालती है बीएससी एग्रीकल्चर, मतलब जी बीएससी पास आउट हो, ऑनर्स हो उनका बॉटनी में, प्लस वो बीटेक हो, तो उनको भी बहुत अच्छे स्कोप पे ऑफर मिलता है। ये मेरा था।
0: हाँ जी, तो मतलब स्कोप काफी ज्यादा है एग्रीकल्चर का, और उसमें जैसे सर ने भी बताया, मतलब काफी प्राइवेट कंपनीज हैं जो अगर आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया हुआ है, बीटेक किया हुआ, मतलब ये तो हम उन जॉब्स की बात कर रहे हैं जो आपकी एक तरह से जिसमें आपकी बीएससी एग्रीकल्चर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मतलब अगर आपके पास में 12th के बाद में जो मेडिकल साइड थी, तो आप इन फील्ड्स में जा सकते हैं और एक अच्छा करियर आप सकते हैं बना। क्योंकि देखिए, आजकल क्या है कि जो बच्चे हैं वो ऐसी जॉब्स चाहते हैं, इस तरह की जॉब्स चाहते हैं कि जहां पर मतलब ठीक ठाक इनकम हो और उन पे ज्यादा प्रेशर ना हो। आप देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप काम करेंगे तो आपको एक तो इसमें जॉब का प्रेशर कम है, ठीक है, और सेकंड इनकम भी ठीक ठाक है, और आप अपना काम भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी स्कोप है एग्रीकल्चर के अंदर। तो जैसे आज के इस सेशन में, तो आपको पहले पार्ट में तो आपको मैंने एग्रीकल्चर के स्कोप के बारे में बताया, ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रोफेशन है, आप ऑप्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास में जमीन है अपना भी काम कर सकते हैं, तो सारी चीजें हैं इसके अंदर। कुछ टाइम यहाँ मैं आज स्पेंड करना चाहूंगा, मेरी आज जैसे आजकल काफी फॉर्म्स निकले हुए हैं आपके गवर्नमेंट जॉब्स के भी निकल रहे हैं, और अभी जैसे जैसे ये आपका COVID-19 का प्रेशर कम होता जाएगा और चीजें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी, लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी पहले वाली, तो आप देखेंगे कि हर फील्ड में काफी गवर्नमेंट जॉब फिर से आएंगी, ठीक है, मतलब 6 महीने बाद और 6 महीने मान लीजिए, तो उसकी तैयारी जो है वो आज से ही स्टार्ट करने वाली बात होती है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी करते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो हमें इस चीज का वेट नहीं करना चाहिए कि कब फॉर्म निकलेगा, और जब फॉर्म निकलेगा, जब मेरा रोल नंबर आ जाएगा तो ही मैं तैयारी की स्टार्ट करूं, ऐसा नहीं। हमें उसकी जो प्रिपरेशन है वो पहले से ही स्टार्ट करनी रहती है। जैसा आपको मैंने पहले ही बताया, अभी देखिए मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीएस है, 4 सेक्शन आपके किसी भी टाइप का गवर्नमेंट जॉब है आपका, अप टू सी लेवल है, बी ग्रेड है, तो तो सभी जॉब्स में ये चार ही सेक्शन आपके आते हैं, ठीक है। तो आज के जो सेशन में कुछ टाइम मैं स्पेंड करूंगा कि कैसे आप इन चारों में से जो जनरल स्टडीज का सेक्शन है, कैसे आप अपनी जनरल स्टडीज की प्रिपेरेशन करें, ठीक है। जीएस एक ऐसा सेक्शन होता है जनरल स्टडीज का, आप ये कह सकते हैं कि किसी भी एग्जाम में 25% वेटेज है इसका, मतलब 25% वेटेज रहता है। चार में से एक क्वेश्चन आपका जीएस का होता है। अगर हम एसएससी की बात करें तो 100 में से 25 क्वेश्चन होते हैं। पुलिस का एग्जाम है, आर्मी का एग्जाम है, वहां पर आप कह सकते हैं हाफ ऑफ द क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज के होते हैं। जैसे अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था कि दिल्ली कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली हुई थी उसमें पेपर के अंदर आप ये मान के चलिए अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो 40 से 50 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज के होंगे। तो जीएस का एक काफी बड़ा रोल है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। अब हमारी समस्या ये है कि ये समझना कि जीएस की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत वाइड होता है। क्योंकि अगर आप और मैथ्स की बात करिए, रीजनिंग की बात करिए, तो चैप्टर फिक्स है, 10 से 12 चैप्टर आपने पढ़ने रहते हैं, उन्हीं पे आपको प्रैक्टिस करना रहता है। तो जीएस में अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, तो सबसे पहला काम आप क्या करिए कि आप पहले अपनी 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक, मतलब 6th to 10th क्लास तक की एनसीईआरटी, ये आपका पहला काम है, ठीक है। देखिए आप सोच के देखो, जब आप 8th क्लास में थे उस क्लास में आप तो अगर अपनी छोटी क्लास की किताब उठा के देखें तो आपको बड़ा फील होता है कि बहुत आसान था, और आज की एज में जब आप 12th में हैं, आप 1st ईयर में हैं, 2nd ईयर में हैं, तो आज अगर आप 6th 7th की क्लास की बुक उठा के देखेंगे तो यू विल फील कि बहुत आसान सा है वो, तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, कुछ मार्केट से किताबें खरीद लेते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, एल्यूसेंट की बुक आती है आपकी जीएस की, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो सारा इकट्ठा करके आपको दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें बहुत ही कंसाइज वे में होता है। जब आप किसी चीज को बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो ज्यादा याद नहीं हो पाता, तो याद तभी हो सकता है जब आपने उस चीज को एक्सटेंसिवली पढ़ाओ। तो सबसे पहली चीज आपको जो करनी है, अगर आप एक्चुअल में जीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए जहां स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की। और आप देखेंगे एक बुक आपकी एसएस की आती है, एक आपकी साइंस की बुक आती है, अगर हम 6th 7th 8th में जाके देखें, तो वो एक एक बुक आप लेके उसको पढ़ना स्टार्ट करिए, और उसमें से भी आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं काम काम की चीजें, ठीक है। तो उससे आपको क्या लगेगा कि जब भी आपको दोबारा से रिवाइज करना है बहुत इजी हो जाता है आपके लिए रिवाइज करना। जीएस के अंदर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो रेगुलरली अपडेट होता रहता है। जैसे मान लीजिए आपको आपका एग्जाम 2 साल बाद है, तो जो आज पढ़ रहे हैं आप वो 2 ईयर्स के बाद उस टाइम आपको काम नहीं आएगा। जो करंट अफेयर जनरली किसी भी एग्जाम के अंदर पिछले 1 साल तक का मैक्सिमम करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम के अंदर, तो उसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आपका टारगेटेड एग्जाम है उससे कम से कम साल पहले से आप अपना करंट अफेयर तैयार करना स्टार्ट करिए। करंट अफेयर तैयार करने के 2-3 टेक्निक्स होती हैं। एक तो आप न्यूज़पेपर रीड करो डेली, और न्यूज़पेपर के साथ साथ आप एक कॉपी मेंटेन कर सकते हैं, जो भी आपने इंपॉर्टेंट सा नाम उसमें देखा, कोई प्लेस का नाम आपने देखा जो किसी पॉइंट के लिए फेमस है, या कोई ऐसी घटना हुई, या आप ये कह सकते हैं कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया, तो आप उस न्यूज़पेपर उस अपने कॉपी के अंदर उसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। उसका फायदा क्या रहता है कि वीक के बाद में जब आप दोबारा से उसे रिवाइज करते हैं तो आप उसको पढ़ के एकदम आपको चीजें याद आ जाती हैं, ठीक है, पहली चीज। सेकेंडली, एक रेगुलर मंथली मैगजीन आपको जरूर खरीदनी चाहिए, जो मंथली मैगजीन होती है जिसमें एक महीने का सारा करंट अफेयर आपको मिल जाता है। उसमें प्रतियोगिता दर्पण है हिंदी मीडियम में, या हिंदी मीडियम में प्रतियोगिता किरण है, और भी काफी आजकल मैगजीन्स मिल जाती हैं। आपकी रीड इंडिया की जो लाइब्रेरीज हैं वहां भी आपको मैगजीन्स मिल जाती हैं।

0: फिर इंडिया का कार्यक्रम सुनने वालों को गीता का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ हैं वंदना जी, जो बच्चों के बारे में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। वंदना जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
1: थैंक यू सो मच गीता जी।
0: वंदना, आप मुझे बताएं कि जो छोटे बच्चे हैं 2 साल से 6 साल तक, गांवों में तो उनके लिए स्कूल ही नहीं है, आंगनवाड़ीज हैं, आंगनवाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं, और हमें साइंस ये कहती है कि इन बच्चों को 6 महीने से एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देना शुरू कर देना चाहिए, तो इसमें आपका क्या विचार है?
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम कि हमें 6 महीने के बच्चे से बच्चे को एक्टिविटीज स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जब एक छोटा बच्चा घर में आता है हमारे, तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो बढ़ जाती हैं। उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए माँ बाप का सबसे बड़ा रोल होता है कि वो बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। एक्सपेक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन अपना रोल प्ले करना बहुत मुश्किल है। तो जब हम 3 महीने, आपने 6 महीने का बच्चा बोला और मैं 3 महीने से ही बोलती हूँ, या जब बच्चा घर में आता है उसी दिन से हमें जो वैल्यूज बच्चे को देनी है हमें उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि बड़ा होकर हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख पाए, तो उसे किताबों की आदत डालिए। अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छी बातें बोले, तो उसके सराउंडिंग आप जो भी बात कर रहे हैं उसमें वो चीज आप में भी आनी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है छोटा बच्चा सुनता नहीं है, बट बच्चा माँ के पेट के अंदर से ही सुनना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे जब वो फैमिली में आता है, 6 महीने का होता है, साल का होता है, तो घर के सिस्टम को ही हमें स्कूल में बदलना बहुत जरूरी हो जाता है।
0: वंदना जी, अगर आप शहर की बात करें तो सब माएं तो नौकरी करती हैं और बच्चा जब जगता है उससे पहले ही वो दफ्तर चली जाती हैं, और जब वो वापस आती हैं तो 1 घंटा ही बचता है उनके पास, बच्चे के सोने का टाइम हो जाता है। इस केस में बच्चे की ग्रोथ पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपके क्या विचार है?
1: ये आज की डेट में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि माँ बाप के पास बहुत कंप्लेंट्स हैं, लेकिन जो बेसिक वैल्यूज छोटे होते बच्चे के अंदर हमें डालनी है, उस टाइम पे वो मदर जो है वो एक वर्किंग वुमेन का रोल प्ले करना चाहती है। तो बहुत जरूरी है आपको उस बैलेंस को मेंटेन करना, उस क्वालिटी को मेंटेन करना, कि अगर आप बाहर निकलना चाहती हैं तो ये आपको देखना है कि आप बच्चे को वो वैल्यूज कहाँ से देंगी। या तो आप एक ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स वो रोल प्ले कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में रहना पसंद करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम मेड्स के ऊपर बच्चे छोड़ देते हैं। मेड्स के ऊपर बच्चे छोड़ने का मतलब है बच्चे के अंदर वो वैल्यू नहीं आएगी, उसका रहना बोलना वो नहीं होता। सेकेंड पार्ट है मोंटेसरी स्कूल्स, डे केयर्स, जिसमें बच्चों के अंदर वो वैल्यूज डाली जाती हैं। तो क्योंकि आजकल वर्किंग वुमेन का कल्चर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसी के लिए हम लोगों का जो मोंटेसरी सिस्टम है एजुकेशन का, वो हमें लाइन में लाना पड़ रहा है, सो दैट हम पेरेंट्स के साथ मिलकर बच्चों के अंदर उन वैल्यूज को इनकल्केट कर सके।
0: वंदना, आपके सुझाव सुनने के बाद मेरे दिमाग में 3 बातें आ गई हैं, और 3 बातें ही अलग अलग हैं। एक तो ज्वाइंट फैमिली का ब्रेक होना, पर ज्वाइंट फैमिली का होना भी एक प्लस पॉइंट है, पर अगर हम ज्वाइंट फैमिली का प्लस पॉइंट समझते हैं तो आजकल एजुकेशन में इतना गैप आ रहा है कि जो यंग मदर है वो कहती है मेरे बच्चे को एक पर्टिकुलर ढंग से ट्रेनिंग दी जाए, जो मदर इन लॉ या मदर में वो टेक्निक नहीं होती है, तो वो भी गैप फिल करने के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। और जब न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं तो मेड्स को वो नहीं आता है तरीका बच्चों को रखने का, जिससे बच्चों को वो वैल्यूज नहीं आती हैं। तीसरी बात ये कि अगर वो मोंटेसरी स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स भी उसको एक जॉब की तरह लेती हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो मुझे तो ये इतनी बड़ी आगे आने वाले समय में समस्या लग रही है, और हम इससे झुलझ रहे हैं, हम भुगत भी चुके हैं, और आगे जो जनरेशन आ रही है उनको वैल्यू सिस्टम देना, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको हम कैसे एक बैलेंस ड्रॉ करें?
1: इस बैलेंस को ड्रॉ करना बहुत मुश्किल काम नहीं है. सी, इट डिपेंड्स कि आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर फैमिली क्या है. जैसे आपने मुझसे पहला सवाल किया कि अगर जॉइंट फैमिली है तो हर मदर चाहती है कि मैं उसको अपने तरीके से वैल्यू दूं, क्योंकि जो ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर है वो आउटडेटेड हो चुके हैं, उनको आजकल के बारे में नहीं पता. बट उस मदर का ये समझना जरूरी है कि जो एक बेसिक वैल्यू है वो सेम है, सिर्फ देने का तरीका बदल गया. 10 साल पहले या 20 साल पहले भी जो बच्चे बड़े हुए थे या जिस कैटेगरी में हम अपने आप को डालते हैं, तो हमें नहीं लगता कि हम किसी गलत सिस्टम में फॉलो करा हमने, कि हम आजकल के बच्चों को सिस्टम में नहीं ला सकते हैं. तो जो आजकल की जनरेशन, आजकल की जो मदर है, उसके माइंड में एक सिर्फ एक माइंडसेट उसका चेंज करना है कि जो वैल्यू आपके घर के लोग आपके बच्चे को दे सकते हैं वो बाहर की मेड कभी भी नहीं दे सकती. सेकेंडली, जो एक टीचर का आपने बोला कि आजकल 90% टीचर्स जो हैं वो ये मान के काम करती हैं कि हम प्रोफेशनलिज्म पे काम करें, कि हमारी हर मंथ की सैलरी हमारी पॉकेट में आ रही है, बट हमें बच्चे के साथ कनेक्शन नहीं बनाना. सो मेरी लोगों से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है कि जिन लोगों में पेशेंस नहीं है, जिन लोगों में पर्सनल टच नहीं है, वो लोग टीचर की जॉब के लिए कभी भी आगे नहीं आए. बिकॉज एक टीचर है जो बच्चे को बनाएगी या बच्चे को तोड़ेगी. माँ बाप के पास बच्चा रहता है पूरा दिन, लेकिन बीच में 6 घंटे बच्चा जो है वो स्कूल में टीचर के पास आ रहा है. तो जब हम किसी टीचर को भी अपॉइंट करते हैं तो हमें उनके साथ मिलकर ये देखना पड़ेगा कि वो बच्चों से कैसे डील कर रही है. वैल्यू सिस्टम सालों से सेम चलता आ रहा है, उसको आगे पहुंचाने का तरीका धीरे धीरे साल में बदलता चला जा रहा है, जिसको हमें कनेक्ट करना है.
0: बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि वैल्यू सिस्टम्स तो वही हैं, पर हमें देने का तरीका बदलना है.
1: जी.
0: देने का तरीका बदलने पे मुझे एक और सामने समस्या खड़ी हो रही है कि जो प्रोफेशनलिज्म है वो कमर्शियल में बदलता जा रहा है. हर कोई पैसा देके डिग्री लेने की दौड़ में चला जा रहा है और जो वैल्यू है एजुकेशन की वो कहीं ना कहीं बिखरती जा रही है. उसको भी समेटने की बहुत जरूरत है. मैं इतना कहना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम जो हमने ये बात करी, ये उस महिलाओं तक पहुंचनी चाहिए जहां पे रीड इंडिया के सेंटर्स हैं, और रीड इंडिया के जो सेंटर्स हैं उनके साथ हमने प्री स्कूल भी खोले हैं, और उन प्री स्कूल्स में हम कितने वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं और टीचर्स को कैसे हम ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज दे रहे हैं. जॉब भी दे रहे हैं, उससे हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, उनको पैसे भी उतने ही दे रहे हैं जो एक कमर्शियल स्कूल में मिलते हैं, पर जो हमारी ट्रेनिंग है, जो बच्चों का रखरखाव है स्कूल में और जो बच्चों को हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, मैं ये पढ़ाई नहीं कहूंगी, हम उनको वैल्यू सिस्टम दे रहे हैं. और अगर एक बच्चे की बुनियाद अच्छी बन जाती है तो वो बड़े होके इतना सक्षम हो जाता है कि वो अपने आप अपनी राह को तराश करने की कोशिश करता है. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये बात करने का.
1: थैंक यू सो मच.

गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर ऑल वेलकम बाय दिनेश मिगलानी। आज के इस सेशन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले हम ये समझेंगे कि ट्वेल्थ के बाद क्या किया जाए। ये हमारी सीरीज ऑफ सेशन है और आज इस सेशन के थ्रू हम लो एरिया पर फोकस करेंगे कि अगर आप या आपका बच्चा ट्वेल्थ क्लास में है, जो उसका बोर्ड का एग्जाम अभी आगे मार्च के मंथ में होने वाला है, तो कैसे प्लान करें और क्या सोचे कि ट्वेल्थ के बाद में क्या किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में अभी 5 to 6 months बाकी हैं। वैसे तो बच्चा जब ट्वेल्थ क्लास में होता है तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि ट्वेल्थ में मैक्सिमम मार्क्स लिए जाए, ठीक है। बट इसके साथ साथ, क्योंकि मार्क्स लेना कहीं आपको अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, पर अकेडमिक कोर्सेज में। बट अगर आपको किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन चाहिए, तो प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा हर जगह पे। अब वो प्रोफेशनल कोर्स चाहे आपका एमबीबीएस है, चाहे आपका इंजीनियरिंग है, राइट, और आपको लॉ फील्ड में जाना है तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम परस्यू करना पड़ेगा। आपको बीबीए या एमबीए करना है 5 ईयर इंटीग्रेटेड, तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। आपको बीजेएमसी में जाना है मास कम्युनिकेशन में, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। आपको एनआईएफटी देना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो भी आपको कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो इन सीरीज ऑफ सेशन के थ्रू हम अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि किस कोर्स के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, उसके लिए क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं, इसके साथ साथ उस एंट्रेंस एग्जाम में क्या आता है और कैसे हम अभी से ही अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इसके साथ साथ ये सेशन काफी हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास प्लस वन में है, उनके पास एनफ टाइम होता है ये अंडरस्टैंड करने के लिए या अपने करियर को प्लान करने के लिए आगे की ट्वेल्थ एग्जाम होने के बाद कोई एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके किसी ना किसी अच्छे प्रोफेशनल कोर्स में उनका एडमिशन हो। दोस्तों, एक बात तो हमारे को बिल्कुल क्लियर है कि अगर किसी बच्चे का एम एमबीबीएस करना है या इंजीनियरिंग करना है तो उसकी लाइन बिल्कुल क्लियर है। रीजन क्या है कि अगर आपने एमबीबीएस में जाना है तो आपने मेडिकल साइड ऑप्ट किया है, ठीक है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे फोकस करना है, राइट। जो आप अपने प्लस टू के कोर्स क्यूरिकुलम में पढ़ते हैं उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन अगर आप पढ़ेंगे तो आपका नीट का या एमबीबीएस का जो एग्जामिनेशन है आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहीं अगर हमें इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ मैथमेटिक्स पे अपनी कमांड बनानी है। जो आप प्लस टू बोर्ड प्रिपरेशन करते हैं उसका थोड़ा सा और एडवांस जाके स्टडी किया जाए, थोड़े और मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस किया जाए, तो आप कहीं ना कहीं जेई एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल हो जाते हैं, आईआईटी के लिए ट्राई कर सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या आती है कि जिन बच्चों का टारगेट एमबीबीएस या इंजीनियरिंग नहीं होता, यहां हम उन बच्चों की बात करेंगे जिन बच्चों का टारगेट एमबीबीएस या इंजीनियरिंग नहीं होता, जिसमें इसके अलावा क्या क्या वो करें और किन किन कोर्सेज की तरफ वो जा सकते हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम बात करेंगे कि जिन बच्चों का टारगेट एमबीबीएस या इंजीनियरिंग नहीं है और जो बच्चे फ्यूचर में लो एंट्रेंस या लो एज ए प्रोफेशन को ऑप्ट करना चाह रहे हैं, हम आज के सेशन में उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, लो एक पैशन है, लो एज ए प्रोफेशन है, एज ए पैशन है। अगर आपका बच्चा या आप लो में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो लो में जो करियर है उसका स्कोप काफी ज्यादा है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आज के टाइम में भी लीगल प्रैक्टिशनर, एडवोकेट, लॉयर, जज, ये समाज के वो लोग माने जाते हैं जो मनी अर्निंग के साथ साथ पावर भी फील करते हैं। दे ऑल्सो फील देमसेल्व पावरफुल। एक लॉयर है, स्टार्टिंग में हो सकता है कि इनिशियली उसकी अर्निंग कम हो, बट प्रैक्टिकली ही नोज द लॉ, ही नोज हाउ टू यूज द लॉ, ठीक है, वो लॉ की पावर को जानता है और लॉ की पावर अपने अंदर फील करता है। तो अगर आप फ्यूचर में पावर भी चाहते हैं पैसे के साथ साथ, तो लो एक आपके या आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि लो कैसे किया जाए, कहां से किया जाए
और लो करने के लिए हमें कौन कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे, उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे की जाए ताकि बच्चे का 12th के बाद अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन हो जाए। देखिए, इसमें एक मिथ है हमारे मन में, कई लोग एडवाइस करते हैं कि पहले ग्रेजुएशन किया जाए और ग्रेजुएशन के बाद हम LLB करेंगे। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप LLB करते हैं तो इंडिया के अंदर 3 ईयर LLB के जो इंस्टीट्यूट हैं कंपेरेटिवली काफी कम है, जिसमें अगर हम टॉप पे बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर का नाम आता है, हमारे पास में पंजाब यूनिवर्सिटी है। बट अगर हम 5 ईयर के कंपेयर में जाएंगे तो 5 ईयर LLB में जो आपके इंस्टीट्यूट हैं मच बेटर है 3 ईयर LLB से, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर आपको लो ही करना है तो बेटर है कि आप 5 ईयर करिए, क्योंकि 1 ईयर आपका सेव होता है अगर आप 3 ईयर LLB में जाते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद में। तो सबसे पहला जो एडवांटेज आपको क्या है कि हमारा 1 ईयर सेव हो जाता है, क्योंकि अगर मैं पहले 3 ईयर का ग्रेजुएशन करूंगा और 3 ईयर ग्रेजुएशन करने के बाद में 3 साल में LLB करूंगा तो 6 साल मुझे स्पेंड करने पड़ेंगे। और वहीं अगर मैं 12th के बाद ही, क्योंकि अगर मेरा लाइफ का ऑब्जेक्टिव लॉयर बनना ही है, लॉ फील्ड में मुझे जाना है, तो बेटर है कि आप 12th के बाद से जाइए ताकि आप 1 साल बचा सके। सेकंड, मैंने आपको बताया कि 5 ईयर LLB और 3 ईयर LLB में सेकंड प्लस पॉइंट 5 ईयर LLB में जाने का क्या है, क्योंकि 5 ईयर LLB के लिए जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें हम बात करते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज NLU की बात की जाती है, इंडिया में एट प्रेजेंट 21 NLUs हैं जिनको हम IIT या IIM से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, जैसे आज किसी भी बच्चे का एम अगर इंजीनियरिंग करना है तो बचपन से ही उसके माइंड में बिठा दिया जाता है कि बेटे अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको IIT में जाना है, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी बच्चे को MBA करना है तो उसके मन में एम बनाया जाता है, उसको सपना दिखाया जाता है कि अगर MBA करनी है तो मुझे IIM अहमदाबाद से करनी है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको MBBS करना है तो एम्स दिल्ली हमारा मेन टारगेट होता है, AFMC पुणे आपका टारगेट होता है, ठीक है। वहीं अगर आपके बच्चे के मन में कहीं भी ये एक बात है कि मुझे LLB करना है, तो उस बच्चे के लिए सबसे टॉप पे जो कॉलेज आता है नेशनल लॉ स्कूल इंडियन यूनिवर्सिटी, जिसे हम बैंगलोर कहते हैं, नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर, आप इसे कह सकते हैं NLS बैंगलोर, नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर, एक बच्चे का एकमात्र टारगेट। जैसे नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर है, ऐसे ही नालसार हैदराबाद है, मतलब ये लिस्ट बहुत लंबी है। मैं तो एक टॉप के कॉलेजेस की बात करेंगे, जैसे हमने बात किया व्हेन आई टॉक्ड अबाउट IIT तो मैंने IIT दिल्ली बोला, ऐसे अगर हम लॉ की बात करेंगे तो नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर का नाम लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, 12th के बाद हमारे पास में इतने अच्छे लॉ कॉलेजेस हैं, इसके साथ साथ OP जिंदल है, या काफी प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिनमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, तो 5 ईयर के अंदर उसमें काफी चीजें वो गेन करता है, स्टडी करता है, उसका फोकस क्रिएट हो जाता है, और 5 ईयर के बाद में प्लेसमेंट हो जाती है अच्छी। प्लेसमेंट के साथ साथ अगर उसे प्रैक्टिस करना है तो 5 ईयर में लॉ का इतना बेस क्लियर हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी हो जाती है उसकी कि वो प्रैक्टिस कर सकता है, लॉ की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। हायर स्टडी में अगर उसे जाना है तो LLM कर सकता है, फॉरेन यूनिवर्सिटी से LLM कर सकता है, PhD में जा सकता है। जुडिशियल सर्विसेज में अगर जाना है तो जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी, क्योंकि जो NLUs हैं उनके 5 ईयर का क्यूरिकुलम इतना स्ट्रांग है, बच्चे को इतने अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है, इतने अच्छे ढंग से लोगों के साथ मिक्सअप किया जाता है कि एक बच्चा जो NLU से पास आउट है उसकी लीगल अंडरस्टैंडिंग, उसकी एक्सप्रेशन एबिलिटी, सब्जेक्ट की नॉलेज काफी डेप्थ नॉलेज होती है, ठीक है। तो बच्चा लोगों के हर करियर में अपने लिए एक निश क्रिएट कर सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि लोगों के हर एरिया के अंदर एक अच्छी स्टैंडिंग अपने लिए क्रिएट कर सकता है। अब हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे लॉ करना है तो NLU से करना है, बट प्रॉब्लम ये आती है कि NLU के लिए आप कौन सा एग्जाम टारगेट करें और उस एग्जाम में ऐसा क्या आता है और कैसे आप उसकी तैयारी करें। जैसे ही हम लॉ की बात करते हैं तो हमारे मन में इंडिया के अंदर 3 एग्जाम्स के नाम आते हैं, एक तो क्लैट, सबसे ऊपर हमारा क्लैट है जिसका नाम होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्या नाम होता है? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट,
जो इन सभी एनएलयू का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। जितनी भी एनएलयूज मैंने यहां लिखी है, इन सभी एनएलयूज का ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लैट का नाम देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक और एग्जाम आता है जिसे हम AILET कहते हैं, ऑल इंडिया लो एंट्रेंस टेस्ट, जो आपका एनएलयू दिल्ली कंडक्ट कराती है। देखो एनएलयू दिल्ली जो है ये स्टेट यूनिवर्सिटी हो जाती है, तो एनएलयू दिल्ली जो है ये अपना अलग से एंट्रेंस टेस्ट लेती है, जिसे हम AILET कहते हैं। इसके अलावा आप LSAT का एग्जाम दे सकते हैं, अगर आपको फॉरन से लो करना है, ओपी जिंदल से करना है तो LSAT का एग्जाम दे सकते हैं। सिम्बायोसिस से अगर आपको करना है तो SCT का एग्जाम होता है, सिम्बायोसिस का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। बट एक बच्चा जिसको LLB करना है 12th के बाद में, टॉप लो कॉलेज से LLB करना है, अपने आप को वो माने कि मैं IIT से भी अच्छी जगह पे बैठा हूं, तो उसका टारगेट होता है नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर। अब देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, लॉ के अंदर आपके 12th के मार्क्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 12th में चाहिए, मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए, इसके अलावा आपके 12th के मार्क्स किसी भी जगह पर किसी भी कॉलेज में एडमिशन में कहीं भी ऐड नहीं होंगे। सेकंड थिंग, कोई इंटरव्यू नहीं है, आपको केवल क्लैट का टेस्ट क्वालिफाई करना है। क्लैट का टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, क्वालिफाई भी नहीं, टॉप रैंक आपको लेके आना है। ठीक है, तो क्लैट का जो एग्जामिनेशन होता है पेपर पेंसिल एग्जामिनेशन है, जो 200 मार्क्स का आता है। ठीक है, और इस 200 मार्क्स में क्या क्या आता है, मैथमेटिक्स जो 20 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चन मतलब जो आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ते हैं 10th लेवल तक का, प्लस वन प्लस टू से रिलेटेड मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता, 10th लेवल तक का मैथमेटिक्स है। और जनरली मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, काफी साल से हम इस इंडस्ट्री में है, क्लैट के बच्चों को टीच करते हैं, बच्चों का जो वो इंडिविजुअल रिएक्शन ये रहता है कि एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स करने के लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं बचता। क्यों? क्योंकि बाकी पेपर इतना लेंदी होता है, मैथमेटिक्स में ओनली जो सिटर क्वेश्चन है, सिटर क्वेश्चन मतलब देखते ही आंसर कर दिया, कोई शॉर्ट ट्रिक लग गया सीधा, जहां क्वेश्चन सोल्व करने की नीड पड़ेगी तो बच्चा उससे बजाय वो क्वेश्चन करेगा जो पढ़ के इजिली आंसर कर सकता है। सेकेंड सेक्शन आता है इसके अंदर इंग्लिश। इंग्लिश सेक्शन के अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो बच्चा 10th लेवल तक पढ़ता है प्लस टू लेवल तक, वोकैबुलरी बच्चे की कैसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वोकैब बिल्डिंग, अब ये चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मल हैं, मतलब कि अगर आपने अपने बच्चे के लिए स्टार्टिंग से ही उसकी इंग्लिश पे ध्यान दिया है, उसकी बेसिक वोकैबुलरी इंप्रूव है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर ही स्टडीज, और उसमें से टिपिकल वर्ड्स को नोट्स बनाता है, धीरे धीरे उसे याद हो जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है इंग्लिश के अंदर। थर्ड सेक्शन आपका रहता है रीजनिंग। थर्ड सेक्शन जो इसमें आता है वो क्या आता है, रीजनिंग। रीजनिंग सेक्शन जो होता है ये आपका लॉजिकल पार्ट है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर सभी बेसिक टॉपिक्स कवर होते हैं। बेसिक टॉपिक कवर होने से मतलब क्या है, डायरेक्शन, सेंस, ब्लड रिलेशन। बट पिछले कुछ सालों में जो क्लैट का ट्रेंड है, क्लैट का ट्रेंड क्या है कि रीजनिंग में पजल बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं, मतलब कि आप कुछ जो बेसिक जो पजल्स हैं उनको सॉल्व करिए। इसके साथ साथ जो वर्बल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग मतलब कि आपकी लैंग्वेज पे कितनी अच्छी कमांड है, तो 20 क्वेश्चन इसके, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, तो ये 100 मार्क्स तो आपके बने इस सेक्शन से। फिर हमारे पास में दो सेक्शन बच जाते हैं, फर्स्ट वन इज लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है, और सेकंड सेक्शन जो बचता है हमारे पास में वो हमारा बचता है जनरल नॉलेज। लीगल एप्टीट्यूड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें लीगल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लॉ के प्रिंसिपल गिवन होते हैं, उसके ऊपर कोई लीगल प्रॉब्लम होती है, आपको पहले लॉ के प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद में जो भी लीगल प्रॉब्लम गिवन है आपको एज ए लॉयर, एज ए जज उस प्रिंसिपल को उस लीगल प्रॉब्लम में अप्लाई करके देखना है, डिसाइड करना है कि अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन व्हाट यू कैन से, राइट। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लॉ ऑफ टोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं। इसके साथ साथ लॉ के जनरल कॉन्सेप्ट होते हैं, लीगल टर्म्स होती हैं,
कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में न्यूज़पेपर के अंदर स्टडी करते हैं, कोई लेटेस्ट जजमेंट है, कोई ऐसा लैंडमार्क लीगल जजमेंट है, उससे रिलेटेड सारी चीजें लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आपसे पूछी जाती हैं। फिर हमारा सेक्शन आता है जनरल नॉलेज। लास्ट टू ईयर का एक्सपीरियंस ये है कि करंट अफेयर्स आपके अच्छे होने चाहिए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या रहती है कि अगर आप 12th एग्जाम देने के बाद में

तो ये एक जनरल पैटर्न होता है जो किसी भी लो एडमिशन टेस्ट में पूछा जाता है। AIELTS जो मैंने आपको बताया, NLU दिल्ली के लिए स्पेशल पेपर रहता है, इसमें 150 मार्क्स का पेपर है, मोर और लेस डिवीजन इसी टाइप से है, मैथमेटिक्स 10 मार्क्स का हो जाएगा, उसी प्रोपोर्शन में चीजें लेस हो जाएंगी। तो अगर कोई भी बच्चा लॉ को एज ए करियर ऑप्ट करने की प्लानिंग कर रहा है तो हम तो यही एडवाइस करेंगे उसे कि क्लैट की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है जितना जल्दी हो सके, और ये सितंबर अक्टूबर का जो टाइम होता है बेस्ट टाइम होता है प्रिपरेशन करने का, नेक्स्ट 3-4 मंथ्स आपके पास होते हैं बोर्ड एग्जाम से पहले, आप एक बार कोर्स कंप्लीट करिए, उसके बाद जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होते हैं साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, डेली टेस्ट सॉल्व करिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव हो सके। सेकेंड थिंग, हम एज ए दिनेश मिगलानी ट्यूटोरियल्स आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं क्लैट के लिए स्पेसिफिकली, जिसमें आपको वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे। जो वीडियोस है उसमें हमने लॉ के मतलब हमने मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज सभी टाइप के वीडियोस हमने बनाए हैं, अराउंड 400 प्लस वीडियोस हैं उसके अंदर, जिसके थ्रू आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीडीएफ रहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में पेनड्राइव कोर्सेज हमारे अवेलेबल रहते हैं। क्लैट का जो हमारा पेनड्राइव कोर्स है उसका प्राइस है 4,000 रूपीज। 64 GB पेनड्राइव हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिस पेनड्राइव की कोई एक्सपायरी नहीं है। मतलब कि अगर आपने अपने लिए पेनड्राइव परचेज किया और आपने 2 या 3-4 महीने तैयारी की, उसके बाद अगर आप अपने किसी जूनियर को, छोटे भाई बहन को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप सेम पेनड्राइव आगे गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस पेनड्राइव की कोई भी एक्सपायरी नहीं है। इसके साथ साथ उस पेनड्राइव में रेगुलर अपडेट्स आते हैं आपके, हम आपको ईमेल आईडी के थ्रू आपको रेगुलर जीके के नोट्स भेजते हैं ताकि आप इन फ्यूचर अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो ये सारी सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है स्क्रीन पे गिवन नंबर्स पे हमसे बात कर सकता है, या हमारा ऑफिशियल नंबर है 9215514435, यही हमारा एक सिंगल वन नंबर है 9215514435। आप इस नंबर पे कॉल करके पेमेंट प्रोसीजर कैसे खरीदा जाए उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। आई होप आपको ये तो जरूर समझ में आया होगा इस सेशन के एंड में कि हमें अगर लॉ के लिए प्रिपरेशन करनी है कौन सा एग्जाम हमें टारगेट करना है, और एग्जाम टारगेट करने के बाद में हमें कैसे उसकी तैयारी की जाए, ये हमारे इस सेशन का ऑब्जेक्टिव था। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप हमारे वीडियोस को देखिए YouTube के ऊपर, हमने काफी वीडियोस अपलोड भी किए हुए हैं, ठीक है, आप उनको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसके नीचे शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन होता है बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो रेगुलर अपडेट्स जो हमारे वीडियोस के होते हैं वो आप तक पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: ज्ञान वार्ता प्रसारण में आपका स्वागत है।
1: प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी सन 1769 और 1799 के बीच 30 साल की अवधि में ब्रिटिश सेना और हैदर अली तथा उसके बेटे टीपू सुल्तान के बीच 4 मैसूर युद्ध लड़े गए। इन युद्धों के दौरान अंग्रेजों को 2 अत्यंत महत्वपूर्ण भारतीय तकनीकों रॉकेट निर्माण और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानकारी मिली। बाद में इन दोनों ही भारतीय तकनीकों का पहले इंग्लैंड में और तदनंतर यूरोप के अन्य देशों में तेजी से विकास हुआ। अंग्रेजों ने भारतीयों से किस तरह प्लास्टिक सर्जरी की विद्या सीखी, ये एक दिलचस्प दास्तान है। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच तीसरा मैसूर युद्ध एक संधि के द्वारा समाप्त हो चुका था। उसके कुछ दिन बाद की ही घटना है। अंग्रेजों की खिदमत करने वाला कवसाजी नाम का एक मराठा गाड़ीवान और 4 तिलंगे मैसूर राज की सीमा में दाखिल हुए तो टीपू सुल्तान के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके हाथ नाक कान सभी कुछ काट दिए। फिर उन्हें अंग्रेज कमांडर के पास वापस भेज दिया गया। उसके कुछ दिन बाद की बात है, वहां अंग्रेज कमांडर एक भारतीय व्यापारी से कोई और सौदा तय कर रहा था तो उसने देखा कि व्यापारी की नाक कुछ अजीब तरह की है और उसके ललाट पर जख्म के निशान भी हैं। कमांडर के पूछने पर व्यापारी ने बताया कि परस्त्री गमन के अपराध के दंड स्वरूप उसकी नाक कान काट दी गई थी और कुम्हार जाति के एक मराठा वैद्य से उसने नाक कान बनवा लिया था। अंग्रेज कमांडर ने उस वैद्य को बुला लिया और उससे कवसाजी तथा 4 तिलंगों की नाक की प्लास्टिक शल्यक्रिया करने को कहा। शल्यक्रिया पुणे के पास एक स्थान पर हुई। उस समय 2 अंग्रेज डॉक्टर थॉमस क्रूसो और जेम्स फिंडले वहां मौजूद थे। कुछ दिन बाद उस सनसनीखेज शल्यक्रिया का सचित्र विवरण मद्रास गजट में प्रकाशित हुआ। फिर लंदन में प्रकाशित होने वाला जेंटलमैन मैगजीन नामक पत्रिका के अक्टूबर 1794 के अंक में वो विवरण पुनः मुद्रित हुआ। 200 से भी कुछ अधिक साल पहले भारत में की गई नाक की प्लास्टिक सर्जरी के उस विवरण की प्रमुख जानकारी को यहाँ प्रस्तुत करना उपयोगी होगा। सर्वप्रथम नाक का सही माप लेने के लिए मोम की एक परत तैयार की गई, फिर ललाट से उसी आकार की त्वचा काटी गई पर आंखों के बीच थोड़ा हिस्सा रक्त संचार के लिए ललाट से जुड़ा रहने दिया गया। उसके बाद नासा छिद्रों के लिए ठीक से स्थान बनाकर नाक की चतुर्दिक सीमा की त्वचा में चीरा लगाया गया। फिर ललाट से काटी गई त्वचा को आधा मोड़कर नीचे नाक पर लाया गया और चीरे से फंसा दिया गया। फिर कपड़े की पट्टियों पर भीगे कत्थे का लेप लगाकर उसकी 4-5 परतें त्वचा की जोड़ पर लगा दी गई। जख्म को भरने के लिए कत्थे के उस सीमेंट के अलावा और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया। 4 दिन बाद उन्हें हटाकर घी में डुबोई हुई पट्टियां जख्म पर लगाई गईं। 20वें दिन ललाट से जुड़ी हुई त्वचा को काट दिया गया। इस शल्यक्रिया के बाद मरीज को 5-6 दिन तक पीठ के बल बैठाया गया। नासा छिद्र पर्याप्त खुले रहे इसीलिए 10वें दिन उसमें मुलायम कपड़े के टुकड़े रखे गए। अंत में इस शल्यक्रिया के विवरण में एक टिप्पणी है, नाक की ये प्लास्टिक शल्यक्रिया हमेशा सफल रही है। ये बनावटी नाक मजबूत होती है और काफी हद तक कुदरती नाक की तरह दिखाई देती है। कुछ अरसे बाद ललाट का दाग भी काफी हद तक मिट गया है। भारत में ही की गई नाक की प्लास्टिक सर्जरी का ये विवरण लंदन में प्रकाशित हुआ तो इसे पढ़कर वहां के अनेक सर्जन चकित रह गए। उस सचित्र विवरण ने 30 साल के तरुण सर्जन जोसेफ कॉन्स्टेन कारपूर को सबसे अधिक प्रभावित किया। उससे इस प्रकार की शल्यक्रिया के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। फिर उसने साहस करके लंदन में 23 अक्टूबर 1814 को नासिक संस्थान की ठीक वैसी ही शल्यक्रिया की जैसी भारत में कवसाजी और तिलंगों पर की गई थी। उसके साथ ही यूरोप में आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का युग शुरू हुआ। लंदन में नाक संस्थान की वह पहली शल्यक्रिया करने में कारपूर को कुल 37 मिनट का समय लगा। उस पहली सफलता के बाद कारपुए ने जल्दी ही नाक संस्थान की दूसरी शल्य क्रिया की भी, जिससे उसे खूब प्रसिद्धि मिली। भारतीय नाक यूरोप में मशहूर हो गई। समीप के अंग से त्वचा लेकर अंग भंग के स्थान पर जोड़ी जाती है, तो उस विधि को आज भी भारतीय प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। कारपुए ने नासिका संधान के अपने अनुभवों के आधार पर सन 1816 में एक छोटी पुस्तक भी प्रकाशित की थी। उससे प्रभावित होकर जर्मन सर्जन ग्रोएफ ने हाथ की त्वचा लेकर नासिका संधान की प्लास्टिक शल्यक्रिया शुरू कर दी थी। इस जानकारी से सहज स्पष्ट हो जाता है कि आज बहुत अधिक इस्तेमाल होने वाला संश्लेषित प्लास्टिक पदार्थ से प्लास्टिक सर्जरी का कोई सारोकार नहीं है। प्लास्टिक शब्द यूनानी भाषा के प्लास्टिकोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सांचा बनाना या आकार देना। प्लास्टिक शल्यक्रिया में शरीर के खोए हुए अंग को पुनः स्थापित किया जाता है अथवा विरूपता या विकृत अंग को दुरुस्त किया जाता है। हालांकि प्लास्टिक शल्यक्रिया एक बहुत पुरानी तकनीक है, परंतु तेजी से इसका विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही हुआ है। प्राचीन यूरोप से प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। बाइबल में इसका कोई उल्लेख नहीं है। होमर ने अपने महाकाव्यों में युद्ध जनित अनेक जख्मों और उनके उपचारों की जानकारी भी दी है, परंतु अंग भंग कहकर प्लास्टिक सर्जरी का कोई भी जिक्र नहीं है। रोमन चिकित्सक सेल्सस होंठ, कान और नाक की प्लास्टिक शल्यक्रिया उल्लेख करता है, मगर लगता है कि स्वयं उसने कोई शल्यक्रिया नहीं की थी। रोमन साम्राज्य के अवसान के बाद फिर हमें मध्ययुग तथा यूरोप से प्लास्टिक शल्यक्रिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी के उल्लेख 15वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। दरअसल कॉफ्रे के पहले ही नासिका संधान की भारतीय विधि की जानकारी दक्षिण यूरोप के देशों में पहुंच चुकी थी। सिसली द्वीप के सर्जन ब्रांका ने 1442 ईस्वी में नासिका संधान की शल्यक्रिया की थी। उस शल्यक्रिया में उसने गाल की त्वचा का उपयोग किया था। बाद में ब्रांका के पुत्र एंटोनियो ने पिता के कार्य को जारी रखा। हाथ से त्वचा लेकर नासिका संधान की शल्यक्रिया करने वाला एंटोनियो यूरोप का पहला सर्जन था। पिता पुत्र ब्रांका के बाद 16वीं सदी के आरंभ में इटली के बोयानी परिवार ने प्लास्टिक सर्जरी का काम किया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इटली के बोलोना विश्वविद्यालय में शल्य चिकित्सा के प्राध्यापक जास्पारो ताग्लियाकोजी ने नाक संधान के सर्जन के रूप में खूब ख्याति अर्जित की। उसने हाथ से त्वचा लेकर नाक संधान की शल्यक्रियाएं की। उसने कर्णबंध और ओष्ठबंध की शल्यक्रियाएं भी की। ताग्लियाकोजी ने 1597 ईस्वी की कागड़ा की प्लास्टिक सर्जरी की परंपरा के बारे में जानकारी दी है। पता चलता है कि अकबर के शासनकाल में कांगड़ा के बिधा नामक एक वैद्य ने नासिका संधान की शल्यक्रिया की थी। ईसा की 7वीं या 8वीं सदी के प्रख्यात चिकित्सक बाणभट्ट के ग्रंथ अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में भी प्लास्टिक शल्यक्रम के बारे में जानकारी मिलती है, परंतु सबसे प्राचीन जिस भारतीय ग्रंथ में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है वो है सुश्रुत संहिता। प्राचीन भारतीय चिकित्सा ज्ञान के दो महान विश्वकोश हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। इसमें चरक संहिता अधिक प्रसिद्ध है और अधिक प्राचीन भी है। सुश्रुत संहिता की रचना कोई 2000 साल पहले हुई। चरक संहिता प्रमुख रूप से औषधि विज्ञान का ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता में मुख्यतः शल्य चिकित्सा की विशद जानकारी दी गई है। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में एक ग्रंथ प्रकाशित किया गया था, उसे आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का पहला वैज्ञानिक ग्रंथ भी माना जाता है। हाथ से त्वचा लेकर ताग्लियाकोजी ने नासिका संबंध की जिस विधि का विकास किया था वो अब इटालवी विधि के नाम से जानी जाती है। ताग्लियाकोजी ने चिकित्सा विज्ञान की अमूल्य सेवा की थी, फिर भी उसे ईसाई चर्च का कोपभाजन बनना पड़ा। उसे धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया और उसके शव को चर्च के कब्रिस्तान से निकालकर दूसरे सामान्य स्थान पर गड़वा दिया गया। मगर बोलोना के नागरिकों के दिल में अपने इस देशवासी के लिए अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने ताग्लियाकोजी की स्मृति में एक मूर्ति स्मारक खड़ा किया। उस मूर्ति के एक हाथ में नाग है। ताग्लियाकोजी के बाद उसके शिष्य प्लास्टिक शल्यक्रियाएं करते रहे।

0: आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ दलजीत सचदेवा
1: और मैं चांदनी वर्मा।
0: नमस्कार
1: दलजीत, कहते हैं कि किसी भी चीज को देखने का सबका अपना अपना नजरिया होता है, क्यों?
0: बिल्कुल, तभी तो कहते हैं कि चीज खूबसूरत नहीं होती बल्कि उसे देखने वाले की निगाहें अच्छी होती हैं, उनका नजरिया खूबसूरत होता है।
1: बिल्कुल, और एक नजरिया होता है विज्ञान का, जो किसी भी घटनाक्रम को या किसी भी स्थिति को या फिर किसी भी वस्तु को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मापता है और फिर पहुंचता है एक ठोस नतीजे पे।
0: और तभी तो कहते हैं कि विज्ञान ने हमें जीने के नए मायने दिए हैं और हमारी सोच को नई दिशा,
1: और इसी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और लोगों में वैज्ञानिक चेतना जगाने का बीड़ा उठाया है विज्ञान प्रसार ने।
0: जी हाँ दोस्तों, विज्ञान प्रसार के माध्यम से आपको मिलती है विभिन्न विषयों की रोचक, दिलचस्प और महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
1: और दोस्तों, आज वैज्ञानिक कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में हम प्रस्तुत करते हैं एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विद्या पर आधारित कार्यक्रम, और इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे सन यानी सूरज के बारे में।
0: तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि आज हम सूरज के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो चांदनी शुरू करें सीखने सिखाने का ये सिलसिला।
1: बिल्कुल, तो चलो सबसे पहले हम सूरज का परिचय प्राप्त करते हैं। सूरज पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाकी तारों की अपेक्षा ये पृथ्वी से हजारों गुना ज्यादा निकट है, और तारों के बारे में हम जितना भी जानते हैं उनके बारे में हमें सूरज के अध्ययन से ही पता चला है। जैसा कि हमने कहा कि ये बाकी तारों की अपेक्षा पृथ्वी से हजारों गुना ज्यादा नजदीक है, इसीलिए खगोल शास्त्रियों ने इसका विस्तृत अध्ययन करने में सफलता हासिल की है।
0: और खगोल शास्त्रियों के अध्ययन से ये पता चला कि सूर्य G2 टाइप मेन सीक्वेंस तारा है, जो लगभग 5 करोड़ वर्ष से चमक रहा है। पृथ्वी, चंद्रमा और उल्कापिंड की रेडियो सक्रियता से ये पता चला कि ये इतने ही वर्षों से हैं, और पृथ्वी का तापमान शुरू से ही सुखद है और सूर्य की ऊर्जा से ही ये संभव हो पाया है।
1: बिल्कुल ठीक, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि सूर्य की इतनी शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत क्या है। अब प्रयोगों और अध्ययनों के बाद ये पता चला है कि सूर्य के साथ साथ बाकी तारों की असीम ऊर्जा का स्रोत है न्यूक्लियर फ्यूजन। दलजीत, अब बात आती है सूर्य के आकार की, तो इसके बारे में तुम क्या कुछ बता सकते हो?
0: देखो चांदी, सूर्य अभी तक सौर मंडल का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके 0.5 डिग्री कोणीय आकार और तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूरी के आधार पर इसके व्यास का आकलन किया गया है, जो करीब 1,392,000 किलोमीटर है। ये व्यास पृथ्वी के व्यास का करीब 109 गुना है और सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति से 10 गुना ज्यादा है। चांदनी, यहाँ एक खास बात और बता दूं कि सूर्य के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण की वजह से सारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
1: हाँ, सूर्य पृथ्वी के आकार से करीब 3,33,000 गुना ज्यादा और बृहस्पति से करीब 1,000 गुना ज्यादा बड़ा है। ये कहा जा सकता है कि सूर्य इतना बड़ा है कि ये अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न कर लेता है, और इसकी यही खासियत तारों को ग्रहों से अलग कर देती है। दलजीत, ये बताओ कि सूरज की संरचना कैसी है?
0: देखो चांदनी, ये अच्छा सवाल वैसे तुमने पूछा। स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से ये पता चलता है कि ये मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा 94% और हीलियम की 6% है। बाकी के तत्व बहुत ही थोड़ी मात्रा में, लगभग 0.13% में है।
1: लेकिन दलजीत, कम मात्रा में पाए जाने वाले ये तत्व कौन कौन से हैं?
0: देखो चांदनी, सूरज की संरचना में जो तत्व काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं उनमें नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम और आयरन है। तो ये तो बात थी कि सूरज किन किन चीजों से मिलकर बना है। चांदनी, अब तुम इसकी अंदर की संरचना के बारे में कुछ बताओ।
1: जरूर, सूरज का बीच का हिस्सा या इसका अंतर्भाग सूरज के आकार का 10% हिस्सा है। सूरज का यही वो हिस्सा है जहां न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके ऊपर के सभी हिस्सों के गुरुत्वाकर्षण दबाव के कारण ये हिस्सा काफी ज्यादा गर्म और सघन होता है। जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए काफी ज्यादा तापमान और घनत्व की जरूरत होती है।
0: सूरज का अंतर्भाग करीब 16 मिलियन के है और इसका घनत्व पानी के घनत्व से करीब 160 गुना ज्यादा है और लोहे के घनत्व से 20 गुना ज्यादा है। हालांकि काफी ज्यादा तापमान होने की वजह से सूरज का अंदरूनी हिस्सा सिर्फ गैसों से भरा हुआ है। इसके अंदरूनी हिस्से में कहीं भी पृथ्वी की तरह पिघले चट्टान नहीं पाए जाते हैं। चांदी, अब तुम ये बताओ कि सूरज का रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन क्या है?
1: बताती हूँ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो श्रोताओं, जाइएगा मत, हम अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
2: विज्ञान प्रसार सूचना सेवा यानी विप्रिस भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों का संग्रह है। विज्ञान प्रसार अपने होम पेज दैट इज www.vigyanprasar.com को व्यवस्थित एवं सामयिक करने के अतिरिक्त सीडी रोम एवं अनेक सीखने वाले सॉफ्टवेयरों को विकसित करता है। ये होम पेज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मुख्य वेबसाइट है। विप्रिस 125 हिंदी एवं अंग्रेजी समाचारों को संकलित करके एक पुस्तक क्लिप सेट ग्राहकी आधार पर हर पखवाड़े प्रकाशित करता है। विप्रिस अन्य वैज्ञानिक निकायों एवं संस्थाओं की भी वेबसाइट बनाता है।
1: ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, दलजीत ने मुझसे सूरज के रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन के बारे में पूछा था, क्यों दलजीत?
0: बिल्कुल ठीक, तो जल्दी बताओ भाई।
1: देखो, सूरज के त्रिज्या का करीब 85% भाग रेडिएटिव जोन कहलाता है। और ये वो हिस्सा है जहाँ गर्म अंदरूनी भाग से ऊर्जा फोटॉन्स के जरिए बाहरी परतों तक पहुँचाई जाती है।
0: और कन्वेक्टिव जोन?
1: सूर्य की त्रिज्या के बाहरी 15% हिस्से में ऊर्जा जिस विधि से पहुँचाई जाती है उसे कन्वेक्शन कहते हैं। फोटोन रेडिएशन का प्रवाह ठंडे हिस्सों में आयनों द्वारा बाधित कर दिया जाता है और इन हिस्सों में गैसों के प्रवाह से ऊर्जा पहुँचाई जाती है। सूरज की सतह के ठीक नीचे का ये हिस्सा कन्वेक्टिव जोन कहलाता है।
0: बिल्कुल ठीक। और अब बात करते हैं सूरज की सतह की। सूर्य की सबसे अंदरूनी सतह फोटोस्फीयर है, इसे ही सूरज की सतह मानते हैं क्योंकि इसी के ऊपर से फोटॉन्स अंतरिक्ष में निकलते हैं। ये फोटोस्फीयर तकरीबन 500 किलोमीटर घना है और इसका तापमान करीब 5840 के है।
1: बिल्कुल ठीक। और इसी संदर्भ में गैलीलियो ने पाया था कि सूरज की सतह पर छोटे छोटे गहरे हिस्से थे जिन्हें सन स्पॉट्स कहते हैं और ये हिस्से फोटोस्फीयर के ठंडे हिस्से माने जाते थे। चूंकि ये हिस्से बाकी के फोटोस्फीयर से 1000 से 1500 के गुना ज्यादा ठंडे हैं, इसीलिए इनसे रोशनी उत्पन्न नहीं होती और ये गहरे नजर आते हैं। इन सन स्पॉट्स या गहरे हिस्सों की उम्र सिर्फ कुछ दिनों से कुछ महीनों तक की ही होती है।
0: और गैलीलियो ने ज्यादा लंबे समय तक टिके रहने वाले सन स्पॉट्स की मदद से सूर्य की घूर्णन विधि का अंदाज लगाया। चूंकि सूरज गैसों से बना है इसलिए इसके सभी हिस्से सामान गति से नहीं घूमते हैं। सूरज की भूमध्य रेखा 25 दिनों में एक बार घूमती है, जबकि भूमध्य रेखा के 30 डिग्री ऊपर और नीचे का हिस्सा 26.5 दिनों में एक बार घूमता है और भूमध्य रेखा से 60 डिग्री ऊपर और नीचे का हिस्सा घूमने में 30 दिनों का वक्त लेता है।
1: दलजीत, बिल्कुल सही कहा तुमने। सूर्य पर पाए जाने वाले ये सन स्पॉट्स काफी दिलचस्प हैं। वर्षों तक इन सन स्पॉट्स का अध्ययन करने पर ये पता चला कि इन सन स्पॉट्स की संख्या एक नियत वक्त के साथ बदलती रहती है। इस सन स्पॉट साइकिल की शुरुआत में सन स्पॉट्स की संख्या न्यूनतम होती है और उनमें से ज्यादातर सन स्पॉट सूरज की भूमध्य रेखा से 35 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। करीब 5.5 सालों के बाद इन सन स्पॉट्स की अधिकतम संख्या होती है और उस वक्त ज्यादातर सन स्पॉट्स भूमध्य रेखा के 5 डिग्री कोण पर होते हैं।
0: बिल्कुल, ये सन स्पॉट्स अत्यधिक चुंबकीय शक्ति वाले क्षेत्र हैं और ये सनस्पॉट स्पेक्ट्रा की स्पेक्ट्रल लाइंस को प्रभावित करते हैं। हर स्पेक्ट्रल लाइन कई भागों में बढ़ जाती है और इन भागों के अंतर से चुंबकीय शक्ति की माप की जाती है।
1: बिल्कुल, और ये भी माना जाता है कि सनस्पॉट साइकिल के जिम्मेदार यही चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। 11 साल के एक चक्र में सनस्पॉट ग्रुप का सबसे आगे वाले सनस्पॉट का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय होता है, जबकि सबसे पीछे वाले सनस्पॉट का दक्षिणी ध्रुव चुंबकीय होता है। अगले 11 साल के चक्र में बिल्कुल उल्टा हो जाता है और इस तरह से इस पूरे चक्र की अवधि होती है 22 सालों की।
0: जब सूर्य में सनस्पॉट की संख्या अधिक होती है उस वक्त ये हिस्से काफी चमकीले और धधकते नजर आते हैं। ये चमकीले हिस्से गैसों के बादल होते हैं जो सनस्पॉट्स के ऊपर बनते हैं और चुंबकीय क्षेत्र का अनुसरण करते हैं।
1: और सूरज की सतह से 40,000 किलोमीटर ऊपर का हिस्सा कोरोना या सूरज का वायुमंडल कहलाता है, जो अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र होता है। कभी कभी चुंबकीय क्षेत्रों में बने घेरों का अनुसरण करने वाले हाइड्रोजन गैस के घेरे भी बन जाते हैं। ये शांत क्षेत्र कुछ दिन से कुछ हफ्तों तक ही रहते हैं। कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो सिर्फ कुछ घंटों तक ही टिकते हैं और उनसे काफी मात्रा में गैस निकलती है जो फोटोस्फेयर से करीब 3,00,000 किलोमीटर ऊपर तक चली जाती है।
0: सूरज के जो धधकते हिस्से हैं, वो इसके शांत क्षेत्र से काफी ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। ये केवल कुछ मिनटों से कुछ घंटों तक ही जीवित रहते हैं और इन धधकते हिस्सों से काफी प्रायोनिक तत्व भी निकलते हैं। इन हिस्सों की खासियत ये होती है कि इनके द्वारा छोड़े गए तत्व इतनी ऊर्जा से निकलते हैं कि इन पर सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का भी असर नहीं पड़ता है। कभी कभी तो इन आयनों का विस्फोट जब पृथ्वी पर पहुंच जाता है तो रेडियो कम्युनिकेशन में बाधा भी डालता है।
1: और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बाहर यात्रा करने वाले इंसानों को इन शक्तिशाली आयन विस्फोटों के प्रभाव से बचने के लिए रक्षा कवच का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।
0: सूर्य की सतह का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने से ये पता चला कि इस पर एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना है जिसे ग्रैनुलेशन कहा जाता है। ग्रैनुलेशन चमकीले बिंदुओं से बना है और ये करीब 700 से 1000 किलोमीटर तक फैला है। हर ग्रैनुल के बीच से गर्म गैस निकलती है जो इसके अंदर से बाहर की सतह तक ऊर्जा का संचार करती है। एक ग्रैनुल करीब 8 मिनट तक जीवित रहता है। चांदनी, अब तुम हमें सूर्य के वायुमंडल के बारे में कुछ बताओ।
1: देखो, हम सूर्य के अंदर के हिस्से से जैसे जैसे बाहर की तरफ जाते हैं तापमान और घनत्व घटता जाता है और जैसे जैसे हम सूर्य के वायुमंडल की तरफ जाते हैं घनत्व के घटने का क्रम जारी रहता है। हालांकि फोटोस्फेयर के ऊपर तापमान बढ़ता जाता है। हालांकि इस तापमान वृद्धि का सही सही कारण तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ सिद्धांतों के आधार पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोनिक वेव्स या मैग्नेटिक वेव्स तापमान वृद्धि में सहायक होते हैं।
0: अब बात करते हैं क्रोमोस्फीयर की। देखो, सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा के किनारे पर एक पतली गुलाबी परत देखी जा सकती है। ये रंगीन परत क्रोमोस्फीयर है जो करीब 2000 से 3000 किलोमीटर मोटी है। क्रोमोस्फीयर का तापमान अंदर से बाहर की ओर बढ़ता है। चूंकि इसका घनत्व कम है इसलिए इस पर हाइड्रोजन की रेखाएं या हाइड्रोजन लाइंस देखी जा सकती हैं। चांदनी, क्रोमोस्फीयर के बारे में जानने के बाद हमें अब तुम ये बताओ कि ये कोरोना क्या होता है।
1: बताती हूँ भाई, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो क्योंकि हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
3: विज्ञान प्रसार की स्थापना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 1989 में एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में बड़े पैमाने पर विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के कार्यों को पूरा करने के लिए की गई थी। विज्ञान प्रसार का प्रमुख उद्देश्य बड़े पैमाने पर जहां तक संभव हो समाज में वैज्ञानिक तथा तर्कसंगत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना तथा प्रसारित करना है।
4: आरंभ से ही विज्ञान प्रसार
2: लोकप्रिय विज्ञान पुस्तकों एवं मासिक न्यूज़लेटर का प्रकाशन करता रहा है। विज्ञान प्रसार ने लगभग 100 से अधिक शीर्षकों की पुस्तकें प्रकाशित की हैं। ये पुस्तकें अंग्रेजी, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में हैं। पिछले वर्षों में प्रकाशित कुछ श्रृंखलाएं इस तरह से हैं: वैज्ञानिक जीवनी श्रृंखला, भारतीय विज्ञान की कालजयी कृतियों की पुनर्मुद्रण श्रृंखला, भारतीय वैज्ञानिक विरासत श्रृंखला, प्राकृतिक इतिहास श्रृंखला और स्वास्थ्य श्रृंखला। विज्ञान प्रसार द्विभाषी मासिक न्यूज़लेटर ड्रीम 2047 प्रकाशित करता है। ड्रीम 2047 में प्रकाशित बहुत से लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में भी पुनः प्रकाशित हुए हैं। ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कोरोना की।
0: और तुम हमें कोरोना के बारे में बताने वाली थी।
2: बिल्कुल, सुनो, जब पूरा सूर्य ग्रहण होता है तो उस स्थिति में चंद्रमा फोटोस्फेयर को पूरी तरह से ढक लेता है। और इस गहरे चंद्रमा के चारों ओर सफेद मोती सा नजर आता है कोरोना, और इसका तापमान करीब 10 से 20 लाख के, या यूं कहें कि बहुत ज्यादा होता है।
0: कोरोना अत्यधिक तापमान वाला क्षेत्र है, क्योंकि अणुओं से काफी इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद यहाँ काफी आयन बचे हुए होते हैं।
2: लेकिन दलजीत, यहाँ एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। अणुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकल जाते हैं?
0: भाई, वही तो बताने जा रहा हूँ। काफी ज्यादा तापमान होने की वजह से इनके अणु आपस में टकराकर इतनी ऊर्जा पैदा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, और ये प्रक्रिया आयनाइजेशन कहलाती है। कभी कभी तो शक्तिशाली सौर गतिविधियों की वजह से तापमान 36 लाख केल्विन तक पहुंच जाता है।
2: दलजीत, यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना का ज्यादातर हिस्सा सूर्य के चुंबकीय शक्ति के प्रभाव से सूर्य के नजदीक ही होता है। एक्सरे से देखने पर ये हिस्से चमकीले नजर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में नहीं है, और चुंबकीय क्षेत्र से दूर होने की वजह से ये गहरे नजर आते हैं, और इन्हें कोरोनल छिद्र कहते हैं। दलजीत, क्या तुम बता सकते हो कि सोलर विंड क्या है?
0: देखो चांदनी, तेज गति के आयन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बाहर निकल आते हैं, और इनकी गति इतनी ज्यादा होती है कि ये एक सेकंड में कई सौ किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं।
2: अच्छा।
0: और तेज गति से घूमते हुए ये धनात्मक और ऋणात्मक आयन सौर मंडल के अंतिम छोर तक पहुंच जाते हैं, और इन्हें सोलर विंड कहते हैं।
2: बिल्कुल ठीक। और इसी सोलर विंड के कण जब किसी ग्रह के नजदीक से गुजरते हैं तो ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ग्रह के चारों तरफ बिखर जाते हैं। कुछ कण ग्रह के चुंबकीय ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। जब ये आवेशित कण ग्रह के वायुमंडल में पहुंच जाते हैं तो यहाँ वायुमंडल में मौजूद गैस इमिशन स्पेक्ट्रा बनाती है, जो उत्तर में ऑरोरा बोरेलिस और दक्षिण में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहलाती है।
0: और इसी तरह पृथ्वी पर लाल ऑरोरा वायुमंडल के ऊपरी सतह पर हाइड्रोजन के उत्सर्जन से बनती है, जबकि इससे थोड़ा नीचे बनती है हरी या ग्रीन ऑरोरा, और ये बनती है ऑक्सीजन के उत्सर्जन से। जब सूर्य की गतिविधियां काफी तेज होती हैं, उस वक्त इन सोलर विंड के कणों की संख्या और ऊर्जा दोनों बढ़ जाती हैं, और इस वक्त पृथ्वी के वायुमंडल में दिखने वाले ऑरोरा भी काफी बढ़ जाते हैं। चांदनी, ये बताओ कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है?
2: दलजीत, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा तुमने। सूरज लाखों करोड़ों वर्षों से हर पल प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। ये एक दिलचस्प विषय भी है। काफी अध्ययन के बाद खगोल शास्त्रियों को अब ये पता चल गया है कि सूरज अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करता है। इतने लंबे समय से इतनी ऊर्जा का उत्पादन करना अपने आप में एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। दलजीत, क्या तुम्हें पता है कि सूरज से कितनी ऊर्जा निकलती है?
0: जानिए, वैज्ञानिकों को गणना के आधार पर ये पता चला कि सूरज से लगभग 4×10^26 वाट ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़े पावर प्लांट से भी 8×10^16 गुना ज्यादा है। जानती हो हमारा सबसे बड़ा पावर प्लांट करीब 5,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करता है।
1: हाँ, और इसे यूं भी कहा जा सकता है कि हमारे 2.5×10^9 बड़े पावर प्लांट एक साल में जितनी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं उतनी ऊर्जा सूरज से एक सेकंड में निकलती है। अब सवाल ये आता है कि इतनी ऊर्जा का संभावित स्रोत क्या है?
0: और इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। दो हाइड्रोजन के अणु एक ऑक्सीजन के अणु से मिलकर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पानी बनाते हैं और इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा निकलती है। अब अगर हम ये मान लें कि सूरज अपने अंदर के समूचे हाइड्रोजन का इस्तेमाल इस अभिक्रिया में कर ले तो इससे निकली ऊर्जा सूर्य को केवल 18,000 साल तक चमकाने के लिए काफी है। वैसे तो ऑक्सीजन की मात्रा हाइड्रोजन से काफी कम है, इसलिए ये अभिक्रिया सूरज को सिर्फ 30 साल तक ही ऊर्जा प्रदान कर सकती है।
1: दलजीत, इसका मतलब ये हुआ कि कोई और ज्यादा प्रभावशाली अभिक्रिया होनी चाहिए, बल्कि ऐसी अभिक्रिया हो जो ऊर्जा उत्पादित करने में 100% सक्षम हो, और ऐसी अभिक्रिया सूरज को 10^13 वर्षों तक ऊर्जा प्रदान कर सकती है।
0: और इसी संबंध में अध्ययन होते गए और लोगों की नजर में ग्रेविटेशनल सेटलिंग का सिद्धांत आया।
1: और क्या है वो ग्रेविटेशनल सेटलिंग का सिद्धांत?
0: देखो, इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जब हम किसी चट्टान को जमीन के ऊपर हवा में पकड़ते हैं तो इसकी ऊर्जा स्टोर्ड एनर्जी के रूप में होती है।
1: बिल्कुल।
0: और जब हम इस चट्टान को जमीन पर छोड़ते हैं तो इस ऊर्जा का निकास होता है। ये ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कहलाती है और ये चीजों को गर्म कर सकती है। ऐसा ही हुआ होगा सूरज की परतों के साथ। अगर सूरज की ये परतें केंद्र की तरफ दबें तो इससे गैसीय दबाव पैदा होगा और तापमान भी बढ़ेगा और गैसों से रोशनी भी निकलेगी।
1: बिल्कुल ठीक। इस शतक की शुरुआत तक तो वैज्ञानिक इसी धारणा के पक्ष में तर्क देते रहे, लेकिन बाद में ये पाया गया कि ये गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा या ग्रेविटेशनल एनर्जी सूर्य को सिर्फ 30 मिलियन साल तक शक्ति प्रदान कर सकती है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने रेडियो सक्रिय तत्वों की सहायता से सौर मंडल की पूरी उम्र का अंदाज लगाया और ये पाया कि सौर मंडल यानी कि सूर्य भी तकरीबन 4.6 करोड़ वर्ष पुराना है। तो फिर वैज्ञानिक ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर वो कौन सा स्रोत है जो सूर्य को इतने वर्षों से ऊर्जा दे रहा है।
0: और काफी अध्ययन के बाद पता चला कि ये स्रोत है न्यूक्लियर पावर या नाभिकीय शक्ति द्वारा उत्पन्न ऊर्जा। न्यूक्लियर पावर ही एकमात्र ऐसा कारण है जो सूर्य के प्रकाश को इतने लंबे समय से बनाए हुए है।
1: हाँ, और इसी के अंतर्गत आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। इन दोनों ही प्रक्रियाओं से एक अणु का केंद्र दूसरे अणु के केंद्र या न्यूक्लियस में परिवर्तित हो सकता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे काफी बड़े यूरेनियम के केंद्र हीलियम और लेड के छोटे न्यूक्लियाई या केंद्र में टूटते हैं फिजन की प्रक्रिया में, और इस प्रक्रिया में काफी ज्यादा ऊर्जा भी निकलती है।
0: बिल्कुल। और इसी तरह फ्यूजन की प्रक्रिया में दो छोटे न्यूक्लियाई जुड़कर बड़े न्यूक्लियाई बनाते हैं और इस तरह फ्यूजन की प्रक्रिया में भी ऊर्जा निकलती है।
1: बिल्कुल।
0: एटॉमिक पावर प्लांट्स और एटम बॉम्ब ऊर्जा के लिए फ्यूजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, जबकि तारे और हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूजन से ऊर्जा अर्जित करते हैं। क्यों जाने।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमने सूरज के बारे में विस्तार से जाना, जिसे हम देखते तो हर रोज हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये अपने अंदर इतनी जानकारी छिपाए हुए है।
0: बिल्कुल। और ये संभव हो पाया विज्ञान प्रसार के माध्यम से। तो यूं ही सुनते रहिए विज्ञान प्रसार के कार्यक्रम और अपनी सोच को दीजिए एक नई दिशा।
1: जी हाँ दोस्तों, और हमें लिख भेजिए कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016।
0: पता एक बार फिर, विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया न्यू दिल्ली 110016।
1: तो आपके लिए तमाम खुशियों की कामना करते हुए मैं चांदनी
0: और मैं दलजीत
1: आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार। श्रोताओ, ये कार्यक्रम आप तक किन लोगों के माध्यम से पहुंचाया गया ये हम आपको बताना चाहेंगे। कार्यक्रम के श्रृंखला निर्देशक हैं डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन, शोध मृदुला बालाकृष्णन, सलाहकार डॉक्टर बीवी कामले, विमान बसु डॉक्टर जी के मदे, वाचन स्वर चांदनी वर्मा और दलजीत सचदेवा का, रिकॉर्डिंग संपादन और मिश्रण सदन लाल मेहता और प्रस्तुति सहयोग प्रिया नटराजन और मृदुला बालाकृष्णन।
4: विज्ञान वाणी के विज्ञान वार्ता प्रसारण में आपका स्वागत है।
5: उपग्रह संचार क्या है? उपग्रहों के बिना विश्वव्यापी संचार प्रणाली की बात सोची भी नहीं जा सकती है। जाने माने विज्ञान कथाकार आर्थर सी क्लार्क ने 1945 में अपनी पुस्तक वायरलेस वर्ल्ड में विश्वव्यापी संचार प्रणाली के बारे में कल्पना की थी। यह प्रणाली ऐसे मानव युक्त अंतरिक्ष केंद्रों पर आधारित थी जो धरती के अपने अक्ष पर घूमने की रफ्तार से ही अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर काटते थे। भूस्थिर उपग्रहों की कल्पना भी उनके मन में तभी पैदा हो चुकी थी। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले वे उपग्रह हैं जो भूमध्य रेखा के ऊपर आकाश में एक खास ऊंचाई पर घूमते हैं। इन्हें अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में उतना ही समय लगता है जितना पृथ्वी को अपने अक्ष में एक बार घूमने में लगता है। ये उपग्रह भी पृथ्वी के घूमने की दिशा में चक्कर लगाते हैं, इसलिए धरती के सापेक्ष एक ही स्थान पर रहते हैं और जमीन से देखने वाले किसी व्यक्ति को स्थिर नजर आते हैं। अगर भूतलीय माइक्रोवेव संचार प्रणाली से तुलना की जाए तो ऐसे उपग्रहों की वही भूमिका होती है जो रिपीटर स्टेशनों की होती है। भूतलीय रिपीटर स्टेशन सिग्नल प्राप्त कर उनकी प्रबलता बढ़ाते हैं और फिर इसे और बड़े क्षेत्र में प्रसारित कर देते हैं। लेकिन उपग्रहों को रिपीटर स्टेशनों की तरह इस्तेमाल करने का फायदा यह होता है कि इनका प्रसारण का दायरा, जिसे फुटप्रिंट कहा जाता है, काफी बड़ा होता है। धरती की आधी सतह से कुछ ही कम क्षेत्र में एक भू स्थित उपग्रह के दायरे में आ जाता है। इसलिए अगर पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में 88,000 किलोमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों में तीन उपग्रह स्थापित कर दिए जाएं, तो ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़कर बाकी सारी पृथ्वी इनके दायरे में आ जाती है। इस तरह दूर दराज के इलाकों को भी इस संचार प्रणाली के अंतर्गत लिया जा सकता है और उनसे सीधा संपर्क कायम किया जा सकता है। उपग्रह संचार प्रणाली के लिए प्रसारण भू केंद्र तथा अभिग्रहण भू केंद्र और इनके बीच संपर्क के लिए उपग्रह की आवश्यकता पड़ती है। दो भू केंद्रों के बीच रेडियो आवर्ती संपर्क को उपग्रह संपर्क कहा जाता है। उपग्रह संपर्क में उपग्रह को सिग्नल भेजने के लिए अपलिंक प्रणाली और उपग्रह से आए सिग्नलों को ग्रहण करने के लिए डाउनलिंक प्रणाली लगी रहती है।

गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं बेटे आप सभी? ये हमारा आज का करियर काउंसलिंग सेशन है और स्पेसिफिकली नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम के लिए, एनडीए के लिए. यू आर ऑल वेलकम हेयर बाय दिनेश मिगलानी. इट्स ए ज्वाइंट सेशन बाय examtv.in एंड रीड इंडिया. आज के इस सेशन में हम लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी में कैसे एडमिशन लिया जाए, एनडीए एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ये सारा हम आज के इस सेशन में अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, जिससे बेटे आप सभी जानते हैं कि ट्वेल्थ के बाद से ही बच्चों के मन में एम होता है कि आर्मी में जाया जाए इन द ऑफिसर क्लास. तो हम सारे इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो हम ये समझे बेटे कि एनडीए जो है, दैट इज फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो खड़कवासला पुणे में सिचुएटेड है, इंडिया के अंदर महाराष्ट्र में. ठीक है, और एनडीए का एग्जाम जो होता है वो प्राइमली थ्री डिफरेंट विंग्स के लिए है, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवल. आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवल एकेडमी, तो ये थ्री डिफरेंट विंग्स है. ओके, अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है कि आर्मी में जाने के लिए आपके पास में नॉन मेडिकल होना रिक्वायर्ड नहीं है. आप कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, बट मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए. ऑल्दो मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, मतलब आपका सब्जेक्ट चाहे मैथमेटिक्स ना हो, बट प्रॉब्लम क्या रहती है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्लस वन प्लस टू लेवल का मैथमेटिक्स आता है. तो दैट्स वाई अगर आपके पास में मैथमेटिक्स है ट्वेल्थ, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ के अंदर, आपकी स्ट्रीम कॉमर्स है चाहे आपकी स्ट्रीम आर्ट्स है, दोनों केसेस में आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की आर्मी विंग में जा सकते हैं. ठीक है, तो आप देखेंगे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है यहां पर आर्मी विंग के लिए, आर्मी विंग के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास ट्वेल्थ, ट्वेल्थ पास होना चाहिए, एचएससी अंडर ट्वेल्थ पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी. ठीक है, मतलब कि यहां पर आपकी स्ट्रीम डिफाइंड नहीं है, आर्मी के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं. ठीक है, सेकेंड है बेटे एयरफोर्स, नेवल और अकेडमी. इसके लिए आपको ट्वेल्थ क्लास होना चाहिए जिसमें आपके पास में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मतलब नॉन मेडिकल आप कह सकते हैं कि नॉन मेडिकल स्ट्रीम आपको चाहिए अगर आप एयरफोर्स में या नेवल एकेडमी में जाना चाहें. तो जो स्टूडेंट एयरफोर्स में फाइटर पायलट्स या पायलट्स बनना चाहते हैं, तो बेटे उनको ये चीज ध्यान रखनी है कि प्लस वन प्लस टू में नॉन मेडिकल स्ट्रीम उन्हें लेनी है. ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेटे फर्स्ट क्वेरी तो आपकी क्लियर हो गई कि आपके पास में प्लस वन प्लस टू में कौन सी स्ट्रीम होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है बेटे एज की. आर्मी में एनडीए के थ्रू जाने के लिए एज का क्राइटेरिया है 16.5 इयर्स से 19.5 इयर्स तक का. ठीक है, जिसमें आपकी ट्वेल्थ क्लास पास्ड होनी चाहिए, तो ट्वेल्थ पास भी होना चाहिए और आपका एज 16.5 से लेकर 19.5 इयर्स तक है. अभी मैं थोड़ा आपको बेसिक कंसेप्ट बता दूं बेटे, क्या होता है कि एनडीए का जो एग्जाम होता है साल में दो बार होता है. तो फर्स्ट होता है बेटे ये सितंबर के मंथ में और सेकेंड होता है मंथ ऑफ अप्रैल. ठीक है, तो जब आप प्लस टू क्लास में अपीयर करते हैं, जिस ईयर आप ट्वेल्थ में अपीयर करते हैं, ठीक है, और ये जो आपका सितंबर का एग्जाम होता है ये नेक्स्ट ईयर जो जुलाई में बैच एनडीए का होता है उसके लिए होता है. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि सितंबर में जब आप एग्जाम देंगे तो इसके फॉर्म निकलते हैं इन द मंथ ऑफ जून. राइट, तो जून में फॉर्म निकलेंगे, सितंबर में आपका एग्जाम होता है, दिसंबर के अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट आएगा. ठीक है, और फरवरी में आपका इंटरव्यू आता है जिसे हम एसएसबी कहते हैं. राइट, एसएसबी क्वालिफाई हो गया अगर आपका, मार्च में आपके ट्वेल्थ के एग्जाम हो जाएंगे और मई में रिजल्ट आ जाता है और जुलाई में बैच स्टार्ट होता है, तो मतलब आपका ट्वेल्थ भी पास हो जाता है और आपका एनडीए में सिलेक्शन भी हो सकता है. तो एक तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं जब आप ट्वेल्थ क्लास में अपीयर करें. सेकेंडली, अगर एज आपकी यहां कंप्लीट नहीं है तो बेटे जब आप ट्वेल्थ के बाद, अप्रैल का मंथ होता है, एग्जाम्स के बाद में एनडीए का एग्जाम होगा इमीडिएटली आफ्टर योर ट्वेल्थ क्लास,
तो वहां पर भी सेम पैटर्न है, अप्रैल में एग्जाम होगा, 2-3 मंथ्स में उसका रिजल्ट आता है, फिर बेटे आपका SSB होगा, तो इस टाइप से बेटे आपका आर्मी में सिलेक्शन होता है। तो साल में 2 बार आप एनडीए अपियर कर सकते हैं, तो एक जनरल स्टूडेंट के पास में 3-4 चांसेस होते हैं, एक बार जब वो 12th क्लास में अपियर कर रहा है, फिर उसके बाद में जैसे ही 12th उसका कंप्लीट हुआ उसके बाद बेटे वो 1 साल तक, क्योंकि एज क्राइटेरिया भी है और 12th भी पास होनी चाहिए, दोनों चीजें यहां पर है। ओके, सेकेंडली मेल अनमैरिड, मतलब एनडीए का जो एग्जाम है दैट इज ओनली फॉर बॉयज, ये बात आपको ध्यान रखनी है, गर्ल्स के लिए नहीं होता, और अनमैरिड होना चाहिए मेल, मतलब अगर आपकी मैरिज हो गई है तो बेटे आप एनडीए के लिए क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एनडीए में सिलेक्शन की स्टेजेस क्या है। तो 3 स्टेजेस हैं आपकी, फर्स्ट इज योर रिटन टेस्ट, जिसको हम एनडीए का एग्जाम कहते हैं, रिटन एग्जाम। अभी मैं कंप्लीट एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। सेकंड इज योर SSB इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू रहता है, इसकी भी स्टेजेस हैं, Stage 1, Stage 2 आपकी प्रिलिमिनरी स्टेज है, फिर उसके बाद आपका सेकेंड स्टेज है, एंड थर्ड इज योर फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, SSB क्वालिफाई होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, तो इस टाइप से बेटे आप एनडीए के एग्जाम को टारगेट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेज के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे, रिटन टेस्ट। एनडीए का जो एग्जाम रहता है उसमें आपके 2 पेपर्स होते हैं, Paper 1 and Paper 2। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूं। पहली चीज बेटे, ये दोनों पेपर सेम डे ही होते हैं, एक ही दिन में होते हैं, मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट आप कह सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन जो है 2.5 आवर के एग्जाम होंगे, फर्स्ट एग्जाम 2.5 आवर का, सेकंड भी 2.5 आवर का। मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर होता है बेटे आपका, ठीक है, जो 300 मार्क्स का रहता है, और सेकंड पेपर रहता है हमारा जनरल एबिलिटी टेस्ट, दैट इज ऑफ 600 मार्क्स। ठीक है, ये जो 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स का पेपर है, इसमें 2.5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, और टोटल आपके 120 क्वेश्चन आते हैं। ओके, और वहीं जनरल एबिलिटी में बेटे आपके टोटल 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, और टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से 600 मार्क्स का हमारा पेपर 2 है, और 300 मार्क्स का होता है Paper 1। तो टोटल 900 मार्क्स का एग्जाम होगा, और जो 600 मार्क्स पेपर 2 है उसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 इज इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, जिसके 50 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स ईच, 50 फोर 200 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा। और इंग्लिश जो है, अभी मैं आगे पूरे सिलेबस की बात करूंगा कि इंग्लिश में एक्चुअल में क्या क्या आता है। और सेकेंडली होता है बेटे आपका जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज मतलब जिसमें आपके सब्जेक्ट्स को इन 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, यहां फिजिक्स जो है ये आप Plus 1 Plus 2 लेवल का कह सकते हैं, केमिस्ट्री, बाकी आपके हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी जितना आप 10th स्टैंडर्ड तक स्टडी करते हैं, करंट इवेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि 1 ईयर का कम से कम करंट अफेयर आप जरूर स्टडी करें। ठीक है, तो इस तरह से बेटे 400 मार्क्स हमारा जनरल स्टडीज का, और 200 मार्क्स हो गया बेटे आपका इंग्लिश का, तो ये टोटल 600 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा Paper 2। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग एनडीए में होती है, तो इसलिए आपको ऐसा नहीं कि आप फ्लूक्स लगाएं, आपको जो भी क्वेश्चन आता है वही आप आंसर करिए। ओके, चलिए या मैं आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताऊं कि जो जनरल एबिलिटी का आपका पेपर है उसका 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, मैंने अभी आपको बताया, और टोटल बेटे आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1.33, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन राइट करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर वही क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट है तो बेटे 1/3 ऑफ द मार्क विल बी डिडक्टेड। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपका अनआंसर्ड है तो उसमें कोई भी डिडक्शन आपका नहीं होता। सिमिलरली जो हमारा फर्स्ट पेपर है, Paper 1 है मैथमेटिक्स का, उसमें बेटे एक राइट आंसर आपका 2.5 मार्क्स का होता है,
और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो कितना हो जाएगा 0.83 इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से बेटे आपको क्वेश्चन करते टाइम काफी केयरफुली आपको आंसर करना है, क्योंकि आपका एक गलत आंसर आपके मार्क्स को मार्क्स में डिडक्ट करेगा। ठीक है, अब यह मैं थोड़ा आपको सिलेबस बताऊं, एनडीए का सिलेबस क्या रहता है। एनडीए का जो मैथमेटिक्स का पार्ट है उसमें +1 +2 का मैथमेटिक्स रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब बेटे अगर आप के पास में अगर आप एनडीए में जाना चाह रहे हैं तो 11th 12th में मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा सा लेवल इंप्रूव करना है, मतलब एनसीईआरटी के एक स्टेज ऊपर कह सकते हैं कि आईआईटी जेई से एक स्टेज लेस और एनसीईआरटी से 1 स्टेज अपर। तो जनरली आप बेटे जैसे आर डी शर्मा है, एलिमेंट्स है, या कोई भी ऐसी बुक जो एनसीईआरटी के सपोर्टिंग में हम स्टडी करते हैं, अगर आप उसे भी केयरफुली कर लें और प्रीवियस 4 to 5 years के एग्जाम सॉल्व कर लें तो आप बेटे बहुत इजीली मैथमेटिक्स का सेक्शन क्वालिफाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स हैं एल्जब्रा के अंदर आपका सारा टॉपिक आ जाता है, जैसे PMI हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, APGP है, सेट थ्योरी है, ये सभी एल्जब्रा के पार्ट है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट 12th में आप पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यू स्टडी इन +1, ज्योमेट्री 2D and 3D। ठीक है, तो 11th 12th में हम स्टडी करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, कैलकुलस कंप्लीट है, इंटीग्रेशन है, वेक्टर अलजेब्रा है, स्टेटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। तो एक तरह से आप देखेंगे कि ये सभी वो टॉपिक्स हैं जो आपने बेटे +1 +2 में मैथमेटिक्स में स्टडी किए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप एक्चुअल में एनडीए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो +1 +2 को केयरफुली स्टडी करिए मैथमेटिक्स के पार्ट को, राइट। चलिए इसके बाद में सेकंड है बेटे, मैंने आपको सेकंड पेपर बताया जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें हमारे 2 papers हैं, वन इज ऑफ इंग्लिश 200 marks, सेकंड ऑफ GK 400 marks। ठीक है, GK का सिलेबस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। जो इंग्लिश का पार्ट होता है वो हमारी बेसिकली ग्रामर और वोकैबुलरी को जज करने का है, जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स है, जैसे ग्रामर एंड यूसेज है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है, स्पॉटिंग ऑफ एरर्स है, पैरा जंबल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, इडियम फ्रेजेस, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, मतलब एक तरह से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश है, राइट। तो 200 marks और 1 question 4 marks का, तो 50 questions बेटे आपके जनरल इंग्लिश के रहते हैं। ठीक है, तो इफ यू आर गुड इन इंग्लिश तो विदाउट एनी प्रॉब्लम आप बहुत इजिली आप जनरल इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद बेटे Stage 1 क्वालिफाई होने के बाद फिर आपका सेकंड स्टेज आता है SSB, बट या मैं थोड़ा टाइम आपको बताऊं, जैसे बेटे आपका 900 marks का टोटल एग्जामिनेशन है। ठीक है, सेक्शनल आपको क्वालिफाई नहीं करना, आपको ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली 550+ marks को टारगेट करना है। मतलब हम एक जनरल जो टारगेट होता है कि अगर 900 में से आपका मोर देन 60% marks अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपका एनडीए का टेस्ट क्वालिफाई माना जाता है। ठीक है, वैसे तो डिपेंड्स ऑन वैकेंसीज, बट स्टिल एक जनरल जो आइडिया है पिछले कुछ सालों से 60% plus marks अगर आपके आ रहे हैं एग्जाम के अंदर तो यूर टेस्ट इज क्वालिफाइड। ठीक है, तो जब एनडीए का टेस्ट आपका क्वालिफाई होता है तो उसके बाद बेटे आपकी SSB कॉल आती है। अब SSB बेसिकली क्या है कि आर्मी की किसी भी विंग के जाने के लिए आपको 5 days का इंटरव्यू, जिसे हम SSB इंटरव्यू कहते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, अब SSB का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें नंबर ऑफ क्वालिटीज आर चेक, तो इसकी भी स्टेजेस हैं, Stage 1 and Stage 2। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमारी Stage 1 होती है, Stage 1 में क्या रहता है आपका, जिस दिन आप फर्स्ट डे आप का इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो उसमें आपके 2 tests होते हैं। फर्स्ट वन इज दैट इज योर पर्सनालिटी टेस्ट डे, जिसमें पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। पिक्चर परसेप्शन टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि वन पिक्चर इज शोन टू ए ग्रुप ऑफ 12 to 14 स्टूडेंट्स और उसके बाद में सभी स्टूडेंट्स उस पिक्चर को देख के अपने एक स्टोरी राइट करते हैं एंड देर इज अ डिस्कशन ऑन देम, राइट। और उसके बाद एक आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, जो एक तरह से रीजनिंग का टेस्ट है। ठीक है, तो यहां पर जो पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट है उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल,
उसके साथ साथ आपकी पॉजिटिविटी ऑफ द थॉट, आपकी स्पॉन्टेनियस, कितनी आप जल्दी एक यू कैन मेक एन ओपिनियन विद द ग्रुप, राइट। और ऐसे ही रीजनिंग का टेस्ट रहता है। तो जब आपका ये स्टेज वन क्वालिफाई हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि प्रिलिमिनरी स्टेज आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा स्टेज वन में, नेक्स्ट डे से उनका स्टेज टू स्टार्ट होगा, राइट। और अदरवाइज अगर आपका नहीं सिलेक्शन होता तो आपको बेटे वापस भेज दिया जाता है। फिर सेकंड होता है स्टेज टू। अब स्टेज टू में आगे आप हमारा 4 डेज तक आपके इंटरव्यूज चलते हैं।

उसके लिए ये आपकी स्टेज टू होती है। ठीक है, तो जब आपका स्टेज टू क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद बेटे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, राइट। और आप एनडीए में सिलेक्शन हो जाता है, आपका कोर्स स्टार्ट होता है। जनरली बेटे बीई और बीटेक की डिग्रीज आपको दी जाती हैं, और वाइल डूइंग योर कोर्स स्टाइपेंड आपको मिलता है। ठीक है, तो वहां पर आपकी हर तरह की ट्रेनिंग रहेंगी, एकेडमिक भी रहेंगी, उसके साथ साथ टेक्निकल भी है। तो ये बेटे एक एनडीए का पूरा पैटर्न है। वंस यू आर सिलेक्टेड, तो जब आपकी फोर एंड हाफ ईयर्स के बाद में, जब आपका फोर ईयर्स के बाद में जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो यू आर बीइंग सिलेक्टेड एज द लेफ्टिनेंट इन द आर्मी। जो फर्स्ट रैंक होता है बेटे वो लेफ्टिनेंट का रैंक होता है। तो उसके बाद तो फिर लाइफ आपका एक अलग ही स्टेज में लाइफ हो जाता है, राइट। तो ये बेटे मैंने आपको कंप्लीट एनडीए सेशन के बारे में बताया, अभी कैसे एनडीए की प्रिपरेशन की जाए और एनडीए के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है। थैंक यू वेरी मच।

नमस्कार बहनों, मैं दिनेश मिगलानी आपका रीड इंडिया की कार्यशाला में स्वागत करता हूं। यह कार्यशाला रीड इंडिया के द्वारा आयोजित की गई है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य व्यापार कैसे किया जाए, स्वरोजगार पैदा करना एवं आपको आत्मनिर्भर बनाना है। इस कार्यशाला को हमने तीन भागों में बांटा है। पहले भाग के अंदर हम यह सीखेंगे कि व्यापार क्या होता है, उद्यमी कैसे बना जाता है, इसके अलावा एक सफल उद्यमी या सफल व्यापारी में क्या क्या गुण होते हैं, तथा एक व्यापार करते समय या आप जब अपना कार्य करते हैं उसको करते समय किन किन कार्य को आपने करना है। इसके अलावा हम यह भी सीखेंगे आत्मनिर्भरता का हमारे जीवन में, हमारे परिवार में क्या महत्व है। कार्यशाला के दूसरे भाग के अंदर हम यह सीखेंगे कि व्यापार की शुरुआत कैसे की जाती है और शुरुआत से लेकर व्यापार को खड़ा करने में हम कैसे छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि हम एक सफल व्यापार की तरफ अग्रसर हो सकें। कार्यशाला के तीसरे भाग के अंदर जो व्यापार हमने स्थापित किया है उसकी वृद्धि कैसे की जा सके एवं उस व्यापार के आंतरिक चीजों को में क्या क्या आपने ध्यान रखना है, कैसे अपने व्यापार के अकाउंट्स या लेखा बनाने हैं, किन किन चीजों को आपने संभाल के रखना है ताकि भविष्य में अगर आप किसी बैंक के पास जाएं तो कैसे उस व्यापार की वृद्धि की जा सके। तो बहनों चलो हम स्टार्ट करते हैं, हम शुरुआत करते हैं हमारे कार्यशाला के पहले भाग से जिसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है व्यापार क्या है। मैंने बोर्ड पे एक छोटा सा चार्ट भी बनाया है आपको समझाने के लिए। तो पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूं व्यापार क्या है। बहनों आप देखते हैं आपके आसपास में कुछ लोग बैंक में नौकरी करते हैं, कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, इसके अलावा कोई किसी कारखाने में कार्य करता है। तो यह नौकरी करना जीविका कमाने का एक साधन है। तो इस तरह के जीविका कमाने को हम कहते हैं

0: है कि नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग आपके आसपास ऐसे भी होंगे जो एक छोटी मोटी दुकान चलाते हैं या किसी ने कोई कारखाना खोला हुआ है। तो जीविका कमाने के इस साधन को हम कहते हैं स्वरोजगार या व्यापार। ये तो हम जानते हैं कि जीवन जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, और पैसे से ज्यादा जरूरी है हमारा आत्मनिर्भर होना। यदि आप आत्मनिर्भर हैं तो हमारे अंदर एक अलग सा विश्वास होता है। एक सफल गृहिणी या एक महिला जो आत्मनिर्भर है, वह उस आत्मनिर्भरता से पूरे परिवार का पालन पोषण कर लेती है। आज के समय में सरकारी नौकरियां काफी कम हैं, और हमारी बहनें जो गांव में रहती हैं कम पढ़ी लिखी हैं। यदि आप शहर में रहते हैं तो छोटी मोटी नौकरी या जीविका का कोई साधन आसानी से बनाया जा सकता है, पर गांव में रहने के कारण छोटी मोटी नौकरी भी नहीं मिल पाती। तो हमारी बहनों के पास में अपना कार्य शुरू करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता, क्योंकि गांव में आप देखेंगे काम भी नहीं मिलता आजकल। क्यों? क्योंकि गांव में कोई रोजगार का साधन तो है नहीं, तो इसके लिए हमें छोटा मोटा कार्य तो करना पड़ेगा, और वो जो कार्य है वो एक तरह से हमें व्यापार करने या उद्यमी बनने की तरफ अग्रसर करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे मन में पहली चीज अब ये आती है कि ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आत्मनिर्भर होने के लिए। अब वो करना जो है वो कोई ना कोई आपको व्यापार करना है, या कोई ना कोई आपको आत्मनिर्भर होने के लिए स्वरोजगार शुरुआत करनी है। तो स्वरोजगार की आप जो शुरुआत करेंगे, शुरुआत करते समय सबसे पहले हम यह समझें कि जो एक सफल उद्यमी है, जो एक सफल व्यापारी है, उसमें क्या क्या ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण वह एक व्यापारी बन पाया या एक उद्यमी बन पाया, ठीक है। तो मैंने एक पहला चार्ट बनाया है यहाँ पर आपको ये समझाने के लिए कि एक सफल उद्यमी में क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला जो गुण है, सबसे पहली जो चीज है जो हमारी बहनों में भी है, वो होती है पहल। पहल से हमारा क्या मतलब है? जैसे ही हमारे आसपास आप देखते हो, रोजाना हमारे मन में कई तरह के नए नए विचार आते हैं, ठीक है। वो विचार आने के बाद हम उनके बारे में थोड़ा सोचते हैं और फिर हिचक के उनको कार्यान्वित नहीं करते, ठीक है। अब एक जो सफल व्यापारी है, अगर उसके सामने कोई विचार आता है तो विचार आने के बाद वह उसके बारे में चीजों को समझता है, और समझने के बाद वह ये देखता है कि यदि उससे कोई बिजनेस बनाया जा सकता है, कोई व्यापार किया जा सकता है, तो वह उसके तरफ अग्रसर हो जाता है। तो सबसे पहली चीज होती है पहल। तो हमारी बहनें जो अब यहां बैठी हैं, अगर आपके मन में कोई भी विचार है, कुछ बहनों को ऐसा लगता होगा कि वो अचार बहुत अच्छा बनाती हैं, या पापड़ बहुत अच्छे बनाती हैं, ठीक है, या चटनी अच्छी बनाती हैं। इसके अलावा हमारी बहनों के पास में सिलाई कढ़ाई बुनाई या गांवों के अंदर मिट्टी के बर्तन, या हम कहें मिट्टी के खिलौने, या आजकल साज सज्जा की जो चीजें हैं जो गांव की महिलाओं को बचपन से सिखाई जाती हैं, जो उनको आती हैं। तो इस तरह का अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई ऐसा विचार है जहां आपको ये लगता है कि उसमें आप काफी अच्छे हैं, तो पहल अगर आप करेंगे तो एक सफल व्यापारी की तरफ यह आपका पहला स्टेप होगा, ठीक है। एक सफल उद्यमी का दूसरा जो सबसे गुण होता है वह होता है जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति। अब देखो, आप कोई भी व्यापार करते हैं, सबकी इच्छा यह होती है कि व्यापार आपका सफल हो, पर ऐसा होता नहीं है, हर व्यापार सफल नहीं होता। फिर भी हमारे अंदर जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यदि हम जोखिम ही नहीं उठाएंगे, यदि हम किसी भी कार्य में जोखिम नहीं उठाएंगे, तो वह कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वह है हमारा जोखिम उठाना, क्योंकि जोखिम उठाने से ही कार्य होगा। फिर होता है अपने अनुभव से सीखना। व्यापार करते समय, कोई भी कार्य करते समय गलतियां तो होती हैं, ठीक है। अगर उन गलतियों से हम नहीं सीखेंगे, तो हमें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादा नुकसान जो होगा उसको हम सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जोखिम उठाने की शक्ति काफी कम है। तो इसलिए हमें अपने अनुभव से सीखना चाहिए। एक बार गलती हो जाए कोई बात नहीं, पर यदि दोबारा वह गलती फिर से होगी तो यह हमारी बहुत भारी गलती होगी। फिर प्रेरणा, हमारे अंदर एक प्रेरणा होनी चाहिए, हमें प्रेरित होना चाहिए। मान लीजिए हम बहनों के बीच में कोई एक बहन ऐसी है जो कुछ कार्य करती है, कार्य करना मतलब वो आत्मनिर्भर है, कुछ ऐसा कार्य करती है जिससे धन कमाया जाता है, पैसा कमाया जाता है, तो हमें उससे प्रेरित होना चाहिए। अगर आप उससे प्रेरित होंगे तभी आपके मन में यह इच्छा जागेगी कि मुझे भी उस बहन की तरह आत्मनिर्भर होना है। इसके अलावा आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में वही सफल होता है जो अपने पर विश्वास करता है। यदि आप अपने पर विश्वास ही नहीं करेंगे तो आप सोच के देखिए दूसरा कोई व्यक्ति आप पर क्यों विश्वास करेगा, इसके पीछे कोई भी कारण नहीं है। तो आप अपने पर विश्वास पैदा कीजिए, आपको यह समझना चाहिए कि आप यह कार्य कर सकती हैं। व्यापार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक महिला जो सुबह से लेकर शाम तक अपने पूरे घर को संभाल सकती है, अपने बच्चों को पाल सकती है, खाना बना, आप देखो आप कार्य देखिए, एक महिला की सुबह से आप दिनचर्या की शुरुआत करें आखिर तक शाम तक देखें तो एक महिला इतना कार्य करती है कि अगर उसी कार्य को व्यापार के रूप में रूपांतरित कर दिया जाए तो एक बहुत अच्छा आत्मनिर्भरता होने का जरिया बन सकता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे जो महत्वपूर्ण है, वह होता है निर्णय लेने की योग्यता, ठीक है, या निर्णय लेने की क्षमता। आप देखेंगे आपके जीवन में या कोई भी कार्य करते समय काफी बार ऐसे मौके आते हैं जहां आपको कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है। यदि आप उस निर्णय लेने की में क्षमता रखते हैं तो निर्णय लिया, आपका निर्णय गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। देखो धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके सभी निर्णय सही होंगे, निर्णय हमारे गलत भी हो सकते हैं, निर्णय हमारे सही भी हो सकते हैं, बट हमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, हमें निर्णय लेने का आत्मविश्वास होना चाहिए। तो एक सफल जो व्यवसायी है उसमें यह गुण तो सबसे पहले है, और मेरे हिसाब से हमारी बहनें जो यहां बैठी हैं, इन सब बहनों में ये सब बातें हैं, इन सब बहनों में ये सब बातें हैं, बट उन्हें उनको बस अपने अंदर झांकना है, उनको अपने अंदर से प्रेरणा लेके आनी है, उनको यह करना है कि हमें भी कुछ करना है, हमें भी आत्मनिर्भर होना है, हमें भी स्वरोजगार पैदा करना है जिससे हम अपने परिवार का अच्छे ढंग से भरण पोषण कर सके, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके, ताकि उन बच्चों को भविष्य में इस तरह की मुसीबतों का सामना न करना पड़े जो शायद आज हमारी बहनें गांव में रहकर कर रही हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, कि अगर आप एक उद्यम शुरुआत करना जा रहे हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी शुरुआत के बाद आपको किन किन कार्यों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिन कार्यों को आपने करना पड़ता है मैंने चरणबद्ध उन कार्यों को लिखा है ताकि आप यह समझ सके कि आप अगर एक बिजनेस या कोई भी व्यापार या कोई भी स्वरोजगार की शुरुआत करते हैं तो यह कार्य आपको जरूर करने होंगे। सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह होता है अवसर की पहचान करना, ठीक है। हमारे जीवन में अवसर आते जाते रहते हैं। आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, घूमते घूमते आपने देखा कि फला जगह पर काफी लोग आते हैं, वहां खाने पीने का कोई भी सामान नहीं है, ठीक है। अगर आपने यह सोच लिया क्यों ना मैं हर रोज दोपहर के वक्त वहां जाकर कुछ खाने का सामान बनाकर जो घर में बनाया जा सकता है, ऐसा सामान जिसको आसानी से बनाया जा सकता है और वह खाने लायक है और आसानी से लोग खाते हैं, अगर आप वहां जाकर बेचना शुरू कर दें, हो सकता है शुरुआत में लोग ज्यादा ना खरीदे, पर अगर वह सामान आपका बिकने लग जाए तो यह अवसर होता है, इसे हम अवसर कहते हैं। अवसर कहीं भी आपको मिल सकता है, अवसर को पहचानने वाली आंखें होनी चाहिए, हर जगह पर अवसर है। ठीक है, तो सबसे पहला जो उद्यमी का कार्य है, जो आपके लिए भी है, आपके लिए पहला कार्य यह है कि आप उस अवसर की पहचान करिए। आप यह देखो कि ऐसी क्या चीज आपके पास में है, ऐसा क्या मौका आपके पास में है, यदि आप उसे उस मौके को फायदा उठा पाए, उस मौके को व्यापार में बदल पाए। तो सबसे पहला काम है हमारा है अवसर को पहचानना। अवसर को पहचानने के बाद विचारों को कार्यान्वित करना। कई बार क्या होता है कि मैंने पहले भी आपको बोला कि आपको पहल करनी है, अवसर तो मिल गया, आपको लग गया हाँ भी ये कार्य किया जा सकता है। अब उस कार्य को करने के बाद आपको यह देखना है कि उस विचार जो आपके मन में आया है उसको कैसे एक व्यापार के फॉर्म में लाया जाए, कैसे उसको जमीनी स्तर पर आप उस पर कार्य करिए। तो यह एक उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वह होता है अपने विचारों को जमीनी स्तर पर लाकर कार्यान्वित करना, ताकि कुछ शुरुआत की जा सके। इसलिए मैंने यहां सबसे पहले ही आपको बताया पहल सबसे इम्पोर्टेंट है, पहल आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है, और पहल विचारों को कार्यान्वित करना तभी हो पाएगा जब हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा होगी। फिर संसाधनों को उपलब्ध कराना, जब आपके मन में यह बात बिल्कुल बैठ जाए कि अब तो मुझे कुछ कार्य करना है, आपने यह फाइनल कर लिया, यह आपने निश्चित कर लिया कि यह कार्य आप करेंगे, इस तरह का व्यापार आप शुरुआत करेंगे, तो फिर आप ये देखेंगे उसको करने के लिए किन किन संसाधन आपको चाहिए, क्या क्या संसाधन आपको चाहिए। तो एक व्यापारी को इन सभी संसाधनों को इकट्ठा करना और उन संसाधनों को उपलब्ध कराना उसका कार्य होता है। जैसे मान लीजिए मैं खाने की बात, अब मैं देखो अगले भाग के अंदर मैं अलग अलग एक एक उस पे आऊंगा, अभी मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। मान लीजिए कहीं हमने खाने का छोटा मोटा सामान बेचना शुरुआत किया, तो खाने को बनाने से लेकर उसकी पैकेजिंग तक, बनाने से लेकर उसकी पैकेजिंग तक हर तरह का संसाधन आपने जुटाना है। और क्योंकि हमारे पास में पैसा भी कम है, जोखिम उठाने की क्षमता कम है, तो इसलिए हमें यह सोचना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कैसे कम से कम पैसे से हम अपनी शुरुआत कर सकें। स्थापना करना, व्यापार को स्थापित करिए, शुरुआत करिए, उसके बाद प्रबंधन करना, ये सब एक व्यापारी का कार्य है। शुरुआत हो जाती है, कई बार शुरुआत में हमें रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, बट धीरे धीरे अगर हम डटे रहेंगे, अगर हमारी पहल ठीक थी, अगर हमारा अवसर ठीक था, तो उसमें वृद्धि भी होगी और उसमें फायदा भी होगा। आप देखेंगे जीवन में कभी भी ऐसा, कई बार ऐसा मौका आ जाता है हमें यह लगता है कि अब यह कार्य करना हमारे बस की बात नहीं है, अगर हम कुछ समय और कार्य करते रहे तो वह कार्य सफल हो जाता है, वही चीज व्यापार में होती है। ठीक है, तो यह सब चीजें हमें अपने दिमाग में बिठाकर फिर हम सोचेंगे कि क्या हमारी बहनें व्यापार करने के लिए उनमें इच्छा शक्ति है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्रेरित होके वो अपने अंदर इच्छा शक्ति लेके आए, आत्मविश्वास पैदा करें, और उनके साथ साथ इन बातों का भी ध्यान रखें कि ये कार्य उन्हें करने पड़ेंगे। अंत में इस कार्यशाला के अंतिम भाग में मैं यह जरूर बात करूंगा कि आपको स्वरोजगार के फायदे क्या है, व्यापार का आपके जीवन में क्या फायदा है। ठीक है, देखो व्यापार का हमारे जीवन में सबसे पहला, सबसे मुख्य फायदा जो होता है वह होता है आत्मनिर्भर होना। हम अपने जीवन में जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जब तक हम दूसरों पर आधारित रहेंगे, तब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा नहीं होता, और आत्मनिर्भर होने के बाद हम अपने परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आत्मनिर्भरता के साथ साथ जो आत्मविश्वास हमारी बहनों में आएगा और उसके साथ जो उनके परिवार की तरक्की होगी, क्योंकि परिवार की तरक्की होगी तभी देश की तरक्की होगी। अगर परिवार ही हमारा उन्नति नहीं करेगा तो देश उन्नति नहीं कर पाएगा, तो इस तरह से दो चीजों में फायदा होता है, एक तो हमारी परिवार उन्नति करता है और परिवार के साथ साथ देश भी उन्नति करता है, परिवार आगे बढ़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, हमारी एक विशिष्ट पहचान बनती है। अब हमारी जो बहनें बैठी हैं, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ बहनें ऐसी होंगी जो आत्मनिर्भर हैं, जो कुछ ना कुछ कार्य करती हैं और उस कार्य करने से धन कई अर्जन होता है उन्हें, तो वो जो उनकी एक विशिष्ट पहचान बन जाती है समाज में, उनकी एक विशिष्ट पहचान होती है। तो जो विशिष्टता आपके अंदर आएगी, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका परिवार और देश उन्नति करेगा। तो अंत में कार्यशाला के पहले भाग के अंदर मैं यह आपको फिर से कहना चाहता हूं कि हमारी बहनें जो घर में रहती हैं, वो कृपया करके अपने मन में यह जरूर लेके आए। देखो, सबसे पहली चीज आपकी इच्छा शक्ति है। जब तक आपके मन में इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें अपने मन में इच्छा शक्ति जागृत करनी पड़ेगी, आत्मविश्वास अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। उसके बाद ही हम यह सोचेंगे कि किस तरह का व्यापार हमें करना है, कितना जोखिम हम उठा सकते हैं और उस व्यापार को करने के लिए संसाधनों को कहां से एकत्रित करेंगे। रीड इंडिया हमारी बहनों को काफी सपोर्ट करती है, सहायता भी करती है। तो इस कार्यशाला के माध्यम से हमने व्यापार के बारे में सीखा। कार्यशाला के दूसरे भाग में हम व्यापार की स्थापना से लेकर व्यापार के बाकी भागों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।
1: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
2: माय नेम इज नौशाबा अंसारी, मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन 10th है और मैंने हॉस्पिटल में जॉब की है। उसके बाद मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी। फिर मैंने जॉब की 2 साल आगरा में ही हॉस्पिटल में। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, मेरा 1.5 साल का बेटा है। उसके बाद मुझे रीड इंडिया के बारे में पता चला, तो यहाँ पर मैंने TG का एंड NTT का कोर्स किया, कर रही हूँ मैं यहाँ से। हाँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ करके, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अपना फ्यूचर बना सकती हूँ, अपने बेटे का भी फ्यूचर बना सकती हूँ। मेरे इन-लॉज भी एग्री हैं, मेरे हस्बैंड भी एग्री हैं यहाँ के लिए। यहाँ पर अभी तक भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है NGO के सिवा, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर और भी खुलने चाहिए ऐसे, जो उससे सभी लेडीज़ को, लड़कियों को बाहर निकलने का मौका मिले, जिनके फादर मदर निकलने नहीं देते घर से। यहाँ अच्छा लगता है, टीचर्स भी अच्छे हैं यहाँ के सारे।
3: हेलो, मेरा नाम दीपा है, मेरी उम्र 23 साल है और मैं मैरिड हूँ। मेरा 1 बेटा है और मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैंने 12th तक की पढ़ाई की है, उसके बाद मैंने कंप्यूटर हार्डवर्क के फॉर्म भी भरे थे, पर मैं 6 महीने का ही कोर्स कर पाई कि बीच में मेरी शादी आ गई, जिसके कारण मैं आगे की पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाई। शादी के 1.5 साल बाद मेरा बेटा हुआ। जैसे बेटे होने के बाद तो जैसे मैं डिप्रेशन में रहने लगी। उसके बाद मुझे रीड इंडिया के बारे में पता चला, तो मैंने अपने इन लॉज को कन्वेंस करने की कोशिश की, पर राजी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन काफ़ी समझाने के बाद उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। उसके बाद मुझे अपने हस्बैंड को मनाने में भी काफ़ी कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि मेरा बेटा अभी 1.5 साल का ही हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वो भी मान गए। उसके बाद मैं यहाँ आई तो मैंने NTT का कोर्स किया, उसके साथ साथ ही मुझे वहाँ पे सर्वे करने आए, तो मुझे यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स के बारे में भी पता चला। फिर मैंने यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स में भी एडमिशन ले लिया, कंप्यूटर का कोर्स भी किया। उससे मैं मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। उसके रीड इंडिया आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा, मुझे काफ़ी कम महसूस होता था और मैं अपने आप को काफ़ी आज़ाद महसूस करती थी। मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं शादी के बाद और बच्चों के बाद काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। उसमें भी मुझे काफ़ी ये लगा कि मेरा डिप्रेशन दूर हो रहा है, खुल के सांस ले पा रही थी मैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सारे काम अपने आप से खुद कर सकती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ, मैं अपने आप को अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ, मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे कंप्यूटर सीखने के बाद तो मुझे काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे काफ़ी काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग या फिर बिल पे करना, टिकट करना और भी काफ़ी बैंक में के काम सभी घर पे हो जाते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है खुद से अपना काम करके, या फिर भाई पहले बहुत बहुत देर तक धूप में लाइन में जाना पड़ता था, अब मैं घर बैठे ही अपना सब कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू रेड इंडिया।
4: मेरा नाम रिया है, मैं 10th में स्टडी करती हूँ और मेरी क्लास बीच में अभी कुछ दिनों से बंद हो गई थी, क्लास आना बंद हो गया था मेरा और मेरे घर वाले एग्री नहीं थे, लेकिन मैम ने कॉल करके समझाया, फिर मेरे घर वाले एग्री हुए, मेरे को भेजा। मैम भी बहुत अच्छी है यहाँ की, और जो भी कोर्स आता है, मैं पहले टीचर ट्रेनिंग भी कर रही थी, फिर उसके बाद अब मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया है। ये महसूस किया मैंने कि हाँ, जो मैं चाहती हूँ फ्यूचर में बनना, अपने करियर में कुछ करना, उससे ये हुआ है कि हाँ मैं बिल्कुल, मेरे को वो हो गया है, घर वालों का सपोर्ट हो गया है, टीचर्स ने समझाया था, कॉल की थी कि हाँ ये कर सकती है कुछ।

0: नमस्कार बहनों, मैं रीड इंडिया द्वारा आयोजित वर्कशॉप के दूसरे भाग में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम दिनेश मिगलानी है। इस वर्कशॉप के पहले भाग में हमने यह सीखा था कि हमारे जीवन में आत्मनिर्भरता की क्या उपयोगिता है, कैसे हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो घर की बहनें हैं, कैसे वो आत्मनिर्भर होके अपना एवं अपने परिवार को आगे बढ़ा सकती हैं एवं देश की उन्नति में अपना योगदान प्रदान कर सकती हैं। पहले भाग में हमने यह भी सीखा था कि व्यापार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके अलावा व्यापार यदि आप करते हैं तो उसमें क्या क्या कार्य आपको करने पड़ सकते हैं। यह हमारा भाग दो है वर्कशॉप का। इस भाग दो के अंदर हमारा जो मेन पॉइंट है सीखने का वह यह है कि व्यापार की शुरुआत कैसे की जाए, व्यापार की शुरुआत कैसे की जाए। व्यापार जो होता है, व्यापार करने के लिए हमारी एक व्यापारिक मानसिकता होनी चाहिए, ठीक है। व्यापारिक मानसिकता क्या होती है? व्यापारिक मानसिकता होती है कि अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, अपने आप को आर्थिक रूप से आजाद करने के लिए हम जोखिम उठाते हैं। तो व्यापार का पहला मूल मंत्र क्या है? जोखिम उठाना, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे मन में यह दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि हमें व्यापार करना है, ठीक है। अब तक के सेशन में हमने यह तो समझ लिया था कि आत्मनिर्भरता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, बट अब इस सेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि व्यापार का पहला कार्य क्या है। व्यापार का सबसे प्रथम कार्य होता है अवसर की तलाश करना, सबसे पहला जो कार्य है। अगर आपके पास अच्छा अवसर है, ठीक है, अगर आपको यह पता चल गया कि मैं अगर ये काम करूं तो इससे मैं आत्मनिर्भर हो सकता हूं, तो आप मान लीजिए आधा कार्य आपका हो चुका है। जैसे हम जनरल एक हिंदी में बात कहते हैं ना कि किसी कार्य की शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो आधा कार्य तो वहीं पर हो जाता है। ऐसे ही व्यापार में सबसे इम्पोर्टेंट यह होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह यह होती है कि अवसर की तलाश हो जाए, ठीक है। अब देखो, यदि हम व्यापार करने का विचार कर रहे हैं तो हमारे मन में कई तरह की संभावनाएं आती हैं, कई तरह की बातें आती हैं, क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, ठीक है। कई तरह के अवसर हमारे दिमाग में आते हैं तो हमें हर जगह संभावना दिखती है, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि अगर मुझे किसी कार्य में संभावना दिख रही है तो मात्र उत्तेजना में आकर मैं वह कार्य शुरू कर दूं। पहले हमें यह समझना होगा कि क्या जो कार्य क्षेत्र में मुझे संभावना दिख रही है, क्या उस कार्य क्षेत्र के अंदर वो कार्य क्षेत्र व्यवहारिक है या नहीं है, क्या व्यवहारिक है उसमें व्यापार करना। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहां बात करेंगे पहले कि क्या क्या अवसर हमारे पास में, हमारी बहनों के पास में हो सकते हैं जो गांव में रहती हैं या ऐसी जगहों पर रहती हैं जो शहरों से ज्यादा दूर नहीं है, शहरों के आसपास है, ठीक है। या हमारी बहनें जो कम पढ़ी लिखी हैं, जो वैसे नौकरी नहीं कर सकती बट कुछ अपनी ओर से कुछ कार्य करके पैसा कमाना चाहती हैं, तो इसमें देखिए, वैसे आजकल के समय में, आजकल के समय में सबसे ज्यादा जो लोग इन्वॉल्व है, सबसे ज्यादा जो लोग शामिल है वह खाने पीने की चीजों से रिलेटेड व्यापार में है। क्यों? क्योंकि आज के समय में हर आदमी अपना कुछ पैसा खाने पर खर्च करता है। आप देखिए, अगर आप दिल्ली के पास किसी गांव में रहती हैं या आप चंडीगढ़ के पास कहीं रहती हैं या कोई बहुत बड़ा शहर या छोटा शहर भी आपके पास में है, तो अगर शाम को मार्केट में घूमने भी चले जाएं तो आप यह देखेंगे कि जगह जगह पर लोगों ने अपने ठेले लगा रखे हैं, ठीक है, और उन ठेलों पर वह वो सामान बेच रहे हैं, वो खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं जो घर में बड़े आसानी से बनाई जा सकती हैं। जैसे कि मैं बहुत छोटे छोटे एग्जांपल दूंगा आपको, क्योंकि देखो हमारी जो महिलाएं हैं उनके साथ जो पुरुष उनके घर में है या उनके कुछ बच्चे जो एज में उनकी काफी एज है तो वो उनकी सहायता कर सकते हैं बाहर जाके खाने पीने चीजों को बेचने में। जैसे कि गोलगप्पे हैं, पानीपुरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। आप देखिए, पानी पूरी को बनाना कितना आसान है, कुछ भी नहीं लगता उसके अंदर, ठीक है। और एक पानी पूरी 2 या 3 रुपए की ज्यादा की आपकी बिकती है, और अगर आप किसी बड़े शहर में उसे बेच रहे हैं तो वो ज्यादा की आपकी बिकने वाली है। पानी तो बेचना आपने, ठीक है, तो चीजें आसान है तो आपको अवसर तलाशता है। तो खाने पीने की चीजों में आप और बहुत कुछ देख सकते हैं, ऐसी ऐसी सूखी चीजें होती हैं जो खाई जाती हैं, ठीक है, जो लोग पसंद करते हैं खाना, तो उनको बेचा जा सकता है। इसके अलावा कढ़ाई बुनाई और सिलाई से रिलेटेड बातें हैं, जैसे कि हमारी गांव की महिलाएं कढ़ाई और सिलाई में काफी तेज होती हैं, मतलब क्योंकि यह प्रशिक्षण उन्हें अपने परिवार से ही मिलता है, ठीक है। तो आज के समय में सभी महिलाएं शहर में आप देखेंगे या सभी लोग अपने घरों को चमकाना चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि उनके घर में साज सज्जा हो, तो जो हाथ से बुनाई हुई चीजें काफी ज्यादा अच्छी होती हैं, काफी ज्यादा आकर्षित करती हैं। तो यदि आप में हाथ की कला है जिसमें आप सिलाई कर सकती हैं, कढ़ाई कर सकती हैं, तो आप छोटी-छोटी कपड़ों पर कढ़ाई करके उसको एक डिजाइनिंग पीस में बना के शहर में बेच सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा स्वेटर एवं डिजाइनदार कपड़े, आज के युग में, आज के समय में जो महिलाएं शहरों में रहती हैं, नौकरियां करती हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वे अपने बच्चों के लिए स्वेटर बना सकें। तो जनरली वो महिलाएं क्या करती हैं, दुकानों पर जाकर स्वेटर खरीदती हैं। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, जैसे मान लीजिए आप जहां रहते हैं आपसे पास कोई शहर या गांव है, आप उस गांव में अगर आप थोड़ा सी कोशिश करके देखें तो आपको स्वेटर बनाने के ऑर्डर मिल सकते हैं। तो आप एक बच्चे का नाप लेके उसकी स्वेटर बना सकती हैं। तो यह एक तरीके से आपका आत्मनिर्भर होने का जरिया हो सकता है। इसमें आपको फायदा क्या होगा, क्योंकि ऊन जो है वह तो जिस परिवार ने बनवानी है अपने हिसाब से आपको देगा, ठीक है। तो आपको तो ओनली जो आप अपने हाथों से काम कर रही हैं उसी की ही मेहनताना आपको मिलना है। इसके अलावा साज सज्जा का सामान है, मैंने पहले ही आपको बताया कि सभी लोग अपने घरों को ऐसा चाहते हैं कि उनका घर चमका चमका रहे, घर उनका शानदार सा दिखे, ठीक है। तो घर को शानदार दिखाने के लिए हम साज सज्जा का सामान बनाते हैं। तो यदि हमारी कुछ महिलाएं, अगर आप में कुछ ऐसा हुनर है जो आप ऐसे डिजाइन बना सकती हैं मिट्टी के उससे कपड़े के ऊपर जो घरों में यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सौंदर्य से आधारित, हर महिला अपने आप में सुंदर दिखना चाहती है, चाहे कोई भी महिला, मैं कहता हूं चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर महिला यह चाहती है कि वह सुंदर दिखे। अगर वह कहीं से जाए तो लोग माने कि हाँ वो सुंदर है, ठीक है। तो आज के समय में चाहे आपके पास पैसा है चाहे पैसा नहीं है, चाहे आपके आमदनी के साधन है चाहे आमदनी के साधन हमारे कम है, फिर भी हमारी महिलाएं जो भी उनके पास में चीजें अवेलेबल हैं उनको यूज करके सुंदर दिखना चाहती है। तो यदि आप सौंदर्य से आधारित कार्य कर सकते हैं जिसमें छोटा मोटा आपका ब्यूटी पार्लर हो सकता है, मैं एक ब्यूटी पार्लर नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि आप अपने घर से ही जिसमें छोटी छोटी महिलाओं की जो जरूरतें हैं वह कार्य सीख के आप अपना कार्य शुरुआत कर सकती हैं। जैसे कि हमारी जो संस्था है रीड इंडिया है, यह हम अपनी लाइब्रेरीज या अपने सेंटर्स के माध्यम से आपके ब्यूटिशियन कोर्स की ट्रेनिंग देती है, ठीक है। और यदि आप हमारी संस्था के थ्रू जुड़े हैं और आप अगर आप ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग लेते हैं तो इतना तो आप सीख ही जाते हैं कि कैसे महिला को सुंदर दिखाया जाए, ठीक है। तो यह एक आपका अच्छा कार्य हो सकता है। इसके अलावा आप बच्चों के खिलौने बना सकते हैं, लकड़ी से खिलौने बनाए जाते हैं, मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, यह वो चीज है जो हमेशा चलती है। देखो कोई भी इंसान है जब उसका बच्चा कुछ भी मांगे उससे, ठीक है, जब छोटा बच्चा है तो खेलने के लिए इंसान, आप चाहे उसका इनकम सोर्स है या नहीं है, फिर भी वह बच्चों के लिए काफी पैसा खर्च करता है। तो आप कोई भी, जैसे आप देखेंगे शहरों के अंदर शाम को या सुबह में जो गुब्बारे वाले होते हैं वह भी एक अच्छी कमाई कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आपका बच्चा गुब्बारे की डिमांड कर रहा है, गुब्बारा मांग रहा है, तो आप उसे गुब्बारा लेके देंगे। और आप सोच के देखिए, एक गुब्बारे को फुलाकर और उसको एक डोर से बांधने में आपका कुल खर्च कितना है और कुल कितना पैसा उसके लिए लिया जाता है। 10 रुपए से कम गुब्बारा नहीं बिकता, ठीक है। और यदि आप उस गुब्बारे पे खर्चे की बात करें तो आपका 1 से 2 रुपए का गुब्बारा आता है, 1-2 रुपए आप यह मान लीजिए उससे जो आपने डोर बांधी है, तो 3 से 4 रुपए के खर्च को आप 10 रुपए तक बेच सकते हैं, ठीक है। ये एक सोच की बात है, अभी देखने में हमें लगता है कि यह बेचना बहुत मुश्किल होगा, पर आप देखिए हजारों लोग ये कार्य करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी के डिजाइनदार बर्तन आप सकते हैं बना। देखो गांव में हम बहुत तरह की कलाएं सीखते हैं, अगर हमारे हाथ में हुनर है, अगर हमारे हाथ में हुनर है तो हम ऐसी कोई भी चीज बनानी सीख सकते हैं, और यह सब चीजें शहरों में बड़ी आसानी से बेची जा सकती हैं। आप देखिए किसी भी बाजार के अंदर, कोई जो बड़े बड़े शहर है वहां तो सड़कों पर बाजार लगता है, ठीक है। सड़कों पर बाजार लगता है तो लोग आते हैं, अपने से जो भी सामान होने चाहिए उन्हें खरीदते हैं। तो यदि आप कोई ऐसी चीज बनाने में अगर आप में हुनर है तो यह भी आपके आत्मनिर्भर होने का रास्ता खोल सकती है। इसके अलावा पापड़, अचार, जो ऐसी सूखी चीजें हैं, देखो अचार है, जो लोग बहुत साफ सुथरा ढंग से अचार बनाते हैं, यदि वह शहर में जाकर उसका विपणन करें, उसकी मार्केटिंग करें, तो अचार बिकना शुरुआत हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से ताजी चटनी, कटी हुई सब्जियां, देखो आजकल के युग में जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, जो महिलाएं जॉब करती हैं, चाहे वह सरकारी नौकरी है चाहे वह प्राइवेट नौकरी है, तो वो महिलाएं चाहती हैं कि उनके घर के छोटे मोटे कार्य जो हैं वह उन्हें किए मिले। तो आजकल आप देखोगे पहले मार्केट में जाते थे तो वहां सब्जी खरीदी जाती थी, ठीक है, बट आज जमाना ऐसा आ गया है कि मार्केट में कटी हुई सब्जियां खरीदी जाती हैं। अब आप जब आप आलू वाले भैया को बोलोगे कि भैया मुझे 1 किलो आलू देना, अब आप ये नहीं कहोगे 1 किलो आलू देना, आप उसे ये कहेंगे मुझे आलू की सब्जी बनानी है तो 1 किलो कटे आलू देना, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि यह वो सारी बातें हैं जिनको जिनमें से आप यह देख सकते हैं कि व्यापार की, इन सब चीजों में व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा भी बहुत चीजें ऐसी हो सकती है, क्योंकि जब आप अवसर के बारे में सोचती हैं, अवसर के बारे में तलाश शुरू करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमें क्या आता है, ठीक है। और कई बार ऐसी चीज होती है जो हमें आती नहीं है, बट हमारे मन में आता है कि इस चीज से कोई ना कोई व्यापार किया जा सकता है। तो इस तरह से इन सभी अवसरों को कुछ मैंने यहाँ पर बताए हैं, या इसके अलावा बहनें हमारी इतनी सारी यहाँ बैठी हैं, और मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे बहनों की जो सोचने की शक्ति है वह सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो बहनें आपस में एक समूह में होती हैं। जब आप किसी समूह में बैठे होते हो तो इतने सारे दिमाग एक साथ कार्य करते हैं, तो आप आपस में शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं भी यह आइडिया आपके मन में है। तो जो भी आइडिया आपके मन में आए, जो भी व्यापार करने की बात आपके मन में आए, आप यह उस व्यापार करने के मुद्दे को अपने सहेलियों के साथ में उनसे बात करिए, क्योंकि जब आप किसी आइडिया को दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, उससे बात करते हैं, तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति आपको उसमें से कुछ और अच्छी बात सुझा सकता है। तो पहला जो हमारा मुद्दा है वह है अवसर को तलाश करना। मैं फिर बार बार इस बात पे जोर डाल रहा हूं, यहाँ पर हमारी महिलाएं जो यहाँ पर बैठी हैं, यदि उनके मन में कोई भी अवसर है, यदि उन्होंने किसी अवसर को अगर तलाश लिया, ठीक है, और उत्तेजना में आकर व्यापार शुरू कर दिया, उत्तेजना मैं नहीं कहूंगा, पहले सोच समझकर अगर उन्होंने सारी बातें सोच समझकर कार्य करना शुरू करा, तो 100% उनका कार्य यह सफल होगा, ठीक है। अब अवसर तो तलाश लिया, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, मैं मान रहा हूं, कुछ बातें मैंने बताई हैं, कुछ आप लोग भी आपस में बात करेंगे, तो यह मैं मान के चल रहा हूं कि अवसर तो हमने तलाश लिया। अब अवसर तलाशने के बाद में यह नहीं है कि जैसे ही आपने अवसर तलाशा तो मतलब आपका व्यापार चल पड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अवसर तलाशने के बाद में हमारी जंग शुरू हो जाती है, हमारी जंग शुरू हो जाती है किसके साथ में, हमारी जंग शुरू हो जाती है भाग्य के साथ में। हमारी जंग की शुरुआत हो जाती है जो मार्केट में दूसरे लोग हैं जो उसी तरह के सामान को बेचते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो कार्य हमारे करना होता है वह होता है विपणन अनुसंधान। विपणन अनुसंधान, अब आपको लगेगा कि विपणन क्या होता है और अनुसंधान क्या चीज होती है, तो विपणन अनुसंधान से हमारा मतलब यह होता है कि आइडिया या जो हमने अवसर के बारे में बात करी है, अब हम यह देखेंगे कि उस अवसर में कितना दम है, क्या जो हमारा ग्राहक है क्या वह उसे पसंद करेगा कि नहीं करेगा, क्या हमारा ग्राहक जो हमारा जिसको हमें सामान बेचना है वो उसमें अलग क्या चाहता है। तो विपणन अनुसंधान के अंदर सबसे पहले हम ग्राहक की बात करते हैं, सबसे पहला हम क्या बात करते हैं ग्राहक की, क्योंकि अंत में पैसा तो आपको ग्राहक नहीं देना है, मतलब सारी बातें अपनी जगह, कोई भी अगर हम इसमें से सामान को चुनाव करते हैं, कोई भी व्यापार करने की शुरुआत करने की बात करते हैं, तो अंत में जो पैसा है जो सामान बेचा जाएगा वह तो किसको बेचा जाएगा, ग्राहक को ही बेचा जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ग्राहक के बारे में सोचना होता है कि ग्राहक क्या हमारी वस्तुओं को पसंद करेगा या नहीं करेगा, और क्या ग्राहक हमारी चीजों के बारे में खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो ग्राहक को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राहक को समझने के लिए हम पहली चीज यह देखते हैं कि हमारी चीजों में क्या क्या विशेषता है, ठीक है, और ग्राहक की क्या क्या आवश्यकता है। दोनों में हमें एक तरह से बांध बनाना होता है, आज ग्राहक की आवश्यकता क्या है, क्या हमारी जो वस्तु जो हमने बनाई है क्या उसकी आवश्यकता को पूर्ण करता है या नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि हम छोटा सा एग्जांपल लें, मान लो खाने पीने की चीजें हैं, ठीक है, अब देखो हर तरह के ग्राहक है, कुछ ग्राहक ऐसे हैं जो स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक है, ठीक है, तो वो ऐसी वस्तुएं खाना पसंद करते हैं जो काफी साफ सफाई से बनाई गई हों, इसके अलावा ज्यादा मसालेदार न हो, ठीक है, तो हमें उन ग्राहकों को हमें देखना होगा कि हम किन ग्राहकों को टारगेट करके अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अंत में पैसा तो ग्राहक ने ही देना है। इसके अलावा मार्केट में जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो सामान हम बना रहे हैं, उससे दूसरे सामान और क्या क्या अवेलेबल है, ये हमें जरूर देखना होता है। ऐसा नहीं कि उत्तेजना में आकर हम अपना कार्य शुरुआत कर दें और जब हम मार्केट में सामान बेचने जाएं तो हमें यह पता चले कि हमारे सामान के अलावा जो दूसरे सामान मार्केट में उपस्थित है वह क्वालिटी वाइज या उनमें गुणवत्ता हमसे ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दूसरों के प्रोडक्ट्स को भी देखना है, उनको समझना है कि उनके प्रोडक्ट्स में क्या है और हम अपना जो सामान बनाएंगे हम उनसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यदि हमारा सामान दूसरों के सामान से बेहतर होगा तभी उसका मार्केट में बिकने के चांसेस ज्यादा है, तभी हम एक अच्छी बाजार में अपने आप को अच्छा शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें दूसरों के सामान को भी देखना होगा। सामान को देखने के बाद फिर हम यह देखेंगे कि हम अपने सामान को दूसरों के सामान से कैसे अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, और फिर यह भी आपको समझना है कि क्या हमारा सामान जो हमने बनाया है क्या वह ग्राहक की इच्छाओं को पूरा करता है, क्या वह ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यदि हमारा सामान ग्राहक की आवश्यकताओं को दूसरों के सामान से ज्यादा पूरा करता है तो इसका मतलब हमारे सामान को मार्केट में चलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा एक मैंने एक वर्ड लिखा है यहां पर इंग्लिश के अंदर, पायलट टेस्टिंग। अब हमारी कुछ बहनें हैं वह नहीं समझ पाएंगी कि पायलट क्या होता है। अब ये तो आपको पता ही है बहनों कि पायलट का मतलब होता है जो जहाज उड़ाता है। ठीक है, अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि किसी को हम जहाज दे रहे हैं तो पहले ही उसे कहें जा बेटा जहाज उड़ा, हजार सवारी ले जा साथ में, ऐसा तो नहीं है। पहले हम कुछ थोड़े से पोर्शन पे ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बाजार में नमक खरीदने चले और हमने जो सड़क के किनारे नमक बेच रहे हैं उनसे बात करनी शुरुआत करी, वहां दो ढेरियां लगी हुई थी। ठीक है, एक ढेरी में नमक था और दूसरी ढेरी में भी नमक था। हमें यह देखना था किस डेयरी का नमक हम लें। तो हम क्या करते हैं, चुटकी भर लेते हैं, अपनी जीभ पर लगाते हैं और टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमें जो नमक पसंद आता है उसको हम लेते हैं। सेम यहां पर है, यदि आपके मन में कोई अवसर आ गया और आपका मन पूरा बन गया कि मुझे इस अवसर पे व्यापार करना है, तो अपने ज्यादा पैसा खर्च करने की बजाय पहले हम थोड़ा सामान बनाकर देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सामान बनाकर देखेंगे और उसे उस थोड़े से सामान को मार्केट में बेचने का प्रयास करेंगे, यह समझने के लिए कि क्या हमारा सामान मार्केट में बिकने लायक है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि यदि हमारा सामान मार्केट में बिकने लायक नहीं है और हम काफी ज्यादा सामान बना लेते हैं तो इसमें हमारा जोखिम ज्यादा होगा, ठीक है। तो पहले कुछ सामान बनाकर हम मार्केट में बेचने की ट्राई करें, बेचने की कोशिश करें, और यदि हम अपनी कोशिश में सफल हो जाते हैं और ग्राहकों के फीडबैक से, जो ग्राहक हमें बताते हैं कि इसमें क्या क्या और चीज, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, तो हम आगे नए से नई चीजें बना सकते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आगे हम ज्यादा सामान नहीं बनाना चाहिए, पहले हमें उस सामान की मार्केट में पायलट टेस्टिंग करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्या वह हमारा सामान जो है मार्केट में बिकने लायक है या नहीं है। इसके अलावा साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आज के युग में, आज के समय में साफ सफाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी ग्राहक, कोई भी, मान लीजिए मैं ही हूं, मुझे अगर कुछ भी खरीदना है तो पहली बात मैं सामान को देखूंगा क्या साफ सफाई है, या जहां पर वह बनाया जा रहा है या जहां पर बैठ के आप उसे बेच रहे हो, क्या वह साफ सुथरी जगह है या नहीं है। तो सामान को बनाने से लेकर उसको बेचने तक, किसी भी सामान को बनाने से लेकर उसे बेचने तक साफ सफाई का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि साफ सफाई हमारे देश की पहचान है। मोदी जी का नारा है ना स्वच्छ भारत, तो ये जो स्वच्छ भारत की बात है वो इसी बात से निकली हुई है, साफ सफाई का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। खाने पीने की चीजें हैं, बच्चों के खिलौने हैं, जितनी ज्यादा साफ सफाई होगी उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पैकेजिंग। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, पैकेजिंग। पैकेजिंग आकर्षित होनी चाहिए। देखो आप मान लीजिए आप बाजार में जाते हैं, आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप सामान को देखते हैं, जो सामान सबसे ज्यादा आकर्षित ढंग से जिसको पैक किया जाता है हमारा मन पहला उसी पे टिकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी क्या उपयोगिता है, उसमें क्या चीजें हैं, ठीक है। और देखो सामान तो जब आप यूज करते हैं उसके बाद ही समझ में आता है कि वो कितना आपके लिए कारगर होगा, बट सबसे पहली चीज जो ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है वह होती है सामान की पैकिंग। तो पैकिंग आपको सीखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम एक छोटे बच्चों के गिफ्ट की बात भी करें तो हर चीज को पैक किया जाता है, पैक करने का एक उपयुक्त तरीका होता है। तो रीड इंडिया के सेंटर्स के माध्यम से पैकेजिंग कोर्स भी चलाए जाते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि सामान को कैसे पैक किया जाए, कैसे रैप किया जाए अच्छे रैपर्स के अंदर। तो पैकेजिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आप अचार बेच रहे हैं, आप चटनी बेच रहे हैं, तो उसको किस ढंग से पैक किया जाए, ठीक है। पैक करने के बाद उसके ऊपर क्या क्या लिखा होना चाहिए ताकि ग्राहक उसको देखते ही समझ जाए कि इसके अंदर क्या चीज है, ठीक है। और अंत में हम बात करेंगे मूल्य निर्धारण की। अब यह काफी ज्यादा कठिन प्रश्न हो जाता है कि सामान का मूल्य क्या रखा जाए, सामान का मूल्य क्या रखा जाए, ठीक है। तो जो सामान हाथ से बनाया जाता है वैसे तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। हम तो एक चीज कहते हैं कि जो हाथ से बनाई जाती है वह अतुलनीय चीज है, वह मतलब बेशुमार कीमती है, पर ऐसा नहीं है। ग्राहक तो कीमत के हिसाब से ही, अपने सामान उपयोगिता के हिसाब से ही सामान खरीदेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ऐसा नहीं कि हम यह चाहें कि इतना मुनाफा कमा लें कि एक ही सामान को बेचकर मुनाफा कमाए। देखो मुनाफा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम अपने सामान की कीमत को ज्यादा रखें, ठीक है, दूसरा, हम अपने सामान की कीमत में हमने मन में सोच लिया कि यदि मेरी 100 रूपये लागत है और 100 रूपये की लागत के ऊपर मैं कम से कम 15 से 20% का लाभ चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने एक परसेंटेज अपने मन में फिक्स कर ली, तो मैं सामान की कीमत को इस तरह से रखूंगा कि लागत के बाद जितना मुझे लाभ चाहिए उतना मैं लाभ उसमें जोड़ दूंगा, ठीक है। या हम क्या करें कि अपने सामान की सेल को बढ़ाएं, यदि ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा सामान बिकेगा, तो ज्यादा सामान बिकेगा तो कम, अगर कीमत कम भी है, कीमत अगर कम भी है तो भी हमें लाभ उतना ही होगा। तो हमें यह सोचना चाहिए कि एक बार में लाभ न कमा लिया जाए, लाभ कमाएं, मुनाफा कमाएं, बट ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा मुनाफा कमाएं कि ग्राहक दूसरी बार हमारे पास आए ना। तो हमारे सामान में क्वालिटी के हिसाब से, सामान की उपयोगिता के हिसाब से हमें उसका मूल्य निर्धारण करना होता है। मूल्य निर्धारण करते समय हमें यह भी देखना चाहिए कि मार्केट में जो दूसरे प्रोडक्ट बिल्कुल सेम जो है उनका मूल्य कितना है, ऐसा ना हो कि हमारे सामान का मूल्य उनके मूल्य से काफी ज्यादा हो, जिससे कि हमारे सामान के बिकने के जो चांसेस है वह कम हो जाए। तो हमें मूल्य निर्धारण पे भी काफी ध्यान देना चाहिए। तो इस भाग के अंदर हमने कई बातों पर बात करी, तो आशा है मुझे कि हमारी जो बहनें यहां बैठी हैं उनको यह समझ में आया होगा कि व्यापार करना जितना बाहर से आकर्षित करता है अंदर से उतना आसान नहीं, हमें मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है हर हिस्से में, व्यापार के हर भाग में। ये नहीं कि हमने सामान बना लिया और हम यह सोचें कि हमारे घर से बिक जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसके अलावा सामान तो हमने बना लिया अपनी सोच के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से बनाया गया सामान ग्राहक की सोच से यदि मैच नहीं करता तो वह सामान हमारा बिकने वाला नहीं है, ठीक है। तो ग्राहक हमारे लिए देवता है, जैसा ग्राहक चाहेगा सामान तो हमें वैसा बनाना पड़ेगा। इसके अलावा उत्तेजना में आकर बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर, बड़े स्केल पर सामान बना दिया जाए और फिर हम उसे बेचने जाए मार्केट के अंदर, तो यह भी मूर्खता होगी। पहले हमें यह देखना चाहिए, थोड़ा बहुत सामान बनाकर बेचने की ट्राई करनी चाहिए और यह पता करना चाहिए कि किन किन मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ सकता है या हमारे सामान में किन किन बातों, किन किन चीजों से सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा पैकेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो चीज जितनी अच्छी पैक्ड होगी, जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी उसकी उतनी ही उपयोगिता ज्यादा है, उतने ही वह ग्राहकों को आकर्षित करती है और उसके बिकने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं। और मूल्य तो एक बहुत बड़ा कारण है ही है कि ग्राहक आपका सामान तभी खरीदता है जब वह सामान उसकी उपयोगिता के हिसाब से, जो मूल्य आप उसे बता रहे हैं उसके साथ यदि वह मैच कर जाता है तो ग्राहक आपका सामान जरूर खरीदेगा। आशा है इस भाग को, वर्कशॉप के इस दूसरे भाग को समझने के बाद आपको यह जरूर समझ में आया होगा कि व्यापार करने की शुरुआत कैसे की जाती है और कैसे कैसे हम अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। इसी वर्कशॉप के भाग 3 के अंदर हम यह सीखेंगे कि मार्केटिंग कैसे की जानी चाहिए। सामान तो आपने बना लिया, मूल्य भी निर्धारण कर लिया, कंपेयर भी कर लिया, कैसे मार्केटिंग करी जाए, और इसके अलावा मार्केटिंग के अलावा हम यह भी देखेंगे कि कैसे अपने खाते बनाए जाए। मतलब आप कुछ ना कुछ खाता बना जरूर होना चाहिए ताकि आप यह देख पाए कि कितनी हमारी लागत लग रही है, कितना हमारा खर्चा आ रहा है और महीने या 2 महीने के अंत में हमें कितने का लाभ होगा। तो वह हम इस वर्कशॉप के भाग 3 में सीखेंगे। आशा करता हूं आपको यह सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।
1: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
2: मैं मेरा नाम प्रियंका है, मैं शाबान मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मेरा जन्म यही हुआ है। हम परिवार में 5 सदस्य हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और 3 बहन भाई। मेरा भाई 9th क्लास में है, बहन मेरी जॉब करती है, पापा टूरिज्म में है और मम्मी ने यहाँ से रीड इंडिया सेंटर से नर्सिंग का कोर्स किया था। आज वो जॉब कर रही है हॉस्पिटल में। मैंने 5 साल पहले रीड इंडिया सेंटर से कंप्यूटर कोर्स किया था, उसके बाद मैंने एनटीटी किया और आज मैं एज अ लाइब्रेरियन रीड इंडिया सेंटर में जॉब कर रही हूँ। मेरा जो एम था वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना था। अब मैं रीड इंडिया सेंटर की मदद से यहाँ से कोर्स करने के बाद मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ काम करने के साथ साथ मैं अपने घर पे भी बहुत सारे काम करती हूँ। जैसे मैं अपनी जिम्मेवारी घर पे निभाती हूँ, वैसे ही मैं अपनी जिम्मेवारी यहाँ रीड इंडिया सेंटर के साथ निभाती हूँ। अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से, पूर्ण तरीके से करती हूँ। मेरे परिवार में सभी वर्किंग है, तो भाई की, छोटे भाई की जिम्मेवारी सारी मेरे ऊपर है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभाती हूँ। मैं उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, स्कूल से लेके आती हूँ। उसके अलावा मैं उसकी स्टडी में हेल्प करती हूँ, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाती हूँ और उसके अलावा उसकी सारी जिम्मेवारियां मैं निभाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। उसके अलावा मैं अपने पेरेंट्स का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, उनकी केयर करती हूँ, उनके काम भी करती हूँ।
3: हेलो, मेरा नाम निशा सैनी है। मैं जब छोटी थी, 10 साल की थी और 6th क्लास में थी, तो मैं शुरू से ही यहीं पे आना शुरू किया है। एनजीओ के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, शुरू से पसंद रहा है मेरे लिए, अच्छा लगता है मुझे। हाँ, मैं ना पिछले 7 साल से आती रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मतलब एनजीओ में बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं कर लूँगी अगर कर सकी तो कर लूँगी, अगर जो मुझे इंटरेस्ट रहा जिस चीज़ में मैं वो करूँगी। और एनजीओ में आऊँगी, शुरू से आती रहूँगी। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, मैंने पढ़ा भी है, लेके भी गई हूँ घर, बहुत अच्छी बुक्स हैं। और टीचर्स भी अच्छे हैं, यहाँ के मैम सब अच्छे हैं। अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अब जो बॉयज़ होते हैं ना, पेरेंट्स ना सिर्फ बॉयज़ की ही मानते हैं आजकल के, ना बॉयज़ की बहुत डिमांड वगैरह, और गर्ल्स

करते हैं। मुझे बॉयज बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बॉयज ना पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते और ना ही गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना जानते। जो अच्छे से बात करते हैं पता नहीं कैसी नज़रों से देखते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को वो। बॉयज है ना बहुत गंदे होते हैं, बॉयज की तरफ तो बहुत ही कमी, जितना होता है उतना ही तक बात रखें, फ्रेंड है तो फ्रेंड ही तक रहें, उससे आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बॉयज से ना एकदम जैसे आगे आगे अपना करियर करते हैं वैसे वैसे ना लोग नए नए मिलते हैं और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, खिलाया पिलाया। शादी हो जाती है तो उसके बाद अपनी वाइफ की ही सुनते हैं, पता नहीं क्यों सुनते हैं। मेरा मानना है कि जो हमें पढ़ाया लिखाया हमारे पेरेंट्स ही है, जो कुछ है उनकी रिस्पेक्ट करें और उनकी अच्छे से देखभाल करें, जैसे हमें बचपन से पेरेंट्स ने रखा हम उनकी तरह बड़े होके अच्छे से रखें। मैं एक महिला और लड़की के ऊपर एक कविता है मैं सुनाने जा रही हूँ। मैं चाहती थी कि जींस पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं जो सूट पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं सब सारी जिंदगी जीऊँ, पर पेरेंट्स ने मेरे को ये सब करने नहीं दिया। जो बॉयज होते हैं उन सबको आज़ादी दी। शादी होने के बाद ससुराल में गई, शादी होने के बाद मैं ससुराल में गई, सास ने बोला ये करो वो करो, लेकिन कुछ भी करने ना दिया। जो कुछ था सब उसके नाम का था, सिंदूर उसके नाम का, चूड़ी उसके नाम की, पायल उसके नाम का, साड़ी उसके नाम की, बिछिया उसके नाम का, नाम प्लेट भी उसके नाम का, नेम भी उसके नाम का, आखिर मेरा क्या है मेरे नाम का। थैंक यू।

नमस्कार बहनों, रीड इंडिया द्वारा आयोजित व्यापार को कैसे स्थापित किया जाए एवं आत्मनिर्भर कैसे बना जाए की वर्कशॉप के भाग तीन में मैं दिनेश मिगलानी आपका स्वागत करता हूं। अभी तक के दो चरणों में या दो भागों में हमने यह सीखा था कि आत्मनिर्भरता की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है एवं भाग दो के अंदर हमने यह सीखा कि व्यापार कैसे किया जाए, व्यापार की शुरुआत कैसे की जाए, शुरुआत करने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे ग्राहकों की आवश्यकताओं को हमें देखना है और कैसे मूल्य निर्धारण करना है। भाग तीन के अंदर हम दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसमें पहला भाग हमारा जो है कि सामान को कैसे बेचा जाए, सामान की मार्केटिंग कैसे करी जाए, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। देखो, वैसे तो मार्केटिंग जो सामान को बेचना है यह एक तरह की कला है, यह एक तरह की कला है और कला ऐसी होती है जो इंसान में आंतरिक तौर पर होती है, वंशागुणत होती है। मैं तो ये कहता हूं कि वह जन्म जाती होती है। हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ महिलाएं बहनें हमारी ऐसी हैं जो बातों को बहुत अच्छे ढंग से बताती है और इतने अच्छे या रोचक ढंग से बताती हैं कि सामने वाला उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है और सारा जो बाजार का खेल है वह केवल विश्वास का खेल है। यदि ग्राहक आपकी बातों पर विश्वास कर रहा है वह आपसे सामान खरीदेगा, उसके बाद सामान का उपयोग करेगा और यदि वह आप सामान का उपयोग और आपकी की गई बातें अगर आपस में मेल खाती हैं तो ग्राहक संतुष्ट ग्राहक माना जाता है, जो एक व्यापार अच्छे व्यापार का सूचक है। ठीक है, तो इस भाग के अंदर हम दो भागों में बात कर रहे हैं। पहला भाग जो है सामान को कैसे बेचा जाए। देखिए, सामान बेचने के लिए सबसे पहले हमारी अपनी सकारात्मक सोच होनी चाहिए, हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए अपने सामान के बारे में। हमें यह लगना चाहिए

कि हमारा सामान औरों से क्यों अच्छा है, हमारा सामान औरों से क्यों अच्छा है। यदि हमें यह लगेगा कि मेरा सामान बहुत अच्छा है, तभी मैं अपने ग्राहक को यह बता पाऊंगी कि मेरा सामान औरों से क्यों अच्छा है। तो पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमारे चीजों के तरफ एक सकारात्मक सी सोच होनी चाहिए, हमारे मन में यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए या हमारे मन में यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो सामान हम बेच रहे हैं यह मार्केट में उस दाम पर सबसे अच्छा मिलने वाला सामान है। ठीक है, सकारात्मक सोच के साथ साथ आपको अपने सामान के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए सिंपल सी बात है, एक साधारण सी बात है, मैं अपने सामान के बारे में तभी बता सकता हूं जब मुझे अपने सामान की हर बात के बारे में जानकारी होगी। मैंने सामान कैसे बनाया, किस किस कच्चे माल का उसमें प्रयोग करा, बनाते टाइम मेरी विधि क्या थी, क्या मैंने साफ सफाई का ध्यान रखा या नहीं रखा, हर चीज के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। क्योंकि आप जब किसी दूसरे व्यक्ति को अपने सामान के बारे में बताते हैं तो आप तभी बता सकते हैं जब आपको उसके बारे में एक पूर्ण रूप से जानकारी होगी। ठीक है, तो सामान की जानकारी होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक अच्छे मार्केटिंग के लिए, हम ये कहें अच्छे जो सामान बेचने वाला होता है उसके लिए महत्वपूर्ण बात यही होती है कि सामान की जानकारी और उसका सामान दूसरे सामान से कैसे अच्छा है। क्योंकि जब हमें अपने सामान की जानकारी होगी तो हम अपने ग्राहक को यह बता पाएंगे कि हमारा जो सामान, अगर जो सामान हम बेच रहे हैं वह दूसरे सामान से कैसे अच्छा है, कितना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि तभी ग्राहक हमारा सामान खरीदेगा। तो सामान की विशेषताएं, जानकारी एवं दूसरे जो मार्केट में सामान अवेलेबल है उससे कंपैरिजन करना, या हम कहें कि उससे हम नाप पाए कि हमारा सामान उनसे कितना अच्छा है। इसके बाद हमारी वाक्पटुता होनी चाहिए। देखो, वाक्पटुता बोलने की कला है। बोलने की कला मतलब यदि कोई ग्राहक हमारे पास में आता है तो हमें बात करनी है उससे, ग्राहक से। ठीक है, क्योंकि हम यदि ग्राहक ने मान लीजिए मुझसे किसी सामान के बारे में पूछा और मैं उसे एक रूखा सा जवाब दे दूं तो सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि ग्राहक मेरा सामान नहीं खरीदेगा। और यही यदि मैं एक बहुत अच्छे ढंग से उसे जवाब दूं, अच्छे ढंग से अपने सामान की विशेषताओं के बारे में बताऊं तो ग्राहक उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और ग्राहक हमारा सामान खरीदता है। तो आपकी बातचीत की कला सामान बेचने के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छे बातचीत कला व्यक्ति या महिला अपने सामान को बहुत अच्छे तरीके से बेच सकती है। और कुछ कार्य हमारे ऐसे हैं, मैंने शुरुआती लेक्चर में आपको बताया था कि कुछ कार्य हमारे ऐसे होते हैं जिन कार्यों में हमारा व्यापार जो है वह सारा जो आधारित होता है, जैसे कि एक ब्यूटिशियन का कार्य है, जो ब्यूटी पार्लर वाली महिला है जो साज सज्जा का सामान या सौंदर्य से आधारित जो काम करती है, तो उसको बातचीत में पारंगत होना चाहिए। यदि वह जिस महिला के सौंदर्य पे कार्य कर रही है, यदि वह उससे बातचीत करती है बहुत अच्छे ढंग से, उसे हर चीज को समझाती है, हर चीज की उपयोगिता बताती है, हर चीज का महत्व बताती है, तो जो दूसरी महिला है जो उसके पास एज ए ग्राहक आई है अगली बार उसी के पास ही आएगी। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, मैं अपनी बात करूं, देखो मैं बाल कटवाता हूं, ठीक है, बाल कटवाता हूं तो मैं उसी नाई के पास जाना पसंद करता हूं जो बड़े प्यार से बोलता है। बोल तो मेरे घर के आसपास काफी नाइयों की दुकानें हैं, ठीक है, बट फिर भी हम हर बार एक ही नाई के पास जाते हैं। या मान लीजिए आप कहीं से सामान खरीदते हैं तो ज्यादातर आप देखोगे, ज्यादातर आप एक ही दुकान पे जाएंगे, बार बार उसी दुकान पे जाएंगे। यदि वह दुकानदार आपसे कुछ पैसा ज्यादा भी लेगा तो भी आपको यह लगेगा कि उसी दुकान पर जाना ही आपके लिए लाभदायक है। क्यों? क्योंकि हम यह देखते हैं कि सामान खरीदने के साथ साथ हम जिससे सामान खरीद रहे हैं क्या वह हमसे अच्छे ढंग से बातचीत करता है या नहीं करता है। क्योंकि उसकी जो बातचीत है, जो उसकी बात करने की कला है, वह हमें सम्मोहित कर लेती है। तो हमारी बहनें जो यहां बैठी हैं वह बातचीत करने में काफी अच्छी हैं। मैं पर्सनली जानता हूं, बहुत लोगों से हम बात करते हैं तो महिलाओं की जो वाक्पटुता होती है, महिलाओं की जो बात करने की कला होती है, वह पुरुषों के मुकाबले काफी अच्छी होती है। तो उनकी जो बातचीत करने की कला है वह आपको अपना सामान बेचने में काफी ज्यादा सहायता करती है।
इसके साथ साथ हमें कभी संकोच नहीं करना चाहिए। देखिए मार्केटिंग का पहला नियम यही है कि अपने सामान के बारे में बताते समय कभी संकोच न करें, मन में कभी संशय न लाएं, ठीक है, ना ही कभी आपको ऐसा लगे कि मैं बार बार वही चीज बता रहा हूं, हर ग्राहक को बताता हूं और ग्राहक मेरे सामान को पसंद नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ग्राहक सामान खरीदना ही नहीं चाहता, तो यदि आप उसे विशेषताएं बताएंगे, उपयोगिता बताएंगे, तो आपकी बातों पर ध्यान न दे। तो हमें निरंतर बिना संकोच किए एक अच्छे तरीके से अपनी चीजों के बारे में ग्राहकों को बताना चाहिए। साफ सुथरा रहें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि आप मार्केट में जाके सामान बेचते हैं, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, तो वहां पर कोई भी ग्राहक अगर आपके पास आता है तो ग्राहक पहले ये देखता है कि जो व्यक्ति सामान बेच रहा है वो किस वेशभूषा में है, कैसे बैठा है। यदि आप देखिए मुझे कुछ खाने का सामान खरीदना है, मान ली छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं, मुझे पानी पूरी खानी है, ठीक है, अब मेरे सामने 3 पानी पूरी वाले ठेले हैं, ठीक है, मैं किसी उस ठेले पर जाना ज्यादा पसंद करूंगा जहां जिस ठेले पर जो पानी पूरी खिला रहा है वह साफ सुथरा व्यक्ति होना चाहिए, हाथ साफ हो, कपड़े साफ हो, क्योंकि तभी देखो आज के युग में कोई भी ग्राहक है वह आपसे तभी बात करना पसंद करेगा, तभी आपकी दुकान पर आना चाहेगा जब आप एक साफ सुथरे होंगे, ठीक है। तो हमें अपने ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मेहनत तो देखो पहली चीज है, मेहनत के बिना कोई भी व्यापार नहीं चल सकता, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि आपने एक बार मेहनत कर दी फिर आप मेहनत करना बंद कर दें, तो ऐसा नहीं होता। किसी भी व्यापार को चलाने के लिए मेहनत कश होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिना मेहनत के आप कोई भी व्यापार नहीं चला सकते। इसके साथ साथ हमारा जो उद्देश्य व्यापार का है, लाभ कमाना तो है ही है, लाभ कमाने के साथ साथ ग्राहक की संतुष्टि लक्ष्य है। तो मार्केटिंग में या सामान बेचने में आप जो आपने ज्यादा ध्यान रखना है, एक तो ग्राहक की संतुष्टि, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक मार्केटिंग से एक संतुष्ट ग्राहक उस पैसे खर्चने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक जब दूसरे ग्राहकों को आपके सामान के बारे में बताएगा तो दूसरे ग्राहक भी आपके सामान के लिए आकर्षित होंगे। तो हमें यह हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी सामान बेचें, जिस तरह का सामान बेचे, जिस ग्राहक को हम बेचे, वह ग्राहक हमसे संतुष्ट होकर जाए, वह हमारे सामान से संतुष्ट हो, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक आपका बेस्ट मार्केटिंग वाला पर्सन होता है, क्योंकि वह हर जगह जाकर आपकी बात को बताएगा। इसके अलावा अगर हम कुछ पैसा खर्च करके मार्केटिंग करना चाहें तो हम कुछ पैम्पलेट छपवा सकते हैं अपने सामान के बारे में, हमें पता है भी इस पर्टिकुलर एरिया के लोग हमारे सामान को खरीद सकते हैं, तो हम उनके घरों पे जाकर एक एक पर्चा फेंक सकते हैं। तो ये कई सारे माध्यम हो सकते हैं। अब देखो वैसे तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिल्कुल छोटे स्केल पर, मतलब उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जिनके पास ना तो काफी ज्यादा पैसा है, वह जो उनके पास साधन उनके पास है उन्हीं को ही यूज करके, उन्हीं का ही उपयोग करके आत्मनिर्भर होने की ट्राई कर रही हैं। तो यदि कुछ पैसा आ जाता है, यदि हमारा कार्य चलने लग जाता है, तो हम फिर अपनी मार्केटिंग के तरीकों को उसमें बदलाव कर सकते हैं। हम पर्चे छपवा सकते हैं, हम एक बैनर बनवा सकते हैं जिसपे जो भी सामान हम बेच रहे हैं उससे सामान में क्या क्या है, उस सामान में क्या क्या विशेषता है, जो मार्केट में दूसरा सामान अवेलेबल है वह सामान उनसे कितना अच्छा है, उस सबके बारे में उस पर बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सामान बेचने की ट्राई करिए, सामान बेचने की कोशिश करनी चाहिए, और जो एक मेहनत कश कार्य है जिसमें काफी मेहनत लगती है, और संतुष्ट ग्राहक को करना हमारा पहला उद्देश्य है। ये वो हमारा पहला पार्ट। भाग 3 के दूसरे पॉइंट्स, जो दूसरी बात हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होती है, खातों में हिसाब रखना। देखिए हम व्यापार तो शुरू कर देते हैं, ठीक है, और व्यापार शुरुआत करने के बाद शुरुआती दौर पर जब हमारे पास में कुछ जमा पूंजी होती है तो हम उसे खर्च करते हैं, ठीक है। कई बार हमारी बहनें या काफी लोग ऐसे होते हैं जो हिसाब किताब नहीं रखते, और कुछ समय के बाद में उनको यह नहीं समझ में आता कि उनका कितना पैसा किस चीज पर खर्च हुआ और उन्होंने कुल कितना पैसा खर्च किया, और जो अब वह लाभ कमा रहे हैं क्या वह उस उनकी कॉस्ट या उसके खर्चे के अनुरूप है या नहीं है। तो इसमें बहुत ज्यादा न जाते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा आपको कि अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो आप एक अपनी डायरी जरूर बनाइए, एक डायरी अपनी जरूर बनाइए, ठीक है।
उस डायरी में कुछ भागों में आप उसे बांट सकते हैं, ठीक है। क्या क्या भाग बना सकते हैं? एक भाग के अंदर तो आप यह देखो, मान लीजिए मेरा पहला पेज है, आपने आगे तो लिखना था, लिख दिया ओम नमः शिवाय, भगवान जी का नमस्कार करके अपना स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया जो लक्ष्मी माता का प्रतीक है। उसके बाद पहले पेज पर आप ये देखिए, हमने इसके दो भाग कर दिए, ठीक है। एक भाग हुआ हमारा खर्चे का और एक भाग हो गया हमारा आय का, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां लिखेंगे सारा खर्चा, जो भी खर्चा होता है आपको एक एक करके रोज का खर्चा लिखना है, और यहां हमने लिखनी है आय, मतलब उससे हमें कितने का सामान बिका। मान लीजिए अगर मैं एक महीने की बात करूं तो एक महीने में मैं उस महीने में मैंने जितना भी खर्चा किया वह मैं सारा एक तरफ लिखता जाऊंगा, ठीक है। और जितनी भी मुझे आय हुई सामान बेचने से, जहां जहां से पैसा आया वह मैं सारा यहां पे लिखता जाऊंगा, ठीक है। और महीने के अंत में हम जोड़ कर लेंगे दोनों तरफ का और यह देखेंगे हमें लाभ कितना हुआ, ठीक है। ऐसी अगले महीने आपने करना है, मतलब आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि यदि आपने 100 रुपए व्यापार में लगाए हैं तो 100 रुपए किस किस जगह पे आपने खर्च किए हैं, ठीक है। और यदि महीने के अंत में हमारी जेब में 500 रुपया है तो हमें यह जरूर पता हो कि वह कहां से हमारे पास में आया है। तो इससे हमें दो बातों में फायदा होता है, एक तो हम यह कंपेयर कर सकते हैं, यह हम आपस में तुलना कर सकते हैं कि मान लीजिए जो कच्चा माल मैंने आज खरीदा, अगले महीने अगर मैं वह कच्चा माल खरीदने दोबारा जा रहा हूं तो क्या उसकी लागत में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं, उसकी मूल्य बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। यदि मैं कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करूंगा, यदि मैं कोई खाता नहीं बनाऊंगा तो मैं इस चीज को ढूंढ नहीं पाऊंगा कि पिछले महीने मैंने जो सामान खरीदा था उसकी लागत क्या थी, उसका मूल्य क्या था, और इस महीने जो मैं सामान खरीदने वाला हूं उसका मूल्य क्या होगा। क्योंकि यदि सामान का मूल्य बढ़ रहा है तो हम उसी के हिसाब से अपनी जो वस्तु है, अपना जो सामान है, उसका भी मूल्य बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यदि अगर आपकी लागत बढ़ेगी तो हम अपनी वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस चीज को जरूर बनाइए, खर्चा सारा लिखो, आय सारी लिखो, ठीक है। इसके अलावा आप यह देखो कि व्यापार चलाने के लिए अपने किन किन चीजों को खरीदा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे एसेट हैं, एसेट का मतलब होता है कि जो लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे, वह भी उस डायरी में आप एक जगह पर लिखिए क्या क्या सामान आपने व्यापार के लिए खरीदा है। इसके अलावा आप जब ग्राहकों से मिलते हैं तो जो आपके संतुष्ट ग्राहक है, आप ट्राई करिए, कोशिश करिए उन संतुष्ट ग्राहकों के पते भी आपके पास में हो। यदि ग्राहकों के पते आपके पास में होंगे तो किसी कारणवश अगर कोई ग्राहक आप तक सामान लेने नहीं आ रहा है तो आप अपने सामान को वहां तक जाकर बेच सकते हैं। जैसे जैसे आपका व्यापार आगे बढ़ता है फिर हम और चीजों पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए शुरुआती दौर पर हमने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, ठीक है, और 6-8 महीने की मेहनत के बाद में वह व्यापार में काफी वृद्धि हो गई। अब मुझे ये लगता है कि मैं अकेला उस व्यापार को नहीं संभाल सकता क्योंकि ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं और लागत बढ़ रही है, तो मैं अकेला उस व्यापार को नहीं संभाल सकता। तो फिर हम यह सोचते हैं क्यों ना किसी को साझेदार बना लिया जाए, तो फिर हम साझेदारी में आ जाते हैं। तो इस तरह से समय की मांग के साथ साथ, देखो मैं तो अंत में फिर ये कहूंगा, समय की मांग के साथ साथ हमें किस तरह के व्यापार के स्वामित्व पे जाना चाहिए, एकल व्यापार करना चाहिए या साझेदारी का व्यापार करना चाहिए, वह सब बात जो आती है वह बात आती है कि हमारे व्यापार का स्केल कितना है, क्या हमारे व्यापार में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। और जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ता जाएगा फिर आप बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, जो पैसा हमारे पास में एक्स्ट्रा होता है, मान लीजिए मुझे पता है कि अगले 6 महीने मेरे पास में इतना पैसा ज्यादा आएगा, फिर पैसा नहीं आएगा, तो वो पैसा मैं अपने बैंक में डाल सकता हूं जिसपे मुझे कम से कम ब्याज तो मिलेगा ही, ठीक है। उसमें आप अपना फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, यदि आपका सेविंग खाता है या आपका बचत खाता है तो कुछ ब्याज गवर्नमेंट आपको देती है, सरकार की तरफ आपसे मिलता है, तो इस तरह से आप बैंक खाता खुलवाइए। तो धीरे धीरे एक अच्छे व्यापार की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और यदि इसके बाद भी व्यापार और ज्यादा बढ़ रहा है तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं, क्योंकि यदि बैंक में हमारा पैसा जमा होगा, हमारी साख होगी, तभी बैंक हमें फ्यूचर में हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन प्रदान करेगा। अंत में फिर मैं एक बात को दोबारा दोहराना चाहूंगा, जो बहनें हमारी यहां पर बैठी हैं, इन वर्कशॉप के माध्यम से मैंने आपको एक कागजी तौर पर समझाया है कि व्यापार क्या होता है,
व्यापार कैसे किया जाता है, व्यापार के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद अवसर कैसे तलाशते हैं, अवसर तलाशने के बाद हमें अपना सामान बनाना होता है, सामान बनाते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, इसके अलावा उसका मूल्य निर्धारण कैसे करना चाहिए, और उसके बाद सामान बनाने के बाद उसको कैसे बाजार में बेचा जाए, और बेचते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो हमने सामान बेचा है या जो हमने खर्चा किया है या जो हमारी आय हुई है, उस आय को कैसे एक लेखा के तौर पर एक उसके खाते बनाए जाने चाहिए, एक कॉपी में जरूर, आप एक डायरी में जरूर उसको एंट्री करिए, और धीरे धीरे जब आपका व्यापार बढ़ जाता है तो किन किन बातों का आपने आगे ध्यान रखना है। आशा करता हूं मैं कि इन वर्कशॉप के तीन भाग जो मैंने आपको, आपने जो मेरे तीन भाग देखे, इनको सुनने के बाद आपके मन में यह इच्छा तो जरूर पैदा होगी कि आत्मनिर्भर होना चाहिए आपको। आत्मनिर्भर हुआ जा सकता है। हमारी बहनें, हमारी महिलाएं जो घरों में रहती हैं, जो कम पढ़ी लिखी हैं, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है और परिवार की जिम्मेवारी भी उनके ऊपर है, तो उन महिलाओं को उन महिलाओं में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जरूर आना चाहिए कि वह भी आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार को पाल सकती हैं और अपना गुजारा कर सकती है। अंत में रीड इंडिया के माध्यम से मैं दिनेश मिगलानी आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी तत्परता से और इतने अच्छे ढंग से, इतने प्यार से, इतने अच्छे ढंग से मेरे लेक्चर्स को सुना। धन्यवाद। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर निधि गुलाटी रीड इंडिया लखनऊ से आपके साथ आपके लिए कुछ सिखाने और सीखने के लिए ये कार्यक्रम आओ सीखने के अंतर्गत आप तक लाया गया है। मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए। आज का मेरा विषय है लू लगना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हीट स्ट्रोक। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाहर बहुत गर्मी हो रही है, लू चल रही है। लू क्या होता है? लू गर्म हवाएं होती है, और हम अगर ज़्यादा देर गर्मी में या धूप में रहते हैं तो हमें लू लग जाती है, जिसे हम हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी लू लगने के क्या लक्षण होते हैं और कैसे बचाव कर सकते हो और क्या उपाय होते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि लू लगना क्या होता है या हीट स्ट्रोक क्या होता है। हीट स्ट्रोक अत्यधिक टेम्परेचर यानी कि तापमान में लंबे समय तक रहने के कारण होता है, और इसे तत्काल इलाज की जरूरत होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं गर्मी का मौसम साल का सबसे कठिन मौसम होता है। हालांकि हर कोई अपने आप को इसके लिए तैयार करता है, लेकिन ये गर्मी तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर भी आती है। सबसे प्रमुख हीट स्ट्रोक होता है, जिसको हम लू लगना कहते हैं। जब कोई इंसान ज्यादा देर तक धूप में या गर्मी में रहता है, उसकी शरीर का जो तापमान होता है 102 या 104 डिग्री जब पहुंच जाता है, तो इसे हीट स्ट्रोक का लक्षण माना जाता है। हीट स्ट्रोक आमतौर पे तब होता है जब शरीर में पानी और नमक की मात्रा कम हो जाती है और पसीना आना भी बंद हो जाता है। सामान्य लक्षणों में घबराहट, बेचैनी, उल्टी और बेहोशी का लक्षण दिखते हैं। बेहोशी को पहला लक्षण माना जा सकता है। आइए अब जानते हैं इसके कुछ और लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, सिर घूमना, गर्मी के बावजूद पसीने ना आना, लाल गर्म और सूखी त्वचा होना, मांसपेशियों में कमजोरी होना, उल्टी होना, धड़कनों का तेज होना, सांस लेने में तकलीफ, घबराहट और बेचैनी होना। श्रोताओं, अब जानते हैं कि हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखने पे हमें क्या करना चाहिए। हीट स्ट्रोक से प्रभावित व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। जब तक डॉक्टर नहीं मिलता है, तब तक उसको ठंडी जगह में यानी कि पंखे के नीचे रखना चाहिए। पैरों को ऊपर करके रखें। यदि इंसान होश में है तो उसे पानी पिलाएं। धीरे धीरे शरीर को बर्फ के या ठंडे पानी की पट्टियां करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि हीट स्ट्रोक से बचाव के उपाय क्या होते हैं। अगर आप कोई व्यायाम कर रहे हैं तो उससे पहले और उसके बाद पानी पिएं। हमें कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास या 2 लीटर पानी पीना चाहिए। गर्मियों में अगर ज़्यादा पानी पियेंगे तो अच्छी बात होती है। ठंडे पानी से नहाएं, हल्का व पौष्टिक खाना खाएं, जैसे कि ककड़ी, तरबूज, नारियल, खरबूजा, बेल को अपने आहार में शामिल करें। खूब सारा पानी पिएं, हल्के रंग के और ढीले सूती कपड़े पहनें। ज्यादा देर तक बाहर रहने पर शरीर और कपड़ों पे पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं आप। छाता या टोपी का उपयोग करें। दिन में जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है तो हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी कि हमें कोई काम नहीं करना चाहिए बाहर जाकर, जब तक वो जरूरी ना हो। बच्चों को और बूढ़ों को अगर कोई डिहाइड्रेशन क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हो तो इसका ध्यान रखना चाहिए। जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हमें ORS का घोल देना चाहिए। अगर वो ORS का घोल आपके पास नहीं है तो नमक और चीनी का घोल बनाकर बच्चों को और बूढ़ों को और आप भी ले सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। श्रोताओं, हमें गर्मियों में अपने आहार का ध्यान रखना चाहिए। हल्का खाना चाहिए और पौष्टिक खाना चाहिए और पानी पीना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप इस गर्मियों में
अपना, अपने परिवार का, उन सब का स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: डॉक्टर बॉबी, जैसे कि हम टीबी के बारे में बात कर रहे हैं, तो टीबी के बारे में हमें बताएं कि ये क्या कैसी बीमारी है।
1: टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब संक्रामक रोग जो कि हवा से एक बैक्टीरिया द्वारा होता है और खांसी और हवा से बैक्टीरिया फैल के एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में चले जाता है। इसलिए टीबी एक काफी खतरनाक बीमारियों में जाना जाता है, क्योंकि एक टीबी का पेशेंट अगर एक घर में हो तो बाकी के जो सदस्य घर में रह रहे हैं, या अगर वो कहीं काम करने जा रहा है, जो बाकी के मेंबर्स हैं उसके ऑफिस में आसपास, उनको भी टीबी होने का खतरा होता है। इसी वजह से टीबी काफी तेजी से जो है हमारी सोसाइटी में फैलने का डर रहता है।
0: तो टीबी का रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है?
1: टीबी की रोकथाम के जो उपाय हैं उसमें सबसे पहला है जल्दी से जल्दी टीबी का डायग्नोसिस करना। किसी भी व्यक्ति को अगर खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा चलती है, या बुखार रह रहा है साथ में खांसी है, या खांसी के संग बलगम में खून आने लगा है, तो ऐसे व्यक्ति को टीबी होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं और ऐसे व्यक्ति की तुरंत जांच शुरू कर देनी चाहिए। जांच की सुविधाएं हमारे कम्युनिटी में डॉट सेंटर में टीबी सेंटर्स में उपलब्ध हैं। ये सारी सुविधाएं मुफ्त हैं। इन सुविधाओं में बलगम की जांच ये सबसे पहले की जाती है। मरीज को 3 दिन तक सुबह का बलगम लाने को कहा जाता है, उसको उसकी डब्बी दी जाती है, डब्बी में वो बलगम लेके आता है और उस बलगम की जांच के द्वारा हमें पता चलता है कि इस मरीज को कहीं टीबी का रोग तो नहीं हो गया।
0: अगर किसी को टीबी हो गई हो तो उसका देखभाल और इलाज किस तरह से किया जा सकता है?
1: टीबी एक पूरी तरह से ठीक होने वाला रोग है, परंतु टीबी का जो इलाज है वो अन्य इन्फेक्शंस की तरह छोटा नहीं है। अन्य इन्फेक्शंस का इलाज 7 से 14 दिन 20 दिन तक चल के होता है, परंतु टीबी के मरीज का इलाज कम से कम 6 महीने डॉक्टरी निगरानी में करना बहुत जरूरी है। इसका पूरा इलाज सरकार द्वारा फ्री किया जाता है डॉट सुविधा के तहत, जिसमें पेशेंट को अपनी निगरानी में दवा खिलाई जाती है। टीबी के मरीज को अगर अच्छी तरह से खुराक दी जाए, टीबी के मरीज को एक बंद कमरे में ना रखा जाए, सैर पे भेजा जाए और खुराक में हाई प्रोटीन दिया जाए, तो टीबी तकरीबन सभी केस 95% केस पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और एक बार पूरा इलाज देने के बाद उनको दोबारा इलाज की जरूरत नहीं पड़ती।
0: टीबी का इलाज क्या बहुत महंगा है?
1: टीबी का इलाज महंगा नहीं है, बल्कि सरकारी संस्थानों में जो डॉट सेंटर है वहाँ टीबी का इलाज मुफ्त में किया जाता है, पेशेंट से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, तो एक तरीके से फ्री भी है। अगर प्राइवेटली भी पेशेंट अपना इलाज कराता है तो ये इलाज कोई महंगा नहीं है। दिन की 15 रुपए की दवाई से इसमें ट्रीटमेंट शुरू होता है और 2 महीने के बाद ये 15 रुपए से भी दवाई जो है 7-8 रुपए की रह जाती है।
0: और इनकी जो दवाइयां हैं वो क्या आसानी से उपलब्ध हैं?
1: टीबी की दवाइयां सरकारी संस्थानों में आसानी से उपलब्ध हैं, पेशेंट को दी जाती है, बल्कि पेशेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड डब्बा बना दिया जाता है हर मरीज के नाम का और दवाई उसमें हमेशा अवेलेबल रहती है। टीबी की दवाइयां हर केमिस्ट के पास उपलब्ध हैं, क्योंकि मैंने बताया हमारे देश में टीबी इतनी ज्यादा है कि तकरीबन बोला जाता है कि हर दिन 5,000 लोगों को टीबी का डायग्नोसिस किया जाता है देश भर में। तकरीबन 1,000 लोग एवरी डे उनका देहांत हो जाता है टीबी की वजह से, मतलब 2 व्यक्ति हर 3 मिनट टीबी के रोग के कारण मारे जा रहे हैं। तो इतना ज्यादा टीबी फैला हुआ है, तो दवाइयों की उपलब्धता की समस्या नहीं है। समस्या ये है कि मरीज कई बार ये दवाई समझता है कि मुझे इन्फेक्शन थी, 1-2 महीने में मुझे आराम आ गया, मुझे आगे दवा की जरूरत नहीं है, वो दवाई बंद कर देता है और बंद करने की वजह से इन्फेक्शन 3-4 महीने में दोबारा लौट के अधिक मात्रा में और खतरनाक रूप से सामने आ जाता है। टीबी की इस समय सबसे ज्यादा समस्या है कि हमारे को कम्युनिटी तक ये अवेयरनेस पहुंचाएं कि टीबी का इलाज कम से कम 6 महीने करें और लग के करें, ये कम्प्लीटली क्योरेबल इन्फेक्शन है।
0: डॉक्टर साहब, किस किस तरह की टीबी होती है और उनके इलाज में क्या कोई खास डिफरेंस है क्या?
1: ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। टीबी छाती की चेस्ट की ही नहीं होती, पल्मोनरी टीबी जिसे हम बोलते हैं चेस्ट की टीबी जो खांसी से फैलती है, वो टीबी के मरीज अगर हम 100 देखेंगे तो 80 लोगों को छाती की ही टीबी होती है, परंतु 20 लोगों को छाती के बाहर की टीबी भी होती है। टीबी शरीर के किसी भी अंग को, हड्डी, लिम्फ नोड, लिवर, इंटेस्टाइन, किसी भी अंग को प्रभावित करके वहां रोग पैदा कर सकती है। उसका इलाज तकरीबन सेम दवाइयों द्वारा किया जाता है। जो इलाज की ड्यूरेशन है, जो इलाज का समय है, वो डॉक्टर डिसाइड कर लेते हैं कि ये इलाज 6 महीने चाहिए, 9 महीने चाहिए या 1 साल का चाहिए, परंतु दवाइयां सेम रहती हैं और डॉट्स के तहत ज्यादातर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का भी अच्छा इलाज होता है।
0: डॉक्टर साहब, हर साल 24 मार्च को यानी कि 24 मार्च को टीबी डे मनाया जाता है, इस दिन को सुनिश्चित करने की क्या जरूरत थी और इसका क्या उद्देश्य है?
1: टीबी के लिए भी एक दिन साल में हम लोग को सुनिश्चित करना पड़ा, क्योंकि हमारे देश में या ग्लोबली टीबी की रोग एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। विश्व भर में 8.8 मिलियन टीबी के केसेस हैं और हमारे देश में 1/5 जो केसेस हैं वो हमारे देश से हैं। तो एक दिन निश्चित करके इस दिन द्वारा हम आपको मीडिया द्वारा, गेट टुगेदर्स द्वारा, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स के द्वारा मिलकर डॉक्टर लोग अगर सब जगह ये अपने विचारों को फैलाएं कि टीबी एक कम्प्लीटली क्योरेबल डिजीज है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है जिसका इलाज कराना पेशेंट के लिए जरूरी नहीं है, पूरी परिवार के लिए जरूरी है, नहीं तो ये परिवार में हर व्यक्ति को हो सकती है। इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए जो दिन है ये सुनिश्चित किया गया है, जिसमें सब लोग जो है इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें और जो रिजल्ट हमने पूरे साल मेहनत करके एक्वायर किए हैं उनको भी एनालाइज कर सकें।
0: इस दिशा में सरकार की तरफ से क्या प्रयास रहे हैं और ये प्रयास कहाँ तक सफल हो रहे हैं?
1: सरकार की तरफ से बहुत अच्छे डॉट सेंटर पूरी दिल्ली में बनाए गए हैं और उस सेंटर में ट्रीटमेंट मुफ्त उपलब्ध है, डायग्नोसिस की सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं और पेशेंट्स को वहां पर अंडर सुपरविजन दवाई दी जाती है। इन प्रोग्राम्स के द्वारा दिल्ली में टीबी के पेशेंट्स को बहुत राहत मिली है और जितनी मेरी समझ है ये पॉजिटिव इफेक्ट है हमारी कम्युनिटी में।
0: डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे थे कि जब किसी व्यक्ति को टीबी होता है तो उसके परिवार वालों को भी ये होता है कि इन्फेक्शियस हो सकता है। पहले तो ऐसे होता था कि टीबी सैनिटोरियम्स में छोड़े जाते थे ये लोग और इनके साथ एक छुआछूत का जैसे बर्ताव किया जाता था, तो अब आपका क्या एडवाइस रहेगा कि कैसे इनका इलाज करना चाहिए परिवार वालों को?
1: जब तक टीबी के रोग का ये नहीं मालूम चला कि ये एक इन्फेक्शन है, जब तक इसके दवाइयां 1940 तक नहीं आई दुनिया में, इसकी ट्रीटमेंट नहीं बनी, तब तक टीबी से तकरीबन 100% लोग जो है वो मर जाते थे, मगर इफेक्टिव ट्रीटमेंट के साथ ये ट्रीटमेंट 100% सक्सेसफुल हो गया, अच्छी से अच्छी सेफ दवाइयां आ गई। जब तक पूरा इलाज नहीं था तब तक सैनिटोरियम का इलाज किया जाता था ताकि आसपास के लोगों को बीमारी ना फैले और मरीज को ताजी हवा में, पहाड़ में अच्छी तरह से खुराक दी जाए और धीरे धीरे वो नेचुरली अगर हील हो सकता है तो हो जाए, अदरवाइज कम से कम वो पूरे शहर में बीमारी ना फैलाए। परंतु टीबी के अच्छे इफेक्टिव ट्रीटमेंट की डिस्कवरी के बाद इस तरह के सैनिटोरियम ट्रीटमेंट बंद हो गए, तकरीबन सारे सैनिटोरियम बंद हो गए हैं और घर पे रह के आप डोमिसिलरी ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं आप अच्छी से करवा सकते हैं। इस इलाज से तकरीबन 100% लोग ठीक हो जाते हैं। टीबी के पेशेंट के संग रहने से टीबी होने का खतरा होता है, परंतु जैसे ही आप इलाज शुरू करते हैं 7 से 10 दिन में पेशेंट टोटली नॉन इन्फेक्शियस, मतलब बिल्कुल सेफ हो जाता है, आपको बीमारी नहीं दे सकता। 7 से 10 दिन में जो टीबी के कीटाणु हैं वो इतने क्षीण हो जाते हैं कि वो आपको बीमारी नहीं दे पाते हैं। टीबी के पेशेंट के संग रहने से, खाना खाने से कोई भी टीबी नहीं फैलती है, सिर्फ आपको एक प्रिकॉशन लेनी होगी कि वो जो अपनी स्पूटम या थूक है उसको किसी कंटेनर में जिसमें एंटीसेप्टिक है उसमें डिस्पोज करे, घर में इधर उधर ना फेंके और अपनी बलगम से बने जो क्लोथ्स होते हैं, जो रुमाल है या कोई तौलिया है, उसको भी अच्छी तरह से गर्म पानी में धोए। तो टीबी के पेशेंट्स को घर पे डोमिसिलरी ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा इलाज हो सकता है।
0: वैसे कहा जाता है कि टीबी एक गरीब तबके के समाज के लोगों को ज्यादा असर करता है, क्या ये सही है?
1: टीबी सोसाइटी के हर प्रकार के आदमी को इफेक्ट करता है, इसमें गरीब और अमीर का फर्क नहीं है। आपको अपनी हाइजीन लेवल को मेंटेन रखना है, अगर आप स्वस्थ वातावरण में, ताजी हवा में रहते हैं, अपनी खुराक का पूरा ध्यान रखते हैं, अपने शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको मेंटेन रखते हैं, तो टीबी आपको होने के चांसेस कम है। तो इसमें ऐसी कोई लाइन नहीं है कि गरीब को होगा टीबी, जिसके पास अमीर है या पैसे वाले हैं, ऐसे हर प्रकार के पेशेंट को, इट्स ए इन्फेक्शन, किसी को भी हो सकती है।
0: डॉक्टर बॉबी, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: सब बहनों भाइयों को यही एडवाइस करूंगा कि अगर किसी को भी 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो तो तुरंत डॉट केंद्र में जाके अपना जांच करवाएं। जांच करने के बाद अगर टीबी निकलती है तो मेडिकल अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करके अपना कोर्स कंप्लीट करें। ये कंप्लीटली क्योरेबल डिजीज है, तो इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपना हिम्मत मत हारें और पूरा डट के इलाज करवाएं।

15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के एक गरीब परिवार में जन्मा अब्दुल कलाम। खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन अब्दुल कलाम कभी अखबार बांटता या कभी कोई दूसरा काम करता। वो पढ़ना चाहता था, लेकिन दिलचस्पी विज्ञान में थी। किसी तरह तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में स्नातक परीक्षा पास की। हालात साथ नहीं दे रहे थे, मगर मन ऊंचे आसमान में छलांगे लगा रहा था। चेन्नई गए और अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ा। इसके बाद DRDO ज्वाइन किया और वैज्ञानिक पारी शुरू की। जाने माने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के मार्गदर्शन में काफी कुछ सीखा। सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर बनाया। 1969 में अब्दुल कलाम ने भारतीय उपग्रह संस्थान केंद्र यानी इसरो में काम शुरू कर दिया। उन्हें भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट SLV-3 बनाने का काम मिला और कलाम ने कमाल कर दिखाया। अब्दुल कलाम कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे थे। 1980 में रोहिणी 1 लॉन्च करने के बाद रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर अब्दुल कलाम कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे थे। 1980 में रोहिणी 1 लॉन्च करने के बाद रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। और संयोग देखिए, 80 के दशक में आर वेंकट रमन रक्षा मंत्री थे और अब्दुल कलाम उनके वैज्ञानिक सलाहकार। दोनों ही आगे जाकर देश के राष्ट्रपति बने। वेंकट रमन के जमाने में उन्हें एकदम नई मिसाइल तकनीक पर काम करने को कहा गया। फिर तो भारत की अग्नि और पृथ्वी श्रृंखलाओं ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को चौंका दिया। वो भारत के मिसाइल मैन बन चुके थे। उन्हें पहले पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर उनकी पारी बेमिसाल थी। पोखरण में भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण उनकी अगुवाई में हुआ और एक बार फिर दुनिया ने भारत की परमाणु क्षमता का लोहा माना। ९७७ का साल अब्दुल कलाम की सेवाओं के मूल्यांकन का साल था। उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला और शायद यही वजह है कि 2002 में उनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित हुआ तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों ने उन्हें समर्थन दिया। 25 जुलाई 2002 को वो देश के नए राष्ट्रपति बन चुके थे। एक बेहद सक्रिय राष्ट्रपति के तौर पर उनको याद किया जाता है। राष्ट्रपति भवन को उन्होंने इको फ्रेंडली बनाया और अपने आप को बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम शिलांग के भारतीय प्रबंधन संस्थान में व्याख्यान दे रहे थे, तभी अचानक दिल का दौरा पड़ा और इस महानायक ने हमसे हमेशा के लिए विदाई ले ली।

नमस्ते, मेरा नाम है साक्षी स्वामी। मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का नाम है पेड़ हमारे साथी हैं। पेड़ हमारे साथी है, छाया हमको देते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं, मीठे फल भी देते हैं। पेड़ कितने जरूरी है, फिर भी बेचारे कटते हैं। हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

റീഡ് ഇന്ത്യ മാനെ റൂറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രാമീൺ ശിക്ഷ എവം വികാസ് ഹമാര കാം തോ ലൈബ്രേരീസ് ബനാന ഹൈ ഓർ ആജ് കേ സമയ മേ ജോ ചർച്ച ഹോ രഹി ഹൈ ലൈബ്രേരീസ് ഖാലി കിതാബ് പഢ്നേ കേ ലിയേ നഹീ ഹൈ ലൈബ്രേരീസ് ഏക് ഐസീ ജഗഹ ഹൈ ജഹാൻ ഹം ബഹുത് കുഛ് അപ്നേ ലിയേ ഭീ കർ സക്തേ ഹൈ ഓർ സമുദായ കേ ലിയേ ഭീ കർ സക്തേ ഹൈ മാനെ പഢേ തോ ഹം അപ്നേ ബച്ചോ കോ ഭീ പഢായേ ഹം ബഡോ കോ ഭീ പഢായേ ഹം ഛോട്ടേ ബച്ചോ കേ സാഥ് ഭീ ആക്ടിവിറ്റീസ് കരേ കി കിതാബ് ക്യാ ചീസ് ഹൈ ഓർ കിതാബ് ഉൻകേ ജീവൻ മേ ക്യാ മഹത്വ രഖ്തീ ഹൈ പർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ജർണീ ഇസ് സമയ കേ സാഥ് സാഥ് ഹംനേ യേ സോചാ കി ഹമേ മഹിലാഓ കേ ലിയേ ഭീ കുഛ കാര്യക്രമ കർനേ ചാഹിയേ അഗർ മഹില അപ്നേ ആപ് കോ നിഖാർ സക്തീ ഹൈ അപ്നേ ആപ് കോ സക്ഷം ബനാ സക്തീ ഹൈ ഓർ ജിമ്മേദാരീ അപ്നേ ഷോൾഡേഴ്സ് പേ ലേ സക്തീ ഹൈ കി അപ്നേ ബച്ചോ കാ വികാസ് കൈസേ കർനാ ഹൈ വോ ഭീ റീഡ് ഇന്ത്യ അപ്നേ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈബ്രേരീസ് ഓർ റിസോഴ്സ് സെന്റേഴ്സ് മേ കർതീ ഹൈ ഹംനേ ഔരതോ കേ ലിയേ ബഹുത് ഹീ അച്ഛേ അച്ഛേ കാര്യക്രമ കിയേ ജൈസേ സിലായി സിഖാനാ ബ്യൂട്ടി പാർലർ കി ട്രേനിംഗ് ദേനാ ഓർ ഭീ ബഹുത് സാരി ഐസീ ട്രേനിംഗ്സ് ഹൈ ജോ ഹം അപ്നേ സെന്റേഴ്സ് മേ കർതേ ഹൈ പർ ഉസ്കാ जो आउटकम है जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े बीबीए और एमबीए की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो तो रीड इंडिया ने क्या किया अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं और हम महिलाओं को बोलते हैं यंग लड़कियों को बोलते हैं जो बीए कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है तो श्रोताओं मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

0: मृदंगम ही उनकी धड़कन है। श्री तिरुवारूर भक्त वत्सलम, पद्मश्री 2026। तिरुवारूर 18वीं शताब्दी में कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति संगीतम मूर्ति की जन्मस्थली।
1: मैं एक संगीत के वातावरण में पला बढ़ा। मेरी माँ तिरुवारूर तंजावुर क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थी। जब मैं केवल 2.5 वर्ष का था तब मुझे पिता की अनुपस्थिति महसूस हुई। कहा जाता है माँ एक पवित्र मंदिर के समान होती हैं, और मेरे जीवन में यह बात पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। मेरी माँ ने अपने 3 भाइयों और हमारी जिम्मेदारी उठाई छोटे छोटे संगीत कार्यक्रमों में प्रस्तुति देकर।
0: हर सुबह बालक भक्त वत्सलम अपनी माँ आनंद वल्ली की प्रार्थना और भक्ति गीतों की मधुर स्वर लहरियों के साथ जगता था। वो संगीत से मंत्रमुग्ध हो जाता। माँ ने उन्हें संगीत की शिक्षा देना शुरू किया। यही प्रारंभिक शिक्षा उनके जीवन भर की संगीत यात्रा की मजबूत नींव बनी। कुछ ही समय में वे अपनी माँ और मामा के साथ स्थानीय संगीत कार्यक्रमों में संगत करने लगे।
1: मेरे मामा तिरुवारूर कृष्णमूर्ति, मैंने उनसे जिद करके मृदंगम सीखना शुरू किया। वे मुझे सिखाना तो चाहते थे लेकिन हिचकिचाते थे। संगीतकारों की आय नियमित नहीं होती थी। वे नहीं चाहते थे कि मुझे भी उन्हीं संघर्षों का सामना करना पड़े जिनसे वे गुजरे थे।
0: उस समय चेन्नई भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख केंद्र बन चुका था। देश भर के महान विद्वान और कलाकार वहीं आकर बस रहे थे।
1: जब मैं मद्रास आया तब मैं किसी को नहीं जानता था और न ही कोई सहारा था। मेरी माँ मेरे साथ आने में हिचकिचाई। मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और बहुत आग्रह करके माँ को अपने साथ ले आया। मेरे लिए उन्होंने जो त्याग किया उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने मेरी खातिर उसी छोटे से कमरे में स्वयं को ढाल लिया। हम एक ऐसी बस्ती में रहते थे जहाँ छोटे छोटे घर एक दूसरे से जुड़े हुए। मैं पड़ोसियों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगाकर कमरे को ध्वनि निरोधित करता और घंटों मृदंगम का अभ्यास करता। लगातार 10 वर्षों तक यही मेरी दिनचर्या रही।
0: एक बार प्रसिद्ध गायिका M.L. बसंत कुमारी के साथ व्हाइट हाउस में प्रस्तुति के दौरान आयोजकों ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने माथे पर लगा पारंपरिक विभूति चिन्ह हटा दें, लेकिन भक्त वत्सलम ने इनकार कर दिया। उनके लिए वो उनकी पहचान और आस्था का प्रतीक था और उन्होंने गर्व के साथ अपनी प्रस्तुति दी। वर्ष 1992 में उन्होंने बार्सिलोना ओलंपिक में अपनी प्रस्तुति की। इसके बाद महान कलाकार मैंडोलिन श्रीनिवास के साथ विश्व पटल पर संगत की। भक्त वत्सलम को प्रख्यात संगीतकारों के साथ ने भारतीय संगीत जगत की विशिष्ट पहचान बना दिया। एक नवाचारी कलाकार के रूप में उन्होंने विशाल तालवाद समूहों की ऐसी अनूठी प्रस्तुतियों की संरचना की जिन्हें पहले कभी नहीं सुना गया था। अपनी संस्था लय मधुरा स्कूल ऑफ म्यूजिक के माध्यम से वे 1000 से अधिक शिष्यों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। जो ज्ञान सीखने योग्य है उसे पूरी निष्ठा से सीखो और फिर जीवन भर उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करो।
1: संगीत मेरी सांस है। मैं अगले जन्म में भी मृदंगम ही बजाना चाहूंगा।
0: श्री तिरुवारूर भक्त वत्सलम, पद्मश्री 2026।

आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमने पहले स्लाइड्स में बात करी थी कि हम सबके गोल्स हम डिफाइन करते हैं। लीडर्स हमेशा अपने गोल्स डिफाइन करते हैं और उस पे बाय हुक एंड क्रूक, वेदर दे स्टैंड अलोन, वेदर दे हैव चैलेंजेस, वेदर दे हैव पीपल दोज हु आर नॉट सपोर्टिंग देम, दे वॉक थ्रू ऑल दीज थिंग्स। तो इसको क्या बोलते हैं, चेजिंग योर गोल्स। हम अपने गोल्स को चेज करते हैं कि हम कैसे उनको फुलफिल करें। तो जब हम अपने गोल्स चेज करते हैं, हमारे ड्रीम्स, हमारे एम्बिशंस, तो हमें डिसरिगार्ड द पीपल हु टेल यू इट कैन नॉट बी डन। जो लोग बोलते हैं कि ये तो हवा में बात है, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो सकता, तो उन लोगों को डिसरिगार्ड ही कर देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो क्या होगा, अगर 10 में से 5 लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता, तो आपकी 50% एनर्जी तो उन्होंने लाइक वैनिश कर दी, बिकॉज यू ऑल्सो गेट कंफ्यूज वेदर वी आर एबल टू डू और नॉट, राइट? तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में सुनना नहीं चाहिए, और इसका यही मकसद है। डिसरिगार्ड मींस, मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल बायकॉट कर दो उनके साथ। डिसरिगार्ड मींस डोंट वेस्ट योर एनर्जीज, योर टाइम, योर पेशेंस टू लिसन टू देम, दोज हु आर सेइंग इट कैन नॉट बी डन, बिकॉज यू एज अ लीडर हैज सम मिशन, मीनिंगफुल काम करना है आपको। तो अगर आप मीनिंगफुल काम करने में कोई भी ऐसे बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो वो हमें नजरअंदाज कर देना, हमें सुनना ही नहीं है। टर्न अ डेफ ईयर टू क्रिटिक्स, राइट? बिकॉज क्रिटिसिज्म करना बहुत इजी है, पर साथ चल के काम करना बहुत टफ है। तो मैं ये भी हमेशा अपनी टीम को बोलती हूँ कि अगर कुछ नहीं हो रहा फील्ड पे, तो हमें एनालाइज करने की भी जरूरत है कि शायद वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उनको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। कुछ एम्बिशन होगी लाइफ में कुछ करने के लिए, विदाउट एम्बिशन तो लाइफ ही नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो जब हमें कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है, तो हमारे एम्बिशंस तो हैं ही है, राइट? और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स को कम करेंगे, तो हमारे एम्बिशंस भी लिमिटेड हो जाएंगे, और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर काम करते रहेंगे, और नेचुरली रिजल्ट आएगा। क्योंकि पिछली बार मैंने बोला था कि अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव सोच है, तो व्हेन वी लर्न हाउ टू गिव द रिटर्न विल बी डेफिनेटली देयर, राइट? तो ये वहां भी फिट इन होता है कि व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। गिव अप चेजिंग योर ड्रीम्स इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, बट गेटिंग टू योर गोल्स एंटेल्स हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हमें अपने आप को ऐसे ट्यून करना है कि हम मेहनत करें। हम सब लोग मेहनत कर सकते हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी, पर अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है, अपने आप को टाइम देना है, अपने घर को टाइम देना है, अपने काम को टाइम देना है, और हम कैसे हार्ड वर्क करें, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। मैनी गिव अप एट द थॉट लेवल, कि जब हम थॉट ही लेते हैं अपने माइंड में, हम सोचते ही हैं, तो हम कह देते हैं नहीं नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, इसको तो सोचना ही बेकार है, राइट? होता है ना ऐसे हमारे साथ? और बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं एक्शन लेवल पे। 3-4 दिन काम किया, 5 दिन किया, महीना किया, फिर वी गिव अप, नो आई एम नॉट फाइंडिंग एनी वैल्यू, एनी इंटरेस्ट, एनी थिंग इन इट, बिकॉज वी आर नॉट विजनरीज, राइट? दोज हु डिफाइन द गोल्स विद वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शन गो अहेड टू देयर लैडर अप। हम बोलते हैं, मतलब कि हम कमिट करते हैं, हम उसके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं और अपनी सोच को एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम साथ साथ सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं अपनी प्रोग्रेस की तरफ, तो हम
Somehow we are able to realize our dreams. Somehow we are able to, ambitiously do the things what we want to do. Do you all agree with me what I have said? Chasing your goals. बिल्कुल ये प्रैक्टिकल चीजें हैं. मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखी है यहाँ पे. सारी ये प्रैक्टिकल डे टू डे हमारी लाइफ में हमारे साथ ऐसे ही होता है. तो हम एक स्टोरी छोटी सी मैंने लिखी नहीं है प्रेजेंटेशन में. आई विल जस्ट नरेट अ स्टोरी टू यू. सब लोगों को पता है फ्रॉग उछलता है, छोटे छोटे स्टेप लेके उछलता है बहुत. एक बार एक बहुत सारे फ्रॉग्स इकट्ठे जमीन पे थे और अगर उन अपनी निगाहें ऊपर करके देख रहे थे कि बहुत बड़ा टीवी टावर है. एंड दे कलेक्टिवली डिसाइडेड कि आज हम टीवी टावर पे क्लाइंब करके चले जाते हैं. राइट तो चलना शुरू कर दिया उन्होंने ग्रुप में. थोड़े जो बहुत ज्यादा तेज छलांग मार सकते थे वो ज्यादा तेज आगे बढ़ गए, जो कम छलांग मार सकते थे वो पीछे पीछे थे. कुछ ने तो वहीं पे ग्राउंड पे ही छोड़ दिया और जोर जोर से आवाजें लगाने शुरू कर दी कि पागल हो, क्यों जा रहे हो, गिर जाओगे, इतनी ऊपर जा रहे हो, किसी के पैर के नीचे आ जाओगे, दब जाओगे, ऊपर पहुंच गए तो वापस कैसे आओगे, कोई आपको वहां से गिरा देगा. मतलब कि दे वर शाउटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज. तो तीन चार ऐसे फ्रॉग्स थे जो आगे बढ़ गए और टीवी टावर तक पहुंच गए. एंड दे वर वेरी हैप्पी रीचिंग द टीवी टावर. ऊपर टॉप में पहुंच गए एंड दे सेड ओ गॉड इट्स अ ड्रीम फुलफिल्ड. और वहां से फिर नीचे आ गए क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी. वहां पे अपना झंडा लगा दिया उन्होंने कि हमने तो टीवी टावर के टॉप पे पहुंच गए. जब वापस आए तो नीचे जो फ्रॉग्स बैठे हुए थे उनकी वेट कर रहे थे, जो आधे रास्ते से वापस आ गए थे और जो गए ही नहीं थे, थॉट लेवल पे ही गिव अप कर दिया था, वो सारे बैठे और उन्होंने वो दो तीन जो फ्रॉग्स थे उनसे एक एक करके पूछा कि तुम लोग कैसे चले गए वहां पे. और जो भी हमने तो इतना शाउट किया था, मत जाओ, डर रहे थे हम लोग, तो जिसने टॉप पे पहुंच गया था ना वो फ्रॉग कहते हैं कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं आप क्या कह रहे थे मुझे, क्योंकि मैं तो बहरा था. वो फ्रॉग ही बहरा था, उसने कुछ सुना ही नहीं. लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसने आस पास परवाह ही नहीं करी कि क्या हो रहा है, क्या शोर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा. बस उसके माइंड में तो एक ही था कि मुझे टीवी टावर पे जाना है. तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. इसके टर्न है डेफ ईयर टू क्रिटिक्स. तुम सुनो ही नहीं कि लोग क्या बोल रहे हैं, कि तुम्हारा मिशन इतना क्लियर है, तुम्हारा तुम्हारा गोल इतना क्लियर है कि आपको वो कंबाइन करना है. बाकी के दो से पूछा कि तुम

खा जाए तो बहुत छोटा सा होता है। तो वो क्या टीवी टॉवर पे चढ़ने का, तो वो उसने तो अपनी लाइफ में इमेजिन ही नहीं किया होगा कि कभी टीवी टॉवर पे मैं चढ़ जाऊंगा। पर उसका गोल बहुत क्लियर था, उसका माइंड में बहुत ही पावर थी कि उसको चढ़ना है। और दो लोग जो उसके साथ चढ़े वो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, क्योंकि उनका ट्रस्ट फैक्टर था उसके ऊपर कि ये अगर चढ़ जाएगा तो हम भी चढ़ जाएंगे। तो ये इन नटशेल इस स्टोरी को आप प्लीज याद रखना, और अपने गोल्स को कैसे चेस करना है वो इस स्टोरी के माध्यम से, बहुत इजी स्टोरी है, और इस माध्यम से आप जरूर अपने गोल्स को चेस कर लोगे और पहुंच भी जाओगे। तो आई फाउंड दिस स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग, आई थॉट लेट मी शेयर विद यू। बहुत लंबी स्टोरी थी, मैंने तो उसका जिस्ट बताया आपको। तो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम दीज स्मॉल स्मॉल स्टोरीज एंड अचीव आर बिग गोल्स। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स, फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व। हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर एक के काम में प्रॉब्लम्स है। वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स, वी एनकाउंटर हर्डल्स दैट सीम टू ब्लॉक आर प्रोग्रेस। बहुत सारे हर्डल्स आती हैं और हमारी जो अचीवमेंट है उसको वो ब्लॉक कर देती है। वी ऑलवेज डिस्कस एंड हाईलाइट द हर्डल्स एंड आर ऑब्सेस्ड बाय देम एंड फेल टू ऑब्जर्व द अपॉर्चुनिटीज दैट मे बी ओपनिंग अप इन फ्रंट ऑफ अस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जब मैं पढ़ रही हूँ तो सुबह मैं जब अपनी टीम के साथ बात कर रही थी तो ये बहुत फिट बैठती है वहां पे, कि हम हाइलाइट्स करते हैं जो हर्डल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, और हम उस इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उसके साथ कि हम हमेशा फेलियर्स की ही बात करते हैं। पर उसमें से एक जो रे ऑफ होप है, जो एक सनशाइन की छोटी सी किरण है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और उसमें से जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, जो हमारे सामने आने वाली हैं, हम उसको बिल्कुल ही उस ब्राइटनेस से नहीं देखते जैसे मैं एक सन की रे की ब्राइटनेस की बात कर रही हूँ। तो अल्टीमेटली वही है चीज जो मैंने पहली स्लाइड्स में बोला था, कि हम हमेशा क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं, हम अपनी परेशानियों को ज्यादा लेके बैठ जाते हैं, हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और जो हमें अपॉर्चुनिटीज, कई बार ऐसे होता है कि हम 80% अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर जाते हैं और 20% में हम फिर नीचे डाउनफॉल आ जाता है। हम अपने आप को इतना स्ट्रांगली बना पाते कि हम 20% और मेहनत कर रहे हैं तो शायद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस चीज का भी हर समय हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं बहुत आई एम वेरी पॉजिटिव इन द सेंस कि आई एम वेरी आई नो एवरीथिंग कि चैलेंजेस क्या आते हैं, बट उन चैलेंजेस को लेके बैठे रहेंगे तो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। पर अगर हम अपॉर्चुनिटीज को भी देखेंगे कि क्या है, तो तभी आपको पता है ट्रेनिंग्स में हम बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स भी यूज करते हैं, स्वॉट एनालिसिस दिस दैट, पर द मेजर स्वॉट एनालिसिस इज योर थॉट प्रोसेस विच इज द इनर वॉइस व्हाट इज टेलिंग यू, राइट? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वी फोकस ऑन प्रॉब्लम्स रादर देन द सॉल्यूशंस। The psychologists have proved that what your mind focuses on that tends to grow. Scientists ये भी कहते हैं कि हमारे ब्रेन में 80% जो नेगेटिविटी है वो इतनी हावी हो जाती है कि हमें पॉजिटिव सोचने ही नहीं देते। पर हमें अपने आप को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ऐसा ट्यून करना है कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ें। और अपॉर्चुनिटीज ऐसे डोर स्टेप पे तो बहुत ही कम आती हैं, अपॉर्चुनिटीज को भी चेस करना पड़ता है। और अपॉर्चुनिटीज को चेस हम तभी कर सकते हैं जब हम 100% कमिटेड हैं अपने गोल की तरफ कि हमें ये करना ही करना है। अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं, ये सारे जार्गन्स हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं ना कि हम एक अल्टरनेट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज। अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता कहाँ खुल रहा है, तीसरा रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा, हम कैसे उस रास्ते पे चलें कि हम अपने जो पड़ाव है उनको पार कर लें। सो द प्रॉब्लम्स लुक बिगर

Focus on gaps and resolve the problems. The last point is very, very important. कि हम अगर gaps को analyze कर लें और हम उसके ऊपर बातचीत करें अपनी टीम के साथ कि हम इन gaps को कैसे resolve करें, तो हमारे problems के बहुत सारे solutions हम खुद ही निकाल सकते हैं और हमें किसी से मदद लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. Next, I'm talking about the best qualities of a good leaders are vision. Great leaders have a vision. They can see into the future. They have a clear, exciting idea of where they are going and what they are trying to accomplish and are excellent at strategic planning. मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में पहली दो स्लाइड्स में बताया. ये डेफिनेशन है कि ग्रेट लीडर्स विजन होती है, हम बहुत देर से बात कर रहे हैं इसकी. दे कैन सी द फ्यूचर, वो जो मैं रे ऑफ सनलाइट की बात कर रही हूँ. दे हैव अ वेरी क्लियर एक्साइटिंग आइडियाज, उनके आइडियाज बहुत क्लियर हैं, बहुत एक्साइटेड हैं. एंड दे आर गोइंग वेयर दे आर गोइंग एंड वॉट दे आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश, वो उनको सब क्लियर है. एंड दे हैव वेरी एक्सेलेंट, वेरी गुड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऑल्सो. तो जो लीडर्स हैं उनमें ये सब हुनर हैं और इन हुनर को शेप देके वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वही विजनरी कहलाते हैं. दूसरा क्या है? करेज. वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर इज करेज. अब वो फ्रॉग में तो करेज ही था जो नीचे से जमीन से खड्डे में से निकल के टीवी टावर पे क्लाइंब कर गया. Having the quality of courage means that you are willing to take risks in the achievement of your goals with no assurance of success. अब आज अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती हूँ, मैं प्रपोजल लिखती है, स्मिता हम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट, मुझे ये तो नहीं पता कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा. मैं बिल्कुल नहीं डिफाइन कर पाती हूँ. क्या मुझे पता था कोविड आ जाएगा जब हम प्रपोजल लिख रहे थे? पर हमने क्या किया, कोविड में हमने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी. हम आईसीटी प्लेटफॉर्म पे आ गए और हम बेटर अचीव कर पाए क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पे कनेक्ट कर लिया और हमारे कार्यक्रम कहीं पे भी रुके नहीं. तो करेज था कि हम कैसे करें. अभी बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिसेस हैं वो बंद पड़े हैं जो सितंबर 2020-21 में खुलेंगे. बट हम सेंटर्स भी खोल के बैठे हैं, हम ऑफिस भी खोल के बैठे हैं, हम ट्रैवल भी कर रहे हैं बिकॉज वी आर टेकिंग द रिस्क. व्हाई रिस्क? रिस्क इज नॉट ओनली फॉर माय ओन जॉब, रिस्क इज फॉर द वर्क द होल ऑल द सेंटर्स ऑफ रीड इंडिया इज डूइंग इन इंडिया. दे आर रीचिंग टू 400,000 प्लस पीपल. उनका क्या होगा, वो काम कहाँ जाएगा? वो गोल तो अचीव करना है हमें, तो वो कलेक्टिव गोल है जो हमें अचीव करना है, तो हम रिस्क भी ले रहे हैं, राइट? और मुझे एश्योरेंस नहीं है सक्सेस की. मुझे आज नहीं पता कि रीड इंडिया का अगले साल एनुअल टर्नओवर क्या होगा बिकॉज बस हम मेहनत कर रहे हैं, हम प्रपोजल्स लिख रहे हैं, हम डोनर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग डोनर्स इफ बेनिफिशरीज हैं इस लाइन पे, मैं उनको भी एजुकेट करना चाह रही हूँ इस लेवल पे कि हमारे जो डोनर्स हैं हमारे साथ पिछले 6-6 साल से काम कर रहे हैं. क्या है? ट्रस्ट है. क्या देखते हैं? कि ग्राउंड पे हम अच्छा काम कर रहे हैं. क्यों हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं? क्योंकि हम उनको फुल रिस्पेक्ट और बहुत डिग्निटी से हम उनके सामने बात करते हैं. फोर्थ पॉइंट क्या है कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं उनके सामने. जो रियलिटी है वही हम उनको बताते हैं कि ऐसे रियलिटीज हैं, ये चैलेंजेस हैं, हम इसको फेस कर रहे हैं. कोविड के दौरान हमने उनको बोला कि हम नहीं ट्रैवल कर पाएंगे. इट वॉज यूनिवर्सली नोन टू एवरीवन, बट हम आईटी प्लेटफॉर्म पे आ गए. आईटी प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है, इमीडिएट नीड्स क्या है, कम्युनिटी की मास्क चाहिए, खाना चाहिए, सैनिटाइजर्स चाहिए. इमीडिएटली दे शिफ्टेड टू ऑल दीज थिंग्स. किसने उनको बोला करने के लिए? हम ही ने बोला. तो ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने हम पे विश्वास किया.
और कोई ऐसा डोनर नहीं है एक्सेप्ट वन और टू अमॉन्ग 13-14 डोनर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कि किसी ने एक साल में ही हमारे साथ काम करके बंद कर दिया हो. दे ऑल आर कंटिन्यूइंग विद अस. सो बिकॉज देर इज नो सर्टेनिटी इन लाइफ और बिजनेस, एवरी कमिटमेंट यू मेक एंड एवरी एक्शन यू टेक एंटेल्स अ रिस्क ऑफ सम काइंड. हम कुछ भी करते हैं उसमें रिस्क तो है ही है, पर हम रिस्क को सोच के बैठे रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे. हम करके उस रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे, वो हमारा एक्शन है, राइट? तो जब हम कहते हैं वर्ड्स थॉट्स एंड एक्शन, तो जब हम एक्शन लेते हैं तो हम रिस्क को साथ में लेके चलते हैं, और रिस्क को मिटिगेट करना भी हमें सिचुएशंस सिखाती हैं, राइट? तो दिस इज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ए लीडर. आप लोग सब ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आपका रोजमर्रा का ये काम है कि आप क्या रिस्क आपके सामने आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं. और आपको नहीं पता, आपको पता था आपके स्कूल बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं पता था. आपने जब स्कूल चलाए थे तो आपने हमें तो नहीं ये कमिटमेंट दी थी कि एक साल के बाद हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, क्योंकि हम बिजनेस की तो बात ही नहीं कर रहे थे. तो चैलेंजेस हमने भी समझे आपके, हमने कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट दी, बट विजन हमारी एक थी कि हम पूरे भारत में स्कूल चलाएंगे, हम पूरे भारत में लाइब्रेरीज बनाएंगे, हम पूरे भारत में औरतों को सक्षम करेंगे, हम पूरे भारत में आत्मनिर्भरता का नारा लगाएंगे कि हमने औरतों को सक्षम बनाया, वो अब अपना पैसा कमा रही है, चाहे 2,000 कमाए, चाहे 4,000 कमाए, चाहे 6,000 कमाए, राइट? और हमारी कोशिश हमेशा रहेगी उनको हम 2,000 से 6,000 तक लेके जाए, 6,000 से 12,000 तक लेके जाए, ये कोशिश हमने करनी करनी है. सेंटर्स को सेल्फ सस्टेन करना है, ये हमारा गोल है, हमारा मिशन है. हम कैसे करें उसको हमें करना है. जो मैं अभी ट्रूथफुलनेस की बात कर रही थी, इंटीग्रिटी में वही लिखा हुआ है, इंटीग्रिटी रिक्वायर्स दैट यू ऑलवेज टेल द ट्रूथ टू ऑल पीपल इन एवरी सिचुएशन. ट्रूथफुलनेस इज द फाउंडेशन क्वालिटी ऑफ द ट्रस्ट दैट इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस. कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमारा ओपननेस ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए हर एक सिचुएशन पे, क्योंकि हम मैं ये डेफिनेशंस क्यों शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि हम एक सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी है. इवन बिजनेस में भी बहुत जरूरी है. मैं ये नहीं कहूंगी कि बिजनेस में तुम झूठ बोल सकते हो. जितना तुम सच बोलोगे, जितने तुम ट्रांसपेरेंट रहोगे, उतना आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा. द बेस्ट क्वालिटीज अगेन अनदर इज ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी डज नॉट मीन दैट यू आर वीक और अनश्योर ऑफ योर सेल्फ, राइट? इट मीन्स दैट यू हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस टू रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ अदर्स विदाउट फीलिंग थ्रेटन्ड. समझ में आया सबको? मतलब कि अगर मैं बहुत ही हलीमी से बात करती हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ, बहुत प्यार से बात करती हूँ, दैट डजेंट मीन कि मैं कमजोर पर्सनैलिटी हूँ या मुझे अपने के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है. इसका ये मतलब है कि मैं बहुत हलीमी से बात कर रही हूँ, पर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, मैं सेल्फ अवेयर हूँ, और मैं जो लोग मुझे वैल्यू मेरे में वैल्यू देखते हैं वो तो मेरे लिए थ्रेट नहीं है, पर अगर मेरी वैल्यूज के ऊपर मतलब कि दे आर थ्रेटनिंग मी, तो आई एम नॉट टेकिंग दोज, राइट? तो ह्यूमिलिटी पर्सनालिटी में लाना बहुत जरूरी है. दिस इज वन ऑफ द रेयरर एट्रीब्यूट्स और ट्रेट्स ऑफ गुड लीडर्स, बिकॉज इट रिक्वायर्स कंटेनमेंट ऑफ वन्स ईगो. अपनी ईगो को हम पैरों में लेके चलते हैं, क्योंकि हम ईगो को अगर सिर पे लेके चलेंगे तो हमें हर एक की बात बुरी लगेगी, हमें हर एक का कमेंट बुरा लगेगा, हम क्रिटिसिज्म में चले जाएंगे, हम पॉजिटिव सोच को नेगेटिव में बदल देंगे. पर अगर हम अपनी ईगो को अपने शूज में डाल के रखेंगे तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, जो हमारी सोच है, वो इतनी क्लियर होगी और वो हमारे गोल के ऊपर फोकस करेगी,
without any selfish interest, right? It means that you are willing to admit you could be wrong, that you recognize you may not have the answers, but it means that you give credit where credit is due, which many people struggle to do. बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं कि ये फ्लैग तो हमारे कंधे पे ही लगना चाहिए. हम कभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते और हम अपनी गलतियां दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि ये अगर गलत हुआ तो उसकी वजह से हुआ. मैं तो ठीक था, बिल्कुल. मैं तो टीवी टावर पे चढ़ रहा था. अगर वो डेफ नहीं होता तो वो किसको ब्लेम करता? जो नीचे से शाउट कर रहे थे फ्रॉग्स, जो आधे रास्ते से उनको कह रहे थे वापस चलो वापस चलो, जो नीचे से कह रहे थे ये तो पागल है, इनका तो दिमाग खराब है, टीवी टावर पे चढ़ के क्या करेंगे. पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो नहीं चढ़े. पर उसने क्रेडिट किसको दिया? जो दो लोग दूसरे थे, दो फ्रॉग्स दूसरे थे, उसने क्रेडिट किसको दिया? जो डेफ था उसने उसको दिया कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं श्योर. और जो दो वो थे उसने बोला हमारा लीडर चढ़ रहा था तो हम भी चढ़ गए. लीडर एक दूसरे को क्रेडिट देना भी एक बहुत बड़ी कला है कि अगर हम कुछ अचीव करते हैं तो टीम की वजह से अचीव करते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं. तो क्रेडिट भी देना बहुत जरूरी है और ये अपनी पर्सनालिटी में आप इम्बाइब कर सकते हैं. ये जो तीन क्वालिटीज मैं ह्यूमिलिटी की बता रही हूँ ये बहुत लाइफ में पे करती हैं इन द लॉन्ग रन. इतनी ज्यादा पे करती है ना कि इसका इम्पैक्ट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, राइट? और ये ऐसी क्वालिटीज हैं तीनों की वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपकी पर्सनैलिटी के साथ इतनी इम्बाइब हो जाती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ही वही बन जाती है. तो अगर एक लीडर बनना है तो इसके ऊपर आप जरूर फोकस करिए और जो बाकी के तीन है ना, विजन, करेज और इंटेग्रिटी, ये अपने आप आ जाते हैं. बिकॉज इफ यू हैव दिस ह्यूमिलिटी एज योर पर्सनैलिटी ट्रेट, देन द रिस्पॉन्स इज 100% श्योर. You will definitely get the response. उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है. The best qualities में तीसरा आ रहा है ये strategic planning. Leaders have the ability to anticipate trends well in advance of their competitors. Competitors तो हर एक जगह पे ही होते हैं. NGOs मशरूम कर रही हैं इतनी, पर हम उनको threat ना मान के अगर हम उनके ट्रेंड्स को समझ लें कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या करें, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें तो ये बहुत अच्छी बात होती है. दे कॉन्टिन्यूअली आस्क बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग टुडे, वेयर इज द मार्केट गोइंग, वेयर इज इट लाइकली टू बी इन 3 months, 6 months और 1 year or 2 years. दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. फॉर एग्जाम्पल, अब आप सब लोग प्रोडक्शन यूनिट्स भी चला रहे हैं और वोकेशनल सेंटर्स भी चला रहे हैं. अब आने वाले टाइम में जो NGOs पॉलिसी लेवल पे काम कर रही हैं उनको फंडिंग नहीं मिल रही है, बिकॉज सरकार कहती है हमें तो अभी मतलब कि ग्रासरूट्स में काम चाहिए, राइट? तो हम लोग क्या हैं, अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो हम एक बेटर स्टेक पे हैं कि हमारे फंड्स क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, क्योंकि हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनको जरूरत है, जिनके साथ हमें अभी काम करना है, उनको सक्षम बनाना है. तो दैट्स व्हाई द डोनर्स, जब मैं कह रही हूँ कि वो हमें पिछले 5 साल से 6 साल से सपोर्ट करें, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ग्राउंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, ग्राउंड पे काम कर रही है. और जब हम मैं बिजनेस की बात करती हूँ तो ये सोच आपको बनानी है जब आप अपने सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस की बात करें कि मार्केट क्या मांग रही है, अगले 3 महीने में मार्केट क्या मांगेगी, अगले 6 महीने में मार्केट क्या मांगेगी और अगले 2 साल में क्या ट्रेंड्स होंगे. दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. और ये इतना बड़ा गैप है हमारे लीडर्स में जो हमारे सेंटर्स चला रहे हैं कि हम इस पे सोच नहीं बना रहे हैं, राइट?
हम आज के बारे में सोचते हैं और एक महीने के बारे में सोचते हैं, पर उसके बियॉन्ड हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम इतने इंग्रॉस्ड हैं और सब चीजों में, हम ये सस्टेनिंग एंटरप्राइज को लेके फोकस नहीं हो पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटेटिवनेस, ओनली द लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन एक्यूरेटली एंटिसिपेट फ्यूचर मार्केट्स कैन पॉसिबली सर्वाइव। ओनली लीडर्स विद फॉरसाइट कैन गेन द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होती है कि हम जितने लोग और भी काम कर रहे हैं उनसे हम आगे अलोन कैसे, सबसे आगे कैसे स्टैंड करें। तो ये जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अब मैं बात रीड इंडिया की नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, अब मैं आपके इंडिविजुअल सेंटर्स की बात कर रही हूँ, उसको मैं नाम दे रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेके जा सकते हैं? क्या आप लोग मुझे एक पेज विजनरी नोट लिख के दे सकते हैं दैट यू रिफाइन एंड मेक एज योर गोल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टेकिंग लीडरशिप ट्रेनिंग्स। दिस इज द प्रैक्टिकल एक्शन विच यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, राइट? तो मैंने पिछली बार जब वो उनकी ट्रेनिंग हुई थी स्टोरी टेलिंग की सैटरडे को, तो मैंने बोला था कि आप अपने सेंटर्स के बारे में अपनी अपनी स्टोरी, जब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। कि आप जहाँ बैठे हो आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या विजनरी हो उसको कहाँ लेके जाना चाह सकते हो, क्या आप लिख के दे सकते हो मुझे? दैट विल बी अ ग्रेट ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट? दे फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द थिंग्स दैट द कंपनी डज बेस्ट इन सेटिस्फाइंग डिमांडिंग कस्टमर्स इन ए कॉम्पिटेटिव मार्केट प्लेस। आप किस पे फोकस कर रहे हो? अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास कंप्यूटर्स हैं, आप डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हो। जिनको कंप्यूटर्स नहीं आता, कभी आपने उनको बोला कि आगे आने वाले टाइम पे देखो, कोविड ने ही हमें सिखा दिया कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म आना चाहिए। जिनको नहीं आता, दे आर हाईली क्वालिफाइड बट दे आर अनएजुकेटेड। बिकॉज अगर कंप्यूटर यूज करना नहीं आता तो हम अपनी लाइफ को आगे कैसे चलाएंगे? मुझे पेटीएम नहीं आता था, मैंने पेटीएम सीखा। मुझे बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑनलाइन नहीं आती थी, मैंने बैंकिंग ट्रांजेक्शन सीखी। बिकॉज बैंक कह रहे थे कि 60+ के लोगों को हम बैंक आना अलाउ नहीं करेंगे, हम नहीं एनकरेज करते। तो टाइम ने मुझे सब कुछ सिखाया। इसी तरह से अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, हम एक पेपर पे लिखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम, हमारे कस्टमर्स कौन है, हमारे बेनिफिशियरीज, राइट? और हम उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी सर्विसेज से, हम कैसे इसको सेल्फ सस्टेन बना सकते हैं, दैट यू पीपल हैव टू टॉक एंड डिसाइड, राइट? Your ability as a leader to call the shots and make sure that everyone is focused and concentrated on the most valuable use of their time is essential to the excellent performance of the enterprise. मैंने जान के ये बिजनेस लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे, बिकॉज हमारा 1/3 फोकस ऑर्गेनाइजेशन का एंटरप्राइज ही है। तो इसका ये भी मतलब है कि क्या हम अपना टाइम जो 8 घंटे 10 घंटे हम लगा रहे हैं वो हम फ्रूटफुली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एवरी डे वेदर इट्स एडिंग वैल्यू टू माई ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, ये बहुत जल्दी आपके ऊपर भार आने वाला है। ये बहुत जल्दी अभी आप अपनी संस्था को चलाने के लिए आगे बढ़ेंगे और ये सारे पॉइंट्स आपको उस समय याद आएंगे कि गीता मैम ने ये सारे पॉइंट्स हमें बताए थे, राइट? द लास्ट पॉइंट इज कोऑपरेशन। गेन द कोऑपरेशन ऑफ अदर्स बाय मेकिंग ए कमिटमेंट टू गेट अलोंग वेल विद ईच की पर्सन एवरी सिंगल डे।
रोज आप अपने कनेक्शंस, अपनी नेटवर्किंग, अपने स्टाफ का लाइक यू नो टीम वर्क को हमेशा ये सोचो कि हम कैसे रिफाइन करें इसको, हम कैसे इकट्ठे आगे बढ़ सकते हैं, किसमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं। आपको मैं ये भी बोलूंगी कि आप ये एक एक्सरसाइज करो, मैं भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रीड में करूंगी कि हमारे जितना स्टाफ है 5-6 हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन। सी दीज 5 जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, these 5 qualities I have the strength, I can contribute additionally. Do this exercise, this will really help you to do that, right? You always have a choice when it comes to a task. You can do it yourself or you can get someone else to do it for you. Which is it going to be? Ye exercise aapko bahut bahut help karegi. मैं दोबारा से ये पॉइंट्स पढ़ना चाहूंगी आपके सामने, बहुत इम्पोर्टेंट है, विजन, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन। ठीक है, आप इनको सेल्फ एनालिसिस भी करें और ये सातों पॉइंट टीम में बैठ के डिस्कस भी करें, और जो एक्शन पॉइंट्स मैंने बताया अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो आई एम 100% श्योर यू कैन रीच द टीवी टावर, राइट। लीडरशिप स्टाइल, बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल हैं, बहुत सारे, बट मैं जो हमारे को सूट करता है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल, हम कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज, हम ऐसे ही थोड़ा लिख रहे हैं उसको, अभी हम डायरी प्रिंट करा रहे हैं आप सब लोगों के लिए, उसके ऊपर लिखा है 14 इयर्स ऑफ सर्विस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज, झूठ तो नहीं लिख सकते ना, हम कर रहे हैं तभी तो हम लिख रहे हैं ना। इज ऑफन डिफाइंड एज अ सिंगल मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल, दिस स्टाइल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग द लेट 1970s एंड लेटर एक्सपेंडेड अपॉन बाय रिसर्चर बर्नार्ड एम्बास। मैं क्यों ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो जार्गन्स हैं ये कहीं ना कहीं सच हुए हैं और तभी हम इनको आगे लेके चल रहे हैं और हम इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, दीज लीडर्स टेंड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक एंड पैशनेट, दे आर नॉट ओनली कमिटेड टू हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल but also to helping group members fulfill their potential. This sentence mein maine summarize kiya hai jo last 7 points maine bataye hain ek leader ki qualities ke bare mein. ab leader ki qualities to bata di ki leader ko karna kya hai, pehle to humne goals bhi chase kare, fir humne apne wo points bhi yahan pe highlight kare best qualities ke, फिर अभी हम कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बेस्ट है क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। इमोशनली इंटेलिजेंट का मीन्स है कि मैं दूसरों के पर्सनालिटी की कदर करती हूँ, उनके थॉट्स की कदर करती हूँ, उनके जो वॉट एवर दे आर शेयरिंग और सेइंग और हेल्पिंग आई रिस्पेक्ट दैट, और ये एनर्जेटिक भी है और पैशनेट भी है, तो इन सबको कंबाइन करके हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं ये हमें बहुत ध्यान रखना है। रिसर्च शोज दैट दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप रिजल्ट्स इन हायर परफॉर्मेंस। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा हायर होगी एंड मोर इम्प्रूव्ड ग्रुप सेटिस्फेक्शन, आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपकी सोच के मुताबिक कर रहे हैं, हमारी सोच कॉमन है, हमारे थॉट्स कॉमन है और हमारे एक्शन भी कॉमन है। तो ये इस पे रिसर्च हो चुकी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है ये हमेशा संस्था को आगे लेके जाता है, कभी भी संस्था को पीछे नहीं करता है, क्योंकि हम डिक्टेटर नहीं हैं, हम मींस रॉब से और दबाव से काम नहीं करा रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट करके काम करा रहे हैं, हम लोगों को इंस्पायर करके काम करा रहे हैं। तो यही एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने का बेस्ट तरीका है।
The last slide is कि जब हम motivation की बात कर रहे हैं, मैंने अभी motivation word use करा था, तो motivation है क्या चीज? हम बहुत word use करते हैं कि हम motivation use करा था, तो motivation है क्या चीज? हम बहुत word use करते हैं कि हम motivation कर रहे हैं, हम motivate कर रहे हैं, पर उसको समझने की भी जरूरत है. Motivation is the process that initiates, guides and maintains goal-oriented behaviors. It is what causes you to act. Motivation ye nahi ki humne do baat kar di to motivate ho gaye hum. Hame usko action mein kaise lana hai, apne behavior mein kaise lana hai, ye bhi bahut important cheez hai. Three points hain iske: activation, persistence and intensity. हम मोटिवेट तो करके हम अगर चुप करके बैठ जाएंगे तो कोई भी मोटिवेट नहीं होगा. उसके साथ हम बोलते हैं ना कि हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं. हैंड होल्डिंग का क्या मतलब है कि हम उनके साथ एक्टिवेशन मतलब कि वी आर वॉकिंग विद देम, राइट, वी आर डूइंग वर्क विद देम. और परसिस्टेंस जो मैंने बोला था, परसिवेरेंस एक स्लाइड में पिछले तीन चार सेशन में मैंने बात की थी, परसिस्टेंस की कितना उसको कॉन्टिन्यूसली करते हैं, चाहे फेलियर्स आए चाहे चैलेंजेस आए, और किस इंटेंसिटी के साथ करते हैं. अगर हम एक्टिवेशन, परसिस्टेंस और इंटेंसिटी को कंबाइन करके हम एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं, तो तभी हम कह सकते हैं कि हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, राइट. हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड का पीछे मीनिंग होता है. बहुत सारे, मैं इधर एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. हम ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, राइट. हम बटन दबाते हैं तो ट्रेडमिल चलता है. तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं ट्रेडमिल को. हम चल रहे हैं, हम दो मिनट करते हैं, हम थक जाते हैं, हमारी बॉडी हमें बोलती है कि नहीं, अब हम नहीं और भाग सकते. वही मैं ब्रिगेडियर वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ कि पहले तो तुम अपनी लेग से भाग रहे थे, अब अपने माइंड से भागो. तो हम परसिस्ट करते हैं, हम घड़ी देखते हैं, अच्छा 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट. जब हम 10 मिनट ट्रेडमिल पे भाग लेते हैं इंटेंसिटी के साथ, तो क्या हुआ, हमारा जो, हमारे पसीने भी छूटते हैं, हमारा वेट भी कम होता है, तो हम स्लोली अपने गोल पे पहुंच रहे हैं कि आज मुझे अगर 1 महीने में मुझे 10 किलो वेट कम करना है, तो मुझे ट्रेडमिल में 10 मिनट से कम नहीं भागना है, राइट. दैट इज मोटिवेशन, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन. और जो जिम में कोच होता है वो आपको मोटिवेट कर रहा है, इंटेंसिटी आपकी वर्ड आ रहा है, आपको परसिस्टेंस की बात कर रहा है, आपको बोल रहे ट्रेडमिल पे भागो. बहुत सिंपल एग्जाम्पल से मैंने आपको ये चीज समझाई कि मोटिवेशन है क्या. हमारे यहाँ पे लड़कियां आती हैं सीखने के लिए और हम बीच में ही छोड़ देते हैं उनको, वो चली जाती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम उनको मोटिवेट इन तीनों पॉइंट से नहीं कर पा रहे, राइट. तो ये बहुत जरूरी है. हेल्प इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पीपल एज दे वर्क टुवर्ड्स गोल. एफिशिएंसी इम्प्रूव करने की जरूरत है. हेल्प पीपल टेक एक्शन. एनकरेज पीपल टू एंगेज इन हेल्थ ओरिएंटेड बिहेवियर्स. हेल्थ ओरिएंटेड बिहेवियर्स मतलब कि अगर तबीयत ही खराब हो गई तो वो सेंटर में तो आएगी नहीं, राइट. हेल्प पीपल अवॉइड अनहेल्थी एंड मैल एडेप्टिव बिहेवियर्स. ये दूसरा रिस्क मैं बात कर रही हूँ कि जो अनहेल्थी प्रैक्टिसेस है उसको रोकने की जरूरत है, राइट. बहुत जरूरत है रोकने की, क्योंकि हमारा माइंड इतना नेगेटिव भागता है कि हम छोटी छोटी बात पे दूसरों के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं, हमें विश्वास ही नहीं बैठता. ये ह्यूमन टेंडेंसी है, पर इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम ट्रांसपेरेंट हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट हैं, ट्रस्टवर्थी हैं, जो मैंने पीछे क्वालिटीज बताई हैं, अगर उसको हम मद्देनजर रखेंगे तो हम एक दूसरे पे डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट चल रहा है यहाँ पे. हेल्प पीपल फील मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स. बहुत इस पे हम बात कर चुके हैं, 10-scale फॉर्मूला ही इस पे है. Improve overall well-being and happiness. तो ये मैं आप सबको समझाना चाह रही थी थोड़ा, क्योंकि मेरी 7 presentations थोड़ी light थी, ये थोड़ी सी मैंने tough की है,
बिकॉज किस लिए टफ किए, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए. एक लीडरशिप को करना क्या है, एक लीडर में क्या क्या होना चाहिए. अगर मैं इसको रिट्रेट

0: करूं, आप प्रेजेंटेशन स्टाइल देखेंगे कि मैंने गोल्स की पहले बात की, फिर मैंने एक लाइट सी स्टोरी सुना दी, फिर उसके बाद मैंने बोला कि हम नेगेटिव ना सोचें, हम प्रॉब्लम्स को ना फोकस करें, हम उसमें जो एक सूर्य की किरण आ रही है उसकी तरफ देखें और आगे बढ़ें। फिर मैंने बेस्ट क्वालिटीज क्या है लीडरशिप की, उस पे मैंने 7 क्वालिटीज की बात की, विजनरी, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन। ये एक संस्था के करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ये 7 करेक्टरिस्टिक्स इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसको एक को भी इग्नोर कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नीचे चली जाएगी, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद मैंने लीडरशिप स्टाइल की बात करी कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है, इमोशनली इंटेलिजेंट, वो वीक नहीं होता है, पर लोग उसको वीक समझते हैं, पर उसमें इतनी पावर होती है कि वो कैसे सबको अपने पैशन के साथ जोड़ के रखे, राइट? और लास्ट है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, पर मोटिवेशन का मतलब क्या है? आप हमेशा कहते हो कि हम अपनी कम्युनिटी को बहुत मोटिवेट करते हैं, पर अब आप इन 3 पॉइंट्स के साथ मोटिवेट करके देखना रिजल्ट में क्या चेंज आता है। एक्शन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी, राइट? इन तीनों के अगर मीनिंग चाहिए, एक्शन मतलब कि हम काम करें, परसिस्टेंस मतलब कि हम अपना उसको लगातार करें, और इंटेंसिटी कि हम अपनी पूरी एनर्जीज उस काम में लगा दें और उसको फेलियर नहीं होने दें। दैट इज द आउटकम ऑफ मोटिवेशन। दैट्स ऑल। आज मैंने बहुत बोला है, 4 बजने वाले हैं तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ इसका, ठीक है? 5 मिनट हैं
1: यस
0: हमारे पास। हाँ, और ये स्लाइड्स रो हमेशा हर सेशन के बाद आपके पास आती हैं। मैं आप सबको एनकरेज करूंगी कि इस स्लाइड्स को पढ़ के आप अपनी एक डायरी लिखनी शुरू कर दें कि हर पॉइंट में आप कैसे अपनी लाइफ में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप उसको कैसे इम्बाइब कर रहे हैं अपने एक्शन लेने के लिए, आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे चेंज कर रहे हैं इन पॉइंट्स के अलावा। अगर ये आप होमवर्क करेंगे तो इट विल हेल्प यू सो मच, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, राइट? आप प्लीज ये करिए, आपका जरूर 10 मिनट रात को ज्यादा जाएगा इस पे, पर अगर 8 स्लाइड्स है, 8 स्लाइड्स के ऊपर आप हर पॉइंट पे एक एक लाइन भी लिख लेंगे या एक स्लाइड के ऊपर एक पॉइंट लिखेंगे तो आपकी डायरी में 10 पॉइंट आ जाएंगे लिखने के लिए। आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी, आपका विजन स्ट्रांग होगी और आप एनकरेज फील करेंगे और आप बहुत वेल डिफाइंड अपने अपने शार्प कर लेंगे अपने विजन को और एक्शन उसी तरीके से लेंगे, ये मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज के। आप करके देखिए, ये सारे मैनेजमेंट के लेसन्स हैं जो मैं बहुत मेहनत करके इसको आपके मतलब कि लाइक आई ब्रिंग दैट इन टू ए डिस्कशन लेवल कि कहाँ मैं ये लीडरशिप आपको समझा सकती हूँ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जस्ट 5 मिनट्स फॉर एनी क्वेश्चन आंसर्स, आई एम ओपन फॉर दैट।
2: ये आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। ब्लेम करके ही हम अपने अपने अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ फेलियर कहीं हो किसी बात में तो दूसरे को ब्लेम कर जाते हैं हम लोग।
0: हाँ
2: तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग यू टोल्ड अस कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, एंड हर चीज में वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, पर्सनल लाइफ में भी, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी।
0: बिल्कुल,
2: हमेशा कोई
0: पर
2: चीज हो जाती है, घट जाती है।
0: बहुत बहुत मायने रखता है ये पर्सनल लाइफ में, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमें ना सुनने की क्षमता होनी चाहिए। हम ना
2: जी
0: सुनने
2: मैम,
0: की अपनी जो स्किल है ना उसको हम हमेशा बहुत कम टाइम देते हैं, हम हमेशा अपने बोलने की स्किल को ज्यादा टाइम देते हैं। ये ह्यूमन
2: हाँ जी,
0: बिहेवियर है, टेंडेंसी है। वेरी नाइस,
2: यस
0: कंटिन्यू।
2: मैम, हाँ जी। हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो और हम डिमोरलाइज हो जाते हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को रिपीटेडली व्हेन वी टॉक अबाउट, तो लगता है होगी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे ठीक होगा, तो हो चुका, वो तो घट गया, उसको तो अब असाइड करके, तो उसके बाद फैमिली में भी बैठे हुए हैं या अपने स्टाफ के साथ भी आप बैठे हुए हैं, सबके व्यूज लेके फटाफट आप सॉल्यूशंस के बारे में बात करो, फिर वो प्रॉब्लम फिर छोटी लगने लग जाती है। तो ये आपने बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया कि रे ऑफ आप देखिए हर चीज में, पूरा डार्क नहीं होता कभी भी, कहीं ना कहीं एक सनशाइन होती है, एंड वी शुड चेज दैट एंड वी शुड फॉलो दैट, और हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में बात, प्रॉब्लम्स को फटाफट रिजॉल्व करें, ये आप बता रहे थे, दिस वाज वेरी नाइस,
0: वेरी नाइसली समराइज,
2: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच फॉर समराइजिंग दिस वेरी वेल। एनीबॉडी एल्स? थैंक यू सीमा, आपने तो बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी। मुझे लग रहा था कि मैं ही बोलती जा रही हूँ, पर आपने समराइज करके तो बहुत उसको इजी बना दिया।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
0: या
1: गुड इवनिंग मैम, अकबर बोल रहा हूँ रामपुर से।
0: जी अकबर
1: जी मैम, जैसे सीमा मैम ने बोला और आपके हमने ट्रेनिंग में ये सुना भी था, आपने बहुत पहले ही बोला था कि प्रॉब्लम्स को क्रिएटिव माइंड के थ्रू आप सॉल्व करते हैं, आपकी एक आदत है कि आप उस प्रॉब्लम को लेके बैठते नहीं है और उसको आप क्रिएटिव माइंड के थ्रू, अभी लास्ट स्मिता मैम ने भी हमें फ्राइडे में बताया था लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग में, आपका ये एग्जाम्पल देके, और मैंने उसको ना एक डेस्ट कर लिया इस पॉइंट को, और उस पॉइंट पे अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 3-4 दिन से, मैं इस पे बहुत फोकस करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं पहले क्या होता था कि जो प्रॉब्लम आती थी अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता था तो मैं हार मान के बैठ जाता था, और एक टेंशन दिमाग को होती थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन सा लगता था कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा। बट जब मैंने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब जैसे सीमा मैम ने बोला कि प्रॉब्लम्स को हम असाइड कर दें और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें, तो अब सेम वही मैं करना स्टार्ट करा है, तो इतना मतलब लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाता है जब उसके ऊपर दिमाग लगाओ और उस पर करते रहो फोकस, कि कुछ तो आएगा हल, कुछ तो आएगा, वो अल्टीमेटली आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, भले से थोड़ा सा ही आए लेकिन आता है, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। रियली थैंक यू मैम, आपने मतलब इतने अच्छे से उसको समझाया था कि वो दिमाग में एकदम बैठ गया है।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है, और ये अगर हम सोचते ही रहेंगे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, तो हमारे कंधे के ऊपर जो बैग है ना, वो इतना भर जाएगा कि एक दिन वो इतना भारी हो जाएगा कि हमें दबा देगा वो। पर अगर हम हर प्रॉब्लम का सलूशन लेके वो बैग हम खाली करते रहेंगे, तो वी विल फील लाइट, हमारा ब्रेन लाइट फील करेगा और हम कुछ नया सोच पाएंगे करने के लिए। तो जो अपने कंधे के ऊपर बैग लेके हम चलते हैं ना, उसको बस ये याद रखिए कि हमें लाइट ही रखना है। देयर एंड देन यू फाइंड अ सॉल्यूशन एंड स्टार्ट एक्शन ऑन दैट, राइट?
1: यस बिल्कुल। और एक चीज और, कि हम कभी भी, मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं बहुत आगे तक की सोचता हूँ कि यार कल क्या होगा, अगर मैं ऐसा एक्शन करूंगा तो इसमें फिर क्या होगा, आगे वाले नतीजे क्या रहेंगे, तो उसको लेके क्या होता था, एक स्टेप फॉरवर्ड होने के बजाय और बैकवर्ड हो जाता था। लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि नहीं, जो होगा उसके लिए भी कोई ना कोई नया सॉल्यूशन निकाला ही जाएगा, अभी फिलहाल जो है उसको पूरा करो।
0: बिल्कुल, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि जब हम प्रपोजल लिखते हैं तो हमें नहीं पता सक्सेस क्या होगी।
1: जी,
0: हम डोनर को ये थोड़ा कर देते हैं कि हम 1 साल के बाद जी हम ये 100% करके दिखा देंगे आपको, हम प्रपोज करते हैं कि हम कोशिश करेंगे करने की, राइट?
1: यस।
0: तो हमेशा जो एक्शन है उसको हम अगर सीधे रास्ते पे रखें या सीधी सोच के साथ रखें, तो रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है?
1: यस मैम,
0: थैंक यू सो मच। और मैं इनकरेज करूंगी, अगर किसी के कोई और भी डाउट्स रहते हैं तो दे आर वेलकम टू राइट बैक टू मी, राइट? बिकॉज लीडर्स तो आपको बनना ही बनना है, राइट? ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।

0: स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली असंख्य महिला क्रांतिकारी हुई, जिन्हें इतिहास में वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। ऐसी ही एक वीरांगना थी गुलाब कौर। पंजाब के बेहद गरीब परिवार में जन्मी गुलाब कौर ने विवाह के बाद बेहतर जीवन के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। पैसों की कमी के कारण पति मान सिंह के साथ गुलाब कौर पहले मनीला पहुंची, जहां से पैसे कमाकर आगे अमेरिका जाने की योजना थी। इसी दौरान गुलाब गदर पार्टी के नेताओं के संपर्क में आई। गदर पार्टी एक भारतीय क्रांतिकारियों का संगठन था, जिसकी स्थापना अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से पंजाबी सिख प्रवासियों द्वारा की गई थी। गदर पार्टी ने गुलाब कौर को क्रांतिकारी साहित्य छापने की जिम्मेदारी दी। जल्द ही भारत की आजादी के लिए गदर पार्टी ने वतन वापसी का फैसला लिया। गुलाब कौर भी भारत लौटने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन तय दिन उनके पति मान सिंह फैसले से पलट गए। गुलाब अपने इरादे पर डटी रही और भारत जाने वाले जहाज पर सवार हो गईं। जहाज पहले हांगकांग पहुंचा, जहां प्रवासी भारतीयों की सभाओं में गुलाब कौर गदर की गूंज कविता की पंक्तियां गाती और अपनी चूड़ियां उतारकर लोगों को ललकारती। जहाज भारत पहुंचा और पहुंचते ही गदर पार्टी के कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन गुलाब बचकर पंजाब आ गईं। उन्होंने होशियारपुर, जालंधर और कपूरथला में लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया। गुलाब क्रांतिकारी साहित्य छापती और उसे स्वतंत्रता सेनानियों में बांटने का काम करती। गुप्त रूप से वो क्रांतिकारियों तक हथियार भी पहुंचाती थी। धीरे धीरे गुलाब कौर के प्रेरक व्यक्तित्व और अथक प्रयासों से पंजाब में एक मजबूत आंदोलन खड़ा हो गया। कई बार ब्रिटिश पुलिस को चकमा देने के बाद आखिरकार गुलाब कौर गिरफ्तार कर ली गईं। राजद्रोह के मामले में उन्हें लाहौर के शाही किले में कैद कर लिया गया, जहां उन्हें गंभीर यातनाएं दी गईं। 1931 में आजादी का सपना दिल में ही लिए ये महान वीरांगना हमेशा के लिए अमर हो गई।
1: Nani Caribia lo Kachinghangi pari dia u Little sing sound not toy
2: पर्वतों की गान कोकिला श्रीमती पोकिला लेख दीपी पद्मश्री 2026 कार्बी अंगलोंग असम का एक सुंदर गांव, जहां रहता है कार्बी समुदाय और पोकिला लेख दीपी। गुमंतु कलाकारों के परिवार में जन्मी पोकिला को कार्बी संगीत न सिर्फ विरासत में मिला बल्कि उन्होंने उसे जिया। बचपन से ही उनकी असाधारण प्रतिभा झलकने लगी थी। संगीत के इस स्वरूप से गहरे जुड़ाव ने उन्हें महसूस कराया कि ये विरासत संकट में है। कार्बी संगीत केवल बुजुर्गों तक सीमित था।
3: उन दिनों कार्बी गीत तो थे, पर लोगों को उन्हें पेश करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता था।
2: बाधाएं अनेक थी, लगातार निर्धनता की छाया थी और परंपरा ने महिलाओं को सार्वजनिक मंचों से दूर रखा। वर्षों तक पोकिला पृष्ठभूमि में रही, लुप्त होती कला की मौन प्रहरी बनकर, किंतु उनकी आवाज एक दायरे में नहीं बंध सकती थी। बंधन तोड़कर उन्होंने चर्च में अपना मंच पाया, समविचारी लोगों को साथ लिया और महिलाओं को साहस देकर अपने साथ जोड़ा। वे दुर्गम इलाकों में घूमी, बुजुर्गों से मिलकर लुप्त होती कला का दस्तावेजीकरण किया।
3: आप गीत के बोल लिखिए, उन्हें धुन में डालिए, हम हर संभव मदद करते थे और अपने सांगरी म्यूजिक सोसाइटी के माध्यम से हमने इन गीतों को पेश किया।
2: स्थानीय आकाशवाणी केंद्र के प्रसारणों से लेकर अपने पहले कैसेट कांदोन के साहस भरे निर्माण तक उन्होंने कार्बी आत्मा को राष्ट्रीय ताने बाने में पिरोना शुरू किया। महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब जुबिन गर्ग के साथ उन्होंने अपनी कला प्रदर्शित की। आधुनिक ऊर्जा के साथ प्राचीन मंत्रों को पेश करके नई पीढ़ी को आकर्षित किया। 50 वर्ष 300 गीत। उन्होंने कार्बी संगीत को पहाड़ियों से निकालकर लोगों के हृदय तक पहुंचाया। आज पोकिला कार्बी संगीत की कुल माता है, लेखक, मार्गदर्शक और प्रस्तुति द्वारा अतीत सहेज कर सुनिश्चित कर रही है कि कार्बी आंगलोंग की महिलाएं अपना भविष्य स्वयं स्वरबद्ध करें।
3: मुझे आशा है कि हमारा कार्बी आंगलोंग और प्रगति करेगा। कार्बी आंगलोंग की महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे बढ़े, यही मेरा सपना है।
2: श्रीमती पोकिला लेखदीपी, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमन।
0: प्रीति लता फातेदार एक ऐसी स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें अंग्रेजों के शासन में जीना तो दूर, उनके या उनकी पुलिस के हाथों मरना तक गवारा नहीं था। प्रीति लता का जन्म सन 1911 में चटगांव में हुआ था, जो कि आज बांग्लादेश में है। कोलकाता के बेतुन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद वो चटगांव के बालिका विद्यालय में पढ़ाने लगी। यहाँ उनका परिचय प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन से हुआ, जिन्हें लोग मास्टर दा कहते थे। मास्टर दा से ही उन्हें पिस्तौल चलाने का विधिवत प्रशिक्षण मिला। जून 1932 में चटगांव के एक मकान में अंग्रेजी सेना ने मास्टर दा, प्रीति लता और दूसरे क्रांतिकारियों को घेर लिया। घमासान मुठभेड़ में कई क्रांतिकारी शहीद हो गए। प्रीति लता सूर्य सेन के साथ बच निकलने में सफल हो गईं। पुलिस ने प्रीति लता की सूचना देने वाले को मुंह मांगा इनाम देने की घोषणा कर दी। अखबारों में जब उनकी तस्वीर छापी गई, तब उनके माता पिता को उनके क्रांतिकारी होने का पता चला। इस घटना के बाद प्रीति लता का कद क्रांतिकारियों के बीच बढ़ गया। सूर्य सेन ने अपने साथियों का बदला लेने की योजना बनाई। 24 सितंबर 1932 को मास्टर दा ने प्रीति लता को एक जोखिम भरे कार्य की जिम्मेदारी सौंपी। ये कार्य था पहाड़ ताली यूरोपियन क्लब पर हमला। पुरुष वेश में प्रीति लता अपने युवा साथियों के साथ पीछे की गली से क्लब में घुस गईं। क्लब के लगभग 50 सदस्य नाचने गाने में मस्त थे। प्रीति लता और उनके साथियों ने बम फोड़ने शुरू कर दिए। हमला इतना घातक था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक यूरोपियन महिला मारी गई और कुछ लोग घायल हो गए। दोनों तरफ की गोलीबारी में जैसे ही एक गोली प्रीति लता को लगी, वैसे ही उन्हें ब्रिटिश पुलिस अफसरों ने घेर लिया। वो जिंदा पुलिस के हाथों नहीं आना चाहती थी, इसलिए उन्होंने तुरंत साइनाइड की गोली खा ली। इनकलाब जिंदाबाद का उद्घोष किया और हमेशा के लिए धरती की गोद में सो गईं।

0: भोपाल के जाने माने वैद्य खुशीराम शर्मा के घर 19 अगस्त 1918 को जब शंकर दयाल ने जन्म लिया तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो देश की सेवा में अपना जीवन होम कर देंगे। खानदानी पेशा न अपनाते हुए शंकर दयाल ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में पढ़ाई की। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से कानून पढ़ने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही कानून के प्रोफेसर रहे, लेकिन 40 के दशक में महात्मा गांधी के आंदोलन का हिस्सा बनते हुए नौकरी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। आजादी के बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1952 में भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1956 में नया मध्य प्रदेश बना तो 15 साल तक विधानसभा के लिए निर्वाचित होते रहे और अनेक विभागों के मंत्री रहे। 1971 में वो संसद के लिए पहली बार चुने गए। 3 साल बाद ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें दूर संचार मंत्री बनाया। 1980 में डॉक्टर शर्मा फिर लोकसभा में पहुंचे। महाराष्ट्र और पंजाब के राज्यपाल पद पर शानदार काम करने के बाद 1987 में उन्हें देश का उपराष्ट्रपति चुना गया। 5 साल बाद वो देश के सर्वोच्च पद पर थे। राष्ट्रपति के तौर पर दुनिया भर में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भारत का नाम रोशन किया। हर बड़ा देश उनके ज्ञान और कौशल का कायल था। देश की संविधान सभा को जब 50 साल पूरे हुए तो संसद के दोनों सदनों का खास संयुक्त अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने संबोधित किया। उनका भाषण संसद के इतिहास में यादगार संबोधनों में से एक है। शिक्षा संस्थानों की क्वालिटी सुधारने और देश भर में उनका विस्तार करने के लिए डॉक्टर शर्मा को हमेशा याद किया जाएगा। 26 दिसंबर 1999 को ये कद्दावर नेता दिल के दौरे की वजह से जिंदगी हार गया।
1: वो खिलाड़ी जिसने जानवरों की भलाई की राह चुनी, डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026। तंजावुर जिले के एक सुंदर गांव बल्लम में 1960 के दशक में एक युवा लड़का किसान परिवार में पला बढ़ा। उसे खेल बहुत पसंद थे। उसका सपना एथलेटिक्स और हॉकी का स्टार खिलाड़ी बनना था। वो अपने परिवार में कॉलेज जाने वाले पहले व्यक्ति थे। वो अपने दादा के बहुत प्रिय थे।
2: कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब मैं अपने दादाजी के पास आशीर्वाद लेने गया तो उन्होंने कहा, कुछ ऐसा सीखो जो किसानों के काम आए। वह मेरी जिंदगी का निर्णायक मोड़ था। तब मैं सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में जानता था, मुझे वेटनरी साइंस की जानकारी नहीं थी। मेरे दोस्त और सहपाठी वीर पांडियन ने मुझे वेटनरी साइंस से परिचित कराया।
1: युवा पुण्यमूर्ति 70 के दशक के मध्य में मद्रास वेटरनरी कॉलेज पहुंचे। वो न केवल पढ़ाई में होशियार थे बल्कि वो लगातार 2 साल तक कॉलेज एथलेटिक्स चैंपियन भी रहे। कुछ वर्षों बाद वे इरोड के कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हुए। वहीं एक घटना ने उनकी सोच को नई दिशा दी।
2: मैं इरोड में एक युगल द्वारा चलाए जा रहे पोल्ट्री फार्म पर गया। मुर्गियां स्वस्थ दिख रही थी, अच्छा खा रही थी, फिर भी अंडे नहीं दे पा रही थी। रिकॉर्ड

0: दो मुट्ठी हल्दी और थोड़ा सा चूना मिलाकर दवाओं के बिना सफल उपचार किया जा सकता है। ये पारंपरिक सिद्ध आधारित इलाज के असर को दिखाता है।
1: उनके इलाज से लाखों गायों और किसानों को फायदा हुआ। उन्होंने जानवरों की 34 बीमारियों के लिए 5 आसान इलाज विकसित किए।
0: एक जिम्मेदार पशु चिकित्सक के रूप में जितना जरूरी स्वस्थ दूध, अंडे और मांस मुहैया कराना है, उतना ही जरूरी गायों का स्वस्थ गोबर और मूत्र भी है, ताकि मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे। भविष्य के लिए एंटीबायोटिक्स को बचाए रखना भी जरूरी है, जो हम एथनोवेटनरी चिकित्सा के जरिए कर रहे हैं।
1: डॉक्टर पुण्यमूर्ति की सभी खोजें सबके लिए निःशुल्क है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने उनके काम को लाखों किसान तक पहुँचाया, जिससे उन्हें बहुत फायदा मिला।
0: मैं दिल से खिलाड़ी हूँ, इसलिए अपने काम से पूरा प्यार करता हूँ।
1: डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026।

0: विविधता में एकता वाला हमारा देश भारत, ये पूरे देश की एकजुटता ही थी जिसने सालों की गुलामी से उबरने में अहम भूमिका निभाई। उन दिनों उत्तर भारत में जहां क्रांति की ज्वाला प्रबल थी, वहीं दक्षिण भारत में क्रांतिवीर ब्रिटिश शासन की नींवें हिलाने का काम कर रहे थे। इन्हीं में से एक थी वीरांगना अकम्मा चेरियन। ट्रावणकोर की झांसी की रानी के नाम से मशहूर अकम्मा का साहस ऐसा था जिसके आगे अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े थे। कांजिरपल्ली ट्रावणकोर में जन्मी अकम्मा चेरियन ने 1931 में शिक्षा पूरी कर सेंट मेरीज अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में बतौर शिक्षिका शुरुआत की। प्रतिभाशाली अकम्मा जल्द ही स्कूल की प्रिंसिपल बन गईं, लेकिन दिल में आजाद भारत का सपना था। 1938 में अकम्मा नौकरी छोड़कर ट्रावणकोर कांग्रेस की सदस्य बन गई। राज्य कांग्रेस ने ट्रावणकोर के लोगों के साथ एक उत्तरदायी प्रशासन के लिए आंदोलन शुरू किया। आंदोलन को दबाने के लिए राज्य के दीवान ने कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। विरोध में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसके बाद राज्य कांग्रेस के एक एक करके 11 अध्यक्ष गिरफ्तार कर लिए गए। 12वीं अध्यक्ष अकम्मा चेरियन बनी। अकम्मा ने कोडियार राजमहल तक रैली निकालने का फैसला किया और तय दिन प्रदर्शनकारियों का एक दल ट्रावणकोर शाही महल की तरफ मार्च करने लगा। ब्रिटिश अफसरों ने रैली को रोकने के लिए आगजनी करने का आदेश दिया। आदेश सुनते ही अकम्मा आगे आ गईं और दूसरों से पहले खुद को गोली मारने के लिए ललकारने लगीं। अकम्मा के साहस ने अंग्रेज अफसर को आदेश वापस लेने पर मजबूर कर दिया। एक बड़ा नरसंहार टल गया। समाचार सुनकर महात्मा गांधी ने अकम्मा को ट्रावणकोर की झांसी की रानी कहकर सम्मानित किया था। अंग्रेजों के लिए लगातार खतरा साबित हो रही अकम्मा को 24 दिसंबर 1939 को गिरफ्तार कर लिया गया। रिहाई के बाद आजादी के लिए जारी संघर्ष में अकम्मा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी गिरफ्तार हुई। 1947 में देश की आजादी के बाद अकम्मा चेरियन ट्रावणकोर से विधानसभा की सदस्य चुनी गई। अन्याय का आजीवन विरोध करने वाली उच्च नैतिक मूल्यों वाली इस वीरांगना ने 5 मई 1982 को आखिरी सांस ली।
1: नमस्कार सभी को, मेरा नाम शशि है और मैं रीड इंडिया से पिछले 9 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक विद्यार्थी के रूप में रीड इंडिया में आई और मैंने देखा घर पे, जैसे मैंने बात की कि मुझे भी कोई कोर्स करना है, तो फैमिली ने काफी मेरे को रोका और बोला कि नहीं, बच्चे पालो, बच्चे संभालो और घर का खाना बनाओ, यही काम होता है लेडीजों का। मैं वजीराबाद गांव से बिलोंग करती हूँ, तो वजीराबाद गांव में थोड़ा घूंघट प्रथा बहुत ज्यादा है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया कि मुझे एडमिशन कराना है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पहले मैं जाके देखता हूँ कि माहौल कैसा है। और वो आए और उन्होंने विजिट किया सेंटर को, तो उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी और बोले कि मैं पापा को मम्मी को मैं मनाऊंगा, तुम जाओ। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल था। बट उसी दौरान जब मैं कोर्स कर रही थी, मैंने पहले बेसिक कोर्स किया, फिर उसके बाद मैंने अपना एडवांस कोर्स किया। लेकिन एडवांस कोर्स करते करते मेरे हस्बैंड

0: की हालत बहुत खराब हुई और कंडीशन यहाँ तक आ गई कि डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आपके हस्बैंड शायद ना बचे। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने अपना हाथ मेरे हाथ में रख के बोला कि आगे तुझे बच्चों को तुझे संभालना है। वो टाइम मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल था। मैंने अपने आप को संभाला, मैंने बात की मैं संभालूंगी, बच्चों को भी संभालूंगी, बट आप अपनी हिम्मत मत छोड़िए। उसी दौरान मेरा बेटा 11th में था और हालात इस कदर आ गए कि मैं उस टाइम पे अपने हस्बैंड का सपोर्ट करूं, बच्चों को पढ़ाऊं या मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रही थी। उस टाइम पर बिल्कुल एकदम से टूट गई थी, बट मैंने रीड इंडिया में मैम से बात की और अपनी जॉब के लिए मैम से पूछा तो मेरे को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली। उसी दौरान फिर मेरे बेटे ने मेरे को बोला कि मैम वो मम्मी हमारा तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा अगर हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो। उस दौरान एक माँ के लिए मरने की नौबत आ गई थी क्योंकि बच्चे की एजुकेशन मैं पूरी नहीं करवा पा रही थी। लेकिन मैंने रीड इंडिया में ज्वाइन किया और आज मेरा बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है और MNC कंपनी में आज वो जॉब कर रहा है। और उसी दौरान मेरे बड़े बेटे को भी ऑफर मिला और उसने भी आज MNC ज्वाइन कर ली है और उसकी भी एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है। थैंक यू फॉर इंडिया, थैंक यू गीता मैम, थैंक यू सो मच मैम।
1: मानव सेवा से राष्ट्रोत्थान के नायक श्री ब्रिजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026। दुनिया इसे धरती का स्वर्ग कहती है, लेकिन इस स्वर्ग ने अपनों को दूर जाते देखा। साल 1990 एक अनिश्चितता का दौर था, जब अपने ही घर छूट रहे थे, तब ब्रिजलाल भट्ट ने इसके विपरीत जाने का साहस दिखाया।
2: मेरे दिल में एक ही बात आई कि मुझे कश्मीर नहीं छोड़ना है। हमारा लक्ष्य एक ही है, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान,
3: मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग।
1: इसकी नींव उनके बचपन में ही पड़ गई थी। अनंतनाग के एक बड़े संयुक्त परिवार में पले बड़े भट्ट साहब की सुबह इंद्रनाग चश्मे, गुरुद्वारा, देवी बल मंदिर और ऋषि साहब की जियारत से होकर गुजरती थी। यही गंगा जमुनी तहजीब आगे जाकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन बन गई। वे पिछले 55 वर्षों से नागदंडी के श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम और विवेकानंद केंद्र के सानिध्य में सनातन धर्म के मूल मंत्र मानव सेवा और वैश्विक भाईचारे का प्रसार कर रहे हैं। 1996-97 के कठिन दौर में भट्ट साहब के नेतृत्व नागदंडी आश्रम ने माता खीर भवानी में भंडारा शुरू करने की ठानी।
2: शुरू में भंडारे में मुश्किल से 400-500 लोग थे, पर बिना किसी परवाह के हम बस आगे बढ़ते गए और मेरी अर्धांगिनी हर मोड़ पर मेरे साथ खड़ी रही।
1: उनके उस निडर पहल का रंग आज साफ नजर आता है। 2024-25 में उसी भंडारे की पंगत में 35,000 से अधिक लोगों ने भोजन किया। समाज को जोड़ने के साथ साथ अमेरिका से हॉर्टिकल्चर की उच्च शिक्षा प्राप्त भट्ट साहब ने कश्मीर की बंजर और वीरान जमीनों को भी सवारा। वैज्ञानिक सोच से सेब और अखरोट के लहलहाते बाग खड़े किए, कोल्ड चेन और नई पैकेजिंग से गांव वालों को आत्मनिर्भर बनाया, युवाओं को योग शिक्षा शिविर, संस्कार वर्ग और युवा सम्मेलन द्वारा सही दिशा दिखाई ताकि उनके हाथों में कलम हो। अब वे नागदंडी आश्रम का विस्तार कर रहे हैं ताकि एक साथ 400 लोग वहां ठहर सके। आज कश्मीर का युवा जान चुका है कि असली ताकत आपसी भाईचारे में है। सम्मान और पुरस्कार तो बस एक पड़ाव है, उनकी असली वसीयत वो बीज है जो उन्होंने यहाँ के दिलों में बोए हैं।
2: जब हमारे युवाओं का जोश और माता पिता का होश एक साथ आएगा, तभी हमारा कश्मीर फिर से एक खूबसूरत गुलदस्ता बनकर महकेगा।
1: उनकी ये यात्रा अब एक महायात्रा बन चुकी है जो सदैव चलती रहेगी। श्री ब्रिजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026।

स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली असंख्य महिला क्रांतिकारी हुई, जिन्हें इतिहास में वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। ऐसी ही एक वीरांगना थी गुलाब कौर। पंजाब के बेहद गरीब परिवार में जन्मी गुलाब कौर ने विवाह के बाद बेहतर जीवन के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। पैसों की कमी के कारण पति मान सिंह के साथ गुलाब कौर पहले मनीला पहुंची, जहां से पैसे कमाकर आगे अमेरिका जाने की योजना थी। इसी दौरान गुलाब गदर पार्टी के नेताओं के संपर्क में आई। गदर पार्टी एक भारतीय क्रांतिकारियों का संगठन था, जिसकी स्थापना अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से पंजाबी सिख प्रवासियों द्वारा की गई थी। गदर पार्टी ने गुलाब कौर को क्रांतिकारी साहित्य छापने की जिम्मेदारी दी। जल्द ही भारत की आजादी के लिए गदर पार्टी ने वतन वापसी का फैसला लिया। गुलाब कौर भी भारत लौटने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तय दिन उनके पति मान सिंह फैसले से पलट गए। गुलाब अपने इरादे पर डटी रही और भारत जाने वाले जहाज पर सवार हो गई। जहाज पहले हांगकांग पहुंचा, जहां प्रवासी भारतीयों की सभाओं में गुलाब कौर गदर की गूंज कविता की पंक्तियां गाती और अपनी चूड़ियां उतार कर लोगों को ललकारती। जहाज भारत पहुंचा और पहुंचते ही गदर पार्टी के कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन गुलाब बचकर पंजाब आ गईं। उन्होंने होशियारपुर, जालंधर और कपूरथला में लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया। गुलाब क्रांतिकारी साहित्य छापती और उसे स्वतंत्रता सेनानियों में बांटने का काम करती। गुप्त रूप से वो क्रांतिकारियों तक हथियार भी पहुंचाती थी। धीरे धीरे गुलाब कौर के प्रेरक व्यक्तित्व और अथक प्रयासों से पंजाब में एक मजबूत आंदोलन खड़ा हो गया। कई बार ब्रिटिश पुलिस को चकमा देने के बाद आखिरकार गुलाब कौर गिरफ्तार कर ली गईं। राजद्रोह के मामले में उन्हें लाहौर के शाही किले में कैद कर लिया गया, जहां उन्हें गंभीर यातनाएं दी गईं। 1931 में आजादी का सपना दिल में ही लिए ये महान वीरांगना हमेशा के लिए अमर हो गई।

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, परीक्षा संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के ठोस कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज पाठक और आज इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि इन परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और आने वाले दिनों में इसे अमली ढांचा पहनाने के लिए विधि सम्मत उपाय भी किए जाएंगे। यानी संभव है आने वाले दिनों में हम एक नया कानून इसकी शुचिता बनाए रखने के लिए अस्तित्व में आता हुआ दिखें। इस विषय पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में राजनीतिक मामलों की वरिष्ठ विश्लेषक अदिति टंडन जी को। अदिति जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाएं हुआ करती हैं उसमें कई में हमने देखा कि कुछ लापरवाहियां रही या उचित कदमों में कहीं तालमेल का अभाव दिखा और प्रश्न पत्र लीक हो गए, इसका अंजाम अच्छा नहीं निकला और अंततः सरकार ने कड़े कदम उठाने के आश्वासन दिए हैं। किन रूप में देख रहे हैं इन्हें?
3: देखिए, जैसा कि आपने कहा खुद ही अपने रिमार्क्स में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं और इवन राज्य के स्तर पर जो एग्जामिनेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि वो आज के लीक हो रहे हैं। सिस्टम में लीकेज ऑफ एग्जामिनेशन पेपर्स होते रहे हैं, बहुत सारे हुए हैं, हर स्तर पर, राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर हुए हैं और सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की जो कवायद है वो बहुत सालों से चल रही है। मैं खुद ही बहुत पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री पर लिखा करती थी, तब से ये कोशिश चल रही है। मुझे आज भी याद है कि AIEEE का एग्जाम लीक हुआ था 2011 में, जिसके बाद सबसे पहले एक संजीदा मसौदा तैयार करने की बात हुई थी कि किस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को फूल प्रूफ बना सकते हैं। तो ये जो चैलेंज है मनोज जी, हर सरकार के टाइम पर आया है और हर सरकार ने अपने तरीके से इसको प्लग करने की कोशिश की है, पर हम सब जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया है जो इससे लाभान्वित होता है और इंडिविजुअल्स हैं जो बहुत वेल एंट्रेंच हो चुके हैं सिस्टम में। जो लोग एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं, पेपर लीक के डायनामिक्स को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि ये कोई मामूली अपराध नहीं है, इसके जो तार हैं बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो कल मैंने देखी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 ऑफिशियल्स को सैक किया गया है और ये भी वक्तव्य आया है सरकारी सोर्सेज के हवाले से कि उनमें से बहुत लोगों पे अब मुकदमा भी चलने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो लेटेस्ट नीट यूजी जो मेडिकल अंडर ग्रेजुएट MBBS एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, May 3 को पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें ऑब्वियस सी बात है कि ना सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स इन्वॉल्व हैं, अंदर के भी लोग कुछ इन्वॉल्व हैं। तो उसके लिए एक इस सिस्टम में ट्रस्ट को रीबिल्ड करने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम कल उठाया गया है। और आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री ने दो बहुत इम्पोर्टेंट बातें अपने वक्तव्य में कही हैं सिस्टम को फूल प्रूफ बनाने के लिए। एक तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ऐसा नहीं कि देश में है नहीं, लेकिन जो प्रधानमंत्री का मतलब है वो ये है कि डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे जो सिर्फ इस लॉ के तहत जो केसेस दर्ज होंगे उनको डे टू डे बेसिस पर सुनने के बाद 3 महीने में उनका ट्रायल खत्म करेंगे, चार्जशीट फाइल होने के बाद। और हम और आप आज बात कर रहे हैं, बल्कि कुछ ही घंटों पहले जो बिल का मसौदा है, जो बिल प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था अपने वक्तव्य में परसों रात को, जब उन्होंने एक वीडियो सेल्फी बना के देश के युवाओं से संपर्क करने की कोशिश की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम कैबिनेट में एक बिल लेके आने वाले हैं। जो पुराना बिल 2024 में सरकार ने पास किया है उसी को इम्प्रूव किया गया है और उसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस किए गए हैं। और जो महत्वपूर्ण बात उसमें ऐड की गई है वो ये की गई है कि स्टैट्यूटरी बैकिंग दी जाएगी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को, जो प्रधानमंत्री ने घोषित किया परसों रात को अपने संदेश में, और कल कैबिनेट ने उसको पास कर दिया। आज बिल का मसौदा भी हम सबके सामने आ गया है और पार्लियामेंट में ये बिल मंडे को पेश भी होने जा रहा है।
2: यहाँ पर थोड़ा हम श्रोताओं के हित में समझना चाहेंगे कि ये जो मसौदा बिल आया है उसमें क्या सब बातें रखी गई हैं और कैसे ये आने वाले दिनों में सुधार के कारक बनकर सामने आएंगे।
3: इस बिल का जो नाम है वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। मैंने जैसे कहा कि ये नया बिल नहीं है, 2024 का बिल है, उसमें संशोधन लाएगी सरकार। संशोधन के माध्यम से नई पनिशमेंट्स घोषित करेगी और जो नए मसौदा तैयार किया है उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग देगी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, वो ये है कि पनिशमेंट बढ़ा दी गई है। जो पुराना बिल था 2024 का, उसमें ये कहा गया था कि जब कोई इंडिविजुअल पेपर लीक के मामले में लिप्त पाया जाएगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी 3 से 5 वर्ष की, और उस पे जो फाइन होगा वो 10 लाख का होगा। अब उसको बदल के कहा गया है कि मिनिमम पनिशमेंट 5 साल की होगी और जो फाइन होगा वो 10 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक ले गए हैं। और सिमिलरली अगर यही क्राइम ऑर्गेनाइज तरीके से कोई कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस इन्वॉल्व्ड है, तो उसके लिए सजा के प्रावधान और भी कड़े किए गए हैं। उस केस में कहा गया है कि मिनिमम पनिशमेंट अब 7 साल होगी और मैक्सिमम जो फाइन होगा वो 10 करोड़ होगा। तो ये मेन इस बिल की प्रावधान है। ये तो हो गया कि आपने पनिशमेंट बढ़ा दी, लेकिन सिर्फ पनिशमेंट बढ़ाने से कुछ नहीं होता। हमें पता है कि केसेस लंबित रहते हैं लंबे लंबे समय तक। उसको ठीक करने के लिए इस बिल में एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान जो मुझे लगता है वो ये है कि तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये पावर्स दे दी गई हैं कि वो किसी भी कोर्ट ऑफ सेशंस को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट घोषित कर सकते हैं इस कानून के तहत दर्ज मामलों को निपटाने के लिए। और ये भी कहा गया है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स इन मामलों में होंगी वो हर दिन होंगी, डे टू डे बेसिस पर चलेगा ट्रायल, और ट्रायल 3 महीने में कंप्लीट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, उन्होंने ये भी कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एम्पावर कर दिया गया है कि जब जब ऐसा कोई बड़ा मामला आए नजर में तो इमीडिएटली स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करके उस एसटीएफ को ये मैंडेट होगा कि आपने 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है। अभी क्या हो रहा है ना, सिस्टम में मिसट्रस्ट इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि लंबित बहुत हैं केस। आप कानून लाकर सिस्टम को परिवर्तित नहीं कर सकते, आपको कानून को अमली जामा पहनाने के लिए जो सिस्टम्स चाहिए वो भी क्रिएट करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से बड़ा चैलेंज जो सरकार के सामने आएगा वो फाइनेंसिस का आएगा।
2: अच्छी बात कही है कि पिछले कानून से किस तरह ये कानून बदला हुआ होगा, अधिक सख्त होगा। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि एक मामला शुरू हुआ और आमतौर पर ये मामले दम तोड़ देते जब पुख्ता सबूत नहीं रखे जाते, वहां पर कैसे कह लें कि उस प्रक्रिया का ध्यान रखा जाएगा, यानी अदालतें बन गई। जैसे अभी यदि हाल का एक मामला लें तो उसमें जिस व्यक्ति को आरोपी ठहराया गया उसके विरुद्ध फिलहाल कोई सबूत नहीं मिलने से वह छूट गया, तो वहां पर क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए?
3: इसमें मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूशन की बहुत बड़ी भूमिका है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट होता है ऐसे केसेस में वो कितना लायक है, वो कितने अच्छी तरीके से आर्ग्यू कर सकता है मैटर, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो कितनी क्विकली फॉरेंसिक एविडेंस गैदर कर सकती है, कितनी जल्दी डिजिटल इम्प्रिंट्स को देख सकती है, क्योंकि लीकेजेस तो अब डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सारा का सारा एग्जाम ऑनलाइन है, तो उससे क्या है, साइबर सिक्योरिटी चैलेंज है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ये सोचना होगा कि जो स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया जाएगा ऐसे क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसमें आपको एक्सपर्ट्स भी कोऑप्ट करने पड़ेंगे। अब ये जो वक्त है, ये जो जमाना है, उसमें कन्वेंशनल पुलिसिंग मेथड से आप क्रिमिनल गैंग्स को नहीं हैंडल कर सकते, आपको बहुत हाई लेवल की एक्सपर्टीज हर सेक्टर में चाहिए।
2: यहां पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस दिशा में एनटीए क्या कर रही है और किस रूप में अपने आप को पेशेवर बनाने के लिए पेशेवर लोगों की सलाह लेने की योजना बना रही है।
3: इनफैक्ट परसों हमने देखा कि सरकार ने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से नए पोस्ट घोषित किए हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में। उन्होंने ये कहा है कि नियुक्ति के लिए अब 4 जनरल मैनेजर्स बुलाए जाएंगे। अभी क्या है, अभी जो स्ट्रक्चर है बहुत सेंट्रलाइज्ड है, जैसे सबसे ऊपर एक चेयरमैन है, उसके नीचे सीईओ है, तो लेकिन अब डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है। इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के जो प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों को भी भर्ती में शामिल किया जाएगा, उनकी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एनटीए ने एक बयान में ये भी कहा है कि ये उपाय एजेंसी के जो संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा है उसके लिए हेल्प करेंगे।
2: यदि श्रोताओं, कुल मिलाकर सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है कि हमारी जो राष्ट्रीय परीक्षाएं हैं या राज्य स्तर की परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित की जाए और इसके लिए जिस तरह तकनीक बदल रही है, तकनीक हावी हो रही है, उसके निदान के लिए जो हमारा वैधानिक ढांचा है उसमें वैसे ही दक्ष पेशेवरों की नियुक्ति की जाए। यहां पर अदिति जी आपने कहा कि इसे वैधानिक स्वरूप दिया जाएगा, ढांचा तैयार किया जाएगा, किस रूप में परिवर्तन होता देख रही हैं आप वहां उस स्तर पर?
3: देखिए, परिवर्तन कितना हो पाएगा वो वक्त बताएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव सिग्नल इस वक्त है वो ये है कि परिवर्तन की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये जो लड़ाई है मनोज जी, ये बहुत लंबी है, और ये जो पेपर लीक का मामला है, ये सिर्फ पेपर लीक का मामला चीटिंग से लिंक करके नहीं आप देख सकते। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स के माइंड पे, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट होता है। आप सब जानते हैं कि मिडिल क्लासेस बच्चा पैदा होते ही पैसा जमा करना शुरू कर देती हैं कि देश में अच्छे एजुकेशन में या अच्छे कॉलेज में अगर बच्चे की भर्ती करानी है तो उसे अच्छे स्कूल में भेजना है, उसकी एक कॉस्ट है, अच्छी कोचिंग दिलानी है, वो कितनी एक्सपेंसिव है हम सब जानते हैं। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे को सीट मिलेगी। यही वजह होती है कि बच्चों की इमोशनल और साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी पर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स फीड करते हैं।
2: थोड़ा इसे और विस्तार देकर बताएं कि सिस्टम में बदलाव किस तरह का और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस रूप में?
3: मेरा जो व्यक्तिगत मानना है वो ये है कि एग्जामिनेशन सिस्टम तब फूल प्रूफ हो सकता है जब उसमें ग्रेडिंग हो। ये प्रामाणिक है। आप देखिए कौन कौन से एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हमारे देश में हैं, जिनमें या तो आप बिल्कुल नहीं सुनेंगे कि लीक हुए हैं या बहुत नेग्लिजिबल हुए हैं। जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम देखिए, वो कभी क्यों नहीं लीक होता?
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: आप उस मसौदे को समझिए,
2: आर्म फोर्स हैं, उनके
3: आर्म फोर्सेस के लीक नहीं होते। आप और भी समझिए, जब से आपने आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ग्रेडेड बना दिया है, जैसे पहले क्या होता था कि एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता था AIEEE। मुझे आज भी याद है 2011 में एक बहुत बड़ा पेपर लीक हुआ था जिससे बहुत सारे बच्चे बहुत त्रस्त हुए थे। उसके बाद ये सिस्टम शुरू हुआ कि किस तरीके से एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा। आप जानते हैं पहले JEE मेन कंडक्ट होता है, उसमें एक पर्टिक्यूलर लेवल के बच्चे जो टॉप 25% आते हैं उनको मौका मिलता है IIT में जाने का। उससे होता क्या है, जब आप ग्रेडेड एग्जामिनेशन सिस्टम बनाते हैं कॉम्पिटिशन के लेवल पे, आप डिसइंसेंटिवाइज करते हैं कि बच्चे पैसा देके पेपर खरीदें। क्यों? क्योंकि पहले लेवल पर आप निकल जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। जब कोई गारंटी नहीं है तो कोई इंसेंटिव नहीं है पैसा देने का, तो आप डिमांड और सप्लाई के साइकिल को तोड़ सकते हैं ग्रेडेड सिस्टम में। सिमिलरली यूपीएससी में तीन लेवल्स हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रिलिमिनरीज होते हैं, उसके बाद मेन्स होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है। किस किस लेवल पर कोई लीकेज के लिए पैसे देगा? सो ये एक सिंपल, इजीली डूएबल एक फॉर्मूला है। जो AIPMT का एग्जाम भी पहले ग्रेडेड होता था, उस वक्त लीकेजेस मुझे लगता है कम होते थे। जब से आपने सिंगल एग्जाम बनाया है, ये जो NEET UG है, आपने जब से इसको सिंगल एग्जाम बनाया, 22 लाख बच्चे बैठते हैं, 500 सिटीज में होता है, जिसको कहते हैं बहुत बड़े स्केल पर ये एग्जाम होता है। 22 लाख बच्चों को एक साथ टेस्ट करना और उनको एक ही विंडो में MBBS की सीट देना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर हम ग्रेडेड एग्जाम करेंगे NEET UG को, जैसा कि पहले होता था दो लेवल्स पर, पहले स्क्रीनिंग और फिर सिलेक्शन, तो शायद ये लीकेजेस का इंटेंसिटी कम होगा। ये प्रामाणिकता से मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है।
2: अच्छा, कुछ राज्यों की ओर से इस नीट परीक्षा प्रणाली को ही लेकर विरोध जताए जा रहे हैं, उस दिशा में कुछ सुधार की या एक रूपता लाने की कोई भूमिका बनती नजर आ रही है आपको?
3: बिल्कुल। देखिए, तमिलनाडु ने शुरुआत से NEET UG का विरोध किया है। उनका ये कहना था कि 12वीं कक्षा के एग्जामिनेशन के बेसिस पे हमारी स्टेट में एक MBBS की एडमिशन होती थी और वो चलती रहनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन मॉडल स्टडी करेंगे, उसमें JEE मेन और JEE एडवांस्ड का मॉडल बहुत अच्छा है। IITs के टॉप डायरेक्टर्स ने मिलकर उसे बनाया है, उसमें बहुत लेवल हुई थी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की, और उसमें 12वीं के रिजल्ट्स का भी एक पोर्शन काउंट होता है। फिर वही मैं कहूंगी कि NEET UG बहुत बार लीक हुआ है, 3 बार तो रिसेंट हिस्ट्री में हुआ है। तमाम मॉडल्स को स्टडी करने के बाद आप ये भी देखिए कि क्या कहीं NEET UG के स्ट्रक्चर को ही चेंज करने की जरूरत तो नहीं है।
2: यानी श्रोताओं, एक आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता परीक्षा प्रणाली को है, ऐसा लग रहा। बस यहीं पर हम श्रोताओं, आपकी ओर से अदिति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
3: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे परीक्षा संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के ठोस कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
0: सुर्खियों में

0: परिवर्तन की शांत लहर, श्री मोहन नागर, पद्मश्री 2026। कुछ लोग बदलाव की बातें करते हैं और कुछ लोग बदलाव लाते हैं। मध्य प्रदेश के श्री मोहन नागर जी को प्रकृति और पानी से प्रेम संस्कार में मिले थे।
1: हमने अपने काम की शुरुआत शिक्षा के माध्यम से की। भारत भारती के माध्यम से 500 गांवों में एकल विद्यालय प्रारंभ किए।
0: पर असल समस्या और थी।
2: जमीन बेकार हो गई थी, खेती बंद हो गई, लोग गांव छोड़ रहे थे।
1: पदयात्रा के समय अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि दिवाली के समय पानी की बहुत समस्या हो जाती है और लोग पलायन कर जाते हैं। पर्याप्त बारिश होने के बाद भी कुएं, बावड़ी, तालाब और स्टार्ट डैम की कमी के कारण अधिकांश पानी बह जाता था।
0: श्री मोहन नागर जी ने नदी नालों में बहते पानी को रोकने का एक अनोखा रास्ता निकाला।
1: हमने सीमेंट की खाली बोरियों में रेत भर के नदी नालों में बोरी बंधान बनाए, जिसके कारण पानी की समस्या कम हुई और पलायन बंद हुआ।
0: इसके बाद बारी थी जमीन के जल स्तर को बढ़ाने की।
1: हमने गंगा अवतरण अभियान के माध्यम से जन भागीदारी से सोना घाटी की पहाड़ी पर 8,000 कंटू टेंच बनाए और 32,000 पौधे लगा करके ताप्ती उपवन उगाए, जिसके कारण उस क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ गया। लैंड माफिया, रेत माफिया, इसका हमको विरोध का सामना करना पड़ा। हमने अपने काम को नहीं रोका, हमने लोगों का विश्वास जीता और धीरे धीरे जो हमारे विरोधी थे वो भी हमारे सहयोगी बन गए।
0: प्रकृति और पानी बचा के मोहन जी ने वर्तमान बचाया और अब उनका लक्ष्य था एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना।
1: भारत भारती विद्यालय के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा देकर आने वाले कल के लिए एक संस्कारी, प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता वाले युवा तैयार करते हैं। हमने बाचा गांव को ग्रामवासियों के सहयोग से एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया है। बाचा गांव शांति, प्रगति और समृद्धि का प्रतीक बन गया है।
0: लेकिन अनगिनत बदलाव लाने वाले श्री मोहन नागर जी की एक चीज कभी नहीं बदली, उनके परिवार का अटूट भरोसा। मोहन जी को कई सम्मान मिले पर उनका असली सम्मान तो भरे हुए तालाब, लहराते पहाड़ और मुस्कुराते चेहरे हैं।
1: पानी बचाना एक काम नहीं या वचन है आने वाली पीढ़ियों से, क्योंकि जल है तो कल है।
0: श्री मोहन नागर, पद्मश्री 2026।
3: नमस्कार, मेरा नाम मीना है और मैं राजस्थान के बारा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बारा डिस्ट्रिक्ट जो कि एक पूरे उसमें बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में शहरीय जाति निवास करती है। और मैं, मेरे को रीड इंडिया से जुड़े हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं और जो मेरे घर में सबसे बड़ी मैं ही हूँ और मैंने बीए तक पढ़ाई की और उसके बाद मेरी शादी हुई। मेरी शादी ऐसे घर में हुई जहाँ पे कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में ऐसा भी कुछ होगा। हर चीज में रोक टोक, आप घर से नहीं निकल सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी के सामने ऊंची आवाज में बोल नहीं सकते। तो मैंने 7-8 साल तक बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया, मारपीट, लड़ाई, झगड़ा सब कुछ होता था। फिर मैं रीड इंडिया से जुड़ी और जो गीता मल्होत्रा जी हैं और एक मोती जी थे जो सब कुछ होता था फिर मैं रीड इंडिया से जुड़ी और जो गीता मल्होत्रा जी हैं और एक मोती जी थे जो जिनके साथ मैंने लंबे समय तक काम किया। आज वो इस दुनिया में तो नहीं है मोती जी, पर उनकी प्रेरणा से मैं काम कर रही हूँ। और जो गीता मैम है उनके साथ जुड़कर मुझे बहुत ही मतलब एक तरह से मैं इतनी मजबूत हुई कि मैंने मतलब बहुत सारी चीजों में कभी सोचा नहीं कि मैं जो कर सकती हूँ। मैं आज बहुत अच्छे से अकाउंट्स बना सकती हूँ। मैंने 15 साल तक अकाउंटेंट का काम किया है और मेरी एक बेटी है जो अभी 11th क्लास में पढ़ती है, मैं उसकी परवरिश भी खुद कर रही हूँ। पूरी कोशिश कर रही हूँ उसको भी एक अच्छा माहौल दे सके। रीड इंडिया का जो सबसे अच्छा काम मुझे लगता है महिलाओं के साथ काम करना और महिलाओं को मजबूत करना, उनको सशक्त बनाना, खासकर मतलब महिलाओं के अंदर जो छुपे हुए हुनर होते हैं उनकी पहचान करना। जब वो अपने हुनर को एक बार पहचान लेती हैं तो वो आगे 2 पैसे कमा सकती हैं और अपने परिवार की मदद कर सकती हैं, परिवार की इनकम को बढ़ा सकती हैं और अपने पति के एक तरह से सहयोगी के रूप में भी काम करती हैं। रीड इंडिया ने महिलाओं के बहुत हद तक जीवन बदल दिया और आज जितनी भी महिलाओं के साथ हम लोग काम कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ कर रही हैं, अपने परिवार की आमदनी बढ़ा रही हैं, अपने परिवार की अच्छी परवरिश कर रही हैं। और मैं भी आज उन्हीं में से एक हूँ कि मैं 12 का जो हमारा सेंटर है उसको चला रही हूँ, सेंटर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रही हूँ और बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे सीखी हैं। और गीता दीदी को मैं एक तरह से अपना आदर्श मानती हूँ कि वो इतनी सारी महिलाओं को लेकर काम कर रही हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हुए और कैसे उस माहौल से उनको निकालना है और आगे बढ़ाना है वो मैंने सीखा है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी इसी तरह काम कर सकूँ और जो बहुत सारी मेरी जैसी महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ा सकूँ और उनके लिए कुछ कर सकूँ। धन्यवाद।
0: डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद, एक उपचारक जिसने पुनर्जीवित किया एक खत्म होती विरासत को, हिमालय की खामोशी में 2500 साल पुरानी उपचार परंपरा दम तोड़ रही थी। सोवा रिग्पा, नाड़ी देखकर

0: बीमारी समझना, दुर्लभ जड़ी बूटियों से इलाज करना। डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद मानते थे कि कुछ विरासतों को बचाना बेहद जरूरी है। सोवा रिग्पा को बचाने का उनका सफर बड़ी ही कम उम्र में शुरू हुआ। वो अक्सर अपने पिता को दवाइयां बनाते और लोगों का इलाज करते हुए देखा करते थे। उन्होंने सोवा रिग्पा को नहीं चुना, सोवा रिग्पा ने उन्हें चुना। शुरुआत में वो इसे सीखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें समझाया। डॉक्टर ग्योरमेद ने अपना जीवन इस चिकित्सा पद्धति को बचाने में समर्पित किया। उन्होंने सोवा रिग्पा पर कई किताबें भी लिखी, लेकिन परंपरा को बचाना आसान नहीं होता।
1: शुरुआत में सिस्टम को दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल था। अपने ही लोगों को समझाना कि ये भारत की विरासत है, काफी घुटन भरा था। छात्रों के लिए सोवा रिग्पा आखिरी विकल्प होता था। हमारी परंपरा दम तोड़ रही थी।
0: डॉक्टर ग्योरमेद ने कई सोवा रिग्पा चिकित्सकों को एक साथ लाया, अनेक सम्मेलन आयोजित किए और पुराने ग्रंथों को इकट्ठा किया। उनकी पहल पर माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से लेह में राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान की स्थापना हुई। पर संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ।
1: 2014 में मुझे भारत में चीनी दूतावास से एक प्रेस रिलीज मिली, जिसमें लिखा था कि वो इस चिकित्सा पद्धति को यूनेस्को में अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में दर्ज कराएंगे।
0: डॉक्टर ग्योरमेद ने सभी संबंधित दस्तावेज इकट्ठा किए, फाइल बनाई और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े। इस लंबे सफर में कई लोगों ने डॉक्टर ग्योरमेद का साथ दिया।
1: मेरे परिवार ने बहुत त्याग किया है। 25 सालों में मैंने शायद ही कभी छुट्टी ली होगी। जब मेरे पिता स्वस्थ थे, वो मुझसे कहते थे, मेडिसिन बुद्धा तुम्हारे साथ है, अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो एक दिन जरूर सफल होगे।
0: आज एक नई पीढ़ी इस प्राचीन ज्ञान की ओर लौट रही है। डॉक्टर ग्योरमेद की अथक मेहनत से सोवा रिग्पा सिर्फ बचा ही नहीं, उसे मिली एक नई जिंदगी। एक उपचारक के बेटे से भारत में सोवा रिग्पा सूत्रधार तक का सफर वाकई प्रेरणादायक है। डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कार।
2: माँ सृजक और पालनहार है। संस्कारों और मूल्यों का परचम जिसके पास है, हर पीढ़ी में परिवर्तन का सामना करने का हौसला भरना जिसका काम है, वही माँ खुद को दूसरों की निगाहों से देखकर खुश रहती है। संदेह से वह प्रभावित नहीं होती, क्योंकि अपनी क्षमताओं से वह भली भांति परिचित है। कोई माँ को नहीं कहता जरा अपना ख्याल रखना, क्योंकि जानते हैं ख्याल रखने का गुण ईश्वर ने माँ के अस्तित्व के साथ ही बनाया है। कि नन्ही रसोई होती है जिस पर छुटकी सी रोटियां बनती है और बड़ों का पेट संतोष से भर जाता है। जानते हैं अन्नपूर्णा तो वही है जिसके बिना दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। संसार की वह रचियता दंभ की मारी नहीं है, उसका आत्मविश्वास किसी को चुनौती नहीं देता। अगर हाथ उठाएं तो आसमान संकुचाकर परे हो जाए, पर माँ सिर्फ मौन की भाषा बोलती है। निर्जीव में प्राण वही फूंकती है, जीवन का प्रभाव उसी से है। माँ बच्चे की पहली गुरु होती है, वो जो सिखाती है बच्चे सीखते रहते हैं। नन्हे हाथों को जुड़वाकर पहला अभिवादन माँ ही तो करवाती है। पहली दुआ में माँ के बोल होते हैं, चंदा मामा है और कागज में सरस्वती वही तो बताती है। पग भरना माँ के दम पर ही हो पाता है और सुकून की नींद भी माँ के गोद की मोहताज है। सबको माँ सिखाती है, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो माँ के पास ही छूट जाता है। जैसे पल्लू के किनारे बंधी कोई छोटी सी पोटली हो जो बिना गौर किए देखी ही ना जा सके, उस नन्ही सी पोटली में जहान भर की खूबियां समाई है। दुनिया जीत लेने की कुव्वत माँ ने मुझे सिखाई, माँ जैसा कोई दूसरा मुझे क्यों नहीं मिला। इसका राज छुपा है उस पोटली में, सबको जन्म माँ से मिला है पर माँ से कौन मिला है। माँ स्त्री है, सृजक है, पालनहार है, अन्नपूर्णा है, वह माँ है, माँ के अस्तित्व स्रोत को नमन है।

मेरा नाम अंतिमा सिंह है। मैं सिमराई बाराबंकी से बोल रही हूँ। मेरी उम्र 16 साल है। मैं आपके सामने एक छोटा सा भजन सुनाने जा रही हूँ।

0: प्रयासों की बुनाई, सम्मान की कमाई। खेमराज सुंदरियाल, पद्मश्री 2026। हजारों की उम्मीद और उनकी जीविका के मार्गदर्शक हैं खेमराज सुंदरियाल, जिन्हें सब स्नेहवश गुरुजी कहते हैं। खेमराज जी का जन्म 1943 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। आर्थिक अभाव के कारण उन्होंने बचपन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया।
1: मैं जब पढ़ रहा था तो एक दिन संत कबीर जी के बारे में जाना, उनका बड़ा नाम है और हम इतनी किताबें पढ़ते हैं उनके, तो मैं तो उन्हीं के जैसा काम सीखूंगा। मैंने ठान लिया कि मैं बुनकर बनूंगा।
0: हैंडलूम टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करने के बाद खेमराज सुंदरियाल जी की काम की तलाश ने उन्हें यह बता दिया कि रोजगार के लिए उन्हें दिल्ली जाना ही होगा। लेकिन खेमराज जी के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे। तभी एक दिन उनके चचेरे भाई को चोट लग गई और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाना पड़ा। उनकी देखभाल के लिए इन्हें भी साथ भेजा गया और यही सफर खेमराज जी को पहली बार दिल्ली ले आया। दिल्ली क्लॉथ मिल में काम करने के बाद खेमराज सुंदरियाल बुनकर सहायता केंद्र में कार्यरत हो गए। 9 से 10 साल गुजर गए। काशी के बुनकर सेवा केंद्र में खेमराज जी की मुलाकात एक टेक्सटाइल आर्टिस्ट एसवी निकम जी से हुई। उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचान कर इन्हें केंद्र से लौटने के बाद आर्टिस्ट लोगों के लिए टैपेस्ट्री बनाने की सलाह दी।
1: उन्होंने मुझे 175 रुपए दिए लूम खरीदने के लिए।
0: इसी दौरान खेमराज सुंदरियाल बुनकर सेवा केंद्र की पानीपत शाखा में आ गए और जल्द ही देश के कई सुप्रसिद्ध कलाकारों के लिए टैपेस्ट्री बुनने लगे। जिस लड़के के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे, उनका काम उन्हें देश विदेश ले गया। जामदानी तकनीक पर खेमराज जी की पकड़ देखते ही बनती थी और साथ ही उन्होंने हत्ता तकनीक और पॉलिएस्टर की बुनाई भी शुरू कर दी। अपनी इसी लगन से उन्होंने पानीपत की दरी और खेस को एक बार फिर से प्रसिद्ध कर दिया। रिटायर होने के बाद खेमराज जी ने विष्णु हैंडलूम कोऑपरेटिव शुरू किया, जिसमें वो अब तक 10,000 से ज्यादा युवाओं को काम सिखा चुके हैं। भारत के कई प्रख्यात संस्थानों के छात्र भी खेमराज जी से बुनाई की कला सीखने आते हैं।
1: इस कला ने मुझे मान सम्मान और पहचान दिलाई। अब लगता है मैंने इस कला को नहीं, इस कला ने मुझे अपना है।
0: खेमराज सुंदरियाल, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कार।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद का।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

भारत में जन्मे एक महान संत, वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु, एक युवा सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारतीय संस्कृति की सुगंध पूरी दुनिया तक पहुंचाई। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पूर्व मत रुको। स्वामी विवेकानंद का ये क्रांति वाक्य आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता के एक कुलीन बंगाली परिवार में हुआ था। बचपन में उनका घर का नाम वीरेश्वर रखा गया, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे और दादा दुर्गाचरण दत्त संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थीं। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। माता पिता के धार्मिक, प्रगतिशील और तर्कसंगत विचारों का बहुत गहरा असर उनके व्यक्तित्व पर पड़ा। नरेंद्रनाथ दत्त के 9 भाई बहन थे। नरेंद्र बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्रनाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। सन 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया और 1879 में पुनः कोलकाता वापस आ गया। वो एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त किए थे। उन्होंने सन 1881 में ललित कला की परीक्षा पास की और सन 1884 में कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अपने शिक्षा काल में वे सर्वाधिक लोकप्रिय और एक जिज्ञासु छात्र थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य जैसे विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन किया। इसके साथ ही हिंदू धर्म ग्रंथों में भी उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराण भी पढ़े। अध्यात्म में उनकी विशेष रुचि थी। उन्हें साधुओं और सन्यासियों के प्रवचन और उनकी कही बातें हमेशा प्रेरित करती थीं। परमात्मा को पाने की लालसा उनके भीतर अत्यंत प्रबल थी। ईश्वर के प्रति अपनी जिज्ञासाएं लेकर वो पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष प्राप्त नहीं हुआ। नरेंद्रनाथ दत्त की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ सन 1881 के अंत और 1882 के प्रारंभ में आया, जब वो अपने दो मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर जाकर मां काली के भक्त रामकृष्ण परमहंस से मिले। यहीं से नरेंद्र का स्वामी विवेकानंद बनने का सफर शुरू हुआ। परमहंस से ईश्वरीय सत्ता को लेकर तर्क करने के उद्देश्य से वे उनके पास गए थे। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, आप हर समय भगवान की बात करते हैं, प्रमाण कहाँ है? कहाँ है भगवान? मुझे सबूत दिखाइए। इस पर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं प्रमाण हूं। मैं जिस तरह से हूं, मैं प्रमाण हूं कि ईश्वर मौजूद है। नरेंद्रनाथ को उनसे ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। वो परमहंस से ईश्वर के विषय में किसी महान बौद्धिक व्याख्या की उम्मीद कर रहे थे, यूं कि जैसे वो कहेंगे कि ईश्वर का प्रमाण बीज का अंकुरित होना है या ग्रहों का लगातार चक्कर लगाना है आदि इत्यादि। परमहंस का जवाब सुनकर वे कुछ भी कह नहीं पाए और वापस अपने घर लौट गए। 3 दिन बाद वो फिर परमहंस के पास आए और कहा, ठीक है, क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? इस पर रामकृष्ण परमहंस ने उनसे पूछा, क्या वाकई तुम में देखने की हिम्मत है? नरेंद्रनाथ दत्त का जवाब था, हां, क्योंकि ये प्रश्न उन्हें बहुत तकलीफ दे रहा था और वे उसका उत्तर चाहते थे। तब रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ की छाती पर अपना पैर रखा और वो समाधि की गहरी अवस्था में पहुंच गए, जहां वे मन की सीमाओं से परे थे। लगभग 12 घंटे तक इस अवस्था से नरेंद्रनाथ बाहर नहीं आ पाए।
और जब अपने भौतिक अनुभव में वो वापस आए तो उनके सारे प्रश्न समाप्त हो चुके थे, उन्हें आत्म साक्षात्कार हो चुका था। इस आध्यात्मिक अनुभव ने उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया था।

रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात के बाद नरेंद्रनाथ का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। परमहंस से वे इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्हें अपना गुरु मान लिया। सन 1884 में पिता की अचानक मृत्यु से नरेंद्र को मानसिक आघात पहुंचा। उनका विचलित मन देखकर रामकृष्ण परमहंस ने उनकी मदद की। उन्होंने नरेंद्रनाथ दत्त को अपना ध्यान अध्यात्म में लगाने को कहा। मात्र 25 वर्ष की उम्र में नरेंद्रनाथ दत्त ने गेरुआ वस्त्र धारण कर संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। संन्यास लेने के बाद स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत वर्ष की यात्रा की और विश्व भ्रमण पर निकल गए। उन्होंने जापान के कई शहरों का दौरा किया। चीन और कनाडा होते हुए वो अमेरिका के शिकागो पहुंचे। सन 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म परिषद में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उस समय पश्चिमी देशों में भारतीय हीन दृष्टि से देखे जाते थे। वहां मौजूद लोगों ने प्रयत्न किया कि स्वामी जी को बोलने का समय ही न मिले, लेकिन एक अमेरिकी प्रोफेसर के प्रयासों के बाद उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया। और फिर आगे जो कुछ हुआ वो एक इतिहास है। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, हृदय की अतल गहराई से निकले स्वामी जी के इस पहले संबोधन के समक्ष विश्व समुदाय नतमस्तक हो गया। वसुधैव कुटुंबकम के भावसागर से निकला ये संबोधन सुनकर सभी अभिभूत थे। इस संबोधन के बाद लगातार बहुत देर तक तालियां बजती रहीं। भारतीय संस्कृति की आत्मीय उदारता के अनुभव से श्रोता विभोर थे। व्याख्यान का निर्धारित समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। अध्यक्ष के अनुरोध पर स्वामी जी ने आगे बोलना शुरू किया और उन्होंने 20 मिनट से अधिक समय तक अपना व्याख्यान दिया। प्रसिद्ध लेखक रोमिया रोला ने कहा था, स्वामी विवेकानंद के द्वितीय होने की कल्पना भी असंभव है। वे जहां भी गए सर्वप्रथम ही रहे। 5 वर्षों से अधिक समय तक उन्होंने अमेरिका के विभिन्न नगरों, लंदन और पेरिस में व्यापक व्याख्यान दिए। उन्होंने जर्मनी, रूस और पूर्वी यूरोप की भी यात्राएं की। हर जगह उन्होंने वेदांत के संदेश का प्रचार किया। स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था कि अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व

1988 में स्वदेश लौटकर आए। घर लौटकर उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा, नया भारत निकल पड़े। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी थे। उनका विश्वास था कि भारत भूमि धर्म और दर्शन की पुण्य भूमि है। मातृभूमि से उन्हें असीम प्रेम था। महात्मा गांधी को आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला, उसमें स्वामी विवेकानंद के आह्वान की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बने। उनके विचारों से प्रेरित होकर अनगिनत युवा स्वतंत्रता समर में कूद पड़े।

स्वामी विवेकानंद ने युवाओं में चेतना भरने के लिए कहा था कि आज के युवकों को शारीरिक प्रगति से ज्यादा आंतरिक प्रगति करने की जरूरत है। आज के युवाओं को अलग अलग दिशा में भटकने की बजाय एक ही दिशा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अंत तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। युवाओं को अपने प्रत्येक कार्य में अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। यही कारण है कि उनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। वो सदा ही एक लक्ष्य पर एकाग्र होने की सीख दिया करते थे। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे, जबकि इसके पहले उन्होंने कभी बंदूक को हाथ भी नहीं लगाया था। उन्होंने पहला निशाना लगाया जो बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए, सभी बिल्कुल सटीक लगे।

ये देखकर लड़के दंग रह गए। उन्होंने पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा ध्यान उसी पर एकाग्र करो। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी चूकोगे नहीं। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। मेरे देश में बच्चों को यही करना सिखाया जाता है। उनका कहना था कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। योग, राजयोग और ज्ञान योग जैसे ग्रंथों की रचना करके स्वामी विवेकानंद ने युवा जगत को एक नई राह दिखाई। ये ग्रंथ एक धरोहर की तरह हैं। स्वामी विवेकानंद शिक्षा द्वारा लौकिक तथा पारलौकिक दोनों जीवन के लिए युवाओं को तैयार करना चाहते थे। वो कहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों विकास हो सके। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई सन 1897 को कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की नींव रखी और 9 दिसंबर सन 1898 को कलकत्ता के निकट हुगली नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। अपने गुरु के दिखाए मार्ग से लोगों को अवगत कराने के लिए उन्होंने दुनिया में जगह जगह रामकृष्ण मिशन की शाखाएं स्थापित की। रामकृष्ण मिशन की शिक्षा थी कि दुनिया के सभी धर्म सत्य हैं और वे एक ही लक्ष्य की तरफ जाने के अलग अलग रास्ते हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने धर्म के साथ साथ सामाजिक सुधार के लिए विशेष अभियान चलाए। इसके अलावा उन्होंने जगह जगह अनाथाश्रम, अस्पताल, छात्रावास की स्थापना की। मिशन के तहत उन्होंने अंधश्रद्धा छोड़कर विवेक बुद्धि से धर्म का अभ्यास करने को कहा। उन्होंने मानव सेवा को ही माधव सेवा कहा। जाति व्यवस्था को दरकिनार कर उन्होंने मानवतावाद और विश्व बंधुत्व का प्रचार प्रसार किया। जीवन के अंतिम दिन भी उन्होंने अपने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया। 4 जुलाई सन 1902 को बेलूर में रामकृष्ण मठ में ध्यानमग्न अवस्था में ही वे ब्रह्मलीन हो गए। स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी और सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि आज भी विश्वभर में है। भारत की आत्मा, भारत का वेदांत दर्शन स्वामी विवेकानंद के कारण ही पाश्चात्य देशों तक पहुंच सका। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने उनके विषय में कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। नमन ऐसी महान विभूति को।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: विज्ञान वाणी के विज्ञान वार्ता प्रसारण में आपका स्वागत है।
1: प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी सन 1769 और 1799 के बीच 30 साल की अवधि में ब्रिटिश सेना और हैदर अली तथा उसके बेटे टीपू सुल्तान के बीच 4 मैसूर युद्ध लड़े गए। इन युद्धों के दौरान अंग्रेजों को 2 अत्यंत महत्वपूर्ण भारतीय तकनीकों रॉकेट निर्माण और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानकारी मिली। बाद में इन दोनों ही भारतीय तकनीकों का पहले इंग्लैंड में और तदनंतर यूरोप के अन्य देशों में तेजी से विकास हुआ। अंग्रेजों ने भारतीयों से किस तरह प्लास्टिक सर्जरी की विद्या सीखी, ये एक दिलचस्प दास्तान है। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच तीसरा मैसूर युद्ध एक संधि के द्वारा समाप्त हो चुका था। उसके कुछ दिन बाद की ही घटना है। अंग्रेजों की खिदमत करने वाला कवसाजी नाम का एक मराठा गाड़ीवान और 4 तिलंगे मैसूर राज की सीमा में दाखिल हुए तो टीपू सुल्तान के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके हाथ नाक कान सभी कुछ काट दिए। फिर उन्हें अंग्रेज कमांडर के पास वापस भेज दिया गया। उसके कुछ दिन बाद की बात है, वहां अंग्रेज कमांडर एक भारतीय व्यापारी से कोई और सौदा तय कर रहा था तो उसने देखा कि व्यापारी की नाक कुछ अजीब तरह की है और उसके ललाट पर जख्म के निशान भी हैं। कमांडर के पूछने पर व्यापारी ने बताया कि परस्त्री गमन के अपराध के दंड स्वरूप उसकी नाक कान काट दी गई थी और कुम्हार जाति के एक मराठा वैद्य से उसने नाक कान बनवा लिया था। अंग्रेज कमांडर ने उस वैद्य को बुला लिया और उससे कवसाजी तथा 4 तिलंगों की नाक की प्लास्टिक शल्यक्रिया करने को कहा। शल्यक्रिया पुणे के पास एक स्थान पर हुई। उस समय 2 अंग्रेज डॉक्टर थॉमस क्रूसो और जेम्स फिंडले वहां मौजूद थे। कुछ दिन बाद उस सनसनीखेज शल्यक्रिया का सचित्र विवरण मद्रास गजट में प्रकाशित हुआ। फिर लंदन में प्रकाशित होने वाला जेंटलमैन मैगजीन नामक पत्रिका के अक्टूबर 1794 के अंक में वो विवरण पुनः मुद्रित हुआ। 200 से भी कुछ अधिक साल पहले भारत में की गई नाक की प्लास्टिक सर्जरी के उस विवरण की प्रमुख जानकारी को यहाँ प्रस्तुत करना उपयोगी होगा। सर्वप्रथम नाक का सही माप लेने के लिए मोम की एक परत तैयार की गई, फिर ललाट से उसी आकार की त्वचा काटी गई पर आंखों के बीच थोड़ा हिस्सा रक्त संचार के लिए ललाट से जुड़ा रहने दिया गया। उसके बाद नासा छिद्रों के लिए ठीक से स्थान बनाकर नाक की चतुर्दिक सीमा की त्वचा में चीरा लगाया गया। फिर ललाट से काटी गई त्वचा को आधा मोड़कर नीचे नाक पर लाया गया और चीरे से फंसा दिया गया। फिर कपड़े की पट्टियों पर भीगे कत्थे का लेप लगाकर उसकी 4-5 परतें त्वचा की जोड़ पर लगा दी गईं। जख्म को भरने के लिए कत्थे के उस सीमेंट के अलावा और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया। 4 दिन बाद उन्हें हटाकर घी में डुबोई हुई पट्टियां जख्म पर लगाई गईं। 20वें दिन ललाट से जुड़ी हुई त्वचा को काट दिया गया। इस शल्यक्रिया के बाद मरीज को 5-6 दिन तक पीठ के बल बैठाया गया। नासा छिद्र पर्याप्त खुले रहे इसीलिए 10वें दिन उसमें मुलायम कपड़े के टुकड़े रखे गए। अंत में इस शल्यक्रिया के विवरण में एक टिप्पणी है, नाक की ये प्लास्टिक शल्यक्रिया हमेशा सफल रही है। ये बनावटी नाक मजबूत होती है और काफी हद तक कुदरती नाक की तरह दिखाई देती है। कुछ अरसे बाद ललाट का दाग भी काफी हद तक मिट गया है। भारत में ही की गई नाक की प्लास्टिक सर्जरी का ये विवरण लंदन में प्रकाशित हुआ तो इसे पढ़कर वहां के अनेक सर्जन चकित रह गए। उस सचित्र विवरण ने 30 साल के तरुण सर्जन जोसेफ कॉन्स्टेन कारपूर को सबसे अधिक प्रभावित किया। उससे इस प्रकार की शल्यक्रिया के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। फिर उसने साहस करके लंदन में 23 अक्टूबर 1814 को नासिक संस्थान की ठीक वैसी ही शल्यक्रिया की जैसी भारत में कवसाजी और तिलंगों पर की गई थी। उसके साथ ही यूरोप में आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का युग शुरू हुआ। लंदन में नाक संस्थान की वह पहली शल्यक्रिया करने में कारपूर को कुल 37 मिनट का समय लगा। उस पहली सफलता के बाद कारपुए ने जल्दी ही नाक संस्थान की दूसरी शल्य क्रिया की भी, जिससे उसे खूब प्रसिद्धि मिली। भारतीय नाक यूरोप में मशहूर हो गई। समीप के अंग से त्वचा लेकर अंग भंग के स्थान पर जोड़ी जाती है, तो उस विधि को आज भी भारतीय प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। कारपुए ने नासिका संधान के अपने अनुभवों के आधार पर सन 1816 में एक छोटी पुस्तक भी प्रकाशित की थी। उससे प्रभावित होकर जर्मन सर्जन ग्रोएफ ने हाथ की त्वचा लेकर नासिका संधान की प्लास्टिक शल्यक्रिया शुरू कर दी थी। इस जानकारी से सहज स्पष्ट हो जाता है कि आज बहुत अधिक इस्तेमाल होने वाला संश्लेषित प्लास्टिक पदार्थ से प्लास्टिक सर्जरी का कोई सारोकार नहीं है। प्लास्टिक शब्द यूनानी भाषा के प्लास्टिकोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सांचा बनाना या आकार देना। प्लास्टिक शल्यक्रिया में शरीर के खोए हुए अंग को पुनः स्थापित किया जाता है अथवा विरूपता या विकृत अंग को दुरुस्त किया जाता है। हालांकि प्लास्टिक शल्यक्रिया एक बहुत पुरानी तकनीक है, परंतु तेजी से इसका विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही हुआ है। प्राचीन यूरोप से प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। बाइबल में इसका कोई उल्लेख नहीं है। होमर ने अपने महाकाव्यों में युद्ध जनित अनेक जख्मों और उनके उपचारों की जानकारी भी दी है, परंतु अंग भंग कहकर प्लास्टिक सर्जरी का कोई भी जिक्र नहीं है। रोमन चिकित्सक सेल्सस होंठ, कान और नाक की प्लास्टिक शल्यक्रिया उल्लेख करता है, मगर लगता है कि स्वयं उसने कोई शल्यक्रिया नहीं की थी। रोमन साम्राज्य के अवसान के बाद फिर हमें मध्ययुग तथा यूरोप से प्लास्टिक शल्यक्रिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी के उल्लेख 15वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। दरअसल कॉफ्रे के पहले ही नासिका संधान की भारतीय विधि की जानकारी दक्षिण यूरोप के देशों में पहुंच चुकी थी। सिसली द्वीप के सर्जन ब्रांका ने 1442 ईस्वी में नासिका संधान की शल्यक्रिया की थी। उस शल्यक्रिया में उसने गाल की त्वचा का उपयोग किया था। बाद में ब्रांका के पुत्र एंटोनियो ने पिता के कार्य को जारी रखा। हाथ से त्वचा लेकर नासिका संधान की शल्यक्रिया करने वाला एंटोनियो यूरोप का पहला सर्जन था। पिता पुत्र ब्रांका के बाद 16वीं सदी के आरंभ में इटली के बोयानी परिवार ने प्लास्टिक सर्जरी का काम किया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इटली के बोलोना विश्वविद्यालय में शल्य चिकित्सा के प्राध्यापक जास्पारो ताग्लियाकोजी ने नाक संधान के सर्जन के रूप में खूब ख्याति अर्जित की। उसने हाथ से त्वचा लेकर नाक संधान की शल्यक्रियाएं की। उसने कर्णबंध और ओष्ठबंध की शल्यक्रियाएं भी की। ताग्लियाकोजी ने 1597 ईस्वी की कागड़ा की प्लास्टिक सर्जरी की परंपरा के बारे में जानकारी दी है। पता चलता है कि अकबर के शासनकाल में कांगड़ा के बिधा नामक एक वैद्य ने नासिका संधान की शल्यक्रिया की थी। ईसा की 7वीं या 8वीं सदी के प्रख्यात चिकित्सक बाणभट्ट के ग्रंथ अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में भी प्लास्टिक शल्य क्रम के बारे में जानकारी मिलती है, परंतु सबसे प्राचीन जिस भारतीय ग्रंथ में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है वो है सुश्रुत संहिता। प्राचीन भारतीय चिकित्सा ज्ञान के दो महान विश्वकोश हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। इसमें चरक संहिता अधिक प्रसिद्ध है और अधिक प्राचीन भी है। सुश्रुत संहिता की रचना कोई 2000 साल पहले हुई। चरक संहिता प्रमुख रूप से औषधि विज्ञान का ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता में मुख्यतः शल्य चिकित्सा की विशद जानकारी दी गई है। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में एक ग्रंथ प्रकाशित किया गया था, उसे आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का पहला वैज्ञानिक ग्रंथ भी माना जाता है। हाथ से त्वचा लेकर ताग्लियाकोजी ने नासिका संबंध की जिस विधि का विकास किया था वो अब इटालवी विधि के नाम से जानी जाती है। ताग्लियाकोजी ने चिकित्सा विज्ञान की अमूल्य सेवा की थी, फिर भी उसे ईसाई चर्च का कोभाजन बनना पड़ा। उसे धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया और उसके शव को चर्च के कब्रिस्तान से निकालकर दूसरे सामान्य स्थान पर गड़वा दिया गया। मगर बोलोना के नागरिकों के दिल में अपने इस देशवासी के लिए अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने ताग्लियाकोजी की स्मृति में एक मूर्ति स्मारक खड़ा किया। उस मूर्ति के एक हाथ में नाग है। ताग्लियाकोजी के बाद उसके शिष्य प्लास्टिक शल्यक्रियाएं करते रहे।

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक पेड़ है जिसके नीचे सिंदूर से रंगे हुए कुछ पत्थर रखे हैं। ये पेड़ और ये पत्थर स्मृति हैं उस शख्सियत की जिनका नाम महान देशभक्तों में प्रमुखता से लिया जाता है। नेपोलियन की तरह सैन्य दृष्टि रखने वाले इस क्रांतिकारी ने इसी पेड़ के नीचे फांसी के फंदे को गले में डालकर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। 8 अप्रैल 1859 का दिन था जब पहली बार इस नरकेसरी को अंग्रेज गिरफ्तार करने में कामयाब हो सके। 15 अप्रैल को सैनिक अदालत में न्याय का नाटक रचा गया और 18 अप्रैल को उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। एक देशभक्त की देश के प्रति मोहब्बत की पराकाष्ठा की दास्तान।

नासिक जिले के यवला नामक स्थान पर 1814 में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया रामचंद्र राव। बालक के पिता पेशवाओं के धर्मगुरु थे। वेदपाठी ब्राह्मण पिता ने बालक को पुरोहिताई की शिक्षा देनी चाहिए, पर बालक तो स्वाधीनता क्रांति का इतिहास लिखने के लिए ही जन्मा था। शस्त्र विद्या में उसकी निपुणता को देखकर बाजीराव पेशवा ने उसे एक रत्न जड़ित टोपी प्रदान की और इस तरह रामचंद्र राव तात्या टोपे बन गए। वो तात्या जो युद्ध भूमि में ही आगामी युद्ध की रणनीति बना लेते थे। विलक्षण गुणों से युक्त विलक्षण मानव।

1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे ने कानपुर को अंग्रेजों से वापस हासिल किया था। झांसी की रानी की सहायता के लिए वे कालपी पहुंचे थे और ग्वालियर पर अधिकार करके स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। छापामार युद्ध शैली के लिए विख्यात तात्या टोपे का नाम क्रांतिवीरों में खास उत्साह पैदा करता था। एक ओर वे महारानी लक्ष्मीबाई का आदर्श थे तो दूसरी ओर आदिवासी जननायक टंट्या भील और भीमा नायक भी उनके शौर्य को प्रणाम करते थे। एक बार भीमा नायक ने जंगलों में भटकते हुए तात्या टोपे को पावन सलीला माँ नर्मदा को पार करवाकर अपने आप को धन्य किया था। धन्य है तात्या टोपे, धन्य है ये भारत भूमि, धन्य है इसके क्रांतिवीर।

हमारे देश की आजादी की लड़ाई का लंबा इतिहास दुर्भाग्यपूर्ण विश्वासघातों से भरा पड़ा है। तात्या टोपे को भी विश्वासघात का शिकार बनाया गया। विश्वासघात से की गई गिरफ्तारी और न्याय के झूठे नाटक के दौरान तात्या ने अपने आप को अंग्रेजों का प्रजाजन मानने से इनकार कर दिया। उनके कर्तव्य पेशवाओं और मातृभूमि के लिए थे। उन पर चलाया गया मुकदमा उनकी नजर में एक ऐसा स्वान था जिसे चलाने का अधिकार अंग्रेजों को कतई नहीं था। इतिहास के निष्पक्ष विद्वान उनकी इस सोच से पूर्ण तरह रजामंद नजर आते हैं। हिंदुस्तान एक मातृभूमि, तात्या टोपे एक धरती पुत्र, अंग्रेज कौन, खामखा।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: हेलो, मेरा नाम नीलम है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं घर में रहती हूँ। मुझे यहाँ पे एक बार रीड इंडिया वाले हमारे उधर सर्वे करने आए थे, उनके थ्रू मुझे रीड इंडिया के बारे में पता लगा, फिर मैं इधर आने लग गई, मैं रीड इंडिया से जुड़ गई। यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ से पार्लर भी सीखा है और कंप्यूटर भी। इस टैग के कोर्स में मैंने IT बनाना और किसी की लोकेशन सेंड करना, और पहले मैं घंटों उसकी लाइन में, बैंक की लाइन में खड़ी रहती थी, बट जब से फ़ोन, मतलब इसकी नॉलेज मुझे हुई है कंप्यूटर की, तब से मैं अपने फ़ोन में ये डाउनलोड करके कहीं भी पैसे सेंड कर सकती हूँ, पैसे भेज सकती हूँ, और उससे मतलब कैब करके मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। अब मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और सबसे बड़ी बात जो रीड इंडिया से जुड़ने के बाद मेरे साथ हुई है वो ये कि मैं घर में रह के डिप्रेशन में रहने लग गई थी, अब मैं फ्री माइंड हो गई हूँ, मैं मतलब आज़ाद होके सोच सकती हूँ, और थोड़ा मेरा दिमाग भी मतलब सही रहने लग गया है। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी घर में रह के, मैं बाहर भी कहीं नहीं जाती थी, और घर में रह के यही रहने लग गया था, बस डिप्रेशन ही रहने लग गया था। अब यहाँ आके मैं बिल्कुल ठीक रहने लग गई हूँ। हाँ, मैं हाउसवाइफ के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बाहर आइए, आपको नहीं सीखना नहीं है वो ठीक है, बट आप आइए, सीखने के बहाने से ही आइए, ताकि आप मतलब मेंटली तौर पर सही रह सकें, और आपको एक दूसरे से बात करके कुछ नया पता लगे। मतलब किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो कुछ अच्छा ही पता लगे, अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में, बहुत कुछ आप यहाँ आके जान सकते हैं। थैंक यू रेड इंडिया।
2: हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लेंसी एंड आई पास 10th क्लास। देन आई थिंक टू जॉइन रीड इंडिया एकेडमी टू इम्प्रूव माय कंडीशन। मैंने एकेडमी ज्वाइन की रीड इंडिया, और उसमें हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ TEG, टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग गर्ल्स। ये एक कोर्स है जो वुमेन और गर्ल्स के लिए है। ये वुमेन और गर्ल्स की बैड कंडीशन को इम्प्रूव करता है। जैसे पहले घरों में महिलाएं निकलती नहीं थी और कोई निकलने नहीं देता था, भाई और उनके पिता, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ये प्रोग्राम चला है तो इसके लिए सब यहाँ पे वुमेन और गर्ल्स आती हैं, कंप्यूटर कोर्स करती हैं और सिलाई करती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हैं जिनसे वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, और आगे भी एक प्रोग्राम चल रहा है। मैंने एक कंप्यूटर कोर्स किया है 21 डेज का भी, और मैं बेसिक कंप्यूटर भी कर रही हूँ। और मैंने इंटरनेट के थ्रू मेलिंग सीखी है, वेबसाइट से लिंक बनाना सीखा है, और मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी है। पहले मतलब मुझे कुछ नहीं करना आता था, मुझे किस सबकी ज़रूरत होती थी, लेकिन आज कल मैं खुद कर रही हूँ ये सब, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती, बस मैं बहुत इंडिपेंडेंट फील करती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया एकेडमी।
3: गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ तनु तनवर। आई पास 10th क्लास एंड आई जॉइन रीड इंडिया एकेडमी इन शाहबाद मोहम्मदपुर। दिस इज़ ओनली वन एकेडमी हु टीच अस कंप्यूटर। दिस एकेडमी हेल्प्स टू बी अ वुमेन इंडिपेंडेंट। रीड इंडिया स्टार्ट्स टैग प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स ओनली टू इम्प्रूव द बैड कंडीशन फॉर वुमेन्स, and it helps us in form filling, and also we helps our parents, then we also reserve tickets. Thank you.
4: I'm Shweta. I study in IGNU University, or I done NPTT course for Polytechnic Institute Rajouri Garden. और हमारे जो यहाँ पे शाहबाद में ये है ना NGO, मैं यहाँ से क्लासेस ले रही हूँ टैग की, तो इससे मेरे को काफ़ी चेंजेस आए हैं, और थोड़ा सा लगा के भाई यहाँ पे आके हाँ बाकी को भी करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफ़ी हेल्प है, मतलब टीचर्स अच्छे से समझाते हैं, कोई दबाव नहीं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। और दूसरा फिर इससे ये है कि नॉलेज बढ़ती है यहाँ पे आके एक दूसरे को, मतलब हम जाके जैसे हम आ रहे हैं किसी को बता रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं, तो इससे काफ़ी चेंजेस आते हैं, मतलब किसी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो पास में है, और ऊपर से यहाँ पे कोई ऐसे प्रेशर वाली बात नहीं, ऐसे कोई मतलब फोर्स कर रहा है किसी चीज़ के लिए, कोई बता नहीं रहा, इसमें ये होता है। और मतलब होना चाहिए कि हर घर से कोई एक भी आए ना, तो ये नहीं मतलब कि सिर्फ घर में या एक फैमिली में, इसमें पूरे एरिया में चेंजेस आ सकते हैं अगर हम लाना चाहें तो। और उसके बाद जैसे होती है ना फैमिली, टाइम से पहले मतलब लड़कियों को मतलब घर बिठा लेते, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल कंडीशन लगा लो, कुछ भी हो, जिससे लड़कियां घर बैठ जाती हैं, पढ़ाई कर नहीं पाती, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे, इसमें लाइन में आने से, क्योंकि इनमें मतलब इतना कोई ज़्यादा हाई फाई फीस वगैरह भी नहीं लगती कि जिससे भाई कोई अफोर्ड नहीं कर पाए। इसमें नॉर्मली होता है फाइनली, मतलब ये कि जैसे नॉर्मली फैमिली होती है वो भी कर सकती है, और जो मतलब बिल्कुल लो होती हैं वो भी कर सकती हैं। और जैसे मतलब भाई होती है कुछ फैमिली जो लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ लड़कों को करती हैं कि भाई लड़के ही आगे बढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं बढ़ सकती, और शादी वादी कर देते हैं, उनकी पढ़ाना नहीं चाहते उनको आगे, तो उनके लिए भी मतलब है कि भाई वो कर सकती हैं आके, तो उनको लगेगा, खुद ही लगेगा मतलब चेंजेस आ जाते हैं। और इससे मतलब इतना कुछ सिखाते हैं हमें यहाँ पे ये कि मतलब हमें खुद लगता है कि हम अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग वर्क में, और हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना या ऑनलाइन मतलब कुछ भी वर्क है वो हम कर सकते हैं। तो इससे हमें हमारे लाइफ में भी चेंजेस आते हैं और घर वालों के में भी आते हैं, और इससे ये आगे हमारा जो फ्यूचर होता है ना वो सेव हो जाता है, क्योंकि अगर हम आज अपने पैरों पर खड़े तो तभी तो अपने बच्चों को हम बना सकते हैं मतलब इंडिपेंडेंट। अगर बच्चों को कुछ सिखाना तो उसके लिए पहले खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, इससे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि उससे पहले हमें कुछ जानकारी होगी, हमें कुछ डिटेल्स होंगी, तभी हम किसी के सामने मतलब रख सकते हैं। एक शादी करना और मतलब लाइफ को घर में दबा के रखना, ख़त्म कर देना, सब कुछ नहीं होता आज के टाइम में। मतलब जितना बढ़ो आगे उतना कम है, और हर किसी को बढ़ना चाहिए, किसी एक को नहीं, हर किसी को, जहाँ से जैसी हेल्प मिलती है, जो मिलती है वो करनी चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है कि सिर्फ यही कर सकता है, यही बोल सकता है, मैं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। सबको है मतलब एक फ्रीडम होती है अपने आप में, लाइफ अपनी है, किसी का प्रेशर नहीं होता कोई के मतलब हम किसी के प्रेशर में आके अपनी लाइफ ख़राब कर दे, या मतलब बोल ले नहीं, कुछ नहीं करे, आगे नहीं बढ़े। एक दो बार मतलब होता है भाई, डर होता है एक, लेकिन बार बार निकलने से ना सब डर खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है ख़त्म करने से ख़त्म होएगा, ऐसे डरने से तो डर बढ़ता ही है, कोई मतलब दूसरा उसको ख़त्म नहीं कर सकता आके। अब हम हैं जैसे कुछ होती हैं लड़कियाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की को फ्रीडम होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे सिर्फ पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया है, बाकी फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि मतलब मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि सबको ये था ट्वेल्थ कर लिया, पास आउट हो गया, स्कूल शादी कर दो, ये है वो। लेकिन मेरे पेरेंट्स शुरू से वर्किंग है, तो वो चाहते हैं, उनको पता है पैसे की कीमत क्या है, तो वो चाहते हैं मतलब तो बच्चे कुछ अच्छा करें, ताकि उनको इस लाइन में ना जाना पड़े, और वो अपने पैरों पे खड़े हो, मतलब अच्छे से अच्छा काम करें, और दुनिया में मतलब उनकी एक अलग पहचान हो। तो इसलिए उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया और आज मैं यहाँ हूँ। और एक शादी की तो एक लास्ट में एक वो होता है कि भाई अब तो करनी है, वो तो एक लास्ट मोमेंट होता है कि अब तो भाई स्टेप लेना ही है। उससे पहले ना सिर्फ स्टडी के बारे में सोचना चाहिए, कैसे लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। ज़रूरी नहीं होता कि मतलब घर वालों ने बोल दिया आप सुन के बैठ गए, चलो भाई कोई नहीं, उनको समझाना चाहिए अपने तरीके से, ऐसे भी नहीं कि लड़ लो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं, प्यार से समझाओ, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बताओ, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस है। और वैसे भी आजकल तो हर कोई लड़का भी अच्छा नहीं मिलता, हर कोई फैमिली भी अच्छी नहीं मिलती, वो तो किस्मत की बात है, सुख दुख तो किस्मत का होता है। तो इसलिए हमें जितना हो सके ना अपने पैरों पर खड़ा होकर इंडिपेंडेंट होकर मतलब सोचना चाहिए, लास्ट एक मोमेंट होता है जो स्टेप लेना है, उससे पहले अपनी लाइफ बनाओ, जो करना है वो करो, बाकी करो सिर्फ ऐसा ही कि घर वालों को भी अच्छा लगे और खुद का भी एक स्टैंड और दुनिया में अपनी पहचान हो।
0: रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीते रहो वंस अगेन।
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम
0: इसे
1: है।
0: क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बबलू?
1: ऑफ कोर्स, मुझे क्या हुआ है। एनीवेज, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस कोकिला एमबीबीएस। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ?
0: तुम्हें तो रातों रात ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं।
1: हाँ, एक्चुअली लाइफ में पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि किसी के काम आने में कितना आत्मिक सुख मिलता है।
0: अच्छा,
1: एक्चुअली मेरे एक दोस्त को बहुत जरूरी काम से अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया, तो पूरे एक हफ्ते मुझे उसकी बूढ़ी दादी की देखभाल करने का मौका मिल गया। अभी मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना कोकिला, वृद्धावस्था में पहुंच चुके लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? गठिया। दादी जी भी इसी की मरीज हैं।
0: ओ, तो ये बात है। और अगर मैं ठीक गेस कर रही हूं तो आज शायद तुम गठिया यानी आर्थराइटिस के बारे में विस्तार से जानना चाहोगे, राइट?
1: ऑफ कोर्स।
2: हर रोज ना जाने कितनी बार आप झुकते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं। आप कभी नहीं सोचते आप ये सब इतनी आसानी से कैसे कर पाते हैं। सच मानिए, जब सब कुछ ठीक से चल रहा होता है तो आप चाहे जैसे अपने शरीर का इस्तेमाल करते रहते हैं, और इस लापरवाही का नतीजा निकलता है उफ, आह, आउच। हमें ये मोबिलिटी यानी गतिशीलता और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जॉइंट से। चलिए एक बड़ी मशीन के जरिए समझते हैं हमारे जॉइंट्स यानी जोड़ों की बनावट। बड़ी बड़ी मशीनें भी हमारे जॉइंट्स की नकल करके बनाई गई हैं। मशीन ठीक से काम करे इसलिए इसकी रेगुलर ऑयलिंग की जाती है। ऑयलिंग नहीं की तो मशीन के जॉइंट्स घिस जाएंगे और काम ठप हो जाएगा। ग्रीस के इस्तेमाल से मशीन के जॉइंट स्मूथली काम करते हैं। इस मशीन की तरह हमारे जॉइंट्स को भी ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है, और ये ऑयलिंग हमारे जॉइंट्स में नेचुरली होती है। हमारे शरीर के जॉइंट्स को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है बॉल और सॉकेट जॉइंट्स, जैसे शोल्डर और हिप जॉइंट्स। दूसरा वर्ग है हिंज जॉइंट्स, जिनमें शामिल हैं एल्बो, नी और एंकल जॉइंट्स। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स में जहां रेंज ऑफ मूवमेंट अधिक होती है, वहीं हिंज जॉइंट्स में रेंज ऑफ मूवमेंट लिमिटेड है। इसको समझने से पहले आइए समझते हैं हमारे जॉइंट्स की संरचना। हमारे शरीर में दो हड्डियां जहां एक दूसरे से जुड़ती हैं, उनके जॉइंट्स पर एक नाजुक कवर होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। इस गद्देदार कार्टिलेज से जॉइंट्स का लचीलापन भी बना रहता है, जिससे जोड़ों को मोड़ने में आसानी होती है। हड्डियों का जोड़ एक कैप्सूल जैसी संरचना में सुरक्षित रहता है। इस कैप्सूल पर पतली टिश्यू की परतें होती हैं, जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम भी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन ही करते हैं। दरअसल साइनोवियल मेम्ब्रेन एक चिकना फ्लूइड पैदा करते हैं जो जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम करता है और हड्डियों को रगड़ से बचाता है, और इसके साथ साथ कार्टिलेज और हड्डी को नरिशमेंट यानी पोषण देता है। अगर किसी वजह से कार्टिलेज घिस जाए या उसमें किसी तरह का बदलाव आ जाए तो जोड़ों में स्टिफनेस यानी अकड़न और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होने लगती है, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। जोड़ों को कई वजहों से नुकसान पहुंच सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कई बार आर्थराइटिस से जॉइंट्स की शेप ही बदल जाती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और इससे बेहद दर्द भी होता है। गठिया या आर्थराइटिस का शाब्दिक अर्थ है जोड़ों की सूजन या इन्फ्लेमेशन। बुढ़ापे की दहलीज पर तो आर्थराइटिस जैसे हमारा इंतजार करते मिलती है। उम्र के साथ शरीर जर्जर होता जाता है, जोड़ों के सिरों की कार्टिलेज भी घिस जाती है। कार्टिलेज के घिसने से जॉइंट्स के जोड़ों में रगड़ से दर्द होता है। संतुलित आहार न लेने से शरीर में कैल्शियम की कमी से बोन की डेंसिटी यानी घनत्व कम हो जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फैटी फूड खाने से शरीर का वजन बढ़ने लगता है, मतलब जोड़ों को ज्यादा और ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है, और एक वक्त आता है जब शरीर में हड्डियों के ये जोड़ जवाब देने लगते हैं।

0: आर्थराइटिस होने की वजह क्या है?
1: बिल्कुल ठीक पॉइंट पर आए तुम बबलू। एक्चुअली एजिंग आर्थराइटिस की एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे रीजंस हैं जो आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी की बड़ी वजह बन सकते हैं।
2: आर्थराइटिस के ज्यादातर मामले क्रॉनिक होते हैं, यानी लंबे समय तक इस बीमारी से जंग लड़नी पड़ती है। जोड़ों में दो हफ्ते से ज्यादा दर्द या स्टिफनेस और सूजन का मतलब है जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेने की चेतावनी। हो सकता है आप आर्थराइटिस के निशाने पर हों। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इस बीमारी की ज्यादा शिकार होती हैं। महिलाओं में ये बीमारी पुरुषों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा पाई जाती है। समय पर इलाज से इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इस बीमारी के लक्षण कभी तो अचानक सामने आते हैं और कई बार सिम्टम्स लंबे समय में धीरे धीरे दिखाई देते हैं। आर्थराइटिस के प्रमुख लक्षण हैं जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न। लेकिन सिर्फ डॉक्टर ही तय कर सकता है कि आर्थराइटिस है या नहीं, और अगर है तो किस तरह की, और फिर तय किया जाता है ट्रीटमेंट प्लान। आर्थराइटिस वैसे तो कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर आर्थराइटिस 4 तरह से हड्डियों पर हमला बोलती है। पहला ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा गॉटी आर्थराइटिस, तीसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस और चौथा इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। पहले बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। इसे बुढ़ापे की बीमारी भी कहते हैं। बुढ़ापे में जॉइंट्स भी बूढ़े हो जाते हैं। हड्डियों में कैल्शियम की कमी से बोन डेंसिटी यानी हड्डियों में मिनरल्स कम होने लगते हैं और हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। कार्टिलेज भी सालों के इस्तेमाल से घिसती जाती है और बची खुची कसर कमजोर मसल्स पूरी कर देते हैं। वीक मसल्स जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव को ज्यादा रोक नहीं पाते, जिससे कार्टिलेज रगड़ खाते हैं और घिस जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में शरीर के बड़े जॉइंट जैसे कंधे का जॉइंट्स, घुटनों का जॉइंट, हिप जॉइंट और रीढ़ की हड्डी पर यह बीमारी ज्यादातर असर डालती है। लगातार हड्डियों में रगड़ होने से जोड़ों में टूट फूट या रिसाव भी होने लगता है। कभी कभी तो कार्टिलेज असामान्य रूप से हड्डियों के किनारे पर बढ़ जाता है, जिसे बोनी स्पर्स कहते हैं। और अब बात करते हैं गाउटी आर्थराइटिस की। ये आर्थराइटिस हमारे मेटाबॉलिज्म में होने वाली गड़बड़ी से पैदा होती है। मेटाबॉलिज्म में खराबी के चलते हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये यूरिक एसिड जब किसी जॉइंट पर जमा हो जाते हैं तो वहाँ तेज दर्द होता है। इस आर्थराइटिस का असर ज्यादातर छोटे जॉइंट्स पर जैसे पैर और हाथ के अंगूठे पर होता है। अक्सर किसी पैर के अंगूठे के जॉइंट में बहुत तेज दर्द होता है, रोगी को पसीना आता है और शिवरिंग महसूस हो सकती है। जॉइंट के ऊपर की त्वचा बाद में काफी नाजुक और लाल हो जाती है। खाने पीने की कुछ चीजों से ये बीमारी बढ़ सकती है, जैसे कि अधिक शराब पीने से गाउटी आर्थराइटिस के पेशेंट्स में बीमारी और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इन्फेक्टिव आर्थराइटिस की। इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट्स में सूजन होने लगती है और इसे इन्फेक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। अक्सर जो जॉइंट इस बीमारी का शिकार होते हैं वहाँ पहले कभी चोट लगी होती है, जिस कारण वहाँ जर्म्स इन्फेक्शन फैलाने में कामयाब हो पाते हैं। अगर समय पर इस पर काबू ना पाया जाए तो ये बीमारी लंबे समय तक परेशान कर सकती है।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आर्थराइटिस कितना गंभीर रूप धारण कर सकती है। आप लोगों को एक बात बता दूं, हम में से बहुत से लोग आर्थराइटिस को वृद्धावस्था में होने वाला रोग समझते हैं, जबकि ये बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। और तो और, ये कोई एक बीमारी नहीं,

0: बल्कि 100 से अधिक बीमारियों का एक बड़ा समूह है। आइए देखते हैं क्या है आर्थराइटिस के सिम्टम्स और इस बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशंस यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं।
1: आर्थराइटिस का एक ऐसा प्रकार भी है जिसकी वजह हमारे इम्यून सिस्टम में आई गड़बड़ी होती है। दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में आने वाले किसी भी फॉरेन पार्टिकल पर हमला करता है और उसे खत्म कर हमें रोगों से बचाता है। लेकिन कई बार हमारा इम्यून सिस्टम शरीर के किसी अंग को ही फॉरेन बॉडी मानकर उस पर हमला कर देता है। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब जॉइंट्स पर असर करता है तो इसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी के बाद जॉइंट कैविटी और साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। जॉइंट की इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है, अकड़न पैदा होती है और जॉइंट के आसपास का एरिया गर्म और लाल हो जाता है। जैसे जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस का असर बढ़ता है, कार्टिलेज खिसती जाती है, कभी कभी हड्डियाँ आपस में फ्यूज होने लगती हैं। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि आर्थराइटिस केवल बुढ़ापे की समस्या है, पर ये रोग बच्चों और युवाओं को भी अपनी चपेट में ले सकता है। अगर सही समय पर इसके टेस्ट और ट्रीटमेंट नहीं कराए गए तो बच्चों को आगे चलकर चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। जुवेनाइल रिमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसी ही एक आर्थराइटिस है जो बच्चों और युवाओं को शिकार बनाती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस पर और बात करने से पहले जानते हैं ये बीमारी किस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस से अलग है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को शिकार बना सकती है। इस बीमारी का असर शरीर पर छोटे जॉइंट्स पर होता है, जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है और इसका असर बड़े जॉइंट्स पर होता है, जैसे कंधे का जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट आदि। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में शुरू से ही सूजन और दर्द होता है और ये समय के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन और दर्द काफी बाद में होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स में दर्द अक्सर सुबह होता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द मूवमेंट करने से जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव से होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। पेशेंट को दर्द कहां पर हो रहा है और दर्द कितना सीवियर है और कितने वक्त से है, ये अच्छे से समझा जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर दर्द वाली जगह की त्वचा, जोड़ और मसल स्ट्रेंथ का सही सही आकलन करते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस में एक खास तरह के ब्लड टेस्ट की भी मदद ली जाती है। दरअसल रिमेटॉइड फैक्टर, जिसे आर फैक्टर कहते हैं, एक खास तरीके का एंटीबॉडी प्रोटीन होता है जो कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट के ब्लड में पाया जाता है। हालांकि बीमारी की शुरुआत में ये आर फैक्टर एब्सेंट भी हो सकता है। इसके अलावा WBC और ESR टेस्ट के जरिए भी रिमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस किया जाता है। ब्लड में सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से इन्फ्लेमेशन की प्रेजेंस का पता चलता है, इसलिए सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से भी RA की डायग्नोसिस में काफी मदद मिलती है। लेकिन ये टेस्ट रिमेटॉइड आर्थराइटिस होने के कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इस टेस्ट से सिर्फ ये पता चलता है कि शरीर में इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चल रही है। एक्सरे से रिमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण हुई सूजन और जॉइंट्स को हुए नुकसान का आकलन किया जाता है। एक्सरे से सूजन काफी हद तक निर्धारित कर इलाज के निर्णय में डॉक्टर को आसानी होती है।
0: अब तो आप समझ ही गए होंगे, आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सही ट्रीटमेंट एक सामान्य जीवन की संभावना को बढ़ा सकता है।
1: ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य कारण हैं बढ़ती उम्र, ज्यादा वजन, असंतुलित आहार और व्यायाम की कमी।
2: व्यायाम करने से जो है, जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब शरीर की मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाती हैं तो वो जोड़ों को आपस में घिसने से बचाती हैं। तो एक प्रकार से ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने के लिए और जल्दी उसको तकलीफ ना होने देने के लिए उसमें काफी फर्क पड़ जाता है। और मांसपेशियां अगर अच्छी होती हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी लेटर स्टेज में कम होती है। एक तो ये कि अपना वजन संतुलित रखें, और इस प्रकार का आप आपके जो खान पीन है उसमें इस प्रकार की है कि आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नियमित रूप से व्यायाम कीजिए ताकि मांसपेशियां आपकी स्ट्रांग हो जाएं और वो जोड़ों को घिसने से बचाएं। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो कि अपना पोस्चर ठीक रखें, आपके बैठने का तरीका, आपका लेटने का तरीका या इस तरह की चीजें जो हैं उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगी।
1: गौटी अर्थराइटिस में चूंकि मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसलिए इसे दवाइयों और खानपान में बदलाव कर काबू में किया जाता है। मरीज को शराब पीने से परहेज करना होगा और कुछ खाने की चीजों से परहेज करना होगा। गौटी अर्थराइटिस के पेशेंट्स को NS8 के अलावा कुछ खास दवाई दी जाती है, जैसे कि एलोप्रिनॉल और कॉल्चाइसिन। आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन कम करने की नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NS8 जैसे एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन दी जाती है। कुछ पेशेंट्स को स्टेरॉयड्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर जॉइंट्स में स्टेरॉयड्स के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज भी करने के लिए बताया जाता है। इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में पेशेंट्स को NS8 दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में NS8 दवाओं के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है। अर्थराइटिस के पेशेंट्स को हीट थेरेपी भी दी जाती है। हीट थेरेपी से रक्त का प्रवाह तेज होता है और मरीज की दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ती है। अर्थराइटिस के बहुत बढ़ जाने पर कुछ पेशेंट्स को ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ती है जिनसे जोड़ों को सपोर्ट मिलता है और जॉइंट्स मूवमेंट में दर्द कम होता है। इन डिवाइसेस की जरूरत तब पड़ती है जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं। इन सर्जरीज में आती हैं नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। जॉइंट्स हमारे शरीर को मोबिलिटी यानी गतिशीलता प्रदान करते हैं। हमारे जॉइंट्स पर मौजूद नाजुक कवर को कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज से जॉइंट्स में लचीलापन आता है और मूवमेंट आसान होती है। कार्टिलेज के घिसने, उसमें बदलाव आने और इन्फ्लेमेशन होने को आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस को मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है। ज्यादातर इसका असर बड़े जॉइंट्स जैसे कंधे और घुटने के जोड़ों पर होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को अपना शिकार बना सकती है। ज्यादातर इसका असर शरीर के छोटे जॉइंट्स जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स पर होता है। संतुलित भोजन, एक्सरसाइज और वजन को नियंत्रण में रखकर ऑस्टियोआर्थराइटिस को काफी हद तक काबू में रखा जा सकता है। आर्थराइटिस के पेशेंट का सामान्यतः NSAID और स्टेरॉयड से इलाज किया जाता है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं, जैसे नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में NSAID के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है।
3: कोकिला, आर्थराइटिस पेशेंट्स की पेनफुल लाइफ को देखकर दुख होता है, क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं?
0: क्यों नहीं कर सकते, वही कर सकते हैं जो तुम कर रहे हो। यस, ह्यूमन सपोर्ट। दोस्तों, मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, मगर हम और आप भी आर्थराइटिस से जूझते लोगों की मदद कर सकते हैं। तो बस बबलू जी की इस लाइफ के प्रति पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
3: बाय।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: हेलो, मैं पूजा शाबाद मोहम्मदपुर से। मैं रीड इंडिया से 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैंने रीड इंडिया से सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर सीखा, उसके बाद मैंने टीचर ट्रेनिंग की, फिर मैंने सिलाई की। सिलाई करके फिर काफ़ी टाइम तक मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ व्यस्त रहने लगी। लेकिन मेरे एक दिन एक लेडीज़ मेरे पास आई कि बेटा मेरे को सूट सिलवाने हैं, अगर यहाँ पे कोई आसपास में सूट सिलता है तो मुझे बता दो। वो भी फर्स्ट टाइम मेरे घर आई थी, वो भी यहाँ पे नहीं जानती थी किसी को, क्योंकि वो यहाँ पे किराए पे रहने वाली थी। वो मेरे पास आई, फिर मैंने उनको बोला कि आंटी मैं सिल सकती हूँ। बोला कि बेटा आप सिलना जानते हो? मैं बोली कि हाँ आंटी मैं सिल सकती हूँ, मेरे को सिलाई आती है। उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसे सूट सिलवाया। उन्होंने जो सूट सिलवाया था, उन्होंने मेरे को सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया था और मैंने उनको 2 घंटे में सूट तैयार करके उनके पास फ़ोन किया कि आंटी आपका सूट कम्प्लीट है, आप ले जा सकते हो। तो वो मेरे घर आई, उन्होंने सूट देखा, उन्होंने सूट मेरा बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि बेटा आप ऐसे ही सूट सिलते रहोगे तो हम आपसे और सिलवाएंगे। नेक्स्ट डे आई, फिर उन्होंने मेरे से एक ब्लाउज सिलवाया। मैंने उनका ब्लाउज सिलवाया, उन्हें वो भी अच्छा लगा कि बोला कि बेटा तुमने फिटिंग बहुत अच्छी मतलब बिठा रखी है कि सूट की और ब्लाउज की, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बोले कि थैंक यू आंटी। बोले कि नहीं बेटा आप सिलते रहो, हम आपसे जुड़े रहेंगे और आपसे ही सिलवाएंगे। मैंने कहा ठीक है आंटी, आपकी मर्जी है। उस टाइम मेरे पास हाथ की मशीन थी, वैसी पैर वाली मशीन नहीं थी। धीरे धीरे करके मैंने सिलाई की, सिलाई करके अपना पैसा जोड़ा, इकट्ठा किया। सबसे पहले मैंने अपनी एक गुल्लक खरीदी 5 रुपए वाली। मैंने उस गुल्लक में जितना मैं सिलाई करती थी सारा पैसा उस गुल्लक में डालती रहती थी। मैक्सिमम मुझे 1 साल हो गया था जब मैंने अपनी गुल्लक को फोड़ा, तो मेरे गुल्लक में मैक्सिमम 3,000 रुपए निकले। मैं यहाँ से घर से निकली, मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे सिलाई मशीन के पैर लेके आने हैं। उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। फिर मैंने अपनी सास को बोला, वो बोली कि क्या करेगी, आंखें खराब होती हैं। फिर मैंने पापा को बोला, ससुर को, उन्होंने कहा बेटा नहीं, कोई सिलाई विलाई नहीं करनी है, अपने घर में रहो, बच्चों को देखभाल करो, उनको खाना पीना खिलाओ। किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। एक दिन मैं खुद पालम गई, फिर मैं वहां से अपनी मशीन के पैर लेके आई। आके मैंने घर पे एक मशीन वाले को बुलाया, उन्होंने मेरी मशीन उस पे रखी, उसको स्टार्ट किया। उसके बाद मैं अपनी सिलाई करना शुरू किया। सब मेरे को टोकते थे कि बेटा नहीं, तेरी आंखें खराब हो जाएंगी, मत सिल, और फिर यही है कि तेरे को दिखना बंद हो जाएगा, चश्मा लग जाएगा। मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं सिलूंगी, मेरा मन करता है कि मैं सिलाई करूं। उस दिन के बाद मेरे को इतना प्राउड हुआ कि मैं खुद सिलाई करती हूं, और आज है मेरे अंदर इतना प्राउड कि मैं बाहर के सिलती हूं और अपना सारा पैसा इकट्ठा करती हूं। मेरे बच्चों को जो भी जरूरत होती है, जैसे कि हस्बैंड कोई हेल्प नहीं करता, उनको किसी भी हेल्प बुक की ज़रूरत होती है, किसी भी पेन की, पेंसिल की, मैं सारी चीज़ें अफोर्ड करती हूँ उनके लिए। हस्बैंड तो सुबह के ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं, वो मेरे को कोई खर्चा भी नहीं देके जाते, लेकिन जब भी पीछे से बच्चे बीमार होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि सास ससुर को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं एक बार भी ये नहीं सोचती कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं उनके लिए भी हर टाइम तैयार रहती हूँ, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे बीमारी के लिए कोई पैसा हुआ, या खाने पीने की चीज़ हुई, या कि कोई भी चीज़ पसंद आए कि हमें ये सूट चाहिए, मैं वो सारी चीज़ें दिलाती हूँ। लेकिन एक बार भी उनको अब तक ये नहीं है कि हाँ वो हमारे लिए इतना कर रही है कि हम उसको सपोर्ट करें। रीड इंडिया से फिर मैं दोबारा से जुड़ी हूँ, क्योंकि रीड इंडिया में कंप्यूटर और सिलाई और ब्लॉक पेंटिंग और पार्लर का कोर्स किया जाता है। अब मैं पार्लर का कोर्स कर रही हूँ और मैंने बेसिक कंप्यूटर भी सीख लिया है। और पार्लर का कोर्स करने के बाद अब मैं घर पे जाके मेरी 2 देवरानियाँ हैं उन पर ट्राई करती हूँ, मेरी सास है उन पर ट्राई करती हूँ, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड है, मेरे को अपने मतलब खुद मेरे हाथ से खुद अपनी हेड मसाज करवाते हैं, फुट मसाज करवाते हैं। वो बहुत बोलते हैं कि मुझे बहुत रिलीफ मिला है, लेकिन अब तक उन्हें भी मेरा 1% भी सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन हाँ, मैं निकली हूँ घर से और मैं सीख रही हूँ कि मैं भी कुछ करूं और मेरी भी एक अलग पहचान हो। जब फर्स्ट टाइम मैंने सिलाई की थी, जो मेरे पास सबसे पहले पैसा आया था, सबसे पहले तो मैंने भगवान के मंदिर में जाके उनका प्रसाद बांटा था, और सबसे पहले मैंने अपने एक सूट लिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं रीड इंडिया से भी जुड़ी हूँ, उससे मैंने सिलाई भी सीखी है, उस बेस पे मैं अपने पैरों पे स्टैंड हुई हूँ। तो मैं थैंक यू करती हूँ पूरी रीड इंडिया के टीचर्स का कि थैंक यू, आप सब ने मेरे को इतना सपोर्ट किया और मुझे इस काबिल बनाया कि ठीक है मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन घर में एक पूरी फैमिली के सामने मैं स्टैंड हूँ कि कल को अगर मेरे पर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो मैं किसी की तरफ देखूंगी नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ अपना। तो थैंक यू।

0: उजेर के पास कुछ इनपुट्स आए थे, उन इनपुट्स के बेसिस पे हमने जब काउंट किया तो स्टेज फियर या फिर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही कॉमन इश्यू निकल के आया था, जिसपे कि सभी लोगों को लगा कि एक सेशन होना चाहिए। तो ये जो सीरीज में हमारा ये सेशन है, नया सेशन है आज, और दिस इज फोकस्ड ऑन स्टेज फियर एंड फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। किसी को पता है ये किसी के साथ होता है, स्टेज फियर या पब्लिक स्पीकिंग का? मतलब किसी के सामने अगर बात करनी है, एक जन या दो जन से ज्यादा अगर लोग हैं और बात करनी है, खड़े होके बात करनी है, किसी को लाइफ में कभी घबराहट हुई है, किसी ने कोशिश करी है स्टेज पे बोलने की? या फिर जब शुरू में स्टेज में क्लास में बोलते थे, स्कूल में करते थे?
1: मेरा नाम फातिमा है। मुझसे बात नहीं होती है, घबराहट होती है सबके सामने बात करने में,
0: तो अभी तो
1: बात
0: आप
1: करने
0: इतने अच्छे से
1: जाती
0: बात कर रहे हो, घबराहट क्यों होती है फातिमा जी?
1: है। टेस्ट के टाइम मुझसे बात नहीं हो पाती है।
0: स्टेज पे जाके बात नहीं हो पाती, ठीक है? अभी हम ये आप मानते हैं कि स्टेज पे जाके बात करने में घबराहट होती है, लेकिन अभी देखो आपको मिला के शायद 51 लोग आपको सुन रहे हैं, 51 people are listening to you। अभी क्यों घबराहट नहीं हो रही है आपको? हो
1: वो तो रही थी अभी, लेकिन अब आपसे बात
0: रही
1: हुई
0: थी?
1: तो कम हो गई।
0: अच्छा, घबराहट हो रही थी, फिर भी हिम्मत करा आपने और आप आगे आई और आपने उसको ओवरकम किया और फिर भी
1: जी
0: अपनी बात कहने की कोशिश करी। तो क्या फरा मैम ने इनकरेज किया आपको? क्या उन्होंने कहा कि यू नो यू कैन टॉक, ऐसा नहीं है कि तुम भी अपनी बात आगे रख सकती हो? तो अगर कोई हमें इनकरेज करे या अगर हम थोड़ा सा उस पर काम करें, तो शायद धीरे धीरे करके हम उस स्टेज फियर या लोगों के सामने बात करने का जो फियर होता है उसको ओवरकम कर सकते हैं। क्या हम सभी ये बात मानते हैं? अगर
1: जी
0: हम
1: मैम,
0: मानते हैं तो हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे।
1: जी मैम, मुझे फराही मैम ने कहा था आपको घबराहट होती है, आप मैम को बोलिए, वो आपको सोल्यूशन बताएंगी।
0: देखिए, सॉल्यूशन किसी के पास नहीं होता, लेकिन टिप्स और टेक्निक्स होती हैं जिसके ऊपर हमें खुद काम करना पड़ेगा। ऐसा कोई गोली नहीं है कि मैं आपको बोलूं आप इसकी दो डोज सुबह ले लीजिएगा, दो डोज शाम को ले लीजिएगा, तो आपका जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स हैं और आपको खुद पे अपनी मेहनत करना होगा, जिससे कि ये कोशिश करके धीरे धीरे हो सकता है ये फियर कम हो जाए। आप इतने अच्छे से बात करती हैं, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आप जब बात करती हैं तो आपकी आंखों में एक चमक रहती है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको खुल के बात करना चाहिए। और कोई है हमारे साथ जिसको डर
1: थैंक
0: लगता
1: यू
0: है स्टेज फियर? कभी अभी नहीं, हो सकता है पहले लगता हो। मुझे बहुत डर लगता था, स्टेज फियर बहुत ज्यादा था एकदम। मैं किसी के सामने तो शायद बिल्कुल ही नहीं बोल पाती थी, स्कूल से ही ऐसा फियर था। इवन रीड में आके भी बहुत फियर था, वो तो मैम ने इनकरेज किया लगातार कि नहीं तुम लोग कर सकते हो, यू कैन डू। तो अगर कोई इनकरेज करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है, हम खुद पे काम करते हैं, तो वो काम आसान होता है धीरे धीरे। क्या कोई और कुछ कहना चाहता है? किसी और को ये फियर है या हम ये टॉपिक पे नहीं बात करना चाहते? गुड आफ्टरनून।
1: मैम आबिदा रामपुर कलर से। जी
0: अच्छा आबिदा जी,
1: मैम, जैसे आपने अभी बोला कि सेम यही मेरे साथ होता था कि जब मैंने न्यू न्यू रीड ज्वाइन किया था, उस टाइम में लड़कियों तक से बात नहीं कर पाती थी, बहुत घबराहट फील होती थी कि मैं लड़कियों से अपनी बात समझा पाऊंगी या नहीं। लेकिन जब मैं रीड के साथ लगातार जुड़ी रही, बात करती रही, लाइफ स्किल्स के सेशन लेती रही, तो मेरे अंदर काफी घबराहट दूर हुई। और फिर अकबर सर ने काफी मुझे इंकरेज किया, बताया कि आबिदा आपके अंदर इतनी स्किल्स है और आप क्यों नहीं बताते हो, क्यों नहीं बोलते हो। तो फिर मैंने कोशिश की और आज मैं अच्छे से बात कर पाती हूँ आपसे।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने कहा आपको ये फीडबैक मिला और आपने उस पर कोशिश करी। अच्छा, आपको ये पता है कि सभी से मैं बात कर रही हूँ कि ये जो स्टेज फियर है या फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है रिसर्च का। और एक स्टडी हुई थी फॉरेन कंट्री में, इंडिया से बाहर ये स्टडी हुई थी, शायद इंडिया में भी हुई हो। ये 75% लोगों में रहता है किसी ना किसी लेवल पे, यानी कि 100 में से 75 लोग ऐसे होंगे। कुछ लोग पैदा होते हैं और उनको कॉन्फिडेंट होता है, वो शुरू से ही बहुत आउटस्पोकन होते हैं, उनको कोई झिझक नहीं होती अपनी बात रखने में, वो एक कैटेगरी है। बट उसके अलावा 75% लोग हैं, अगर 100 लोगों में गिनती करेंगे, उनको किसी ना किसी लेवल पे स्टेज फियर जरूर होता है। और इसका एक साइंटिफिक नाम है, कोई मुझे बता सकता है बिना गूगल करे कि उसका नाम क्या है? किसी को पता है? इस फियर का नाम है ग्लॉसोफोबिया। ग्लॉसो फोबिया, यानी कि आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आपको ही है या सिर्फ गिने चुने लोगों को ही है। इसको एक साइंटिफिक नाम भी दिया गया है, इसका नाम है ग्लॉसोफोबिया। अगर आप सर्च करेंगे तो ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ये बहुत ही कॉमन एंजाइटी है या फियर है ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है जब आप स्टेज पे जाते हैं, कोई बता सकता है क्या होता है? अगर आपको स्टेज पे भेज दिया गया है, माइक दे दिया गया है, तो क्या फियर होता है? क्यों आपको लग रहा है कि आपको स्टेज फियर है? क्या ऐसी चीजें होती हैं? हाथ कांपने लगते हैं, सांसें भारी होने लगती हैं, लोगों से आई कांटेक्ट करने में मुश्किल होता है, जो बोलना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, ऐसा होता है किसी के साथ?
2: जी मैम, अर्चना बोल रही हूँ।
0: हाँ जी
2: मैम, एक्चुअली वो क्या होता है, पैर एकदम से कांपने लगता है और हम जो बोल रहे होते हैं ना, तो बस पता नहीं लाइन गैप होने लगता है, उसके वर्ड जो है हम भूलने लगते हैं, पीच का लेवल हाई हो जाता है और अजीब, बहुत ही नर्वस फील होने लगता है।
0: वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड, एग्जैक्टली ऐसा।
2: अभी अभी मैं आपको, इवन मैं अभी आपको बोल रही हूँ तो मुझे गूज बम्स हो रहे हैं कि मैं, यदि आप सामने रहते तो शायद मैं नहीं इतना बोल पाती।
0: अच्छा, बिल्कुल, ये बिल्कुल यही बात होती है कि जब हम किसी से बात करने जाते हैं तो हमें लगता है कि मुंह सूख रहा है और क्या बोलना चाह रहे हैं ना, जो बोलना चाह रहे थे वो भूल गए हैं हम। अच्छा, बात जो है आधी ही बीच में रह जाती है और हम उस पॉइंट से कहीं और डाइग्रेस हो जाते हैं, ऐसा होता है। फिर हाथ एकदम कांपते हैं, पैर एकदम ठंडे ठंडे होने लगते हैं कि आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, किसी से आंख मिलाते हुए डर लगता है। अच्छा, भी ऐसा होता है कि ये टीचर ना मुझसे क्वेश्चन ना पूछे, मैं पीछे बैठ के आराम से, मतलब मुझे बस आई कांटेक्ट नहीं करना, जैसे आई कांटेक्ट होगा तो टीचर मुझसे क्वेश्चन पूछ लेगी। ये भी एंजाइटी हुई है किसी को? ये भी पार्ट ऑफ ग्लॉसोफोबिया ही है। तो हमें ये स्टेज फियर होता क्यों है, या पब्लिक स्पीकिंग में जो ये फियर होता है हमें क्यों होता है? ज्यादातर अगर मोटे मोटे उसको भागों में बांटा जाए तो हमें ये लगता है कि जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन, जो हमारा फर्स्ट या सेकंड सेशन था लाइफ स्किल्स का, कम्युनिकेशन स्किल, वो हमारी वीक है। यानी कि हम बोलते हुए घबराते हैं, या हमें बोलने में कौन से शब्दों को इस्तेमाल करना है उसमें हम घबराते हैं, हमारी प्रैक्टिस नहीं है बोलने के लिए, तो हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि जो बात हम रखना चाह रहे हैं दूसरे के सामने वो दूसरे के इंटरेस्ट की है, वो दूसरे को, हम ये जजमेंटल होना शुरू कर देते हैं कि क्या पता उसको मेरी बात पसंद नहीं आए, क्या पता वो मुझे जज करना शुरू कर दे, और इस चीज से घबरा के हम एंग्शियस हो जाते हैं और फिर जो है हम शब्द भूलने लगते हैं और हमें लगता है कि शायद जो मैं बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ ये दूसरे के सामने मैं बोलने की काबिल नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ। ये भी हो सकता है कि शुरुआत में या बचपन में हमने कभी कोशिश करी हो और मजाक बना दिया गया हो, हमारा हमारी बात का मजाक बना दिया हो, तो वो दिमाग में ना कहीं सबकॉन्शियस में यहाँ पे पीछे फिट हो जाता है कि अगर मैं बात करूंगा या बात करूंगी लोगों के सामने तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो पुराने बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से भी कभी कभी हमें वो स्टेज फियर पैदा होने लगता है। शुरुआत में हो सकता है ना हो, लेकिन आप कभी स्टेज पे गए अपनी असेंबली में, या अगर आप ट्रेनर हैं, आप ट्रेनिंग करते हुए कुछ ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ है, या आपको माइक दिया है स्टेज पे कुछ बोलने के लिए और आपके साथ कुछ आप नहीं बोल पाए, तो वो भी हमारा कॉन्फिडेंस और कम कर देता है। ऐसा होता है किसी के साथ या हुआ है किसी के साथ? मुझे लग रहा है आप लोग बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, शायद इसी वजह से ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं आपके साथ। और किसी वजह से स्टेज फियर आपको लगता है होता है बच्चों में, हम में, या फिर इन जनरल पब्लिक में स्टेज फियर होता है? किसी के पास कोई इनपुट है? क्योंकि यही पांच रीजंस नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी रीजंस हैं। कई बार हमें बोलने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया जाता जब हम छोटे होते हैं, या हमारे घर में, या हमारे स्कूल में, स्कूल में अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो सबको तो कॉमन नहीं दिया जाता ना, जो वॉलेंटियर करेगा हाँ बेटा तुम बोलो असेंबली में, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में शुरुआत से छोटे से ही शुरू होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये जो फियर ऑफ टॉकिंग इन पब्लिक है ये और बढ़ता जाता है कम होने की बजाय, अगर हम इस पे काम नहीं करें या हम प्रैक्टिस नहीं करें। क्या सब मानते हैं इस चीज को?
3: नमस्ते नमस्ते मैम।
0: नमस्ते ईशा जी।
3: मैम कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चों को खड़ा करते हैं जैसे प्रेयर वगैरह में, कुछ बोलने के लिए असेंबली में, कि कुछ पोयम सुनाओ, तो बच्चों को आने के बावजूद भी वो नहीं बोल पाते, अपने घर पे तो सुना देते हैं लेकिन हम लोगों को नहीं सुना पाते क्योंकि उनमें एक डर सा पैदा होता है कि हम सबके सामने बोलेंगे तो हमसे बोला नहीं जाएगा या मैम से डर लग रहा है, इस चक्कर में बच्चे बोल ही नहीं पाते, एक फियर सा रहता है हर समय।
0: तो वो फियर ऑफ जजमेंट है, यानी कि दूसरों का ओपिनियन जो है, जो नेगेटिव ओपिनियन है उसको हम पहले से ही सोच लेते हैं हम बोलेंगे और लोग हमें नेगेटिव जज करेंगे, है ना। फियर ऑफ जजमेंट जो होता है दूसरे लोगों के ओपिनियन, नेगेटिव ओपिनियन को हम ज्यादा बढ़ावा देते हैं, बल्कि जो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस है, आप कह रहे हो कि बच्चे को पोयम आती भी है तभी भी वो सुनाने में झिझकता है, क्यों? क्योंकि वो जब आसपास के बच्चों को देखता है या दूसरे टीचर्स खड़े हैं या और पेरेंट्स खड़े हैं असेंबली में, तो उसको लगता है कि ये मेरे अंदर जो है मेरे को जज करेंगे और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो वो मुझे हंसेंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे या कुछ करेंगे, इसे कहते हैं फियर ऑफ जजमेंट। अभी तो आप बच्चे की बात कर रहे हैं लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना, ये फियर ऑफ जजमेंट मतलब दूसरों की ओपिनियन की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती रहती है और हम अपनी कॉन्फिडेंस पे काम नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि हम बोले ही नहीं ताकि हमें जज ही ना किया जाए। क्या ऐसा होता है? जब हम बोलेंगे तो हमें जज कौन करेगा? नहीं, बात सही है। जब हम हाथ ही नहीं खड़ा करेंगे आंसर देने के लिए तो हमें कोई जज ही नहीं करेगा। तो हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की बजाय वो फियर को और बढ़ावा देते हैं। बट हमारा मकसद यही है कि जब हमारे यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं या जो हमारे यहाँ से महिलाएं आगे काम करने जा रही हैं, एटलीस्ट वो अपनी बात को कह सके। पब्लिक स्पीकिंग मतलब अगर 10 लोग भी खड़े हैं, जरूरी नहीं है कि पूरी रैली हो या पूरा ऑडिटोरियम भरा हो, उन लोगों के सामने ही बात करनी है। अगर 10 लोग भी खड़े हैं और अपनी बात को अगर हम सही से नहीं रख पा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं फेयर है, मतलब हम कहीं ना कहीं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है। इस फियर को कम कौन करेगा? अगर ये हमारे अंदर है तो हमको ही इस पे काम करना पड़ेगा, राइट? इसके लिए हम कुछ टिप्स और टेक्निक्स कर सकते हैं कि पहले तो हम इसकी बहुत ज्यादा ये ना करें कि हम जो दूसरे हमें देख रहे हैं या जो दूसरों का ओपिनियन है वो वही सच है। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे पैदा होगा? पहले तो ये है कि जो टॉपिक पे आपको बात करनी है, मान लीजिए कोई टॉपिक अगर ऐसा है जिसपे कि आपको पता है आपको बोलना है, तो आप उस टॉपिक पे अच्छे से रिसर्च करके जाइए। अगर आपको पता है आपने क्या बोलना है, अगर 10 पॉइंट्स आपने बनाए हुए हैं तो आपको पता है कि एक एक मिनट आप इन 10 पॉइंट्स पे बोलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन करना है ऑडियंस से तो क्वेश्चन करेंगे और आपका स्पीच खत्म हो जाएगा। अगर डिबेट है या अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आपको अपनी व्यू पॉइंट देने हैं तो आप उस टॉपिक को अच्छे से रिसर्च करके जाइए। जब आपको पता है आपने क्या बोलना है तो आप स्टैमर नहीं करेंगे, यानी कि सोचेंगे नहीं। ऐसा होता है ना, हम बात बात करते करते ऊपर देखने लगते हैं, फिर हमें याद नहीं आता, फिर हम करते हैं ये सब चीजें भी हम अवॉइड करेंगे, कर सकते हैं अगर हम अपने टॉपिक, जैसे मुझे आज आपके साथ ये वाला टॉपिक पे बात करना था तो मैं 2 दिन से रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक के ऊपर, और इस टॉपिक के ऊपर मेरे को लगा कि हम एक बिगनर्स लेवल के लिए कितने पॉइंट्स हम कवर कर सकते हैं। अब एक दिन के अंदर किसी का कॉन्फिडेंस तो बिल्ड नहीं हो सकता कि वो स्टेज पे जाके और पूरा अपना स्पीच दे दें, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स छोड़ सकते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स छोड़ सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस छोड़ सकते हैं। तो मैंने अपने टॉपिक पे रिसर्च करी, अब मुझे पता है, और फिर मैंने प्रैक्टिस करी कि अच्छा इस पॉइंट पे मुझे क्या बोलना है, अगले पॉइंट पे मुझे कौन सा एग्जाम्पल देना है। तो इससे क्या है, आपको भी आसानी है और मैं टाइम भी वेस्ट नहीं कर रही और मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि मैंने क्या बोलना है आपके साथ। तो फर्स्ट इज कि आप अपने टॉपिक पे रिसर्च करेंगे। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है और आपको इम्प्रॉम्प्टो नहीं, पहले से पता है आपका टॉपिक, तो आप उस पर रिसर्च करके जा सकते हैं, ठीक है। जब आप बात कर रहे हैं अपने पॉइंट्स को सिंपल रखिए, बहुत बड़े बड़े शब्द और बहुत सारा डेटा मत यूज करिए, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े शब्द और डेटा हमें कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। जब आप अच्छे स्पीकर बन जाएंगे तब आप कोशिश करके उसको अपने टॉक में इंक्लूड कर सकते हैं, बट अगर आप शुरुआत में पब्लिक स्पीकिंग पे या स्टेज पे बोलने पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो आपकी बात आप रखना चाह रहे हैं उनको छोटे छोटे सरल सेंटेंसेस में तोड़ के आगे बोलने की कोशिश करें। अगर आप अपनी जो बात कहना चाह रहे हैं उसको आपने लिख लिया छोटे छोटे शब्दों में, उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में तोड़ दिया, तो अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मैंने पहले भी कहा था कि शीशे के सामने प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि शीशे में आप देख पाते हैं कि आप कैसे लग रहे हैं। आजकल तो आप मोबाइल में भी अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो, और देख सकते हैं कि जब मैं अपनी बात कह रही हूँ स्टेज पे या पब्लिक स्पीकिंग में, कुछ मेरे को किसी बात पे चर्चा करनी है तो मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ। और हो सकता है मैं हाथ ज्यादा मूव कर रही हूँ, जैसे मेरी आदत है मैं हाथ काफी मूव करती हूँ, तो क्या वो अच्छा लग रहा है, क्या वो बुरा लग रहा है। कई लोग होते हैं वो ऐसे पेन को भी, पेंसिल को भी ना ऐसे ऐसे करते हैं या ऐसे ऐसे भी करते हैं, इवन स्टेज पे भी, या माइक पकड़ा है तो माइक को ऐसे ऐसे कर लेंगे, तो माइक पे आप जो बोल रहे हैं ना वो लॉस्ट हो जाता है। जब आपने माइक छोड़ा तो माइक इधर उधर करा, क्योंकि हाथ का मूवमेंट का आदत होता है, तो वो माइक से जो आप कहना चाह रहे हैं वो लॉस्ट हो जाएगी आवाज। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी किसी भी चीज को आप माइक बना लीजिए, इसको माइक बना लिया, अब मैं शीशे के बात करना है। तो पहला हो गया कि हमने अपने पॉइंट्स बना लिए कि जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी है, वो टॉपिक कि मैंने अच्छे से डेटा बनाया, उसको सिंपल पॉइंट्स में लिखा, बहुत बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो शब्द बोलने में ना टंग ट्विस्ट हो जाती है, जब आप बहुत लोगों के सामने है, जबान सूख रही है और आप में थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो बड़ा शब्द आया तो आप डर गए, अरे बाप रे मैं इसको कैसे बोलूंगा या बोलूंगी, तो उसको सरल रखिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने शब्दों को आराम से बोलिए, बहुत जल्दीबाजी में बोलने से भी फंबल हो जाता है। फंबल पता है क्या होता है, मतलब जो कहना चाह रहे हैं वो शब्द ठीक से बन के बाहर नहीं आता, फंबल हो जाता है। अगर आप किसी स्टेज पे पहुंच बोलने वाले हैं ना, तो कोशिश करिए कि वेन्यू, वेन्यू मतलब जहां पे आपने बोलना है, स्कूल का वेन्यू है या कोई इंटरव्यू है, इंटरव्यू में पहले से पहुंच जाइए ताकि आप एनवायरमेंट को पहले से देख लें। अच्छा जगह कैसी, कई बार क्या होता है जगह इतनी इंटिमिडेटिंग, इंटिमिडेटिंग मतलब वो प्रभावित कर लेती है आपकी सोच को, और आपको जो है आप जो कहना चाह रहे हैं उसको आप नहीं कह पाते ठीक तरीके से, क्योंकि आप इंटिमिडेट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं उस एनवायरमेंट से। बट अगर आप पहले से ही वहां पहुंच जाए, 5-7 मिनट पहले पहुंच जाए, वहां बैठ जाए, बैठ के आप देखें, अच्छा यहाँ से लाइट आ रही है तो यहाँ से मेरे को यहाँ पे खड़े होके बोलना है, ये 10 लोग हो सकता है सामने, अगर 10 चेयर्स पड़ी हैं तो अच्छा ये 10 लोग यहाँ से देखेंगे, तो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बन जाता है। क्या आप मानते हैं इस चीज को कि अगर पहले से ही आप चले जाते हैं कहीं किसी जगह पे और फिर धीरे धीरे 1 घंटा पहले ही पहुंच जाइए, कहने का मतलब है कि अगर आपको बात करनी है या कुछ बोलना है तो इमीडिएटली, कभी कभी हम एंटर करते हैं किसी रूम में ना तो वो रूम के एनवायरनमेंट से भी हम कंफर्टेबल नहीं होते, तो जाकर आप चाहें तो अपने वेन्यू पे पहले से पहुंच जाइए, उसके साथ आप एक अपना रिश्ता बना लीजिए कि हाँ मेरे को पता है कि ये इस तरह से दिखाई देता है और इस तरीके से लाइटिंग है और यहाँ पे खड़े होके मुझे बोलना होगा और ये मेरा टॉपिक है, इसको मैंने प्रिपेयर करा है, प्रैक्टिस करा है। अपनी सांस, ब्रीदिंग को हमने पुराने कई सेशंस में, मेंटल हेल्थ के सेशंस में, इवन जो योगा का सेशन था उसमें ब्रीदिंग के ऊपर बात करी, क्योंकि ब्रीदिंग से जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो कई हद तक कम हो जाता है। अगर आपको किसी टॉपिक पे बोलने को बोला जा रहा है और आपको घबराहट हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम ब्रीदिंग पे भी काम कर सकते हैं, यानी कि लंबी सांस ली, लंबी सांस छोड़ी, इससे क्या होगा कुछ हद तक हमारी जो एंजाइटी है वो कम हो सकती है। हमने प्रिपेयर तो पहले ही कर लिया, हमारे पास हमारे पॉइंट्स भी हैं बोलने के लिए, हमने प्रैक्टिस भी कर ली शीशे के सामने, हमने ये भी देख लिया कि वेन्यू कैसा है, मैं कहाँ जाके बोलना है मुझे, या बोलना किस जगह पे खड़े होके बोलना है, और अब अगर घबराहट कम करनी है तो हम आंखें बंद करके या वैसे डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, इससे भी कई हद तक हमारा जो है मेंटल एक स्टेबिलिटी आ जाती है। कभी कभी हाथ ठंडे हो जाते हैं तो आप हाथ को भी ऐसे रब कर सकते हैं, जब आपका शरीर कंफर्टेबल होगा ना तो आपका जो घबराहट है कई हद तक कम हो जाएगा। समझ आ रही है सभी को?
4: यस मित्र जी, वेरी नाइस
2: जी मैम।
5: यस मैम,
0: लग रहा है कि कुछ हेल्पफुल है ये टिप्स?
4: यस मैम,
5: काफी है मैम।
0: अच्छा, आपने देखा होगा बड़े बड़े स्पीकर्स जो होते हैं, जो काफी इनफैक्ट अच्छे स्पीकर्स होते हैं, वो कभी कभी ना अगर उनको काफी डेटा देना है या कोई फैक्ट्स मतलब जो सत्य है उसको कोट करना है, तो वो क्यू कार्ड, छोटे क्यू कार्ड्स देखे आपने, छोटे क्यू कार्ड्स होते हैं, मतलब पेपर को छोटा छोटा काट के वो अपने हाथ में रखते हैं। कभी देखा है आपने कोई स्पीकर्स हैं या फिर जो जो मास्टर ऑफ सेरेमनी यानी कि जो होस्ट कर रहे हैं वो अपने हाथ में क्यू कार्ड्स रखते हैं? किसी ने देखा है क्यू कार्ड, क्या होता है क्यू कार्ड?
6: नहीं, देखा नहीं कभी।
0: क्यू कार्ड क्या होता है? छोटा कार्ड होता है, उसपे आप जो बोलने वाले हैं उसके मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं। मान लीजिए आज मुझे लाइफ स्किल्स पे बोलना है, तो लाइफ स्किल्स पे मुझे कौन सा टॉपिक कवर करना है? पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग पे मुझे कौन से टॉपिक कवर करने, पब्लिक स्पीकिंग क्यों होता है, पब्लिक स्पीकिंग के लिए हम कौन से टिप्स एंड टेक्निक्स कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है, फियर ऑफ पीपल जजिंग यू, फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमने अभी पढ़ा था ना, ग्लॉसोफोबिया बोलते हैं इसको, है ना। तो ये चीजों को हम क्यू कार्ड पे लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन हो सकता है हर किसी के पास वो ना हो, आप जहाँ पे बोलने जा रहे हैं हो सकता है वहां पे पीपीटी ना हो, अगर मेरे पास पीपीटी नहीं होती तो मैं छोटे छोटे क्यू कार्ड माने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पे अपने की पॉइंट्स को छोटे शब्दों में और जो मैं कहना चाह रही हूँ उसके अलग अलग पॉइंट्स बना के मैं छोटे छोटे पांच या छह क्यू कार्ड्स रख लेती ताकि जो पॉइंट मैं बोलना चाह रही हूँ वो मिस ना हो जाए। आप अपने जैसे अगर सेशन ट्रेनर्स हैं जो हमारे, वो ट्रेनर्स अपने सेशन को प्लान करते हैं, सेशन को प्लान करते हुए वो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, आज मुझे ब्लाउज बनाना सिखाना है तो मैं कटिंग सिखाऊंगी, मैं उसकी ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी और मैं उसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी, फिर उसको मेजर कैसे करना है और अलग अलग ब्लाउज कैसे बनाना है, ये पांच पॉइंट लिखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, उसी को अगर हम एक छोटे कागज पे लिख रहे हैं तो उसे क्यू कार्ड बोलते हैं। क्यू कार्ड मतलब अगर मैं पॉइंट भूल रही हूँ तो वो मुझे क्यू कार्ड एक क्यू एक आइडिया दे देगा कि अच्छा मुझे इस पॉइंट पे भी बात करनी थी, कहीं मैं भूल ना जाऊं। समझ में आया? अदरवाइज मैं एग्जाम्पल्स या फोटोग्राफ्स के थ्रू और भी बता सकती हूँ। किसी को समझ में आया क्या, कोई बता सकते हैं क्यू कार्ड्स क्या होते हैं? कभी किसी ने यूज करा है क्यू कार्ड अपने ट्रेनिंग सेशन में? हमारे साथ बहुत सारी टीचर्स जुड़ी हुई हैं, क्या टीचर्स ने यूज किया है क्यू कार्ड कभी?
5: हेलो जी मैम, सुमन
0: जी। सुमन जी,
5: हाँ जी मैम, जैसे अगर हमें कहीं पे बोलना होता है तो पहले मैं क्यू कार्ड का मतलब तो मुझे खैर आज ही पता लगा है, हाँ जी, पर मैं अपने नोट्स हमेशा लिख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या बोलना है वहां पे, ये मैं हमेशा करती हूँ इस चीज के लिए, हाँ जी। और बोलते हुए थोड़ा सा मुझे लगता है मैं ना बीच बीच में रुक जाती हूँ कभी कभी, हाँ जी।
0: कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस से होता है, जितना ज्यादा आप खुल के कोशिश करेंगे वो रुकना, पॉज इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, अगर आप अपनी बात कह रहे हैं, और अननेसेसरी पॉज नहीं है, एक पॉज दिया है आपने अपने थॉट्स को कलेक्ट करने के लिए तो वो गलत नहीं माना जाता, वो माना जाता है कि आप अपनी सोच को 2 सेकंड दे रहे हैं और उसको रिकलेक्ट करके फिर से उस मुद्दे पे आ रहे हैं, है ना। और क्यू कार्ड मतलब वो आपको इशारा देता है, क्यू का मतलब होता है इशारा देना कि अच्छा ये टॉपिक था, इस पे ये वाला पॉइंट भी आपको बोलना था, तो अगर आपके टॉपिक में 6 पॉइंट्स हैं तो आप हर एक पॉइंट को अलग अलग क्यू कार्ड पे लिख सकते हैं बड़ा बड़ा, ताकि आपको मेहनत ना लगे उसको पढ़ने में, क्योंकि इतने सारे 50 लोग आपको घूर रहे हैं और ऐसे सबकी आंखें ऐसे हो रही कि अच्छा क्या बोलने वाला है, आगे क्या बोलेगा या बोलेगी, तो घबराहट हो जाती है। अगर बड़ा बड़ा लिखा हो कि अच्छा अब मुझे ये बोलना है, तो वो आपका जो अगर ध्यान भटक रहा है या कॉन्फिडेंस कम हो रहा है ना, तो योर कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये तो मैंने रिहर्सल करी थी, इसके तो मैंने बात करी थी, तो मैंने प्रैक्टिस
5: की,
0: तो मैं ये बात कह सकती हूँ। तो वो क्यू, क्यू का मतलब इशारा करना कि अच्छा ये जो है आप ये वाला पॉइंट भूल रहे हैं और ये भी आपको बोलना
5: जी मैम, इसीलिए मैं लिख लेती हूँ हमेशा।
0: हाँ एब्सोल्युटली, हाँ आप लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। अगर प्रेजेंटेशन नहीं है तो जरूर लिख लीजिए या क्यू कार्ड्स का यूज करिए, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है आपको सारी बात कवर करने में और सारे की पॉइंट्स कवर करने में. अगर प्रेजेंटेशन है भी तभी भी आप लिख के जाएगा, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में भी ऐसा होता है कि आपने प्रेजेंटेशन बनाई, मेहनत करके 2-3 दिन लगा के प्रेजेंटेशन बनाई, प्रैक्टिस भी करी, और जब प्रेजेंटेशन को लगाया तो टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया, वो प्रेजेंटेशन चली ही नहीं या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो फिर आप घबराने लग जाएंगे, अरे अब मैं क्या बोलूं, मुझे तो पता ही नहीं है मुझे क्या बोलना है, मेरे तो पॉइंट्स ही लॉस्ट हो गए. तो अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है या आपके पास ऐसे छोटे छोटे कार्ड है, क्योंकि बड़ा सा पर्चा लाएंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में कि अच्छा ये तो लिख के लाए हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट टू बिकम अ बेटर स्पीकर या टू बिकम अ मतलब अच्छा और अच्छा स्पीकर बनने के लिए आप क्यू कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख के भी ला सकते हैं, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं.
5: थैंक यू मैम.
0: और कोई कुछ शेयर करना चाहता है एक्सपीरियंस?
6: जी एक बार मेरे साथ क्या हुआ, हम लोग का यहाँ पे 26 जनवरी का फंक्शन था हमारे सेंटर पे, तो मैंने कोई स्पीच प्रिपेयर नहीं करी थी, बट मेरे स्टाफ ने और गांव वाले सब इकट्ठे थे, देयर वाज ऑलमोस्ट 800-1000 पीपल वर देयर, और चेयर सब भर गई, लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इधर, तो मेरे को एकदम से माइक पकड़ा दिया गया, एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट, आई वाज अबाउट टू स्पीक, तभी मैंने देखा मेरे जो जेठ हैं वो सामने खड़े हैं, उनको देख के मैं एकदम घबरा गई, पता नहीं मुझे क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत खिंचाई करते हैं, वो ना बहुत मजाक बनाते हैं चीजों को लेकर,
0: फियर ऑफ जजमेंट.
6: राइट राइट. तो मैंने एकदम से इमेजिन किया वो सामने है ही नहीं. Absolutely. और मैंने उनको बिल्कुल नजरअंदाज करके आई स्पोक सो वेल, सारी चीजें मैंने उसमें कलेक्ट करी और पूरा सबको डिटेल में बताया कि हु वी आर, व्हाट वी आर डूइंग हियर, सब कुछ सबको बताया. दैट वाज रियली वेरी नाइस, बट वो एक मिनट के लिए तो मैं घबरा गई थी. तो फिर मैंने वही वही चीज मैंने सोचा वो है ही नहीं सामने.
0: है ही नहीं, बिल्कुल. जो चीज आपको घबराहट दे रही है, यहाँ पे सीमा जी के साथ क्या हुआ, उनको वो फियर ऑफ जजमेंट आ गया कि तो मेरी फैमिली है, अच्छा ये मेरी खिंचाई करेंगे बाद में जाके. लेकिन अब इतनी बड़ी ऑडियंस थी, 800,000 लोग थे, उनको भी लगा कि भाई वो इम्पोर्टेंट है या मेरा कॉन्फिडेंस, जो मेरी नॉलेज है, जो मैं दिन रात काम करती हूँ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. डेफिनेटली वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपकी फैमिली है, लेकिन उस वक्त वो क्या कर रहे थे, वो नेगेटिव फियर आप में पैदा कर रहे थे. उन्होंने कुछ नहीं किया, आपके ही दिमाग ने आपको बोला कि सीमा देखो हो सकता है वो कल को तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, बट यू हैड दैट कॉन्फिडेंस, आपने वो कॉन्फिडेंस था जिसने उसको ओवर पावर किया. करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट. दिस इज व्हाट द स्टेज फियर इज, कि दूसरे के जजमेंट को लेके हम इतना बड़ा अपने दिमाग में एक हवा बना लेते हैं कि हम अपना जो बात कहना चाह रहे हैं उसको भूल जाते हैं. दूसरी बात ये भी होती है कि हमें पता ही नहीं हमें क्या कहना, तो नेचुरली स्टेज फियर होगा ही. अगर हमें पता ही नहीं हमें बोलना क्या है तो स्टेज फियर आ ही जाता है. तो इस पे पैनिक नहीं करें, इस पे वर्क करें. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू वर्क ऑन इट स्लोली, स्टेप बाय स्टेप. कुछ टिप्स जो हमने अभी शेयर करी हैं उसको फॉलो करें. जब आप कहीं बोलने जा रहे हैं उससे पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं शीशे के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने. कोशिश करिए कि छोटे ग्रुप से स्टार्ट करिए. अगर आप न्यू स्पीकर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो छोटे ग्रुप से स्टार्ट करिए. और ये मत सोचिए कि आपका दूसरे लोग कितना हंसेंगे या कुछ. जो आप कहना चाह रहे हैं प्रिपेयर इट वेल एंड ट्राई एंड डिलीवर इट. और फीडबैक आप ले सकते हैं, फीडबैक से डरिए मत, फीडबैक पे काम करना सीखिए. अगर आपके दोस्त ने या आपके फैमिली में किसी ने बताया है कि आप बात करते हुए ऐसे, ये कुछ भी पॉइंट्स आपको अगर बताए हैं तो आप उस पर काम कर सकते हैं, उससे घबराना नहीं है. सो स्टार्ट विथ स्मॉल ऑडियंसेस, टेक पॉजिटिव फीडबैक लीजिए और उस पर काम करिए. बहुत हद तक अगर आप दूसरे लोगों को बोलते हुए सुनते हैं तो हम जरूर सीखते हैं, क्योंकि हम जो सीखते हैं ना वो हमारी एक इंद्री है बोलने वाली, बट और जो बाकी की इंद्रियां हैं जब हम सुनते हैं तो वो भी हमारे काम में आती हैं. आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, तो हम जब दूसरे लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं ना उससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है. आप किसी को हिंदी में बोलते हुए सुन सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हुए सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उनका टॉकिंग स्टाइल क्या है और एक अपना टॉकिंग स्टाइल डिवेलप कर सकते हैं. तो अगर आपको फियर ऑफ टॉकिंग इन पब्लिक है तो आप जरूर जो मोटिवेशनल वीडियोज हैं, फ्री वीडियोज हैं ऑनलाइन, उनको देखिए, उससे काफी हद तक आपको टिप्स मिलेंगी कि आपको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, जब आप कहीं पे बोलने जा रहे हैं, आप अपने आप को कंफर्टेबली ड्रेस करिए। अगर आपका ड्रेस अप कंफर्टेबल नहीं है ना, अगर आप उस ड्रेस अप में कंफर्टेबल नहीं है, आप कभी भी अच्छी बात नहीं रख पाएंगे। आप हमेशा कॉन्शियस रहेंगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसी दिख रही हूँ। दैट डजंट मीन कि बहुत मेकअप करके या बहुत डेकअप होके जाइए। अगर आप प्रोफेशनली बोल रहे हैं, तो हमने आई थिंक फिफ्थ या सिक्स्थ सेशन में टिप्स थी कि हाउ टू ड्रेस अप प्रोफेशनली। प्रोफेशनली ड्रेस अप होके जाइए और अवॉइड करिए ऐसी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। बड़ी बड़ी बालियां, चूड़ियां जब आप पहनेंगे ना, तो वो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। आई एम नॉट सेइंग डोंट डू दिस, आई एम सेइंग कि अगर वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या आपको लग रहा है वो आपको स्पीकिंग में या जो स्टेज शो है उसमें प्रॉब्लम देगा, तो आप अपना कंफर्ट पहले देखिए कि मैं किस चीज में कंफर्टेबल हूँ। ऐसा भी नहीं कि चप्पल में चले जाए, प्रोफेशनल ड्रेसअप में जाएंगे लेकिन एक कंफर्टेबल चीज में जाएंगे। कोई बहुत टाइट कपड़े, बहुत ऐसे कपड़े जो पब्लिकली हम नहीं पहनने चाहिए या एक प्रोफेशनली नहीं पहनने चाहिए, वो अवॉइड करने चाहिए। जब आप कहीं बोलने जा रहे हैं, तो खाना अच्छे से खा के जाइए, क्योंकि अगर आपका शरीर जो है वो कंफर्टेबल होगा, अगर उसे भूख लग रही है या आपने बहुत ज्यादा चाय कॉफी पी लिया है और एसिडिटी हो रहा है, तो जब आप कंफर्टेबल फिजिकली नहीं है, तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे पब्लिक स्पीकिंग के लिए। एम आई राइट? अगर आप बहुत सारा खाना खा लेंगे तो क्या होगा, नींद आने लग जाएगी, हमारी एनर्जी खुद ही कम हो जाएगी। अगर हमारी एनर्जी कम हो गई, तो हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो उतने अच्छे से हम नहीं कह पाएंगे। खाना खाइए, हल्का खाना खाइए। अगर आप एक लार्ज गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हैं या अगर आपको पता है कि आप में नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, आलस आ सकता है, उबासी आ सकती है, अब आप स्टेज पे बात करें और बीच में ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। नहीं तो कोशिश करिए कि बहुत हैवी ऑयली खाना ना खाएं। अगर आप नेक्स्ट स्पीकर हैं या आप आपका जल्दी ही बारी आने वाला है, लेकिन भूखे भी मत रहिए। पेट में गुड़गुड़ हो रही होगी तो वैसे ही हाथ पांव सब ठंडे हो जाएंगे, बिल्कुल हम बोल नहीं पाएंगे। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, प्रैक्टिस वेल, दैट इज द ओनली, मैंने पहले भी बताया, कोई गोली नहीं है कि दो डोज सुबह लीजिए, दो डोज शाम को लीजिए और अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। नहीं, हमें खुद पे काम करना होगा। टिप्स हमने शेयर करी, इन टिप्स पे काम करेंगे डेफिनेटली, मैं बता रही हूँ कि ये प्रैक्टिस से ही बेटर हो सकता है। अपने टॉपिक पे रिसर्च करेंगे तो ही आप अच्छे से बात कर सकते हैं। कभी कभी जो अच्छे स्पीकर होते हैं ना, वो ऑडियंस के साथ एंगेज करते हैं, मतलब जैसे हम कोशिश करते हैं आप लोगों से बात करने की, ताकि ऐसा ना हो कि ये बोरिंग हो जाए। हो सकता है आपके ऑडियंस आपसे एंगेज नहीं करना चाहते, तो उसमें आपकी कोई कमी नहीं है। हो सकता है टॉपिक उनका इंटरेस्ट का ना हो, हो सकता है उनको समझ नहीं आ रहा, या उनके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं वो उस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके साथ इंटरेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो घबराइए मत, अगर आप अपने कोई क्वेश्चन पूछते हैं और कोई आंसर नहीं आता है, तो घबराइए मत, स्टिल ट्राई एंड एंगेज विद योर ऑडियंस। तो उससे क्या होगा, आपको एक इंटरेक्टिव सेशन करने में आसानी होगी और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होगा। बट ये सब चीजें तब पॉसिबल नहीं है अगर आपको एक टॉपिक पे बोलने को बोला जाए। ये तभी पॉसिबल है अगर आप ट्रेनिंग में हैं या आप टीचर हैं, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है। बट अगर आपको एक लेक्चर, मतलब एक टॉपिक पे बोलना है, डिबेट है, या फिर किसी टॉपिक पे आपको सिर्फ बोल के जाना है, तब आप एंगेज नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ ऑडियंसेस को सुनना है और वो दैट इज अबाउट इट। तो अपने जो ऑडियंस है ना, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आप जो अपनी बात कहना जा रहे हैं वो किसके लिए कह रहे हैं। जैसे अभी मुझे पता था कि ये हमारे लाइफ स्किल का जो सेशन है वो किस एज ग्रुप के लिए है, तो जो हमने अपने सेशंस प्रिपेयर करे और जो इसका नंबर ऑफ स्लाइड्स रखा, वो इसी हिसाब से रखा कि हम इसको एक घंटे में खत्म भी कर ले, ये सरल भाषा में भी हो, इसमें जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स, वो कवर हो जाएं। बहुत इस पे, पता है, लोगों ने बहुत रिसर्च करी है पब्लिक स्पीकिंग पे, इसके बहुत सारे टूल्स एंड टिप्स हैं। अगर हम इसी एक फर्स्ट सेशन में ही वो सारी चीजें करेंगे ना, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमारे ऑडियंस कौन है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी हमें हेल्प करता है हमारे टॉपिक पे प्रिपेयर करने के लिए। मेरी आदत है जैसे कि अगर मैं ट्रेनिंग सेशन में हूँ तो मैं लोगों के बीच बीच में जाके भी क्वेश्चन पूछती हूँ. अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपके आसपास 10-15 लोग 25 लोग बैठे हैं और आप कंफर्टेबल हैं लोगों के बीच में जाके बोलने का, तो वो भी एक सही तरीका है. अगर आप कंफर्टेबल हैं एक पोजीशन पे खड़े होके बोलने का, वो भी कंफर्टेबल है. इसमें कोई सही या गलत नहीं है. बट आप ये देखिए कि अगर आप ज्यादा मूव अराउंड कर रहे हैं तो कहीं वो डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा. कभी हॉल इतना बड़ा होता है कि पीछे के लोग क्या सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं, या अगर आप स्टेज पे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता. तो जैसे मैंने कहा, आप अपना एक तरीका अपना सकते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के टाइम आपको किस तरीके का तरीका अपनाना है. एक जगह पे खड़े होकर बोलना आपके लिए कंफर्टेबल है. अगर आप ट्रेनिंग सेशन में हैं तो एंगेज कर रहे हैं अपने ऑडियंसेस के साथ, तो आप थोड़ा बहुत चल के भी जा सकते हैं उनके पास, उनको माइक दे सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको एंगेज कर सकते हैं. जैसे कि अभी सीमा जी ने कहा कि उनको आई कॉन्टेक्ट में प्रॉब्लम आया कि उनके जो फैमिली मेंबर थे वो आए और उनसे वो आई कॉन्टेक्ट करा जब उन्होंने, तो उन्हें लगा कि मैं सब कुछ भूल रही हूँ. अगर आई कॉन्टैक्ट मतलब दूसरे की आंखों में डायरेक्टली देखने से आपको डर लगता है और आप शुरुआत में काम करना चाहते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, तो ज्यादा देर तक किसी एक आई कॉन्टैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप किसी को लगातार देखते रहते हैं ना, तो थोड़ी घबराहट होने लगती है, अब ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, अब ये मेरे बारे में कुछ तो गलत ही सोच रहा है, वो इतना ब्लैंक फेस, कभी कोई कुछ बोल रहा होता और हम लोग ऐसे देख रहे होते हैं, होता है ऐसा, तो हमें लगता है अब ये पता नहीं क्या सोच रहा है. अगर ऐसा है तो आई कॉन्टैक्ट मोर देन 5 सेकेंड्स आप अवॉइड कर सकते हैं. आपके सामने अगर ऑडियंस है तो आप एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ, फिर आप अवॉइड करके जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप आई कॉन्टैक्ट करिए, उनके साथ इंटरैक्ट करिए. ये धीरे धीरे ही बिल्ट हो सकता है. कभी कभी बहुत अच्छे स्पीकर्स जो होते हैं ना, वो कोई शेरो शायरी या कोई कोट, जैसे बड़े बड़े लोगों ने जो कोट बोला है उससे या तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं या अपने टॉपिक को एंड करते हैं. तो अगर आप में कॉन्फिडेंट है, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि पहले के 30 सेकेंड बहुत जरूरी है कि आप क्या बोलने वाले हैं, और आखिरी के जो 2 मिनट है वो बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से उसको एंड कर रहे हैं. बीच का भी जरूरी है, बट अगर आपने पहले के 30 सेकेंड या 1 मिनट में अपने ऑडियंसेस को अच्छे से इंगेज करा है, तो ज्यादातर आपका जो स्टेज फियर है वो कंट्रोल में रहेगा. खत्म तो नहीं होता, किसी का भी खत्म नहीं होता, कंट्रोल में होता है, उसको हम मैनेज करना सीख सकते हैं. अगर आप चाहते हैं शेरो शायरी, लेकिन टॉपिक से हटके नहीं, कि टॉपिक तो कुछ और है और आप प्यार मोहब्बत पे शेरो शायरी करें, ऐसा भी मत करिएगा. एजुकेशन का टॉपिक है तो एजुकेशन पे बात करिए, स्किलिंग का टॉपिक है तो स्किलिंग पे बात, ये बात नहीं करेंगे कि वो आज ये हो गया था आज वो हो गया, ऐसे कहानी नहीं डालेंगे, नहीं तो लगेगा कि हम बेफालतू में ऐसे ही बोल रहे हैं खाली बोलने के लिए. पता चल जाता है कि हमने फिर प्रैक्टिस नहीं करी है, खाली हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं बस ऐसे, तो वो भी मत करिएगा. बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी की कोट है, और नॉट मतलब पॉलिटिकल नहीं हो लेकिन मोटिवेशनल हो, ऐसे लोगों की कोट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन वो कोट को सही तरीके से बोलना, एग्जैक्टली जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही बोलना, अपने शब्द उसमें मिक्स ना करना, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा. ओके हाँ, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी हमें धोखा दे देती है. हमने पीपीटी पे बना लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया और जो हम कहने आए थे हमने पीछे पीपीटी देखी, पीपीटी तो चल ही नहीं रही और हम ब्लैंक, अब मैं क्या बोलूं. तो उसके लिए हम कुछ चीजें, कुछ चिट्स होते हैं ना, उसी को क्यू कार्ड बोलते हैं, क्योंकि हमने लिख के रखा हुआ है. अगर टेक्नोलॉजी नहीं भी चली तो मेरे पास मेरे जो पॉइंट्स हैं वो मेरे लिखे हुए हैं कि मुझे इन पॉइंट्स पे बात करनी है. तो दिस वॉज द फर्स्ट सेशन ऑन स्टेज फियर, पब्लिक स्पीकिंग. कुछ टिप्स थी, कुछ टेक्निक्स थी जो मैंने करीबन 2 दिन लगाए इसको क्रिएट करने में. आई होप दिस इज हेल्पफुल. ये प्रैक्टिस से ही जाएगा. और ये समझना कि सिर्फ मुझे स्टेज फियर है ऐसा गलत है. 75-80% लोगों को ये फियर रहता है और वो उस पे काम करते हैं और उसको अपने कॉन्फिडेंस में बदल के लाते हैं. तो डोंट थिंक दैट यू आर अलोन. ये सब में होता है, हर लेवल पे होता है, लेकिन हम जितना बात करते हैं दूसरे से ये फियर कम हो जाता है या मैनेज हो जाता है और हमें कॉन्फिडेंस आता है. आई होप दिस इज हेल्पफुल. मेरे पास कोई शेर-ओ-शायरी नहीं है और कोई

0: अभी मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ, इम्प्रूव कर रही हूँ अपने आप को. रियली वेरी हेल्पफुल मैम, थैंक यू सो मच.
1: मोस्ट वेलकम संगीता जी. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन कि हम आपस में बातचीत करके हम ये महसूस कर सकें कि ये कॉमन इश्यूज हैं, कॉमन चैलेंजेस हैं. और ये इसलिए है कि कहीं हम जब बचपन में थे तो छोटे होते हुए हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उतनी अपनी बात को कहने के लिए, या हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमें जजमेंटल बना दिया हमें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या हमें उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है जिस टॉपिक पे बोलने को बोला गया है. इन तीन या चार मोटे मोटे वजहों से ही हमें स्टेज फियर आता है हमारे दिमाग में. पर बहुत सारी ऐसी वजह हो सकती है, जरूरी नहीं है, बट दिस इज द मोस्ट कॉमनली स्टेटेड सिंड्रम्स और कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टेज फियर. सुनीता जी कुछ कहना चाह रही हैं?
2: मैम,
1: आफ्टरनून
2: मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. मुझे याद आया, अभी जब भी हमारे 2018 में आपके साथ ही इनोग्रेशन था हमारे स्कूल का, दैट वाज द फर्स्ट टाइम टू होल्ड द माइक इन माय हैंड, एंड आई एम वेरी नर्वस एट दैट टाइम, एंड यू आर विद मी एट दैट टाइम. आई रिमेम्बर दैट, सो दैट आई एम फेंट मैम, बट आई कैन से दैन यू helped me so much. Even speak your name, your family, about all that. And after that day, ma'am, I am very confident to handle a mic in any place. Thank
1: कई
2: you
1: बार
2: so
1: ऐसा
2: much.
1: होता है कि ना माइक हमने पहली बार लाइफ में पकड़ा होता है. ऐसा होता है जो मैंने पहली बार ये माइक अपने हाथ में पकड़ा, मुझे लगा ये क्या है. और ऐसा बहुत बार होता है कि हम जब फर्स्ट टाइम माइक पकड़ते हैं तो हमें लगता है ये आवाज हमारी अपनी ही है, क्योंकि हमें आदत नहीं है सुनने की अपनी आवाज को. तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो आपने फर्स्ट टाइम जब बोला तो वो एक फियर था, लेकिन वहां से आज आप इस स्टेज पे आ गई हैं कि खुद ही पेरेंट मीटिंग करती हैं, खुद ही बात करते हैं बच्चों की बात पेरेंट्स से, तो वो एक पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट ही है. आप इतनी अच्छे बड़े फोरम पे बात कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आपने काफी वर्क किया है. रेखा ने कुछ कमेंट दिया है, तो रेखा जी ने बताया कि है स्टेज फियर है, जैसे मैंने बताया सभी को ही होता है, तो उनको भी है. वो अपनी बात, हमने अभी कुछ सेमिनार किया था, वो कह रही कि वो अपनी बात रखना चाहती थी लेकिन वो इसी फियर की वजह से वो अपनी बात नहीं कह पाई. तो रेखा क्यों डर लगता है आपको माइक पकड़ने से, या इस चीज से कि लोगों के सामने बोलना, क्यों डर लगता है?
3: मैम, वैसे लोगों के सामने बोलने से डर नहीं लगता, क्योंकि जैसे हम मोबिलाइजेशन करने जाते हैं तो हम लोगों से बातें करते हैं. बट पता नहीं, वो फर्स्ट टाइम था मेरा, तो बस थोड़ा सा नर्वस हो गई. मैंने जैसे आपने बोला अपने पॉइंट लिखो, तो मैंने अपने पॉइंट भी लिखे थे, बट मैं सामने जाके और बोल नहीं पाई.
1: बोल नहीं पाए. मैं आपको एक मतलब पर्सनल टास्क दे सकती हूँ कि अब आप जाओगे ना, ये जो पॉइंट्स आपने बोल लिखे थे, प्लीज इसका वीडियो बनाओ या फिर मिरर के सामने जाके इसको प्रैक्टिस करो और देखो कि रेखा कैसी लगती है. क्योंकि मैंने आपको बोलते हुए देखा है रेखा, आप साफ बोलती हो, आप सरल शब्दों का इस्तेमाल करती हो और जितनी बात कहनी है उतनी ही बात कहती हो. तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं. सो यू ट्राई, एंड नेक्स्ट टाइम वेन एवर हम कोई ऐसा सेशन कर रहे हैं, आई विल मेक श्योर दैट यू आर देयर टू टॉक नाउ. डोंट बी वरिड, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है. वहां सभी लोग अपने थे और वहां पे कोई भी आपको जज नहीं करने वाला था, और अगर जज कर भी रहा था तो वो उस इंसान के अंदर की भावनाएं हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. बिकॉज वो आपके रिलेशन में नहीं है, उनकी जजमेंट का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. रेखा तो वैसे ही रहेगी,
3: यस
1: उसकी
3: मैम,
1: लाइफ
3: तो
1: वैसे ही चलेगी.
3: हाँ जी मैम, इस बात का डर लगता है, पता नहीं मेरी बात कुछ वैल्यूएबल है भी कि नहीं, या मेरी
1: एग्जैक्टली
3: बात के मेरे पॉइंट पे वो हंसेंगे किसने क्या बोल दिया. बस थोड़ा सा ये माइंड में चीज आती है तो अपनी बातें नहीं रख पाती.
1: जो आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना, वो दूसरे के पास नहीं है. जो आपके चैलेंजेस थे या जो पॉइंट्स आपके पास थे रेखा, वो आपके ग्राउंड चैलेंजेस थे. उसको शेयर करने के लिए दूसरा बंदा जज ही नहीं कर सकता सही से, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि जो आप कह रहे हो कि वो सही है कि गलत है. फॉर एग्जाम्पल, जो और लोग थे जिन्होंने शेयर, जैसे फरा थी उन्होंने शेयर करा, सीमा जी ने शेयर करा था, उनकी जो बातें हैं वो उनको पता है कि उनकी कम्युनिटी में क्या चैलेंजेस हैं. तो आप जज भी कर लोगे तो क्या कर लोगे, सही और गलत तो है ही नहीं उसमें कुछ भी, है कि नहीं.
3: हाँ जी मैम,
1: तो वो कॉन्फिडेंस रखो कि जो आप कहना चाह रहे हो वो वैल्यूएबल है, लेकिन वो तभी हो सकता है अगर

0: आप पहले से अपने पॉइंट्स लिख के रखोगे और आपको उसमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बात मैं कहना चाह रही हूँ, छोट दो ही लाइनें बोलो, जरूरी नहीं है कि 10 लाइनें बोलोगे तभी इफेक्टिव होगा। अपनी बात को 2 लाइनों में करो, देखना धीरे धीरे करके वो 2 लाइनें, 4 लाइनें, 6 लाइनें, और फिर बोलना पड़ेगा रेखा चुप कर जाओ, बस करो और मत बोलो, ऐसा भी सिचुएशन आएगा।
1: ओके
0: सो अभी आप बोले, इतने सारे लोगों के बीच में बोले, कोई आपको झिझक नहीं थी, तो आई
1: यस
0: कांटेक्ट से डरना नहीं है। आई कांटेक्ट से अगर आपको डर लगता है तो अपनी आईज को आप 5-7 सेकंड के बाद मूव आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर 1-to-1 डिस्कशन हो रही है तो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। ये बातें हमने इंटरव्यू स्किल्स में करी थी कि अगर इंटरव्यू स्किल्स चल रही हैं और सामने बैठ के कोई बात कर रहा है तो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। बट पब्लिक स्पीकिंग में क्या है ना, आप मूव आउट मूव इन कर सकते हो। अगर कोई कोई इंसान आपको लग रहा है कि अजीब से एक्सप्रेशन दे रहा है या बोरिंग उसको लग रहा है, उसकी तरफ देखो ही मत। नहीं देखोगे ना तो वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। उसकी तरफ देखो जो आपकी बात को समझ रहा है। कुछ लोग होते हैं करते हैं, उनको देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो उनकी तरफ देखो। ये धीरे धीरे करके आप में आ जाएगा।
1: गुड इवनिंग मैम, मैं ही बोल लेती हूँ, कोई नहीं बोल रहा है तो।
0: गुड इवनिंग।
1: तो स्टेज पे जाते हुए तो मुझे भी बहुत डर लगता था, अब नहीं लगता है। फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी स्टेज पे तो ऐसे दिल हो रहा था बहुत धक धक, और जो अपनी बात मैं कहना चाह रही थी वो भी नहीं कह पा रही थी कि मैं कुछ कहूंगी। मतलब इतना डर लगता था कि स्टेज पे जाके जो बात कहनी थी वो सब भूल जाया करती थी। बट अब जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो बहुत कॉन्फिडेंस होता है अपने आप में कि मैं वहां जाके अपनी बात भी रख लेती हूँ और बहुत अच्छे से लोगों को शायद समझा भी पाती हूँ।
0: एब्सोल्युटली फरहत, तो आपने उसके ऊपर काम किया, ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में वो हुआ। वही बात हमें अपने बेनिफिशियरी से भी बतानी कि घबराओ मत, दूसरे के जजमेंट से डरो मत। जो बात तुम कहना चाह रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंस रखो और इधर उधर की बात मत। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बोलने लग जाओगे और दूसरे टॉपिक को मिक्स कर दोगे तो नेचुरली यू नो इट विल बी नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड स्पीकर। तो इसलिए क्योंकि आप पॉइंट्स लिख लेते हो, आपको क्या बातें करनी है आपके दिमाग में ही रहती हैं या नोट्स में रहती है, इस पे आप अच्छा बोल पाते हैं।
1: जी, अब
0: सेम
1: तो
0: आई
1: परा
0: थिंक
1: शायरी भी करती है। अब
0: परा शायरी भी
1: तो
0: करती
1: परा
0: हूँ।
1: परा शायरी की शायरी से बंद करके अपना टॉपिक क्लोज करती है। जो आपने
0: एब्सोल्युटली,
1: आज
0: सो
1: बताया
0: दैट
1: वो
0: इज
1: तो सब,
0: अ
1: क्योंकि
0: दैट
1: एंटरटेनमेंट भी
0: इज
1: होना चाहिए ना, बोरिंग नहीं होना चाहिए
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि
1: सब।
0: उनको ये था कि उनको अपने ऑडियंसेस को एंगेज करना है
1: जी,
0: और उन उनकी जो
1: चाहती हूँ कि जो सुन भी नहीं रहा है ना मुझे, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, तो वो मेरी तरफ देखे। कम से कम शायरी पसंद करके देखे।
0: Absolutely. किसी को अगर एक बात कहने में जो उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है शायरी में इंटरेस्ट हो। कई लोग गाना भी गाते हैं, मैंने ये देखा है कि शायरी के साथ वो स्टेज पे आएंगे तो मैं गाने के साथ शुरुआत करता हूँ,
1: फर्स्ट
0: ऐसे भी
1: अवार्ड
0: मैंने।
1: मिला था मैम, हमें रमाडा में ही मिला था फर्स्ट अवार्ड, मैम ने दिया था, तो वहां पर मैंने गाने से एंड किया था अपना। मैंने सोचा शायद लोग कहेंगे फरा हर बार स्टोरी ले आती है और वही स्टोरी सब कुछ, शायद कुछ लोगों को बुरा बोरिंग लगता हो, तो मैंने कहा क्यों नहीं थोड़ा सा कुछ हो जाए, तो वहां मैंने एंडिंग जो की थी वो गाने पे की थी।
0: क्या
1: तो
0: आपने
1: कुछ
0: प्रिपेयर किया था उसके लिए पहले से? क्या
1: हाँ मैम, मैंने प्रिपेयर किया था।
0: आपने पहले अपनी दोस्त के सामने या मामा के सामने या भाई के सामने कभी किसी या शीशे के सामने उसको कोशिश करी कि मैं कैसी लग रही हूँ देख
1: मैम
0: लूँ?
1: भाई के सामने तो नहीं, लेकिन एक दिन पहले जब हमारा दूसरे दिन को वो अवार्ड फंक्शन था, तो एक दिन पहले स्वाति और ईशा मैम मेरे रूम में थी, तो मैंने उनको गा गा के सुनाया था। मतलब पहले सर्च किया, फिर मैंने उन्हें गा गा के सुनाया, तो थोड़ा डर लगा, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उन्हें सुनाया तो उन्हें भी अच्छा लगा, तो फिर वो मैंने
0: अब
1: जाकर।
0: अगर मुझे कोई बोल दे कि गाने के लिए स्टेज पे तो मैं तो भाग जाऊंगी वहां से। तो इट्स अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप कितने कंफर्टेबल हैं, आप जिस चीज में कंफर्टेबल हैं उस पे प्रैक्टिस करिए और उस पे काम करिए तो जरूर अच्छा स्पीकर बनेंगे और स्टेज फियर जो है उसको आप मैनेज कर पाएंगे, जैसे कि अभी हमने परा के एग्जाम्पल में देखा।
1: वही है ना कि एक बार गलत होगा, दो बार होगा, तीसरा आके हम लोग ठीक हो जाएगा। हमें नहीं देखना चाहिए लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं उनको इतना मतलब वो कर दो कि वो मजबूर हो जाए सुनने में कि हाँ भाई कोई बंदा बोल रहा है।
0: Absolutely. I like that. दयाराम जी, आपने भी बताया था कि आपको मुश्किल होती थी पहले बोलने में और अभी।
2: जी मैम, जैसे टाइम मैं कहा था वैसे कि जैसे प्रार्थना सदन में जब हमारा नंबर आता था तो हम भाग जाया करते थे और घंटे लेट आया करते थे, बोलने में झिझक थी। लोगों के सामने, जैसे स्कूल में तो बहुत सारे लड़के या लड़कियां होती थी, तो कुछ फ्रेंड्स भी होते थे क्लास के, तो वो के बाद में मजाक उड़ाते थे, तो ऐसे तो झिझक रहती थी। लेकिन जैसे काम किया है तो क्या, जैसे कम्युनिटी में जाते हैं और महिला पुरुष रहते हैं, अक्सर शायद सभी बड़े रहते हैं, तो जैसे हम करते गए तो हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी जो कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता गया। तो भी कोई भी, जब भी मैं कंप्यूटर क्लास जाता तो उसमें 11th और 12th की लड़कियां हैं, वो करीब 17 या 18 से ऊपर होती, तो कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं कुछ गलत ना बताऊं, लेकिन नहीं, मेरे ऊपर मुझे विश्वास रहता कि जो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले क्या, मैं यहाँ पे भी प्रिपेयर होता हूँ कि हाँ मुझे ये आज बताना है, इसलिए शायद वो भी कुछ बातें पे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल प्रिपेयर अगर आप करके जा रहे हैं तो जरूर आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे। तो मैंने भी बताया जैसे कि जरूर आप अपने टॉपिक पे काम करिए, अगर आपको टॉपिक पहले से पता है। अगर एकदम से किसी टॉपिक पे बोलने के लिए बोला गया है तो घबराहट हो सकती है, लेकिन आप 2 मिनट लगा के अपना ख्याल तैयार कर सकते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं और फिर आप अपनी बात कह। अगर किसी और को कोई शेयर नहीं करना तो वी कैन क्लोज दिस सेशन। आई होप इट इज ऑफ एनी यूज। अगर छोटा सा भी इसमें एक टिप भी अगर ऐसी थी जो आपके लिए हेल्पफुल थी सो इट्स माय वर्क डन। सो प्लीज ये शेयर करिएगा और अपनी कम्युनिटीज के साथ प्रैक्टिस करिएगा। शीशे के सामने मुझे वीडियोस भेज सकते हैं, मैम को भेज सकते हैं फीडबैक के लिए, शिवम सर को भेज सकते हैं कि हम कैसा बोल रहे हैं, अगर किसी को सपोर्ट चाहिए।
3: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी उनकी जुबानी।
4: माय नेम इज नौशाबा अंसारी, मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन 10th है और मैंने हॉस्पिटल में जॉब की है, उसके बाद मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी, फिर मैंने जॉब की 2 साल आगरा में ही हॉस्पिटल में। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, मेरा 1.5 साल का बेटा है। उसके बाद मुझे रीड इंडिया के बारे में पता चला तो यहाँ पर मैंने TG का एंड NTT का कोर्स किया, कर रही हूँ मैं यहाँ से। हाँ मुझे अच्छा लगता है यहाँ आकर के, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अपना फ्यूचर बना सकती हूँ, अपने बेटे का भी फ्यूचर बना सकती हूँ। मेरे इन-लॉज भी एग्री हैं, मेरे हस्बैंड भी एग्री हैं यहाँ के लिए। यहाँ पर अभी तक भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है NGO के सिवा, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर और भी खुलने चाहिए ऐसे, जो उससे सभी लेडीज़ को, लड़कियों को बाहर निकलने का मौका मिले, जिनके फादर मदर निकलने नहीं देते घर से। यहाँ अच्छा लगता है, टीचर्स भी अच्छे हैं यहाँ के सारे।
5: हेलो, मेरा नाम दीपा है, मेरी उम्र 23 साल है और मैं मैरिड हूँ। मेरा एक बेटा है और मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैंने 12th तक की पढ़ाई की है, उसके बाद मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर के फॉर्म भी भरे थे, पर मैं 6 महीने का ही कोर्स कर पाई कि बीच में मेरी शादी आ गई, जिसके कारण मैं आगे की पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाई। शादी के 1.5 साल बाद मेरा बेटा हुआ, जैसे बेटे होने के बाद तो जैसे मैं डिप्रेशन में रहने लगी। उसके बाद मुझे रीड इंडिया के बारे में पता चला तो मैंने अपने इन लॉज को कन्वेंस करने की कोशिश की, पर राजी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। उन्होंने तो परमिशन दे दी, उसके बाद मुझे अपने हस्बैंड को मनाने में भी काफ़ी कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि मेरा बेटा अभी 1.5 साल का ही हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो भी मान गए। उसके बाद मैं यहाँ आई तो मैंने NTT का कोर्स किया, उसके साथ साथ ही मुझे वहाँ पे सर्वे करने आए तो मुझे यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स के बारे में भी पता चला। फिर मैंने यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स में भी एडमिशन ले लिया, कंप्यूटर कोर्स का कोर्स भी किया, उससे मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। उसके रीड इंडिया आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा, मुझे काफ़ी कम महसूस होता था और मैं अपने आप को काफ़ी आज़ाद महसूस करती थी। मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं शादी के बाद और बच्चों के बाद काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, उसमें भी मुझे काफ़ी ये लगा कि मेरा डिप्रेशन दूर हो रहा है, खुल के सांस ले पा रही थी मैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सारे काम अपने आप से खुद कर सकती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ, मैं अपने आप को अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ, मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे कंप्यूटर सीखने के बाद तो मुझे काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे काफ़ी काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग या फिर बिल पे करना, टिकट करना और भी काफ़ी बैंक में के काम सभी घर पे हो जाते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है खुद से अपना काम करके, या फिर भाई पहले बहुत बहुत देर तक धूप में लाइन में जाना पड़ता था, अब मैं घर बैठे ही अपना सब कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया।
6: मेरा नाम रिया है, मैं 10th में स्टडी करती हूँ और मेरी क्लास बीच में अभी कुछ दिनों से बंद हो गई थी, क्लास आना बंद हो गया था मेरा और मेरे घर वाले एग्री नहीं थे, लेकिन मैम ने कॉल करके समझाया, फिर मेरे घर वाले एग्री हुए, मेरे को भेजा। मैम भी बहुत अच्छी है यहाँ की, और जो भी कोर्स आता है, मैं पहले टीचर ट्रेनिंग भी कर रही थी, फिर उसके बाद अब मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया है। ये महसूस किया मैंने कि हाँ, जो मैं चाहती हूँ फ्यूचर में बनना, अपने करियर में कुछ करना, उससे ये हुआ है कि हाँ मैं बिल्कुल, मेरे को वो हो गया है, घर वालों का सपोर्ट हो गया है, टीचर्स ने समझाया था, कॉल की थी कि हाँ ये कर सकती है कुछ।
3: रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: वेलकम फ्रेंड्स, जीते रहो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अरे बबलू, ये क्या कर रहे हो?
1: खुजला रहा हूँ, और क्या, तुम्हें तो दिखता रहेगा फिर भी पूछोगी।
0: नहीं नहाओगे तो ऐसे ही होगा, ये सब गंदगी का नतीजा है।
1: तुम्हें तो मौका चाहिए बस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पैर में ये छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, पर इसे कोई परवाह ही नहीं। जस्सी,
0: तो तुम खुजा के उसे और क्यों बढ़ा रहे हो? और तुम्हारे नाखून देखो, अपने नेल्स। दोस्तों, आप ये गलती कतई मत कीजिएगा। अगर दाने निकल रहे हों और दाने वाली जगह पर त्वचा लाल भी हो, तो प्लीज उसे नाखून से मत खुजाइएगा इस बुद्धू की तरह, बीमारी और बढ़ जाती है।
1: तुम इतना पैरानॉइड क्यों हो रही हो? छोटा सा तो है, मैं तो बस चिढ़ा रहा था।
0: मैं जानती हूं तुम क्या कर रहे हो, और हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम त्वचा की बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों, ऐसा करना उचित नहीं है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील स्थान है।
2: हम एक दिन में न जाने कितने ही सेंसेशंस महसूस करते हैं। इन सेंसेशंस के महसूस होने में त्वचा का अहम रोल है। त्वचा हमारे शरीर का बहुत संवेदनशील अंग है। जाहिर है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारी त्वचा हमेशा एक्सपोज रहती है। वातावरण में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं, जिनसे त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं।
3: हमारी त्वचा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है प्रदूषण से। प्रदूषण और हार्मफुल केमिकल से स्किन रैशेस, डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा की परेशानियां हो सकती हैं। और अगर इतना काफी नहीं था तो परेशान करने के लिए मौजूद हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पूरा पारिवारिक समूह। जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई भी त्वचा की बीमारियों की एक अहम वजह है। इनसे एक्ने, रिंगवर्म इन्फेक्शन और हर्पिस जैसी त्वचा की बीमारियां होती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है अपनी स्किन का ध्यान रखा जाए। वैसे कुदरत ने भी कुछ हद तक त्वचा का ख्याल रखा है। त्वचा पर मौजूद बाल बाहरी तत्वों से इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारी त्वचा स्वेट ग्लैंड्स के जरिए भी बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित करती है। ज्यादा तापमान, शारीरिक परिश्रम और स्ट्रेस की स्थिति में ये स्वेट ग्लैंड्स पसीने का उत्पादन करते हैं। ये पसीना त्वचा में मौजूद पोर्स यानी रोम छिद्रों से बाहर निकलकर जब इवेपोरेट यानी वाष्पित होता है तो शरीर को ठंडक पहुंचती है। जाहिर है, पसीना पसीना होना महज एक मुहावरा ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की जरूरत भी है। ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स के अलावा त्वचा में करोड़ों की संख्या में अन्य स्किन सेल्स भी मौजूद रहते हैं। ये सभी त्वचा की तीन अलग लेयर्स में बटे रहते हैं, पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा सबक्यूटेनियस टिश्यू। त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, कागज के टुकड़े जितनी मोटी होती है। एपिडर्मिस पर बाल और पोर्स यानी कि रोम छिद्र होते हैं। एपिडर्मिस की सबसे निचली लेयर में बेसल सेल्स मौजूद होते हैं। ये बेसल सेल्स टूटकर स्क्वेमस सेल्स बनते हैं जो केराटिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। यही केराटिन हानिकारक रसायन और इन्फेक्शन से त्वचा की रक्षा करता है। एपिडर्मिस के नीचे होती है त्वचा की सबसे मोटी परत जिसे डर्मिस कहते हैं। इसमें नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, मसल्स, ब्लड कैपिलरीज और डीप सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तीसरी और अंतिम लेयर को सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। इसमें मुख्यतः वसा होती है और इसके अलावा क्यूटेनियस नर्व्स और ब्लड वेसल भी होती हैं। क्यूटेनियस नर्व्स ही स्किन से सेंसेशन लाने और ले जाने का काम करती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू ही गर्मी कैद कर हमारे शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है और गर्मी को शरीर के अंदर रखता है। जहां तक त्वचा के रंग का सवाल है तो इसके पीछे मेलेनोसाइट्स नामक सेल्स का हाथ है जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। ये सेल्स मेलानोजेनेसिस प्रक्रिया के जरिए मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनाते हैं। जैसे ज्यादा चाय पत्ती डालने पर चाय का रंग काला हो जाता है, वैसे ही मेलानिन के ज्यादा बनने से स्किन भी डार्क हो जाती है। मेलानिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। भारतीयों में मेलानिन की मात्रा यूरोपियन से ज्यादा होने की वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाले स्किन कैंसर से काफी हद तक बचे रहते हैं। हमारी स्किन शरीर के किसी और हिस्से के मुकाबले सबसे तेज रिप्लेस होती है। त्वचा की एपिडर्मिस लेयर में ऑयल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जिनमें से एक है सिबेशियस ग्लैंड। यही सिबेशियस ग्लैंड एक तरल पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसे सीबम कहते हैं, जो बाल और त्वचा का मॉइस्चर कंटेंट बनाए रखने में मदद करता है। गंदगी, अनुवांशिक कारणों या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार सेबम ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। यही सेबम जमा होकर मुहासे या पिंपल्स के रूप में त्वचा पर दिखाई देते हैं। सेबम के इस जमाव में बैक्टीरिया भी पैदा होने लगते हैं। जब बैक्टीरिया और सेबम त्वचा के सतह के नीचे रहते हैं तो वहाँ पर व्हाइट हेड्स दिखते हैं। त्वचा की सतह से बाहर निकल कर मेलानिन के साथ रिएक्ट कर ये जमाव ब्लैक हेड्स का रूप भी ले सकते हैं।
4: मुहासों का इलाज दो तरह से होता है, लगाने का भी है और खाने का भी है। एग्जामिनेशन जरूरी है ये देखने के लिए कि माइल्ड है या मॉडरेट है या सिवियर है। माइल्ड है जिसमें बोलते हैं सिर्फ कोमेडोन्स हैं, तो उसमें आपका लगाने का दवा जिसमें कई जेल्स आ जाते हैं, एंटीबायोटिक जेल्स हैं या बेंजोइल पेरोक्साइड जेल है या रेटिनॉइड जेल एक कैटेगरी आता है, वो जेल्स लगाएं। मॉडरेट में पस के दाने निकलते हैं जिसको पिंपल्स बोला जाता है कॉमन पार्लेंस में, उसके लिए एंटीबायोटिक्स खाने के लिए दिए जाते हैं और लगाने के लिए भी दवा दी जाती है।
3: एक्ने जैसे कॉमन डिसऑर्डर के अलावा त्वचा के कुछ और कॉमन डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे एक्जिमा जिसे डर्मेटाइटिस भी कहते हैं और सोरियासिस। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। एक्जिमा की शुरुआत होती है सूजन और खुजली से। एक्जिमा के कारण त्वचा पर ब्लिस्टर्स या फफोले भी पड़ने लगते हैं। यदि एक्जिमा लंबे अरसे तक रहे तो त्वचा सूखी, बर्तीली और बदरंग भी हो सकती है।
2: ये एलर्जी एसिड और अन्य हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से हो सकती है। कुछ धातुओं जैसे निकल से बने चश्मों के फ्रेम और बटन के संपर्क में आने पर भी कई लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है।
3: एक्जिमा के मूल कारण और रैशेज के आकार और जगह के आधार पर एक्जिमा के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। जैसे अटोपिक एक्जिमा, ये अमूमन उन लोगों को होता है जिनमें एलर्जी होने की जेनेटिक टेंडेंसी यानी आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है। ये नियमित रूप से आता जाता रहता है। एक ही जगह बार बार खुजलाने और रगड़ने पर भी एक्जिमा हो सकता है। जहाँ एक्जिमा के पीछे बाहरी कारणों का हाथ है, वहीं त्वचा की एक ऐसी बीमारी भी है जिसकी मूल वजह जेनेटिक है। इस बीमारी का नाम है सोरियासिस। त्वचा की बाहरी लेयर एपिडर्मिस में कोशिकाओं के प्रोडक्शन और रिमूवल की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब बेसल लेयर्स द्वारा निर्मित सेल्स का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है, तब शरीर पर गठीले लाल रंग के पैचेस दिखने लगते हैं। इसी अवस्था को सोरियासिस कहते हैं। अधिकतर घुटने, कोहनी, पीठ, कूल्हे और सर, इन भागों पर सोरियासिस असर करता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो सोरियासिस का इलाज उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। सोरियासिस होने पर इलाज के लिए स्किन पर मलहम या क्रीम लगाई जाती है। यदि इनसे राहत न पहुँचे तो फोटोथेरेपी भी की जाती है। इसमें ज्यादातर प्रभावित क्षेत्र पर अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। सोरियासिस के काफी बढ़ जाने पर डॉक्टर्स खाने की दवाएं और इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं।
0: अरे बबलू, तुम ये लंगड़ाते हुए क्यों आ रहे हो?
1: देखो ना, जहां मुझे खुजली हो रही थी वहां कैसे घाव हो गए हैं। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है?
0: ओह, मगर आपकी माने तो ये इन्फेक्शन वगैरह तो सब किताबी बातें हैं ना?
1: प्लीज कुहू, दर्द भी हो रहा है और जलन भी, देखने में भी कितना खराब लग रहा है, रोना आ रहा है मुझे।
0: अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर दूंगी, ठीक हो जाएगा।
1: नहीं, और भी ज्यादा दर्द होगा। नहीं, मुझे
0: कुछ नहीं होगा बबलू। घाव कैसा भी हो साफ तो करना ही पड़ेगा ना, और मर्ज कैसा भी हो इलाज तो जरूरी है ना।
2: स्केबीज एक पैरासाइट इन्फेक्शन है जिसमें तेज खुजली होती है। ये बीमारी फैलाने वाले माइट स्किन के अंदर अपने को छुपा लेते हैं। इनके काटने से तेज खुजली होती है जो रात में अक्सर बढ़ जाती है। ये माइट्स बहुत छोटे होते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिखाई देते हैं। ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड व्यक्ति के कपड़ों और बिस्तर के इस्तेमाल से फैल सकता है। स्केबीज का इलाज क्रीम या लोशन से आसानी से हो जाता है, लेकिन मरीज के कपड़ों और बिस्तर के कपड़ों को उबालना जरूरी है, जिससे माइट्स मर जाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो माइट्स दोबारा इन्फेक्ट कर देंगे और किसी और को भी इन्फेक्शन लग सकता है। आइए अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की। हमें से काफी लोगों ने रिंगवर्म का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल ये रिंगवर्म है क्या? इसके पीछे हाथ है टीनिया नामक फंगस का, जो हमारी त्वचा, बाल और नाखूनों में पनप सकता है। इसकी ग्रोथ गोलाकार स्वरूप लेती है, बीच में त्वचा नॉर्मल रहती है और इसके आसपास लाल, पथरीली और थोड़ी उभरी रहती है। इस कारण यह इन्फेक्शन रिंग जैसा दिखता है और यहीं से इसका नाम पड़ा रिंगवर्म। हालांकि हकीकत में त्वचा में कोई कीड़ा मौजूद नहीं रहता। ये बीमारी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, पैर के अंगूठों के बीच में, छाती, बांह और पांव पर अक्सर ये बीमारी असर करती है। इस फंगल इन्फेक्शन के होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, ये किसी संक्रमित व्यक्ति को छूने से हो सकता है। दूसरा, फंगाई ज्यादातर नमी वाली जगहों पर, जैसे सार्वजनिक स्नान घर या शौचालय और स्टोरेज करने की जगहों में पनपती है। ऐसी जगहों से भी संक्रमण होने का खतरा रहता है।
5: देखिए, एंटी फंगल दवाइयाँ जो आती हैं वो दो तरह से आती हैं, एक तो क्रीम फॉर्म में आती हैं और एक टैबलेट फॉर्म में आती हैं। क्रीम फॉर्म के साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि जहां पर भी क्रीम लगाई है वहां पे खुजली मचना, जलन मचना और कुछ तरह के दाने हो जाना, ये साइड इफेक्ट्स कई बार देखे जाते हैं। तो अगर आपको ये हो जाए तो पेशेंट को दवाई को रोक के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ओरल जो दवाइयां आती हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, उसके साइड इफेक्ट्स में एलर्जिक रिएक्शंस होना वो बहुत कॉमन है, जिसके कारण से इसमें लाल चकत्ते पड़ जाना शरीर के ऊपर, या फिर पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाना, उल्टी जैसा लगना, नौजिया लगना, पेट में दर्द होना, ये सब चीजें, कई बार भूख भी कम हो जाती है पेशेंट की। अगर ये सब हो जाए तो पेशेंट को दवाई रोक के फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
2: इलाज से बेहतर है बचाव। रिंगवर्म या टीनिया इन्फेक्शन से बचाव के लिए त्वचा को साफ रखें और नमी से बचा कर रखें। कुछ और आम बातें हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। जब जरूरी ना हो तब जूते उतार दें, मसलन घर पर, ताकि पैरों को जरूरी हवा मिल सके। मोजे और अंडरवेयर रोजाना बदलना, खासकर गर्म मौसम में। नमी वाली जगहों पर, जैसे सार्वजनिक स्नान घर में, नंगे पाँव न चलें। त्वचा पर होने वाले बॉयल्स या फोड़े हेयर फॉलिकल से होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बॉयल्स त्वचा पर पस युक्त इन्फ्लेमेशन का रूप लेते हैं। बॉयल्स के इलाज में पस को सुखाया जाता है, इसके लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करते हैं।

0: ब्रेक के बाद बबलू अपने इन टैटू वाले हाथों से आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता है।
1: टैटू बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए तो
0: ज्यादा पढ़े लिखे होने का यही नुकसान है, हर चीज में इन्फेक्शन ही दिखता है।
1: छोड़िए दोस्तों, इसको कुछ समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। आइए अब बात करते हैं वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की।
2: वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आने वाले दो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, वॉट्स यानी मस्से और हर्पीज यानी खाज या दाग। वॉट्स एक किस्म की स्किन ग्रोथ है जिसके पीछे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV का हाथ है। वॉट्स शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, चेहरे, हाथ के पिछले भाग पर, पैरों के तलवे पर, मुंह के अंदरूनी भाग में और यहाँ तक कि जेनिटल एरिया में भी। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। शारीरिक कॉन्टैक्ट या फिर इन्फेक्टेड व्यक्ति के तौलिये, कपड़े इत्यादि इस्तेमाल करने पर ये इन्फेक्शन फैल सकता है। काफी मामलों में वॉट्स कुछ महीनों में खुद ब खुद गायब भी हो जाते हैं, पर कई बार इनका इलाज दवाइयों या अन्य किसी ट्रीटमेंट पद्धति के जरिए ही करना पड़ता है। इलाज के कुछ कॉमन तरीके हैं रासायनिक, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड या कैंथराइडिन वॉट्स पर लगाना, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से वॉट्स को फ्रीज कर देना। इस पद्धति को क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। कुछ केसेस में वॉट्स को स्पेशल तरीके से जलाया जाता है, जिसे कॉटराइजेशन भी कहते हैं। जेनिटल वॉट्स बेहद कंटेजियस होते हैं और इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की निगरानी में करना चाहिए।
3: वॉट्स टच करने से फैलते हैं, तो पेशेंट उस वॉट को बार बार अपने हाथों से ना छुए, और दवाई लगाने के बाद अगर क्रीम्स हैं तो अपने हाथों को साबुन से या पानी से अच्छी तरह धोए। दूसरी बात यह है कि वॉट्स, जेनिटल वॉट्स जो है, यौन संबंध करने से फैलते हैं। मतलब अगर किसी आदमी को वॉट्स हैं तो वो अगर यौन संबंध बनाता है तो दूसरे उसके पार्टनर को वॉट्स हो सकते हैं।
2: वायरस से होने वाली त्वचा की एक और बीमारी है हर्पिस। ये बीमारी दो तरह के वायरस से फैलती है। पहला वायरस है हर्पिस सिंप्लेक्स, जो ओरल कैविटी और जेनिटल को इन्फेक्ट करता है। हर्पिस सिंप्लेक्स कॉन्टेजियस होता है और अधिकतर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। हर्पिस फैलाने वाला दूसरा वायरस है हर्पिस जोस्टर। ये वायरस एक ही नर्व को अपनी चपेट में लेता है। जहाँ जहाँ वो नर्व निकलती है उस जगह पर दाने निकल आते हैं। इसमें बहुत दर्द होता है, लेकिन ये कंटेजियस नहीं है। हर्पिस जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स वायरस का ही एक किस्म है। इसके ट्रीटमेंट में कुछ एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन संपूर्ण रूप से यह अपने आप ही ठीक होता है, जिसकी अवधि 3 सप्ताह से लेकर 1.5 महीने तक हो सकती है। सीरियस इन्फेक्शन में दाने खत्म हो जाने के बाद भी दर्द 6 महीनों तक रह सकता है। ऐसे हालत में कुछ समय तक दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्कैल्प में होने वाली परेशानियां हैं डैंड्रफ। डैंड्रफ स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से होता है, जिसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। डैंड्रफ एक हल्के फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसका इलाज क्रीम और लोशन से किया जाता है। हेड लाइस एक पैरासाइट है, जिसे जू भी कहते हैं। ये सर के बालों में रहती है। इसके स्किन के अंदर छुपने से इचिंग और इन्फ्लेमेशन होती है। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा पैचेस में होता है। इसकी वजह इन्फेक्शन हो सकता है या कोई ट्रॉमा जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। लेकिन सबसे कॉमन एलोपीसिया, जिसे एलोपीसिया एरिएटा कहते हैं, के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इलाज के लिए मेडिसिन और क्रीम के जरिए स्कैल्प के नरिशमेंट का ध्यान रखा जाता है। ज्यादातर मामलों में कुछ महीनों के बाद प्रभावित जगह पर बाल फिर से उगने लगते हैं। अब बात ल्यूकोडर्मा की। इसमें मेलेनिन की कमी से स्किन पर व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। शुरुआत में और जब ये बीमारी शरीर के कुछ अंगों तक सीमित होती है तो इसका पूरा इलाज संभव है, लेकिन अगर ये बीमारी बहुत अधिक अंगों तक फैल जाए तो इस रोग का पूरा निवारण कई बार संभव नहीं होता। लेकिन गौरतलब है कि ये छूत की बीमारी नहीं है और इससे व्हाइट पैचेस के अलावा शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। इसका इलाज मेडिसिन, क्रीम्स और फोटोथेरेपी से किया जा सकता है। इस इलाज के बाद मेलेनिन का बनना बढ़ जाता है और स्किन का सामान्य रंग वापस आने लगता है। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है, जिसमें जन्म से ही शरीर में मेलेनिन नहीं पाया जाता, इसलिए रंग सफेद होता है। त्वचा पर मौजूद बाल शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। त्वचा को तीन लेयर्स में बांटा गया है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज। त्वचा में मौजूद मेलेनिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है और शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। हर्पीज की बीमारी दो तरह के वायरसेस से होती है, हर्पीज सिंप्लेक्स और हर्पीज जॉस्टर। स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से डैंड्रफ होता है, इसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, इसकी वजह इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो सकती है जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। एलोपीसिया एरिएटा के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है।
0: वाह कोकिला, क्या इलाज किया, आज मान गए तुमको, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या बताओगी?
1: आगे वेल बबलू, समय हो गया है।
0: क्या बात करती हो कोकिला, अभी तो शुरू ही हुआ था। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।
1: जी हाँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: मेरा नाम प्रियंका है, मैं शाबान मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मेरा जन्म यहीं हुआ है। हम परिवार में 5 सदस्य हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और 3 बहन भाई। मेरा भाई 9th क्लास में है, बहन मेरी जॉब करती है, पापा टूरिज्म में है और मम्मी ने यहाँ से रीड इंडिया सेंटर से नर्सिंग का कोर्स किया था। आज वो जॉब कर रही हैं हॉस्पिटल में। मैंने 5 साल पहले रीड इंडिया सेंटर से कंप्यूटर कोर्स किया था, उसके बाद मैंने एनटीटी किया और आज मैं एज अ लाइब्रेरियन रीड इंडिया सेंटर में जॉब कर रही हूँ। मेरा जो एम था वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना था। अब मैं रीड इंडिया सेंटर की मदद से यहाँ से कोर्स करने के बाद मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ काम करने के साथ साथ मैं अपने घर पे भी बहुत सारे काम करती हूँ। जैसे मैं अपनी जिम्मेवारी घर पे निभाती हूँ, वैसे ही मैं अपनी जिम्मेवारी यहाँ रीड इंडिया सेंटर के साथ निभाती हूँ। अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से, पूर्ण तरीके से करती हूँ। मेरे परिवार में सभी वर्किंग है, तो भाई की, छोटे भाई की जिम्मेवारी सारी मेरे ऊपर है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभाती हूँ। मैं उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, स्कूल से लेके आती हूँ। उसके अलावा मैं उसकी स्टडी में हेल्प करती हूँ, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाती हूँ और उसके अलावा उसकी सारी जिम्मेवारियां मैं निभाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। उसके अलावा मैं अपने पेरेंट्स का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, उनकी केयर करती हूँ, उनके काम भी करती हूँ।
2: हेलो, मेरा नाम निशा सैनी है। मैं जब छोटी थी, 10 साल की थी और 6th क्लास में थी, तो मैं शुरू से ही यहीं पे आना शुरू किया है। एनजीओ के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, शुरू से पसंद रहा है मेरे लिए, अच्छा लगता है मुझे। हाँ, मैं ना पिछले 7 साल से आती रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मैं अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मतलब एनजीओ में बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं कर लूँगी, अगर कर सकी तो कर लूँगी, अगर जो मुझे इंटरेस्ट रहा जिस चीज़ में, मैं वो करूँगी और एनजीओ में आऊँगी। शुरू से आती रहूँगी। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, मैंने पढ़ा भी है, लेके भी गई हूँ घर, बहुत अच्छी बुक्स हैं और टीचर्स भी अच्छे हैं, यहाँ के मैम सब अच्छे हैं। अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अब जो बॉयज होते हैं ना, पेरेंट्स ना सिर्फ बॉयज़ की मानते हैं, आजकल के ना बॉयज़ की बहुत डिमांड वगैरह है और गर्ल्स से जो कुछ कर दे, जैसे बॉयज़ के तरह जॉब करना चाहती हैं या कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके पेरेंट्स पता नहीं क्यों पीछे रोकते हैं, क्यों मना करना चाहते हैं। आखिर लड़की भी तो है, करके दिखा सकती है वो लड़की, जो लड़के काम कर सकते हैं ना वो करके दिखा सकते हैं। लड़की को सब लोग कमज़ोर पता नहीं क्यों समझते हैं, आज के देश में नहीं समझना चाहिए। और वो लड़की ताकतवर होती है, वो अच्छी भी होती हैं और वो समझ सकती हैं, वो पेरेंट्स को खुद अच्छे से कमा के खिला सकती है, जितने बॉयज़ कमा के नहीं खिला सकते। बॉयज़ है ना बहुत मतलबी होते हैं, बड़े होते होते ना अपने पेरेंट्स को उल्टा सीधा बोलते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। मुझे बॉयज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बॉयज़ ना पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते और ना ही गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना जानते। जो अच्छे से बात करते हैं पता नहीं कैसी नज़रों से देखते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। वो बॉयज़ है ना बहुत गंदे होते हैं, बॉयज़ की तरफ तो बहुत ही कमी है, जितना होता है उतना ही तक बात रखें, फ्रेंड है तो फ्रेंड ही तक रहे, उससे आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बॉयज से ना एकदम जैसे आगे आगे अपना करियर करते हैं वैसे वैसे ना लोग नए नए मिलते हैं और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, खिलाया पिलाया। शादी हो जाती है तो उसके बाद अपनी वाइफ की ही सुनते हैं, पता नहीं क्यों सुनते हैं। मेरा मानना है कि जो हमें पढ़ाया लिखाया हमारे पेरेंट्स ही है, जो कुछ है उनकी रिस्पेक्ट करें और उनकी अच्छे से देखभाल करें, जैसे हमें बचपन से पेरेंट्स ने रखा हम उनकी तरह बड़े होके अच्छे से रखें। मैं एक महिला और लड़की के ऊपर एक कविता है मैं सुनाने जा रही हूँ। मैं चाहती थी कि जींस पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं जो सूट पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं सब सारी जिंदगी जीऊं, पर पेरेंट्स ने मेरे को ये सब करने नहीं दिया। जो बॉयस होते हैं उन सबको आज़ादी दी। शादी होने के बाद ससुराल में गई, शादी होने के बाद मैं ससुराल में गई, सास ने बोला ये करो वो करो, लेकिन कुछ भी करने ना दिया। जो कुछ था सब उसके नाम का था, सिंदूर उसके नाम का, चूड़ी उसके नाम की, पायल उसके नाम का, साड़ी उसके नाम की, बिछिया उसके नाम का, नाम प्लेट भी उसके नाम का, नेम भी उसके नाम का, आखिर मेरा क्या है मेरे नाम का। थैंक यू।
3: मेरा नाम लकी साहू है, मैं लखनऊ गोसाईगंज सेंटर में स्टिचिंग सिविंग की ट्रेनर हूँ और वहाँ पे रहती हूँ। रीड इंडिया से मैं 1.5 साल से जुड़ी हूँ। वहाँ पे 1.5 साल से मैं स्टिचिंग एंड सिविंग की क्लासेस लेती हूँ और बच्चों को सिलाई के बारे में बताती हूँ। और रीड इंडिया के थ्रू मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और गीता मैम को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे दी और मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिल रहा है वहाँ से। आज यहाँ आकर भी मुझे ब्यूटी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली, जिससे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला है। और आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा सॉन्ग सुनाने जा रही हूँ। लग जागली की पे हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो।

0: शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। थैंक यू।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

റീഡ് ഇന്ത്യ മാനെ റൂറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രാമീൺ ശിക്ഷ എവം വികാസ് ഹമാരാ കാം തോ ലൈബ്രറീസ് ബനാന ഹൈ ഓർ ആജ് കേ സമയ മേ ജോ ചർച്ച ഹോ രഹി ഹൈ ലൈബ്രറീസ് ഖാലി കിതാബ് പഢ്നേ കേ ലിയേ നഹീ ഹൈ ലൈബ്രറീസ് ഏക് ഐസി ജഗഹ ഹൈ ജഹാൻ ഹം ബഹുത് കുഛ് അപ്നേ ലിയേ ഭി കർ സക്തേ ഹൈ ഓർ സമുദായ കേ ലിയേ ഭി കർ സക്തേ ഹൈ മാനേ പഢേ തോ ഹം അപ്നേ ബച്ചോ കോ ഭി പഢായേ ഹം ബഡോ കോ ഭി പഢായേ ഹം ഛോട്ടേ ബച്ചോ കേ സാഥ് ഭി ആക്ടിവിറ്റീസ് കരേ കി കിതാബ് ക്യാ ചീസ് ഹൈ ഓർ കിതാബ് ഉൻകേ ജീവൻ മേ ക്യാ മഹത്വ രഖതി ഹൈ പർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ജർണി ഇസ് സമയ കേ സാഥ് സാഥ് ഹംനേ യേ സോചാ കി ഹമേ മഹിലാഓ കേ ലിയേ ഭി കുഛ് കാര്യക്രമ കർനേ ചാഹിയേ അഗർ മഹില അപ്നേ ആപ് കോ നിഖാർ സക്തി ഹൈ അപ്നേ ആപ് കോ സക്ഷം ബനാ സക്തി ഹൈ और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए जैसे सिलाई सिखाना ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं पर उसका जो आउटकम है जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं, ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े बीबीए और एमबीए की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीड इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो बीए कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाके अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

0: Good evening, everyone. Welcome to today's episode of Nurturing Grassroots Leaders, Branding the Local Culture with Development. Today's guest will be Mrs. Sana from Barabanki, UP, who's here to share her story with us. As for a little background, Mrs. Sana from Barabanki, UP, who's here to share her story with us. As for a little background about her, she did her schooling in Barabanki but got married at a very early age, so had to wait for a while before continuing her studies. She did MA in English Literature and started teaching in Central Academy School. While working there, she and her husband got involved in an organization named ASI, which now goes under the name of Tanager. And while working in ASI, she was given a project regarding different farming communities, and through that, she got to know about Read India organization. She later joined Read India in March 2018 and is currently working as a center coordinator. Her current goal is to make sure that Read India is providing facilities and benefits to as many people as possible. This was just a little background about her, and she is going to explain that in much greater detail. So with that being said, I would like to request Smita ma'am to continue the program.
1: Thank you, Shashank. Thank you for the brief introduction about Sana. I welcome everybody, all our viewers, to another exciting episode of Nurturing Grassroots Leaders. Jaisa ki Shashank ne bataya, humare saath aaj Sana hai. So, welcome Sana. Welcome to our show.
2: Thank you.
1: So, Sana, aur deer na karte hue, hum aapke baare mein aur janna chahenge aur humare viewers bhi janna chahenge. Aap thoda batayenge apne background ke baare mein, brief mein Shashank ne bataya, but आप भी बताएं कि कहाँ पे आपका बर्थ हुआ, कहाँ पे आपने एजुकेशन कंप्लीट करी, फिर आपकी जैसे जर्नी आगे बढ़ी उसके बारे में आप बताना चाहेंगे.
2: गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. थैंक यू मुझे ये चांस देने के लिए कि मेरी जर्नी हम शेयर कर सकें रीड इंडिया के थ्रू. जितने भी लोग अब सुन रहे हैं, रीड इंडिया में के वजह से आज हम यहाँ तक लाइफ में पहुँच पाए हैं. आज मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं और मेरे नाम से जानते हैं. थैंक्स, वेरी थैंकफुल टू रीड इंडिया फॉर दिस. सो स्टार्टिंग माय जर्नी, मेरी जो बर्थ हुई थी वो मेरे नानी के घर में हुई थी, बरेली में. वो एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में ही है, बट वो दैट इज नियर रामपुर. तो मेरी बर्थ बरेली में ही हुई थी मेरे नानी के घर पे. उसके बाद जब वापस आए दादी के घर पे हम लोग, तो मेरी स्कूलिंग शुरू हुई बाराबंकी से. बाराबंकी से हम एट में ही थे, तो फैमिली सर्कमस्टेंसेस की वजह से थोड़ा सा, एज मेरे फादर फॉरेन में रहते थे, ही वाज डूइंग हिज जॉब देयर, ही वाज नॉट लिविंग विद अस. हम लोग अपने दादी के घर में रहते थे बट पापा बाहर काम करते थे. तो ऐसे हमारी लाइफ शुरू हुई. बट जब हम एट क्लास में थे तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स घर में होने लगी थी, मम्मी पापा का ये, तो थोड़ा बहुत इसकी वजह से. फिर जब मेरा नाइन्थ और जब टेंथ में मेरे क्लासेस शुरू होने वाले थे, तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे बाराबंकी छोड़कर अपने फादर के साथ शिफ्ट होना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी स्कूलिंग एक रेगुलर CBSE स्कूल से होल्ड होकर के एक प्राइवेट टेंथ की मुझे ऑप्ट करना पड़ा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी CBSE रजिस्ट्रेशन होता है कुछ प्रोसेस, तो वो चल रहा था. तो टेंथ में हमको ऐसे करना पड़ा. फिर टेंथ में होते होते ही मेरी शादी फिक्स कर दी गई, और फिर ना चाहते हुए भी उस एज पर, एट द एज ऑफ 16 and a half, आई हैड टू गेट मैरिड ड्यू टू दैट. मेरी शादी हुई थी बट एक विल पावर था कि नहीं, ऐसे तो नहीं बैठ सकते, मतलब दिस इज नॉट फॉर मी. तो मेरी शादी हुई टेंथ में. मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया टेंथ का एग्ज़ाम देने, वो मुझे लेकर जाते थे. शादी के 3 महीने बाद ही मार्च, जनवरी में शादी हुई, मार्च में एग्जाम्स आ गए. उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया कि मैं पढ़ें, अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें. फिर वो मुझे एग्जाम्स के लिए लेकर जाते. फिर मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मुझे ट्वेल्थ भी करना है, तो उन्होंने इमिडिएटली हाँ कर दिया विदाउट एनी थिंग. इवन दो आई वॉज मीन लाइक मेरा बेबी था ऑलरेडी, अब्दुल्ला वॉज बॉर्न आफ्टर टेन, बट अगर तुम्हें करना है तो यू कैन गो फर्दर. तो फिर उन्होंने मुझे ट्वेल्थ करना है, फिर ग्रेजुएशन मैंने इस तरह पूरा किया. ट्वेल्थ के बाद एक्चुअली मेरी बेटी डॉटर भी, फिर मुझे 2 साल के लिए पढ़ाई अपनी रोकनी पड़ी, होल्ड करना पड़ा, बिकॉज इट वॉज वेरी टफ फॉर मी टू स्टडी विद 3 of the kids और 2 twins के साथ. इट वॉज वेरी टफ. सो ऐसे 10th, 12th, 10th, 12th हुआ. उसके बाद हमारा फिर ग्रेजुएशन, फिर मैंने MA किया. इस सारे प्रोसेस के दौरान आई वॉज हैविंग माई फैमिली सपोर्ट अलॉट. इंटर के बाद एमए

0: फाइनल ईयर का रिजल्ट आया तो मुझे लगा कि अब क्या करना है। तो फिर मैंने यही सोचा कि अब स्टडी को ब्रेक लगा देते हैं, बिकॉज आई नीड कि मुझे बाहर जाना चाहिए। घर में बैठकर हमने पढ़ाई तो कर ली, घर में बैठकर सब कुछ कर लिया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मतलब मैं पूरा टाइम फ्री हूँ। देन आई स्टार्टेड मैंने कहीं जाकर अपनी सीरीज दी, मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुई, उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि आपने कहीं पर भी, आप इतने बड़े स्कूल में आपने अप्लाई कर दिया सेंटर में, आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने बोला मैम, एक्सपीरियंस तो पढ़ाने से ही आएगा, कोई भी फ्रेशर कभी एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता, एंड एवरीबडी नीड अ चांस कि वो कुछ अपने आप को प्रूव करे। तो ओके, आप एक डेमो दे दो, उसके बाद हम देखते हैं। फिर मैंने उन्हें डेमो दिया तो थैंकफुली मेरा हो गया सिलेक्शन वहाँ पर। इस तरह हमने जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब स्टार्ट करने के 3 साल 4 साल के बाद ही मेरा रीड इंडिया के साथ कनेक्शन हुआ, थ्रू ऑब्वियसली थ्रू मैनेजर और अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर इस तरह से हम रीड में जॉब स्टार्ट की। रीड में जॉब स्टार्ट करने का सबसे फर्स्ट रीज़न जो मेरा था कि शायद ये बहुत मुझे, मतलब हमेशा से एक इनर फीलिंग आती थी कि मुझे सोशल वर्क करना चाहिए, सोशल वर्क करना चाहिए। सोशल वर्क करने की जो विल थी उससे ही हमको टीचिंग की तरफ अट्रैक्ट किया था। बिकॉज आप थोड़ा सा सोशलाइज हो जाते हो जब आप इतने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप क्लासेस लेते हो, उनमें से कुछ बच्चे, हर बच्चे की एक अलग स्टोरी होती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। मेरा रिसेस का टाइम भी मेरा क्लास में ही जाता था, हम कभी स्टाफ रूम में बैठ कर लंच नहीं करते थे, हम बच्चों के साथ क्लास में, इवन दो वो 10th 12th के सीनियर स्टूडेंट्स थे, बट मेरा लंच टाइम क्लास में ही होता था। तो बाकी टीचर्स ऑप्शन भी करते थे कि आपको स्टाफ रूम में आना चाहिए, मैंने बोला नहीं, मेरा एक वो है कि मेरा उनके साथ कुछ है इंट्रैक्शन क्योंकि वो मेरी क्लास है। तो इस तरह से चलता रहा। फिर जब रीड इंडिया के साथ हम कनेक्ट हुए तो रीड इंडिया में के लिए मैंने अपनी जॉब को इमीडिएटली, स्मिता मैम से मेरी पहली मुलाकात दिसंबर में हुई। स्मिता मैम जब पहली बार आई थी यहाँ पर जगह देखने के लिए, गीता मैम, स्मिता मैम एंड नाइट सर, तब भी हम जॉब पर थे, मेरी स्मिता मैम से फर्स्ट टाइम मुलाकात भी नहीं हुई थी। तब जब सेकेंड टाइम में मैम, गीता मैम और नाइट सर आए, तब हम घर पे थे, इट वॉज दिसंबर। तो जब मैं गीता मैम से मिली और मैंने उनकी बातें सुनना शुरू की, मैं शी वॉज लाइक, मैंने ये स्वेटर पहना हुआ है, ये भी यहाँ के विमेन से रिलीज किया है, हम लोग ऐसे काम करते हैं। तो एट द टाइम मतलब मुझे आई वॉज लाइक ब्लैंक, मैम कह रही है क्या ये रियलिटी है, ऐसा होता है जो ऐसा काम करते हैं? बिकॉज एक इमेज थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक इमेज थी। आप न्यूज देखते हो, आप आसपास का अपने माहौल देखते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, एनजीओ वाले ऐसा तो काम कर ही नहीं सकते, बस नाम का एनजीओ, मतलब दैट वॉज एन इमेज। अगर आप एक ऑर्डिनरी पर्सन से पूछो तो यही इमेज है एनजीओ की। आई वॉज लाइक दैट, मतलब आज शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए बिकॉज आई एम वर्किंग इन एनजीओ टू, बट वो इमेज थी, रियलिटी यही थी मेरे लिए। तो मैम बोल रही थी और मैं सुनी थी ऐसे बैठकर, मैम हम मैम सामने बैठे हुए थे, बट मैम बोल रही थी और मैं सोची थी अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। देन मैम हमारा गुसाईगंज का भी सेंटर तब दिसंबर में ही खुला था, हमारे सेंटर के 3 महीने पहले। तो मैम ने बोला कि आप आइए, आप देखिए सेंटर हमारा क्या है। फिर मैंने एक बार को इमीडिएटली बोला कि मना मत करिएगा, हम लोग जाएंगे क्योंकि मुझे देखना है क्या है, रियलिटी ऐसी है मैम का सेंटर कहता है। एक बार को भी ये था कि हाँ अगर हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, जगह दे रहे हैं, तो चलो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज दैट। जब हम लोगों ने स्टेप इन किया, जब हमने स्टेप इन किया गोसाईगंज के सेंटर के अंदर, मैं इट वाज लाइक, मतलब मैं देख रही थी कि ये स्कूल है, कि ये स्किल सेट्स हैं, मतलब लाइब्रेरी भी है, उसमें कंप्यूटर्स भी रखे हुए हैं, मतलब लाइब्रेरी इट वॉज लाइक अ ड्रीम, क्योंकि लाइब्रेरी तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। जैसे लाइब्रेरी होती है हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे गाँव में लाइब्रेरी है, हमारे शहर में लाइब्रेरी है। और आई वॉज लाइक कि यार लाइब्रेरी है यहाँ पे, इन्होंने कंप्यूटर्स भी रखे हुए, इन्होंने मशीन भी लगाए, इन्होंने गाँव में ला के प्रोजेक्टर भी लगा रखा है। मीन्स ये सारी चीजें एक बंदे के माइंड को बहुत इम्पैक्ट करती है जिन्हें इसकी वैल्यू पता होती है। तो आई वॉज लाइक कि मतलब मैंने बहुत अच्छे से ये काम,
1: आप थोड़ा बताएंगे व्यूअर्स को, शायद आइडिया नहीं होगा कि ये जो गांव की आप बात कर रहे हैं गोसाईगंज बाराबंकी, इनकी लोकेशन के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दीजिए, बिकॉज ऑल ओवर द कंट्री और समटाइम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर व्यूइंग द प्रोग्राम। तो आप थोड़ा बताएंगे जो आप विलेज के, ताकि वो भी विजुअलाइजेशन कर सकें कि जिन गाँव की आप बात बता रहे हैं वो शहर से कितनी दूर है, वहां पे क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि कई बार सुनने वाला ये अंदाजा नहीं लगा पाता कि शायद एक कंप्यूटर को देखना, हाथ लगाना भी एक एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आप उसके बारे में भी दीजिए सना।

0: बारे में आपको पता है, आप लोग यहाँ आए हैं इनोग्रेशन में, आपको क्या लगता है सेंटर में क्या, क्योंकि मतलब मेरे अंदर क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, तो यहाँ आया है तो क्यों आया, उसे क्या बताया गया, वो क्यों आया, सेंटर कैसे ही सर्वाइव करेगा, लोगों को इम्पोर्टेंस पता है। तो उन्होंने कहा कि जी जी मैम यहाँ पे सब गए थे बताने सेंटर के बारे में, हम लोगों को बताया गया कि सेंटर खुलने वाला है, तो हमने पूछा आप लोग आएंगे सेंटर, क्योंकि गांव में शायद आपने कभी देखा नहीं। बोले मैम यही तो बात है कि हमने तो कभी कंप्यूटर देखे ही नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं कंप्यूटर होता कैसा है, खाली नाम ही सुने। तो गोसाईगंज जो सेंटर है ना बस्तिया, दैट इज वेरी फार फ्रॉम लखनऊ, और वो बहुत ज्यादा ही मतलब बैकवर्ड है, यू नो मतलब प्रॉपर विलेज, विच इज कॉल्ड अ प्रॉपर विलेज, दैट इज दैट प्रॉपर विलेज, मतलब जहाँ पे बच्चों को प्राइमरी स्कूल भी शायद वहां उनके घर से थोड़ी दूर पर ही होगा, उन्हें स्कूल भी जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो ये सेंटर तो उनके लिए वॉज लाइक अ चांस कि उन्हें लाइफ में कुछ अचीव होने वाला है, वो ऐसे सेंटर पे खुला हुआ था वो जगह। तो वहां से वो मुझे मतलब दिमाग में आ गया कि नहीं ये बेस्ट है जो बड़ागांव में होने वाला है, इट विल चेंज बड़ागांव, इट विल गिव अ ट्रांसफॉर्मेशन टू द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन बड़ागांव। सो वी वर लाइक ओके, मतलब ये एनिवल वाज सो सो सैटिस्फाइड कि नहीं अब आप करते हैं, बस अब यही करना है। तो द वेरी नेक्स्ट डे सेकंड से जाने के बाद मैंने जाके सबसे पहले अपना रेजिग्नेशन लिखा, मैंने कहा मुझे अब काम नहीं करना स्कूल में, मुझे अब यहाँ काम करना है। दैट वाज सो मतलब एक बार वो फ्लैट पहले सोच तो लो, मैंने कहा नहीं मुझे अब यही करना है, मुझे वो जॉब देंगे नहीं देंगे वो तो बात की बात है, मतलब मुझे करना है ये।
1: हम व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये हमारे ये बाराबंकी सेंटर की है जिसकी बात सना कर रही हैं,
0: बाराबंकी
1: जो हाँ जहाँ पे सना बेस्ड है। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं सेटअप है पूरे सेंटर का, और जो विजिटर्स आए हैं ये कैलिसंस के ग्रुप के मेंबर्स हैं, और भी फॉरेनर्स भी विजिट करते हैं, लोकल टीम से भी बहुत लोग आते हैं। जो ये सेंटर है ये कैलिसंस नाम की एक कंपनी है जो मिंट फार्मर्स के साथ काम करती है, ये उनके सपोर्ट से ये सेंटर चल रहा है। करीबन 3 साल से ये सेंटर इस एरिया में चल रहा है, जिसको कि सना अपनी टीम के साथ और अपने टीम ऑफ वॉलंटियर्स टीम ऑफ स्टाफ के साथ मैनेज करती हैं, जिसकी स्टोरी सना बताई। तो सना हमने शुरू से ही देखा आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रोल उन्होंने प्ले किया, स्पेशली अर्ली मैरिज हुआ, अर्ली आपके बच्चे हो गए, देन इवन देन यू हैव नॉट गिवन अप। सो ये फीलिंग कैसी थी जब आपको, बिकॉज हमने देखा है स्पेशली इंडिया में सर्टन ग्रुप्स में सर्टन एरियाज में तो बिल्कुल इनकरेज ही नहीं करते, स्पेशली शादी के बाद तो ये एकदम ऐसे ड्रीम कम ट्रू हो गया जिस तरह का माहौल, जिस तरह का यू नो सपोर्ट आपको मिला है। सो यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट?
0: यस मैम, मैम बीइंग इन अ कम्युनिटी, इन अ मुस्लिम कम्युनिटी इज वेरी टफ टू कम आउट ऑफ द हाउस, मतलब हमारे यहाँ का तो कल्चर नहीं है वो कि हम घर से बाहर भी जाएं, बट एजुकेशन चेंजेस एवरीथिंग, आई बिलीव इन दैट। और ये क्योंकि जो लोग इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा जानते हैं, जिस जिसे इकबाल को ये लगता था कि चलो कुछ तो अगर वो करना चाहती है तो करने देते हैं, और हमको ये था कि हमें करना है तो करना है, अगर कोई कुछ बोलता भी है कुछ रोक भी रहा है तो वो अपने रोक रहा है, एक दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 3 दिन बोलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। और वो ही हुआ मैम, 2 बार 3 बार सबने ऑब्जेक्शन किया, फिर सब सारे चुप हो गए मैम। और अब तो ये है मैम, लोग मेरा नाम लेके अपने घर में लोगों को मोटिवेट करते हैं कि सना मैम को देखो, सना मैम को देखो, कुछ सीखो जाके उनसे कैसे वो के साथ रहती है, कैसे वो सेंटर का काम करती है, कैसे वो घर का भी काम करती है, छोटे बच्चे को भी देखती है, बाहर के बच्चों के साथ भी वो ऐसे बिहेव करती है। तो मैम सुनने में खुद को भी अच्छा लगता है, वेरी ऑनेस्ट, खुद को भी सुनने में बहुत और फील होता है कि मेरे लिए लोग ऐसी बात करने लगे हैं, ये सब कुछ पॉसिबल है तो सिर्फ रेल इंडिया की वजह पे। रेल इंडिया नहीं होता तो डेफिनेटली मेरे बारे में कोई आज ऐसी बात ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि लोग मुझे जानते ही नहीं कि हम कौन हैं।
1: ये पॉइंट हम इसीलिए लाना चाहते थे बिकॉज आज का जो हमारा टॉपिक है नर्चरिंग ग्रास रूट लीडर्स, तो आप जैसे लीडर्स जो हैं एक इमेज, पॉजिटिव इमेज बना रहे हैं कम्युनिटी में, जो कि चेंज एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो कैसी बहुत सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली से, तो ये मैसेज हम आपके माध्यम से ये भी देना चाहते हैं कि अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो महिलाएं लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, एंड आप उसका जीता जागता एक एग्जाम्पल हैं जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, आपके जैसे बहुत लोग होंगे। सो दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू ब्रिंग टू द ऑडियंसेस। स्पेशल मेंशन टू यू एंड योर फैमिली फॉर दिस इनिशिएटिव जो आपने लाइफ चेंजिंग अपने लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए लिया है, कि एक एक सेकेंड नहीं लगाया और आपने कहा

0: मैं अपना जॉब रिजाइन कर रही हूँ और मैं रीड के साथ जुड़ के ये कार्यक्रम करना चाहती हूँ. सो वी कंग्रेचुलेट यू फॉर दिस एफर्ट एंड वी वॉन्ट टू नो मोर अबाउट योर सेंटर नाउ. बाराबंकी में आपका जो ये सेंटर है इसमें कौन कौन सी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, कैसे आप कम्युनिटी में जाते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं आपको कम्युनिटी में जाने में?
1: मैम कैलेसेंस जो हमारा प्रोजेक्ट है तो दिस इज बेसिकली फॉर मेन पावर के, हम मेन पावर को भी डायरेक्ट करते हैं जितना हम बाकी कम्युनिटीज को करते हैं. तो मेन फार्मिंग की अगर हम बात करें तो मेन फार्मिंग कम्युनिटीज में हमें चैलेंज काम करने में जो हमारे साथ पहला चैलेंज है वो ये था कि वहाँ पर लोग बच्चों से मेंट की फार्मिंग कराते हैं क्योंकि वो उनका काम है. तो उन्हें सेंटर तक लाना वो अ बिग चैलेंज क्योंकि उनको समझा के कन्विंस करना कि आप काम छोड़ कर आओ. तो कभी कभी जो हमारे सेंटर पे जो एक्टिविटीज चल रही थी स्टार्टिंग जब हमने 2018 में स्टार्ट किया था तो हमारे पास बेसिक सेविंग, बेसिक कंप्यूटर कोर्स एंड ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स एंड लाइब्रेरी, हमारी चार कॉम्पोनेंट्स तब थे. अभी तो हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं. जब हमारा स्टार्ट हुआ था तो हमें ज्यादा मेहनत तब नहीं करनी पड़ी 2018 बिकॉज नया नया सेंटर खुला था यहाँ पर और ऐसा कोई भी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही थी जो जिससे इनको ये बेनिफिट मिलता. तो स्टार्टिंग में तो हमारे पास बहुत अच्छी फुटफॉल थी 2018, इट वॉज वेरी नाइस. हम लोगों को बहुत कम मोबिलाइजेशन के लिए जाना पड़ता था बिकॉज इतने सारे एडमिशन 6-7 महीने तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ी. बट आफ्टर 7 मंथ्स आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये तो सिर्फ गांव के ही लोग गा रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा. और मैं क्योंकि एक कैलिसेंस उसका हमारा डोनर है तो वी शुड फोकस मोर ऑन मिंट फार्मिंग कम्युनिटी दैट दे शुड कम टू द सेंटर एंड लर्न समथिंग. तो हमने फिर हमने बासा एक पॉइंट है यहाँ पर 5 किलोमीटर यहाँ पे दूर है जहाँ पर बहुत मतलब टोटल कम्युनिटी वहाँ पर फार्मिंग ही करती है और मिंट फार्मर्स ही हैं. तो हमारे एक SHGs के ग्रुप्स थे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो उन ग्रुप्स में जाकर वहाँ पर सारी फीमेल्स आती हैं वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करती हैं. उन ग्रुप्स के अंदर मैंने जाकर के मीटिंग्स लेना स्टार्ट किया, हमने उन लोगों से जाकर बात करना शुरू किया कि आप लोग क्यों अपने लड़कियों को बाहर नहीं निकालती हैं. तो वो कहती हैं मैडम हमारे पास हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है, वो स्कूल जाते हैं फिर वो खेत जाते हैं. तो मैंने कहा कभी ऐसा होता होगा कि वो स्कूल नहीं जाते होंगे, कभी ऐसा होता होगा कि आपका मिंट का सीजन 3 महीने ही रहता है उसके बाद आप तो आप ही रहते हो, मतलब मार्च टू जून एक टाइम है, आप उस टाइम मत भेजो सेंटर पर, बट आप जब भेज सकते हैं जब आपके बच्चे फ्री रहते हैं आप उन्हें तब स्किल्स लर्न करने के लिए सेंटर में भेजिए क्योंकि वो एक ऐसे स्किल्स आप सीख जाएंगे जो आपके लाइफ टाइम के लिए है. एक बार सेंटर विजिट कर लीजिए, आप देख पाएंगे कि सेंटर में क्या क्या है. लोगों को गांव से उनके घर से निकाल कर सेंटर लाना ही पहले हमारे लिए चैलेंज बना 7 महीने बाद जब वो लोग नहीं आ रहे थे. तो उन उसके लिए हम लोगों को सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा था वो सेल्फ हेल्प ग्रुप लग रहे क्योंकि आप पूरे गाँव में जाओगे आपको पूरा दिन लग जाएगा, बट एक ग्रुप जहाँ पर कम से कम 40-45 औरतें मौजूद हैं, मतलब उनकी पेरेंट्स हैं और वो हर वुमेन एक अलग फैमिली से आ रही है. तो कहते हैं ना अगर आपने मदर को एजुकेट कर दिया तो पूरी फैमिली एजुकेट हो गई. तो हमने मदर्स को पकड़ा, मदर्स को बताया कि आपने ये करना है अपने बच्चों के साथ. तो ये मैम बच्चों को अकेला तो नहीं भेजेंगे, हमने कहा तो आप आइए आपको आपके लिए भी सेंटर है, सेंटर तो सबके लिए है, आप आइए आपको हम अडल्ट लिटरेसी की क्लासेस देंगे, आप आइए आपके हस्बैंड आएंगे हम उनको भी अडल्ट लिटरेसी की क्लासेस देंगे, आप हमसे भी सिखाएंगे, आपके बच्चों को हम कंप्यूटर सिखाएंगे, आपके बच्चों को हम ट्यूशंस पढ़ाएंगे. इतना इतना बताने के बाद मैम जो स्टार्ट हुए हैं उस गांव के लोग आना, हम लोग को लग रहा था कि हम शायद कम मोबिलाइज करना चाहिए था तो हम उसको संभाल पाते, इतना स्टाफ होने के बाद भी हमारे लिए वो चैलेंज हो गया कि अभी नहीं कैसे संभालेंगे. फिर ये हो चीज़ होती रही. फिर हमारे यहाँ मैम एक मैम सीनियर मैम हमारी आती थी, उन्होंने बोला कि कम्युनिटी एक्टिविटीज करते हैं. फिर हम सब लोगों ने कम्युनिटी एक्टिविटीज स्टार्ट करी. हम लोग कम्युनिटीज में गेम्स लेकर जाते थे, कम्युनिटी के बच्चों के साथ वहीं पर गेम खेलते थे. उसके बाद जब हमारा गेम पूरा हो जाता था तो फिर हम अपनी मोबिलाइजेशन स्टार्ट करते थे क्योंकि अगर हम मोबिलाइज करने जा रहे तो हम एक ही बंदे से बात कर पाते. उसमें क्या होता था गेम खेलना स्टार्ट किया, आसपास वाले देख के इकट्ठे हो गए, सारे सोचते थे कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग. कभी कभी म्यूजिक बजा देते थे लाउड, लोग घर से निकल के आ जाते थे. फिर मोबाइल लाइब्रेरी की एक्टिविटी हमने स्टार्ट करी, हम लोग वैन में सारी बुक्स स्पीकर्स लैपटॉप्स लेकर जाते थे कम्युनिटी में, वहां पर सारे बच्चों को इकट्ठा करना, मैम वहां पर बच्चे तो किनारे रहते थे और उनके पेरेंट्स बाहर निकल के आ जाते थे, अच्छा आपके पास ये भी बुक है, हमारे पास ब्रेल्स तक की डिमांड आई थी कि आप ब्रेल्स लेकर आइए मैम, बिकॉज क्योंकि वहां पे कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें ब्रेल्स की जरूरत थी, तो वहां पे पॉसिबल ही नहीं हुआ दोबारा जाना क्योंकि कुछ टाइम की वजह से, फिर ये कोविड आ गया तो वो चीज़ थोड़ी सी बीच में रह गई, बट अब वो हम लोग प्लान करेंगे कि हम ब्रेल्स मंगा करके हमको जाके प्रोवाइड करें, एटलीस्ट उनकी भी तो विश है कि वो पढ़ें, अब वो नहीं पढ़ सकते नॉर्मल बुक्स तो ऑफकोर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें वो प्रोवाइड करा सकें।
0: अभी हम ऑडियो बुक्स भी लेके आ रहे हैं, हमने टाई अप किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्पेशली फ्रॉम फॉर द कम्युनिटी हु आर नॉट एबल टू रीड, ये ऑडियो बुक्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं आपके सेंटर में, सो दैट जो नहीं पढ़ सकते किताबें वो ऑडियो बुक्स भी सुन सकें। वेरी वेरी वास्ट वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे चल रहे हैं सना, आपने मैंने ये देखा कि आपने हेल्थ के ऊपर और लाइफ स्किल्स के ऊपर भी काफ़ी काम किया है स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड, थोड़ा आप बताना चाहेंगे कि विद स्पेसिफिक इश्यूज ऑफ हेल्थ एंड लाइफ स्किल्स आपने क्या काम किया है?
1: यस मैम, तो हमने हेल्थ के सेशंस हमारे यहाँ अप्रैल से जनवरी 2019 से स्टार्ट हुए थे, तो उसमें डॉक्टर निधि लाठी जो हमारी हेल्थ कंसल्टेंट है उन्होंने आकर हमारे सेंटर्स पर सेशंस लिए थे, सेंटर के जो बच्चे सेंटर पर मौजूद होते थे वो उन्हें कनेक्ट कर लेते थे अपनी फैमिलीज को ऑनलाइन, तभी भी वो रिकॉर्ड कर लेते थे सेशन अपने फोन्स में हम लोगों, और वो जाकर अपनी मम्मी को बताते थे कि देखिए मैम ने बताया सब्जी ऐसे धो के बनाते हैं, हमने बताया कि ऐसे वॉश करना है, खाना ढक के रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो मैम ने बहुत मेहनत करी इन बच्चों के साथ, मैम क्योंकि मैम डॉक्टर है तो जब वो बताती थी तो हम लोग जितना बताते थे उससे ज़्यादा उनके बताने से उन्हें समझ आता था कि ये उनको बताते थे बच्चों को ये डॉक्टर है स्पेशली आपसे मिलने आई हैं आपके लिए सेशंस लेने आई हैं, तो सारे बच्चे मतलब एक मैम के एक सेशन में 20-25 ऐसे बेनिफिशियरी हो जाते थे, मतलब फिर उसके बाद मैम ने सेशन लिए, मैम ने हर टॉपिक पर सेशन लिया उनकी मेंस्ट्रुएशन पर, उनकी फिजिकल फिटनेस पर, उनके हाइजीन पर, उनके न्यूट्रिशन पर, मैम ने 2-3 साल में मैम कॉन्टिन्यूसली सेशन ले रही थी और मैम के सेशन से काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ मैम बच्चों पर, स्पेशली जो गर्ल्स आती थी ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकल कर आते थे निधि मैम के सामने कि मैम मुझे भूख ही नहीं लगती, तो मैम उनको बेस्ट सोल्यूशन बताती थी कि आप ऐसे खाओ आपके टाइम मत बनाओ, आपको इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, फिर आपको धीरे धीरे भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी, मैम से बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते थे, मैम उनके आंसर्स करती थी क्वेरीज उनकी, मैम सारी चीज़ें वो करती थी जो वो बेस्ट अपना दे सकती थी, तो निधि मैम के सेशन बहुत अच्छे चल रहे थे हमारे सेंटर पर।
0: थैंक यू सना, जब हम आपके सेंटर पे आए तो हमने ये भी देखा कि बहुत ही खूबसूरत चिकनकारी का काम वहाँ पे चल रहा था, चिकनकारी जो क्राफ्ट लखनऊ का तो फेमस है ही और ये आपके एरिया तक भी काफ़ी स्प्रेड आउट है, सो उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि आपने लाइवलीहुड को कैसे प्रमोट किया, बिकॉज मिंट एक बहुत ही कैश क्रॉप की तरह लिमिटेड जो है लाइवलीहुड प्रोग्राम है, सो कैसे आपने और स्पेशली ड्यूरिंग कोविड कैसे अगर महिलाओं को हेल्प हुआ, एक एडिशनल स्किल थी उनके पास, सो क्या इस चीज़ से उनको थोड़ा बहुत मदद हुई स्पेशली ड्यूरिंग दिस टफ टाइम?
1: हम लोगों ने स्टार्ट करा था जब हमारा सेटअप हुआ था, तो चिकनकारी में पहले लोगों को लग रहा था कि यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पे कैसे दिखेगा क्योंकि लखनऊ के बहुत करीब है, तो फिर हम लोगों ने यही बोला कि आप सीख लो, आपको नहीं पता कि टाइम कैसा आएगा, आपका हमेशा आप खेती नहीं कर सकते, जैसे अभी मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगी कि जब जो बारिश हो रही है इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगी, तो मैंने उनको यही बोला था कि आप सीखो, आप पहले देखो चिकन क्या है, आप समझो चिकन का काम कैसे होता है, वो कहाँ सेल होगी नहीं होगी वो हमारी एडेज है, वो रेट इंडिया देखेगा वो हम देखेंगे कि हमें कैसे सेल आउट करता है, आप पहले काम सीखो, तो जो जितनी भी लड़कियां थी जो बहुत सारे बच्चे मैम ऐसे भी थे जो कहते थे कि मैम हम खेती नहीं करना चाहते, बट हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर हम खेती ना करें तो हम क्या करें, तो मैंने बोला कि यही आंसर है आपके जवाब का कि आप स्किल सीखो, आप चिकनकारी का वर्क सीखो, आप हमारे प्रोडक्शन यूनिट में जो डिजाइनर कुर्ते बन रहे हैं आप उन कुर्तों को सीखो, आप स्टिचिंग सीखो, आप एडवांस स्टिचिंग सीखिए, और आप लिमिट मत रखिए कि अगर आपने सीविंग सीखा है तो आप कंप्यूटर नहीं सीख सकते, आप डेफिनेटली कंप्यूटर के कोर्सेज भी करिए, आप अलग अलग जगह पर वैकेंसी निकलती है, शायद आप हमारे से सीख कर आप कहीं पर काम करने लग जाओ, या चिकनकारी का वर्क ऐसा है हम आपको काम देते रहेंगे, आपको हम उसका पैसा भी देंगे, हम आपको पे करेंगे, आप जो भी पीसेस बनाओगे जितने बनाओगे हम उसके अकॉर्डिंग आपको पे करेंगे। तो वो लोग पीसेस बनाते थे, हमारे पास थोड़ा सा माल इकट्ठा हुआ, फिर सेलिंग का पॉइंट आया, तो जितने हमारे यहाँ, अभी आपने पिक्चर्स डिस्प्ले करे, हमारे इतने सारे विजिटर्स आते थे, तो हम लोग हर विजिटर के सामने मिंट, चाहे हमारे कैलसंस के डोनर्स आए या हमारे कोई भी विजिट सेंटर पर होती थी, हम सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते थे। और वो उन्हें, और ऐसा मैम होता भी था कि वो जनरली विद अ गुड हार्ट को बाई भी करते थे उस चीज़ को। मैंने कितनी बार ये चीज़ रिपोर्ट भी करी है कि वो आते थे और वो हमारे प्रोडक्ट्स बाय करते थे। तो उससे उन लड़कियों के फेस पर जब वो प्रेजेंट होती थी, ये मैंने इन्होंने खरीद लिया, हमने कहा हाँ तुमने मेहनत करी इसलिए इन्होंने खरीदा है, इनको ये बाहर भी मिल जाता, ये लखनऊ जाएंगे ये लखनऊ में ले सकते थे, ये दिल्ली जाएंगे दिल्ली में ले सकते थे, बट इन्होंने इसलिए खरीदा क्योंकि तुम लोगों ने मेहनत करी। हम दैट वो वर्ड्स उन्हें इतना कॉन्फिडेंस देते थे, उनको मोटिवेशन मिल जाता था कि नहीं मैम आप सही कहती हैं, हम सीख ले, हम सीखेंगे इसको।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसी कोई स्टोरी जो आप इतने सारे बेनिफिशरीज के साथ काम करते हैं, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ आप काम कर रहे हैं, इतने सारे आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसी कोई एक दो लाइफ चेंजिंग स्टोरी या इंस्पायरिंग स्टोरीज जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं?
1: श्योर मैम, चिकन की स्टोरी पहले आपको बताते हैं। मैम हमारी जो ट्रेनर थी, ट्रेनर से स्टार्ट करते हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी सेंटर पे ज्वाइन करने से एक साल पहले। मैम मैंने 3 लोगों का इंटरव्यू लिया, बाद में उनको ही मैंने फाइनलाइज करा जस्ट बिकॉज उनकी क्राफ्ट बहुत अच्छी थी। और जब उनको मैंने सिलेक्ट कर लिया मैम, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड नहीं है, बिकॉज शी सेड कि अगर मैम हम आपको ये पहले बता देते तो शायद आपको लगता कि नहीं इन्हें रख लेते, बट उनके अंदर वो चीज़ थी कि नहीं मुझे मेरे स्किल जॉब मिलनी चाहिए, मेरे रीजन के लिए जॉब नहीं मिलनी चाहिए। एंड दैट थॉट चेंज माई माइंड कि नहीं शी इज़ राइट, उनमें स्किल है। मैम जब फर्स्ट टाइम उन्होंने कुर्ता बनाया और जो मैंने मैम को दिया था गीता मैम को, एंड मैम शी वाज सो हैप्पी कि मैम ये पहनेंगे, मैम इतनी बड़ी, हम 2 कुर्ते दिए थे, सॉरी एक कुर्ता मैम आपको और एक गीता मैम को, तो मैम शी वाज लाइक ये दोनों मैम इतनी हाई मैम, इतनी हाई प्रोफाइल मैम है, ये हमारे लाइफ कुर्ते पहनेंगे। मैंने कहा डेफिनेटली पहनेंगी मैम, पहन कर आएंगे और आप देखोगे। तो मैम शी वाज लाइक, मतलब उनकी कोई लिमिट नहीं थी खुशी की कि वो कैसे कितना खुश थी। फिर मैम उन्होंने यहाँ पर 1 साल 1.5 साल तक की जॉब की, जो कोविड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी, बट उन्होंने यहाँ पर 1 साल जॉब किया। एंड मैम शी वॉज एबल टू फीड हर किड्स, उनकी 2 बेटियाँ हैं एक बेटा है। मैम शी वॉज सो हैप्पी कि मैम आपने मुझे जॉब दिया, मैम मैं अपने बच्चों को सपोर्ट कर पा रही हूँ। दिस मैम हमारे यहाँ की सेकेंड स्टोरी है मैम, जिसको हम लोगों ने मेपाल जी ने जिसकी स्टोरी कवर की थी, गायत्री पाल मैम, उसके वो यहाँ पर सीलिंग पहले करने के लिए आई थी बेसिक सीलिंग का कोर्स। मैम उसने बेसिक सीलिंग में एडमिशन लिया, उसने बेसिक सीलिंग किया, फिर उसने कंप्यूटर्स देखे, बोला कि मैम मैं सीखूँ कैसे, मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती। मैम मैंने खुद उसे 3 महीने बैठकर इंग्लिश पढ़ाई है और इतनी मेहनत से पढ़ाई है कि मैम उसने फिर कंप्यूटर कोर्स किया है। देन उसने एडवांस टीचिंग में एडमिशन लिया, फिर मैम उसने एडवांस टीचिंग सीखा, उसके बाद बोलते कि मैम मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे मशीन खरीदनी है। मैंने कहा ठीक है तुम मुझसे ले लो, तुम मशीन खरीद लो। तो बोलती मैम आप वापस ले लेंगी? मैंने कहा नहीं हम वापस ले लेंगे, ठीक है तुम जाओ पहले मशीन खरीद लो। फिर दूसरे मैम बोलती मैम थैंक यू बट मैंने मशीन ले ली है। एंड मैम एट दिस टाइम उसके पास इतने सारे ऑर्डर्स आते हैं, पूरे गांव के मैम वो कपड़े बनाती है। एंड शी इज सो हैप्पी बिकॉज उसके फादर भी नहीं है, अभी जल्दी एफआईआर हो गए, तो शी इज सपोर्टिंग हर मदर, हर लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर फॉर इन देयर एजुकेशन। तो मैम खुद को भी ये फील होता है कि रीड इंडिया के थ्रू हम लोग ये कर पा रहे हैं, कि रीड इंडिया ने इतना अच्छे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रखे हैं कम्युनिटी के लिए, कि जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत है मैम। ये इसे हम नहीं एनालाइज कर सकते पैसों के साथ, ये जो खुशी होती है हम यहाँ कभी एनालाइज नहीं कर पाएंगे पैसे के साथ, कि हम पैसे तो कोई भी दे सकता है मैम किसी को। मैम ये स्किल उनके साथ लाइफ टाइम है,
0: ये स्किल उनके पास हमेशा रहेगी लाइफ में, कभी भी कोई भी मुसीबत आए, जैसे कि आप बताना चाह रहे हैं कुछ बारिशों के बारे में, आई थिंक अभी जो रेन्स आ रही हैं उसके बारे में, चाहे कोविड हो चाहे ऐसा कोई।
1: मैम ये दोनों चीजों ने यहाँ की मतलब पूरी कम्युनिटी को हिला दिया था। पहले तो कोविड पूरा 20 जैसे गया मैम, सबके बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गए, सबके जो भी स्मॉल स्टार्टअप है वो खत्म हो गए, जो हालत मैम, जो रेट फार्मर्स को यहाँ पर मिला है, मतलब उनको तो ये था कि फसल में ना ऐसे आग लगा देते हैं, इसको बेचेंगे नहीं। हम इतना वो मायूस हो गए थे बिकॉज क्योंकि रेट ही नहीं आ रहा था। अब इतनी बुरी हालत चल रही है, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता था मैम, गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं थी वो चीज़। बिकॉज वो बिल्कुल हो गया था. और मैम कोविड खत्म हुआ, फिर दूसरा वेव आया. सेकेंड वेव में मैम जो बचा था जिसके पास वो भी खत्म हो गया. उसके बाद से मैम ये रेगुलर रेन अभी हो रही है. आपको न्यूज में देखते होंगे, यूपी में इतने जबरदस्त तरीके से अलर्ट जारी हो गए थे, इतनी ज्यादा बारिश हुई मैम, जिसने जो क्रॉप लगाया था वो सब वेस्ट हो गया, पूरा पूरा पानी भर गया. और एक बार ही हो गया, दो बार मैम कॉन्टिन्यूस 15-15 दिन बारिश हुई, 1-2 दिन बारिश हुई है. ये सारे स्टाफ और बच्चे सेंटर में कैसे आते थे मैम हम लोग जानते, और उससे भी बढ़कर उनके सारे क्रॉप्स बर्बाद हो गए.
0: Very heartening to hear that. इस दौरान में अगर किसी की भी कोई कला उनके काम आई है तो शायद जो हमारा मुद्दा है कि एक स्किल आपके पास होना चाहिए, चाहे आज आपको ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कभी ज़रूरत पड़ने पे वो काम आ सके उनकी फैमिली के लिए, उनकी लाइफ को जारी रखने के लिए. तो वी होप कि हमारे सेंटर से जिन बच्चों ने या जिन महिलाओं ने कुछ सीखा है उसको वो यूज़ कर रहे हों. सो जी
1: यस मैम, मेरे पास मैम बच्चों के कॉल आने स्टार्ट हुए, बच्चे मिलने भी आए थे सेंटर पर कि मैम आप हमें कुछ काम दे दीजिए. तो मैंने बोला कि ठीक है हम आपको चिकन का देते हैं, आप चिकन का स्टॉक बनाकर आप हमें चिकन करके दो उन कुत्तों पे, हम उनका स्टॉक करेंगे, फिर हम उन्हें सेल आउट करके आपको हम आपके अमाउंट देते हैं, तो एटलीस्ट कुछ हेल्प आपकी हो जाएगी. मैंने उन्हें बोला देखो इसीलिए मैंने बोला था कि चिकन सीख लो, शायद तुम्हें कल काम आए. उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि ये पैंडेमिक आएगा, फिर ये रेन आएगी, फिर पैंडेमिक सेकेंड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा. तो मैम ये सब चीज़ें वो खुद रियलाइज करने लगे कि स्किल सीखना कितना जरूरी है. फिर मैम वो बाकी अपने फैमिली वाले बच्चों को भी लेके आते कि मैम इनका भी एडमिशन कर लीजिए, आप इन्हें भी सिखाइए.
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस. और मैं सभी को बताना चाहूंगी कि हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग वही कपड़ों को हम भी इनकरेज करते हैं कि इवन विद इन द रीड एंटायर टीम हम लोग चाहते हैं कि हमारे सेंटर्स में जो बन रहा है हम भी उसके क्या कहते हैं, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ दोज प्रोडक्ट्स. तो हम बहुत खुश होते हैं अगर सेंटर से हमें कुछ ऐसा लेने को मिलता है. जिस चिकनकारी कुर्ते की सना बात कर रही थी, हमने उसे बहुत पहना है. आप प्लीज अपनी ट्रेनर को बता दीजिएगा. इनफैक्ट मैम जो है हमारी वो तो कोशिश करती हैं कि जिस सेंटर पे जाएं वो जरूर वहां से एक कुर्ता स्टिच करवाएं, क्योंकि जो आपने बात कही थी ना कि जब उस औरत को लगता है कि उसके हाथ का बना हुआ कपड़ा कहीं बाहर जा रहा है और इतना अप्रिशिएट हो रहा है, उसकी सेल्फ एस्टीम जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसके, उसको हम किसी भी लीडरशिप सेशन और किसी भी मोटिवेशनल सेशन से कंपेयर नहीं कर सकते. सो इनफैक्ट हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम इन प्रोडक्ट्स को अपने सर्कल में, अपने मार्केट में, जो हमारा नेटवर्क है, रीड का जो नेटवर्क है, उसमें प्रमोट करें, चाहे हमारी फैमिलीज हैं, चाहे हम लोग खुद हैं. सो प्लीज पास दिस मैसेज टू योर टीम आल्सो दैट आपके प्रोडक्ट्स काफी जो है मतलब मार्केट में अप्रिशिएट होते हैं. सो कीप अप द गुड वर्क एंड आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम टू कॉल आवर कोर मेंटर डॉक्टर गीता मल्होत्रा, बिकॉज उन्हीं की ये विजन है जिसको हम सब मिलकर आगे लेके जा रहे हैं. सो I welcome ma'am to the show. Good evening ma'am. We have Sana from Barabanki today.
2: Yeah, I have been listening to the discussions. Sana, your answers were very, very encouraging. Good afternoon. And I highly appreciate your dedication and the commitment you have given to the Reed Community Library and Resource Center in Barabanki in Barabanki. सना, बिकॉज मुझे पूरी मेमोरीज मेरी रिवाइव हो गई हैं जब से मैं बाराबंकी जाना शुरू करा था और जगह ढूंढनी शुरू करी थी सेंटर बनाने के लिए. व्हेन वी इंटरैक्टेड विद कैलिसन्स टीम इन यूएस एंड देन वी थॉट दैट वी हैड टू स्टार्ट द वर्क देयर. जो सबसे पहली कंडीशन हमारी थी कि हम मिंट फार्मिंग कम्युनिटीज को अल्टरनेटिव लाइवलीहुड देंगे, बिकॉज तब हमें पता नहीं था कि पैंडमिक आएगा या कुछ और चैलेंजेस आएंगे लाइफ में. सो वी स्टार्टेड दैट वी विल गिव सेकेंड लाइवलीहुड टू द मिंट फार्मिंग कम्युनिटी, बिकॉज मिंट इज अ सीजनल क्रॉप, राइट? एंड आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू दैट हाउ मेनी मिंट फार्मिंग कम्युनिटीज यू रीच थ्रू योर इंटरवेंशंस एंड हाउ मेनी हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम दैट.
1: Ma'am, we have, as per you know, ma'am, we have reached to till 25 to 30 villages, and they have maximum population of mint farmers there. So, ma'am, if we calculate like this, that 80% of the population in each village is committed to the center. They are connected. They are coming to the center. They have learned the skills, and they have moved out. Ma'am, there are many children in mint. I remember one boy was there. His name was Ram, I think. So he was from farming communities and he was working in the farms earlier. But when he came to the center and he said, ma'am, I have passed out my 12th. Now what should I do? So I asked him to learn computers because you're a boy, you can learn computer and do something. And you can search for a job also, but not only computer, but you should continue with your studies. So he asked me, ma'am, should I do graduation? So I said, yes, please go and get admission in graduation and come to the center. We will teach you computer, take English classes from here, take the books, use the library. Because and when he came to the library, he was like, ma'am, itni sari kitabe hain yahan par, ma'am, aap ye bhi kitab hai, ma'am, ye bhi book hai, ma'am, agar main kuch mangaun to mil jayega. I was like, yes, please, aap order dijiye, hum ma'am ko list forward karte hain, ma'am, mujhe sari book provide karwa diye, ma'am, hamare demands par sari book India mein deta hai. Head office turant approve karta hai books ki jab bhi demand jaati hai. आप प्लीज मुझे बताइए आपको कौन सी बुक्स चाहिए. तो मैम ही डिमांड, और बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई थी, बुक के लिए हमने डाला था, फिर अप्रूवल होके मैम बुक्स भी आ गई थी हमारे पास. एंड मैम ही वाज सिटिंग इन द लाइब्रेरी फॉर 3 to 4 hours रेगुलरली. एंड आफ्टर दैट आई यू वोंट बिलीव, ही वाज इन सेकंड ईयर ओनली एंड ही गॉट द जॉब इन लखनऊ इन फन मॉल एंड ही इज अर्निंग 15,000 to 18,000 पर मंथ राइट नाउ. एंड ही वाज लाइक, ही केम विद टू मी विद अ बॉक्स, विद अ स्वीट बॉक्स, एंड ही वाज लाइक, हाँ ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ. मैंने कहा ये मैंने नहीं कहा, ये इंडिया ने कहा, प्लीज से थैंक्स यू. मैम दीज आर द स्टोरीज दिस इंस्पायर मी अ लॉट.
2: नो सना, दिस इज योर कंट्रीब्यूशन. टीड इंडिया इज जस्ट अ फैसिलिटेटर बिकॉज यू आर सिटिंग देयर एंड यू आर इन टच विद द विलेजेस. आई आल्सो वांटेड टू नो कि बड़ा गांव में तो बहुत सारे लोग आते हैं वहां पे, तो आसपास के कितने और गांव हैं जिससे कम्युनिटी इतनी दूर दूर से चलकर आती है आपके सेंटर पे, और कोई ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है जहां तक मुझे नॉलेज है. तो आई वुड आल्सो लाइक टू लिसन दैट, टू रिवाइव माय मेमोरीज अबाउट दैट.
1: यस मैम, टुडे ओनली आई विजिटेड वन प्लेस, हसनापुर मैम, एंड दैट मैम आई वाज टायर्ड बाय गोइंग बाय कार, बट मैम द चिल्ड्रन, द गर्ल्स फ्रॉम that village is coming to the center on bicycles. Ma'am, I was so shocked ke, ma'am, aaj main soch rahi thi ki wo jab bacche aayenge to maine puchungi ki aap 25 km cycle chala kar aate ho sir center ke liye. To abhi to wo aaye bhi nahi, barish hone lagi, but ma'am itne aise the villages hai, this is the latest distance I'm telling you ki ye 25 km 30 km ma'am 25 to 30 km bahut tough hai cycle chala kar center तक आ पाना. एंड मैम दे आर कमिंग 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, मैम इतने इतने डिस्टेंस से लड़कियां आती हैं, और मैम वो आके बस इतना ही करती है, मैम प्लीज हमारा टाइमिंग मॉर्निंग के बैचेस में लगा दीजिए, हम इवनिंग में जाएंगे तो देर हो जाएगी हमें. तो मैम वो सारे बच्चों को हम लोग मॉर्निंग में एंटरटेन करते हैं, सॉरी क्लासेस की हम लोग मॉर्निंग में ही लेते हैं.
2: सना ये बात सुनकर मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके पेरेंट्स भी कितने सपोर्टिव हैं, बिकॉज वो भी अलाउ करते हैं कि हमारी बेटियां इतनी दूर साइकिल चला के चली जाए, और उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि एक सेफ स्पेस पे जा रहे हैं. और रास्ते में भी क्योंकि वो ग्रुप में आती है इकट्ठी, तो उनको कोई ऐसा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता. दैट इज द ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम योर साइड, बिकॉज यू मोटिवेट देम फॉर कंटिन्यूइंग देयर एजुकेशन एंड दे फाइंड दिस स्पेस सेफ प्रोटेक्टेड. सपोर्ट इतना मिलता है, बुक्स उनको यहाँ से मिलती हैं, नॉलेज सपोर्ट मिलता है, आप उनके इश्यूज रिजॉल्व करती हैं. तो यही एक कम्युनिटी लाइब्रेरी का जो सर्विसेज हैं, यू आर प्रोवाइडिंग मोर देन व्हाट इज नीडेड एक्चुअली, सो दैट इज हाईली अप्रिशिएटेड. मैं और भी, मेरे मन में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पर मैं थोड़ा और भी आपसे जानना चाहूँगी कि एक तरफ तो आप कम्युनिटी को हैंडल करती हैं, जिनको समझाना, मोटिवेट करना, एनकरेज करना, और फिर उनको टाइम भी देना, और दूसरी तरफ है आपके विजिटर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल डोनर्स हैं, और जो विजिटर्स हैं, क्योंकि कैलिसंस हैव द ऑफिस इन पुणे, दे कम टू यूपी क्वाइट ऑफन बिफोर कोविड, तो आप कैसे अपना दोनों तरफ बैलेंस बना के रखते?
1: Ma'am, sometimes so we have the information that they are coming, and sometimes they come like this only. So, because ma'am, I'm very punctual. I'm regular in the office because I don't like taking leaves at all, and I don't allow the staff also to take leaves unnecessarily. So this is the thing that when they come without any information, we all are here. We all are present in the center. So we know that अभी वो आए हैं तो I have to give my at least they take my 1 hour. So I have to stop all the children कि आप लोग लाइब्रेरी में जाके बैठिए, अभी मैं कोई सेशन नहीं लूंगी, अभी मैं इन लोगों के साथ बात कर रही हूँ. फिर मैम उनके साथ पूरा उनको एक्सप्लेन करना पूरे सेंटर के बारे में, कैसे हम काम करते हैं. मैम दे आर सो मच अबाउट एवरी थिंग अबाउट इन इंडिया, बिकॉज दे आर नॉट द डोनर्स एग्जैक्टली, बिकॉज दे आर कमिंग विद द डोनर्स, सो दे आर फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज ऑल्सो, सो दे डोंट नो वॉट इज इन इंडिया. सो आई हैव टू एक्सप्लेन देम ईच एंड एवरी थिंग अबाउट रीड, about the community, about the children coming to the center, what services we are giving at the center, what are the facilities that are being offered to the students in Read India. So this happens every time, and the visitors are very frequent in Badagaon center. So last year, like pandemic se to abhi tak sirf do hi visits hui hain, but 2018 and 19 was full of visitors. I mean, every month there is somebody has to come to the center, and we sometimes feel like surprised that they are saying we are sitting over here in the office, and we see somebody moving inside the office, and I was like, good afternoon sir. So means आप काम कर रहे हो तो एकदम disturb mind में, and everybody कोई आगे सामने से खड़ा हो जाता है. I was like, I take 2 minutes to think that who are they. Means like कभी कभी चेहरा ही नहीं याद आता कि कौन है ये. So it happens sometimes with me.
2: And when you deal with the community, then you just simply motivate them, encourage them, listen to their issues, problems, and then you, inspire them to come to the center regularly, right? So these yes, two things go parallel, right?
1: Exactly, ma'am. I remember one story.
2: Please continue.
1: I remember one story. There was one girl in my beauty section. She was a trainer in beauty and bar. So she was coming from like 7 to 8 kilometers far away. Ma'am, the one boy was there who was continuously उसको परेशान करने जा रहा था morning में आने के time पे, morning शाम को जाने के time पे. Then ma'am she complained 2-3 times to me कि ma'am मैं नहीं आऊँगी center, ma'am मुझे नहीं सिखाना, because अभी घर में पता चल जाएगा तो ma'am बहुत problem हो जाएगी मेरे लिए. And she was a trainer, so even though she was a student also, then I had to take care of it. Then ma'am, हमारे पास एक प्रेरक था हमारा जो हमारे लिए कमेटी में जाकर सेशन लेता था. I asked, I told her कि अभी घर पे कुछ मत बोलो. Then I have told Deepak, आप जाओ आज मैम को लेके घर बाइक से, और आप देखो कि मैम को कौन परेशान कर रहा है. फिर मैम उन्होंने वो जाके घर पे छोड़ के आया, फिर उसने मुझे आकर बताया कि मैम ये है. फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला एक बार को कि आप जाइए, आप इनके घर में जाकर कंप्लेन करके आइए कि ये क्यों परेशान कर रहे हैं. मैम बाद हिमसेल्फ वेंट टू वेंट देयर, और उसके बाद ही रिजॉल्व दैट इशू. तो मैम ये सारे चैलेंजेस गांव में बहुत आते हैं, क्योंकि मैम बिल्कुल सन्नाटा होता है, एकदम रास्ता अंधेरा होता है, बाघ होती है आसपास, बहुत सारे फार्म होते हैं, बाघ होती है जिसमें रोड पे भी आपको ठीक से दिखाई नहीं देता, सारे पेड़ से इधर उधर से कवर होते हैं. तो वी फेस दीज चैलेंजेस एवरी टाइम विद गर्ल्स विद बॉयज.
2: Sana, major of the population in Barabanki and Badagaon are Muslim population, right? And many girls come from these families to your center. Are there any stories of delayed age at marriage or continuing higher education, convincing their parents that they want to learn more from the Reed Center and establish themselves, then they'll get married?
1: Yes, ma'am. And there was one girl, she was coming to the center from 2018 only. So in 2019, when she was about to get married, she came to me ki ma'am, maine to pehle apne mom papa ko bol diya ki aap shaadi to meri kar rahe ho, but main jab tak apna advanced teaching ka course center se mera pura bhi ho jayega tab tak main sasural nahi chahungi, mujhe nahi jana wahan. So ma'am, she was like, she stayed here for 6 months, she learned, completed her course, and then she went back. Muslim communities mein to स्पेशली जैसे बच्चे 10 12th में लड़कियाँ आ जाती है, पेरेंट्स स्टार्ट सर्चिंग फॉर देयर मैरिज. बट मैम अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन हैज आल्सो कम हियर बड़ागांव. आई हैव आल्सो अर्लियर डिस्कस्ड दैट कि अभी तो पेरेंट्स काफी अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे, बिकॉज दे सी ऑल अदर कम्युनिटीज की उनके घर में बच्चे पढ़ाई करते हैं, देन दे गेट मैरिज. यहाँ पर भी मैम लोगों का काफी माइंड ट्रांसफॉर्म हुआ है. जितने मेरे कम्युनिटी विजिट्स, जितना मेरा पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुआ है, हम सब लोगों ने उनको यही बोला है कि आप पहले अपने बच्चे को एटलीस्ट फिजिकली फिट हो जाने दीजिए, देन लेट हर गेट मैरिड. एजुकेशन तो बाद में आती है, आपको ये स्किल्स सीख रहे हो वो भी बाद में आता है, बट लेट हर गेट फिजिकली फिट टू गेट मैरिड. एटलीस्ट वो 18-19 साल की होनी चाहिए किसी की भी शादी करने के लिए. मतलब 20 इज वेरी यंग इफ यू काउंट एज पर द करंट सिचुएशन. 20 इज ऑल्सो वेरी यंग टू गेट मैरिड. सो दिस हैपेंस एवरी टाइम. That we have to counsel the parents, we have to counsel the girls, and they come and they discuss with me everything, especially the Muslim communities.
2: Very nice, very nice. It's very satisfying to know all these things, because it's not only about Muslim community or a Hindu community. The jo hamare regulations bane hue hain ki mentally, physically, socially, the girl should be prepared to get married, only then she should get married. Aur jo the component jo bhi add ho raha hai ki she should be economically independent also, because COVID has taught us many things to be independent and be ready to support the family when any emergencies come in the family. So wo bhi hamare center ki taraf se aap hamesha unko karne karti rehti hain. Sana, अभी हम जो फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम सैटेलाइट्स भी बना देंगे, राइट? और जब हम सैटेलाइट्स बनाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, और बाय चांस अगर थर्ड वेव आ जाती है और जो बच्चे 25-30 किलोमीटर दूर से आपके सेंटर में आते हैं, शायद वो ना आ पाए, तो उनके लिए जो हम सैटेलाइट्स बनाने की बात कर रहे हैं, तो आप तो कम्प्लीटली तैयार हैं उस काम को करने के लिए. तो हम कब तक ये सैटेलाइट्स बना देंगे सना?
1: यस मैम, आई वुड लाइक टू से दैट मैम, इफ वी आर गोइंग फॉर द सब सेंटर और सैटेलाइट्स, वी शुड टेक वी शुड मेक दैट सैटेलाइट फॉर अ टाइम पीरियड लाइक 6 months, फॉर ईयर, ओवर ईयर फॉर एट वन प्लेस, देन वी मूव इन अदर डायरेक्शन इन द अदर विलेज. लाइक इफ इट बड़ागांव इज द सेंटर, देन इट हैज It, in its stages, there are many villages. So we should rotate from everywhere after 1 year here and after 1 year in the different villages, because that will help us to build good relations with the community. We will get more people benefited from the center, because if it will be moving, like it will be a mobile center, then it will help many people over there. And if you talk about the district library, it will be a very, very good option if we are going with them and we are partnering with them. Because that will make an image of Feed India more powerful and more accessible to people, because they will know what Feed India is and what facilities what we are giving to the children everywhere.
2: Very nice. Actually, the thought process which we are having is also matching, and we can do much more whatever we are committed to. And I'm sure that Barabanki Community Library and Resource Center can do wonders. That I'm sure, under your guidance and commitment, what you're showing to Read India from the past 3 years, and we will also do the impact studies and collect the stories what you are sharing on this platform,
1: sure,
2: so that we can share with the wider community also. At this point, thank you so much for having the brief discussion with me. I would hand over to Smita now.
0: Thank you, ma'am. Thank you for your inspiring interaction with Sana. सो सना, बहुत ही अच्छा लगा आपकी जो जर्नी है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करके. आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया. एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद योर चिल्ड्रन? कैसे आपके बच्चे, आई नो यू हैव 4 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, सो इतनी स्ट्रांग मदर को, इतनी स्ट्रांग फैमिली को देख के हाउ दे आर फीलिंग, स्पेशली बोथ ऑफ योर गर्ल, द ट्विंस, द ब्यूटीफुल ट्विंस दैट यू हैव. Anything that you want to share about them, how their lives have been impacted due to this entire, read initiative being in your village, and you being an inspiring person in your own community.
1: Yes, ma'am. During the last year, if you talk about COVID only, ma'am, they were like, kuch karne ke liye nahi hai, mama, kya karenge? So, maine bola, kuch nahi. Jab center khul raha, aap center mein aake baitho. Ab bachche aate hain, aap unko padhao. इससे क्या होगा, आपकी खुद की नॉलेज बढ़ेगी, उन बच्चों को भी आपसे सीखने का मिलेगा, बिकॉज आप लोग अच्छे स्कूल्स में जाते हो तो आप उन्हें ज्यादा बेटर पढ़ा सकते हो, आप उनका पर्सपेक्टिव समझ सकते हो कि जो क्या है दैट वर्ल्ड. सारे छोटे बच्चों को अभी तक देवर टेकिंग द क्लासेस एंड दे टेक सो गुड क्लासेस ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन एंड दे आर लाइक मैम आप मैं पढ़ाई दीदी को बोल दीजिए पढ़ाने के लिए, तो आई एम लाइक ओके जाओ पढ़ा दो आप. यस मैम, आई एम it helps ma'am. Every child, you know, if they share their knowledge with each other, they learn also, and everybody learns. I am learning till date, ma'am. I have learned so much from you, from Geeta ma'am, from everybody. So you know, the learning is never ends. I believe that.
0: And aapke parents ko kaisa lagta hai aaj wo Sana hai jo shayad kahin pe apni education bhi complete nahi kar pa rahi thi aur aaj wo logo tak education ko pahuncha rahi hai.
1: Ma'am, actually, my parents are separated. That was the reason I got married earlier. So, ma'am, Papa ke saath such a connection hi nahi hai. But my mother feels very proud of her because the three of us are very, you know, active. And my other sister, you know, the sister who's living in Hong Kong also, she is also working for an NGO only. And very she's working nice. From past 7 years. So, we both are very social and we help each other a lot in everything.
0: Very nice, Anna. Any last message that you want to give to young girls or women who are in the same position or your community?
1: Yes, ma'am. Ma'am, only I can say only one thing. If you're getting married, if your parents want to get married early, maybe any because of any reason, aapko ye chahiye ki aap give up mat karo. Kisi bhi life stage par, just don't give up and keep learning. That will help you for your entire life. Nothing much,
0: on those inspiring lines, if there's nothing else, then we can close this session for today. Thank you so much, Sana, for sharing your such a beautiful and inspiring journey. Thank you, Geeta ma'am, for constantly mentoring us. And thanks to Shushank for moderating the session. We wish you all the very best, Sana. Hopefully, you reach all the communities. और जो आपकी सैटेलाइट सेंटर्स हैं वो भी उतने ही सक्सेसफुल हों जितना आपका प्रेजेंट सेंटर है. थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वी थैंक आवर व्यूअर्स आल्सो फॉर पेशेंटली व्यूइंग आवर प्रोग्राम. वी कैन एंड द सेशन. वी विल जॉइन यू अगेन ऑन फ्राइडे विद अनदर एक्साइटिंग प्रोग्राम ऑन कल्चर नॉलेज.

प्रिय श्रोताओ, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं करमवती गांव माजरी से आशा वर्कर का कार्य करती हूँ। मैं समाज में घर घर गली गली में घूमती रहती हूँ। जैसे मैं कहीं पर जाती हूँ, मुझे अनेक अनेक समस्याएं देखने को मिलती है, जिससे मेरे मन में विचार उत्पन्न होते हैं और मैं उन समस्याओं से निपटारा पाने की सोचती हूँ। मुझे कई समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे कहीं लड़का लड़की में भेदभाव हो रहा है तो कहीं बहू पर टॉर्चर हो रहा है। लड़का लड़की की पढ़ाई में भी भेदभाव और उनके उत्पन्न होने पर भी भेदभाव। बहुत ही विकराल समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां बहुत ही कम पैदा हो रही है। ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। इस पर मैंने एक कहानी लिखी है, जिसको मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। माया, अरे माया, कल काम पर क्यों नहीं आई? क्या बताऊं बहन जी, कल मेरे घर वाले ने मुझे बहुत मारा। लेकिन क्यों मारा? क्या बताऊं बहन जी, पहले से ही दो दो बेटियां पल रही है और अब की बार फिर बेटी। क्या कहा तूने? लेकिन तेरे को कैसे पता चला कि तुम्हारे गर्भ में एक बेटी है? अरे बहन जी, मेरे घर वाले ने जो अल्ट्रासाउंड जो करवाया था, उसमें पता चला कि अब की बार भी मेरे गर्भ में बेटी ही है। क्या तेरे पति को ये नहीं पता? लिंग जांच करवाना कानूनी अपराध है और इसे करवाने वाला दोनों को ही सजा जुर्माना हो सकता है। ये तो पता नहीं बहन जी मुझे, लेकिन मेरे घर वाले ने मुझे करवाया और लड़की का पता चला तो उसने मुझे बहुत मारा। नहीं, अपने पति के पास मेरे को ले चल, मैं आपके पति को समझाऊंगी कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। और वैसे भी आपके पास दो दो बेटियां हैं तो अब की बार बच्चा बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। एक तो इतनी महंगाई और एक आपका शरीर कितना कमजोर दुबला पतला है, बच्चे की और जरूरत ही नहीं थी। मैं उसको समझाऊंगी। अरे मैं बहन जी, आप क्या समझाओगी, वो तो मुझे बार बार अबॉर्शन के लिए टॉर्चर कर रहे हैं। क्या आपके पति को ये नहीं पता कि लिंग जांच करवाकर और भ्रूण हत्या करवाना महापाप है और कानूनन अपराध है? अरे बहन जी, मैंने इसके लिए मना कर दिया, तभी तो उसने मुझे मारा। और मैं तो ये पाप बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। आज रात को जो मैं सो रही थी, तब मेरे को सपना आया और सपने में मेरी बेटी ने, पता है बहन जी आप मुझसे क्या कहा? क्या कहा तो प्रिय श्रोताओं, उस लड़की ने अपनी माँ से क्या कहा, मैं ये एक गीत के द्वारा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक

0: रीमा। तो बहन जी, इस गीत ने, उस बेटी की बातों ने मेरे कलेजे को हिला दिया, और मैंने तो चाहे मेरे हस्बैंड कुछ भी कहो, यह अबॉर्शन बिल्कुल भी नहीं करवाना। और मैं आज आपके पास काम के लिए नहीं, इसीलिए आई हूँ कि आप भी मेरी हेल्प कर सको और मेरे हस्बैंड को इस बारे में समझा सको। हाँ हाँ माया, मैं जरूर आपके पति को समझाऊंगी। और आपकी वो दो बेटियाँ, वो क्या करती है, स्कूल तो जाती होगी ना? अरे नहीं बहन जी, क्या स्कूल, वो तो भी मेरी तरह किसी दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करती है। क्या कहा माया तूने, किसी दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करती है? आपको ये नहीं पता कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी के घर पर काम करवाना या कंपनी या किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करवाना कानूनी अपराध है, और इसे करवाने वाला व काम पर भेजने वाला दोनों ही इसके दोषी जुम्मेवार हैं। आप अपनी बेटियों को स्कूल क्यों नहीं भेजती? अरे मैम जी, कहाँ से स्कूल में भेजूं? आज इतनी महंगाई जो है, घर पाल चलाना ही मुश्किल हो रहा है, ऊपर से उनके स्कूल फीस व कापी किताबों का खर्चा मैं कहाँ से उठाऊं? अरे माया, क्या तेरे को ये नहीं पता कि आज जो सरकार ने है 8वीं कक्षा तक निःशुल्क किताबें और फीस फ्री कर रखी है। आप अपनी बेटियों को स्कूल में भेज के तो देखो, कोई खर्चा नहीं है, उनको फ्री में शिक्षा दी जा रही है, कापी किताबें भी सरकार ही दे रही है। अच्छा बहन जी, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था, तब तो मैं अपनी बेटियों को जरूर स्कूल भेजूंगी। कल से ही मैं उनका एडमिशन स्कूल में करवाऊंगी, और मेरे आसपास में जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, मैं उनको भी यही सलाह दूंगी, अपनी बेटियों के साथ उनको भी स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। ये तो बहन जी आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। तो प्रिय श्रोताओं, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? मुझे आशा है आपको पसंद आई होगी। तो प्रिय श्रोताओं, आज आप दे मुझे इजाजत, मैं करमवती गांव माजरी से कल आपको फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार सभी सुनने वालों को, मैं अनुजा आपके साथ, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फरहा। फरहा रामपुर से आई हैं। फरहा अपने आप में एक कहानी है, एक व्यक्ति हैं जिनका उदाहरण हम दे सकते हैं पूरी दुनिया की औरतों के लिए, एक ऐसे उदाहरण के तौर पर जो किस तरीके से अपने घर से बाहर निकली, छोटे से गाँव से, और किस तरीके से उन्होंने अपने को आज वहाँ लाकर खड़ा किया है जहाँ पर वो खड़ी है। तो फरहा, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: नमस्कार मैम।
1: और फरहा, ये बताइए कि बचपन से आप याद करिए अपनी कहानी, आज तो आप काफी बड़ी हो गई हैं, और पहले जाइए बचपन में जब आप छोटी थी, कहाँ की रहने वाली थी, घर में कौन कौन था और क्या करती थी?
2: मैं आगापुर की रहने वाली थी, और मेरे चार बहन भाई हैं जिसमें मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, तीन बहन एक भाई हैं, और हम बहुत ही मतलब गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ते थे जहां से मैंने इंटर पास किया था। और मेरा गांव वो गांव है जिसमें लड़कियां मतलब आगे नहीं बढ़ सकती, पढ़ नहीं सकती, सिर्फ घर में ही रह के मतलब इंटर करके पढ़ाई वढ़ाई करके खाना वाना बनाना है और उनकी शादी कर दी जाती है।
1: तो आपके फादर क्या करते, आपके पिता क्या करते थे, माँ क्या करती थी?
2: मेरे पापा की ड्राई क्लीन की दुकान थी छोटी सी जिसमें वो प्रेस करते हैं, और मेरी मम्मी उन्हीं के साथ काम करती थी।
1: और जब आप मम्मी पापा पढ़ने जाती थी, छोटी थी जब, बहुत छोटी थी जब पढ़ने जाने लगी स्कूल, तब तो गांव के स्कूल में पढ़ती होंगी, जब आप और बड़ी हुई और स्कूल आगे बड़े क्लास में गई, तो कैसा माहौल था गांव में आपके पढ़ाई के बारे में?
2: पढ़ाई के लिए मेरे जितने भी मतलब आसपास के लोग थे, गांव के लोग थे, और मेरे जो रिश्तेदार थे, वो मेरे मम्मी पापा से यही कहते थे कि अब फरहा को मत पढ़ाइए, काफी बड़ी हो गई है, और इतना पढ़ा के करना क्या है, कोई जॉब तो आपको करानी नहीं है, क्योंकि हम लोगों में जो मुस्लिम इलाका है वहां पर कोई भी लड़की मतलब बाहर नहीं निकलती है, मतलब एक सिर से जो दुपट्टा होता है हमारे यहाँ, बुरखे के बगैर लड़कियां बाहर नहीं जाती है। तो वहां पर वो मेरे पेरेंट्स से सभी लोगों ने मना करा, मेरे मोहल्ले वालों ने, मेरे गांव के लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, कि फरहा को मत पढ़ाइए और यहीं पर ही पढ़ाकर इसकी शादी कर दीजिए।
1: और बड़े होने की वजह से सबसे दबाव आपके ऊपर आया?
2: जी मैम, सबसे बड़ी मैं थी।
1: हाँ, तो ये बताइए कि आज आप कितना पढ़ाई कर चुकी हैं?
2: मैं आज बीटीसी कर रही हूँ, जो बीए भी कर लिया है मैंने इंटर के बाद, एमए भी कर लिया है, एमए के बाद आज बीटीसी कर रही हूँ।
1: तो ये कैसे संभव हुआ?
2: ये मैं एक रीड इंडिया एनजीओ है जिसके साथ मैं इंटर में जुड़ी, और वहाँ पर एक हमारे ही छोटे से गांव में मतलब रीड इंडिया के नाम का एक सेंटर खुला था जिसमें काफी लाइब्रेरी थी, सिलाई था, पार्लर थे, कंप्यूटर है। तो मुझे वहीं के एक सर ने मुझे बताया कि ऐसे से वहाँ पर वैकेंसी खाली है ईसीटी टीचर के तौर पर। तो मैं वहाँ पर मतलब चुनी गई, मेरा इंटरव्यू हुआ और मुझे ईसीटी के लिए वहाँ चुना गया। लेकिन मेरे पेरेंट्स मना कर रहे थे, मतलब आसपास के लोगों ने मना करा तो सब लोग मना करने लगे, लेकिन मैंने खुद से ही मतलब एक आत्मविश्वास आया कि शायद मैं कर सकती हूँ। मैंने बोला मम्मी पापा से इजाजत ली कि मैं मतलब कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपको कोई परेशानी हो या आपका सर मेरी वजह से झुके। तो मैं मतलब उनके विश्वास को मतलब जीत कर उनसे बहुत अच्छे से वादा कर कि मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं आएगी, तो उनसे मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके उन्होंने उस चीज के लिए हाँ कर दिया कि ठीक है आप सीधे सेंटर जाओगे, सेंटर से घर आओगे, उससे आपको किसी से मतलब नहीं होगा कुछ नहीं। मैंने बोला ठीक है। तो इसी तरीके से मैं सेंटर से जुड़ी।
1: तो कितना साल हो गया है सेंटर से जुड़े हुए आपको?
2: मुझे आज 6 साल हो गए सेंटर से जुड़े हुए।
1: क्या किया है इस बीच में? आप तो ईसीडी की टीचर के तौर पर छोटे बच्चों के संग पढ़ाने के लिए आप जुड़ी थी
2: जी।
1: क्या क्या सीखा है इस सेंटर से जुड़कर?
2: सेंटर से जुड़कर मेरे अंदर सबसे पहले बदलाव आया कि लोगों से बातचीत कैसे करी जाती है। लोगों से मतलब बहुत डरती थी कि मतलब लोगों के बीच जाना, लोगों से बातचीत करना, गाँव का बाहर का माहौल कैसा होगा, क्या होगा। तो सेंटर से जुड़कर मुझे मेरे अंदर ही खुद कॉन्फिडेंस आया, बहुत सारे बदलाव आए। मैं लोगों से बातचीत करने लगी, लोगों से जुड़ने लगी, मेरी एक गांव में अपनी पहचान बनने लगी सेंटर से जुड़ने के बाद। फिर मतलब मेरी पोस्टिंग भी बढ़ती गई ईसीडी से, फिर मुझे कंप्यूटर टीचर, उसी बीच मैंने कंप्यूटर क्लास लेनी शुरू कर दी। मेरे माँ बापों को लगा कि हाँ शायद मेरी लड़की कर रही है तो आगे बढ़ सकती है, तो मैंने इसी बीच कंप्यूटर की क्लास लेना शुरू कर दी। वो मैंने 6 मंथ तक कंप्यूटर भी सीखा। कंप्यूटर सीखने के बाद मुझे फिर कंप्यूटर की टीचर बना दिया गया, मेरी पोस्टिंग हो गई। तो मेरे माँ बापों को और मुझे बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा खुशी मिली और मैं इसी तरीके से आगे बढ़ती चली गई। और एक कॉन्फिडेंस जो मतलब दिल से होता है ना, वो मतलब बढ़ने लगा कि हाँ मैं अब सब कुछ कर सकती हूँ। मतलब एक दिल से पूरी आवाज निकलने लगी, हाँ फरा आगे बढ़ और तू कर सकती है।
1: वो तो केवल घर से सेंटर तक जाने की
2: जी
1: बात। आज आप यहाँ बैठी हो दिल्ली में, द्वारिका में
2: जी मैम,
1: ये कैसे संभव हुआ?
2: फर्स्ट टाइम जब मैं दिल्ली में आई थी तो मेरी मम्मी मेरे साथ आई थी। उन्होंने कहा कि मैं मतलब दिल्ली का नाम सुन के ही मतलब मेरी मम्मी, तो एक तो गांव की बात थी कि उन्होंने सेंटर के लिए हाँ कह दी, लेकिन दिल्ली का नाम सुनके तो मेरे पापा और मम्मी ने डायरेक्ट ही मना कर दिया था कि नहीं वहां तक नहीं जा पाएगी। तो फिर दिल्ली में गीता मैम से बात करी सर ने कि उसकी मम्मी आ सकती हैं, तो मेरी मम्मी मेरे साथ आई। उन्होंने यहाँ का माहौल देखा, यहाँ की सुविधा देखी, यहाँ देखा कि सब लोग मतलब बहुत ही अच्छे हैं। और सबसे पहले जो गीता मैम हमारी कंट्री डायरेक्टर है वो तो बहुत ही अच्छी है, वो मतलब ऐसे लड़कियों के लिए तो ऐसे मतलब सुविधा रखती है कि यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो उन्होंने मतलब एक गीता मैम से मिलके और सारे स्टाफ से मिलके उन्हें लगा कि हाँ ये हमारे घर के परिवार के जैसा है और उन्होंने मुझे आने के लिए।
1: क्या उम्र थी आपकी उस वक्त जब पहली बार आप दिल्ली?
2: जब मैं पहली बार दिल्ली आई थी तो शायद 18 साल की होंगी, 18 मतलब 19 ऐसी थी। और दिल्ली आके जब मैंने देखा मतलब मुझे अलग ही माहौल लगा और मैं मतलब ऐसा लगे कि सारे सपने स्वीकार होते दिख रहे हैं मुझे। मतलब एक गांव की छोटी घर में रहने वाले और मतलब एकदम इतना अच्छा माहौल मिले और फिर मम्मी यहां तक लाए मुझे, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि जिस वक्त वो मेरे साथ आई थी और मुझे लेकर आई और उन्होंने सब घुमाया, उन्होंने खुद देखा, उन्हें लगा कि हाँ मेरी लड़की कर सकती है।
1: तो रीड इंडिया सेंटर से जितनी भी लड़कियां, क्योंकि रीड इंडिया की तो बहुत सारी सेंटर्स पूरे देश में खुले हुए हैं, तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं उनको बताना चाहेंगी आप रीड इंडिया के बारे में, उसके काम के बारे में, और क्या कोई मैसेज देना चाहेंगी लड़कियों के लिए?
2: मैं लड़कियों के लिए यही कहना चाहूंगी कि मतलब किसी भी चीज के पीछे डरे नहीं। और रीड इंडिया हमारा एक ऐसा सेंटर है जो लड़कियों के प्रति मतलब उनके अंदर आत्मविश्वास लाता है, उनको जागरूक करता है, उनको बताता है कि मतलब लड़कियां किसी से कम नहीं है, लड़कियां अपने में एक आत्मविश्वास है, खुद भी कुछ भी कर सकती हैं। लड़कियां लड़कों से कम ना समझे, लड़कियां ये नहीं सोचे कि हम घर में रहेंगे तो मतलब हमारे पड़ोस वाले क्या कहेंगे या हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, नहीं, उसे सिर्फ अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए और अपने माता पिता पर निर्भर होना चाहिए। और रीड इंडिया ऐसा एनजीओ है जो मतलब लड़कियों को आगे बढ़ने की क्षमता देता है और रीड इंडिया के साथ हर लड़की को हाथ मिलाकर चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
1: आपने बताया था कि आपके गांव में मुस्लिम समुदायों में और भी जगह हम देखते हैं कि बच्चियों की बहुत जल्दी शादी कर देते बहुत कम उम्र में
2: जी मैम,
1: और आपको मौका मिला आप आगे बढ़ी
2: जी मैम,
1: तो क्या सपना लेके आप आगे बढ़ी और आगे क्या करना चाहती हैं?
2: सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जब मेरे माँ बापों ने मुझ पर विश्वास करके मुझे आगे बढ़ाया है तो मैं उन्हीं के लिए ये सब करना चाहूंगी। मैं मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि मैं खुद अपने पैसों से मैं अपने माँ बापों को हज करवाना चाहूंगी कि वो हज करें मेरे पैसों से। कभी ये नहीं सोचना, क्योंकि हमारे यहाँ लड़के माँ बापों को हज करवाते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ जो लड़कों की कमाई होती है उससे ही माँ बाप हज करते हैं, लेकिन मेरा एक अपना ही सपना है कि मैं अपने ही पैसों से अपने माँ बापों को हज करवाऊं।
1: और शादियां तो बहुत जल्दी होती हैं आपकी, आपने अभी तक नहीं करी क्योंकि 18 साल की उम्र में आप पहली बार तो शहर से बाहर निकली थी, गांव और शहर से बाहर निकली थी। आज कितनी उम्र हो गई है आपकी?
2: मेरी आज 24 साल की उम्र हो गई है।
1: तो कैसे सोचती हैं, शादी को कैसे देखती हैं और क्या लगता है आपको कि आगे अगर करती हैं कब करेंगी और कैसे उसको जीवन को आगे ले जाएंगी?
2: शादी के लिए भी मतलब माँ बाप घर वाले सब मतलब बहुत ज्यादा सीरियस, लेकिन मैं शादी अभी नहीं करना चाहती। मैं अपने माँ बापों के लिए पहले वो पैसा जोड़ के रखना चाहती हूँ जिससे वो हज कर सके। मैं अपने भाई को काबिल करना चाहती हूँ कि वो आगे मतलब मेरे घर को आराम से लेके चले। मेरा एक ही भाई है और मैं अपनी बहनों की पढ़ाई मतलब अच्छे से करना चाहती हूँ कि वो अच्छी ही जॉब में लगे मेरे साथ, मतलब पढ़े, उनकी पढ़ाई किसी भी वजह से रुके नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के अभी इतनी मतलब
1: आर्थिक क्षमता नहीं है,
2: क्षमता नहीं है कि वो इतना सब कुछ कर सके। अभी जो भी चल रहा है मेरे ऊपर ही चल रहा है और थोड़ा बहुत मेरे भाई के ऊपर। तो मैं ये सब अपने घर वालों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहती।
1: तो आप इस पैसे से जो जो कमा रही हैं उसको बचा के अपने परिवार की मदद करती हैं?
2: जी मैम।
1: बहुत सारी शुभकामनाएं फरहा कि आपके सारे सपने सच हों और

0: नमस्कार दोस्तों, मैं रितु आपका स्वागत करती हूं रेडियो रीड इंडिया में। प्रस्तुत है गांव मेहंदीपुर डाबोदा केंद्र से जुड़े युवक और युवतियों के विचार। रीड केंद्र ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम एकता है और मेरी सहेलियां आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हैं। पलक, एकता, दीपिका, अंकिता, कविता और सुजाता, हम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की मेहंदीपुर डाबोदा कला की लड़कियां कविता सुनाना चाहती हैं और हम गांव के एक लाइब्रेरी सेंटर में आते हैं और वहां पर बुक्स पढ़ के जाते हैं, बुक्स घर पे लेके जाते हैं और कंप्यूटर सीखने आते हैं। जंजीरों में बंधी पुकारे मुझको भारत माता, माँ का स्वाभिमान बचाने फांसी चढ़ने जाता। हाँ, ये शब्द तब गूंजे थे जब गोरखपुर की जेल में बंद शहीद भगत सिंह ने लिखा अपनी माँ को पत्र।

0: धन्यवाद।
1: हेलो, हाय दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है और मेरी शादी हो रखी है मेहंदीपुर डाबोदा में। मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में फर्स्ट टाइम आई हूँ, वो भी मेरी ननंद ने बताया है मुझे। उन्होंने यहाँ पे सिलाई सीखा है, ब्यूटिशियन का सीख रही है वो भी। मुझे उनमें इंटरेस्ट दिखाई, इसीलिए आज मैंने भी यहाँ पे आने की सोची है। आज यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा मन किया कि मैं यहाँ पे हर रोज आऊँ, कुछ नया सीखूँ, जिससे मुझे और भी मतलब पता चले कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या सीखने को मिलेगा, क्या मैं सबको बता सकती हूँ। मतलब इस टाइप से अगर मैं यहाँ पे रोज आऊंगी तो मैं कुछ ना कुछ नया सीखूंगी, जिससे मैं सबको बता सकती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या सीखा है। इससे हर एक इंसान की नॉलेज बढ़ेगी, उसको भी पता चलेगा, ताकि वो आगे किसी को बता सके, उनको भी पता चले कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। इससे हम अपने बारे में या बाहर के बारे में हमें हर तरह की नॉलेज मिलेगी। घर में जैसे हमें कुछ नहीं पता चला, वो हमें बाहर आके बहुत कुछ पता चलेगा।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुस्कान है और मैं

0: कुड़ा बुद्धा की रहने वाली हूँ। मैंने इसी साल 12th की है और मैं यहाँ पे सिलाई सीखी है तकरीबन 3 साल पहले और मुझे उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और अब मैं यहाँ पे करीबन 1 महीना हो जाएगा ब्यूटी का सीख रही हूँ और उससे भी मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। इसीलिए मैं अब और रेडियो क्लास के बारे में तो मुझे पहली बार पता चला है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ और ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे मैंने सिलाई सीखने के बाद बहुत सारे पैसे कमाए हैं और मतलब यहाँ पे सिलाई सीखने के बाद मैं अलग अलग डिजाइन के सूट वगैरह सिलती हूँ और मुझे यहाँ पर सीखने से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और मैं यहीं पे और कुछ भी सीखना चाहती हूँ। धन्यवाद।
1: हाय दोस्तों, मेरा नाम दीपांशु है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ।
2: मेरा नाम निखिल है, मैं 6 कक्षा का छात्र हूँ।
1: हम आपके सामने एक कविता सुनाना चाहते हैं।

0: मेहंदी पुरडा बुद्धा की रहने वाली हूँ। हमारे गांव में एक लाइब्रेरी है, वहाँ हमें बहुत फायदा होता है। हमारे यहाँ लाइब्रेरी में ब्यूटी पार्लर, सिलाई सेंटर और एनटीटी कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, बहुत सारे कोर्स आते हैं। इससे मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। पहले मेरी फैमिली, मेरी बिग फैमिली है, ये पहले ना सिलाई के पैसे बाहर जाते थे और घर में ही रह जाते, बचत होती है इससे काफी। मेरा एम है, मैं पुलिस में SI पे कर रही हूँ, साथ साथ में अब कोचिंग भी ले रही हूँ।
1: मेरा नाम सुनीता है, मैं गांव मेहंदीपुर की बहू हूँ और मैं 2014 में यहाँ लाइब्रेरी खुली हुई है, खुली हुई से जब से जुड़ी हुई हूँ मैं यहाँ पे। जब से मैंने ये पता चला कि भैया लाइब्रेरी खुली हुई है तो मैं उसी दिन से आना मैंने शुरू कर दिया। सिलाई सेंटर खुल रहा और कंप्यूटर शुरू होया और किताब सारी पढ़ने लगे, घर पर ले जाने लगे। मेरी लड़की ने यहाँ इंग्लिश सीखने आई तो यहीं पर फिर मेरी लड़की नौकरी करने लगी। फिर यहाँ से मेरी बेटी ने 3-4 साल नौकरी करी है। फिर उसके शादी होने के बाद वो अपने ससुराल से दूसरे गांव में आने लगी लाइब्रेरी में। और जब से मैं यहीं से जुड़ी हूँ, सिलाई सीखती जैसे अंटरलॉक करने लग गए और मैंने दिखने से कमज़ोर होने के कारण मैं कम, वैसे जो कोई फंक्शन होता है मैं ज़रूर आती हूँ यहाँ पर, और कुछ गाना बजाना होता है जब भी मैं शुरुआत ज़रूर करूँ।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सपना है और मेरी कुछ सहेलियाँ हैं पलक, दीपिका और भावना पायल। मैं आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ, कृपया मेरे गाने को ध्यान से सुनो और आनंद दे।
3: मेरी माँ

0: धन्यवाद।
1: मेरा नाम मानसी है, मैं मेहंदीपुर डाबोदा में रहती हूँ। हमारे गांव में लाइब्रेरी है जिसमें मैं ब्यूटीशियन का कोर्स करती हूँ। इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं भी बहुत बचता है मेरा यहाँ आने पे, क्योंकि अगर हम गांव से कहीं बाहर जाते हैं तो हमें बहुत स्मेल लग जाता है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी सुविधा दी गई है हमें।
2: मेरा नाम तनु है, मैं मेहंदीपुर डाबोदा में रहती हूँ। मैं अपने गांव में उपस्थित लाइब्रेरी में ब्यूटीशियन का कोर्स करती हूँ और मैं आपको यहाँ रेडियो की क्लास में एक पोयम सुनाना चाहती हूँ।

0: थैंक यू।
1: अभी आप सुन रहे थे रीड इंडिया मेहंदीपुर दाबोदा केंद्र से जुड़े युवक और युवतियों के विचार। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे ऋतु को दे इजाजत। नमस्कार।
2: मेरा नाम कोमल है, मैं शाहबाद में रहती हूँ और मैंने अभी 10th क्लास बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए हैं। मैं यहाँ सर्वोदय कन्या विद्यालय में पढ़ती हूँ और बचपन से ही शाहबाद के अंदर रही हूँ और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ देखा है, लाइक लड़के लड़कियों में भेदभाव, कहीं इधर उधर ना जाने देना, यहाँ तक कि जैसे अपने रिलेशन में ही बहुत से मुसीबतों को सामना करना पड़ जाता है उन लोगों को, जैसे अपने ही पेरेंट्स अपने ही रिलेशन में लड़कियों के साथ क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता, बट वो लड़कियां खुल के कह नहीं पाती हैं, किसी से बता नहीं पाती हैं, उन्हें डर लगता है, बहुत सी चीज़ें सोचती हैं क्योंकि उनके दिमाग में यही रहता है कि हर बार तो बदनामियाँ लड़कियों की ही होती है। और काफ़ी बार ये भी होता है कि लड़कों को आगे बढ़ा दिया जाता है और लड़कियों को पीछे, भले ही हम कितने भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो गया, भारत इंडिपेंडेंट तो हो चुका है बट भारत के लोगों की सोच अभी तक वैसी की वैसी ही है। कुछ लोग हुए हैं बट अभी भी बहुत कम लोग हुए हैं। और बहुत सी जगह, जैसे घरों में ही देख लो, लड़कियों को कहीं आने जाने की सलाह नहीं दी जाती, लड़कों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है तो लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है, लड़कों के लिए बहुत सी फैसिलिटीज़ होती हैं बट लड़कियों के लिए नहीं हो पाती हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं रहूँ, मैं खुल के जीना चाहती हूँ और मैं सब कुछ करना चाहती हूँ जो लड़के करते हैं। मैं अपने अंदर हर हॉबी रखना चाहती हूँ। और इस रीड इंडिया सेंटर पर मैं 2-2.5 महीने से आती हूँ। मैं शुरू में जब यहाँ आती थी तो मैं यहाँ सिर्फ लाइब्रेरी में बैठ के स्टडीज़ किया करती थी, बिकॉज़ लाइब्रेरी यहाँ की बहुत अच्छी है, वहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स है, किताबें हैं और काफ़ी सारी स्टडीज़ की हैं, काफ़ी सारे लेवल्स की हैं, आपको जो भी जानना हो वहाँ बैठ के जान सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, लाइक इंग्लिश कोर्स और कंप्यूटर कोर्स, स्टिचिंग कोर्स, ब्यूटी पार्लर कोर्स, यहाँ तक कि स्कूल भी है यहाँ पर एक छोटे बच्चों के लिए। तो मैं पहले जब आती थी तो उस टाइम मुझे इतना कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में पता नहीं था, सो मैं यहाँ पे सिर्फ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा करती थी। तो कुछ दिन पहले मुझे यहाँ पे रेडियो के बारे में पता चला कि जिन लोगों को शौक़ है गाने का, जो इंटरेस्ट रखते हैं, वो यहाँ पे गाना भी गा सकते हैं अपना। तो तब मैंने सोचा कि मैं अपनी आवाज़ को एक आगे बढ़ा सकती हूँ अगर मैं अच्छा गाती हूँ, बिकॉज़ अगर मैं मेहनत नहीं करूँगी तो मैं उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाऊँगी, अचीव नहीं कर पाऊँगी उस चीज़ को। तो मैंने ये कोशिश की है कि मैं अपने लिए एक गाना रिकॉर्ड करूँ, बाय चांस कभी ना कभी वो आगे जाए, कोई ना कोई सुने, किसी को अच्छा लगे, इसलिए मैं एक गाना गाना चाहती हूँ।

0: थैंक यू।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: माय नेम इज रोहित। मैं गांव बासलांबी और मुझे आर्ट ले रखे और मैं गेम में बहुत इंटरेस्ट हूँ और मैं कबड्डी और रनिंग में बहुत अच्छा खेलता हूँ और मैं आगे इसी में भाग लूंगा।
1: आज का जो सेशन हुआ था ना बिंसी मैडम ने जो पढ़ाया, उसमें से आपको क्या क्या समझ में आया?
0: बहुत कुछ सीखने को मिला और आर्ट में बहुत चीजें बताई थी, 7-8 चीज बताई गई थी, LLB, BB और डांसिंग, रनिंग, आर्मी, पुलिस।

my name is Deepak and I read in 11th class. My village name is Jatola. आज मैंने सीखा मेरे करियर के बारे में जो मुझे आगे करना है, इसलिए मैंने कॉमर्स ले रखी है और मैम ने बहुत अच्छा बताया कॉमर्स में बैंकिंग CA और बहुत स्ट्रीम्स आ गए, तो इसलिए मुझे बहुत मदद मिली अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू।

हेलो, माय नेम इज़ विकास। मैं सांपका से हूँ। मैंने कॉमर्स ले रखे। मैं 11 क्लास में पढ़ता हूँ। मैंने आज सीखा कि मेरे को पता नहीं था कि आर्ट से LLB वगैरह कर सकते हैं। आज पता चला कि आर्ट से बहुत ऑप्शन है। मैं CA करना चाहता हूँ। थैंक यू।

माय नेम इज सचिन, आई रीड इन 11th क्लास। मैंने आर्ट्स ले रखी है, मेरे को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है और मेरे को रनिंग में और क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है। आज की सेशन से हमें ये फ़ायदा पहुंचा कि हम आर्ट्स से बहुत सारे वो कर सकते हैं।

हेलो, आई एम आशीष एंड आई एम फ्रॉम बासलम्बी. मैंने साइंस ले रखी है एंड आई वांट टू बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर, बट माय आल्सो इंटरेस्ट इन कबड्डी एंड एथलेटिक्स, सो माय अदर एम इज टू गेट अ मेडल इन नेशनल्स.

मैं जितेंद्र, आई रीड इन 11th कॉमर्स, आई लिव इन बासलांबी। आज गाइडेंस से हमें ये पता चला कि हमें अपना कुछ भी करने से पहले हमें अपना एम कर लेना चाहिए। मैंने साइंस ले रखी है तो मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। थैंक यू।

मेरा नाम मन्नू, मैं बारहवीं कक्षा के छात्र हूँ। मैंने मैथ ले रखा और मैं यहाँ पर बिन से मैम ने करियर के बारे में बताया था कि हम बारहवीं के बाद क्या कर सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग टीचर्स लाइन में जा सकते हैं। मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, उससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिला है।

My name is Anjali. I read in 11th class. I am 15 years old. My hobby is playing. I am interest of Hindi and math. और आज मैं यहाँ पे करियर काउंसलिंग के बारे में जानने के लिए आई थी, तो यहाँ पे प्रिंसी मैम ने हमें तीन स्ट्रीम्स बताई, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स. जैसे कि साइंस है उससे हम डॉक्टर बन सकते हैं, कॉमर्स है अकाउंट, चार्टर्ड अकाउंट्स कर सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, और आर्ट है उससे तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. गवर्नमेंट सर्विस फॉर्म तो सभी कर सकते हैं. इससे मुझे अपने करियर के बारे में बहुत सी जानकारी. थैंक यू.

पायल, आई रीड इन 7th क्लास. आज मैं यहाँ करियर के बारे में जानने से आई थी. मेरा यहाँ पे मैम ने बहुत कुछ बताया और मेरे को पता लगा कि हम अपने करियर में क्या क्या कर सकते हैं आगे जाके, और हम बहुत कुछ समझ में आया. थैंक यू.

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शीला, मैं कुम्हार बिघा से आती हूँ और हम यहाँ महिला संसाधन केंद्र के द्वारा यहाँ पढ़ी हैं। और यहाँ जब हम लोग यहाँ आए तो हम लोग को मुनि दी बताई थी कि यहाँ पर एक सर आने वाले हैं जो हम लोग को रेडियो को बताने के लिए कुछ बताएंगे और वीडियो बनाने के लिए बताएंगे। तो हम लोग यहाँ आए, हम लोग को सिखाया जा रहा है यहाँ पर प्रोग्राम बनाना और कोई भी बड़ा चीज को छोटा करके लिखना, लिखकर उस बात को रिकॉर्ड करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाना। हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस काम को कर रहे हैं। और फोटो खींचना हम लोग को सिखाया गया है और इससे हम लोग को बहुत लाभ है। हमें तो लाभ है ही, बहुत सारे लोगों को भी लाभ है। हमारे गांव में जैसे गंदगी अधिक फैल जाती है तो हम उसको गांव से अधिक लोगों को बताने के लिए हम पहले कुछ लोगों का इंटरव्यू लेकर उनका आवाज़ रिकॉर्ड करके हम दूर दूर के लोगों तक पहुंचा सकते हैं, सरकार के पास भी पहुंचा सकते हैं, जिससे हमारी समस्या का हल हो। और इससे वीडियो में बनाकर हम बता सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, मोबाइल में भी रिकॉर्ड करके लोगों को सुना सकते हैं, लोगों को जागरूक बना सकते हैं। जो औरतें पढ़ाई करने के बाद अपने घर में बेरोजगार हैं, जब हमारे गांव में एक रेडियो का कार्य खुल जाएगा तो यहां पर बेरोजगार महिलाओं को कार्य भी मिल सकता है। जो महिलाएं अधिक पढ़ लिख चुकी हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो यहां काम कर सकती हैं, इसमें जुड़ सकती हैं और वो कुछ आगे भी बढ़ सकती हैं। ये ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा हुआ, हम चाहते हैं ट्रेनिंग आगे भी हो, क्योंकि इससे हम लोगों को अब जो आवाज़ हमारे ही पास सीमित थी वो आवाज़ बहुत सारे लोगों के बीच जा रही है। हम जागरूक हो रहे हैं, हम जागरूक होंगे तो हमारा देश भी जागरूक होगा, समाज के लोग भी जागरूक होंगे।
1: मेरा नाम उत्तम कुमारी है, मैं कुम्हार बिघा से आई हूँ और यहाँ हम कंप्यूटर क्लास करते हैं। और यहाँ जब करते करते मुन्नी जी बोले कि यहाँ मतलब सर आने वाले हैं, वो कुछ सिखलाएंगे, तो हमने कहा कि ठीक है, हम सीखेंगे और साथ में कहें कि और लड़कियों को कह भी देना, तो उन लोग के भी कहे और साथ में आए तो सर आए और वो बोले कि मतलब सिखाने के लिए बोले, ट्रेनिंग देने के लिए बोले। हम लोग यहाँ आकर रेडियो प्रोग्राम बनाने के लिए लिखना सीखे हैं और रिकॉर्डिंग करना सीखे हैं, फोटो खींचना सीखे हैं, वो हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फोटो और दूसरे को भी मतलब बता सकते हैं और बात भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल द्वारा रेडियो प्रोग्राम को सुना भी सकते हैं। ये ट्रेनिंग आगे होना भी चाहिए जिससे हम मतलब आगे कुछ और सीख ले, टाइम मिल जाए।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरती है, मेरा घर कुम्हार बिघा है, मैं कुम्हार बिघा से यहाँ आती हूँ। इस ट्रेनिंग से मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा है। हम लोग घर में ऐसे ही बैठे रहते थे, एग्जाम देने के बाद तो कोई काम नहीं था तो हम लोग बैठे रहते थे, पर यहाँ आने से हम लोग का एक टाइम भी बन गया है कि यहाँ पे आना है और कुछ सीख भी रहे हैं हम लोग यहाँ सीखने से माइंड का भी विकास हो रहा है और यहाँ पे कुछ जो बोलने वाली जो मंत्र जैसा है वो सिखाया जाता है, उससे हम लोग को बोलने की ताकत हो रही है, जिससे हम किसी लोग के सामने भी और ऊंची आवाज में कुछ बातें कर सकते हैं और रिकॉर्ड और किसी और गांव में भी जा करके दो महिला कुछ अच्छी बातें कर रही है तो उनकी बातों को अच्छे लोगों के पास सुनाने के लिए हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं ये बातों को।
3: ठीक, बोलो।
4: मेरा नाम अलका कुमारी है, जिला औरंगाबाद हरदे एवं बिहार से हूँ। मैं यहाँ पास पहले टीचर ट्रेनिंग करती थी, लेकिन यहाँ पास एक प्रोग्राम आया रेडियो ट्रेनिंग का, इसमें मैं पार्टिसिपेट की हूँ और इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और नेपाल सर ने हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी और समुदायिक रेडियो की कैमरा चलाना एवं उन्होंने हमें हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाया और उन्होंने हमें पहले हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा फंसती थी, लेकिन उन्होंने हमें रियाज कराया कि अपने आवाज़ को साफ करने के लिए आप एक ट्रेनिंग दी जिसमें माँ बाप इसको रियाज करने से आपकी गला साफ हो जाएगी और आप आगे बढ़ सकते हैं, गा सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। इसलिए मैं पास सर को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहूँगी कि वो आगे आए, ट्रेनिंग दें हम लोग को आगे। इस ट्रेनिंग के माध्यम से पहले मैं कैमरा चलाना नहीं जानती थी, इसके कैमरा चलाना सीखी, स्टेप लिखना सीखी और दूसरे जगहों पर जाके उनके जगहों के बारे में जानने की कोशिश की और उसके बारे में लिखी, उसको रिकॉर्ड किया और उसे एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर हमने लैपटॉप या कंप्यूटर में उसे ऐड किया, उस एडिटिंग की और उसे मूवी मेकर के द्वारा वीडियो बनाया, इसे लोगों को दिखाया और जो लोगों को काफ़ी पसंद आया। और मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ पास भवानीपुर में महिला संसाधन केंद्र में और भी सुविधाएं आए, इससे महिला महिलाओं को काफी फायदा हो और महिलाएं आगे बढ़े। हम हमारे भवानीपुर कविता सेवा केंद्र में महिलाओं को काफी सुविधा मिली है और मैं चाहती हूँ कि इस सुविधा को सब लाभ उठाएं, सुविधा से लाभ उठाएं और आगे बढ़ें। मैं चाहती हूँ कि यहाँ कविता सेवा भवानीपुर में एक और भी ट्रेनिंग हो इंग्लिश स्पोकन के, जिसमें महिलाएं और भी लोगों को इंग्लिश लिखने का मौका मिले, वो अपनी आवाज को दूसरे के सामने इंग्लिश में रख पाएं और वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश बोलना भी सीखें।
0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती, मैं कुम्हार विभाग से आती हूँ। ऑडियो रिकॉर्डर करना, लिखना और एक दूसरे का बात रिकॉर्ड करके सुनना, फोटो खींचना, ऑडियो प्रोग्राम बनाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखे हैं हम लोग और हमको बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि ये ट्रेनिंग हो और इससे हमको बहुत हम लोगों का लाभ भी मिले और लाभ भी मिल भी रहा है।
5: मेरा नाम संगीता कुमारी है, मैं कुम्हार विहार से आई हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संगीता कुमारी है, मैं कुम्हार विहार से आई हूँ। इस ट्रेनिंग से हमें बहुत फायदा हुआ है, जो हम लोग को रिकॉर्ड करने नहीं आता था और रिकॉर्ड करना सीख गए, और बहुत बड़ा प्रोग्राम रहता था उसको छोटा मतलब कर रिकॉर्ड करना और सभी लोग को मतलब सुनाना।
6: मैं अंजू कुमारी गुप्ता बोल रही हूँ, मेरा ग्राम है चट्टी। सामुदायिक रेडियो द्वारा मेरा उपस्थित किया गया है और नेपाल सर ने हम लोग को बहुत शिक्षा दी है और इसके बारे में जानकारी दी है। वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं सीखी और ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए।
2: मेरा नाम आरती है, मैं कुम्हार विहार की रहने वाली हूँ और यहाँ पे मैं रेडियो समुदाय के से जुड़ी हुई हूँ। हम लोग यहाँ आते क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा और इससे हम लोगों को बहुत लाभ है। यहाँ पे आने से सबसे पहले तो हम एक दूसरे के बारे में या अपने फ्रेंड या अपने अगल बगल की या किसी के बारे में कुछ प्रोग्राम बनाना सीखें और फिर उसके मोबाइल फिर रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करना, फिर इसके बाद हम लोग सीखे हैं कि आपस में 4 या 5 लड़के मिलकर एक समूह बनाकर और कोई एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाकर उसे रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग करना तो सीखा ही और फिर उसे कंप्यूटर पे एडिट करना भी सीख लिया है और कैमरा से फोटो खींचना भी सीखा हम लोगों ने। तो हमें इससे बहुत लाभ है, अगर हम चाहेंगे तो कुछ आगे भी बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को बहुत ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसकी जरूरत हम लोगों को आगे पड़ेगी और कुछ ऐसी जरूरत भी है जिसकी हम लोगों के पास नहीं है। तो हमारे पास 3-4 कंप्यूटर है और जिसमें हमारे हम लोग 20 लड़कियां हैं, तो हम लोग को 1-2 कंप्यूटर और होने चाहिए जिससे कि हम लोग आसानी से कंप्यूटर पे एडिट करना, जब लोग रिकॉर्डिंग करते हैं उसको कंप्यूटर पे एडिट करना सीख लें। और यही सब मतलब चाहिए। बिजली उजली की व्यवस्था यहाँ पे बहुत लाइट बहुत कम रहती है।
7: मेरा नाम सविता कुमारी है, मैं देव की रहने वाली हूँ, मैं यहाँ की दोनों हूँ और मैं 5वीं ट्रेनिंग यहाँ की हूँ। और देखिए दोस्तों, महिपाल सर ने यहाँ हम लोग का बहुत कुछ सिखाए हैं, इसलिए महिपाल सर को बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद। हर बहुत चीज नजर आया, जो हम लोग का बोलने में झिझकाहट लगता है वो हम लोग का गला साफ हो गया। जो आपने सिखाए जो माँ और पाई सब कर वो हम लोग का बहुत अच्छा लगा। इस चलते कि जो जिसका गला जैसे बैठा हुआ वो गला जो साफ हो जाए तो हम लोग का वो बहुत अच्छा लगा। जिसके माँ है कहीं रेडियो पर या कहीं भी या स्कूल में गाने के लिए अगर मिलता है मन, तो कितना आदमी जो है झुकझुकाहट हो जाता है कि हम नहीं गा पाएंगे या ऐसे वैसे बहुत तरह तरह की होता है। तो इसी चलते आप जो माई सबके बारे में सिखाएं तो बहुत अच्छा सिखाएं तो बहुत अच्छा लगा, ताकि जिसका गला नहीं हो वो भी गला हो जाएगी, ताकि जो नहीं गाने के लिए पा रही है वो भी गाना अपना स्टार्ट कर दे। हमको बहुत अच्छा लगा। अब आप जो सिखाएं रेडियो के बारे में, जो फोटो खींचना और किसी दूसरे से अपने आप को बात करवाना, जो पहले बार आपने सिखाए कि से जो अपने आप में कुछ लेटर लिखें और अपने आप से बात करके मुझे सुनावे, वो भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग आपस में दोनों वो मेरे बारे में लिखी, उनके बारे में हम लिखी। सेंटर में तो
8: सर भी बहुत खुश, हम लोग सोच रहे हैं कि टीचर ट्रेनिंग करें, लेकिन हम लोग का मिला है प्रिय स्कूल का, लेकिन हम लोग का सोच रहे हैं कि सर्टिफिकेट हम लोग का प्राइमरी में स्कूल का मिले ये मिले, और उसके बाद हम लोग टीचर ट्रेनिंग करने के बाद ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम लोग कुछ और भी करना चाहते हैं, उसके बाद फिर कंप्यूटर में आने के लिए चाहते हैं, कोशिश करें कि कंप्यूटर में हम लोग का आप मेरा तरफ से बहुत बहुत आपको शुक्रिया है कि आप कहें गीता दी या रेशमी दी जो भी हैं उनके आप कह के आगे बढ़ावे कि जो टीचर ट्रेनिंग का लड़की है उनको कंप्यूटर का चांस दिया जाए एक बार। इस चलते कि हम लोग का बहुत शौक है कि हम लोग भी कंप्यूटर सीखे, आजकल का ऐसा जमाना है कि बिना कंप्यूटर का बिना कुछ नहीं होता है, कंप्यूटर सीखना लड़कियों या अधिक का बहुत जरूरी होता है, आजकल जो भी है वो कंप्यूटर का वजह से चल रहा है, आइए बी ए लाख आदमी पढ़ रहा है लेकिन बिना कंप्यूटर बिना कुछ भी नहीं होगा। इसी चलते हम लोग सोच रहे हैं कि टीचर ट्रेनिंग करने के बाद एक बार हम लोग का कंप्यूटर का साथ जरूर मिले। महिपाल सर आपके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
9: मेरा नाम है अंजू कुमारी, मैं कुम्हार बिगड़ के रहने वाली हूँ, मैं यहाँ रेडियो समुदाय के भाग ली हूँ, अपने आप फोटो खींचने के लिए मैं सीखा हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ लाइट आए और हम लोग भी चाहती हूँ कि आप कुछ भी सीखे, सिलाई भी सीखे, ब्यूटिशियन सीखे, कंप्यूटर भी सीखे। 7 दिन यहाँ ट्रेनिंग हुआ, मैं 7 दिन भी आई हूँ यहाँ, मैं फोटो खींचने के लिए सीखे, लिखने के लिए सीखे और आवाज बढ़ाने के लिए सीखे और गल्ला साफ करने के लिए सीखे।
10: मेरा नाम आरती कुमारी है, मैं कुम्हार घर से आई हूँ, मैं यहाँ रेडियो सामुदायिक रेडियो की तरफ से आई हूँ और यहाँ पर ट्रेन रेडियो समुदायिक में ट्रेनिंग किया जा रहा है, जिसमें 7 दिन से ट्रेनिंग चल रहा है, जिसमें मैंने सीखी है एक दूसरे का बारे में लिख कर से रिकॉर्ड करना और सुनना और फोटो खींचना और डिजिटल स्टोरी बनाना और
11: आगे इनको सीख कर के आप क्या करोगे?
10: मैं ये सीख कर मैं अपने गांव वालों को और बगल के पड़ोसियों को मैं अपने ये सिखाऊंगी कि आप भी इसमें जुड़े और इसका लाभ।
12: मेरा नाम उत्तम कुमारी है, मैं कुम्हार भैया से आती हूँ, मैं कंप्यूटर क्लास की छात्रा हूँ और मैं रेडियो समुदाय में भाग लिए हैं, जिसमें 5-6 दिन से ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें फोटो खींचना, प्रोग्राम बनाना और ऑडियो रिकॉर्डिंग करना इत्यादि सीखे हैं। और इससे मैं सीखने के बाद कंप्यूटर में भी इसे मतलब साफ करने के लिए सीखूंगी और इस प्रोग्राम को और अच्छे तरह से बना सकूंगी। सबसे पहले तो कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे यहाँ लाइन की व्यवस्था नहीं है, आज भी देख रहे हैं दिन भर भी लाइट नहीं आया, कुछ नहीं काम लोग कंप्यूटर में कर पाए, इसके लिए लाइन की व्यवस्था पहले करवा दी जाए।
11: और डिजिटल स्टोरी के बारे में बताओ, वीडियो फिल्म बनाने के बारे में कुछ बताओ, फिल्म फोटो खींच करके जो फिल्म बनाएगी
12: और फोटो खींच कर उसका फिल्म बनाऊंगी और वो मतलब कि वो आगे उसको दिखलाऊंगी कंप्यूटर में साफ करके।
8: मेरा नाम आरती कुमारी है, मैं बेसारा में रहती हूँ, मैं यहाँ टीचर ट्रेनिंग की छात्रा हूँ, मैं आज 1 सप्ताह से रेडियो समुदाय के बारे में सीख रही हूँ, वह मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें मैं बहुत कुछ सीखी, जैसे फोटो खींचना, प्रोग्राम बनाना, कंप्यूटर में प्रोग्राम को एडिट करना, इसी प्रकार मैंने बहुत कुछ सीखी। मैं चाहती हूँ कि मैं यह सीख कर आगे भी रेडियो चैनल पर आई,
11: ठीक है, और
8: मुझे भी मेरा प्रोग्राम भी लोग सुने, मेरी आवाजें लोगों तक जाए। मैं प्रीति, घर बेचारा, थाना दे, जिला औरंगाबाद, बिहार, मैं यहाँ भवानीपुर सामुदायिक रेडियो सीख रही हूँ, इसमें बहुत कुछ सीखी, जैसे कि कैमरा चलाना, आवाज रिकॉर्ड करना, स्टेप लिखना, गला को रिवाज करना, ये महिपाल सर सिखाए जो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, इसलिए महिपाल सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करती हूँ कि महिपाल सर फिर से हम लोगों के बीच में आए और ट्रेनिंग देने की कृपा करें। और हम सब एक बात और बताना चाहते हैं कि टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान भी दिया जाए।
13: मेरा नाम पूजा है, मैं कुम्हार लेगा से आती हूँ, मैं यहाँ कंप्यूटर क्लास की छात्रा हूँ, मेरा एजुकेशन मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, और मैं इस 7 दिन की ट्रेनिंग में फोटो खींचना सीखी,
11: रेडियो कार्यक्रम बनाना सीखी
13: और
11: इसके लिए लिखना
13: स्क्रिप्ट लिखना सीखी, रिकॉर्डिंग करना सीखी और एडिट करना सीखी।
11: इसको करने के बाद आप क्या करोगे रेडियो प्रोग्राम को सीखने के बाद?
13: मैं चाहती हूँ कि हमारे भवानीपुर में एक रेडियो स्टेशन खुले और जिसमें मैं कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूं और पूरे देव को अपना कार्यक्रम सुना। जब तक ये हमारे भवानीपुर में रेडियो चैनल नहीं खुलता है तब तक हम ये प्रोग्राम बनाते रहेंगे और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके समूह में सुनाएंगे जिससे वो जागरूक होंगे। फोटो खींचना सीखी, स्क्रिप्ट लिखना सीखी, रिकॉर्ड करना।
11: आपको व्यक्तिगत क्या लगा ट्रेनिंग में, पर्सनली मतलब होता है ना, निजी तौर पे क्या लगा?
13: मुझे बहुत अच्छा लगा।
11: इस ट्रेनिंग के बारे में बताना, इस वर्कशॉप से निजी तौर पे आपको क्या अच्छा लगा?
13: मुझे अच्छा लगा कि हमारे देव में जो भी हाईलाइट में जो भी चीजें होंगे मैं उसके बारे में लिखूंगी और उसका फोटो खींच के और मूवी सब बनाऊंगी।
11: वर्कशॉप के बारे में और चाहिए या नहीं चाहिए?
13: और चाहिए।
11: बोलो किस टाइप की वर्कशॉप होनी चाहिए आपको? इंग्लिश की भी चाहिए आपको, कंप्यूटर के साथ में टीचर की ट्रेनिंग के साथ कंप्यूटर क्लास भी चाहिए? सब बोलो।
13: इंग्लिश में चाहिए
11: जी। बोलो
13: जी, कंप्यूटर के साथ में इंग्लिश स्पोकन भी चाहिए और
11: ICT बेस्ड और वर्कशॉप चाहिए आपको?
13: यस।
11: इस टाइप की और वर्कशॉप चाहिए आपको? और
13: हाँ।
11: और की मदद की आवश्यकता है कि आप परफेक्ट हो गए?
13: नहीं, अभी परफेक्ट नहीं हुए हैं, अभी हमें इसकी और आवश्यकता है, अभी तो शुरुआत है, हमें अभी हमें और जानकारी की जरूरत है,
11: प्रैक्टिस की जरूरत है। चलो अंत में कोई संदेश हमारे लिए, ब्रीव इंडिया के लिए और किसके लिए कुछ कहना चाहोगे?
13: हाँ, हमारे भवानीपुर में इस महिला संसाधन केंद्र को उन्होंने खोला और हमें जागरूक किया, आगे बढ़ने की रास्ता दिखाए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमें और आगे बढ़ने के लिए और सुविधाएं देती जाए।
14: मेरा नाम दिव्यांश वर्मा, 8वीं का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के सामने गुरु के ऊपर 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ। अक्सर हमें सिखाते, शब्द का अर्थ बताते, कभी डांट से कभी प्यार से जीवन जीना हमें सिखाते।
15: ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी कूड़ा पीछे भी, दाएं भी कूड़ा बाएं भी।

0: नहीं, गली में कूड़ा है, पार्कों में कचरा, दुनिया हमारी अब स्वर्ग नहीं। ए भाई
1: जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों की बीमारियों का कारण आपके मोहल्ले का कूड़ा भी हो सकता है? पर यह कूड़ा आता कहाँ से है? अरे जनाब, आप ही के तो घर से। आपने कूड़े को निकाला, भरा और फेंक दिया, और बदले में आपको क्या मिला? बदबूदार नालियाँ, मक्खियाँ जो लाती हैं बीमारियाँ। आपका बच्चा घर से बाहर जाए और बीमारियाँ घर लाए।
2: तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। कर सकते हैं कूड़े का विभाजन। कूड़े को दो तरह के थैले में बांट लें। एक में गीला कूड़ा, जैसे कि फल व सब्जियों के छिलके, बचा खाना, और दूसरे थैले में सूखा कूड़ा, जैसे कि पेपर और प्लास्टिक डाल दें।
1: सरकार ने आपके मोहल्ले में दो प्रकार के कूड़ेदान रखे हैं, हरा गीले कूड़े के लिए और नीला सूखे कूड़े के लिए। यदि आप कूड़ा अलग अलग करके इसमें डाल देते हैं तो गीले कूड़े में खाद बनाई जा सकती है और सूखे कूड़े को तैयार कर दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है।
2: इससे दूर रहेंगी बीमारियां और सुंदर होगा वातावरण। तो अब जब आपका बच्चा घर से बाहर जाए तो बीमारी घर में लेकर ना आए।
1: याद रखिए,
3: कूड़ा निवारण स्वस्थ जिंदगी।
4: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों वह महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम। सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
5: नमस्ते, मेरा नाम नंदिनी है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और मैंने अभी एग्जाम दिया है और अभी मैं एक हफ्ते से यहाँ क्लास में आ रही हूँ और मैं अभी सिलाई का कोर्स कर रही हूँ। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद भी हमें लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें इससे बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं और आगे लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं। महिलाएं या फिर लड़कियाँ हों, उनको आगे बढ़ने में या फिर उनको कहीं कुछ जॉब वॉब दिलानी है, फिर हम अपनी तरफ से कोई एनजीओ वगैरह कुछ भी हम खोल सकते हैं। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और लोगों को हम सिखा सकते हैं और अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। अपने भाई या बहन या कोई फ्रेंड्स महिलाएं किसी को भी बता सकते हैं कि इसके बारे में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं। आगे बढ़ने के लिए कुछ भी इसमें बहुत सारे फैसिलिटी है, बहुत, चाहे 16 साल, चाहे महिलाएं हों, चाहे लड़कियां हों, सभी को सिखाया जा सकता है, सभी सीख सकते हैं। और टीचर बनना चाहती हूँ, टीचर बन के मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट लेके इंग्लिश का टीचर बनना चाहती हूँ और लोगों को मतलब फ्री में भी पढ़ाना चाहती हूँ और स्कूल में भी जॉब करना चाहती हूँ।

0: I'd like to call the speakers and talk about how the role of transformative libraries are implementing this mission on ground, and where Reed libraries could learn further and move further on this journey. So first in this series, I'd like to call upon Dr. Shantanu Ganguly. Please, sir.
1: Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank Geeta for inviting me to share my experiences with all of you. Thank you very much, Geeta. I think since morning I learned a lot. I don't know what is the acronym stands for Reed Word. And I did it myself. R stands for resilience. E stands for enlightenment or engagement. A stands for access to knowledge resources. And D stands for development. That is how the entire Reed Word stands for. That is what I could coin.
2: After 17 years, we are getting the new name. Thank you, sir.
1: Second thing is that my colleague, Mr. Vibhuti Nath Jha. Vibhuti, can you stand up? My colleague, Mr. Vibhuti Nath Jha, is there. In fact, he told me, sir, when we will go from here, we should do something. I said, what will we do? Now, there is nothing in my hand. Just 1 month back, I have taken over Ashoka University. Sir, we are going to donate 2,000 children books to Read India. And that he promised, and he said, sir, let's make it and we will do it. So that is a small contribution from this conference for you. Let me tell you, I am in this profession for the last 26, 27 years, and all my stalwarts are here, starting from Dr. D.B. Singh, Dr. Jagtar Singh, Dr. P.R. Goswami. They are like my mentors, and Rangashri, my predecessor from Ashoka. And I had a very interesting dialogue with Jay, and when I discussed with him regarding that, one of the important component in today's context is the sustainability of the libraries. How do you take this journey for the next 17 years or maybe next 70 years? How do you look at it? What would be the journey is that? There are a couple of ideas. I told him that I'm ready to be a part of Read India, being in this profession, because I have a very strong backbone of research. I have completed almost 41 research projects which are funded by the bilateral, multilateral organizations, Department of Biotechnology, DSIR, DST and all, where I have worked on some of the leading projects which is making a marriage between a library information system and sustainable development goals, and reaching out to those sustainable development goals. And that's where basically I come from. Let me give you a very small presentation on this. Well, this is a beautiful quote from Alvin Toffler, Future Shock. And he said that the illiterate of the century for those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. And let me tell you, all my friends here, today I have proved this and I have learned a lot from this entire session. This is a very common, platform. This is a very common platform. Can anybody tell me what is this?
3: WhatsApp.
1: I want to be an interactive. WhatsApp. Who discovered WhatsApp? Who discovered WhatsApp? That's my question is. And there is a relationship by the word which is talked about by Steve Jobs, connecting the dots. These two guys, I don't know how many of you know, Ian Coombe and Brian Acton, came out of once again a Stanford University, sitting in a garage, and develop the entire model of WhatsApp. And that is what how the birth of WhatsApp has taken. And it is based on what? Connecting the dots. The This is what connecting the dots is today. It is the content. It is the context. And third is the technology. Content, what do you write? अरे यार ये क्या खड़े होके स्टेज में बात कर रहा है, खाना खाया सोना है. You must, somebody must be typing out on that. Context, somebody want to escape this lecture today. And technology is that what is the platform is. Simple thing, but has given birth to the entire information and revolution today. So content, when we look at it, it is a multi-format in today's context. It is textual. It is the figures and the numbers. It is the images. And it is the videos which has come up. And many more formats. When you talk about context, it is the purpose. It is the objective. It is the scope. And it is the right content for the right person in the right time. And that is when you provide a service. I'll give you an example. I was doing a project in Almora. And I was trying to develop what is called as a village knowledge resource center. It is called a VKRC model. When I was in Terry, I went to their public library. It was completely in a dilapidated condition. बहुत हालत खराब था उसका. और उसको develop करने के लिए जमीन के सारे वहाँ के बच्चों से जुड़ा, उनके लोगों से जुड़ा और वहाँ पर एक village knowledge resource center बनाना. जब वहां पर पहुंचा विलेज नॉलेज रिसोर्स सेंटर, तो वहां के गांव के लोग हमको ये कहते हैं, सर हमको आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना है, हम कैसे करेंगे बताएंगे हमको. हम अपना पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हम अपना सब्सिडी में गांव गेहूं लेना चाहते हैं, कहां जाएंगे, कौन सी स्कीम को अवेल करेंगे, गवर्नमेंट कैसे बताएगा हमको. फिर मैंने उनको बोला कि यस, ये नॉलेज रिसोर्स सेंटर सिर्फ किताबें नहीं देगा, ये यहां के लोगों को एजुकेट करेगा. वो एजुकेशन एम्पावरमेंट इज नेसेसरी. एंड द टेक्नोलॉजी वॉज करेंटली देर इज अ बूम, लाइक जे ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट इज इन अ वेरी बिग वे, इट इज कमिंग अप. आई वॉज रीडिंग एंड देर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्रूगल इनोवेशन, which is currently social and frugal innovation is one of the big thing. In fact, in one of my event, Geeta was also one of the speakers. The Professor Sarabindu Bhaduri was talking about how the frugal innovation is making a radical change in the current context. Aaj frugal innovation. Frugal innovation hai kya? These are very big, big jargons. Let me easy way mein aap logon ko batata hun. Aapke paas resources ki constraint hai. जब आप रूरल कम्युनिटी पे काम कर रहे हैं तो वहां पर आपके पास रिसोर्सेस की कमी है, और उसी कमी के साथ जब आप कोई सॉल्यूशन लेके आते हैं और वो सॉल्यूशन एक दूसरे चीज पे रूपांतरित होता है, तो उसको हम फ्रूगल इनोवेशन कहते हैं. इज अ वेरी सिंपल क्रूड वे. एंड so we are looking towards a smart library now. Smart ka matlab aisa nahi maine acha dress pehna hai, jay ne badhiya dress pehna hai, madam ne pehna hai, aisa smart nahi hai. Smart word ka maine coin kiya hai, mere ko word coin karna acha lagta hai. Sustainable, measurable, achievable, retrievable and transformational. Sustainable, ग्रीन लाइब्रेरी लेके बहुत बातें हो रही है. आप लोगों को मालूम है कि इफ्ला ने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंटेशन भी रिलीज किया है. वी हैव टू टॉक अबाउट ग्रीन लाइब्रेरी. सो मच ऑफ रिन्यूअल एनर्जी इज यूज्ड इन द ग्रीन लाइब्रेरीज. हमने अपनी HDFC लाइब्रेरी के अंदर जो है सेंसर बेस्ड लाइट्स लगाई है. अगर इस रूम के अंदर कोई नहीं बैठा है, नोबडी इज सिटिंग हियर इन दिस रूम, तो क्या ये लाइट्स जलनी चाहिए? We should save this energy, ना? तो वो कैसे करेंगे? Paperless library हमने start किया है अपने HDFC library में. Maximum communication हमारी online में हो रही है. Futuristic. There are case studies. I could have presented those case studies. वहां पर augmented reality, virtual reality का applications किया जा रहा है, और वो भी higher education sector में. And the third, but not the least is the sustainable development goals. Already सर ने हमें बहुत लोगों ने बताया SDGs को अगर आप नहीं बताएंगे तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते आज के डेट में. SDGs इज मस्ट. और SDG का जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, जो सारे गोल्स हैं, मैं कई गोल्स पे काम किया हुआ है मैंने. एक छोटी सी चीज आपको मैं बताता हूं. आई वॉज वर्किंग इन VHEI, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और हम वहां पर एक छोटा सा न्यूज़लेटर निकालते थे, हमारी चिट्ठी आपके नाम, हमारी लाइब्रेरी से, और वो 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होता था. तो आई वॉज वर्किंग विद सहारिया ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश की सहारिया ट्राइब्स के साथ जब मैं काम किया वहां पर, तो वहां पर एक चाय वाला जो है वो शाम के टाइम एक छोटा सा अपना एक वो कैंडल टाइप लेके बैठता था और गांव वालों को साथ में बिठा देता था. और साथ में वो जो हमारी चिट्ठी आपके नाम की, हम जो डॉक्यूमेंट उनको देते थे, जो पतला सा न्यूज़लेटर देता था, उसको पढ़ के सुनाता था. और उसमें कौन सी स्पेसिफिक चीजें होती थी, एनवायरमेंट की नॉलेज देते थे हम लोग, पर्यावरण की नॉलेज देते थे, पानी का नॉलेज देते थे, ऐसे बहुत सारी चीजों की नॉलेज हम उनको डिसमिनेट करते थे. हेल्थ का, स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा देते थे, क्योंकि ये जो गर्मी का टाइम आ रहा है, बरसात का टाइम है, ये सबसे ज्यादा बीमारियों का जन्म लेता है. इन चीजों की हम देते थे. सो वी स्टार्टेड हिटिंग ऑन दीज एरियाज एंड आई हैव डन गुड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स एक्सक्लूसिवली ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. मेजरेबल इज द लाइब्रेरी एनालिटिक्स. आज के डेट में इतनी रिसोर्सेस हम खरीदे जा रहे हैं, लेकिन क्या उसकी इस्तेमाल प्रॉपर हो रही है? कितने किताबें लोगों ने रैक से निकाल के खोल के देखा है.

Studios in Swam Portal. मैंने खुद ट्रेन किया है, मैं हार्डकोर ट्रेनर. आई थिंक वन ऑफ माई स्टूडेंट मे बी स्टडिंग देयर. ऐसे कई लोगों को किया है. और आज जब हम लोगों को कोई लाइब्रेरी इंटर्न्स की जरूरत पड़ती है, आई डोंट फाइंड दैट काइंड ऑफ अ पर्सन टू कम एंड वर्क विथ मी, बिकॉज देयर इज अ गैप एंड वी ऑल ऑफ अस हैव टू मिनिमाइज दैट गैप. एंड द लास्ट कॉम्पोनेंट इज सेंटिमेंट एनालिटिक्स. जो भी चीज हम खरीदते हैं, जो भी चीज हम लेते हैं, कुछ भी करते हैं, सेंटिमेंट एनालिटिक्स, उसका आपका जो फीडबैक है वो जानना बहुत जरूरी है. वो आपने कैसे किया है. एंड इज अ वेरी बेसिक मेथड. आई कैन ट्रेन पीपल ऑन दीज एरियाज. अचीवेबल, दैट इज बेसिकली जितना हम अभी कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड आइसबर्ग मेटाफर, नॉलेज मेटाफर है. एक्चुअल सेंस में अगर देखा जाए, सिंस आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ आई वर्क्ड ऑन केम सिस्टम्स, आई हैव इंप्लीमेंटेड क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ केम सिस्टम. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ केम. इनफैक्ट इन एक्सर्ची और पीडब्ल्यूसी I have given a lot of trainings. Even in Ernst & Young, McKinsey, lot of sessions I have taken on KM systems implementation. I'll give you an example. I was working in the in Bhopal, in one of the leading multinational NGO there. Unke wahan par mere ko, there was something called as state climate change knowledge management system banana tha. अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, एनएपीसीसी के अंडर में हमें स्टेट क्लाइमेट चेंज नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाना था. सो आई वेंट देयर अलॉन्ग विद माई क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट. हमने वहां पर बनाने के लिए गया. जब मैं वहां बनाने के लिए गया तो देर वॉज अ स्टेक होल्डर वर्कशॉप वॉज टेकिंग प्लेस एंड सी हाउ डू वी नो कैच द टैसिट नॉलेज देयर. वहां गांव के लोग आए हुए थे. उन्होंने हम लोगों को वाटर लेके बड़ी प्रॉब्लम हो रहा था कि कहां पर पानी का कैसा लेवल है, उसका ग्राउंड लेवल पे कैसा है, क्योंकि वहां पर पानी की बहुत खपत है. इतनी पानी मिलती नहीं है, बहुत जमीन के नीचे चला जाता है, बहुत ड्रिलिंग करनी पड़ती है तब जाके पानी निकलता है. देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम विद वाटर. जब हमने वहां के गांव के लोगों से, कई लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला हम आपको मट्टी उठा के बता सकते हैं कि यहां पर आपको पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा. And he has a, and you won't imagine, I mean I'm having my goosebumps, that guy, the he picked up the soil and said, yahan par kitna pani kitne gradient mein aapko mil jayega. He said that. I mean this is unimaginable. And how do we capture that knowledge? That is actually the below the surface. We don't know these techniques. In fact, some of these areas I have also worked extensively in the northeastern belt with all the nine sisters, jahan par is tarah ki knowledge ko preserve karne ka, conserve karne ka bahut prayas kiya ja raha hai, bahut prayas kiya ja raha hai. So best possible way to retrieve. So retrieval is a very important thing. Kitna badhiya aap retrieve kar rahe ho, kyunki resources ke to kami nahi hai. लेकिन आज के डेट पे एक्चुअल रिसोर्स जब आपको निकाल के ले आना है, समुन्द्र में से दो बूंद पानी आपको निकाल के ले आना है, क्या आपके पास उस तरह का डीप लर्निंग का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म है विच कैन टेक आउट दैट एक्चुअल इंफॉर्मेशन और कॉन्टेक्चुअल, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉन्टेक्चुअल सर्चिंग. मशीन लैंग्वेज को यूज करके कॉन्टेक्चुअल सर्चिंग में उस इंफॉर्मेशन को निकाल के ले आना. In fact, we are working towards that particular platform and very soon we are going to have that in our own library also. The next component is transformational. Now, when I talk about transformational, this is a very big word. What is that transformational? हमें अपने आप में एक बार देखना चाहिए. हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम. वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटाइजेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटलाइजेशन, और वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. कौन सी एरिया पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम? डिजिटाइजेशन, आपके पास इतने सारे पेपर्स हैं, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया डिजिटल में, हो गया आपका. डिजिटलाइजेशन इज अ प्रोसेस बेस्ड. And digital transformation takes place in the entire organization where everything goes into

the digital framework, which is a very long way journey. And it is not a very easy thing also. I was reading this book, 4.0 Insight, and one of the important area was knowledge 4.0. आज के डेट में एक नया टर्मिनोलॉजी ये वन सेकेंड से जागरण लेकिन हम सब करते हैं यहां पर बैठ के मैं पीछे से बहुत सारी सामान खरीदा है आज मैंने आई बॉट मेनी थिंग्स फॉर माई वाइफ माई डॉटर माई फैमिली मेंबर्स जो चीज मेरे को बाहर पीछे देखने को मिला एंड आई वॉज कंप्लीटली फ्लैबरगास्टेड आफ्टर सीइंग दैट को क्रिएटिव कोलाबोरेटिव कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिमुलेशन एनालिटिक्स बेस्ड जब तक आप करोगे नहीं एक धागा को कैसे अगर आप वो मूवीज को देखेंगे जो WE का मूवी जैसे एक धागा को कितना बारीक से वो उसको डाल रहे थे और उसके अंदर उसको स्टिचिंग कर रहे थे ये प्रोसेस को कोई अगर नहीं देखेगा तो समझ में नहीं आएगा इनफैक्ट अंडर द NEP 2020 इन माई लास्ट ऑर्गेनाइजेशन एट NIMS यूनिवर्सिटी The fashion department was under me and I started working towards sustainable fashion where different kinds of reused materials in the fashion industry, how they can be further taken to a next level. I worked on that level also. So, if I look at these five laws of library science which was coined by S.R. Ranganathan and I relate them with artificial intelligence, I find that there is a very correlation with that. Starting from books are for use, every reader his or her book, every book its reader, save the time of the reader, and library is a growing organism. But what is most important today, we need to empower our information professionals. हमारे जितने भी information professionals, library information professionals हैं, उनको सहायता चाहिए कैसे वो प्रैक्टिकली अपने सिस्टम्स में जाए और वहां सीखे और वहां पर इंप्लीमेंट करे चीजों को ये हमें चाहिए लाइब्रेरी हैज कम अप ऑन अ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लाइक डेटा माइग्रेशन कंप्लीटली अ डेटा बेस्ड इट इज अ कंप्लीटली एन ऑटोमेटेड बेस्ड ये बहुत टेक्निकलिटी है इसके अंदर हम लोगों को कंप्यूटर साइंस के साथ मिलकर काम करना पड़ रहा है हम कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट नहीं है शेल्फ मैनेजमेंट फॉर्म्स प्रोसेसिंग ईमेल मार्केटिंग ये सारी चीजें इसके अंदर गई है जैसे स्मार्ट लाइब्रेरीज की मैंने बात की इसी तरह पेट्रॉन्स विल एंगेज ऑन द पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस मैं ये जानना चाह रहा हूं जैसे आप लोग फेसबुक या किसी भी चीज पे या अमेजॉन में कभी भी कोई किताब खरीदते हैं मैं एक किताब को खरीदा तो मेरे नीचे जो है वो चार पांच और किताबों का रिकमेंडेशन दे देता है कि आप इन किताबों को भी ले सकते हैं हाउ डू आई मीन साइकोलॉजी हाउ दे रीड अवर साइकोलॉजी एंड गिव्स अस फ्रॉम अवर ओन रिक्वेस्ट दैट व्हाट आर द थिंग्स आई शुड टेक लेटर और वो रिकमेंडेशंस ऑटोमेटिकली मेरा यूसेज को बढ़ाना क्या कोशिश करेगा I'm working on this with my team on this. User services like chatbots, we are going to implement very soon on this. AI applications, and there are many more things. I mean, library analytics mein agar main, jaise for example, if I want to look at, mera missing book kahan gaya? Abhi to rack mein tha, koi leke chala gaya, kahan gaya? How do I track that? There is a technology which has come up, we are working on towards that also. Like I am a user of a book, मेरे को यह किताब चाहिए आई रिजर्व दैट बुक फ्रॉम माई ओन काउंटर मेरे पास मेरे मोबाइल पे मैंने उसको वो किया एंड देर इज अ लाइब्रेरी GPS सिस्टम वी आर ट्राइंग टू इंप्लीमेंट फिर अकॉर्डिंगली इट विल थ्रू दैट टेक्नोलॉजी इट विल टेक मी टू दैट रैक एंड विल टेल मी योर बुक इज हियर सो यू कैन गेट इट इशू इट्स अ लाइब्रेरी GPS सिस्टम These kinds of technologies are available, but it is the right time to implement and all. But most of these technologies are international, but what we need is basically an indigenous technologies and all. We need to have an indigenous technologies. Same with information retrievals, I mean, I can keep on going on. These are all AI-based things. It takes a lot of time for me to describe. Data analytics has come up in a big way for decision-making process. Collaboration and knowledge sharing,
आज के डेट में मैं साइलोस मेंटालिटी नहीं चलता है नॉलेज 4.0 में, ये मेरा है, मैं अपने कंप्यूटर में रखूंगा, मैं शेयर नहीं करूंगा, ये नहीं चलेगा। आई नो दी हाउ दी कॉर्पोरेट सेक्टर लाइक एक्सेंचर एंड आर्नेस्ट एंड यंग हाउ देयर वर्क, आई हैव सीन देयर वर्क, इवन देयर कंप्यूटर्स आर ऑल्सो थ्रू देयर सर्वर, देयर लैपटॉप इज कनेक्टेड टू द सर्वर, जो भी वो करेंगे वो सिस्टम पे काम करेंगे और वो सारा कुछ वहां पर कैप्चर होता जा रहा है ऑनलाइन में। सो नथिंग इज योर्स, इट इज ऑल कोलाबोरेटिव, एनीबडी कैन हैव अ लुक एट इट, आई हैव सीन देयर सिस्टम्स। AI for cataloging and classifications, automatically classified systems have already been, there are several leading universities, international universities, they have already implemented such kind of a thing. We are also trying to look at it on these areas. AI for predictive analysis, mera ex-professor, wo hamesha is tarah ki kitabe, is tarah ke resources mangte hain, wo aage jaake bhi is tarah ka mangenge, who does that prediction? So there are predictive modeling has come up on AI based. वो आगे क्या मांगेंगे उसकी एनालिसिस पे हम जा रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड देयर आर टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट, सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजिकल वन कंपोनेंट इज दैट देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट, क्या है कि हर कोई टेक्नोलॉजी नहीं जानता, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। सो फॉर दैट व्हाट इज द सॉल्यूशन, वी हैव अ सॉल्यूशन लाइक ग्रीड इंडिया, दे कैन लॉन्च अ व्हाट इज कॉल्ड एज ए ऑनलाइन स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स, यू कैन अर्न अ रेवेन्यू फ्रॉम दैट टू। But one of the important thing is technology obsolescence. दो साल काम किया, 330 साल पता चला उसका नया वर्जन आ गया। So that's a very big problem. So technological constants and there is a privacy issues are also there, ethical issues are there. जितना digital होता जा रहा है उतना ज्यादा आपकी ethical issues में questions raise हो रहा है, and digital rights management वगैरह पे भी बहुत ज्यादा questions raise हो रहा है। Social media is a very big thing, all of you know, you are all there. So there was a, I just want to end here, there is a IFLOS statement on libraries and artificial intelligence. In fact, on just a few weeks, a day back when Geeta was also there, so we organized a open access where IFLOS president was there, Vicky MacDonald. So what she thinks that the adoption of the artificial intelligence, that is the AI and machine learning, in private and public spheres is rapidly growing. The policy statement aims to outline the key consideration for the use of these technologies in the library sector and suggest the roles which libraries should strive to take on in a society with a growing AI integration. AI integration is a very, very important thing. So thank you very much. Thanks for your patient listening.

भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी का करो या मरो आह्वान और देश भर से अनगिनत आजादी के मतवाले बलिदान की राह पर चल पड़े। उन्हीं में से एक वीरांगना थी कनक लता बरुआ। असम के गोहपुर में जन्मी कनक लता के मन में क्रांति का अंकुर महज 7 वर्ष की उम्र में ही फूट चुका था, जब कनक लता ने पास के गांव में हुई एक क्रांतिकारी सभा में हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तेजपुर में मृत्यु वाहिनी दल के गठन के दौरान कनक लता दल की सक्रिय सदस्य बन गईं। आंदोलन के समर्थन के लिए मृत्यु वाहिनी ने गोहपुर पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्णय लिया और 20 सितंबर 1942 को हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लिए कनक लता जुलूस के साथ आगे बढ़ने लगी। पुलिस की चेतावनी से बेपरवाह निर्भीक कनक लता के नेतृत्व में जुलूस आगे बढ़ता रहा। जुलूस को रोकने के लिए पुलिस ने गोली चला दी। गोली लगते ही कनक लता गिर पड़ी और आखिरकार हाथ में तिरंगा और दिल में आजाद राष्ट्र का सपना लिए ये महान स्वाधीनता सेनानी हमेशा के लिए पंचतत्व में लीन हो गई।

शाकिर है जिला जजर और माजरी गांव और इंदु बड़बोला की तरफ से सब ने राम राम। तो मैं इंदु बड़बोला आप सभी के सामने दो चार शायरी प्रस्तुत करना चाहती हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। तो सबसे पहले मम्मी पापा के ऊपर है एक के रह, जब मैंने उनका जिक्र कर दिया ना तो बात किसे का समाणी कोनी। के रह, जब मैंने उनका जिक्र कर दिया ना तो बात किसे का समाणी कोनी। अरे या दुनिया मैंने बहुत आजमाक देख ली मेरे भाई, इब और आजमानी कोनी। और उनने मेरे ऊपर बहुत उपकार कराखे है मेरे भाई, मेरे माँ बाबू बरगे तो कोई राजा रानी भी कोनी। एक है भाई के ऊपर है के रह, दुनिया में माँ बाप के अलावा एक और प्यारा है। के रह, दुनिया में माँ बाप के अलावा एक और प्यारा है, और वो है मेरा भाई जो सब तन्यारा है। और जब भी वो मैंने बुंडी शक्ल की कवा है ना, बेशक ते चिड़ो वह है पर उसका मजा ही न्यारा है। एक सुनियो फौजियों के ऊपर है के रह, गले में माला पहरनिया और संतरी बाणा पहरनिया, और किसे मानस ने जोगी नहीं कह सकते। के रह, गले में माला पहरनिया और संतरी बाणा पहरनिया, और किसे मानस ने जोगी नहीं कह सकते। और जो मारे खातर खून पसीना बाक दिन रात बॉर्डर पर लड़े जाने मेरे भाई, जय फौजी नहीं हो ना तो हम एक रात भी चैन ते नहीं सो सकते। एक सुनियो के रह, शर्म ओढ़न पहरन की ना होया करे, आख्या की बतेरी होया करे। और जी मैं कुछ करण की लगन होने वो बंदा दिन रात नहीं सोया करे, और जो जमके करे मेहनत वो कामयाब जरूर होया करे। वाई बात है, राम के घर देर होया करे पर अंधेर नहीं होया करे। तो आप सबका धन्यवाद।

0: next week, I would like to call Dr. D.V. Singh, former chief librarian, Delhi University, for sharing his views.
1: पहले तो धन्यवाद. मेरा टॉपिक है जो मुझे बताया गया वो है ट्रांसफॉर्मेटिंग रोल ऑफ द लाइब्रेरीज. एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, वो कैसे होता है पता नहीं चलता, लेकिन जैसे हम कई बार कहते हैं कि पानी में आग है, कई लोग एग्री नहीं करते, लेकिन है. पानी को हमने रोका, हमने टरबाइन में डाला, इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट की, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, हीटर में लगाया, आग पैदा हो गई. कहां थी? पानी में. लेकिन हमने उस चैनल को क्रिएट किया, तो लाइब्रेरी भी ये काम करती है. जिन्होंने एटम बम बनाया था, दो लोग थे, एक आर्मी के जनरल थे. वैसे तो लोग कहते हैं कि अभी तक नहीं पता एग्जैक्ट कौन जिम्मेदार, बट उन दो लोगों को माना जाता है, ओपेनहाइमर और वो दोनों ने कहीं लिखा है, मैंने किसी जर्नल में पढ़ा कि ये गलती हो गई, बट गलती लाइब्रेरी में बैठ के हो गई. क्यों? क्योंकि वो सब कुछ वहीं देखते थे, वहीं से लाते थे, स्टडी करते थे, सोचते थे. और जब वो ड्रॉ किया, वो भी कहा जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरी में कि वर्ल्ड वॉर एटम बम से नहीं जीता गया, लाइब्रेरी से जीता गया. कि लाइब्रेरी में तय किया गया कि जापान के किस शहर में कितने बजे, क्योंकि डाटा वही था, उसका बम गिरा जाए. कहने का मतलब है यूज एंड मिसयूज. अब बहुत सी बातें, लाइब्रेरी तो बहुत कुछ करती है. पता नहीं आप लोग कितने जानते हैं, स्वेतलाना का नाम सुना होगा, जो बहुत बड़े डिक्टेटर, वर्स्ट डिक्टेटर ऑफ दी नोन हिस्ट्री, उसका नाम स्टालिन था. उसकी एक लड़की थी, वो इंडिया आ गई, यहां ब्रिजय सिंह से शादी की, वहां नहीं मानी. बड़े उस डिटेल में मैं नहीं जाता. उसे पूछा, आप उसने स्ट्रेसफुल लाइफ में, जहां आपके पिताजी किसी पर विश्वास नहीं करते थे, आप एक शब्द विपरीत नहीं बोल सकते, आप सर्वाइव कैसे की? बोले एक ही रास्ता था, लाइब्रेरी. वो कैसे? कि बस मैं जाती थी लाइब्रेरी में, किताब पढ़ती थी, कुछ लिखती थी, और बस वहीं से मुझे स्ट्रेस मेरा निकल जाता था, और मैं सर्वाइव की. इसका लिए तो तय हुआ कि लाइब्रेरी स्ट्रेस को खत्म करती है, तो फिर इकोनॉमिक स्ट्रेस को भी खत्म करती है. और आजकल तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेस है. शाम को देखो यहां चौराहे पे क्या हाल होता है. मेरी समझ में आता है, आदमी दौड़ रहे हैं कि कीड़े मकोड़े दौड़ रहे हैं, ये कहां जाएंगे, क्या होगा. मेरे गांव का आदमी आया, बोला दिल्ली तो खाली हो जाएगी माँ, क्योंकि इतने लोग दौड़ रहे हैं निकलने के लिए, तो कहां जाएगी ये दिल्ली. लेकिन कहीं कोई नहीं जाता, वहीं दिल्ली में है और यूं ही दौड़ रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, बस एक ही बात कहूंगा. रंगानाथन जी ने 67 में वो लेक्चर कोई दिया था, वो मेरे पास रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था कि ऑटोमेशन बहुत जरूरी है, लेकिन किस काम का, जो रिपीटेटिव नेचर की जो हो. बाकी ह्यूमन टच अगर चला गया तो लाइब्रेरी की भी इंतजार मत कीजिए, वो भी चली जाएगी, प्रोफेशन भी चला जाएगा. और हमने सरेंडर कर भी दिया इसी चक्कर में. रिपीटेटिव जॉब क्या है? क्लासिफिकेशन. वो आप नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कभी टच कर पाएगी, वो अलग बात है. कैटलॉगिंग कर सकते हैं, आपको इश्यू रिटर्न करना है कर सकते हैं, लेकिन जो आपको इंफॉर्मेशन सर्विसेज देनी है, वो आपको केवल ह्यूमन टच के द्वारा देनी है, क्योंकि वो क्वालिटेटिव इन नेचर है, वो क्वांटिटेटिव इन नेचर नहीं. एंड विच इज इन क्वालिटेटिव नेचर, इट रिक्वायर्स द ह्यूमन टच ऑल द टाइम. कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मां भी पैदा कर देगी, लेकिन मेरी मां ने जो मुझे छाती से लगा करके थपकी दी है, और उससे जो मेरे अंदर इमोशंस डेवलप हुई है, वो मशीन उनको खत्म कर देगी, और आदमी मशीन बन के रह जाएगा, उस तरफ मत जाए. डिटेल में पढ़ना है तो 21st लेसन फॉर 21st सेंचुरी नो हारी की किताब है, प्लीज डू रीड दैट बुक. हिस्टोरियन है, इसराइल के हैं, और टाइम गड़बड़ ना हो जाए तो टाइम बता दीजिए. कि ऑर्गेनाइजर की सबसे बड़ी समस्या समय होती है, और बोलने वाले की सबसे बड़ी समस्या भी समय की. उसे पता ही नहीं होता मैंने कितना खा लिया, उन्हें समझ नहीं आता कि कब चुप होगा, तो वो स्थिति ना पैदा हो. खैर, तो वो जो बात है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ओके फाइन, लेकिन एक सीमा से परे नहीं. ह्यूमन इज ह्यूमन. यू कैन नॉट ट्रीट ए ह्यूमन थ्रू द मशीन. मशीन कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन. डिटेल मैं नहीं जाऊंगा, बहुत जा सकते हैं, किताब बता दी और रेफरेंस लीजिए, उसको पढ़िए. अब लाइब्रेरी कैसे ट्रांसफॉर्म करती है वो घटना मैं बार बार सुनाता हूं, फिर भी सुनाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे जीवन में उसका बहुत बड़ा योगदान है. गांधी जी की सेंटिनरी मनी थी 1969 में, तो हम अपने गांव में पढ़ते थे, शायद थर्ड फोर्थ में थे, और मेरे गांव में एक थोड़ी दूर पे मुल्ला जी कुछ कुरान शरीफ पढ़ाते थे, और वो आपने कभी देखना मदरसे में जाके कुरान शरीफ पढ़ने वाले को यूं यूं यूं यूं गर्दन करके वो लगे रहते हैं, रुकते नहीं, बस यूं यूं यूं जो भी कुछ उनका है उस पर, मुझे कुछ आता भी नहीं तो मैं कमेंट भी नहीं करूंगा. तो सोचा यार ये सिर हिला हिला के इतनी बड़ी कुरान शरीफ याद कर लेते हैं, ये थोड़ी सी तो चीजें हैं जो मुझे एग्जाम में देनी है, मैं कैसे सीख लूंगा क्योंकि इससे जल्दी सीखा जाता है. बच्चा था, एनालिटिकल एबिलिटी नहीं थी, क्योंकि वेद में तीन बात कही है, उसको बताते हुए आगे बढ़ूंगा. स्वर्ण मन निधि ध्यास, सुनना. कभी आप किताब पढ़ते हैं तो आंख से सुनते हैं, तब कान से नहीं सुनते, आंख से सुनते हैं उस लेखक को, या आप मुझे सुन रहे हैं कान से सुन रहे हैं आप, तो मुझे सुनना है. उसके बाद विचार होना चाहिए, उसका मनन होना चाहिए, उस पर चिंतन होना चाहिए, अन्य दिध्यासन तो उस पर आचरण होना चाहिए. क्योंकि बच्चा था, आंख से देख लिया, विचार नहीं कर सकता था कि विचारिक शक्ति उतनी विकसित हुई नहीं थी, और मैंने आचरण कर लिया. अब रिजल्ट क्या निकला, घर में सबने डांटा, पिटाई सिताई भी, उन दिनों थोड़ा पीटना एक अधिकार और साधन समझा जाता था सुधार का, आजकल तो सजा का साधन है वो. और कहते हैं इंग्लैंड में तो अपने बच्चों को पीट दे तो जेल चला जाता है, वो अलग विषय है. सुना है ऐसा, देखा भी है कई बार, नहीं माना. स्कूल में उस दिन सारे टीचर नहीं आए थे तो हमें किताब दे दी, और किताब मैंने जब पढ़ी, बच्चों की किताब थी वो, आई थी उस समय सेंटिनरी ईयर में, पिक्टोरियल थी, तो उसमें लिखा था गर्दन हिला के पढ़ने से बुद्धि भी खराब होती है और आई साइट भी खराब होती है, और मैंने वो बंद कर दिया. तो किसका प्रभाव था, लाइब्रेरी की किताब. और मैं देख रहा हूं ऐसे बहुत से लोगों जो बहुत गर्दन हिला के कुछ याद करते हैं, उनकी बुद्धि ठीक नहीं हो पा रही दुनिया में, बहुत कोशिश हो रही है सारी दुनिया में, किसी का नाम तो मैं क्या लूं. तो लाइब्रेरी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया. और एक चीज मैं क्या बताऊं आपको, ये हिंदुस्तान है, यहां उन चीजों पे बहुत खर्च कर देती है सरकार जिनका कोई मतलब नहीं होता, और जिनका मतलब होता है उन पे विचार नहीं करते हैं, तो जानते नहीं या वो करना नहीं चाहते. वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इनिशिएट किया कि इंडिया का यूथ लीडरशिप सर्वे होना चाहिए, अप्रूव हुआ. होते आते 2009 में जाकर के ये काम एनसीईआर को, नेशनल काउंसिल इकोनॉमिक रिसर्च जो है आईटीयू पे, उसको दिया गया, और एनबीटी के कोलोबोरेशन में वो सर्वे हुआ, उसकी रिपोर्ट 11 में आई. बहुत फैंटास्टिक रिपोर्ट है. अमेरिका में तो अल्टरनेटिव ईयर पर यूथ लीडरशिप सर्वे होता है, यहां तो एक ही बार हुआ. उसमें यही जो बात पहले कही गई, किसने कही थी कि जहां रीडिंग बढ़ी वहां पे क्राइम घटा, उसने यही बात कही कि जो जो एरिया डिस्टर्ब थे वहां रीडिंग जीरो थी, जिन एरिया में रीडिंग अच्छी थी वो एरिया कम डिस्टर्ब थे, और जहां पहले से रीडिंग हैबिट्स अच्छी थी वहां डिस्टर्बेंसेस कम हुए और सोशल लॉस कम हुआ. ये हमारी इंडिया की रिपोर्ट है, एनबीटी से मिल जाएगी, नेट पे भी पड़ी हुई है, इस पे काम होना चाहिए. सैंपल ही सही, इंडिया बहुत बड़ा है, हम किसी डिस्टर्ब एरिया में थोड़ा सा एक सैंपल कर सकते हैं. कई बार हमारे पास रिसर्च की थीसिस भी आ जाती है तो पता नहीं क्या क्या लिखा होता, तो हम कहते यार ये क्यों नहीं करते, लीडरशिप सर्वे क्यों नहीं दे देते, इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर ऑफ द मूच वाला, इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमिक्स, पता नहीं क्या क्या क्या क्या, एक ही चीज रिपीट होती रहती है. मैं ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल में क्यों रखते हो, लेट हैव द न्यू वाइन इन न्यू बोटल, अर्थात कुछ नए एरिया लेने चाहिए. जो हम बात करते हैं कि भाई हम बहुत ज्यादा ऑटोमेशन की, मैं इसके फेवर में नहीं हूं, अगेंस्ट तो नहीं हूं, बट इसके फेवर में नहीं हूं. अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एक चीज समझ लीजिए, उसकी एक सोशल कॉस्ट होती है. व्हाट इज दैट, ये जो आज चेन छीन रही है ना, आप थ्री व्हीलर में महिला का पर्स छीन लिया क्योंकि उसके पास जेब होती नहीं, उसके कपड़े कुछ इस तरह के हैं, तो सब उसी में होता है, छीन के भाग गए. और जब वो पकड़े जाते हैं वो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयड है. अब उस क्राइम को रोकने के लिए आपने पुलिस बढ़ानी पड़ती है, उस पुलिस के लिए आपको थाने बढ़ाने पड़ते हैं, कोस तो पे करनी पड़ती है। जैसे एक जोक भी और सच्चाई भी है। मेरे एक मित्र थे हरिद्वार में, मैं पढ़ता था, बहुत विद्वान आदमी थे, सारे शास्त्र उनको, सच में मैं उनकी धूल हो जाऊं तो भी जीवन सार्थक समझूं। एक लंगोटी खाली पहनते थे, पेड़ के नीचे सोते थे सर्दी में, अदरवाइज खुले में। एक टाइम किसी के घर जाके मिल गया, जो मिल गया वो उसने खा लिया, वो कोई संपत्ति नहीं थी। वो अमृतसर गए और उन्होंने कहा मैं माथा टेकूंगा गुरुद्वारे में और गुरु महाराज के यहाँ। जब गुरुद्वारे में गेट पे गए तो उन्होंने कहा भाई सिर पे कपड़ा रखो। उसने कहा कसम खाई है एक ही कपड़ा रहेगा, चाहे इसको यहाँ बंधवा लो चाहे इसको यहाँ बंधवा लो। गुरुद्वारे से रोक नहीं सकते, जाऊंगा, मेरे भी गुरु हैं। चलो अलग विषय। तो कहने का मतलब है, तो जस्ट हंसने के लिए थी कि एक ही रास्ता है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके सोशल कॉस्ट पे कर लो, चाहे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके सोशल कॉस्ट लेस कर लो, ये आपका डिसीजन है। इसलिए लाइब्रेरी में कंप्यूटराइजेशन की उतनी सीमा रखो जितना जरूरी है। किसी की आंख बंद कर करके पूंछ पकड़ करके नदी पार नहीं होती, नदी तैरने से पार होती है। आगे एक चीज मुझे आज बहुत अच्छी लगी, एक दो चीज मैं लेके जाऊंगा। एक तो उतनी जरूरत नहीं है जितना उनके लेने की जरूरत है, क्योंकि मैं वो चीज यहां खरीदूंगा तो कहीं दूर में बैठा हुआ एक व्यक्ति जिस जो हैव नोट्स की कैटेगरी मात्र से कुछ रोजगार मिलेगा, उसको साहस मिलेगा, उसको उत्साह मिलेगा। मैं मंदिर मंदिर में दान नहीं देता हूं, मैं रस्ते में भिखारी को तो बिल्कुल भी नहीं देता हूं, और अगर किसी को रेफरेंस मिल जाए मैं रेफरेंस देता हूं। आर्टिकल सब पढ़ना, 1980 में लिस्टेड वीकली एक मैगजीन आती थी, उसमें एक आर्टिकल आया था जेआरडी टाटा और पीएन अक्षर का। पीएन अक्षर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इफ यू गिव टू वन बैगर यू क्रिएट 10 मोर, आफ्टर रीडिंग दैट आई हैव स्टॉप्ड इट। हर चौराहे पर 10 खड़े किसको किसको दीजिए तो वो गलत है। तो मैं कहता हूं डोंट गिव ए ब्रेड टू ए पर्सन, गिव देम द आर्ट टू अर्न योर ब्रेड एवरी डे। रीड इंडिया उस काम को कर रही है। एक दिन रोटी खिला दी कब तक, लेकिन स्किल दे दी, वो स्किल से रोज आपकी रोटी खाएगा। एक भंडारा करते हैं मुंह चेहरते हमने 100 लोगों को खाना खिला, बड़ा काम किया, और जब खिला कर चले गए वहां पुतल पड़ी है, यहां ग्लास पड़ा है, यहां कुत्ते चाट रहे हैं, यहां मक्खी धूम रही है, हमने पुण्य का काम कर लिया। पुण्य का काम होता है जो दूसरे को कभी भी कष्ट ना दे। वो पुण्य का काम नहीं हो सकता किसी को कष्ट दे के आप कोई कार्य करें। तो एनवायरमेंट इतना सा भी ध्यान दे ले तो काम चले। मैं कई बार देखता हूँ अच्छी खासी गाड़ी है, मर्सिडीज है, हमारी गाड़ी की टोटल कॉस्ट के बराबर इंश्योरेंस देते होंगे, शीशा खोते भाई खाते ही क्यों, तुमने तो थूक दिया। तो खैर बहुत सी चीजें हैं तो एंडलेस बातें हैं। तो रीड इंडिया एक बहुत अच्छा काम कर रही है जो सब काम हो रहा है, और लाइब्रेरी को डाइवर्सिफाई करना होगा। उसका उदाहरण है वो एसेंचर के लोग शायद चले गए, डाइवर्सिफिकेशन का क्या लाभ होगा लाइब्रेरी को, एक छोटा सा उदाहरण। आर्थर एंडरसन का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ी कंपनी थी, दुनिया की टॉप 4 ऑडिट कंपनी थी। लेमन ब्रदर्स को गलत सलत रिपोर्ट दी, लेमन ब्रदर बैठ गए अमेरिका में 2008 में, कौन भी बैठ गई, रोना धोना मच गया, आर्थर एंडरसन भी मर गई। लेकिन एसेंचर भी उन्हीं की कंपनी थी, अलग थी, और उसने ठीक से काम किया, एसेंचर सर्वाइव की। क्यों? क्योंकि आर्थर एंडरसन ने डाइवर्सिफाई किया। एक पार्ट मर गया, दूसरा फिर भी जिंदा है। अगर लाइब्रेरी डाइवर्सिफाई करेंगी, लाइब्रेरी का डाइवर्सिफिकेशन ये है जो रीड इंडिया कर रहा है। खाली किताब पढ़ा के कुछ नहीं। बहुत सारी बातें हुई हैं। एक बहुत बड़ा आदमी है, मैम टाइम, ओके नाउ आई क्लोज इट, जस्ट लास्ट है, शुड आई कंटिन्यू और क्लोज इट, ओके। एलन ग्रांट नाम का एक बहुत बड़ा आदमी है, वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। उसने कहा ये बिगड़ क्यों गया, व्हाट इज वर्क, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज बैलेंस। उसने अल्टीमेटली ही केम बैक टू इंडिया। एक छोटा सा उदाहरण सुनाऊंगा, उसी बात को उसने दूसरे तरीके से कहा। आपने कभी देखा बिच्छू किसी को काट ले तो वो क्या होता है, उसका उछलता है, उछलता है, लहर सी चलती, मुझे एक बार काटा हुआ है, बहुत परेशानी होती है, कई बार जीवन भी चला जाता। बंदर देखे आपने कभी, बंदर को देखा होगा यहां बैठा, अब यहां बैठा, यहां बैठा, एक सेकेंड रुकता नहीं कहीं भी, देखा ना, अगर उसको बिच्छू काट ले तो क्या होगा? तो हमारा जो मन है बंदर है, इस पे एक्स्ट्रा एम्बिशन का बिच्छू काट गया इसलिए उछलते फिरते हैं, इसलिए टेंशन है। इस बिच्छू को अनावश्यक काटने मैं मानता हूं। एम्बिशन के बिना जीवन कैसे होगा और कल्पना के बिना एम्बिशन पूरी कैसे होगी? लेकिन यशपाल एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, उनकी किताब दिव्या है, वो महिला एसेंटिक उपन्यास है, बहुत सुंदर उपन्यास है। सोशल इश्यू को उसने कहा, कल्पना की उड़ान के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन कल्पना के दौर में जमीन से पैर नहीं उठने चाहिए। हम तो पैर ही उठाए फिर रहे जमीन से, जब नशा टूटेगा तो क्या होगा मुझे नहीं पता। और फिर लोग कहते हैं कि वो तो 10 मंजिल से गिरा था इसलिए मर गया, मैं तो 7 मंजिल से कूदूंगा बच जाऊंगा कि 3 मंजिल कम हूं, चाहे 10 से कूद लो चाहे 7 से कूद लो मरना तो पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ओवर एम्बिशन का, और यही वर्क लाइफ बैलेंस को खराब करता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी में रहे, बहुत किताब पढ़ी है, बहुत किताबों से डील किया है, अब बोलने को तो कितना भी बोल सकते हैं बट समाप्त भी करना होता है। अब हो क्या गया है जो रीड इंडिया कर भी रही और करना भी चाहिए? हम अभी तक हिंदुस्तान की लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज सेक्टर में थी। गांधी ने बहुत विरोध किया था कि हर चीज को ऑर्गेनाइज सेक्टर में मत ले जाना, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, सोशल कॉस्ट होगी, सोशल हार्मोनी खराब होगी। अब जूते हमारे गांव में लेते थे, हम लोग गांव के आदमी आज भी गांव जाते हैं, एंजॉय करते हैं अपने गांव को, वहीं की वजह से यहां खड़े हैं। अगर वहां नहीं होते तो यहां भी नहीं होते, यहां होते तो नकली होते, क्योंकि यहां पड़ोसी का पड़ोसी से लेना देना नहीं। मेरे गांव में तो मैं किसी कोने में खड़ा होकर पेशाब करूं तो उस कोने में चर्चा होगी, उनका लड़का पढ़ा लिखा होकर खड़ा होकर पेशाब करता है। मैं उस समाज से आया हूं और उसी में जाना पसंद करूंगा जहां हर किसी को एक दूसरे का कंसर्न है। यहां तो कहते सन्मुखी, पंजाबी में एक सब बड़ा यूज होता है, दिल्ली में सन्मुखी, हमें क्या है, कोई मर गया तो मर गया। गांव में ऐसा नहीं है, आज भी कोई मरगा पूरा गांव जब तक उसकी अंत्येष्टि नहीं होती भोजन नहीं करता, जब उसकी तेरवी होती है चाहे दुश्मन हो आके खड़ा होता है, अभी भी बचा हुआ है, वो हारमोनी बची हुई है, क्योंकि अभी सारा गांव ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आया है। हम जूती गांव में लेते थे, गांव में जूती बनती थी, हमारे गांव के पशु मरते थे उसी चमड़े से होती थी, उसका रोजगार था, हमारे पास एक साधन था, वो बाटा पे चला गया, एडिडास पे चला गया एटसेट्रा, और वो बाटा एडिडास का 10,000 का जूता पहन के अगर मैं अपने खेत में निकल जाऊं तो वो शाम को खराब हो जाएगा, लेकिन आज भी वो जूती पहन के मेरे गांव के किसान लोग खेत में घूमते हैं, जब वो सख्त हो जाती है थोड़ा सरसों का तेल डाल के रख देते हैं फिर पहनते। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बचाना पड़ेगा और लाइब्रेरी को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना पड़ेगा। हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये कॉलेज की लाइब्रेरी है, ये यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, कहीं कहीं ये पब्लिक लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट के एक बाबू जी के कब्जे में, ये जो भी आई है सोचते मैंने बाबू जी कहता हूँ, ये बड़े बाबू छोटे बाबू के कब्जे में है, उसने एक रूल बना दिया, उसके बाहर चलोगे आप सस्पेंड हो जाओगे। इसका रिजल्ट क्या निकला कि लाइब्रेरी रही ना लाइब्रेरी पढ़ने वाले। अब ये प्रयास हो रहा है रीड का, ये इसको मैं टेक्निकल लैंग्वेज में कह रहा हूं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑर्गेनाइज सेक्टर को ले जाया जा रहा है, हर गांव में ले जाएंगे, वहां केवल किताब नहीं होगी, वहां की लोकल स्किल पे ध्यान देंगे, किसी को कुछ ट्रेनिंग देंगे, किसी को कुछ देंगे, एंड एक होलिस्टिक सोसाइटी का डेवलपमेंट करेंगे, जिसके बारे में योगीराज अरविंदो ने कहा था इंटेग्रल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इज द ओनली डेवलपमेंट विच यू कैन सस्टेन दिस सोसाइटी। व्हाट इज दैट, ये मेरा हाथ बहुत मोटा हो जाए, एक बीमारी होती है एलिफेंटाइस, पैर बहुत मोटा हो जाता है, बाकी तो बुरा लगता है आदमी, लेकिन प्रोपोर्शनेटली पैर मोटे हो प्रोपोर्शनेटली वो आदमी कितना सुंदर कि क्या यार फिटनेस है, कि वो उसका इंटेग्रल डेवलपमेंट है। वो इंटेग्रल डेवलपमेंट में केवल फिजिकल डेवलपमेंट नहीं, आपका मेंटल सोशल भी है इमोशनल भी है, वो इंटेग्रल डेवलपमेंट इसी तरह से होगा जब लाइब्रेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएगी कि तभी वो ट्रांसफॉर्मेट करेगी। आज भी जगताराज जी ने बड़ा सही कहा, हैव नोट्स और जिन पे बहुत है जिन पे नहीं, अंग्रेजी अंग्रेजी आती नहीं है, थोड़ी सी आती है, काम चलाओ, तो जिन पे नहीं है और जिन पे बहुत है दोनों की एक ही समस्या है, एक भूखे मारे शुगर का मरीज है, एक बहुत ज्यादा के मारे भूखे शुगर का मरीज है। क्यों, तो हमें इसको हैव एंड हैव नोट्स, जिनके पास नॉलेज नहीं है उनका शोषण हो रहा है, जिनके पास नॉलेज है उनका भी शोषण हो रहा है। जैसे एक एक उपनिषद है हमारे यहाँ ईशो उपनिषद, तदे जति तन्ने जति तद, नहीं भूल गया, गलत हो गया, अभी अभी एक सेकेंड, हाँ अब ध्यान आएगा। वो लोग जो केवल विद्या की उपासना करते हैं दंडम तन प्रविशंति, वो अंधकार में जा रहे हैं। बोले क्यों? कि उसका अभ्यास नहीं करते। राय बहादुर है, अभी बुला लीजिए। जो अंधम तन प्रविशंति ये विद्यान उपासते, अब ठीक से याद है, वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो विद्या की उपासना करते हैं। अगली लाइन का क्यों? क्योंकि उस पर व्यवहार नहीं करते। तो वो विद्या, वो जो नॉलेज है जिस पे हम व्यवहार नहीं करते, वो अंधकार में ले जाती है। लास्ट में कह के खत्म करूंगा, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लाइब्रेरी ले जाए बिना इस देश का कल्याण नहीं हो सकता, हैव नोट्स का कल्याण नहीं हो सकता। यहाँ अनिता बहन जी हमारी जो आदिवासी ड्रेस में है, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ इस बात के लिए, नहीं कि वहां बहुत काम करते हैं, इसके लिए करता हूँ, अपनी संस्कृति में अथाह विश्वास रखती है और हमने वो छोड़ रखा है। हम पैंट पहन के खड़े हैं और वो अपनी आदिवासी ड्रेस पहन के खड़ी, उनसे कुछ सीखो और लर्न, मैं उनका सम्मान करता हूँ इस बात के लिए। आदमी को अपने में विश्वास रखना चाहिए। मेरे सिर पे चोटी है, एक दिन एक सरदार जी मेरे मित्र है, ये क्या है? मैं गुरु गोविंद सिंह जी ने दी थी, मैं क्या करूं? बोले वो कैसे? मगर वो इन मुगलों से ना लड़ते तो मेरा नाम इब्राहिम मोहम्मद होता, तो चोटी कहां होती? तो गुरु सिंह गुरु जी की देन है, मैं इसे फेंक कहां सकता हूं? सच में उनकी देन है। तो कहने का मतलब है अपनी संस्कृति में विश्वास रखिए, अपने काम में विश्वास रखिए, अपने समाज में विश्वास रखिए, तो फिर राष्ट्र के सबसे बड़े एसेट आप हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत करी जा सकती हैं, लेकिन एक बस लास्ट छोटी सी बात है। 88 में मेरे एक दोस्त थे केरल के, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ होगी, उन्होंने मुझे एर्नाकुलम में बुलाया कोचिंग। हमने कहा यार यहां आदि शंकराचार्य जी, एक वहां से 60 किलोमीटर पर अलो एक जगह है, उससे थोड़ी दूर जाएंगे कोई 8-7 किलोमीटर कालडी गांव में जहां आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। मैं यार थोड़ा ट्रैकिंग करते हैं, गांव वाँव भी देख लेंगे और वहां जाएंगे, उधर से गाड़ी। बोले ठीक है चलो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहानी नहीं है, सच्चाई है। तो जगह जगह लोग बीड़ी बना रहे थे और ग्रुप में बैठे हुए थे, अब पता नहीं वो अभी भी है कि नहीं वो चीज। एक आदमी किताब पढ़ रहा था, 10 जगह ऐसा हुआ। मैंने पूछा ये क्या? बोले यहां ऐसे ही होता है, एक आदमी किताब पढ़ता है बाकी बीड़ी बनाते। मैं इसका क्या होता कि जितना वेज उन सबको मिलता है इतना ही वेज इसको ये अपने में से देते हैं। तो क्या हो रहा था? लर्निंग अर्निंग किसके थ्रू? बुक्स के थ्रू। एक आदमी चलिए तुम किताब पढ़ो, ये कहानी पढ़ो, वो कहानी पढ़ो, सब सुन रहे हैं। जगह जगह मैंने उस चीज को देखा। मैं ये कहां से पैदा हुई? बोले तो मुझे भी नहीं पता, पहली बार देख रहा हूं, क्योंकि ट्रैकिंग कभी नहीं की। हम क्या हुआ जहाज में बैठे, दिल्ली से बंबई चले गए, हिंदुस्तान देख ले, लेकिन पता कुछ नहीं। तो रेलवे पता चलता नहीं हिंदुस्तान का था, तो हम हवाई जहाजों में उड़ करके अर्थात ये देखा वो देखा, यहां से वहां गए, बढ़िया जी अंग्रेजी अंग्रेजी बोली, पीपीटी बनाई, और हमने कहा हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं होता, जुड़ना पड़ता है। और थैंक यू सो मच आपने मेरी बात सुनी। टाइम दिया इसके लिए रीड इंडिया का, धन्यवाद। बहुत सारी मैं एक बात हमेशा कहता हूं, दो बात लास्ट में बहुत छोटी सी है, ज्यादा टाइम नहीं उसमें। गीता का एक 18वें श्लोक 18वें अध्याय का 63वां श्लोक, उसमें कहा गया, हिंदी में मैं बता देता हूं, कि जो मेरे पास अर्जुन गहरे से गहरी जानकारी थी, गंभीरतम ज्ञान में रखता, तो आपको दे दिया। और दूसरी लाइन में गुह्यतम ही थी गुहामया, जो मेरे पे गहरे से गहरा गूढ़ से गूढ़ ध्यान ज्ञान था वो तुम्हें दे दिया, जो मेरे पे था, उसने कहा। और की बात नहीं करता मैं। और दूसरी लाइन में कहा विमर्श, इस हिंदी में इस पे आप क्रिटिकली विमर्श एतद विशेषण यथेसिद्धि तथा कुरु, इस पे विशेष प्रकार से विचार करना, सुन लिया विचार करना तो आचरण, यथेसिद्धि तथा विचार करके जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना, तो जो मेरे पास अच्छे से अच्छी जानकारी अकॉर्डिंग टू मी वो आपको दे दे, इस पे आलोचना पूर्वक विचार करना, और जो अच्छा लगे उस पर आचरण करना, नहीं लगे छोड़ देना। अगली लाइन बसीर बद्र की, इन सब लोगों ने ज्ञान के दीपक जलाए हैं, अभी भी और जलेंगे। इन चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिराग समझते हैं ना दीपक, इन चिरागों को आंखों में महफूज रखना, दूर तक अंधेरी रात ही रात होगी। जिंदगी में अंधेरे बहुत आते हैं, मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर मैं भी हूँ, ना जाने फिर किस मोड़ पर मुलाकात होगी। थैंक यू।
2: मेरा नाम मयंक है, मैं स्कूल से हूँ और मैं सवाद मोहम्मदपुर के लाइब्रेरी में आता हूँ। आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, कुछ करना सीखे। देश हमें देता सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें, ऐसा हम कुछ करना सीखे। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हम सबको फलों की माया। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखे। जो अनपढ़ है उसे पढ़ाएं, जो चुप है उसे वाणी दे, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, प्यासी मिट्टी को पानी दे, मेहनत का दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे।
3: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, परीक्षा संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के ठोस कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
4: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज पाठक और आज इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि इन परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और आने वाले दिनों में इसे अमली ढांचा पहनाने के लिए विधि सम्मत उपाय भी किए जाएंगे। यानी संभव है आने वाले दिनों में हम एक नया कानून इसकी शुचिता बनाए रखने के लिए अस्तित्व में आता हुआ दिखें। इस विषय पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में राजनीतिक मामलों की वरिष्ठ विश्लेषक अदिति टंडन जी को। अदिति जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
5: धन्यवाद।
4: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाएं हुआ करती हैं उसमें कई में हमने देखा कि कुछ लापरवाहियां रही या उचित कदमों में कहीं तालमेल का अभाव दिखा और प्रश्न पत्र लीक हो गए, इसका अंजाम अच्छा नहीं निकला और अंततः सरकार ने कड़े कदम उठाने के आश्वासन दिए हैं। किन रूप में दिख रहे हैं इन्हें?
5: देखिए, जैसा कि आपने कहा खुद ही अपने रिमार्क्स में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं और इवन राज्य के स्तर पर जो एग्जामिनेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि वो आज के लीक हो रहे हैं। सिस्टम में लीकेज ऑफ एग्जामिनेशन पेपर्स होते रहे हैं, बहुत सारे हुए हैं, हर स्तर पर, राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर हुए हैं और सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की जो कवायद है वो ये बहुत सालों से चल रही है। मैं खुद ही बहुत पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री पर लिखा करती थी, तब से ये कोशिश चल रही है। मुझे आज भी याद है कि AIEEE का एग्जाम लीक हुआ था 2011 में, जिसके बाद सबसे पहले एक संजीदा मसौदा तैयार करने की बात हुई थी कि किस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को फूल प्रूफ बना सकते हैं। तो ये जो चैलेंज है मनोज जी, हर सरकार के टाइम पर आया है और हर सरकार ने अपने तरीके से इसको प्लग करने की कोशिश की है, पर हम सब जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया है जो इससे लाभान्वित होता है और इंडिविजुअल्स हैं जो बहुत वेल एंट्रेंच हो चुके हैं सिस्टम में। जो लोग एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं, पेपर लीक के डायनामिक्स को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि ये कोई मामूली अपराध नहीं है, इसके जो तार हैं बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो कल मैंने देखी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 ऑफिशियल्स को सैक किया गया है और ये भी वक्तव्य आया है सरकारी सोर्सेस के हवाले से कि उनमें से बहुत लोगों पे अब मुकदमा भी चलने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो लेटेस्ट नीट यूजी जो मेडिकल अंडर ग्रेजुएट MBBS एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, May 3 को पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें ऑब्वियस सी बात है कि ना सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स इन्वॉल्व हैं, अंदर के भी लोग कुछ इन्वॉल्व हैं। तो उसके लिए एक इस सिस्टम में ट्रस्ट को रीबिल्ड करने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम कल उठाया गया है। और आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री ने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपने वक्तव्य में कही हैं सिस्टम को फूल प्रूफ बनाने के लिए। एक तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ऐसा नहीं कि देश में है नहीं, लेकिन जो प्रधानमंत्री का मतलब है वो ये है कि डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे जो सिर्फ इस लॉ के तहत जो केसेस दर्ज होंगे उनको डे टू डे बेसिस पर सुनने के बाद 3 महीने में उनका ट्रायल खत्म करेंगे चार्जशीट फाइल होने के बाद। और हम और आप आज बात कर रहे हैं, बल्कि कुछ ही घंटों पहले जो बिल का मसौदा है, जो बिल प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था अपने वक्तव्य में परसों रात को जब उन्होंने एक वीडियो सेल्फी बना के देश के युवाओं से संपर्क करने की कोशिश की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम कैबिनेट में एक बिल लेके आने वाले हैं। जो पुराना बिल 2024 में सरकार ने पास किया है उसी को इम्प्रूव किया गया है और उसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस किए गए हैं। और जो महत्वपूर्ण बात उसमें ऐड की गई है वो ये की गई है कि स्टैट्यूटरी बैकिंग दी जाएगी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को, जो प्रधानमंत्री ने घोषित किया परसों रात को अपने संदेश में, और कल कैबिनेट ने उसको पास कर दिया। आज बिल का मसौदा भी हम सबके सामने आ गया है और पार्लियामेंट में ये बिल मंडे को पेश भी होने जा रहा है।
4: यहाँ पर थोड़ा हम श्रोताओं के हित में समझना चाहेंगे कि ये जो मसौदा बिल आया है उसमें क्या सब बातें रखी गई हैं और कैसे ये आने वाले दिनों में सुधार के कारक बनकर सामने आएंगे।
5: इस बिल का जो नाम है वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। मैंने जैसे कहा कि ये नया बिल नहीं है, 2024 का बिल है, उसमें संशोधन लाएगी सरकार। संशोधन के माध्यम से नई पनिशमेंट्स घोषित करेगी और जो नए मसौदा तैयार किया है उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग देगी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, वो ये है कि पनिशमेंट बढ़ा दी गई है। जो पुराना बिल था 2024 का उसमें ये कहा गया था कि जब कोई इंडिविजुअल पेपर लीक के मामले में लिप्त पाया जाएगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी 3 से 5 वर्ष की और उस पे जो फाइन होगा वो 10 लाख का होगा। अब उसको बदल के कहा गया है कि मिनिमम पनिशमेंट 5 साल की होगी और जो फाइन होगा वो 10 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक ले गए हैं। और सिमिलरली अगर यही क्राइम ऑर्गेनाइज तरीके से कोई कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस इन्वॉल्व्ड है, तो उसके लिए सजा के प्रावधान और भी कड़े किए गए हैं। उस केस में कहा गया है कि मिनिमम पनिशमेंट अब 7 साल होगी और मैक्सिमम जो फाइन होगा वो 10 करोड़ होगा। तो ये मेन इस बिल की प्रावधान है। ये तो हो गया कि आपने पनिशमेंट बढ़ा दी, लेकिन सिर्फ पनिशमेंट बढ़ाने से कुछ नहीं होता। हमें पता है कि केसेस लंबित रहते हैं लंबे लंबे समय तक। उसको ठीक करने के लिए इस बिल में एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान जो मुझे लगता है वो ये है कि तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये पावर्स दे दी गई हैं कि वो किसी भी कोर्ट ऑफ सेशंस को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट घोषित कर सकते हैं इस कानून के तहत दर्ज मामलों को निपटाने के लिए। और ये भी कहा गया है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स इन मामलों में होंगी वो हर दिन होंगी, डे टू डे बेसिस पर चलेगा ट्रायल, और ट्रायल 3 महीने में कंप्लीट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, उन्होंने ये भी कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एम्पावर कर दिया गया है कि जब जब ऐसा कोई बड़ा मामला आए नजर में तो इमीडिएटली स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करके उस एसटीएफ को ये मैंडेट होगा कि आपने 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है। अभी क्या हो रहा है ना, सिस्टम में मिसट्रस्ट इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि लंबित बहुत हैं केस। आप कानून लाकर सिस्टम को परिवर्तित नहीं कर सकते, आपको कानून को अमली जामा पहनाने के लिए जो सिस्टम्स चाहिए वो भी क्रिएट करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से बड़ा चैलेंज जो सरकार के सामने आएगा वो फाइनेंसिस का आएगा।
4: अच्छी बात कही है कि पिछले कानून से किस तरह ये कानून बदला हुआ होगा, अधिक सख्त होगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि एक मामला शुरू हुआ और आमतौर पर ये मामले दम तोड़ देते जब पुख्ता सबूत नहीं रखे जाते। वहां पर कैसे कह लें कि उस प्रक्रिया का ध्यान रखा जाएगा, यानी अदालतें बन गई। जैसे अभी यदि हाल का एक मामला लें तो उसमें जिस व्यक्ति को आरोपी ठहराया गया उसके विरुद्ध फिलहाल कोई सबूत नहीं मिलने से वह छूट गया, तो वहां पर क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए?
5: इसमें मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूशन की बहुत बड़ी भूमिका है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट होता है ऐसे केसेस में वो कितना लायक है, वो कितने अच्छी तरीके से आर्ग्यू कर सकता है मैटर, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो कितनी क्विकली फॉरेंसिक एविडेंस गैदर कर सकती है, कितनी जल्दी डिजिटल इम्प्रिंट्स को देख सकती है, क्योंकि लीकेजेस तो अब डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सारा का सारा एग्जाम ऑनलाइन है, तो उससे क्या है, साइबर सिक्योरिटी चैलेंज है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ये सोचना होगा कि जो स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया जाएगा ऐसे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसमें आपको एक्सपर्ट्स भी कोऑप्ट करने पड़ेंगे। अब ये जो वक्त है, ये जो जमाना है, उसमें कन्वेंशनल पुलिसिंग मेथड से आप क्रिमिनल गैंग्स को नहीं हैंडल कर सकते, आपको बहुत हाई लेवल की एक्सपर्टीज हर सेक्टर में चाहिए।
4: यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस दिशा में एनटीए क्या कर रही है और किस रूप में अपने आप को पेशेवर बनाने के लिए पेशेवर लोगों की सलाह लेने की योजना बना रही है।
5: इनफैक्ट परसों हमने देखा कि सरकार ने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से नए पोस्ट घोषित किए हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में। उन्होंने ये कहा है कि नियुक्ति के लिए अब 4 जनरल मैनेजर्स बुलाए जाएंगे। अभी क्या है, अभी जो स्ट्रक्चर है बहुत सेंट्रलाइज्ड है, जैसे सबसे ऊपर एक चेयरमैन है, उसके नीचे सीईओ है। तो लेकिन अब डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है। इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के जो प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों को भी भर्ती में शामिल किया जाएगा, उनकी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एनटीए ने एक बयान में यह भी कहा है कि ये उपाय एजेंसी के जो संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा है उसके लिए हेल्प करेंगे।
4: यानी श्रोताओं, कुल मिलाकर सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है कि हमारी जो राष्ट्रीय परीक्षाएं हैं या राज्य स्तर की परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित की जाए और इसके लिए जिस तरह तकनीक बदल रही है, तकनीक हावी हो रही है, उसके निदान के लिए जो हमारा वैधानिक ढांचा है उसमें वैसे ही दक्ष पेशेवरों की नियुक्ति की जाए। यहां पर अदिति जी, आपने कहा कि इसे वैधानिक स्वरूप दिया जाएगा, ढांचा तैयार किया जाएगा, किस रूप में परिवर्तन होता देख रही हैं आप वहां उस स्तर पर?
5: देखिए, परिवर्तन कितना हो पाएगा वो वक्त बताएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव सिग्नल इस वक्त है वो ये है कि परिवर्तन की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये जो लड़ाई है मनोज जी, ये बहुत लंबी है, और ये जो पेपर लीक का मामला है, ये सिर्फ पेपर लीक का मामला चीटिंग से लिंक करके नहीं आप देख सकते। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स के माइंड पे, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट होता है। आप सब जानते हैं कि मिडिल क्लासेस बच्चा पैदा होते ही पैसा जमा करना शुरू कर देती हैं कि देश में अच्छे एजुकेशन में या अच्छे कॉलेज में अगर बच्चे की भर्ती करानी है तो उसे अच्छे स्कूल में भेजना है, उसकी एक कॉस्ट है, अच्छी कोचिंग दिलानी है, वो कितनी एक्सपेंसिव है हम सब जानते हैं। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे को सीट मिलेगी। यही वजह होती है कि बच्चों की इमोशनल और साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी पर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स फीड करते हैं।
4: थोड़ा इसे और विस्तार देकर बताएं कि सिस्टम में बदलाव किस तरह का और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस रूप में?
5: मेरा जो व्यक्तिगत मानना है वो ये है कि एग्जामिनेशन सिस्टम तब फूल प्रूफ हो सकता है जब उसमें ग्रेडिंग हो। ये प्रामाणिक है। आप देखिए कौन कौन से एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हमारे देश में हैं, जिनमें या तो आप बिल्कुल नहीं सुनेंगे कि लीक हुए हैं या बहुत नेग्लिजिबल हुए हैं। जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम देखिए, वो कभी क्यों नहीं लीक होता?
4: बिल्कुल, बिल्कुल।
5: आप उस मसौदे को समझिए,
4: आर्म फोर्स हैं, उनके
5: आर्म फोर्सेस के लीक नहीं होते। आप और भी समझिए, जब से आपने आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ग्रेडेड बना दिया है, जैसे पहले क्या होता था कि एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता था, AIEEE। मुझे आज भी याद है 2011 में एक बहुत बड़ा पेपर लीक हुआ था जिससे बहुत सारे बच्चे बहुत त्रस्त हुए थे। उसके बाद ये सिस्टम शुरू हुआ कि किस तरीके से एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। आप जानते हैं पहले JEE मेन कंडक्ट होता है, उसमें एक पर्टिकुलर लेवल के बच्चे जो टॉप 25% आते हैं उनको मौका मिलता है IIT में जाने का। उससे होता क्या है, जब आप ग्रेडेड एग्जामिनेशन सिस्टम बनाते हैं कॉम्पिटिशन के लेवल पे, आप डिसइंसेंटिवाइज करते हैं कि बच्चे पैसा देके पेपर खरीदें। क्यों? क्योंकि पहले लेवल पर आप निकल जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। जब कोई गारंटी नहीं है तो कोई इंसेंटिव नहीं है पैसा देने का, तो आप डिमांड और सप्लाई के साइकिल को तोड़ सकते हैं ग्रेडेड सिस्टम में। सिमिलरली यूपीएससी में 3 लेवल्स हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रिलिमिनरीज होते हैं, उसके बाद मेन्स होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है। किस किस लेवल पर कोई लीकेज के लिए पैसे देगा? सो ये एक सिंपल, इजीली डूएबल एक फॉर्मूला है। जो AIPMT का एग्जाम भी पहले ग्रेडेड होता था, उस वक्त लीकेजेस मुझे लगता है कम होते थे। जब से आपने सिंगल एग्जाम बनाया है, ये जो नीट UG है, आपने जब से इसको सिंगल एग्जाम बनाया, 22 लाख बच्चे बैठते हैं। 500 सिटीज में होता है, जिसको कहते हैं बहुत बड़े स्केल पर ये एग्जाम होता है। 22 लाख बच्चों को एक साथ टेस्ट करना और उनको एक ही विंडो में MBBS की सीट देना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर हम ग्रेडेड एग्जाम करेंगे नीट UG को, जैसा कि पहले होता था 2 लेवल्स पर, पहले स्क्रीनिंग और फिर सिलेक्शन, तो शायद ये लीकेजेस का इंटेंसिटी कम होगा। ये प्रामाणिकता से मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है।
4: अच्छा, कुछ राज्यों की ओर से इस नीट परीक्षा प्रणाली को ही लेकर विरोध जताए जा रहे हैं, उस दिशा में कुछ सुधार की या एकरूपता लाने की कोई भूमिका बनती नजर आ रही है आपको?
5: बिल्कुल, देखिए तमिलनाडु ने शुरुआत से नीट यूजी का विरोध किया है। उनका ये कहना था कि 12वीं कक्षा के एग्जामिनेशन के बेसिस पे हमारी स्टेट में एक एमबीबीएस की एडमिशन होती थी और वो चलती रहनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन मॉडल स्टडी करेंगे उसमें जेईई मेन और जेई एडवांस्ड का मॉडल बहुत अच्छा है। आईआईटी के टॉप डायरेक्टर्स ने मिलकर उसे बनाया है, उसमें बहुत लेवल हुई थी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की और उसमें 12वीं के रिजल्ट्स का भी एक पोर्शन काउंट होता है। फिर वही मैं कहूंगी कि नीट यूजी बहुत बार लीक हुआ है, 3 बार तो रिसेंट हिस्ट्री में हुआ है। तमाम मॉडल्स को स्टडी करने के बाद आप ये भी देखिए कि क्या कहीं नीट यूजी के स्ट्रक्चर को ही चेंज करने की जरूरत तो नहीं है।
4: यानी श्रोताओं, एक आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता परीक्षा प्रणाली को है ऐसा लग रहा। बस यहीं पर हम श्रोताओं आपकी ओर से अदिति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
5: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे परीक्षा संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के ठोस कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
6: सुर्खियों में

हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, यू आर ऑल वेलकम इन टुडे सेशन। तो आज का जो सेशन है, मतलब अभी हमारा 12th नंबर सेशन था, जैसे देखिए अभी तक के सेशंस में हम करियर से रिलेटेड काफी कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कई स्ट्रीम्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, और मेरे हिसाब से कई स्ट्रीम्स आपको ऐसी नई भी पता चली होंगी अभी, जो शायद पहले आपको नहीं पता हूं, या कई स्ट्रीम्स के बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिली होगी जो हो सकता है आपको आगे अपना करियर बनाने में काफी हेल्पफुल रहे। आज के सेशन में हम जो बात करेंगे कि 10th के बाद जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जिसे हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कहते हैं, उनमें क्या क्या स्कोप रहता है, किस किस टाइप के डिप्लोमाज होते हैं। आप सब जानते हैं, आप जहां भी रहते हैं, जिस भी एरिया में आप हैं, तो आपके आसपास में काफी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं जो डिप्लोमा ऑफर करते हैं 10th क्लास के बाद में। ये जो 10th क्लास के बाद में डिप्लोमा होता है, आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होता है और इक्वलेंट टू 12th माना जाता है। मतलब आप देखेंगे कहीं भी 12th के बेस पे कोई भी वैकेंसी निकलती है, कुछ भी एडमिशन अगर 12th के बेस पे है तो वहां लिखा होता है क्लास 12th और 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। तो ये जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है आपका, एक तरह से 12th के इक्वलेंट होता है। तो जो लोग 10th के बाद, मतलब एक तरह से ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना है, या वो आगे कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल क्या लें, तो वो क्या करते हैं कि 10th के बाद वो डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं जो 3 ईयर का रहता है, विच इज इक्वलेंट टू क्लास 12th। अब डिप्लोमा की जो फिलोसफी थी, ये एक तरह से वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको कुछ टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड की जाए, जिस भी स्ट्रीम में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपने उस फील्ड में डिप्लोमा किया और उसके बाद आप लोअर लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली देखा गया है कि आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको जो जॉब मिलती है वो हम ये कह सकते हैं जैसे A to D।

प्राइवेट फैक्ट्रीज आप देखेंगे एनसीआर एरिया के अंदर, गुड़गावा के अंदर इतनी सारी वर्कशॉप्स है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, तो वहां पर डिप्लोमा की जॉब काफी निकलती है। ठीक है, थोड़ा सा लाइन हार्डवर्किंग होता है आपको, मतलब बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट करना रहता है और धीरे धीरे धीरे धीरे आपका लेवल इंप्रूव होता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद इट, थोड़ा ये समझें कि वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, थोड़ा सा उसकी थ्योरी के बारे में बताऊंगा आपको पहले, फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। टेंथ के बाद मैंने आपको पहले ही बताया कि टेंथ के बाद कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पेरेंटल जो हमारे फैमिली जो है वो ज्यादा फाइनेंशियली हमें सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उनका कहना ये होता है भी 2-3 सालों में आप कोई ऐसा टेक्निकल कोर्स कर लीजिए जिसके बाद उसको यूज करके आप अपना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकते हैं या कहीं पर आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पेरेंट्स का एक एम सा होता है कि 2-3 साल कुछ आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी और उसके बाद फिर आप अपना कुछ काम करना स्टार्ट कर सकें। तो वोकेशनल कोर्सेज एक तरह से करियर स्टार्ट करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट इज अर्ली बिगिनिंग। ठीक है, मतलब वही अगर हम पहले 12th करें, फिर हम बीटेक करें 4 साल की और फिर उसके बाद एमटेक करें, तो वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। वही डिप्लोमा कोर्सेज में हमें बहुत जल्दी, मतलब 3 साल का डिप्लोमा आपने किया और उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में। काफी गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी वैकेंसीज आती हैं डिप्लोमाज की, गवर्नमेंट पीएसयूज में भी काफी वैकेंसीज आती हैं। आप उसके बाद इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैं बात करूंगा आज के इस सेशन में कि उसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज ना स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं। आपने एक तरह से हैंडीक्राफ्ट में डिप्लोमा करना है, ब्यूटिशियन में डिप्लोमा करना है, ठीक है, इस तरह से मतलब बहुत स्ट्रीम है। अभी हम जनरली जो मानते हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ये 5-6 स्ट्रीम की हम बात करते हैं, बट अगर आप इनडेप्थ में जाओगे तो वोकेशनल कोर्सेज में काफी ज्यादा स्ट्रीम्स अवेलेबल होती हैं। कई जो गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर स्ट्रीम ही बहुत कम होती है, पर वो तो जैसे भी आप जहां भी अप्लाई करेंगे, बाकी काफी ज्यादा स्ट्रीम्स होती हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर, और उसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि 3 ईयर स्पेंड करने के बाद में आप कहीं ना कहीं अपना वर्क करने की स्टेज में आए, आप अपना करियर स्टार्ट कर पाए डिप्लोमा करने के बाद में। तो जैसे पॉलिटेक्निक्स को हम कहते हैं बेसिकली दैट इज वोकेशनल कोर्स, तो पहली चीज की 10th क्लास के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं और ये इक्वलेंट टू 12th क्लास होता है, तो इसका मतलब 3 साल में आपकी 12th भी हो जाती है और प्लस में आपका टेक्निकल एजुकेशन भी आप सीख जाते हैं जिस स्ट्रीम में आप अपना काम करना चाहें। इसके कई सारे किन किन स्ट्रीम में ये रहता है आप देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर में, ऑटोमोबाइल्स में, एनिमेशन में, फैशन एंड टेक्सटाइल में, मतलब इतनी स्ट्रीम्स हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर। यस, स्टिचिंग में है, ब्यूटी कल्चर में है, तो ये सारी ट्रेनिंग जो है ना वोकेशनल में आती है। आप देखते हैं जैसे रीड के ऊपर भी एक तरह से हम ये कहेंगे, जैसे आप स्टिचिंग, जैसे बहुत आप में से लेडीज ऐसी हैं जो स्टिचिंग का कोर्स करती हैं, एक टाइप से जो ब्यूटिशियन का लेवल करती हैं, तो वही चीज आप ऐसे मतलब जो यहाँ रहता है वो इसे इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, मतलब उसका आपने सीखा और उसको आपने डायरेक्ट फिर इम्प्लीमेंट किया, अपना काम स्टार्ट किया। एक होता है कि 10th के बाद आपने फॉर्मली कोर्स में एडमिशन लिया, 2 या 3 साल का आपने कोर्स किया, ठीक है, तो ये मतलब इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर चूज कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा जो लोग पॉलिटेक्निक में जाने से जो बचते हैं, या जी हम ये कहें कि काफी लोग ऐसे भी हैं आपको मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि पॉलिटेक्निक के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है बट आपको मतलब कुछ साल मेहनत करनी रहती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे लेवल से एंट्री नहीं होती, एक तरह से बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से आप किसी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं और धीरे धीरे 2-4-5 साल मेहनत करने के बाद में फिर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाते हैं, एक हैंडसम सी सैलरी आपकी हो जाती है, बट स्टार्टिंग में आपको 2-4 साल हार्डवर्क करना रहता है क्योंकि एज भी आपकी कम है ना। अभी 10th के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया, मतलब 20-21 साल के आसपास आपकी एज है, तो 20-21 ईयर्स के अंदर आपने अपना जॉब स्टार्ट किया
और 4 से 5 सालों में आप जब

0: आपकी एज 25 ईयर्स तक होती है तो आप एक ठीक ठाक सैलरी पे पहुंच जाते हैं अगर आपने स्टार्टिंग आपकी ठीक ठाक हो गई है तो, राइट। तो ये एक सारे एडवांटेजेस हैं डिप्लोमा कोर्सेज के। अब देखिए किन किन फील्ड्स में है, थोड़ा मैं टाइम जो है वो इस बात पे स्पेंड करूंगा कि किन किन फील्ड्स में है। थोड़ा सा डिप्लोमा की दिक्कत क्या है कि जैसे आप कोई हरियाणा से बिलोंग करता है, कोई आप में से उत्तराखंड से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, तो हमारे आसपास जो डिप्लोमा कॉलेजेस हैं, जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं, कुछ कॉलेजेस में उतने कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, एक स्पेसिफिक से कोर्स अवेलेबल है। एक बहुत बड़ी हमारे कॉलेजेस की प्रॉब्लम क्या रहती है कि कॉलेजेस में प्लेसमेंट की फैसिलिटी ज्यादा नहीं होती, मतलब जितने डिप्लोमा कॉलेजेस हैं वहां प्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो अगर उस चीज को थोड़ा एक तरह से ध्यान दिया जाए तो बच्चों की अगर वहीं से ही प्लेसमेंट होनी स्टार्ट हो जाए तो डिप्लोमा कोर्सेज भी काफी मार्केट में वेटेज ले के आ सकते हैं। तो जैसे पहले हम बात करेंगे कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्सेज, ठीक है, ये भी आपके डिप्लोमा के अंदर आते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। ये बेसिकली होटल से डील करते हैं या ऐसा इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, इसमें आपका डिप्लोमा होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर। अब ये फूड एंड बेवरेज सर्विस जो है, जैसे जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक जिसे हम कहते हैं, कोका कोला है, कोक है, तो आप अगर यहां से डिप्लोमा करते हैं तो उसमें जॉब आपको मिल जाती है एज ए फूड एनालिस्ट की, ठीक है, इस तरह की जॉब्स रहती हैं। डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी होता है। जैसे आप सोच के देखिए, गुड़गांव में या एनसीआर के अंदर अगर आप बेकरी का प्रोडक्ट जो बनाना सीखना चाहते हैं तो उसकी क्लासेस के काफी ज्यादा फीस चार्ज की जाती है प्राइवेट के अंदर, ठीक है, मतलब आपको बेकरी और जो कन्फेक्शनरी की आइटम्स होती है काफी ज्यादा हैवी फीस चार्ज की जाती है सिखाने के लिए, केक बनाना सिखाना और प्रोफेशनली काम करना। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का बेकरी के अंदर तो उसके बाद आप अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं। और स्मॉल स्केल पे आप देखिए आज के टाइम के अंदर जो बेकरीज हैं बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स है। देखिए ये वो चीजें हैं बेसिकली जो वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट ही यही था कि आप लो इन्वेस्टमेंट से अपना काम स्टार्ट कर सके, ठीक है। जैसे अगर आपने बेकरी में कोर्स किया हुआ है तो आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, राइट। डिप्लोमा 3 साल का होता है, जितने भी डिप्लोमाज होते हैं ना, देखिए 10th क्लास के बाद में जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो सभी 3 साल के होते हैं, ठीक है, कि जो डिप्लोमा होल्डर है वो 12th के इक्विवेलेंट है। तो 3 साल का डिप्लोमा रहता है, क्वेश्चन था जिसे मैंने आंसर किया उसका। हाँ जी, मैं बात कर रहा था बेटे बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का, तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आज के समय में केक्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा हो चुकी है, मेरे हिसाब से कोई विरला ही घर ऐसा होगा जिसमें बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है बिना केक, ठीक है, छोटे छोटे बच्चा, ठीक है, तो वो मतलब अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है या फैमिली में कोई भी फंक्शन है, एनिवर्सरी है किसी की, तो केक तो बहुत छोटा, मतलब केक तो एक आप मान के चलिए असेंशियल आइटम है, ठीक है। आप अपने आसपास में भी देखेंगे काफी बेकरीज होती हैं, तो अगर आपने प्रोफेशनली तरीके से कोर्स किया हुआ है तो आप उसको काम कर सकते हैं। डिप्लोमा की एज लिमिट जो है वो मतलब 22 से 23 साल तक है, मतलब जैसे आपकी 10th जो है ना 17 ईयर में हो जाती है, ऑलमोस्ट 17 नहीं तो 18 में हो जाती है, तो उसके बाद 4-5 साल तक आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। गैप ईयर के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होता है, एक एफिडेविट आपको देना होता है कि ये जो गैप आपका है इसमें आपने कुछ किया है। ऐसे ही फूड प्रोडक्शन में क्राफ्ट कोर्स है, आप देखिए रीड के सेंटर्स पे भी कई सेंटर्स पे ऐसी एक्टिविटी की गई है, जैसे जहां पर फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड, फूड मतलब एक तो हम खाना बनाते हैं एट अवर होम, ठीक है, एक हम प्रोफेशनल कुकिंग करते हैं। प्रोफेशनल कुकिंग मतलब हमें 50 लोगों का खाना बनाना है, 100 लोगों का खाना बनाना है। मैंने देखा है पीछे कई सेंटर्स के ऊपर, जैसे आपका एक तरह का जो कुमासपुर सेंटर है, कई सेंटर्स में इस तरह की ट्रेनिंग भी हुई है। तो जो डिप्लोमा की एज जो है वो आपकी मिनिमम 17 है, मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5 साल है, बट भाईपाल जी ने आंसर किया कि 24 साल तक आप डिप्लोमा कर सकते हैं, तो 17 से 24 साल तक एज है इसमें, ठीक है। फिर डिप्लोमा इन कुकरी है, हाउस कीपिंग है, रेस्टोरेंट एंड काउंटर सर्विस है, होटल रिसेप्शन है, हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन मैनेजमेंट है। आप देखिए जैसे अगर आपको होटल इंडस्ट्री में काम करना है तो उसमें एक ऑप्शन तो क्या रहता है कि 12th के बाद आप होटल मैनेजमेंट करिए, कोर्स करिए, ठीक है, वो आपका 3 साल का कोर्स रहता है बीएससी इन होटल मैनेजमेंट। उनका भी हम एक अलग से क्लास लेंगे कि जिसमें मैं होटल मैनेजमेंट फैशन डिजाइनिंग का भी हमने एक अलग से सेशन प्लान किया हुआ है। तो एक तरीका तो क्या रहता है कि पहले आपने ट्वेल्थ किया और ट्वेल्थ के बाद में आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, 3 साल का आपका कोर्स रहता है, BSc इन होटल मैनेजमेंट होती है। सेकेंड ऑप्शन क्या रहता है कि आपने डिप्लोमा किया 3 साल का 10th के बाद, और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो करने के बाद आप उस इंडस्ट्री में काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आपके आसपास में इतने होटल्स ओपन होते हैं, काफी रेस्टोरेंट्स हैं, तो उन रेस्टोरेंट्स में जो लोग काम करते हैं, पहले तो क्या होता था कि जो एक तरह से जो वेटर है या जो कुक है वो कोई भी एरा गेरा रख लिया जाता था, बट आज के समय में आप देखेंगे जैसे ही होटल का लेवल ज्यादा बढ़ता जाता है तो दे ऑल्सो नीड सम प्रोफेशनल पीपल, ऐसे लोग जिनको उसके बारे में पता हो। तो एक ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का भी स्कोप है और इसमें भी सोचा जा सकता है डिप्लोमा करने का अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसके बाद सेकंड आता है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारे एक तरह से जो टेक्निकल हम कहें जिसको, कि ज्यादातर बच्चे जिस लाइन में जाके डिप्लोमा करते हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे जब जहां भी हम वोकेशनल कोर्सेज या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात करेंगे तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करते हैं, ठीक है, जिसमें आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जॉब जल्दी मिल जाती है। आप देखेंगे इंडिया में इतनी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, जहां पर आपको अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको मतलब जॉब मिल जाती है इजिली। स्टार्टिंग लेवल से आपकी एंट्री होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, फिर आप धीरे धीरे अपना करियर बना सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है, सिविल इंजीनियरिंग में होता है, सिविल इंजीनियरिंग में तो गवर्नमेंट जॉब्स भी काफी निकलती हैं अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो। रेलवेज में पीछे हमने बात किया था, जैसे रेलवेज में तो डिप्लोमाज की वैकेंसी ज्यादा आती है, जैसे आपको ध्यान हो मैंने अभी पीछे एक सेशन लिया था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रेलवे, जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। तो रेलवे में जो भी हमारी टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, उन टेक्निकल पोस्ट में काफी पोस्ट ऐसी हैं जो डायरेक्ट आपसे डिप्लोमा मांगती है, तो उसमें अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मतलब ये सारी स्ट्रीम्स हैं, इनमें इंजीनियरिंग भी होती है, इन सब में आप बीटेक भी कर सकते हैं। पर अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है इसके अंदर 3-3 साल का, अब तेरी समस्या थोड़ी ये रहती है, मैं आपको बताऊं एक्चुअल रूट कोज क्या है, दिक्कत कहां पर है। दिक्कत सारी यहां पर है कि हमारे इंडिया में वोकेशनल कोर्सेज या हम डिप्लोमाज को कहें, इनको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या है कि इतना सीरियसली नहीं लेते, जो कॉलेज में टीचर्स हैं वो भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, और दूसरा बच्चे भी नॉन सीरियस एटीट्यूड इसमें रखते हैं। अगर आप किसी अच्छे पॉलिटेक्निक से 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, 3 ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है, तो जिस भी फील्ड में आप डिप्लोमा करेंगे उस फील्ड में आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाता है, अच्छा अवेयर हो जाते हैं उस फील्ड से रिलेटेड, आपको उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल नॉलेज काम करने में चाहिए उतना टेक्निकल नॉलेज आपको मिल जाता है। आप देखेंगे जैसे मैं आप एक चीज और ऐड करूं यहां पर, काफी बच्चे ऐसे हैं जो दे गो फॉर ITI, वो क्या करते हैं ITI भी करते हैं, ठीक है। अब वही चीज देखिए, जो ITI है वो डिप्लोमा से भी लो लेवल में काउंट किया जाता है, मतलब ये 3 आपकी लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर जैसे सबसे लो लेवल पे अगर हम बात करें तो ITI आता है, सेकेंड लेवल पे आपके डिप्लोमाज होते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमाज होते हैं, और थर्ड लेवल पे आपका बीटेक होता है। तो एक तरह से ये 3 ही टेक्निकल एजुकेशन की लेयर्स हैं, राइट। तो आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी करना चाहें, ठीक है, वो आप उसमें कर सकते हैं, राइट। तो जैसे इसमें ये सारी फील्ड्स में आप अपना डिप्लोमा कर सकते हैं कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, और उसके बाद अगर आप उसी में अपना करियर बनाना चाहें आगे फर्दर, आप उसमें इंजीनियरिंग करना चाहें तो फिर अपना इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं स्टेट वाइज, जैसे हरियाणा की हम बात करें चाहे हम यूपी की बात करें, तो आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, या टाउन एंड प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, या काफी डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर डिप्लोमा होल्डर की वैकेंसीज आती है। आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है वहां पे डिप्लोमा होल्डर्स की जिन्होंने इलेक्ट्रिकल्स में किया हुआ है उनकी काफी वैकेंसी आती है। आपके जो एक तरह से टाउन प्लानिंग है उनमें सिविल इंजीनियरिंग की काफी वैकेंसीज आती है अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्ट्रीम में डिप्लोमा किया है। लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण देखो जनरली क्या होता है, मैंने देखा बहुत बच्चों से मिलते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया और बाद में दे से भी डिप्लोमा करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। वो क्या होता है कि वो बाहर जॉब अप्लाई नहीं कर पाते ज्यादा, मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ वैकेंसी निकली हुई है, कॉलेज उसमें सपोर्ट नहीं करता प्लेसमेंट के अंदर, तो जिस कारण फिर वो दे फील कि डिप्लोमा का कोई ज्यादा यूज नहीं हुआ। बट काफी बच्चे ऐसे भी हैं एनसीआर एरिया में स्पेशली जो डिप्लोमा करने के बाद में एक ठीक ठाक कंपनी में जिनकी सेटलमेंट हो जाती है और एक अच्छा लेवल पे धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ और भी काफी फील्ड्स हैं जिसमें डिप्लोमा होता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में है, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड पर्सनल दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स में, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, फैशन डिजाइनिंग है, हेयर एंड स्किन केयर में। आप देखते हैं आजकल वीएलसीसी का नाम आप सबको पता ही होगा, वीएलसीसी एक तरह से आपका जो ब्यूटिशियन से रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं, ठीक है, या उसमें आपका हेयर या जो स्किन केयर के कोर्सेज रहते हैं, तो वो एक तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। बट वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये इनसे रिलेटेड डिप्लोमाज होते हैं, ब्यूटिशियन का डिप्लोमा है, इवेंट मैनेजमेंट है, ऑफिस मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, कॉस्मेटिक एंड लाइफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, कैटरिंग मैनेजमेंट है। तो मतलब इट्स अ वेरी वाइड एरिया, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा स्कोप है, काफी ज्यादा इसमें स्ट्रीम्स है, ठीक है, ज्यादा स्ट्रीम्स हैं, इसलिए आप अपना फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं अगर आपने किसी भी कोर्स में डिप्लोमा किया है। बट स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, इमीडिएट बहुत अच्छी जॉब्स नहीं है डिप्लोमा में। डिप्लोमा करने के बाद कुछ टाइम आपको मेहनत करनी रहती है तभी आप अच्छी जॉब ले सकते हैं। अब क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, देखो डिप्लोमा तो आपने कर लिया, डिप्लोमा करने के बाद क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, जैसे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको देता हूं। वेब डेवलपर का आप काम कर सकते हैं, वेब डेवलपर मतलब जो एक टाइप से जो आप लोग की जो वेबसाइट्स होते हैं जो डेवलप करते हैं, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया हुआ है और उसके बाद आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से साल डेढ़ साल का कोई कोर्स भी किया है थोड़ा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, तो वेब एज ए डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। साइट्स जो बनती है वो आप बन सकते हैं बना, जो डेटा एनालिस्ट का काम होता है, ब्यूटिशियन का आप अपना काम कर सकते हैं। आप देखो मैं काफी रीड के कई सेंटर्स पे मैं एज ए लास्ट ईयर मैंने कई सेंटर्स आपके देखे, जहां पर क्या होता है कि एक टाइप से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जाता है, ठीक है, और ब्यूटिशियन का कोर्स में भी आपके लेवल्स हैं लेवल वन लेवल टू, और जब आप एडवांस कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद मोटिवेट किया जाता है फीमेल्स को कि आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलें। कई जगह पर मैंने देखा है कि काफी सक्सेसफुल ब्यूटी पार्लर भी है, मैं जैसे रामपुर की बात करूंगा, रामपुर में मैं गया था पीछे हो गया मुझे साल सवा साल, तो वहां पर जैसे भी हमने जैसे विमेन एंटरप्रेनरशिप पे काम किया था, तो वहां पर काफी एग्जांपल्स ऐसे थे जिन्होंने रीड के सेंटर के थ्रू ब्यूटिशियन का कोर्स किया और ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद फिर उन्होंने अपना जो पार्लर ओपन किया और काफी पार्लर उसमें ऐसे हैं जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक टाइम से जो कुमासपुर में भी ऐसा चल रहा था आपका माने, मतलब काफी सेंटर्स पे ये कोर्सेज चलते हैं। तो मतलब वही चीज है कि वहां पर हम जो इनफॉर्मल कोर्स आपको दे रहे हैं वही अगर आपने 10th के बाद एक 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो एक तरह को हम कह सकते हैं ये फॉर्मल एजुकेशन है आपकी, तो ये चीजें आप सारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आजकल जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये भी एक बहुत फ्यूचर का एक तरह से हम ये कह सकते हैं इट्स अ करियर। SEO बेसिकली क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि आप देखते हैं आजकल लोग यूट्यूब के थ्रू फेसबुक के थ्रू अपने चैनल्स बनाते हैं या काफी एक्टिविटी करते हैं ताकि उनको वहां से इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो लोग साइट्स बनाते हैं और ये चाहते हैं कि जब सर्च किया जाए तो उनका साइट सबसे ऊपर आए, उनका नाम सबसे ऊपर आए। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसका एक कोर्स होता है, अगर आपने ये किया हुआ है SEO का कोर्स किया हुआ है तो फिर आप एज ए SEO पर्सन काम कर सकते हैं कंपनीज के लिए, हेयर ड्रेसर का भी काम रहता है, आपका ग्राफिक डिजाइनर है, सोशल मीडिया मैनेजर है, शेफ है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मतलब इट्स अ वेरी वाइड स्ट्रीम। मैं आपको बताऊं जो अगर हम कई और कंट्रीज को कंपेयर करें, यूएसए की बात करें, यूके की बात करें, तो वहां पे अर्ली एज से ही टेक्निकल एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि हमारे इंडिया में अलग है। हमारे इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन का भी ज्यादा रोल नहीं है, अभी इतना ज्यादा मतलब क्रेज नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काम किया गया है, थोड़ा सा उसमें कहा गया है कि वोकेशनल कोर्सेज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एकेडमिक कोर्सेज, क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज के बाद आप बहुत जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना कुछ काम कर सकते हैं। आप देखते हैं, सुनते भी होंगे कि जो मोदी जी जितनी बार भी स्पीच देते हैं, कई मैक्सिमम टाइम चाहे वो अपने मन की बात में दे चाहे कहीं भी दे, तो उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा रहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाए। मतलब हम ये ना माने कि सरकार हमें जॉब देगी, हम खुद ही अपने एंड के ऊपर जॉब क्रिएशन की बात करें, ठीक है। मतलब अभी हमारे यहाँ ट्रेंड थोड़ा रिवर्स है, हम चाहते हैं कि हमने एजुकेशन कंप्लीट किया, अपना कोर्स कर लिया, अब कोर्स करने के बाद में अब जो गवर्नमेंट है वो हमें जॉब देते, एक तरह से ये हमारे एक तरह से हम कह सकते हैं कि दैट इज साइकोलॉजी, हमारा सोच ये है। जबकि गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, तो हमें खुद कुछ भी कोर्स, कोई भी टेक्निकल स्किल लेने के बाद में हमें अपने लेवल पे मेहनत करनी चाहिए और खुद भी हम अपने पैरों पे खड़ा हों, और उसके साथ साथ हमने कुछ लोगों को अपने साथ में एम्प्लॉय भी करा, उनको भी हमने जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। तो ये एक तरह से मतलब ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, जो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एक तरह से अपना काम कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपको किसी की नौकरी करने की नीड नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिप्लोमा के बाद एक ये काम हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका डेवलपमेंट है वो काफी उसको हेल्प मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है, ऐसा नहीं कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं, एक तरह से काफी गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ठीक है। मैंने पिछले जैसे अभी अक्टूबर और सितंबर की मैंने काफी जॉब्स निकाल के हमें शो करता हूँ किन किन कंपनीज में, किन किन ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिलती है या गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है। देखिए, आप सब जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, मतलब एक तरह से जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, जिसमें सेल या आपकी स्टील की कंपनी है, भेल है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, बेल है, गेल है, IOCL है, मतलब पेट्रोलियम कंपनीज है, HPCL है, ONGC को तो सब जानते ही है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है। तो मतलब ये सारी जो है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ठीक है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिनके इंडिया में कई कई जगह पर काफी बड़े बड़े प्लांट हैं, ठीक है। अब उन प्लांट्स में क्योंकि जब टेक्निकल काम होगा तो टेक्निकल लोग चाहिए काम करने के लिए, और टेक्निकल लोग जो काम करने के लिए चाहिए होते हैं उसमें प्राइमरी दो तरह के टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं। पहले तो वो जो हायर क्वालिफिकेशंस के हैं, हायर क्वालिफिकेशंस का मतलब क्या है, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, ठीक है। सेकंड जो एक तरह से जो मिडिल लेवल जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चाहिए होते हैं, जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स को काफी एक तरह से उनकी डिमांड रहती है। तो इसमें डिप्लोमा होल्डर्स को जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी मिलती है या टेक्नीशियन की वैकेंसी मिलती है। आप देखिए, कहीं भी JEE की वैकेंसी निकलती है ना जूनियर इंजीनियर की, क्योंकि जो डिप्लोमा होल्डर एक तरह से जूनियर इंजीनियर ही है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, जहां भी JEE की वैकेंसी निकलती है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, वो बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होती है। तो वहां पर आप कर सकते हैं। हाँ सर, जो बीटेक में, हाँ, उनको अगर उसमें जाना है तो फिर गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये आपने सही यहां बताया, मैं भी इसको बाद में पूरे उसमें डिस्कस करूंगा एक तरह से, कि अगर जो बीटेक वालों को अगर इनमें जाना है, इन PSU में जाना है, तो गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही जा सकते हैं, पर डिप्लोमा होल्डर्स में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज डिप्लोमा करने के बाद ही उन्हें मिल जाती है। देखिए, ये स्ट्रीम्स है सारी, एग्रीकल्चर में भी डिप्लोमा होता है, ऑटोमोबाइल्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, तो ये अलग अलग वैकेंसीज के स्ट्रीम्स हैं। होटल मैनेजमेंट में है, मैरीन इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में है। तो मतलब ये इतनी स्ट्रीम्स में, इतने अगर आपने इन स्ट्रीम्स में डिप्लोमा किया हुआ है तो इनकी वैकेंसीज आती रहती हैं टाइम टू टाइम। ये मैंने कुछ पिछले कुछ टाइम की वैकेंसीज का मैं एक चेक कर रहा था, अभी इसमें हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी आई हुई है, राइट। तो ये सभी वैकेंसीज जो है वो अलग अलग कंपनीज में है। जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे सीएमपीडी आई है, ये अभी 29 सितंबर को वैकेंसी निकली है इसके अंदर, सीएमपीडीआई सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये इसलिए आपको मैं यहां बता रहा हूं कि इसमें जो वैकेंसीज आती है ना, अलग अलग पूरे इंडिया में पीएसयू फैली हुई है। आप देखेंगे हमारे इंडिया में काफी बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, पर इसमें थोड़ा ये रहता है कि या तो हमारा घर ऐसी जगह पे हो जो मतलब जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि जॉब तो वहां मिलेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आप में से जो लोग रामपुर के पास हैं, उत्तराखंड से जैसे हैं, तो आप जैसे उत्तराखंड से हल्द्वानी की तरफ जाएंगे तो वहां पर अब काफी बड़ा इंडस्ट्रियल वो है, मतलब एक तरह से जो लाल कुआं है, पंत नजर है, वो जो बेल्ट है, तो वहां काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हुई हैं, मतलब वहां जॉब इजिली मिल जाती है। हाँ, दैट इज द रुद्रपुर। और वहीं अगर आप इधर आए अपना एनसीआर एरिया में आते हैं, अगर आप गुड़गांव की बात करते हैं तो जैसे आपका मानेसर है, तो यहाँ पर काफी इंडस्ट्रीज है, तो बहुत इजिली डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब्स मिल जाती है। या फिर अलग अलग प्लेसेस पर, जैसे कुछ स्टेट वाइज भी वैकेंसी निकलती है। जैसे देखो आप इसमें देखेंगे जो सेकेंड पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 1661 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, ठीक है, जो फ्रेशर्स के लिए है, जिसमें फिक्स किया होता है कि आपका ऑफिस एंड मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वैकेंसीज काफी होती हैं। थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए, आपके पास में लिंक्स के सोर्सेज होने चाहिए भी, कहां से आपको पता चल पाए कि किस किस फील्ड की वैकेंसी कहां से आई है। आजकल तो इंटरनेट के थ्रू आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और ऐड करूं कि आप में से जो लोग ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर हैं या कोई आगे डिप्लोमा करने की अभी सोच रहा है, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ जो भी आपने 3 साल का जिस भी स्ट्रीम में आपने डिप्लोमा किया, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ आप थोड़ा सा एजुकेशन अपने आप को इंटरनेट नो हाउ, जिसे हम कहते हैं कि अभी अगर हम इंटरनेट नो हाउ की बात करें तो हमें सभी को फेसबुक यूट्यूब तो सबको पता है, सभी लोग उसे यूज भी करते हैं, ठीक है, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गूगल अलर्ट यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, वैसे तो काफी एक तरह से साइट्स भी हैं जो आपको एक टाइप से जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स निकलती हैं वो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर भी अगर आपको एक स्पेसिफिक जॉब चाहिए, जैसे आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा होल्डर से रिलेटेड आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, तो आपने गूगल अलर्ट के अंदर जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा डाल दिया, तो उसमें क्या रहता है कि एवरी डे पूरे इंडिया के अंदर किसी भी पेपर में, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, गूगल पे किसी वेबसाइट के ऊपर अगर डिप्लोमा के बाद की जॉब निकली है ना, तो उसका एक तरह से आपको लिंक मिल जाता है, तो वहां से आप सर्च आउट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वैकेंसीज काफी ज्यादा है, बस ये है कि थोड़ा सा एरिया फर्क पड़ जाता है कि आप अगर एनसीआर में रह रहे हैं और आपकी जॉब निकली हुई है वो आपकी बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, कहीं महाराष्ट्र में है, तो हम अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज हम अगर डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें तो 12th, 10th के बाद में 3 साल कोर्स करने के बाद जॉब लेना कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है, और एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसीज रहती है। पर एक प्रॉब्लम और भी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसीज है के बाद एग्जाम होता है आपका, एग्जाम मतलब दे टेक द टेस्ट, और टेस्ट में जो आता है वो बेसिकली क्या रहता है कि एक तो आपका जो भी जिस फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उस फील्ड के बारे में नॉलेज आपको अच्छी हो, आपने अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रखी हो, और उसके साथ साथ जो सेकेंड पेपर आपका रहता है उसमें जनरल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जो बेसिक आपके सब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत तैयार करना रहता है, जो आपको हेल्प करते हैं जॉब लेने के लिए। ये और भी ये आप देखेंगे सभी अक्टूबर मंथ की वैकेंसीज है। आप देखिए ये 7th अक्टूबर, 6th अक्टूबर, 5 अक्टूबर, मतलब ये सारी वैकेंसीज जो है ये बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, ठीक है। कहीं पर 500 वैकेंसीज है, कहीं 42 है, कहीं 21 है, कहीं 36 है, राइट। किसी में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, कोई फ्रेशर के लिए है, ठीक है। और जनरली आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस मैंने लिखी हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपकी पीएसयू या गवर्नमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन, मैंने किसी प्राइवेट का नाम नहीं लिखा इसके अंदर, ये बताने के लिए आपको कि गवर्नमेंट में भी डिप्लोमाज की काफी ज्यादा वैकेंसी आती है, बशर्ते अगर हम उसमें थोड़ा सा अवेयर हो उनके बारे में, ठीक है। और अवेयर होने के साथ साथ हम अप्लाई भी करें, क्योंकि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो अप्लाई नहीं करते जॉब्स के लिए। आप मतलब मैं हम कई बच्चों को जानते हैं कि उनका एम तो है भी मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बट उनसे पूछे अगर भाई कहाँ का फॉर्म अप्लाई किया, कहता जी मैंने तो कभी फॉर्म अप्लाई नहीं किया। फिर फॉर्म अप्लाई करता है तो वो तैयारी नहीं करता। तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि अवेयरनेस होना भी, एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म भी, उसके बाद प्रिपरेशन करना भी, मतलब एवरीथिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब ये तो मैंने आपके ऑलमोस्ट सारी बातें आपको समझा दी कि क्या क्या डिप्लोमा में रहता है, और कुछ चीजें और भी हैं भी, जैसे जो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो उसमें आप प्रोफेशनल स्किल साथ साथ सीख जाते हैं, ठीक है भाई। आपने जो टेक्निकल जो भी आपने ट्रेनिंग किया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया, ठीक है, और वो टेक्निकल स्किल आपने सीख लिया तो जॉब लेने में आसानी रहती है। स्किल्ड एम्प्लॉयज की डिमांड हमेशा से रही है इंडिया में स्पेशली, और आप देखेंगे भी आने वाले टाइम में तो स्कोप और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे आपने सुना होगा अभी कोविड के बाद में, जैसे कोरोना का अटैक हुआ कोविड-19 के बाद में, वर्ल्ड वाइड चाइना को माना गया भी इसके पीछे, जो एक तरह से चाइना वाज रेस्पॉन्सिबल। और स्टार्टिंग में तो यू हैव हर्ड इनटू द न्यूज, जैसे काफी वर्ल्ड में काफी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम चाइना में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहां से हम अपनी इंडस्ट्रीज को चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे जिसमें जापान था, यूएसए था, फ्रांस था, तो वो मतलब वो चाइना से दे आर नॉट हैप्पी विद चाइना, ठीक है। अब देखिए वहां से इंडस्ट्री अगर निकल के इंडिया में आती है, आप देखेंगे इंडिया ने उसमें फिर काफी इनिशिएटिव लिया और एक तरह से ऑफर भी किया भी आप इंडस्ट्रीज इंडिया में लगाइए, यहाँ पर आपको ये टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, ये बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये काफी ज्यादा बातें चल रही हैं। तो अगर इतनी इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी तो आप सोच के देखिए भी उनमें काम करने वाले लोग भी तो चाहिए ना, और काम करने वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादातर टेक्निकल लोगों की डिमांड होती है, और टेक्निकल लोगों में तो फिर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वही आपके सामने रहते हैं, ठीक है। तो ये एक हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छा साइन है कि अगर जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी, जितना प्रोडक्शन एक्टिविटी यहां पर होगा उतना ही डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब मिलेगी, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। दूसरा एक बहुत बड़ी बात और भी है कि जैसे आपके मेट्रो कॉरपोरेशन है, मैं आपको बताता हूं जो DMRC है, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों एम्प्लॉयज ऐसे हैं DMRC के अंदर जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे काम करते हैं DMRC में। और उसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ओनली उसके अंदर क्या कहा गया है कि आपने डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में 10th के बाद। काफी वैकेंसीज निकलती है। आप तो देखो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेशन आ चुका है, क्योंकि DMRC ऑलरेडी काफी रिक्रूटमेंट कर चुका है, बट स्टार्टिंग में जब नया नया ये कॉरपोरेशन आपका बना था उसमें जब नई नई वैकेंसीज निकलनी स्टार्ट हुई थी तो बहुत बच्चे ऐसे थे जो DMRC के अंदर लग गए, जिन्होंने थोड़ा बहुत मेहनत किया था और डिप्लोमाज किए हुए थे। और ऐसी अब हर स्टेट में आगे जो मेट्रो एक्सपेंड हो रही है तो जितनी ज्यादा एक्सपेंड होगी उतना ही जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं लोगों के लिए। फिर एक और बहुत बड़ी चीज है कि डिप्लोमा करने के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहें तो उसमें भी आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है, ठीक है। मतलब क्या है कि देखो वैसे तो बीटेक आपकी 4 साल की होती है, ठीक है, अगर आप 12th के बाद करते हैं तो, अगर आपने 12th, 10th के बाद डिप्लोमा किया है 3 साल का तो उसमें भी आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, तो 1 साल आपका बच जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो इक्वलेंटी हो जाता है, किसी बच्चे ने 10th क्लास के बाद में पहले डिप्लोमा किया फिर उसने बीटेक में एडमिशन लिया, या आपने पहले ट्वेल्थ किया फिर आपने बीटेक में एडमिशन लिया, तो टोटल टाइम स्पेंडिंग जो है वो ऑलमोस्ट इक्वली रहेगी आपकी, वो आपका एक साल वेस्ट नहीं जाएगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। हर स्टेट इस तरह का लेटरल एंट्री का अपना अलग अलग एग्जाम लेता है, जैसे हरियाणा के जो बच्चे हैं वो लीड का एग्जाम देते हैं, LEET, लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है आपका, लीड का पेपर होता है, हर स्टेट का एग्जाम होता है, उसमें जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो वो अपना एक एक टाइप से जो लेटरल एंट्री का एग्जाम लेते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होता है कि आपको वो पेपर पास करना होता है डिप्लोमा के बाद में, और फिर आपका डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा स्कोप हो जाता है, भी आपको टेक्निकल नॉलेज भी आपने सीखा तीन साल के अंदर, अगर आपका उस फील्ड में करियर बनाने का इंटरेस्ट है, हाई से हम लीड कहते हैं लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, तो अगर आप उस फील्ड में आगे फ्यूचर में और टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप उसी फील्ड के अंदर बीटेक कर सकते हैं, और आपका कोई ईयर भी वेस्ट नहीं होगा, तो सेम उसमें आप अपनी इंजीनियरिंग करके अपना करियर आगे लेके जा सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले डिप्लोमा करते हैं, फिर साल दो साल जॉब करते हैं, ठीक है, उसके बाद दे टेक एडमिशन इन द बीटेक, राइट। तो ये एक अच्छी आपके लिए वो हो जाता है, आपकी हायर क्वालिफिकेशन भी हो गया और आपको इंडस्ट्री के बारे में पता भी चला, आपने इंडस्ट्री में काम भी किया, टेक्निकल एक्सपीरियंस भी आपका हुआ, तो ये भी एक स्कोप रहता है। और हर स्टेट में पेपर होता है, मैंने तो हरियाणा का आपको बताया जैसे लीट का पेपर है, ऐसे ही DTE केरला के अंदर होता है, वो मतलब एग्जाम का नाम अलग अलग है, बाकी पेपर जो है एग्जाम जो है वो हर स्टेट में होता है लेटरल एंट्री के लिए, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेटरल एंट्री की स्कीम के अंदर, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन था, मैंने काफी चीजें आपको बताई इससे रिलेटेड, या एक दो चीजें मैं और भी ऐड करूंगा कि जैसे मैं PSU की बात कर रहा था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, जिसमें आपको मैंने ONGC गेल इन सब के बारे में बताया। देखिए उनमें क्या होता है ONGC में गेल में कि अगर आपको वैसे जॉब लेनी है इंजीनियर की तो बीटेक आप करते हैं, तो बीटेक के बाद फिर आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है। और वही अगर आपको जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अप्लाई करनी है तो जूनियर इंजीनियर की काफी वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें आपको एक आपके फील्ड से रिलेटेड टेक्निकल नो हाउ से रिलेटेड आपने एग्जाम देना है, और उसके बाद फिर आपको अपना जो थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग का पेपर रहता है तो वो आप उसे दे सकते हैं। तो स्कोप इज वेरी वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड कंपेयर करते हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज को काफी वेटेज दिया जाता है। और मैं एक चीज और यहाँ पर ऐड करूं कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप बाहर भी जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो उन लोगों की है जो टेक्निकल काम कर सके, मतलब टेक्निकल मतलब जिसको हम लोअर टेक्निकल कहते हैं, जैसे आप अपने यहाँ पर जो फिल्टर का काम होता है, ठीक है, मतलब ऐसे काम, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में वहां के जो लोग हैं वो मतलब दे यू कैन से दैट दे हैव सो मच मनी, या हम ये कह सकते हैं कि वो छोटे काम नहीं करते, जबकि इंडिया से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी फील्ड के अंदर तो आप फॉरेन में जाके भी अपना एक ऐसे करियर स्टार्ट कर सकते हैं उसमें, और आपको वहां पे जॉब्स मिल जाती है, ठीक है। तो मतलब स्कोप इज वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव लेके आपने इस चीज को करना है, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको अपनी ओर से बताया है। इसके अंदर एक चीज और ऐड करूं, जैसे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होता है, अब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लोग डिप्लोमा करते हैं तो उसका भी काफी स्कोप है। अब देखिए आज इतनी इंडस्ट्रीज ओपन हो चुकी है फूड जो फूड से एसोसिएटेड है, तो मतलब स्कोप काफी रहता है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आपको इसमें काम करने की जरूरत रहती है, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, बाकी आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करें।
1: हाँ दिनेश जी, इसमें है ना दो तीन पॉइंट ऐड था। टेंथ के पास, टेंथ पास करके जैसे कि फुटवेयर टेक्नोलॉजी जैसे कि आगरा में है, टेंथ पास
0: जी, जी सर जी बिल्कुल सर।
1: और आप जिस तरह ज्वेलरी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जैसे पुणे में है, आपको ऑलरेडी चेन्नई में भी है, जैसे ज्वेलरी पर भी आपको डिप्लोमा करना चाहता है उसका भी है। प्लस सबसे बड़ी बात है, शायद किसी को पता हो या नहीं भी हो, जो हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है टेंथ पास करके 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होती है, वो जो टेंथ पास करके भी लड़के अप्लाई करते हैं, प्लस टू करके भी, जैसे इंडो डेनिश टूल रूम और इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और डेनमार्क के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, जमशेदपुर में है, और एक है इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और जर्मनी के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, वो है इंदौर में। ये दोनों टेंथ पास करके या प्लस टू पास आउट करके, टेंथ पास करके जाएंगे तो 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, प्लस टू करके जाएंगे तो 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसके लिमिटेड सीट होते हैं। तो ये लोग अप्रैल में भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका मेन एग्जाम होता है और जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है।
0: तो मतलब ये सारा बात ये है कि वोकेशनल कोर्सेज में स्कोप काफी है, ठीक है, वो एक थोड़ा आप स्कोप है, मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत छोटी एज में आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अपना आपने जॉब स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उसमें यू कैन गेट प्रमोशंस, और अगर आप अपना भी काम करना चाहें तो इसमें लो इन्वेस्टमेंट पे अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं।
1: कंट्री में भी सर आपने बताया भी, जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, गोल्फ कंट्री में भी काफी डिमांड होती है डिप्लोमा के,
0: गोल्फ कंट्री में बहुत डिमांड,
1: बहुत बहुत सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि वो स्टेट वाइज जो एनटीपीसी है, जैसे कि स्टेट वाइज जहाँ पे इनकी ये मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस होती है, इंटरनल वो लोग शायद आईटीआई वालों को या अदरवाइज लेकर के डिप्लोमा वाले को भी वो लोग हायर करते हैं क्या, जैसे जैसे उनका ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम नहीं होकर के जो कंडक्ट जो जहाँ पे इनकी ऑफिस है, जैसे कि चित्रकूट में उसका एनटीपीसी का है, फिर उसके बाद यहाँ दादरी में एनटीपीसी, तो ये लोग इंटरनल भी शायद निकालते हैं।
0: क्या है सर कि वैसे तो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसमें एनटीपीसी भी है, नेशनल थर्मल पावर है, तो इनका तो प्रोसेस ये होता है सर कि ये अपनी दो तरह की जॉब्स निकालते हैं, एक तो सर जो परमानेंट बेसिस पे निकालते हैं और सेकंड वो जो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं। जो तो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं वो तो ये इंटरनल सोर्सेज से या कहीं से भी कर लेते हैं, बट जो परमानेंट पोस्ट निकालेंगे ना, परमानेंट पोस्ट में तो इनको नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है और उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, मतलब जो एक तरह से जो परमानेंट पोस्ट रहती है वहां तो एक प्रॉपर प्रोसेस से ही वो काम चलता है, उसका टेस्ट भी लेते हैं ये लोग, सारी चीजें करते हैं। हाँ ये है कि कई बार कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो आपकी एडवोक इन नेचर होती है, 1 साल की 2 साल की या जो टेम्परेरी पोस्ट होती है, तो वहां तो ये इंटरनल सोर्सेज से कहीं से भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं, बट एक्चुअल जो जो आपके परमानेंट जॉब है जिसको हम जूनियर इंजीनियर की जॉब कहते हैं इसके अंदर, तो वो तो एक प्रॉपर प्रोसेस से निकालते हैं।
1: बहुत सारा स्कोप है, टेंथ पास करने के बाद, आईटीआई करने के बाद या पॉलिटेक्निक, बहुत सारे स्कोप है। थैंक यू दिनेश जी।

नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर निधि गुलाटी रीड इंडिया लखनऊ से आपके साथ आपके लिए कुछ सिखाने और सीखने के लिए ये कार्यक्रम आओ सीखने के अंतर्गत आप तक लाया गया है। मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए। आज का मेरा विषय है लू लगनाई, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हीट स्ट्रोक। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाहर बहुत गर्मी हो रही है, लू चल रही है। लू क्या होता है? लू गर्म हवाएं होती है, और हम अगर ज़्यादा देर गर्मी में या धूप में रहते हैं तो हमें लू लग जाती है, जिसे हम हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी लू लगने के क्या लक्षण होते हैं और कैसे बचाव कर सकते हो और क्या उपाय होते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि लू लगना क्या होता है या हीट स्ट्रोक क्या होता है। हीट स्ट्रोक अत्यधिक टेम्परेचर यानी कि तापमान में लंबे समय तक रहने के कारण होता है, और इसे तत्काल इलाज की जरूरत होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, गर्मी का मौसम साल का सबसे कठिन मौसम होता है। हालांकि हर कोई अपने आप को इसके लिए तैयार करता है, लेकिन ये गर्मी तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर भी आती है। सबसे प्रमुख हीट स्ट्रोक होता है, जिसको हम लू लगना कहते हैं। जब कोई इंसान ज्यादा देर तक धूप में या गर्मी में रहता है, उसकी शरीर का जो तापमान होता है 102 या 104 डिग्री जब पहुंच जाता है, तो इसे हीट स्ट्रोक का लक्षण माना जाता है। हीट स्ट्रोक आमतौर पे तब होता है जब शरीर में पानी और नमक की मात्रा कम हो जाती है और पसीना आना भी बंद हो जाता है। सामान्य लक्षणों में घबराहट, बेचैनी, उल्टी और बेहोशी का लक्षण दिखते हैं। बेहोशी को पहला लक्षण माना जा सकता है। आइए अब जानते हैं इसके कुछ और लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, सिर घूमना, गर्मी के बावजूद पसीने ना आना, लाल गरम और सूखी त्वचा होना, मांसपेशियों में कमजोरी होना, उल्टी होना, धड़कनों का तेज होना, सांस लेने में तकलीफ, घबराहट और बेचैनी होना। श्रोताओं, अब जानते हैं कि हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखने पे हमें क्या करना चाहिए। हीट स्ट्रोक से प्रभावित व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। जब तक डॉक्टर नहीं मिलता है, तब तक उसको ठंडी जगह में यानी कि पंखे के नीचे रखना चाहिए। पैरों को ऊपर करके रखें। यदि इंसान होश में है तो उसे पानी पिलाएं। धीरे धीरे शरीर को बर्फ के या ठंडे पानी की पट्टियां करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि हीट स्ट्रोक से बचाव के उपाय क्या होते हैं। अगर आप कोई व्यायाम कर रहे हैं तो उससे पहले और उसके बाद पानी पिए। हमें कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास या 2 लीटर पानी पीना चाहिए। गर्मियों में अगर ज्यादा पानी पियेंगे तो अच्छी बात होती है। ठंडे पानी से नहाएं, हल्का व पौष्टिक खाना खाएं, जैसे कि ककड़ी, तरबूज, नारियल, खरबूजा, बेल को अपने आहार में शामिल करें। खूब सारा पानी पिएं, हल्के रंग के और ढीले सूती कपड़े पहने। ज्यादा देर तक बाहर रहने पर शरीर और कपड़ों पे पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं आप। छाता या टोपी का उपयोग करें। दिन में जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है तो हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी कि हमें कोई काम नहीं करना चाहिए बाहर जाकर, जब तक वो जरूरी ना हो। बच्चों को और बूढ़ों को अगर कोई डिहाइड्रेशन क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हो तो इसका ध्यान रखना चाहिए। जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हमें ORS का घोल देना चाहिए। अगर वो ORS का घोल आपके पास नहीं है तो नमक और चीनी का घोल बनाकर बच्चों को और बूढ़ों को और आप भी ले सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। श्रोताओं, हमें गर्मियों में अपने आहार का ध्यान रखना चाहिए। हल्का खाना चाहिए और पौष्टिक खाना चाहिए और पानी पीना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप इस गर्मियों में
अपना, अपने परिवार का, उन सब का स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: भगवान ने अगर बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे और बड़ा करके तुम सामने वाले को घूरते रहो।
1: क्या क्या कह रहे हो तुम?
0: मैं कह रहा हूँ कि अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों को थोड़ा छोटा कीजिए और प्रोग्राम शुरू कीजिए।
1: राइट, फिर आज किस बारे में जानना चाहोगे तुम बबलू?
0: ये आंखें, उफ युम्मा।
2: खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, मगर आंखें खोलते ही देखने की प्रक्रिया जितनी सरल प्रतीत होती है उतनी है नहीं। इसके पीछे विज्ञान है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट या अपवर्तित होकर कॉर्निया पर पड़ती है। कॉर्निया के बाद लाइट एंटीरियर चेंबर से होकर गुजरती है, जिसमें एक तरल पदार्थ होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये तरल पदार्थ इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर पैदा करता है, जिससे आई बॉल्स की शेप बनी रहती है। कॉर्निया के बाद लाइट आयरिस पर पड़ती है, जो लाइट की तीव्रता के हिसाब से कम या ज्यादा खुलता है। कैमरे का अपर्चर कुछ ऐसे ही काम करता है। अगर रोशनी ज्यादा होती है तो कैमरे का अपर्चर और हमारी आंख का आयरिस कुछ बंद हो जाता है, और कम रोशनी में अपर्चर और आयरिस ज्यादा खुल जाते हैं। आयरिस से होकर लाइट प्यूपिल और लेंस से होती हुई रेटिना पर पड़ती है, और इससे रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी होती है। इन इमेजेस को आंखों से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है ऑप्टिक नर्व्स। ब्रेन में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनकी मदद से रेटिना पर बनने वाले इमेज को ब्रेन पढ़ता है। ब्रेन इमेज को सीधा करके देखता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि आंखें सामने देखते वक्त अपने दोनों तरफ भी देख पाती हैं, और इसे आंखों का फील्ड ऑफ विजन कहते हैं। अक्सर जब आंखों के देखने की क्षमता कम हो जाती है तब फील्ड विजन कम हो जाता है। कई बार आंखों में डिफेक्ट आ जाते हैं, जिससे देखने की प्रक्रिया में मुश्किल होने लगती है। कभी लेंस में दिक्कत आने से रेटिना तक रोशनी पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। कई बार इमेज रेटिना पर ना बनकर उसके आगे और पीछे बनने लगती है, जिससे हमें चीजें साफ नहीं दिखती और चश्मा लगवाना पड़ता है। कई बार आंखों के इन्फेक्शन या आंख में चोट लगने से भी हमारी दृष्टि पर असर पड़ता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। इस बीमारी में धीमी लाइट में और अंधेरे में दिखना बहुत कम हो जाता है। इसके इलाज के लिए जरूरी है कि मरीज को विटामिन ए से भरपूर भोजन दिया जाए। इन बीमारियों का इलाज तो हो सकता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें लापरवाही करने से आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। वजह कुछ भी हो, पर आंखों की बीमारी यदि गंभीरता से ना ली जाए तो नतीजा एक ही निकलता है, दृष्टिहीनता। गंभीरता से ना लेने की एक बहुत बड़ी वजह होती है इन बीमारियों का धीरे धीरे बढ़ना।
1: ये तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एक चमत्कारिक शक्ति है सेल रिपेयर करने की, यानी किसी भी अंग द्वारा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिपेयर या रिप्लेस करने की क्षमता। मगर आंखों की स्थिति जरा भिन्न है। इसके लेंस की कोशिकाओं को ना तो रिपेयर किया जा सकता है और ना ही रिप्लेस। इसलिए अगर लेंस को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो यह धीरे धीरे जमा होकर बीमारी का रूप धारण कर लेता है। यह बीमारी है कैटरैक्ट, यानी मोतियाबिंद। इस बीमारी में आंखों से धुंधला दिखाई देता है। आइए देखते हैं यह बीमारी होती कैसे।
2: मोतियाबिंद की बीमारी में लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है और लेंस क्लाउडी यानी कि धुंधला होता जाता है। इसकी वजह से लेंस से होकर जाने वाली रोशनी रेटिना तक पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस के प्रोटीन में बदलाव आता है, जो लेंस को अपारदर्शी बना देता है। इसे अंडे के उबलने और ऑमलेट के बनने जैसी साधारण प्रक्रिया से समझा जा सकता है। अंडे की सफेद जर्दी प्रोटीन से बनी होती है और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जब अंडे को उबाला जाता है या पकाया जाता है तो अंडे के प्रोटीन में बदलाव आ जाता है जिससे वो अपारदर्शी हो जाता है। कैटरेक्ट में भी लेंस के प्रोटीन में आया बदलाव उसे अपारदर्शी बना देता है। कैटरेक्ट के बहुत अधिक बढ़ जाने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। मोतियाबिंद के सामान्य लक्षण हैं धुंधला दिखना, और ये धुंधलापन बीमारी के साथ बढ़ता जाता है। अगर इलाज न किया जाए तो पूरी तरह दिखना बंद भी हो सकता है। रात में रोशनी वाली जगह पर चमकीले स्पॉट्स दिखना, चश्मे के नंबर में बार बार बदलाव आना और डबल विजन यानी हर चीज दो दिखना। बढ़ती उम्र के साथ होने वाला मोतिया सिनाइल कैटरेक्ट कहलाता है। इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति में लेंस के प्रोटीन में बदलाव के कारण प्रोटीन के क्लंप यानी थक्के रेटिना तक पहुंचने वाली इमेज की शार्पनेस को कम कर देते हैं। प्रोटीन के क्लंप के कारण लेंस की पारदर्शिता खत्म हो जाती है जिससे रेटिना तक समुचित मात्रा में रोशनी नहीं पहुंच पाती। दूसरी स्थिति में पूरे लेंस की पारदर्शिता धीरे धीरे खत्म होने लगती है जिससे दृष्टि में धुंधलापन आने लगता है। जैसे जैसे लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है वैसे वैसे धुंधलापन बढ़ता जाता है। जब आंख की किसी दूसरी बीमारी की वजह से आंख के लेंस में होने वाले इन्फेक्शन से कैटरेक्ट होता है तो इसे सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। अगर कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद हुए इन्फेक्शन से दोबारा कैटरेक्ट हो जाता है तो इसे भी सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में किसी चोट जैसे फायर क्रैकर के स्प्लिंटर्स या चिंगारियों से हुआ घाव और बिजली के झटकों से होने वाले कैटरेक्ट को ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में गहरी चोट जो कॉर्निया से होते हुए लेंस को भी नुकसान पहुंचा दे उससे ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट हो सकता है।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं और कुहू आपका स्वागत करते हैं। ये आंखें उफ यम्मा। अरे कोकिला, तुम मुझे दो क्यों दिख रही हो?
1: पता नहीं एपिसोड के अंत तक दिखूंगी भी कि नहीं। जाओ जाकर अपना इलाज करा लो, वरना आंखों की एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें शुरुआत में इलाज ना कराने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है।
0: वो तो मैं करा लूंगा, मगर आपने तो सिर्फ बीमारी के बारे में बताकर छोड़ दिया मैडम कुहू MBBS। इलाज नहीं है क्या?
1: बबलू, मैं इलाज के बारे में ही बताने जा रही थी। जानते हैं फ्रेंड्स, पुराने जमाने में मोतियाबिंद का इलाज करने के लिए उसके पूरे पकने का इंतजार करते थे, मगर आज किसी भी स्टेज में उसका इलाज किया जा सकता है। असल में इसे तीन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। शुरुआती दौर में इसे ट्रेस कैटरेक्ट कहते हैं, फिर माइल्ड या मॉडरेट, और जब मोतियाबिंद पूर्ण रूप से बढ़ जाता है तो उसे पक्का मोतिया कहते हैं।
0: अब इलाज की बात करें।
2: मोतियाबिंद का डिटेक्शन व्यापक जांच के बाद होता है। इनमें आते हैं विजुअल एक्यूटी टेस्ट, डायलेटेड आई एग्जाम और अल्ट्रासाउंड। विजुअल एक्यूटी टेस्ट में एक चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट के दौरान व्यक्ति 6 मीटर की दूरी से चार्ट के अक्षरों को पढ़ता है। इसकी रीडिंग फ्रैक्शन में लेते हैं। फ्रैक्शंस के आधार पर आंखों के पावर का निर्धारण ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है। ये टेस्ट आंखों की दूसरी बीमारियों की जांच के लिए भी किया जाता है।
3: जांच के दौरान डायलेशन में आंखों में ऐसे आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं जो प्यूपिल को बड़ा कर देते हैं। इससे प्यूपिल के पीछे का हिस्सा जांचना आसान हो जाता है। पिछला हिस्सा देखने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप नामक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इससे किसी भी प्रकार की आंख की बीमारी पकड़ में आ जाती है।
4: ओपेक लेंस को सर्जिकली रिमूव करके ही कैटरेक्ट का पूरा इलाज किया जाता है। कैटरेक्ट के शुरुआती दिनों में डॉक्टर कई बार चश्मा लगाने की सलाह देते हैं। इसके पश्चात सर्जरी की जाती है, जिसके जरिए लेंस को हटाकर उसकी जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। ये सर्जरी दो तरह की होती है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी और फैको इबल्सिफिकेशन सर्जरी।
3: एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी में कॉर्निया में चीरा लगाकर खराब हो चुके लेंस को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद निकाले गए लेंस की जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। जहां लेंस नहीं लगाया जाता, वहां मरीज को सर्जरी के बाद चश्मा लगाया जाता है। दूसरी सर्जरी है फैको इमल्सिफिकेशन सर्जरी, जो एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है। इसमें कॉर्निया में एक बहुत छोटा सा सुराख किया जाता है, फिर इस सुराख के जरिए अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रवाहित की जाती हैं। इन अल्ट्रासाउंड वेव्स के कारण मोतिया यानी कि अपारदर्शी लेंस मुलायम होकर टूट जाता है और उस जगह पर कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट की मदद से लेंस लगाने से पहले लेंस का पावर और साइज तय किया जाता है। कैटरेक्ट सर्जरी आजकल लगभग आधे घंटे का मामूली ऑपरेशन है, जिसमें मरीज को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है।

0: जिसमें अगर एक बार आंखों की रोशनी चली गई तो फिर उसे वापस नहीं लाया जा सकता। ये बीमारी है ग्लॉकोमा। आइए देखते हैं ये बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है।
1: ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद, ये आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाने से ऑप्टिक नर्व्स के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है। ऑप्टिक नर्व ही इमेज को आंखों से ब्रेन तक पहुंचाती है। दरअसल कॉर्निया और लेंस के बीच एक्वस ह्यूमर नामक एक तरल पदार्थ मौजूद होता है जो कि आई बॉल का आकार मेंटेन रखने के लिए एक दबाव आंखों में पैदा करता है जिसे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर कहते हैं। प्राकृतिक रूप से एक्वस ह्यूमर आंख के एक हिस्से में लगातार बनते रहते हैं और दूसरे हिस्से से लगातार निकलते भी रहते हैं। इससे आई प्रेशर संतुलित रहता है, लेकिन कभी कभी एक्वस ह्यूमर का निर्माण जरूरत से ज्यादा होने लगता है या इनका निकलना बाधित होने लगता है। ऐसी स्थिति में आई प्रेशर बढ़ जाता है। एक्वस ह्यूमर के बहाव में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ग्लूकोमा दो तरह का होता है। पहला ओपन एंगल ग्लूकोमा, ट्राबेक्युलर मेशवर्क जिससे होकर एक्वस ह्यूमर बाहर निकलता है उसमें धीरे धीरे आने वाली रुकावट से ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है तथा दोनों आंखों को प्रभावित करता है। दरअसल ट्राबेक्युलर मेशवर्क टिश्यूज कॉर्निया के पास होते हैं और इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर मेंटेन करने के लिए एक्वस ह्यूमर को बाहर निकालते हैं। अगर इनमें कोई रुकावट आ जाती है तो एक्वस ह्यूमर का लेवल बढ़ने लगता है और इससे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर भी बढ़ जाता है जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है। दूसरी तरह का ग्लूकोमा है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, जिसमें आयरिस एक्वस ह्यूमर के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। नतीजतन एक्वस ह्यूमर के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है और इससे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर भी बढ़ जाता है जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है।
2: क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में आंख का प्रेशर बढ़ने के कारण आंख की नस को नुकसान पहुंच जाता है जिसके कारण आपकी आंख की रोशनी जा सकती है। इसमें एक तो आंख में दर्द होता है, रेडनेस हो जाता है, सिर में दर्द होता है, जब आप लाइट को देखोगे कलर्ड हेलोस दिखेंगे, कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। अगर आपको ये सब सिम्टम्स है तो आपको जल्द से जल्द आई स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए।
1: ये एक इमरजेंसी की अवस्था है और अगर मरीज के इलाज में 24 से 48 घंटे की देरी हो जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए भी जा सकती है। कोई भी इसका शिकार हो सकता है, बेशक वो अपने आंखों के डॉक्टर से नियमित रूप से जांच करवा रहा हो और आंख इससे पहले बिल्कुल ठीक हो। और अब बात सेकेंडरी ग्लूकोमा की। इन्फ्लेमेशन, आंखों का ट्यूमर और वेनस प्रेशर के बढ़ने से होने वाले ग्लूकोमा को सेकेंडरी ग्लूकोमा कहते हैं। आमतौर पर क्रॉनिक ग्लूकोमा में कोई निश्चित लक्षण नहीं दिखाई पड़ते और ये किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन कुछ लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो, जिनके परिवार में ग्लूकोमा की फैमिली हिस्ट्री हो, डायबिटीज, माइग्रेन या हाइपरटेंशन के मरीज हों, लंबे समय से स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे लोग या जिनकी आंखों में चोट लगी हो। ग्लूकोमा के डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें प्रमुख है टोनोमेट्री। इसमें मोतियाबिंद के टेस्ट की ही तरह एक विशेष इंस्ट्रूमेंट द्वारा आंखों के प्रेशर को नापा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण टेस्ट है ऑप्थैल्मोस्कोप टेस्ट, जिसके जरिए आंखों के पीछे ऑप्टिक नर्व की जांच की जाती है। तीसरा टेस्ट है विजुअल फील्ड असेसमेंट। इस टेस्ट में एक स्क्रीन पर रोशनी की छोटी छोटी स्पॉट्स डाली जाती है और मरीज को रोशनी वाले स्थान को पहचानने के लिए कहा जाता है। इससे पता चलता है कि मरीज के विजन पर कितना असर पड़ा है। ग्लूकोमा का इलाज उसके वर्ग पर निर्भर करता है। ओपन एंगल ग्लूकोमा का आई ड्रॉप्स या खाने वाली दवाओं से इलाज किया जाता है। यदि दवाओं से इलाज न हो सके तब सर्जरी से इसे कंट्रोल करते हैं। सर्जरी में एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो के लिए एक नया रूट बनाया जाता है। इसको ट्राइबेक्युलोक्टोमी कहते हैं।

0: क्लोज एंगल ग्लूकोमा का इलाज कारगर रूप से सर्जरी के द्वारा होता है। सर्जरी में आयरिस की बाहरी सीमा पर एक छोटा छेद करते हैं, इससे एक्वस ह्यूमर बाहर निकल जाता है। इसके लिए ज्यादातर लेसिक सर्जरी या फिर मामूली ऑपरेशन किया जाता है और एक्वस ह्यूमर के निकलने के लिए दूसरा रास्ता बना दिया जाता है।
1: यो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद हम लाए हैं कुछ खट्टी मीठी बातें। चलिए बताइए कि हम एक मिनट में कितनी बार पलकें झपकाते हैं। कोकिला, तुम शुरू करो।
2: यही कोई 15 बार।
1: क्या आप जानते हैं कि आंसू क्यों बहते हैं?
2: बबलू, तुम वही बताओगे जो सबको पता है, कुछ नया नहीं बता सकते।
0: विजन लॉस का एक और कारण है कॉर्नियल अल्सर या कॉर्नियल डैमेज। दरअसल कॉर्निया शीशे जैसा एक पारदर्शी टिश्यू है। इसका व्यास लगभग 11 से 12 मिलीमीटर होता है। ये आंख के काले हिस्से का आवरण है। किसी भी प्रकार की चोट, इन्फेक्शन या अधिक ताप से कॉर्निया डैमेज हो जाने पर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है। अगर कॉर्निया के उस हिस्से में डैमेज हुआ है जहां से विजन पर असर नहीं पड़ता तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। चूंकि कॉर्निया का पोषण रक्त से नहीं होता है बल्कि आंख के गोले के भीतर द्रव से होता है, इसलिए मृत्यु के पश्चात भी इसे ट्रांसप्लांट के लिए निकाला जा सकता है। आई डोनर की मृत्यु के 3 से 4 घंटों के भीतर कॉर्निया को निकाल लिया जाता है। सर्जन केवल कॉर्निया बदलता है, न कि आंख का पूरा गोला।
3: नेत्रदान महादान है। अगर आप नेत्रदान के इच्छुक हैं तो अपने पास के आई बैंक से संपर्क करें।
0: आंखों का एक और गंभीर इन्फेक्शन है जिसे पैन ऑप्थल्माइटिस कहते हैं। इसमें लेंस, कॉर्निया, आयरिस और रेटिना पर असर पड़ सकता है। अगर समय पर इसका इलाज न हो तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है और कई मामलों में पूरी आंख को ही निकालना पड़ सकता है। ट्राइकोमा आंखों का एक और इन्फेक्शन है जो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे में एक दूसरे के सामान के इस्तेमाल से फैल सकता है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे में और माँ से बच्चे में ट्राइकोमा का इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है। ये इन्फेक्शन अक्सर वहाँ होता है जहाँ गंदगी फैली होती है और साफ सफाई के लिए पानी की कमी होती है। ड्रायर क्लाइमेट्स यानी अति शुष्क जलवायु वाले इलाकों में ये इन्फेक्शन ज्यादा होता है। अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है।
1: So, कैसा रहा? खूब सारी बातें बता दी, नहीं?
2: अब बातें ही करते रहोगे या कुछ कंक्लूजन भी होगा?
1: ओहो, मेरे डायलॉग की चोरी। खैर, बच्चों को भी कभी कभी छूट दे देनी चाहिए।
2: बबलू,
1: बाय फ्रेंड्स,
2: तुमसे मैंने
1: नेक्स्ट वीक मिलेंगे, बाय।
2: सॉरी फ्रेंड्स, मुझे ना इसके बड़बोलेपन पर रोक लगानी पड़ेगी, इसलिए आपसे इजाजत चाहूंगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।
1: बबलू,
0: आइए अब एक नजर इस एपिसोड की कुछ खास बातों पर। आंख में लाइट कई जगह पर फोकस होती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कॉर्निया पर पड़ती है। रेटिना के ऊपर उल्टी इमेज बनती है। मस्तिष्क में हमें सीधा दिखाई देता है। मोतियाबिंद में धुंधला दिखने लगता है। ऐसा आंखों के लेंस में मौजूद प्रोटीन के आकार में परिवर्तन के कारण होता है। मोतियाबिंद का इलाज एक छोटे से ऑपरेशन से किया जाता है। ग्लूकोमा में आंखों की ऑप्टिक नर्व्स क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ग्लूकोमा काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसका तुरंत इलाज कराना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए।

0: मास्टर जी।
1: नमस्ते नमस्ते बच्चों। अरे कामाक्षी, मनीषा आज भी नहीं आई।
2: मास्टर जी, मनीषा की तबीयत खराब है और 2-3 हफ्तों से उसको खांसी भी हो रही है।
1: क्या उसके मम्मी पापा उसका इलाज करवा रहे हैं?
2: मास्टर जी, मुझे नहीं पता।
1: तो ठीक है, स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ उसके घर चलूंगा।
3: कामाक्षी, तुम मास्टर जी के साथ?
2: हाँ मनीषा, तुमसे मास्टर जी मिलने आए हैं।
1: मनीषा तुम कैसी हो?
3: मास्टर जी मैं ठीक हूँ।
4: क्या करूँ मास्टर जी, इसकी खांसी बंद ही नहीं हो रही। मैंने अदरक और शहद का घोल इसे बार बार पिलाया है पर फिर भी कोई असर नहीं।
1: क्या आपको लगता है कि घरेलू नुस्खों से इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? देखो सुलेखा बहन, आप मनीषा को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि खांसी अगर 2 या 3 सप्ताह से अधिक हो तो वो टीबी का खतरा हो सकता है।
4: हाँ आपने सही कहा, मैं आज ही इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाती हूँ।
5: इस वक्त हमारे साथ हैं जाने माने सर्जन डॉक्टर आईके धवन। डॉक्टर धवन से हम बात करेंगे कैंसर के बारे में और खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। डॉक्टर धवन, कैंसर की बीमारी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन वो कैसे होती है, किस बीमारी को कैंसर कहा जाता है, इसके बारे में आप हमें बताइए।
6: ऐसे है कि बॉडी का जो नॉर्मल टिश्यू रिपेयर का सिस्टम या मैकेनिज्म है वो बड़ा रेगुलेटेड है, उसके रेगुलेटेड है और वो मतलब गलत नहीं होता, चलता रहता है। जैसे नेचर ने कहा है ऐसे ही रिपेयर सिस्टम होता रहता है। हर एक सेल मर जाता है फिर दूसरा आ जाता है, पर एक किसी ऑर्डर में आता है, किसी नियम से आता है। पर जब ये नियम टूट जाता है, जब सेल्स पे कंट्रोल नहीं रहता है, वो अपने आप ही मल्टीप्लाई करते रहते हैं और ट्यूमर बनते जाते हैं, तो फिर हम उसको कैंसर कहते हैं।
5: डॉक्टर धवन, क्या ये बात सच है कि ट्यूमर्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं?
6: ये बात सच है कि 2 किस्म के ट्यूमर होते हैं, एक तो जो मैलिग्नेंट होते हैं और एक जो बिनाइन होते हैं। जो बिनाइन होते हैं वो तो 100% इजीली क्योरेबल होते हैं, और जो मैलिग्नेंट होते हैं वो हर एक जगह हर एक अंग के फर्क फर्क क्योर रेट्स होते हैं। और फर्क उनमें ये है, जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो सेल्स अपना रूप छोड़ते नहीं हैं, वैसे ही रहते हैं, थोड़ा सा ऑर्डर रहता है, डिसऑर्डरली नहीं होते। जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं वो अपना रूप छोड़ देते हैं, वो डिसऑर्डरली हो जाते हैं, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, कोई मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ब्लड वेसल में चले जाते हैं, लिम्फेटिक्स में चले जाते हैं, जो अपनी कैप्सूल होती है उसको तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो ये फर्क है दोनों में।
5: डॉक्टर धवन, इस बीमारी के साथ स्टेजेस हैं कि स्टेज 1 का है, स्टेज 2 का है, तो कई बारी पता चलता है जब तक कि इसको व्यक्ति को कैंसर है और ये कहा जाता है कि आखिर स्टेज का पता चला, तो ऐसा क्यों होता है?
6: ऐसे है कि ये सच है कि किसी किसी ऑर्गन्स में कैंसर जितनी भी आप कोशिश कर लीजिए देर से महसूस होता है, पर जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ती है तो हर एक अंग में यही कोशिश है कि कैंसर जल्दी पकड़ा जाए, उस स्टेज पे पकड़ा जाए जिस स्टेज पे उसका इलाज हो सके। एक तो बात यह है। दूसरा बात यह है कि बहुत ज्यादा जोर और एम्फेसिस है अपनी लाइफस्टाइल पे। जो फैक्टर्स कैंसर को प्रमोट करते हैं, जो कैंसर को बढ़ाते हैं, उनको अपनी लाइफस्टाइल से निकाल देना चाहिए, जैसे स्मोकिंग एंड टोबैको यूज।
5: डॉक्टर धवन, अमूमन ये माना जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बड़ी उम्र की महिलाओं को ही होता है, क्या छोटी उम्र की महिलाएं भी इसकी शिकार होती हैं?
6: सच है कि ब्रेस्ट कैंसर यंग महिलाओं में भी, छोटी उम्र की महिलाओं में भी होता है, पर इतना कॉमन नहीं है।
5: डॉक्टर साहब, महिलाओं को इसकी सही सही जानकारी रहे इसके लिए क्या करना चाहिए?
6: थोड़ी सी गलतफहमियां भी दूर करना जरूरी है। सबसे दुनिया भर में अच्छा सिस्टम जो डेवलप और मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम जो डेवलप हुआ है कि औरतों को 50 साल की उम्र या 40 साल की उम्र की औरतों को ये सिखाना चाहिए कि अपना ब्रेस्ट को कैसे पैल्पेट करें या फील करें। हम लोग यही कहते हैं कि महीने में एक दफा जब आप नहा रहे हों, जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाएं, पीरियड्स के बीच में, मतलब पीरियड्स के वक्त तो गांठें महसूस हो जाती हैं, पीरियड्स से पहले महसूस हो जाती हैं, पीरियड्स के बाद हफ्ता भर बाद आप अपना ब्रेस्ट नहाते वक्त, क्योंकि साबुन लगाएं ब्रेस्ट के ऊपर, फिर अपना हाथ उसके ऊपर लगाएं, तो गांठ जो हो वो अच्छी तरह महसूस हो जाती है। हमने देखा है कि जो अनपढ़, जिनको हम अनपढ़ कहते हैं औरतें, उन्होंने भी कभी रेडियो में सुना हो तो वो आते हैं, क्योंकि हमने रेडियो में सुना, हमने अपना ब्रेस्ट को फील किया तो हमें ये गांठ मजबूत। सो ये बहुत सबसे अहम बात है कि औरतों को सिखाना। दूसरी बात ये है कि 50 साल की उम्र के बाद स्क्रीनिंग, या 40 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा है 15 या 20 औरतों में से 50 साल की उम्र के बाद एक को जरूर होगा ब्रेस्ट कैंसर, इतना इसका इंसिडेंस हाई है। तो इसलिए हर एक की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ना स्क्रीनिंग में थोड़ी सी गलतफहमी ये है कि मैमोग्राम करा लो तो स्क्रीनिंग हो गई, ये नहीं है। स्क्रीनिंग के दो भाग होते हैं, एक तो कोई डॉक्टर जो ब्रेस्ट कैंसर को देखते रहते हैं वो ब्रेस्ट को अच्छी तरह फील करें, और दूसरा एक साल में या दो साल में मैमोग्राम कराएं। सो ये दोनों भाग हो तब स्क्रीनिंग इफेक्टिव होती है, अगर एक ही भाग करें तो स्क्रीनिंग आधी इफेक्टिव होती है।
5: डॉक्टर धवन, अगर हम कामकाजी महिलाओं को देखें तो बच्चा होने के एक दो महीने के बाद से ही वो ऑफिस जाना शुरू कर देती हैं। ऐसे में बच्चे को दूध पिला पाना तो संभव नहीं है, इसका भी कोई असर होता है उनकी सेहत पर?
6: ये बिल्कुल कंसर्न है, एक तो ब्रेस्ट कैंसर के वजह से कंसर्न है और दूसरा बेबी के लिए भी कंसर्न है कि द बेबी डजंट गेट द मदर्स मिल्क, ही इज नॉट गेटिंग द बेस्ट न्यूट्रिशन और शी इज नॉट गेटिंग द बेस्ट न्यूट्रिशन। सो दोनों तरह से कंसर्न है।
5: डॉक्टर धवन, आप हमारे स्टूडियो में आए और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर इतनी सारी जानकारी आपने हमारे लिसनर्स को दी, हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं तो जरूर बताइए।
6: सबसे अच्छा सिस्टम तो यही है कि अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें। लाइफस्टाइल में सबसे जरूरी चीज है कि टोबैको का इस्तेमाल, या सिगरेट के रास्ते, या तंबाकू खाने के रास्ते, या नसवार रखने नाक में डालने के रास्ते, ये तो बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि ना ही ये कई जगह कैंसर का रोग करता है। बाकी और लाइफस्टाइल, ओवरवेट जो लोग होते हैं उनको भी कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा होता है, और खासकर ब्रेस्ट कैंसर के लिए महिलाओं को यही एडवाइस होगी कि दे शुड गेट देयर चिल्ड्रन अर्ली इन लाइफ, दे शुड ब्रेस्ट फीड देम फॉर अ ईयर, ईयर एंड हाफ और टू इयर्स, एंड दैट विल बी अ बिग बोनस, एंड दे शुड फील देयर ब्रेस्ट वंस अ मंथ, अ वीक और 10 days आफ्टर देयर पीरियड्स, एंड इफ दे नोटिस एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत मिले तो फौरन अपने कंसल्टेशन करें।

0: एंड वेलकम टू जीते रहो।
1: हाय फ्रेंड्स।
2: कुहू, मैं बहुत दिनों से एक बीमारी के बारे में जानना चाह रहा था, पर
1: ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके बारे में जानने से तुम झिझक रहे हो?
2: एक्चुअली थोड़ा पर्सनल हो जाता है। इस बीमारी के बारे में सोचते ही मुझे मासी का दर्द याद आ जाता है।
1: यू मीन कैंसर? आई नो, ये बीमारी एक साथ कई जिंदगियां बदल देती है।
2: हाँ, हमेशा सुनता रहता हूँ, रेगुलर आर्टिकल्स भी निकलते रहते हैं, पर मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये है क्या और इसका नाम कैंसर कैसे पड़ा।
1: आइए देखते हैं।
3: कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका संबंध हमारे शरीर की मूलभूत इकाइयों से है। हमारे शरीर की ये मूलभूत इकाइयां हैं कोशिकाएं, यानी सेल्स। शरीर में इनकी संख्या अरबों में होती है। ये कोशिकाएं शरीर के हर एक अंग के आधार पर अलग अलग होती हैं, जैसे लिवर सेल्स, ब्रेन सेल्स, ब्लड सेल्स इत्यादि। इन्हीं कोशिकाओं के विकास के आधार पर हमारा शारीरिक विकास होता है और इन्हीं से बनते हैं उत्तक यानी टिश्यूज। टिश्यूज असल में कोशिकाओं का एक समूह है। हम सबके शरीर में स्टेम सेल्स पाई जाती हैं, जो विभाजित होकर अलग अलग ऑर्गन्स की सेल्स में बदल सकती हैं और उस ऑर्गन का विशेष काम करने लगती हैं, जैसे किडनी और लिवर की सेल्स। कुछ स्टेम सेल्स किडनी सेल्स में परिवर्तित होती हैं तो कुछ लिवर सेल्स में। वहीं कुछ स्टेम सेल्स ब्रेन सेल्स में बदल जाती हैं तो कुछ मसल्स की सेल्स में। सामान्य स्थिति में कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा नई कोशिकाएं बनती हैं। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। नई कोशिकाएं बनती हैं और पुरानी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। कोशिकाओं के विकास चक्र में जब संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है तो उसे कैंसर कहते हैं। इस परिस्थिति में कोशिकाओं का विभाजन बहुत तेजी से होने लगता है और इसी वजह से नई कोशिकाएं भी बहुत तेजी से बनने लगती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोशिकाओं के नष्ट होने की प्रक्रिया पर लगाम कस जाती है। इससे टिश्यूज में अतिरिक्त कोशिकाएं जमा होने लगती हैं, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। जहां तक इस बीमारी के नामकरण का सवाल है तो इसके पीछे भी इन्हीं ट्यूमर्स का हाथ है। आज से हजारों साल पहले हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें मेडिकल साइंस का जनक कहा जाता है, ने जब एक ममी के ट्यूमर को देखा तो उन्हें जो आकृति दिखी वो केकड़े यानी क्रैब के पैरों से मिलती जुलती थी। लैटिन में केकड़े को कैर्सिनोस कहा जाता है, लिहाजा उन्होंने इसका नाम रखा कैर्सिनोमा, जो आगे चलकर कैंसर कहलाने लगा। कैंसर दो तरह से शरीर में फैलता है। इनमें एक तो इन्वेजन है और दूसरा मेटास्टेटिस। इन्वेजन के तहत कैंसर सेल्स अपने ओरिजिनेटिंग यानी उत्पन्न होने वाले अंग के पड़ोसी टिश्यूज में घुस जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में बनने वाली गांठ इसका एक उदाहरण है। लेकिन मेटास्टेसिस में कैंसर सेल्स ओरिजिनेटिंग अंग के साथ साथ दूसरे अंगों के सेल्स में भी प्रवेश कर जाते हैं। मेटास्टेसिस में कैंसर सेल्स पहले लिम्फ यानी लसिका और ब्लड वेसल्स में प्रवेश करते हैं। उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए शरीर के दूसरे अंगों तक फैल जाते हैं। कैंसर के सिम्टम्स यानी लक्षण कई बार कैंसर से प्रभावित अंग की ओर इशारा करते हैं, इसलिए इन्हें स्पेसिफिक सिम्टम्स कहा जाता है। जैसे कोलन कैंसर में दस्त, कब्ज और मल के साथ खून का आना, और ब्लैडर कैंसर में पेशाब में खून आ सकता है। लेकिन कुछ सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ये सिम्टम्स कैंसर से प्रभावित अंग की ओर इशारा नहीं करते। जैसे हमेशा थकान लगना, क्योंकि कैंसर सेल्स शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल अपने विकास के लिए करने लगते हैं। इसके अलावा वजन का घटना, भूख न लगना, बुखार आना, त्वचा का काला हो जाना, खुजली होना और असहनीय दर्द होना नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के उदाहरण हैं। लेकिन शुरुआती दौर में इन सिम्टम्स का या तो पता नहीं चलता या फिर उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है।

0: वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कैंसर के सिम्टम्स की। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि कैंसर शरीर में फैलता कैसे है। लेकिन शायद आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि 100 से अधिक बीमारियों का एक जटिल समूह है जो शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, चाहे वो मस्तिष्क हो, चाहे पाचन तंत्र, हड्डियां या फिर कोई और अंग।
1: मोटे तौर पर कैंसर को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, मसलन कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा ये कैंसर का सबसे सामान्य रूप है। शरीर के किसी भी अंग की बाहरी या अंदरूनी सतह यानी एपिथेलियल टिश्यूज में होने वाले कैंसर इस श्रेणी में आते हैं। लंग्स, ब्रेस्ट, कोलोन कैंसर, सर्वाइक्स यानी बच्चेदानी का कैंसर और माउथ कैंसर कार्सिनोमा के प्रमुख उदाहरण हैं।
2: कैंसर की दूसरी कैटेगरी है सार्कोमास। इस कैटेगरी में कैंसर सपोर्टिव या कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाओं में होते हैं, जैसे हड्डी, कार्टिलेज, वसा और मांसपेशियां। कैंसर की अगली कैटेगरी है लिम्फोमास। लिम्फ नोड्स में होने वाले कैंसर को लिम्फोमास कहा जाता है।
1: लिम्फोमा के बाद आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है।
2: अब सवाल उठता है कि कैंसर होता कैसे है। आम धारणा तो यही है कि इसका कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं है। कुछ प्रमुख कारणों के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। इनमें एक तो शरीर के अंदरूनी कारण है, जैसे हेरिडिटी, असंतुलित भोजन और हॉर्मोन्स। कुछ बाहरी कारण भी हैं, जैसे सिगरेट और तंबाकू का सेवन, शराब, कुछ कार्सिनोजेनिक रसायन, अल्ट्रावायलेट किरणें और न्यूक्लियर रेडिएशन इत्यादि। इन दोनों वर्गों के अलावा कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया भी हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से कुछ खास किस्म के कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं।
0: अब बात आती है इनके डायग्नोसिस की। कैंसर के केस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब अर्ली स्टेज में इसका पता लगाया जा सकता है।
3: अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर अर्ली स्टेजेस में सिर्फ पता ही लगाते हो या फिर ठीक भी करते हो तुम लोग?
0: जी हाँ बबलू जी, अर्ली स्टेजेस में पता चलने पर कैंसर काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। लेकिन आइए पहले ये तो देख लें कि कैंसर का पता कैसे चलता है, यानी क्या है इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट्स।
2: कैंसर का पता अगर शुरुआती अवस्था में ही लग जाए तो इलाज में काफी फायदा होता है और इसे जड़ से भी मिटाया जा सकता है। अक्सर कैंसर के मरीज डॉक्टर के पास एडवांस स्टेज में पहुंचते हैं। जब किसी अंग में कैंसर के कारण सूजन हो जाती है या कोई अल्सर जब लंबे समय तक ठीक नहीं होता या ब्लीडिंग होने लगती है, ऐसे में इलाज के विकल्प सीमित हो जाते हैं। मगर अब कुछ ऐसे स्क्रीनिंग मेथड्स उपलब्ध हैं जिनसे अर्ली स्टेजेस में ही कुछ खास तरह के कैंसर का पता चल जाता है। ऐसा ही एक टेस्ट है पैप स्मियर। ये एक ऐसी स्क्रीनिंग टेक्निक है जो सर्वाइकल कैंसर के अर्ली डायग्नोसिस में मील का पत्थर साबित हो रही है। इस प्रोसेस में एक छोटे ब्रश या स्क्रेपर से सेल्स का सैंपल ले लिया जाता है, फिर इन सेल्स को एक स्लाइड में रखकर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर यदि किसी तरह की असामान्यता यानी एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है तो ये कैंसर का इंडिकेटर हो सकता है। ठीक इसी प्रकार मैमोग्राफी भी एक तरह की एक्सरे तकनीक है जो खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस में काफी कारगर है। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई के जरिए भी कैंसर का पता चल जाता है। अगर पेशेंट को नॉन हीलिंग ओरल इन्फेक्शन है तो माउथ कैंसर के लिए उसकी जांच की जाती है। लंग कैंसर में मरीज को लंबी खांसी हो सकती है, बलगम के साथ खून भी आ सकता है और मरीज की सांस भी उखड़ी रहती है। ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने पर मरीज की लंग कैंसर के लिए जांच की जाती है। अगर बार बार दस्त या कब्ज हो जाए जो 3 सप्ताह से ज्यादा चले तो बाउल कैंसर के लिए जांच जरूरी हो जाती है। उल्टी के साथ खून आने पर लिवर कैंसर की जांच जरूरी होती है।
1: अगर 2 और 3 सप्ताह से ज्यादा लो ग्रेड फीवर हो और उसकी वजह का पता न चले तो ब्लड कैंसर के लिए टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि लो ग्रेड फीवर कई तरह के कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है। इसके अलावा बार बार किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो या बगैर किसी वजह से वजन घटे तो भी ब्लड कैंसर के लिए जांच करवाई जा सकती है।
2: अगर पेशेंट में कैंसर जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो FNAC करते हैं। FNAC यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें एक बारीक पतली सी सुई ट्यूमर स्थित जगह पर डालकर कुछ कोशिकाएं निकालते हैं। पैथोलॉजिस्ट फिर इसका परीक्षण करते हैं। ट्यूमर, लिम्फ नोड और बोन मैरो कैंसर का पता लगाने के लिए FNAC या बायोप्सी की मदद ली जाती है। बायोप्सी के लिए कैंसर वाली जगह से टिश्यू का एक छोटा टुकड़ा लिया जाता है, फिर इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। माइक्रोस्कोप में देखने पर कैंसर टिश्यूज नॉर्मल टिश्यूज से एकदम अलग दिखते हैं। नॉर्मल टिश्यूज जहां सुव्यवस्थित होते हैं वहीं कैंसर टिश्यूज का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये टेढ़े मेढ़े अव्यवस्थित से लगते हैं। कैंसर सेल्स जितने अव्यवस्थित होते हैं कैंसर उतना ज्यादा जानलेवा होता है।
4: एक बार डायग्नोसिस हो जाए कि ये गांठ, जैसे गले में गांठ है और गांठ के अंदर कैंसर का डायग्नोसिस आया है, तो ये गांठ का कैंसर कहां से आया है इस विषय में हम फिर कुछ और जांचें की जाती हैं, जैसे हम CT स्कैन करते हैं, एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि ये कैंसर किस स्टेज का है, कहां तक गया है। पहले कैंसर का डायग्नोसिस होने के बाद उसका स्टेजिंग किया जाता है। स्टेजिंग के लिए कुछ जांचें होती हैं जो मैंने अभी बताई, वो की जाती है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है।
1: कैंसर को मोटे तौर पर चार भाग में बांट सकते हैं। कैंसर जिस अंग में हुआ है अगर उसमें ही रहे और उसका फैलाव और गहराई थोड़ी हो तो इसे फर्स्ट स्टेज का कैंसर कहते हैं। कैंसर का फैलाव अगर बढ़ जाए और आसपास के अंगों में फैल जाए तो इसे सेकेंड स्टेज का कैंसर कहते हैं। कैंसर फैलकर आसपास के रीजन और लिम्फ नोड्स में फैल जाए तो इसे थर्ड स्टेज का कैंसर कहा जाता है। फोर्थ स्टेज में कैंसर भयानक रूप ले चुका होता है। अब कैंसर सेल्स लिम्फ नोड्स के जरिए शरीर के दूसरे अंगों जैसे लिवर, हड्डी और फेफड़ों तक फैल जाते हैं।
4: यदि कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो इससे पूरे बचने की पूरी पूरी संभावना है। अर्ली स्टेज में कैंसर पकड़ने के बहुत से फायदे हैं। एक, कि आप बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं। दो, इसका इलाज बहुत सरल है। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, जिसको कहते हैं खर्चा इलाज का, वो भी बहुत कम हो जाता है। तीसरा, डिसफिगरमेंट, यानी कि अगर बड़ा ट्यूमर होगा तो उसको निकालने के लिए उतना बड़ा ऑपरेशन की जरूरत है, उतना ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस रहते हैं। और यदि छोटा सा ट्यूमर है तो उसका छोटा सा ऑपरेशन है, दो तीन दिन अस्पताल में रहना है, उसके बाद घर चले जाना है, नॉर्मल लाइफ आपकी जल्दी आ जाती है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं उसमें भी कोई फर्क नहीं आता। आजकल कई टेस्ट आ गए हैं जिससे हम कैंसर को जड़ बड़ी बड़ी अर्ली स्टेज में, इवन स्टेज वन से पहले की स्टेज में भी हम पकड़ सकते हैं। जैसे कि आजकल हम मैमोग्राफी करते हैं, मैमोग्राफी में छोटा सा छोटा लीजन भी हमें दिखाई दे जाता है, जब तक गांठ बनी ना हो उससे पहले भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं है। दूसरा, हम स्त्रियों में करते हैं पैप टेस्ट, जो गर्भाशय यानी बच्चादानी के मुंह के कैंसर को डिटेक्ट करने में बहुत फायदेमंद है।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स। कोकिला, एक बात बताओ, अगर अर्ली स्टेजेस में कैंसर का पता चल जाए तो क्या वाकई कैंसर का इलाज संभव है?
0: देखो बबलू, ये दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे मरीज की उम्र क्या है, उसकी सेहत कैसी है, बीमारी किस स्टेज में है और
3: ये सब तो ठीक है मैडम कुहू जी, लेकिन ये तो बताइए कि कैंसर का इलाज क्या है?
0: बबलू, एक सवाल का जवाब खत्म नहीं होता तुम दूसरा सवाल दाग देते हो। खैर, आइए देखते हैं क्या है कैंसर का इलाज।
2: कैंसर का मरीज कितना ठीक होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर किस तरह का है और किस स्टेज में पहुंच चुका है। कैंसर के शुरुआती स्टेज में इलाज का मुख्य उद्देश्य होता है पूर्ण उपचार। एडवांस स्टेज में पहुंच जाने के बाद प्राथमिकता होती है बीमारी की रोकथाम कर मरीज की जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा आरामदायक बनाना। इसी आधार पर कैंसर के इलाज को चार वर्गों में बांटा गया है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी।
1: सर्जरी में ट्यूमर और उसके आसपास जिन जगहों पर कैंसर सेल्स होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। कुछ कैंसर के एडवांस स्टेजेस में सर्जरी का इस्तेमाल रेडिएशन और कीमोथेरेपी के साथ भी किया जाता है। रेडियोथेरेपी लगभग 6 दशक से कैंसर के इलाज का एक प्रमुख विकल्प बन गया है, चाहे कैंसर फर्स्ट स्टेज में एक अंग तक सीमित हो या एडवांस स्टेज में शरीर के कई अंगों तक फैल चुका हो। और शायद यही वजह है कि आज कैंसर के 50% मामलों में रेडियोथेरेपी का उपयोग हो रहा है। रेडिएशन एक खास तरह की ऊर्जा है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से मशीनों के जरिए बीम के रूप में प्रवाहित की जाती है। गामा रेज कैंसरस सेल्स को मार देती हैं।
4: इसमें ना ऑपरेशन की जरूरत है ना कोई डिसफिगरमेंट होता है, सिर्फ रेज आती हैं और ट्यूमर को बर्न करती हैं और ट्यूमर खत्म हो जाता है। रेडियोथेरेपी का उपयोग मुंह के कैंसर, गले के कैंसर, टट्टी के मार्ग का कैंसर, स्वरपेटी का कैंसर, इनमें बहुत ज्यादा है, और कभी कभी छाती स्तन के कैंसर में भी यूज किया जाता है। रेडिएशन बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में भी यूज की जाती है। रेडिएशन के अपने बहुत से फायदे हैं, बिना ऑपरेशन बिना किसी के आप ट्यूमर को ट्रीट करते हैं। दूसरा, ऑर्गन सेव होता है, जैसे कि स्वरपेटी आपकी बच सकती है, आप आवाज बोल सकते हैं, मगर इसके साथ साथ कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म में मुंह में लार बननी बंद हो जाती है, पेशेंट को सॉलो करने में प्रॉब्लम आती है, कभी कभी खाने का स्वाद नहीं आता है, और लंबे टर्म में ये फाइब्रोसिस वगैरह करती है जिससे पेशेंट को बाल, जहां जहां रेडिएशन लगती है वहां बाल चले जाते हैं, जो आजीवन चले जाते हैं, दोबारा कभी नहीं आते वो लाइफ में बाद।

0: जीते रहो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कैंसर के इलाज की। तो कैंसर के विरुद्ध हमारी लड़ाई कई फ्रंट्स पर जारी है और यकीन मानिए इसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं।
1: कैंसर के इलाज की अगली कैटेगरी है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी असल में एक ड्रग थेरेपी है। इसके तहत मरीज को जो दवाइयां दी जाती हैं, वो मैलिग्नेंट सेल्स के विकास यानी ग्रोथ और विभाजन यानी डिवीजन को प्रभावित करती हैं। कीमोथेरेपी की दवाइयां किसी भी स्टेज में कैंसर की कोशिकाओं को मारकर उनका विभाजन रोक देती हैं। इस प्रक्रिया की वजह से कई बार कैंसर सेल्स के साथ साथ स्वस्थ कोशिकाएं भी खत्म हो जाती हैं। तुरंत दिखने वाले साइड इफेक्ट्स हैं वॉमिटिंग टेंडेंसी, चक्कर आना, कमजोरी, कभी डायरिया या कभी कब्जियत, बालों का झड़ना, मुंह आना, मुंह में छाले पड़ना। ल्यूकेमिया, लिम्फोमास और टेस्टिकुलर कैंसर के मामलों में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल सर्जरी और रेडिएशन के मुकाबले ज्यादा किया जाता है। कुछ खास परिस्थितियों में सर्जरी या रेडियोथेरेपी के बाद मरीज को कीमोथेरेपी दी जाती है ताकि कैंसर फिर से ना हो। हार्मोन थेरेपी भी कीमोथेरेपी का एक प्रकार है। कुछ कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में हमारे शरीर के हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ही कैंसर सेल्स को बढ़ने में मदद करने लगते हैं। इसलिए हार्मोन थेरेपी में ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो उन हार्मोन्स के बनने को कम करती हैं जो कैंसर को फैलाने में मदद कर रहे होते हैं।
2: जानती हो कोकिला, मुझे अंकुश फिल्म का वो गाना याद आ रहा है।
0: अच्छा, कौन सा गाना? जरा हम भी तो सुने।
2: इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
0: तुमने ठीक कहा बबलू। दोस्तों, इस बीमारी के विरुद्ध जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है पेशेंट का आत्मविश्वास। इसीलिए अपना विल पावर स्ट्रांग रखिए और हाँ, एक अच्छी जीवन शैली अपनाइए। अपने खान पान में हरी सब्जियों के साथ साथ फलों का सेवन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि हाल ही में ये स्पष्ट हो चुका है कि एक अच्छी जीवन शैली, अच्छे खान पान से हम काफी हद तक इस भयावह बीमारी से बचाव कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।
2: बाय एंड डू टेक केयर। जीते रहो।
1: हमारे शरीर में लगातार नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं। कोशिकाओं के विकास चक्र में जब संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है तो उसे कैंसर कहते हैं। मोटे तौर पर कैंसर को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, मसलन कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। कैंसर का पता अगर शुरुआती अवस्था में ही लग जाए तो इसे जड़ से भी मिटाया जा सकता है। अगर पेशेंट में कैंसर के लक्षण दिखाई देते हैं तो FNAC या बायोप्सी करते हैं। कैंसर का इलाज चार तरीकों से किया जाता है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी।

हमारे देश में कृषि पर्यटन में काफी संभावनाएं हैं। देश में कुल 6.50 लाख गांव हैं। इसमें 14 करोड़ से ज्यादा किसान रहते हैं और इनमें लगभग 70% से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। ऐसे में कृषि पर्यटन गांव में रहने वाले लोगों के लिए आय का अच्छा जरिया साबित हो सकता है। वैसे तो गांव की सुंदरता को रोजगार से जोड़ने के लिए कृषि पर्यटन की शुरुआत की गई, लेकिन कृषि पर्यटन शुरू करने के पीछे और भी कई कारण समझ आते हैं। जैसे कृषि जोत का आकार छोटा होना, युवाओं का शहर की तरफ पलायन और जलवायु परिवर्तन के कारण खेती में आने वाली परेशानियां, इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए कृषि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि पर्यटन खासकर उन शहरी लोगों के लिए अच्छा है जिनका बचपन आमतौर पर घर की चार दीवारी में ही बीत जाता है। वे अनाज, सब्जियां और दूध उत्पादन की प्रक्रिया को भी नहीं जानते। ऐसे लोगों को कृषि पर्यटन खेती के पारंपरिक तरीकों को देखने समझने का मौका देता है। कृषि पर्यटक स्थल पहाड़ी इलाकों में बनाए जा सकते हैं। अगर मैदानी इलाके में कृषि पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं, तो वहाँ की संस्कृति, पार्क और देसी तरीके से मिट्टी और बांस के बने आवास और खाने की सुविधा करनी चाहिए। कृषि पर्यटन स्थल बनाते समय कुछ जगहों को दृश्य स्थल में बदलकर वहाँ पर खेती के पुराने तरीकों और मशीनों का म्यूजियम बना सकते हैं। इसके अलावा कृषि पर्यटक स्थल पर आने वाले पर्यटकों के लिए खेती, बागवानी और पशु उत्पादन से जुड़े कामों का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। पिछले काफी समय में लोगों की आय भी बढ़ी है और घूमने का शौक भी बढ़ा है। ऐसे में आने वाले समय में कृषि पर्यटन बहुत बड़ा विकल्प बन सकता है, जो न सिर्फ प्रकृति की गोद में जाने का मौका देता है, बल्कि ग्रामीण आबादी को रोजगार भी देता है।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं किसानों की सफलता की कहानियां। किसान न सिर्फ अपने परिवार के भोजन की व्यवस्था करता है, बल्कि वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करता है ताकि आपकी और हमारी थाली तक भी भोजन पहुंचता रहे। हमारे देश में कई ऐसे किसान हैं जो कि आज के दौर में नवाचार, नई तकनीक को अपनाकर कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं। ये किसान कृषि स्टार्टअप, पशुपालन और कृषि में नए नए प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे किसान भी हैं जो कि अपनी मेहनत के चलते आज अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। ये किसान इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी थाली तक जो भोजन पहुंचे वो रसायन मुक्त हो और पोषण से भरपूर हो। आज के सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से संबंध रखने वाले शिव कुमार से, जो कि मुख्य रूप से जैविक यानी ऑर्गेनिक खेती के लिए जाने जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की।
1: गाजियाबाद भारत की राजधानी से सटे ऊपरी गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में स्थित है। इसी जिले के गांव चोलस से आते हैं हमारे सफल किसान शिव कुमार, जो दूसरे किसानों के सामने मिसाल पेश कर रहे हैं, जिन्होंने साधारण खेती नहीं बल्कि ऑर्गेनिक यानी कि जैविक खेती और पशु पालन दोनों को एक साथ चुना। शिव कुमार जैविक खेती से मिले फल सब्जियों का सेवन करने वाले लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। वो कैसे, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं की जुबानी।
2: ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग करता हूं और नेचुरल फार्मिंग भी तो मैं अब से करने लगा हूं। पहले मैं जैविक खेती करता था। 2005-06 से मैं राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद के संपर्क में आया, जहां से ये केंचुए पालन मुझे सीखने को मिला और मैंने इनसे ट्रेनिंग लेकर के विधिवत तरीके से अपने यहां पर केंचुए पालन शुरू किया, जिससे मुझे केंचुए पालन के साथ साथ में वर्मी कंपोस्ट भी मिलता था और वर्मी वास भी मिलता था। इससे क्या हुआ, जब मैंने अपने खेतों में विधिवत तरीके से अप्लाई किया तो मैंने वर्मी कंपोस्ट से कुछ किसानों को बेचा भी कि इस विधि से हम जैविक पे आ सकते हैं। और जो हम जहरीली खेती कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं या ये केमिकल फार्मिंग से पेस्टिसाइड से जो हम खेत में लगा रहे हैं, इससे हम लोगों को निजात मिल सकता है, जिससे हम जहर मुक्त भोजन ले सकते हैं।
1: आज भले ही शिव कुमार अपने गांव और आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बन रहे हों, लेकिन ये सब करना उनके लिए इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें मदद मिली गाजियाबाद के राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र से, जिनकी मदद और सही सलाह अपनाने के बाद शिव कुमार आज एक सफल किसान बनने की राह पर अग्रसर है। कैसे शिव कुमार और उनके जैसे हजारों लाखों किसान खेत की मिट्टी को बेहतर बना सकते हैं, बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के उप निदेशक जगत सिंह।
3: कुमार जी, वर्ष करीब 2005 से ही एक इनोवेटर के रूप में उभरे हैं और वर्ष 2014 से ये राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र से जुड़े। तो जब इनसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई तो इनसे मुझे पता चला कि इनके खेत की मिट्टी का पीएच हाई है और खेत में मोटे मोटे ग्रेवल्स हैं, माने कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर हैं, जो निशानी है ऊसर भूमि की या हाईली सैलाइन एल्कली की। तो उसी समय से हमने इनको जैविक खेती के परिपेक्ष में दो तीन चीजें बताई थी कि एक तो कंटिन्यू आपको ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल करना है, पकी और पची हुई खाद का इस्तेमाल करना है, जहां जहां पे सैलाइन एल्कली के पैचेज हैं वहां पे गोबर डाल के और थोड़ा मीठा डाल के उसको गलाना है, और जहां पे ज्यादा खारी सॉइल है वहां की मिट्टी उठा के उसमें मीठी मिट्टी और गोबर डालना है। तो पहले बार में इन्होंने ये काम किया। दूसरी बार में हमारे केंद्र से कुछ कल्चर दिए जाते थे जो डिकम्पोज करने का काम करते थे, शिव कुमार जी ने उस कल्चर का अपने खेतों में प्रयोग किया और उस कल्चर के प्रयोग से जो खेत का जो सेलाइन एल्कली का जो नेचर था हाई पीएच वो लो पीएच में कन्वर्ट हो गया, और साथ ही साथ जो खेत में 1.5 से 2 इंच मोटे पत्थर थे वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गए।
1: अब ये जैविक खेती है क्या जिससे हमारे सफल किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, जरा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जैविक खेती फसल उत्पादन की एक प्राचीन पद्धति है जिसमें फसलों के उत्पादन में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसलों के अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध कई तरह के खनिज पदार्थों के जरिए पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि ऐसी खेती में प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों को कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने के साथ ही भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। जैविक खेती का मतलब एक ऐसी कृषि प्रणाली से है जिसमें फसलों के उत्पादन में रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं के स्थान पर जैविक या प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती को लेकर शायद हमारे सफल किसान शिव कुमार भी जानते हैं कि जिस तरह जैविक खेती बीते कुछ समय में लोकप्रिय हुई है उसी हिसाब से आने वाला समय जैविक खेती का ही है, इसलिए उन्होंने जैविक खेती को चुना।
2: जैविक हर किसी को चाहिए और नेचुरल उत्पाद हर किसी किसान को, हर किसी उसको चाहिए जिनको खाना है, तो उसको लेकर के जितना मेरे पास में उत्पाद था उससे डिमांड अत्यधिक थी मेरी, तो इसलिए मैं बंसी गोल्ड पहले से लगा रहा था। बंसी गोल्ड गेहूं मैंने एमपी वाला गेहूं लगाया था, उसका उत्पादन बहुत अच्छा आया और उसकी जो हमारी पैदावार थी वो थोड़ी सी इससे कम थी, लेकिन जो हमारा खाने में बहुत अच्छी गुणवत्ता देता था एचडी 226 उसका विकल्प एचडी 3226 वैरायटी करके मुझे राष्ट्रीय नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से प्राप्त हुई। केवल 6 क्विंटल बीज मुझे मिल पाया था, तो मैंने विधिवत तरीके से अपने खेत में 9 नवम्बर में यानी 17-18 नवंबर को मैंने इसको अपने खेत के अंदर लगा दिया था, और इसको मैंने बिजाई सुपर सीडर से की, उसका सीड ट्रीटमेंट मैंने अपने जीएल खाद से वही 1 चम्मच लेकर के और थोड़ा एक उसमें 1 लीटर पानी डाल करके, और मैंने लगभग 3 क्विंटल गेहूं को पर्याप्त मात्रा में उससे बीज शोधन किया था, और थोड़ा सा उसमें मैंने हल्का सा 250 ग्राम गुड़ घोल कर भी उसको मिला लिया था। उसका मैंने विधिवत तरीके से उसका उपचार किया, और उपचार करने के बाद में जो मेरे पास में वर्मी कंपोस्ट था तो मैंने अपने उर्वरक की फर्टिलाइजर की जगह वर्मी कंपोस्ट अगले टापे में भर करके पिछले में सीड डाल करके और मैंने अपने सुपर सीडर से इन खेतों की बिजाई कर दी है, और यील्ड शायद इस बार बहुत अच्छा आएगा सर, मुझे रेट बहुत अच्छा मिल रहा है।
1: शिव कुमार का मानना है कि गांव में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है और इससे आय में वृद्धि के साथ गांव का भी विकास होगा, तो वहीं सह फसली जैविक खेती पर सोने पर सुहागा का काम कर रही है जिससे शिव कुमार को 2 गुना लाभ हो रहा है। इस तरह सह फसली खेती करने से मेहनत मजदूरी के साथ साथ पानी, खाद, उर्वरक, बीज और कटाई का खर्चा निकल आता है।
2: पहले जैसे हम खेती कर रहे थे अभी भी और अच्छे तरह से उसको खेती को कर रहे हैं, हम फसल चक्र में लेकर आए हैं। एक तो फसल चक्र से फायदा क्या है कि जो हमारा ये जो वीड है ये वीड अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है फसल चक्र से। जैसे हमने अब तिलहन यानी तिलहन लगाया है तो तिलहन के बाद में फिर हमने इसके तिलहन के बाद में जैसे मक्का लगाया है, मक्का के बाद में हम और सब्जी वर्गीय यानी कद्दू वर्गीय फसल इस तरह से घिया, तोरई, ककड़ी, खीरा ये इस तरह से ले रहे हैं, और इससे जो है किसान भाई समझें कि इससे अत्यधिक बेनिफिट है। सब्जी से जो आदमी उस किसान को जो मिलता है उससे बहुत ज्यादा कुछ मिलता है।
1: इन फसलों में धान और गन्ना जैसी फसल मुख्य है। गन्ने के साथ सह फसली करने के एक नहीं कई फायदे हैं। जहां गन्ने की फसल को पकने में 10 से 12 महीने लग जाते हैं वहीं 60 से 90 दिनों में दूसरी फसलें पक जाती हैं। इस दौरान बीच बीच में सब्जियों और दलहनी फसलों की खेती करने से 2 से 3 महीनों में दूसरी फसलों की उपज से पैसे मिल जाते हैं। अच्छी बात ये भी है कि ऐसा कर हमारे सफल किसान अपनी जैविक खेती से दूसरे किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।
0: इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे जैविक खेती से जुड़े कुछ खास पहलुओं के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान।
4: आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं फ्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होश खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा।
0: आज के सफल किसान में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से संबंध रखने वाले शिव कुमार के बारे में, जो कि जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती की बात करें तो वो आज के समय की मांग भी है। जी हाँ, हमने दशकों रसायन युक्त खाना खाया, यानी ऐसे फसलें उगाई गई जिनमें रसायनों का उपयोग किया गया। इसकी वजह से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हुई और ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी काफी हानिकारक है। वहीं अगर हम जैविक खेती करें या फिर ऑर्गेनिक खेती करें तो उससे रसायनों को हम दूर कर सकते हैं, यानी ये रसायन मुक्त खेती होती है और इसीलिए ये हमारे लिए काफी लाभकारी भी है, पर्यावरण के अनुकूल भी है और मानव स्वास्थ्य पर भी इसका कोई विपरीत असर नहीं है। आइए देखते हैं जैविक खेती से जुड़ी कुछ खास बातें।
5: जैविक खेती को लेकर शिव कुमार का मानना है कि जैविक खेती पशु पालन के बिना मुश्किल है। शिव कुमार ने जैविक खेती को और बेहतर तरीके से करने के लिए ही पशु पालन करना शुरू किया था। किसान शिव कुमार अपने खेतों के लिए जीवामृत बनाने के लिए गोबर, गौमूत्र, बेसन, प्याज का रस, डीकम्पोजर, नीम का पत्ता, मिर्च, लहसुन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जीवामृत बनाने के लिए इन्हें बाजार से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। खाद का इंतजाम भी पशुओं के अपशिष्ट से ही हो जाता है, मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम।
6: ये हमारे पास एक गिर गाय है जो हमारी देसी नस्ल की गाय है और इसका दूध बड़ी गुणवत्ता युक्त है। देखने में आया है कि यदि हम कितनी भी पूरे दिन की मेहनत, हमने हार्डवर्क कितना भी परिश्रम किया हो, यदि एक गिलास दूध हमें शाम को मिल जाता है तो सुबह को पुनः हम कोई भी हार्डवर्क करने के लिए, पूरे दिन के कार्य करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। और जैविक खेती ऑब्लिक प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती है। बगैर गाय के या बगैर पशुधन के हमारी खेती संभव नहीं है। तो हम ये गाय पालन भी कर रहे हैं और भैंस पालन भी कर रहे हैं। इसी के गोमूत्र से हम जो अपना इंसेक्ट है उसको भगाने का कार्य करते हैं और जो हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू है इसी से हम कर लेते हैं। गाय के गोबर से इसी की झिल्ली को उतार करके हम जो सफल खाद है और सरल खाद है उसका प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, ये हमारी पशुशाला है और गायों को और भैंसों को हम अलग अलग रखते हैं, और क्योंकि गाय की गुणवत्ता बहुत अत्यधिक होती है, भैंस की थोड़ी सी कम होती है, इसका दूध भी भारी होता है। और जैविक खेती बिना पशु के संभव नहीं है, तो इसीलिए किसान भाइयों, पशुपालन से भी हम लोगों को बहुत आमदनी होती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। हमारे घर में यानी भैंस या गाय होनी चाहिए, कई पशु होने चाहिए, 10 पशु किसान को कम से कम रखने चाहिए, जिसमें से 6 पशु कम से कम हर समय मिल्क पीरियड में होने चाहिए, तो किसान की आमदनी में इजाफा होगा।
5: जैविक खेती वाकई सभी के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसके बावजूद किसानों के लिए एक दिक्कत जैविक फसल को बाजार में सही दामों पर बेचने की है, क्योंकि इसमें मेहनत थोड़ी अधिक होने के चलते जैविक फसल दूसरे फल सब्जियों से थोड़ी महंगी होती है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जैविक खेती से उपजी फसल आपको सेवन के लिए फायदेमंद कितनी है।
6: जैसे मैंने देखा है, सुना है कि जैविक के दाम बहुत ज्यादा होते हैं, तो जो अच्छा है शुद्ध खाना हर कोई चाहता है। मैं तो इसको नॉर्मल रेट पर बेचना चाहता हूं, क्योंकि अब उत्पादन, पहले जब हम जैविक खेती में आए थे तो हमारा उत्पादन घटा था, अब हमारा उत्पादन पहले से भी अधिक होने लग गया है और मैं इसको नॉर्मल रेट पर मैं चाहता हूं कि जो गरीब आदमी है वो भी इसको खाए, वो भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत है। ऐसा नहीं कि जिनके पास सब कुछ है, दाता का दिया हो, कुदरत की मौज है, वही ऑर्गेनिक भोजन या नेचुरल जो हमारा उत्पाद है उसको खरीद पाए। मेरी ये ललक होती है कि हम डोर टू डोर हर किसी के घर से, जो भी मतलब जिनको भी चाहिए या जिनको नहीं भी चाहिए उनको भी हम तो ऐसे ही दे के आ जाते हैं कि सर हमारे सैंपल है, इसको आप चेक करके देखिएगा, जिनको पसंद आता है सर दोबारा से हम लोगों को कॉल करते हैं, दोबारा से उनको दरवाजे खटखटाते हैं, सब जो भी आपने उत्पाद की

0: और इन्होंने वर्मीवास के द्वारा इनकी बहुत अच्छी खेती होती है और हम कृषि विज्ञान केंद्र साइंटिस्ट की टीम इनके खेत पर भ्रमण करती रहती है और आज ये जनपद के अंदर बहुत अच्छा अपना जैविक उत्पाद कर रहे हैं। इनके पास में काफी मधुमक्खी पालन का भी इनके बॉक्स हैं और इन पर इनके पास अपना जैविक का अपना नींबू भी है, काफी अच्छा इनका काम रहता है यहाँ पर। और मिट्टी की जांच के कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर अपने इस फार्म की कराते रहते हैं और इनके साथ में पूरा जनपद क्या पूरा सभी विभाग का इनका इनका कोरिलेशन रहता है। मिस्टर शिव कुमार जी बहुत अच्छी जैविक पर काम कर रहे हैं और समय समय पर हमारे जो जैविक केंद्र है गाजियाबाद में वहां भी अपना प्रशिक्षण समय समय पर जैसे लेते रहते हैं और इनको बहुत अच्छी जानकारी है जैविक के ऊपर और ये बहुत ही अच्छा अपना काम कर रहे हैं।
1: जैविक खेती के लिए मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होना बेहद जरूरी है, लेकिन इन दिनों रसायनों का इस्तेमाल बहुत अधिक बढ़ चुका है। नतीजा ये हो रहा है कि इनसे स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और खेत की मिट्टी भी कमजोर पड़ रही है। रासायनिक पदार्थ पानी के साथ मिलकर जमीन के नीचे स्थित पानी तक भी पहुँच रहे हैं और उसे भी प्रदूषित कर रहे हैं। यही वजह है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र।
2: इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती संस्थान किस तरीके से इस दिशा में प्रयास कर रहा है। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सफल किसान। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती संस्थान के बारे में। जी हाँ, इस संस्थान का मुख्य मकसद यही है कि किसानों को बताया जाए कि कैसे वो जैविक या फिर प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं, इसके लाभ के बारे में भी उन्हें जानकारी दी जाए और साथ ही ये भी बताया जाए कि कैसे जैविक खेती को अपना कर भी वो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और बाजार में इसके अच्छे दाम भी प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
1: जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र और इससे जुड़े वैज्ञानिक किसानों को समय समय पर खेती किसानी से जुड़ी सही और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। किस तरह से किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जाता है और कैसे, ये केंद्र किसानों की मदद के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के निदेशक डॉक्टर जगनीश शर्मा। साथ ही संस्थान के उपनिदेशक जगत सिंह बता रहे हैं कि कैसे किसान सही जानकारी के जरिए अपने खेत में बढ़िया उपज पा सकते हैं।
3: हमारा जो संस्थान है वो देश में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमुखतया यहाँ पर कार्यरत है और हमारे जो संस्थान है इसके चार मुख्य मैंडेट्स हैं, जो कार्य हैं हमारे। सबसे पहला जो है हमारा कार्य वो ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है किसान भाइयों से लेके और सभी जितने भी एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उन सब के साथ मिलके जो है हम कृषि के जितने भी जैविक कृषि के ट्रेनिंग्स हैं, हमारे जो प्रशिक्षण के प्रोग्राम हैं वो चलाते हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग करना सभी स्टेक होल्डर्स की, ये हमारा सबसे पहला दायित्व है। दूसरा जो है हमारा प्रमाणीकरण है कि प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना है देश में। आपको पता ही है कि दो प्रकार की प्रमाणीकरण की प्रक्रियाएं हैं देश में। पहली तो है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, जो अपेडा एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उनके द्वारा चलाई जाती है, जो एक्सपोर्ट के लिए और डोमेस्टिक ट्रेडिंग के लिए दोनों के लिए कार्य करती है। हमारे यहाँ पर पीजीएस सेक्रेटरिएट है जिसका नाम है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन। तो ये सर्टिफिकेशन ग्रुप बेस्ड सर्टिफिकेशन है और जैसे कि आपने नाम सुना पार्टिसिपेटरी, मतलब किसानों द्वारा खुद का निरीक्षण खुद करके और खुद ही अपना पीयर इंस्पेक्शंस पीयर अप्रेजल्स के द्वारा डिक्लेयर करना कि हाँ हम जो है केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं और हमारी जो है जैविक खेती हम जैविक कर रहे हैं और स्टैंडर्ड्स और जो मानक हैं उनके आधार पर जैविक खेती कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है वो भी हमारा दूसरा दायित्व है। और तीसरा जो हमारा मैंडेट है वो है टेस्टिंग का। हमारे यहाँ पर हमारे संस्थान के साथ हमारे पांच और संस्थान हैं जिनका हम क्षेत्रीय संस्थान कहते हैं और जो रीजनल सेंटर है हमारे अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में।

0: जैसे कि हेडक्वार्टर गाजियाबाद से शुरू करें यहाँ पर, तो ये जो संस्थान है यहाँ पर लेबोरेटरी भी है, जो ऑर्गेनिक जो इनपुट्स हैं जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 है उसके तहत हमारी लैब्स जो हैं वो नोटिफाइड हैं, और हमारी जो हेडक्वार्टर की लेबोरेटरी है वो तो NABL एक्रेडिटेड भी है, और इसके अलावा बेंगलोर की लेबोरेटरी है RCNF बेंगलोर और RCNF नागपुर है, और इसके अलावा जो है हमारी RCNF भुवनेश्वर है, इसके अलावा हमारे RCNF मणिपुर है। तो हमारी 5 संस्थान हैं क्षेत्रीय जो ट्रेनिंग भी करते हैं, टेस्टिंग भी करते हैं, और उसके साथ साथ में सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को भी सुचारू रूप से चलाने में सहायक हैं।
1: जैविक खेती के लिए जो इम्पोर्टेंट इनपुट हैं आज इसके ऊपर मैं चर्चा करेंगे। और जब जैविक खेती की बात करते हैं तो जैविक खेती में जो सॉइल हेल्थ या मृदा स्वास्थ्य जैविक खेती का मेरुदंड है, और मृदा स्वास्थ्य में जो ऑर्गेनिक कार्बन है इसको इसका नर्वस सिस्टम कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जैविक खेती में भूमि स्वास्थ्य की एक अहम भूमिका है, और भूमि स्वास्थ्य में जो ऑर्गेनिक कार्बन है या ऑर्गेनिक मैटर है ये एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, क्योंकि पिछले 60-70 सालों में भारतवर्ष की मृदाओं में जो मृदा कार्बन जो कंटेंट है, जैसे जैसे फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन बढ़ा है वैसे ही वैसे जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है या मृदा में जो जैवांश पदार्थ है इसमें कमी आने लगी है। तो कमी आने की वजह से जो फर्टिलाइजर का रेस्पॉन्स भी कम होने लगा है, और जहां तक हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो ऑर्गेनिक कार्बन का या ऑर्गेनिक मैटर का इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है। हमारे देश में ऑन एन एवरेज जो सॉइल का जैवांश कार्बन स्तर है वो 0.2 से 0.3 के बीच है, और एक सफल जैविक खेती करने के लिए हमारी जमीनों का जो ऑर्गेनिक कार्बन है या जैवांश कार्बन है वो करीब करीब 0.5 से तो बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। ये कन्वेंशनल फार्मिंग के लिए है, और अगर बढ़िया आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में आना है तो हमारी खेती का जो जैवांश कार्बन है वो करीब करीब 0.7 के ऊपर होना चाहिए, 0.7 से लेके 1.2 के बीच होना चाहिए। यदि इतना हमारा जैवांश कार्बन है तो हमारी जैविक खेती जो है उसको सफलतापूर्वक कर सकते हैं।
2: कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर शुरू की गई खेती के बाद शिव कुमार की आमदनी साल दर साल लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2017 के बाद से जब उन्होंने अपने खर्च और मुनाफे का लेखा जोखा रखना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगातार घट रही है जबकि मुनाफा लगातार बढ़ता जा रहा है।
3: किसान भाइयों, पहले से तो हिसाब किताब नहीं लगाया था, लेकिन 2017 से मैं थोड़ा अपने खेतीबाड़ी के बारे में लेखा जोखा रखता हूँ। उससे पहले क्या था कि मेरा खर्चा आ जाता लगभग 4-4.5 लाख खर्चा आ जाता था मेरे पास में। अपनी तो केवल 10 एकड़ जमीन है, लेकिन 5-6 एकड़ जमीन में लीज पे लेकर के उसमें कार्य करता था, अभी भी करता हूँ। तो उससे क्या होता था कि मेरा जो है लगभग 4-4.5 लाख रुपए उसमें खर्चा आ जाता था, और लगभग 5-6 लाख रुपए मुझको टोटल आमदनी होती थी। तो जिसमें शुद्ध बचत मुझको सालाना मुश्किल से 1-1.5 लाख मुश्किल से निकल आती थी, और जिसमें परिवार का भरण पोषण पालन बड़ा मुश्किल होता था। 2017 से जैसे मैं अब हिसाब किताब लगाने लगा हूँ, तो जब मैंने हिसाब किताब लगाया था तो मेरी जो बिक्री थी वो मेरी लगभग 7.5 लाख के आसपास में पहुंची थी, और खर्चा मेरा वही था लगभग 4-4.25 के समथिंग में हो गया था। उसके बाद में मैंने 2018-19 में डाटा निकाला था तो तब मेरी आमदनी बढ़ करके लगभग 8.5-9 लाख हो गई थी, और मेरा जो खर्चा है वो थोड़ा सा और डाउन चला गया था, लगभग मैं 2.25 लाख के आसपास में चला गया था। और 2021-22 के सेशन में भी मैंने अपने हिसाब का कैलकुलेशन किया है तो उसी स्थिति में देखने में आया तो मेरी आमदनी लगभग 11-11.5 लाख के करीब पहुंच गई, और मेरा जो खर्चा है वो 1.25 लाख मुश्किल से रह गया। और अभी का जो हिसाब है, अभी का हिसाब मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन मुझे परिपूर्ण विश्वास है कि मेरी जो आमदनी है वो 23-24 लाख पार कर गई है और मेरी जो खर्चा है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मुश्किल से 60 से 65 हजार रुपए प्रति वार्षिक होगी। तो इस तरह से मेरी आमदनी में इजाफा हुआ और बहुत खुशहाली से मैं खेती कर रहा हूँ।
2: शिव कुमार आज के समय में नजीर बन दूसरे किसानों को प्रेरित तो कर ही रहे हैं, खुद भी अच्छा मुनाफा कमाकर गांव के कई और परिवारों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो वहीं जैविक खेती को अपनाकर समाज के कल्याण के लिए भी एक कदम बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हमारे सफल किसान शिव कुमार आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं।
4: हमारा आज का सफल किसान, जिसमें आपने जाना कि कैसे ऑर्गेनिक खेती आज के समय की मांग भी है और इस क्षेत्र में किसानों के लिए बहुत तरह के अवसर भी हैं। बस आवश्यकता है कि आप इसे करने की ठाने और शुरुआती चुनौतियों से डरे नहीं, जैसा कि शिव कुमार जी ने किया। आशा करते हैं कि उनके जीवन से आप भी कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। आज के सफल किसान में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव है, अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम सफल किसान लेकर आए, किसी किसान की कहानी को कार्यक्रम में दिखाएं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें, सफल किसान कमरा नंबर 77 CPC दूरदर्शन खेल गांव नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। हम ऐसे किसानों की कहानियां जानना चाहते हैं जिन्हें आप हमें बताएं, ताकि उन्हें भी एक मंच मिल सके। सफल किसान में सफलता की कुछ और कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।

नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट खेती में। मैं आपको लेकर आया हूं आज चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी में आप यहां पर देखेंगे बैम्बू फार्मिंग। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये रॉकेट की गति से तेजी से बढ़ने वाला बांस है जगेंडिस, और आप देख करके आपको लगेगा कि ये कहीं अमेजन के जंगलों में खड़े हुए इतने मोटे बांस है, लेकिन नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट भी नहीं है, ये चंडीगढ़ है और ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पूरे देश में कहीं भी हो सकता है। हम आपको बता दें कि बांस की करीब 1600 वैरायटी हैं पूरे हिंदुस्तान में, कुछ वैरायटी कहीं भी हो सकती हैं। और इस तरह से ये जगेंडिस जो है, यहां पर हमें पता लगा कि इसकी उम्र मात्र 3 महीने है, 3 महीने में भी ये इतना ऊंचा चला जाता है। उसके बाद जैसे ही वो ड्राई होता है, सूखता है, उससे पहले उसको काट लिया जाता है। उसके क्या उपयोग हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। बांस को लेकर जो सरकार ने जो अपना प्रोजेक्शन दिया था, उसे जो एक तरह से लकड़ी से घास में की कैटेगरी में उसको रखा, और बांस की खेती पर किसी तरह का प्रतिबंध, उसे काटने पर किसी भी तरह का प्रतिबंध न हो, ये एक नियम बना दिया गया, तब से पूरे देश में बांस को प्रमोट किया जा रहा है।

0: हमारे साथ चंडीगढ़ में जो एनवायरमेंट सोशियोलॉजी के हेड हैं डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी, आप यहां पर हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब से सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो बांस है उसका इस एनवायरमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद आगे चलेंगे।
1: देखिए, बांस एकमात्र ऐसा पौधा है जो आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है। बाकी पौधों से अगर कंपेयर करें तो 135% तक ज्यादा ऑक्सीजन देता है।
0: क्या बात।
1: और ये बढ़ता इतनी तेजी से है कि आप जैसे देख रहे हैं कि 3-4 महीने में ये 90-100 फीट तक चला जाता है।
0: रॉकेट साइंस है,
1: रॉकेट है। और ये एक दिन में 3-3 फीट तक बढ़ सकता है। आमतौर पे 1 फीट तो रेगुलर बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन 3-4 फीट तक भी बढ़ सकते हैं। और इसमें 1600 के करीब वैरायटी हैं जो नॉर्थ इंडिया में है, वो अभी लगभग 30-35 वैरायटी अच्छे से चल रही है।
0: और ये आपने सिर्फ यहाँ पर डैमो के लिए, यहाँ पर ही ये हम सब देख रहे हैं कि इसका एक्सपेंशन भी किया गया है?
1: हम सैकड़ों एकड़ में इसकी खेती कर रहे हैं, मैं अपने खेत में भी कर रहा हूँ, मेरे दोस्त भी कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े इलाकों में हम लगा रहे हैं।
0: एक्यूरेट कितने एकड़ में किया होगा?
1: लगभग 500 एकड़ में पहुंच चुका होगा।
0: क्या बात। हाँ। कौन कौन से एरिया स्पेशली कवर किए हैं?
1: इसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्से हैं जो तेजी से लग रहे हैं, और हिमाचल में भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो लगा रहे हैं। और इसको लगाने के पीछे कारण ये रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी घोषित किया, जो बांस पहले पेड़ की कैटेगरी में था उसको अभी घास
0: की कैटेगरी
1: में लगा दिया है। इससे क्या हुआ कि जो नॉर्थ इंडिया के किसान थे उनको भी बांस में इंटरेस्ट जागा है। पहले हमें ये लगता था कि बांस को कल्टीवेट करना, इसको आगे बढ़ाना ये इलीगल है, तो अभी इसको लीगल कर दिया है सरकार ने, उसकी वजह से ये बहुत तेजी से अभी फैल रहा है। ये CNG, चारकोल, एथेनॉल इससे बनना चालू हो चुका है, और इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही सुपीरियर होता है, और ये बर्निंग के लिए काम आता है, जो बड़ी बड़ी भट्टियां चलाने के लिए। तो ये डीजल, पेट्रोल और कोयले का एक अच्छा रिप्लेसमेंट है।
0: बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर आपको पता है कि अब बांस लकड़ी नहीं है, वो घास की कैटेगरी में है, उसको उगाना, उसको काटना, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, और इसी वजह से नॉर्थ इंडिया में भी किसानों ने इसको उगाना शुरू किया है। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इस इलाके में भी करीब 500 एकड़ जमीन पर तो उनके अकेले के प्रयास से ये शुरू हो चुका है, और इसके अलावा भी किसान अलग अलग तरीकों से उसे पहले से ही कर रहे हैं। यहां पर जो वैरायटीज हैं, हम उन वैरायटीज को जानेंगे, उनकी खासियत क्या है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस रॉकेट बैम्बू से।
1: जी, इसको नाम जाइगेंटस है और चाइनीज बैम्बू भी बोलते हैं, लेकिन चाइनीज बैम्बू थोड़ा डिफरेंट होता है। चाइनीज बैम्बू में क्या होता है, 5 साल तक वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, और 5 साल के बाद वो तुरंत 90-100 फीट का चला जाएगा विद इन 3 महीने में। और ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन उसके जैसा ही है, ये जाइगेंटिस बोलते हैं इसको। और इसकी खास बात यह है कि ये बहुत मोटा होता है, इसकी जो फर्नीचर बनने का, घर बनाने के लिए, पैलेट्स बनाने के लिए, और एक जो खूबसूरत फर्नीचर होता है उसके लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये बहुत महंगा भी बिकता है। अगर प्रोसेस करके बेचा जाए तो किसान कई गुना ज्यादा मुनाफा इससे कमा सकते हैं।
0: यहाँ पर हम देख रहे हैं इससे उतर उतर कर इस तरह के प्लेट्स गिर रही हैं, आप इनको नेचुरल प्लेट कह सकते हैं, इनका क्या उपयोग?
1: देखिए, इसके हजारों उपयोग हैं। ये इसका पैकिंग मटेरियल बनता है, गत्ता बनता है, पेपर बनता है, कटोरियां बनती हैं, चम्मच बनते हैं, डिस्पोजल आइटम बनते हैं, ये सीधे भी पैकिंग मटेरियल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं अभी, इसकी पैलेट्स भी बनती हैं, खाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। और ये हर पोरी पे एक गिरता है, तो किसान मान लो कि एक बैम्बो है उसके पास और 50 पोरियां, तो 50 ऐसे गत्ते उसके पास गिरने वाले हैं, तो ये एक्स्ट्रा इनकम है किसान की। और इसका मल्चिंग के लिए भी किसान अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं।
0: हम यहां से कुछ और वैरायटीज हैं उधर चलते हैं और डॉक्टर साहब से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सामने हम एक और वैरायटी देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम क्या है, इसकी खासियत क्या है, और ये क्या उतनी ही तेजी से बढ़ता है जिस तेजी से जगंडिस बढ़ता है? जी डॉक्टर साहब,
1: देखिए लगभग सारे बांस बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और ये न्यूटन, टोल्डा और बालकोआ, ये 3-4 वैरायटी हैं जो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा चलती हैं, उन्हीं में से ये एक है। और इसका भी बढ़ने का जो रफ्तार है वो बहुत तेज होता है, और इसमें आप देखेंगे जैसे हमने जाइगेंटिस में देखा, एक ही पौधे में हजारों डंडे निकले हुए हैं, इसमें भी उसी तरीके से हजारों निकलते हैं। और इसको संभालना और इसको मैनेज करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, और आप जितना चाहें इसको जिस तरफ चाहें बढ़ा सकते हैं।
0: आमतौर पर हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया की जो मार्केट है, जिसमें बल्लियों की, जब आप बल्लियों की बात करते हैं, तो उसमें ये बांस जो है ज्यादा इस्तेमाल में आता
1: है। जी, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आता है, और ये भरा हुआ निग्गर बांस जिसको बोलते हैं वो है, वो खोल अंदर से खाली होता है, ये पूरी तरह भरा होता है, तो इसमें वजन जाता होता है। तो अगर किसान इसको पर किलो के हिसाब से या पर टन के हिसाब से बेचे तो इसमें मुनाफा ज्यादा होता है।
0: बांस की तीसरी वैरायटी आई है हमारे साथ, और ये आप पीछे देख रहे हैं, ये कुछ पतला बांस है, इसका क्या नाम है, इसकी खासियत क्या है? जी डॉक्टर साहब, ये भी बताइए।
1: इसको टूल्डा रॉक्स बोलते हैं, और इसकी खास बात यह है कि यह भी बहुत तेजी से बढ़ता है, और ये बंच में बढ़ने वाला बांस है, इसको जितना काटेंगे उतना ज्यादा फैलता रहेगा ये। और जिस मान लो कि आपको कच्चा बांस है उसमें 50% आपने तोड़ के अगर उसका अचार मुरब्बा बना लिया तो 50% डंडे और ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, तो तुरंत आपको पैसा मिल गया अचार मुरब्बा से, और जो 50% बाकी बचा वो आपके डंडे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के तैयार हो जाते हैं।
0: यहाँ पर बांस की उपयोगिता जो है वो बांस की वैरायटीज के साथ में बदलती रहती है, और इस उपयोगिता में आप कुछ और बांस देखेंगे। बांस खेतों की बाढ़ लगाने के भी काम में आता है, आपको बाढ़ लगाने में नेट पर अवेलेबल है कि इतने हजार रुपया लगेंगे पर एकड़, लेकिन यहाँ पर आप ये देखेंगे क्या शायद ये बाढ़ के लिए उपयोग आने वाला बांस है?
1: ये अर्बन हाउसेज में जो दीवारों के साथ में लगाते हैं, हेज बेम्बो बोलते हैं इसको, तो ये बहुत ही खूबसूरत हेज बनाता है, क्योंकि यहाँ पे इसको धूप नहीं मिल रही है तो बहुत कम बढ़
0: खेतों की भी हेज बना देता है।
1: हाँ, खेतों की भी बना सकते हैं, लेकिन खेतों की हेज बनाना चाहिए आपको टूल्डा न्यूटन या बालकोआ से, और या एक डी स्टिक्टस बेम्बो है उसके पीछे लगा हुआ है उस तरीके से, क्योंकि वो पैसे ज्यादा देते हैं, ये केवल देखने के लिए काम आता है। इसके चटाई वगैरह, मैट और ये सब चीजें बनती हैं। जो पीछे हमारा लगा हुआ है उसको बुद्धा वैली बोलते हैं, उसका इससे पीछे वाला उसका डेकोरेशन के लिए।
0: बुद्धा वैली ये है, हम बुद्धा वैली के पास में ही आते हैं, ये बुद्धा वैली है जो गांठदार बांस है। जी, इसके बारे में आप बता रहे हैं।
1: इसको बेम्बुसा वल्गरिस या बुद्धा वैली बोलते हैं, इसमें गांठें होती हैं छोटी छोटी, और ये देखने में खूबसूरत लगता है, अर्बन हाउस होल्ड में भी लगाते हैं इसको। इसी तरीके से इसको व्हाइट बेम्बो भी बोलते हैं, पॉलीमार्फा बोलते हैं इसको वैसे अंग्रेजी में, तो ये व्हाइट कलर का रहता है, और इसकी जो यूज है वो फर्नीचर में सीढ़ियां बनाने के लिए।
0: इसकी खास बात ये है कि इसमें जो है स्मूथनेस ज्यादा है।
1: हाँ, स्मूथनेस ज्यादा है, इसमें फालतू जो कांटे होते हैं, जो डंडियां होती है, वो नहीं निकला होता है। टूल्डा में, न्यूटन में और बालकोआ में थोड़ी बहुत डंडियां निकलती हैं।
0: बांस की एक और वैरायटी है, इस वैरायटी का नाम क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसका बनता क्या है स्पेशली, ये भी हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर साहब,
1: ये बेम्बुसा न्यूटन वॉल बोलते हैं इसको। वॉल इसलिए क्योंकि इसके कांटे आपस में फंस के और एक दीवार बना लेते हैं। जैसे किसान ने अपनी मेड़ पे चारों तरफ लगा दिए, तो उसका फायदा क्या होगा कि कोई जानवर इंसान अंदर नहीं आ पाएगा।
0: आप कह रहे हैं कि किसान को अगर अपनी मेड़ तैयार करनी है तो बेम्बुसा सबसे अच्छा है।
1: हाँ, इसको बोलते हैं लाइव फेंसिंग या लाइव वॉल, तो ये पशुओं को भी रोकता है, इंसानों को भी रोकता है, और इससे पैसे भी आते हैं। ये दुनिया की एकमात्र बाउंड्री है जो पैसे खर्च नहीं करवाती, पैसे देती रहती है।
0: और स्पेसिफिक यही वाला बांस है वो?
1: हाँ, यही वाला है, और इसके अलावा भी दूसरी वैरायटी लगा सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह आपकी जो बाउंड्री उसको कवर कर लेगा।
0: तो क्या ये ऐसे फैलता नहीं है जैसे जगेंडिस वगैरह फैलता है, इतना इस तरह से चूड़ा?
1: फैलते सारे हैं, लेकिन आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जिस साइड से आपको नहीं फैलाना उसके साइड से ट्रैक्टर निकाल देंगे तो वो नहीं फैलेगा। और आप एक पीढ़ी लगाएगी इसको, बांस को, मान लो कि मैं लगा रहा हूँ तो मेरी 3-4 पीढ़ियों के लिए मौज है। ये लगभग 60 से 70 साल चलता है, इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है।
0: मतलब ये घास जरूर है, लेकिन ये घास 70 साल तक आपके लिए उपयोगी रहती है। यहाँ पर ये भी पेड़ है, ये इसका नाम क्या है, ये भी हैज की तरह दिखता है कुछ कुछ, लेकिन इसे भी समझेंगे।
1: हाँ, ये वाइल्ड बेम्बो हैं, और इनको भी न्यूटन के आसपास की ये वैरायटी हैं, जैसे वहां पे काट के भी हमने डाले हुए हैं। तो ये सारे बेम्बो ऐसे हैं जिनको कहीं पे भी लगाया जा सकता है, खारा पानी, मीठा पानी, अच्छी जमीन, खराब जमीन का भी इनको कोई दिक्कत नहीं होता है। एक बार लगाने के बाद में 70 साल तक ये नॉन स्टॉप चलते हैं।
0: राजस्थान में जैसलमेर जैसी जगहों पर जहां खारा पानी नीचे बहुत है, वहां पर भी
1: अभी BSF का एक प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के जो बाउंड्री है हमारी, उसके साथ साथ में 1 किलोमीटर चौड़ाई और लगभग 200 किलोमीटर लंबाई में वो लगा रहे हैं बेम्बो। हाँ, वो दुनिया
0: स्पेशली राजस्थान के बॉर्डर पर,
1: बिल्कुल, ताकि उससे एक तो फेंसिंग हो जाए, एक डेजर्ट ना फैले, दूसरा जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं उनके लिए भी आसान रहे डिमार्केशन करना, और उससे पैसा भी निकलता रहे, और जो बीएसएफ या बाकी जो आर्म फोर्सेज हैं उनको जो बांस के डंडे चाहिए जो हजारों लाखों की संख्या में चाहिए होते हैं वो भी उनको वहां से मिल जाएंगे और वो एरिया भी हरा भरा होना चालू हो जाएगा।
0: मतलब आप ये जो बैम्बू है, जो बांस है, इसकी आप जो महिमा है उसको आप समझ सकते हैं। 1600 तरह की वैरायटीज हैं। यहाँ पर एक और वैरायटी है, और इस तरह की वैरायटी जो नॉर्थ इंडिया में आसानी से हो सकती हैं, और मैंने पहले बताया ये जो घास है ये 60-70 साल तक चलेगी और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ ना कुछ और बहुत कुछ लाभ देती रहेगी। ये वैरायटी जो है बहुत स्मूथ दिख रही है, इसका क्या नाम है, ये किस उपयोग में आती है, ये भी हम देखेंगे।
1: ये व्हाइट बेम्बो है, इसको टूल्डा व्हाइट भी बोलते हैं, इसको और भी दो तीन नामों से जानते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसके कोई कांटा नहीं है, बिल्कुल सीधा होता है ये, और इसकी जो हाइट है वो बढ़ती रहती है और ये चारों तरफ भी फैलता रहता है जितना हमें चाहिए, और ये बहुत ही नजदीक नजदीक ग्रो करते हैं, और इसका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में, केन बनाने में, या फिर जो सजावटी सामान है उसमें, और पशुओं के लिए बाड़ा वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। वैसे बेम्बो की किसी भी वैरायटी को किसी भी काम में लिया जा सकता है, लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिनका स्पेसिफिक फीचर की वजह से किसी पर्टिकुलर काम में उनका ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर मान लो कि पशुओं के बाड़ा बनाना है, या फिर आपको उससे सीएनजी निकालना है, या फर्नीचर बनाना है, तो उसके हिसाब से वैरायटी में थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। जैसे अभी हम ब्लैक बेम्बो देखेंगे, उसकी वैरायटी थोड़ी डिफरेंट है, हैमिल्टोनी बेमिल्टोनी करके तीन चार वैरायटी हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बांस से लगभग 25,000 प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो वो कैसे बनाएं और उसके बारे में हम बात कर सकते हैं।
0: यहाँ पीछे कम से कम 4-5 तरह के बांस के झुंड दिख रहे हैं, इनके नाम क्या हैं, इनकी खासियत क्या है, यहीं से एक बार डॉक्टर विनोद से हम जानने की कोशिश करेंगे, और उसी के साथ में फिर बांसों के अधिकतम उपयोग क्या हो सकते हैं उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। जी डॉक्टर साहब,
1: ये डंडा बांस है, लाठी बांस है, इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं और हर क्षेत्र में इनके नाम बदल जाते हैं, साइंटिफिक नाम सेम रहते हैं, लेकिन जो डंडा बांस है उसकी खासियत, जैसे पुलिस वाले डंडे रखते हैं, या फिर मच्छरदानी लगाने के लिए रखते हैं, या बायोमास में भी इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हैमिल्टोनी, बेमिल्टोनी और टूल्डा, न्यूटन, बालकोआ, इस तरीके से इनके एक पूरी फैमिली है, और इन फैमिली में दो तरीके के स्पेसिफिक बांस होते हैं, एक वो हैं जो दूर दूर फैलते हैं और एक वो हैं जो बिल्कुल बंच में एक साथ में निकलते हैं। तो इसमें दो मेजर वैरायटी हैं, और ये कोई भी वैरायटी कहीं पे भी पैदा हो सकती है। जो ऐसी जगह है जहां पे बर्फ गिरती है वहां पे थोड़ा वैरायटी सोच के लगाना पड़ता है, और बहुत गर्म इलाकों में, उसके अलावा लगभग सभी वैरायटी सभी जगह पे चल जाती है।
0: बिल्कुल, यहाँ पर आखिर में मैं आपको ब्लैक बैम्बू की तरफ ले जाऊंगा, और वहीं से फिर बांस का पूरा का पूरी जो खासियत है, बांस की जो उपयोगिता है पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे।
1: इसको सिमेंसिस बोलते हैं। इस बांस की खास बात ये है कि ये पूरा बंच में उगता है और ये बहुत ही गहरा होता है। आप देखेंगे एक पौधा लगाया था ये, और इस एक पौधे के कई हजार बन चुके हैं।
0: ये भी वॉल बनाने के काम आ सकता है।
1: हाँ, वॉल बनाने के लिए भी काम आ सकता है, लेकिन इसका ज्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है फर्नीचर में, अगरबत्ती की काड़ी बनाने में, या जो आपके चॉपस्टिक्स हैं, ऐसी सीधी चीजें जिनको मार्केट वैल्यू ज्यादा है उनमें इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये वाले जो बेम्बो हैं, इसके खास बात यह है कि ये हजारों की संख्या में उग जाता है, और जिस साइड में इसको पानी मिलेगा, जिस साइड में इसको नमी मिलेगी, उस साइड में बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो ये भी जैसे व्हाइट बेम्बो का एक वैरायटी है। इसका जो खास बात है ब्लैक बेम्बो का, ये इसको दो वैरायटी हैं, हैमिल्टोनी बेमिल्टोनी, इसको ब्लैक बेम्बो भी बोलते हैं, और इसकी खास बात ये है कि इसके पत्ते चौड़े होते हैं, और इसकी जो बॉटनिकल जानकारी है वो हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट के जो टीचर हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पे। लेकिन इसको अगर आप देखेंगे तो इसका बिल्कुल ब्लैक कलर है, और इस ब्लैक कलर की खास बात यह है कि जो ही वो ग्रीन उगता है वो ताजा प्लांट है, और जो ही वो काला हो जाता है
0: तो काट
1: ये काट लेने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इसको बजा के देखते हैं कि अच्छा। जितना पुराना हो गया उतना अच्छा है। और इसको काटने के लिए किसान भाई को क्या करना चाहिए कि वो इसको तीन जनरेशन में डिवाइड कर ले, कि एक तो दादा है, एक बाप है, और एक पोता है। तो जो दादा है मतलब 3 साल पुराना जो हो गया उसको काटेंगे तो वो पूरी तरह पका हुआ है, तो पिछले साल वाले अगले साल तैयार हो जाएंगे, अगले साल तैयार हो जाएंगे, तो साल में एक बार इसकी अच्छे से कटाई करते रहें।
0: तो हमेशा आपको दादा को
1: निकालता रहना है क्योंकि उसकी उम्र हो गई है, उसको नहीं निकालेंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो बांस एक ऐसा पौधा है जो जबरदस्ती पैसा देता है, अगर आप नहीं भी लेंगे तो बोलेगा कि भाई काटो मेरे को, मेरे पास पैसे रखने का अभी टाइम नहीं है। तो किसान के लिए एक जबरदस्त चीज है ये, अपने आप बढ़ता रहता है, कोई देखभाल नहीं, कोई कीड़ा नहीं लगता है, कोई बीमारी नहीं लगती है, तो ये किसान के लिए बहुत ही अच्छा एक चीज है।
0: शुरू में डॉक्टर साहब जब बांस की खेती करनी होती है किसी किसान को, उस समय तो कुछ समय के लिए उसका पानी, उसकी देखरेख, इस सब को थोड़ा सा समझना होता है।
1: इसमें ये घास की वैरायटी है, जैसे हरियाणा पंजाब राजस्थान में झुंडा एक उगता है, सरकंडा जिसको बोलते हैं, लगभग वही चीज है ये इसकी हाइट और जो मोटाई है वो बढ़ जाती है, इसको ज्यादा देखभाल की जरूरत है नहीं। जब स्टार्टिंग में लगाएंगे तो अच्छे से इसको सोच समझ के, इसके बारे में जान के लगाना चाहिए और आपके लोकल मार्केट में किस चीज की डिमांड है उसके हिसाब से लगाना चाहिए, फिर किसान को बेचने में दिक्कत नहीं आएगी। अभी सरकार की तरफ से भी और गैर सरकारी बहुत सारी संस्थाएं इसका चारकोल, CNG पैलेट्स और तमाम सारी दूसरी चीजें बनाना चालू कर चुकी हैं, तो बेचने के लिए वैसे भी दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी ऐसी वैरायटी लगाएं जो लोकल मार्केट में जल्दी बिक जाती है, जैसे टूल्डा, न्यूटन, हैमिल्टोनी, बेमिल्टोनी, जैगेंटिस, तो ये फटाफट बिकने वाली वैरायटी है। और इसके साथ साथ में जब पहला 1 से 2 साल मान लें किसान की, उसको बेसिक देखभाल करनी चाहिए।
0: 1 एकड़ में कितने पौधे,
1: ये डिपेंड करता है कि फार्मर कितना जल्दी प्रोडक्शन चाहता है। तो कुछ फार्मर इसका 500 पौधे लगाते हैं, कुछ 600 लगाते हैं, कुछ 750, कुछ 1000 भी लगाते हैं। तो
0: आपका रिकमेंडेशन?
1: मेरा रिकमेंडेशन ये है कि 600 से 750 के बीच में लगाने चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो और आपके पास साइजेबल क्वांटिटी हो बेचने के लिए।
0: कुछ छोटी जोत के किसान इस देश में ज्यादा हैं, उनके लिए भी क्या ये लगाना जरूरी है या फिर आप उनको यही सलाह देंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री पर लगाएं? तो
1: बाउंड्री से चालू करें और जब उनको बाउंड्री से पैसे आने चालू हो जाएं तो वो अपनी बाकी सारी फसल से ज्यादा पैसा देना चालू करें।
0: कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़े,
1: बिल्कुल, जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए तो फिर अंदर भी लगाना चालू कर दें। और ये इसकी खास बात ये है कि मान लो कि कोई छोटा जोत का किसान है, मात्र 1 एकड़ का किसान है, उसने खेत के चारों तरफ बैम्बो लगाया, बीच में एक पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर का सिस्टम है जिसको PQNK भी बोलते हैं, तो उस मॉडल पे उसने फल सब्जियां लगा दिया, बीच में थोड़ी बकरियां छोड़ दी या बाकी जानवर छोड़ दिए, तो उसके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बन जाएंगे और उसकी दीवार भी उसको पैसा देना चालू करेगी। आपने और कोई दीवार नहीं सुनी होगी जो पैसा देती हो, लेकिन बैम्बो की दीवार पैसा देती है। इसके साथ साथ
0: दीवार के लिए ब्लैक बैम्बो भी अच्छा है,
1: कोई भी बैम्बो लगा सकते हैं। आपके खेतों में पशु का नुकसान कितना है उसके हिसाब से सोचना चाहिए।
0: आपने 500 एकड़ जमीन में किसानों को बांस लगवाया है अभी तक, इसको लेकर के आप कितना उम्मीद से हैं?
1: UN की एक रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा गया है कि पानी की भयंकर कमी होने वाली है हमारे देश में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, और हम पहले से ही ब्लैक जोन और डार्क जोन में, रेड जोन में आ चुके हैं, तो पानी आगे मिलेगा ही नहीं खेती करने के लिए। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि जितना भी पानी अभी हमारे पास है उसका इस्तेमाल करते हुए बैम्बो लगाए जाए और एग्रीकल्चर की टेक्निक को समझ के पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर पे खेती की जाए, तो कम से कम पानी में किसान जिंदा रहेगा। इसके साथ साथ में पानी की कमी को पूरा करने के लिए बांस भी जिम्मेदार है, क्योंकि इसकी जड़ें लगभग 50,000 लीटर पानी को पकड़ के रखती हैं और हर बरसात में पानी ज्यादा पकड़ के रखती हैं और बाकी पानी जमीन में छोड़ती रहती हैं। जमीन को ये ऑर्गेनिक करते हैं, फर्टाइल करते हैं, इसके आप देख रहे हैं हर जगह पे पत्ते जो गिरे हुए हैं, ये पत्ते जमीन को ढक के उसको ज्यादा नेचुरल बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये कंप्लीट इकोसिस्टम जनरेट करता है और इससे रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, आप जो सोच सकते हैं वो सब बनता है। तो किसान को ये एक ATM मशीन जैसा है, जैसे बकरी को किसान का ATM बोलते हैं, वैसे ही ये भी ATM है। जब मर्जी उसको काटा और 200-300-400 रुपए का एक डंडा बिक जाता है, तो उसकी इनकम का एक स्टेबल जरिया ये रहेगा। इसके बाद में आपने क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत सारी सरकारों का और इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में जो हल्ला मचा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन भी बांस है, क्योंकि कार्बन सिंक करने में बांस का कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। ये हवा से धूल कण, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सबको कंज्यूम करके अपने अंदर समा लेता है।
0: बाकी पौधों के अलावा ज्यादा CO2 को कंज्यूम करता है?
1: जी, लगभग 130 से 135% ज्यादा लेता है ये, और उसका फायदा ये होता है कि हवा बहुत जल्दी साफ हो जाती है और ये ऑक्सीजन भी ज्यादा छोड़ता है, क्योंकि इसकी ग्रोथ भी अनलिमिटेड है।
0: कार्बन क्रेडिट को लेकर के आपने डॉक्टर साहब कुछ काम किया है? मान लिया एक एकड़ में अगर 750 पौधे किसी किसान ने लगाए हैं, तो वो उसका कैलकुलेशन की भाई ये इतना CO2 कंज्यूम कर लेगा, और जो फैक्ट्री चलाने वाला आदमी है वो उसे इतना पैसा उसको मिल सकता है, ठीक है, क्या कंपनसेशन है उसका?
1: इसके लिए अभी यूरोप में चालू हो चुका है और इंडिया में भी कुछ कंपनियों ने चालू किया है, और लगभग $75 पर टन के हिसाब से कंपनियां इस पे स्पेंड करेंगी, ये कंपलसरी उनके लिए हो चुका है। और जो इनकम है कार्बन क्रेडिट सेल करके, वो काफ़ी अच्छा होने वाला है किसान को। एक मोटा मोटा अंदाज़ा मैं दूँ तो 10-15 हज़ार से लेके और 60-70 हज़ार पर एकड़ उसको मिल सकता है बिना कुछ और एक्स्ट्रा किए,
0: अकेले कार्बन क्रेडिट से।
1: और प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल इसको लॉन्च किया है 15 अगस्त को कि कार्बन क्रेडिट हम सेल परचेज कर सकते हैं, जैसे हम शेयर मार्केट में सेल परचेज करते हैं ठीक उसी तरीके से। तो ये कार्बन क्रेडिट का जो बिजनेस है इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ
0: मैं आपको बता दूं कि भारत में, जबकि उन्होंने डॉक्टर साहब का कहना है और हम भी मानते हैं कि कार्बन क्रेडिट जैसी बातें यूरोप में, पश्चिमी देशों में, विकसित देशों में ज्यादा होती हैं, फिर भी भारत के अंदर 4,000 करोड़ रुपया जो है कार्बन क्रेडिट के मार्केट में वहां से वो उठाया गया है। तो एक बात यह है कि जमीन से लेकर के और पूरे इकोसिस्टम को कैसे डील करता है अकेला बांस, ये एक बात यह है। एक साथ में बहुत बड़ी बात है जिसको हर किसान समझना चाहता है, क्योंकि वो अपने वॉलेट की तरफ देखता है। आपने बैम्बू की इकोनॉमी को समझा है, एक एकड़ में अगर वो 750 पौधे लगाता है तो एक एकड़ से वो साल भर में कितना पैसा वो अपने घर में ला सकता है, इसका कुछ अंदाजा?
1: जी देखिए, लगभग 3 साल बाद में चौथी साल में कटना चालू हो जाता है, और ये एक पौधा लगाया गया था आपके सामने है, ये हजारों की संख्या में निकल चुके हैं इसमें, हम मान लें कि वो 10 से 15 डंडे ही काट पाएगा, तो अगर वो 10 डंडे भी काटेगा 7,500 डंडे उसके पास होते हैं, पर डंडा अगर 100 रुपए का भी बिक रहा है तो 7,500 रुपए का बनता है। तो आप 7,500 छोड़िए 6 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा उसको, तो उसकी इनकम ये स्टार्टिंग है और वो हर साल बढ़ता रहेगा, और कार्बन क्रेडिट भी मिलने की संभावना अभी बढ़ती जा रही है, उसके अलावा सब्सिडी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल बैम्बो मिशन के अंडर दे रही है, कुछ राज्यों में हम चालू करवाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो जल्दी ही सब जगह चालू होने की संभावना है। तो किसानों के लिए एक ये परमानेंट ATM जैसा है, और वो लगाएंगे तो इससे मल्टीपल फायदे वो उठाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि ज्यादातर किसान सब्जी की खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, सब्जी की खेती में एक एकड़ में वो लगभग 20,000 के जो बांस के डंडे होते हैं वो खरीद के लगाते हैं, तो अगर उसके खेत में 2 बांस भी लगे हुए हैं तो उसको अपनी जो बेसिक जरूरतें उससे पूरा कर लेगा। अगर उसने थोड़ा ज्यादा लगाया तो मान लो वो 20,000 रुपए वहां पे सेव कर रहा है, पशुओं के बाड़े बनाने पे सेव कर रहा है, बाउंड्री को अच्छे से बना लेता है ताकि आवारा पशु उसके खेत खराब नहीं करें, तो उसको एक कंटिन्यूअस इनकम का स्ट्रीम चालू हो जाता है। इसके बीच में वो पशुपालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन और तमाम सारे दूसरे कार्य भी कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी को बढ़ई का काम आता है, इसका फर्नीचर बनाए, इसकी कटलरी बहुत अच्छी बनती है और डिस्पोजल आइटम बहुत अच्छे बनते हैं, तो अनलिमिटेड चीजें इसकी बना सकते हैं। और ये छोटे हथकरघा जो उद्योग होता है, इसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसका भी वो फायदा उठा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा वो स्वरोजगार की तरफ जाएगा, तो हर रोज उसके घर में बैठ के उसको अच्छे खासे पैसे आते रहेंगे जितना वो किसी नौकरी में नहीं कमा पाएगा।
0: कई बार बांस के ट्रीटमेंट को लेकर के बात होती है कि ट्रीटमेंट अगर उसका नहीं किया गया तो उसकी जो एज है वो कम रह जाएगी, वो उतना ज्यादा सक्सेस नहीं होगा।
1: इसमें बोरोक्स पाउडर वगैरह से इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, वो उस वजह से करनी पड़ती है। अगर आपको मान लो कि फर्नीचर बनाना है, घर बनाना है, तो आपको ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर अदरवाइज अगर कुछ और काम कर रहे हैं इसका, जैसे चारकोल, पैलेट, CNG, एथेनॉल, CD, ये सब बना रहे हैं, तो कोई खास जरूरत है नहीं उसके करने की, क्योंकि बांस की जो लाइफ है, आप उसको अगर हल्का सा वार्निश या पॉलिश करते रहे और हल्का सा ट्रीटमेंट भी कर लिया और उसका घर बना लिया, तो वो सैकड़ों साल में चला जाता है, है ना। तो बांस एक ऐसी चीज है जो रिन्यूएबल है, आप इसका घर अगर टूट भी गया तो दोबारा से आप बनाएंगे तो आपको सारी चीजें बांस से दोबारा मिल जाएंगी, और ये कार्बन नेगेटिव फुटप्रिंट वाला घर होगा। इसके साथ साथ में नेचुरल है, ब्रीदिंग हाउस होता है। आप नॉर्थ ईस्ट में अभी मेरे साथी जाके आए हैं, उन्होंने देखा कि बांस से खूबसूरत घर बना के अंदर से वो लिपाई कर देते हैं मिट्टी की।
0: नॉर्थ इंडिया में भी बांस से घर बनाने के कुछ मॉडल जो है, कुछ स्टार्टअप शुरू हुए हैं?
1: हाँ बहुत सारे हुए हैं, आप चंडीगढ़ में भी देखेंगे सेक्टर 15 में वो रेडी वगैरह लगा रहे हैं, पूरा बांस से डेकोरेशन किया है, बांस का ही बनाया है। फाइव स्टार होटलों में मैंने कई सारी जगह पे देखा, उन्होंने बांस से बहुत अच्छा डेकोरेशन और जो रूफ टॉप है उसके ऊपर हट्स वगैरह बांस की बनाई है। इसके अलावा चंडीगढ़ के आसपास में बहुत सारे ऐसे जगह बनी हुई है जहाँ पे बांस से घर बने हुए हैं, और पटियाला में और भी कई सारी जगह पे लोगों ने फुल फ्लैज घर बनाए हुए हैं बांस के, और टूरिज्म इंडस्ट्री, नेचुरोपैथी सेंटर, कई बार खेतों में लोग हट्स बनाते हैं इसकी खूबसूरत वाली, तो इसकी दुनिया भर की चीजें ऑलरेडी बन चुकी हैं और बन रही हैं। पहले दिक्कत ये थी कि बांस अवेलेबल नहीं था, इसकी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत हाई है अगर आप नॉर्थ ईस्ट से लेके आएंगे तो उसकी वजह से इतना लोग ज्यादा एनकरेज नहीं फील कर रहे थे। अभी लोकल में जब हम बांस लगाएंगे तो इसकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो हजारों की संख्या में आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अगर सरकार भी सिग्नल दे चुकी है कि अब आपको बांस को काटने में, खरीदने में, ट्रांसपोर्ट करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी जो है बैम्बू वॉल जो है वो राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर पर वो करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट को, और सबसे खास बात यह है कि ये ग्लोबल वार्मिंग को डील करता है, सबसे खास बात यह है कि ये पानी से डील करता है, अगर आपका स्लाइन वाटर है तो भी ये उस पानी में भी ये हो सकता है, आपके नमकीन पानी में भी ये हो सकता है, उसे बिल्कुल 7 PH का वाटर ही नहीं चाहिए, तो इसको लेकर के, और दूसरा उसकी जो इकोनॉमी है पर एकड़ है, बाउंड्री को लेकर के है, ये सब इतना ज्यादा है कि अगर आपने बांस को अपना मिशन बनाया तो ये बैम्बू मिशन केवल सरकार का मिशन नहीं बल्कि हर परिवार का मिशन भी बन सकता है। तो स्मार्ट खेती में मुझे इजाजत दीजिए, अगर आपने किसी तरह का कोई बीड़ा उठाया है, अगर आपने अपने यहां पर किसी तरह की स्मार्टनेस दिखाई है खेती में, तो आप हमें जरूर बताइए, हम आएंगे आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएंगे आपके यहां की स्मार्ट खेती।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: नमस्ते, मैं कुमारी उषा भारती, मैं बलिया जिला की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ रीज इंडिया में कुछ सीखती हूँ। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम कुछ सीख कर आगे भी बढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को भी भविष्य बना सकते हैं, ऐसा यहाँ है। बस इतना ही कुछ कहना चाहती हूँ और मैं आप लोगों को कुछ लड़कियों के बारे में एक दहेज गाना सुनाना चाहती हूँ, जो आप लोग भी सुनेंगी और जानेंगी कुछ कि लड़कियाँ कितनी आगे हैं और कितनी चल सकती हैं। ठीक है, मैं सुना रही हूँ।

छोड़ो, जिसके घर में है कन्या कुमारी, उस पिता के दिलों से तो पूछो, उस पिता के दिलों से तो पूछो।

0: से सहजी, क्या पता बेटी शादी से सहजी, क्या पता है कफन ओढ़ लेगी। मैं आप लोग को ये दहेज की सुनाई, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, दहेज को दूर करो और लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे भेजो, आगे बन कुछ बनाओ उन्हें, क्योंकि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, एक कदम आगे हैं। थैंक यू।
1: रीड इंडिया माने रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण शिक्षा एवं विकास। हमारा काम तो लाइब्रेरीज बनाना है और आज के समय में जो चर्चा हो रही है, लाइब्रेरीज खाली किताब पढ़ने के लिए नहीं है। लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह है जहां हम बहुत कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं और समुदाय के लिए भी कर सकते हैं। माने पढ़ें तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हम बड़ों को भी पढ़ाएं, हम छोटे बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज करें कि किताब क्या चीज है और किताब उनके जीवन में क्या महत्व रखती है। पर ड्यूरिंग द जर्नी इस समय के साथ साथ हमने ये सोचा कि हमें महिलाओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। अगर महिला अपने आप को निखार सकती है, अपने आप को सक्षम बना सकती है और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है, वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं। पर उसका जो आउटकम है, जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं, ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े BBA और MBA की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीड इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो BA कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाके अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।
2: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों वह महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
3: माय नेम इज प्रियंका चंदेलिया
1: बाय प्रोफेशनली मैं मॉडलिंग करती हूँ, मैगजीन शूट्स करती हूँ ग्रह शोभा के, एंड रीड इंडिया से मैं कोर्स कर रही हूँ, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग ले रही हूँ, जहाँ मैं दीक्षा मैम से मिली हूँ। दीक्षा मैम बहुत अच्छी है, इनका नेचर बहुत अच्छा है, सिलेबस भी काफ़ी अच्छे से रीड करा रही हैं मैम, एंड प्रैक्टिकल्स भी काफ़ी अच्छे से समझा रही हैं मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। एक्चुअली सर मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, शाहबाद मोहम्मदपुर विलेज गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, एंड मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब पे हैं, एमसीडी डिपार्टमेंट में क्लर्क है। मैं मदर भी एमसीडी डिपार्टमेंट में ही है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। सर मुझे मॉडल बनना था बट मैं अभी उस लेवल तक जा नहीं पाई, बट मुझे लगा अब काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे 4-5 ईयर्स हो चुके हैं मॉडलिंग लाइन में, बट मुझे इतना उसमें कुछ नहीं लग रहा। मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग से कुछ सीख सकूं, अच्छा कर सकूं, बट यहाँ पे आने के बाद मेरी पर्सनैलिटी भी डेवलप हुई है, एंड दीक्षा मैम ने बताया है मुझे कैसे क्या होगा, और एक्चुअली मैं यहाँ पे आने के बाद जॉब के लिए भी अप्लाई कर चुकी हूँ, पासवर्ड रेस्टोरेंट द्वारका सेक्टर 23, कुछ टाइम बाद मेरी ज्वाइनिंग है वहाँ पे। एक्चुअली सर रीड इंडिया से मैंने एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया था, कुछ टाइम आई थी मैं यहाँ पे 4-5 ईयर्स से पहले, तब से ही मैं रीड इंडिया को जानती हूँ, एंड रीड इंडिया बहुत बेस्ट है। रीड इंडिया से सीखने को काफ़ी कुछ है, अगर हमें उस लायक बनना है तो हम किसी को, मैं बाहर जाके किसी को बता भी सकती हूँ रीड इंडिया से मुझे क्या क्या मिल रहा है एंड मुझे क्या क्या सिखाया जा रहा है। जॉब के, अच्छी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, एंड रीड इंडिया की जो कोर्सेज है वोकेशनल्स वगैरह के, वो बहुत बेस्ट है, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए।
3: मैं पूनम तनवर शाहबाद गांव में रहने वाली दिल्ली में, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मुझे अपने पेरेंट्स पे इतना प्राउड है, उन्होंने मेरे लिए आज तक जो किया, सीरियसली उन्होंने जो भी किया सिर्फ मेरे लिए किया, और मैं अब उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ, जो लोग बोले कि ये उनकी बेटी है। मैं अपनी पहचान अपने पेरेंट्स के साथ बनाना चाहती हूँ, उनके लिए इतना कुछ करना चाहती हूँ कि लोग देख के बोले कि यहाँ इन्होंने इनके लिए कुछ किया, बहुत अच्छा किया। उन्होंने मेरा एडमिशन पूर्णिमा स्कूल, इशावाद गांव के पूर्णिमा स्कूल में कराया। वहाँ यहाँ पर मैं बचपन से पढ़ी 5th क्लास तक, फिर उन्हीं के साथ मैं हर काम, ऐसा एक काम नहीं था जो मैंने उनके बिना आज तक किया, हर चीज़, स्कूल भी, यहाँ तक कि स्कूल लेने जाना, मुझे छोड़ने जाना, मेरे स्कूल सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरा मिल्क शेक भी वही बनाते थे, मतलब स्टडीज करना, अपने स्कूल से आके जो स्कूल में मैं पूरे दिन मस्ती करती थी, पढ़ाई करती थी, टीचर के साथ फ्रेंड्स के साथ हर बात आके उनसे शेयर करती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी सबसे पहले अपने पा के पास जाके अपनी शेयर करती थी। आज भी अगर वो थोड़ी देर के लिए भी कहीं चले जाते हैं तो मन उदास हो जाता है। मुझे अपनी मम्मी से भी बहुत लगाव है, बट लेकिन पा से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने, मतलब सारा दिन मैं अपने पापा के साथ ज़्यादा रहती हूँ। मम्मी मतलब स्कूल में, स्कूल के लिए अगर ट्यूशन छोड़ाना या फिर और कुछ कर देना, बट लेकिन मैं पा के साथ जो मैं करती हूँ, सीरियसली वो बेस्ट मोमेंट मेरे पापा के साथ जो है, बहुत अच्छे मोमेंट है। मैं अपने लाइफ टाइम अपने पापा के साथ रहना चाहती हूँ, लाइफ टाइम उनके लिए जितना करूँ, मैं जितना करूँ उतना ही कम है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है, गर्ल पावर जो होती है, वुमेन पावर, वो एक सबसे बेस्ट पावर होती है, वो गॉड ही उनको पावर देके भेजता है। अगर गर्ल्स बनाई है, वुमेन बनाई, तो उनके लिए भी एक स्पेशल पावर भी उनको दी है। ऐसा कुछ नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है, बाहर जाके पढ़ नहीं सकती है, कॉलेज नहीं जा सकती, या फिर ये वाला काम उनके लिए नहीं बना है, हर काम गर्ल्स के लिए बना है। अगर भगवान ने गर्ल्स को, वुमेन्स को बनाया है, तो उनके लिए भी हर काम बनाया है, वो पावर उनके लिए उनको दी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि गाँव की लड़कियाँ ये नहीं कर सकती है, शहर की लड़कियाँ ये कर सकती है, हर काम लड़कियाँ कर सकती है, हर चीज़ पॉसिबल है। हाँ, रीड इंडिया सेंटर पे आके मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पे फ्रेंड्स बनाए मैंने, टीचर्स के साथ बहुत मस्ती की। यहाँ पे आके मेरा कोई एम नहीं था कि मैं ये सीख के जाऊँगी, बस मस्ती के लिए आ गई थी, बट लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ सीखने को भी मिला, इतनी अच्छी टीचर्स मिली, उनके साथ जब मतलब वो डांटती भी है तो भी अच्छा लगता है, एक दिन बात ना करो तो टीचर भी परेशान हो जाती है, जिसको क्या हो गया, मतलब हर चीज़ यहाँ की, हर चीज़ अच्छी है।
4: आई एम प्रियंका जायसवाल, आई बिलोंग यूपी इलाहाबाद एंड लिविंग शाहबाद मोहम्मदपुर। मैं यहाँ पे दिल्ली में कोर्स करने के लिए आई हूँ, फैशन डिजाइनर कोर्स, एंड वहाँ पे यूपी में अप्लाई नहीं था जॉब, मतलब कोर्स करने के लिए। हमारे पापा यहाँ गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैं उसके उन्हीं के साथ रहती हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे सिलाई इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मैं अपने गांव वाली लड़कियों को जो घर से बाहर नहीं निकल सकती ना, मैं उनको घर के बाहर निकालने के लिए सिलाई सेंटर खोलना चाहती थी और भी फ्री कोर्सेज के लिए। मैं इतना ही कहूँगी अपने हर लड़की माँ बाप को कि प्लीज उन्हें बाहर भेजें, कुछ करने के लिए उनको भेजें। अधिकतर यहाँ पे उसके हस्बैंड यही सोचते हैं कि ये बोझ है, तो ऐसे ना करें, उसे मतलब समझे कि ये बोझ है। कम से कम अगर वो कुछ करेगी बाहर जाके तो कम से कम उसके घर में हेल्प ही होगा, अच्छा ही होगा जो होगा। मेरी बचपन से यही हॉबी थी कि मैं पुलिस बनूं, लेकिन मेरी लंबाई छोटी होने के कारण मैं पुलिस नहीं बन सकी, इसलिए मैं ऐसे ही अपने गांव में ही हेल्प करना चाहती हूँ छोटा मोटा। और मेरी स्कूल लाइफ तो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा, जो अभी तक नहीं मिली शायद न मिल पाएगी कभी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी अपनी लाइफ अच्छे बनाने के लिए, कोर्स करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यही अच्छा मौका है। अपने माँ बाप से कहें हमें घर से बाहर करने के लिए, कोर्सेज के लिए जारी रखें। दिल्ली में पहले हमारे पापा लोग रहते हैं, हम तो बचपन से गांव में थे, तो इंटर मतलब 12th क्लास पास होने के बाद हम दिल्ली आए। जब दिल्ली यहाँ पे आए तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज थे, अच्छे अच्छे भी थे, तो इसलिए मैंने फैशन डिजाइनर का कोर्सेज अप्लाई कर लिया।

0: हमारे सभी व्यूअर्स का वेलकम कर रही हूँ एक और कार्यक्रम में, रिकग्नाइजिंग द लीडर्स फ्रॉम आवर ग्रासरूट्स। ये एक यूनिक कहानी है जहाँ पे आर एस दलाल, उनका जो दिल है वो इतना बड़ा है कि वो अपने गांव को जितना देना चाहते हैं उससे भी ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो हर वक्त अपनी कम्युनिटीज को गिव बैक कर सके। तो यही एक स्टोरी है जो हम आज आपके साथ लेके आए हैं, और इस स्टोरी को और अपनी कहानी को नरेट करने के लिए हमारे साथ रितु हजर से जुड़ी है। वेलकम रितु।
1: मैम, मैं सोनीपत से हूँ। मैंने बीए बीएड किया हुआ है, और मैम मेरी शादी यहाँ पे हुई 2012 में। मेरी शादी हुई उस टाइम यहाँ पे हवेली की रिनोवेशन चली हुई थी। 2014 में यहाँ पे रीड इंडिया ने सेंटर ओपन किया। यहाँ पे रीड इंडिया ने मल्टी टास्क लेडीज के लिए रखा।
0: व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, जो पिक्चर्स शशांक अभी शो कर रहे हैं वो हमारी कम्युनिटी लाइब्रेरी जो झज्जर में है, जो मिस्टर दलाल के जो एंसेस्ट्रल हवेली है उसमें सेटअप है। इसमें एक लाइब्रेरी है जिसकी लाइब्रेरियन ऋतु है, वो बात कर रही थी कि उन्होंने किस तरीके से सेंटर पे काम करते हुए ही अपना जो है लाइब्रेरी में ही उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया है इस सेंटर के दौरान, इस सेंटर के साथ जुड़े रहने के दौरान। तो इसमें जो बच्चों के कार्यक्रम हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। अभी हम मिस्टर दलाल की फोटो भी हमने अपने व्यूअर्स को दिखाई थी। वी विल कम बैक टू दैट अगेन। तो रितु, आप बताइए कि किस तरीके से सेंटर से कम्युनिटी को बेनिफिट हुआ है, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी के थ्रू, और बाकी जो हमारे संसाधन चल रहे हैं इसमें लाइवलीहुड को लेके, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को लेके, उसमें थोड़ा आप शेयर करिए हमारे व्यूअर्स के साथ।
1: मैम, जैसे कि 2014 में जब सेंटर की ओपनिंग तब हुई थी तब गांव कुछ और था, और आज 2021 में गांव कुछ और है। स्टार्टिंग में मैम यहां पे जो लेडीजें थी उनको ये नहीं पता था कि ये सेंटर किस लिए खुला है, क्या इसका पर्पज है। उन्होंने यहाँ पे आके सिलाई सीखी, क्योंकि गांव का जो एरिया होता है वहां पे 11th और 12th में ही लड़की को सिलाई सिखा दी जाती है और फिर बाद में उसकी शादी कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे आके लोगों ने इंटरनेट से कनेक्ट हुए, समाज को देखा, यहाँ पे विजिटर्स आए उनके बिहेवियर को देखा कि वो कितना स्टडी कर चुके हैं, आज समाज कितना ऊपर जा चुका है। वो समाज में एक मतलब एक आईना है ये सेंटर समाज का। यहाँ की औरतों ने शुरुआत में सिलाई सीखी, महिलाओं ने सिलाई धीरे धीरे सीखी, फिर उसको एक रोजगार बनाया कि हम सीख रहे हैं तो साथ ही साथ हम अपने घर परिवार के लिए कुछ ना कुछ कमाएं। वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, क्योंकि इससे पहले उनके सामने कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई ऐसा स्किल नहीं था। स्किल था बट वो बाहर उभर के नहीं आया था, सेंटर ने उस स्किल को उभारा है।
0: इसी तरीके से हम स्पोर्ट्स का भी काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे, कैसे गांव में स्पोर्ट्स को, एक स्पोर्ट्स की पूरी टीम बनी है आपकी एरिया में, और एक बहुत ही बड़े दर्जे पे मैच भी हुआ था फुटबॉल का, तो उसके बारे में आप कुछ शेयर करेंगी कैसे फोकस करेंगे।
1: मैम, यहाँ पे टाइम टू टाइम टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें बॉयज गर्ल्स जितने भी यूथ हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं, और वो स्टेट लेवल तक भी जा चुके हैं। और यहाँ तक कि सर हर साल में जो वुमेन्स डे होता है

0: लेकिन अब जब हम हर बार सर्वे करते हैं, वो देखते हैं कि ये अपने नियर बाई जो विलेज है वहां पे भी वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ की औरतें बहुत खुश होती हैं। हम पहले हाउसवाइफ के उसमें जाने जाते थे कि ये उसकी पत्नी है, ये उसकी उसकी लड़की है, इस तरह से जाने जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे औरतों को खुद के उनके नाम से जाना जाने लगा है कि ये जो है प्रोडक्शन की यूनिट है, इसमें 20 महिलाएं हैं, इस महिला का नाम ये है, इस महिला का नाम ये है। तो मैम बहुत ज्यादा चेंज आया है, क्योंकि इंडिपेंडेंट हमने कम्युनिटी को देखा है कि इंडिपेंडेंट हो गई है, और हमारे लिए भी पॉजिटिव थिंकिंग आई है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये भी सोशल वर्क कर रही हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं निस्वार्थ काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो निस्वार्थ काम करते हैं।
1: वेरी नाइस। और आपकी जो हवेली है वो भी सस्टेनेबल है, क्योंकि जिस तरीके से इसका आर्किटेक्चर बना हुआ है और डिजाइन है, ये ज्यादा बिजली खर्च नहीं करते। तो जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये कल्चर को भी प्रिजर्व करने की बात करता है, कि किस तरीके से हमारे गांव में हमारे जो रीच के सेंटर्स हैं, वो नॉट ओनली क्राफ्ट्स एंड कल्चर, बल्कि जो हमारे रहन सहन का तरीका है, खान पान का तरीका है, उसके ऊपर भी हम जितना हो सके नेचर और सस्टेनेबल तरीके से काम कर सकें।
0: अभी जैसे कोरोना टाइम में घर में लाइट्स की प्रॉब्लम थी, नेटवर्क्स की प्रॉब्लम थी, सेंटर पे वाईफाई होने के कारण यहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे, एक दिन में कम से कम 60 60 70 70 स्टूडेंट्स यहाँ पे काम करते थे, अपने प्रैक्टिस करते थे, टेस्ट देते थे, उसी टाइम उनके एग्जाम भी होते थे। तो उनके लिए बाहर नेटवर्क में आना बहुत मुश्किल हो गया था, तो यहाँ पर बैठकर वो अपना काम पूरा करते थे। और मैम जैसे कि कोरोना की वैक्सीनेशन है, तो सेंटर पर इतनी सफाई है, यहाँ पर टॉयलेट्स हैं, वाटर की फैसिलिटी है, लाइट्स की फैसिलिटी है, वाईफाई की फैसिलिटी है, तो ये सब कुछ कोरोना की जो वैक्सीनेशन टीम है उनको ये सब फैसिलिटी चाहिए थी, तो यहाँ पे आके हम उन्होंने यहाँ पे हर हफ्ते हफ्ते में 2 बार या 1 बार यहाँ पे कैंप लगता है। सिर्फ वो इस हवेली में जो फैसिलिटी है उनके लिए नहीं आते, कि वो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, यहाँ पे 2 गांव हैं मैम, मेहंदीपुर है और डाबोदा है, दोनों अलग अलग गांव हैं, तो दोनों गांव के लोग इस सेंटर से कनेक्ट हैं। उनको हर गांव में रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो किसी को बोलेंगे कि यहाँ पे वैक्सीनेशन चली हुई है, तो वो एक बंदा 10 लोगों को बताएगा कि आज वैक्सीनेशन शुरू हो रखी है। तो मैम इससे उन लोगों को भी बहुत फायदा है कि उनको घर घर जाकर बताना नहीं पड़ता, हम भी उनको बताते हैं कि आज के टाइम में वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है। और मैम एक सेंटर एक मतलब उनके लिए भी एक बहुत ज्यादा गॉड गिफ्टेड बन गया, मतलब हर बंदे के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि कोरोना का टाइम ऐसा था जिसमें हर व्यक्ति निराश बैठा था कि हम क्या करें, बच्चों की पढ़ाई कैसे करवाएं, लेकिन यहाँ पर आकर बच्चों ने पूरा पूरा दिन वाईफाई वाईफाई यूज किया, क्योंकि घर में नेट का पैकेज खत्म हो जाता है, और एक घर में ये है कि फोन की दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, तो हम भी अपना पर्सनल फोन उनके साथ शेयर कर देते थे कि आप अपना लिंक इस पे डालिए और आप पढ़ाई कीजिए।
1: वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग रितु। आपके यहाँ पे शुरुआती तौर में एक CSC भी चला था, जिसमें कि पेंशन और जितना भी अकाउंट बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज थी, वो भी आपने गांव में उपलब्ध कराए, तो थोड़ा उसका भी आप चर्चा करें।
0: मैम सीएससी और सीएसपी सेंटर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन यहाँ पे आती है, और यहाँ पे कम से कम 450 या 500 के करीब लोगों का अकाउंट ओपन हो चुका है, जो कि यहाँ से पेंशन लेके जाते हैं, अपना जो बजट है उनका, अपनी बचत यहाँ पे डाल के जाते हैं। ऑनलाइन जितनी भी सर्विस है, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, किसी को ऑनलाइन पेमेंट करनी है, तो वो यहाँ से करवा के जाते हैं, यहाँ से एकदम से। जैसे मैम ट्रेवल की मैंने आपसे कहा था कि ट्रेवल की बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो बुजुर्ग वहाँ पे जा नहीं सकते और हर मंथ उनको पैसे चाहिए होते हैं।

0: क्योंकि पेंशन से कुछ घर ऐसे हैं जिनका पेंशन से ही गुजारा चल रहा है, जो बुजुर्ग हैं अकेले रहते हैं तो वो यहाँ पे आके पेंशन लेते हैं और उन्हें टाइम टू टाइम पेंशन मिलती है। और ऑनलाइन सीएससी सीएसपी उनको इतना प्रॉफिट दे रही है कि बच्चों के जैसे ऑनलाइन एडमिशंस हैं तो वो यहाँ पे आके ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, एडमिशन लेते हैं, फीस पे करते हैं, ऑनलाइन टिकट ट्रैवल टिकट बुक कराते हैं। तो मैम ये भी लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। और मैम यहाँ पे एक फोटोकॉपी की भी मशीन रखी हुई है। फोटोकॉपी के लिए दूसरे गांव में कम से कम 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था उनको फोटोकॉपी के लिए, लेकिन जब से सेंटर ओपन हुआ है तब से मशीन यहाँ पे होने के कारण लोगों का इतना मतलब उनको प्रॉफिट मिला है इससे भी, कि क्योंकि फोटोकॉपी ऐसी चीज है कि आज के टाइम में हर फॉर्म के लिए किसी ना किसी कॉपी की जरूरत होती है, तो वो यहाँ से कॉपी करवा के जाते हैं और यहाँ से फायदा उठाते हैं। और हम भी उनसे बहुत कम प्राइस में उनकी फोटोकॉपी करते हैं जिससे कि वो यहाँ पे खुश होके आते हैं।
1: थैंक यू हमारे साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हमारे साथ हमारी मेंटर डॉक्टर गीता मल्होत्रा जुड़ी हैं। मैम वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू स्मिता। मैं इसी प्लेटफॉर्म पे याद करना चाहती हूँ कि डॉक्टर मिस्टर दलाल से मैं कैसे मिली थी। हमने एक सेंटर बनाया था खैंसा में जो कटिंग ब्लॉक में है, तो उसके इनॉग्रेशन के लिए मैंने मिस्टर दलाल को बोला था कि आप आए। वो पूरे पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पे सेंटर लॉन्च करने के लिए आए थे, और तब से उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे गांव में भी, मैं अपनी हवेली लेता हूँ और वहाँ पे आप सेंटर बनाए। और 2012 में मैंने कैंसर का सेंटर लॉन्च किया था, और 2014 में शायद हमने पहले कुछ काम करना शुरू किया। तो इट टुक मी 2 इयर्स टू फाइनलाइज द प्रपोजल बिकॉज इट वाज नॉट दैट वेरी इजी टू स्टार्ट द रीच सेंटर। सो मेनी फॉर्मेलिटीज एंड सो मेनी डॉक्यूमेंटेशन आर रिक्वायर्ड। So, but I would like to say that this presently, this partnership and this association has given so much to the India from Mr. Dalal. I would like to recognize here that every time he is ready to help us, every time he is ready to walk with us wherever we are facing any challenges or wherever we are facing any issues, a matured guidance and help is highly appreciated। और ये जो झज्जर का सेंटर है ये बहुत ही प्यारा हमारे देश के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके साथ इन्होंने और भी पुलिस ऑफिसर्स को एनकरेज किया कि आप अपनी भी हवेली को। तो 2 साल पहले टांडागिरी एक गांव है जो मैनपुर के साथ है, और वहाँ पे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी हवेली हमें दे दी और बोला कि यहाँ पे भी आप इनका सेंटर बना सकते हैं। और वहाँ पे भी हमने स्टाफ रखा, स्कूल चलाया, सरला जी हैं जो वहाँ पे सिटिंग इंजीनियर चलाती है, और उर्वशी मैम हैं जो उस हवेली की ओनर हैं और वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं वहाँ पे सोशल डेवलपमेंट का काम करने के लिए। द पॉइंट हियर आई एम मेकिंग इज द विलिंगनेस टू गिव बैक टू योर कम्युनिटी, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और अगर ये थॉट हर एक के मन में हो तो हमारे गांव तो कभी भी पिछड़े नहीं रह पाएंगे, वो हमेशा शहरों से भी आगे बढ़ जाएंगे और वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं जो यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जैसे ही गांव में अपॉर्चुनिटीज मिलती है, मूवमेंट कम फॉरवर्ड इन अ They are the role models. They are the mentors. I should not say that I am the mentor. I just play the role. But these women like me too, and many other Kavita ji, many other have taken the position of mentors now, mentoring the rural women who are residing with them in the villages. On center में वो खाली बोलर सीखते नहीं आती हैं, but center में वो अपने mind को strong करने आती हैं, अपने परिवार के लिए वो क्या कर सकती है वो सीखने आती है, और एक कोहेसिवनेस बनती है गांव में कि यस ये हमारा हमारा सेंटर है। और जैसे अभी एक वीडियो शशांक ने दिखाई थी उसका टाइटल था हमारा हरियाणा, पर मैं ये कहूंगी कि ये लोग अभी ये नारा बोल सकते हैं, हमारा मंदिर, हमारा चर्च है, हमारी रामना खेल। सो वो सिचुएशन आ गई है अब। और सच में मैं बोल रही हूँ कि as a human being, I highly appreciate Mr. Dalal's contribution and the team who has really contributed so well and nurtured the center like their own house. So ये बहुत बड़ी achievement है हमारे जो I should say हमारा जो network है, हमारे जो colleagues हैं जो center में काम करते हैं, और जो ट्रांसफॉर्मेशन में ऋतु और कविता में देख रही हूँ पिछले 6-7 साल से, वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पक्का विश्वास है बहुत सारी औरतों में भी हुई है काम करके। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एक जील है उनके मन में कि हमें कुछ करना है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ऋतु जी, मैं आपसे एक बस यही सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने हजारों में औरतों, आप मेहंदीपुर गांव से आगे भी गई हैं और आसपास के गांव में भी आपने औरतों को मोटिवेट किया है कि आपके सेंटर में आए और जो ट्रेनिंग दिए, बहुत लड़के भी कंप्यूटर सीखने आ रहे हैं, बहुत लड़कियां भी आती हैं गांव पे। सबसे बेस्ट प्रोग्राम आपके सेंटर में कौन सा चला है और मैक्सिमम औरतों और बच्चों ने उसको एंजॉय किया?
0: मैम, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक करना चाहूंगी कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया, सर ने दिया, आप दोनों ने मिलकर एक खंडर में जान डाल दी है। क्योंकि जैसे एक शरीर और आत्मा का मिलन होता है, वैसे ही सेंटर, अगर अकेला एक सेंटर होता और उसमें और कुछ नहीं होता तो वो एक अकेला सेंटर कुछ नहीं कर पाता। वैसे ही कम्युनिटी है मैम, अगर हम हैं हमारे साथ कम्युनिटी नहीं है तो हम भी कुछ नहीं है। हमारे साथ कम्युनिटी ने मिलकर इतना हम लोगों को भी सपोर्ट किया है, जो हम उनसे बोलते हैं कि आप आइए, हमारी एक रिक्वेस्ट करने पर वो हमारे सेंटर पर आते हैं और यहाँ पे काम करते हैं। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो औरतों में है, औरतों को स्टिचिंग का प्लेटफॉर्म इतना अच्छा लगता है कि वो उसमें मगन हो जाती हैं। हम उनका 1.5 घंटे का बैच बनाते हैं, लेकिन वो 1.5 घंटे में यहाँ से जाना नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि कम से कम हमें 3-4 घंटे आप लोग यहाँ पे बैठने दीजिए। तो जब हम लोगों के बैच फिनिश हो जाते हैं तो वो सैटरडे को आती हैं, हमसे रिक्वेस्ट करती हैं कि मैम, आप कविता से भी रिक्वेस्ट करती हैं कि मैम थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम दीजिए, मुझे ये करना है। जो हमारे पुराने जो यहाँ पे जा चुके हैं, जैसे 2016 में या 17 में जो बेनिफिशरी रह चुके हैं, वो यहाँ पे आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आज भी सेंटर पर आकर कविता से बात करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ये न्यू फैशन चला हुआ है, हमें ये बताइए। तो मैम, हम लोगों को इतना अच्छा लगता है कि लोग यहाँ की औरतें हैं जो सिलाई से इतनी जुड़ी हुई हैं, वो एकदम कपड़े में इतना मगन हो जाती हैं। प्रोडक्शन का जब हम लोग काम करवाते हैं, कुर्तियां जब लेडीज सीलती हैं, तो वो इतनी मगन हो जाती हैं कि कविता उनको बोलती है कि आपको कौन सा डिजाइन अच्छा लगता है, तो वो बोलते हैं हम बताएंगे नहीं, हम आपको करके दिखाएंगे। तो मैम, वो इतना इतना अच्छा काम करती हैं कि बहुत ज्यादा, कि उनके बगैर हम कुछ नहीं है। लेडीजों ने हम लोगों को आगे बढ़ाया है, हमारे सेंटर को आगे बढ़ाया है, सेंटर में जान उन औरतों ने डाली है, क्योंकि वो इतना मेहनत करती हैं, इतना परिश्रम करती हैं, इतना खुश होती हैं, यहाँ पे बच्चों को लेके आती हैं। तो मैम, वो भी आपको बार बार थैंक करती हूँ।
2: बहुत अच्छा लग रहा है सुन के ऋतु और कविता जो आप कह रही है, क्योंकि ये ही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हम सब की, मैं तो ये बोलूँगी, नॉट हमारी आगे, हम सब की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या करना चाहते हैं आप लोग? आप सबको बताइए कि आपके दिल में क्या है और इसको कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं। बिकॉज इतना जील है, इतना कमिटमेंट है, बहुत सारी औरतें जुड़ी हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और क्या करना चाहते हैं, आपकी सोच क्या है, वो थोड़ा हमें बताएं।
0: मैम, जैसा कि हमारे यहाँ पे मल्टी फैसिलिटीज हैं, तो मैम हम हर फैसिलिटी से कुछ ना कुछ इनकम ले सकते हैं। हम औरतों को ये बोलते हैं कि आप आज हमारे पास प्रोडक्शन की 20 की यूनिट है, तो हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर वो हमारी 50 या 100 की यूनिट हो, जिससे कि हम बड़े लेवल पर हम वर्क कर सकें। क्योंकि अभी हम जो क्लॉथ मार्केट में लेके जाते हैं वो कम प्राइस में सेल होता है, तो उसको हम चाहते हैं कि और हम उसको मार्केट में ना सेल करके अपना खुद का नाम दें। क्योंकि मैम मार्केट में जो हम लोगों ने जितना रिसर्च किया है, मार्केट में जो एक शॉप वाला होता है वो इतना पैसा उनसे कमाता है हमसे बिल्कुल सस्ते प्राइस में, जो कि जो मेहनत करते हैं उन बंदों को कम पैसा मिलता है, और जो खरीदता है उसको, जो उसको पीस को खरीद कर बेचता है वो इतना इनकम कमाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा भी एक ऐसा बड़े लेवल का वर्क हो कि हम खुद इंडिपेंडेंटली अपना नाम उससे जोड़ें, एक बड़ी यूनिट बनाएं, और हम लोग जितने भी नियर बाय विलेज में गए हैं वहां पे भी हम लोगों की यूनिट्स हो, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं या ऑफलाइन कोर्सेज हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ हर किसी चीज से अगर हमें थोड़ा थोड़ा भी पैसा मिलता है, तो हम और हमारे जो साथ वर्क कर रहे हैं बेनिफिशरी हैं उनको भी प्रॉफिट हो, और ये हवेली इसी तरह रनिंग करती रहे। और जो आने वाला फ्यूचर है उसमें अभी जो औरत यहाँ से 100 रुपए कमा रही है, हम चाहते हैं कि वो यहाँ से 50,000 कमाए।
2: वेरी नाइस, बहुत बड़ी सोच है रितु, और हम मिलके इसको पूरा करेंगे, मैं इसकी एश्योरेंस देती हूँ। तो सिर्फ अगर कमिटमेंट है आप में और मेहनत करने की क्षमता है तो ड्रीम्स तो फुलफिल हो ही जाते हैं। मैं रितु को बोलना चाहूँगी कि अगर वो कोई एक मैसेज हमारे सारे रीड की वुमेन के लिए कहना चाहे तो प्लीज शी शुड शेयर विद अस।
0: मेरा यही मैसेज है कि हमारा जितना भी रीड का स्टाफ है, हम मिलकर, अलग अलग ना हो, मिलकर कुछ ऐसा प्लान करें जिससे जितनी भी कम्युनिटी है उसको फायदा हो। और वो जैसा कि अभी मैम कर रही हैं, हमें भी गीता मैम जैसा और रंजीव दलाल सर जैसा लीडर बनना चाहिए कि इन फ्यूचर में जब हमारे हम ना रहे तो लोग हमें याद करें कि इन लोगों ने क्या किया है। गीता मैम इतना बड़ा एम लेकर चली हुई हैं निस्वार्थ भाव से, क्योंकि आज का जो टाइम है वो अपने लिए सोचता है, न्यू जनरेशन सिर्फ अपने लिए काम करती है। तो हम जो है, हमें भी मैम ने ऐसा बना दिया है, सर ने ऐसा बना दिया है कि हम ये मैसेज हर किसी तक पहुंचाए कि निस्वार्थ भाव का से काम करें, अपने लिए नहीं समाज के लिए जिए, जिन लोगों को जरूरत है उनके लिए जिए, उनके लिए कुछ करें जितना आप कर सकते हो। क्योंकि शिक्षा हर किसी के पास है, लेकिन शिक्षा को बांटना बहुत जरूरी है। शिक्षा से व्यक्ति शिक्षित तो हो जाता है, लेकिन जब तक वो अपनी शिक्षा को दूसरों तक नहीं बांटता वो इंसान अनपढ़ है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जितना जिसके पास जो स्किल है वो हमें समाज में बांटना है, और आगे हमें अपनी जनरेशन को भी यही सिखाना है। एक कोरोना ने हमें इतना बड़ा मैसेज दे दिया है कि जब तक हम हैं, हमारे शरीर में जान है, तब तक सब कुछ है, जब हम नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो अभी समाज में देखा गया है कि लोगों ने कोरोना ने लोगों को अकेला कर दिया है, तो हमें अकेला नहीं रहना है, हमें मिलकर रहना है, हमें ऐसा काम करना है जिससे पूरा समाज को बेनिफिट हो। थैंक यू मैम।
2: थैंक यू सो मच, इतना अच्छा मैसेज रितु आपने दिया, एंड सेल्फलेस लाइफ इज द मैसेज विच यू हैव गिवन टू एवरीवन। एंड मुझे पक्का विश्वास है कि जितनी भी औरतें, जितना भी लोग रीड इंडिया के साथ जुड़े हैं, उन सबकी सोच यही है कि कैसे हम दूसरों के लिए सर्विस कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों के साथ अपनी एजुकेशन को शेयर कर सकते हैं। वंडरफुल मैसेज रितु, एंड Thank you so much, Smita. You would like to conclude the program.
1: So I'm very, very thankful to Dalal sir for taking that initiative, and of course to Dr. Geeta Malhotra for, you know, so many resources are required. इसके पीछे बहुत काम होता है जो कभी कभी हम recognize नहीं कर पाते. बहुत मेहनत लगती है लोगों को जोड़ने में, इस मुकाम तक लाने में कि इस सेंटर को आज इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं. 8-9 सर्विसेज इस एक अकेले सेंटर से प्रोवाइड हो रही हैं, और कोशिश ये है कि इसको धीरे धीरे करके सेल्फ सस्टेन किस तरीके से बनाया जाए, और बिल्कुल जो है सेल्फलेस होके निस्वार्थ जिसकी हम बात कर रहे हैं, दोनों ही हमारे मेंटर्स जो हैं मिस्टर दलाल एज वेल एज डॉक्टर गीता इसी जुट में जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से ये कम्युनिटी सेंटर सेल्फ सस्टेन हो और ये आगे बढ़ता जाए और एक रोल मॉडल की तरीके से हम इसको भारतवर्ष में प्रेजेंट कर सकें. सो थैंक यू वेरी मच टू आवर व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस. दिस वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी दैट वी वांटेड टू शेयर विद यू. थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू.

0: कृषि विशेष एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम जानकारी और कृषि शोध हम आपके साथ साझा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए एक ऐसे औषधीय पौधे की जानकारी लेकर आए हैं जो हमारे खान पान से लेकर हमारी जीवन शैली और इसके साथ ही हमारे जीवन के हर हिस्से में एक अलग ही महत्व रखता है। बात करें अगर रीति रिवाजों की या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तो इसका विशेष महत्व है। हम बात कर रहे हैं हल्दी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, मैं हूं मोनालिसा। आइए कृषि विशेष में आज विस्तार से जानते हैं हल्दी के बारे में। शादी विवाह की बात हो या फिर सौंदर्य की, हल्दी का प्रयोग होता ही है। वहीं किसी भी चोट या घाव को हल्दी जल्द ही भर देती है, इसलिए इसे मैजिकल हर्ब भी कहते हैं। यही वजह है कि हल्दी की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और किसान भी बड़े पैमाने पर इसकी खेती को अपनाने लगे हैं।
1: भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है जिसकी अर्थव्यवस्था में कृषि रीढ़ की हड्डी के समान है। हमारे देश प्रदेश में हमारी आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। कृषि किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है क्योंकि यह न केवल लाखों करोड़ों लोगों को भोजन प्रदान करती है बल्कि जीडीपी के समग्र विकास में भी योगदान देती है। और इस नए दौर का किसान अब सिर्फ परंपरागत खेती के ऊपर निर्भर नहीं है। किसान अब अपने खेत में विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाकर अच्छा मूल्य प्राप्त कर रहा है और ऐसी ही एक फसल है हल्दी। हल्दी एक औषधीय पौधे के रूप में जानी जाती है। हमारे भारत देश में बड़े स्तर पर हल्दी की खेती की जाती है। भारत देश के हर परिवार में हल्दी का स्थान महत्वपूर्ण है। घरों में खाना बनाने से लेकर किसी भी शुभ कार्य जैसे पूजा, शादी विवाह आदि में हल्दी का उपयोग पुराने जमाने से लेकर आज के आधुनिक युग तक हो रहा है। मसाला, औषधि, गृह उपयोग, फेस क्रीम बनाने में बड़े स्तर पर हल्दी का उपयोग किया जाता है। औषधीय गुण होने के कारण ये कई प्रकार की बीमारियों में भी लाभकारी है। यही कारण है कि हल्दी की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी को देखते हुए आने वाले समय में हल्दी की खेती फायदेमंद साबित हो सकती है। भारत विश्व में सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन करता है और हल्दी की सबसे ज्यादा खपत भी भारत में ही होती है। अर्थात हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन और इसका सबसे बड़ा बाजार भारत में ही है। हल्दी अदरक की प्रजाति का 5 से 6 फुट तक बढ़ने वाला पौधा है जिसकी जड़ की गांठों में हल्दी मिलती है। हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है, इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का नंबर आता है। वैसे हल्दी की खेती कहीं कम या कहीं ज्यादा, लेकिन होती तो पूरे भारत में ही है। हल्दी को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है।
2: हल्दी एक महत्वपूर्ण मसाले की फसल है और हमारे देश में हल्दी की खेती व्यापक रूप से की जाती है और मुख्य रूप से ये एक बड़ी लंबी अवधि की फसल है। इसको बुआई से लेकर कटाई तक तकरीबन 8 से 10 महीने का कार्यकाल की आवश्यकता होती है। हमारे देश में हल्दी के ऊपर अनुसंधान कार्य किए गए और उसमें उन्नत किस्मों का विकास किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जो संस्थान इसमें काम किए हैं उसमें नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, दूसरा जो है हमारा केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश और अन्य कई संस्थानों के द्वारा। हमारा संस्थान है केरल में CTCRI जिसको बोलते हैं, वहाँ से भी हल्दी की किस्मों का विकास किया गया है।
1: भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद के अनुसार हल्दी एक औषधीय पौधा है और कोरोना संकट काल में इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए बहुत सारे नए किसानों ने हल्दी की खेती की शुरुआत की है। हल्दी एक ऐसा मसाला है जिसके बिना हम खाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, अगर आपकी सब्जी में हल्दी ना हो तो कितनी बेरंग लगेगी। लेकिन खाने में इसके उपयोग के साथ साथ इसके कुछ अलग विशेष फायदे औषधि के रूप में भी है, जैसे पाचन तंत्र को सुधारना, सूजन कम करना और अन्य कई बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती रही है। हल्दी त्वचा के लिए भी काफी लाभदायक है, इसी के चलते हल्दी को हम मिरेकल हर्ब भी बोल सकते हैं और हल्दी की इस फसल से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
2: हल्दी एक बहुत महत्वपूर्ण मसाले की फसल है और इसके अंदर मिलने वाला जो तत्व है कुरकुमिन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी रोग रोधक क्षमता का विकास करने के लिए। और ये एंटी फंगल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखता है, इसके निरंतर इस्तेमाल करने से हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। और पिछले हमने कई वर्षों में देखा है, जब कोरोना का बुरा समय हमारे देश को देखने को मिला या कहूँ मैं पूरी दुनिया ने देखा, तो उसमें हल्दी का बहुत बड़ा रोल रहा। हल्दी हमारी जो इम्यूनिटी है उसको सुधारता है, इसका निरंतर इस्तेमाल करना हमारे लिए आवश्यक है। हालांकि हमारी भारतीय खान पान जो पद्धति है उसमें हम अधिकांश सब्जियों की तैयारी में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसकी तुलना करें यूरोप के देशों में, वहाँ पे हल्दी का कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसे जैसे विश्व स्तर पर इसकी व्यापकता बढ़ी है तो भारतीय हल्दी की मांग भी बढ़ी है।
0: तो अब तक आपने जाना हल्दी के महत्व के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि विशेष में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हल्दी की खेती के बारे में और जानेंगे कि किसान किस तरह से इससे लाभ ले रहे हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।

0: दो दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम भरोसे का नाम तड़का सुपर।
1: कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800113060 और 1800113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मैजिकल हर्ब हल्दी के बारे में। आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हल्दी की खेती के बारे में। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से किसान हल्दी की बुआई कर सकते हैं और हल्दी की बुआई के लिए किस तरह की मिट्टी, जलवायु और बीज की जरूरत होती है।
1: अगर हम बात करें हल्दी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उचित रहती है, तो आपको बता दें कि हल्दी की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु उत्तम मानी जाती है। इसकी खेती के लिए 225 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। हल्दी की फसल के लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस अच्छा होता है। और अगर हम हल्दी की अच्छी फसल के लिए मिट्टी की बात करें, तो ऐसी मिट्टी अच्छी मानी जाती है जिसमें जल निकासी की क्षमता अच्छी हो। अतः हल्दी की खेती बलुई दोमट या मटिया दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है। हल्दी की खेती के लिए मिट्टी को अच्छी तरह तैयार करना जरूरी होता है, क्योंकि हल्दी जमीन के अंदर ही फलती फूलती है। जमीन को अच्छी तरह से भुरभुरी बनाया जाना आवश्यक होता है। हल्दी के खेत में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होनी जरूरी है।
2: सामान्यतः इसकी बुआई किसान भाई अप्रैल के मध्य या मई के प्रारंभ तक करते हैं, और उसके लिए उन्नत किस्म के जो कंद होते हैं, राइजोम्स होते हैं, उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। बुआई से पूर्व उनको कुछ दिन के लिए नमीयुक्त स्थानों में रखते हैं या थैलों से लपेट के रखते हैं कपड़े से, ताकि उसमें अंकुरण प्रारंभ हो जाए और बुआई और खेत में जमाव में समय को कम किया जा सके। इसके लिए उष्ण ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जलवायु उपयुक्त रहती है, और क्योंकि ये एक राइजोम की फसल है, तो इसके बेहतर विकास के लिए संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल के साथ साथ प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, अच्छी गुणवत्ता के ये जो खाद हों, उनका इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है।
1: वर्षा होने पर हल्दी की फसल के लिए भूमि को तैयार कर लेना चाहिए। खेत को हल्दी की फसल के लिए 3 से 4 बार गहराई से जोतना जरूरी होता है। दोमट मिट्टी में कृषि विशेषज्ञ या अनुभवी किसान की सलाह से 400 से 500 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से चूने के पानी का घोल डालकर अच्छी तरह जुताई करने से भूमि हल्दी की खेती के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाती है। हल्दी की बुआई के लिए अच्छी तरह विकसित और रोग रहित संपूर्ण या प्रकंद के टुकड़े हल्दी के बीज के रूप में उपयोग करते हैं। प्रकंद एक प्रकार का पौधे का तना है, जो या तो मिट्टी की सतह पर या भूमिगत स्थित होता है। ध्यान रहे कि बीज रोग रहित होना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में हल्दी की फसल की बुआई क्यारियों या मेड़ बनाकर की जाती है। इसके बाद 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हाथ से खोदकर छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं। हल्दी की बुआई के लिए 250 किलोग्राम हेक्टेयर प्रकंद बीज की आवश्यकता होती है।
2: किस प्रकार से किसान भाई हल्दी की बेहतर उपज लें, उसमें जैसे पोषण का अपना महत्व है, खेत का चयन, बुआई का समय, किस्म विशेष की उत्पादकता, उसकी उत्पादन क्षमता, इन बातों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आप अपनी फसल का प्रबंधन करते हैं। यानी कि अगर फसल को पानी की आवश्यकता है तो पानी देना है, उसमें पत्तियों को मुरझाने की अवस्था नहीं आने देनी है। अगर आपकी वानस्पतिक बढ़वार मध्यम दर्जे की होगी, अधिक वानस्पतिक बर्बाद होने की स्थिति में, जैसे इस बार मैं कह सकता हूं कि बहुत अधिक वर्षा के कारण वानस्पतिक वृद्धि अधिक हुई है, और जहां पे अब इसकी फसल लगाई हुई है हमारे किसान भाइयों ने, उसमें आप पानी को कम कर सकते हैं, ताकि उसमें और वानस्पतिक बढ़वार को कम कर सके। क्योंकि वनस्पतिक बढ़वार अगर ज़्यादा होगी तो उसमें जो राइजोम बनने की प्रक्रिया है वो देरी से होगी या कम मात्रा में राइजोम बनेंगे। तो ये एक आपस में संतुलन बैठाने की बात है कि अगर हमको बेहतर उत्पादकता लेनी है तो इस बात पे ध्यान देना आवश्यक है। साथ ही अगर अच्छी गुणवत्ता के कंद बने तो उसमें आपको पोटेशियम उर्वरकों का इस्तेमाल भी करना आवश्यक है। अगर आपने पोटेशियम उर्वरक में पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया है तो निश्चित रूप से आपको बेहतर कंद राइजोम मिलेंगे। अगर नहीं किया है तो आप इसका 2-3% का पर्णीय छिड़काव भी अपनी खड़ी फसल में कर सकते हैं और उसका राइजोम के विकास में और उसकी गुणवत्ता के सुधार में उसकी मददगार हो सकती है। तीसरी बात आपको ध्यान रखने की है कि क्योंकि अधिक वर्षा की स्थिति में खेत में अगर लंबे समय तक पानी रहता है तो इसे वानस्पतिक बढ़वार और कंदों के विकास को जो अपने सलकंद या राइजोम में कह रहा हूँ उनको विकास को प्रभावित करते हैं। तो आपको वर्षा बंद होने के बाद खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था भी करना आवश्यक है। अगर खेत में लंबे समय तक पानी खड़ा रहता है तो जमीन के अंदर कंपैक्शन आता है और पौधे की बढ़वार में रुकावट आती है।
1: हल्दी की खेती वैसे तो सुरक्षित होती है लेकिन फसल संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी है। हल्दी की फसल तैयार होने के बाद खुदाई का समय आता है। हल्दी की खुदाई प्रजातियों के अनुसार बुआई के 7-9 महीने में किया जाता है। अल्प अवधि की प्रजातियां 7-8 महीने में, मध्य अवधि की प्रजातियां 8-9 महीने में और दीर्घकालीन प्रजातियां 9 महीने के बाद तैयार हो जाती है। खेत को जोतकर प्रकंदों को हाथ से इकट्ठा कर बड़ी सावधानी पूर्वक मिट्टी से अलग करते हैं। हल्दी की खेती के लिए हल्दी के बीज का भंडारण एक जरूरी प्रक्रिया है। इसके लिए ताजे निकले कंदों को ठंडे व सूखे स्थान पर भंडारण किया जाता है।
0: हल्दी की खेती के बारे में जानने के बाद अब बारी आती है इसके प्रसंस्करण की, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।

0: जो सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले
1: जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
2: कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।

कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें अब तक हमने बात की हल्दी की विशेषता और इसकी खेती के बारे में। आइए अब जानते हैं इसके प्रसंस्करण के बारे में। आइए देखते हैं कि किस तरह से हल्दी का प्रसंस्करण किया जाता है और किसान इससे अधिक मुनाफा कमाते हुए आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
1: व्यावसायिक सूखी हल्दी बनाने के लिए इसके कंदों को जमीन से निकालकर एक सप्ताह के अंदर उबाला जाता है, जिसे क्योरिंग कहते हैं। क्योरिंग एक महत्वपूर्ण काम है। इसके तहत हल्दी का व्यावसायीकरण होता है। हल्दी की फसल को घरेलू स्तर पर भी लोहे के बर्तन में उबाला जाता है और रासायनिक विधि द्वारा बड़े पैमाने पर क्योरिंग की जाती है। क्योरिंग करने से प्रकंद का आकर्षक नारंगी या पीला रंग विकसित होता है। हल्दी के प्रसंस्करण के लिए सबसे पहले खेतों से लाई गई हल्दी को धूप में सुखाया जाता है। लगभग एक हफ्ते तक सुखाने के बाद हल्दी प्रसंस्करण के लिए तैयार हो जाती है। हल्दी जब प्रसंस्करण यूनिट पर लाई जाती है तो सबसे पहले उसकी सफाई की जाती है। मशीन हल्दी में लगी मिट्टी और छिलकों को साफ करती है और उसे प्रसंस्करण के लायक बनाती है। मशीन को हाथ से चलाया जाता है। इसके हैंडल को 10-15 मिनट तक घुमाया जाता है। कुछ समय इसे सीधा तो कुछ समय इस मशीन को उल्टा घुमाया जाता है। इस मशीन को बिना बिजली के चलाया जाता है। मशीन के अंदर एक बार में 10 से 15 किलो तक हल्दी डाली जाती है। मशीन के नीचे एक तिरपाल बिछाया जाता है ताकि सारी गंदगी वहां गिर जाए। उसके बाद हल्दी को मशीन से निकाला जाता है, जिससे उसे पीसा जा सके। हल्दी को पीसने के बाद उसे पैक किया जाता है और फिर उसकी लेबलिंग की जाती है तथा उसे बाजार में भेजा जाता है।
2: फसल पक्के तैयार हो जाती है फरवरी के अंत में। देश के अलग अलग भागों में अलग अलग समय पे ये तैयार होती है। कहीं कहीं दिसंबर के अंत में भी तैयार हो जाती है और इसको जो है किसान भाई फिर निकालते हैं, निकाल करके उनको धुलाई करते हैं और धुलाई करके इसका प्रसंस्करण करते हैं, सुखाते हैं, पाउडर बनाते हैं। और उसके लिए जो किसान भाई इसका मूल्य संवर्धन करना चाहते हैं, उसके लिए अपने कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र या जो हमारे FPO पहले से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, उनसे संपर्क करके उसकी जो बेहतर प्रोसेसिंग पद्धति है उसकी जानकारी लेना आवश्यक है। और इसके संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या हमारे ICR के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसमें ऐसे उद्यमियों को या ऐसे किसानों को, युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण दे करके उनको तैयार करते हैं किस प्रकार से मूल्य संवर्धन करके और हल्दी का बेहतर व्यापार और इसका निर्यात में बढ़ावा दे सकते हैं।
1: बाजार में हल्दी की बढ़ती मांग को देखकर हल्दी की खेती के बाद किसान इसका प्रसंस्करण करके भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इससे किसानों की कमाई तो बढ़ती ही है, साथ ही वो आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और दूसरे किसानों को रोजगार भी दे रहे हैं, जिससे वो भी संपन्न बनते जा रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं।
0: तो ये थी हल्दी से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमें उम्मीद है कि कृषि विशेष का आज का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dd.krishivishesh@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय, जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: मेरा नाम प्रियंका है, मैं शाबान मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मेरा जन्म यही हुआ है। हम परिवार में 5 सदस्य हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और 3 बहन भाई। मेरा भाई 9th क्लास में है, बहन मेरी जॉब करती है, पापा टूरिज्म में है और मम्मी ने यहाँ से रीड इंडिया सेंटर से नर्सिंग का कोर्स किया था। आज वो जॉब कर रही है हॉस्पिटल में। मैंने 5 साल पहले रीड इंडिया सेंटर से कंप्यूटर कोर्स किया था, उसके बाद मैंने एनटीटी किया और आज मैं एज अ लाइब्रेरियन रीड इंडिया सेंटर में जॉब कर रही हूँ। मेरा जो एम था वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना था। अब मैं रीड इंडिया सेंटर की मदद से यहाँ से कोर्स करने के बाद मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ काम करने के साथ साथ मैं अपने घर पे भी बहुत सारे काम करती हूँ। जैसे मैं अपनी जिम्मेवारी घर पे निभाती हूँ, वैसे ही मैं अपनी जिम्मेवारी यहाँ रीड इंडिया सेंटर के साथ निभाती हूँ। अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से, पूर्ण तरीके से करती हूँ। मेरे परिवार में सभी वर्किंग है, तो भाई की, छोटे भाई की जिम्मेवारी सारी मेरे ऊपर है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभाती हूँ। मैं उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, स्कूल से लेके आती हूँ। उसके अलावा मैं उसकी स्टडी में हेल्प करती हूँ, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाती हूँ और उसके अलावा उसकी सारी जिम्मेवारियां मैं निभाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। उसके अलावा मैं अपने पेरेंट्स का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, उनकी केयर करती हूँ, उनके काम भी करती हूँ।
2: हेलो, मेरा नाम निशा सैनी है। मैं जब छोटी थी, 10 साल की थी और 6th क्लास में थी, तो मैं शुरू से ही यहीं पे आना शुरू किया है। एनजीओ के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, शुरू से पसंद रहा है मेरे लिए, अच्छा लगता है मुझे। हाँ, मैं ना पिछले 7 साल से आती रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मतलब एनजीओ में बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं कर लूँगी अगर कर सकी तो कर लूँगी, अगर जो मुझे इंटरेस्ट रहा जिस चीज़ में मैं वो करूँगी और एनजीओ में आऊँगी। शुरू से आती रहूँगी। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, मैंने पढ़ा भी है, लेके भी गई हूँ घर, बहुत अच्छी बुक्स हैं और टीचर्स भी अच्छे हैं, यहाँ के मैम सब अच्छे हैं। अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अब जो बॉयज़ होते हैं ना, पेरेंट्स ना सिर्फ बॉयज़ की मानते हैं, आजकल के ना बॉयज़ की बहुत डिमांड वगैरह है और गर्ल्स से जो कुछ कर दे, जैसे बॉयज़ के तरह जॉब करना चाहती हैं या कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके पेरेंट्स पता नहीं क्यों पीछे रोकते हैं, क्यों मना करना चाहते हैं। आखिर लड़की भी तो है, करके दिखा सकती है वो लड़की, जो लड़के काम कर सकते हैं ना वो करके दिखा सकते हैं। लड़की को सब लोग कमज़ोर पता नहीं क्यों समझते हैं आज के देश में, नहीं समझना चाहिए। और वो लड़की ताकतवर होती है, वो अच्छी भी होती हैं और वो समझ सकती हैं, वो पेरेंट्स को खुद अच्छे से कमा के खिला सकती है, जितने बॉयज़ कमा के नहीं खिला सकते। और बॉयज़ है ना बहुत मतलबी होते हैं, बड़े होते होते ना अपने पेरेंट्स को उल्टा सीधा बोलते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। मुझे बॉयज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बॉयज़ ना पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते और ना ही गर्ल्स को रिस्पेक्ट करना जानते। जो अच्छे से बात करते हैं पता नहीं कैसी नज़रों से देखते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। वो बॉयज़ है ना बहुत गंदे होते हैं, बॉयज़ की तरफ तो बहुत ही कमी, जितना होता है उतना ही तक बात रखें, फ्रेंड है तो फ्रेंड ही तक रहे, उससे आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बॉयज़ से ना एकदम जैसे आगे आगे अपना करियर करते हैं वैसे वैसे ना लोग नए नए मिलते हैं और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, खिलाया पिलाया। शादी हो जाती है तो उसके बाद अपनी वाइफ की ही सुनते हैं, पता नहीं क्यों सुनते हैं। मेरा मानना है कि जो हमें पढ़ाया लिखाया हमारे पेरेंट्स ही है, जो कुछ है उनकी रिस्पेक्ट करें और उनकी अच्छे से देखभाल करें, जैसे हमें बचपन से पेरेंट्स ने रखा हम उनकी तरह बड़े होके अच्छे से रखें। मैं एक महिला और लड़की के ऊपर एक कविता है मैं सुनाने जा रही हूँ। मैं चाहती थी कि जींस पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं जो सूट पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं सब सारी ज़िंदगी जीऊँ, पर पेरेंट्स ने मेरे को ये सब करने नहीं दिया। जो बॉयस होते हैं उन सबको आज़ादी दी। शादी होने के बाद ससुराल में गई, शादी होने के बाद मैं ससुराल में गई, सास ने बोला ये करो वो करो, लेकिन कुछ भी करने ना दिया। जो कुछ था सब उसके नाम का था, सिंदूर उसके नाम का, चूड़ी उसके नाम की, पायल उसके नाम का, साड़ी उसके नाम की, बिछिया उसके नाम का, नाम प्लेट भी उसके नाम का, नेम भी उसके नाम का, आखिर मेरा क्या है मेरे नाम का। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: नमस्कार, कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। यूं तो हमारा देश दूध उत्पादन के मामले में दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन देश में गौपालन की स्थिति पर अगर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर विदेशी नस्लों का बोलबाला है, क्योंकि इनकी जो उत्पादन क्षमता है वो कहीं ज्यादा बेहतर होती है। लेकिन अक्सर पशुपालक इस बात से अनजान रह जाते हैं कि विदेशी नस्लों की तुलना में देसी गाय पालन और खास तौर पर देसी गाय का दूध कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर बेहतर प्रबंधन, नस्ल सुधार और आहार पर ध्यान दिया जाए तो देसी गाय पालन पशुपालकों का जीवन संवार सकती है। तो आज हम कृषि विशेष में आपको बताएंगे कि किस तरह देसी गाय पशुपालकों के बेहतर आय का जरिया बन सकती है।
1: विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक भारत में लोग हजारों सालों से खेती और पशुपालन पारंपरिक रूप से करते आ रहे हैं। यहाँ संस्कृति, कृषि, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं और पौष्टिक गुणों को देखते हुए सदियों से गाय का पोषण किया जाता रहा है। बल्कि सच तो ये है कि गाय हमारा पोषण करती है, इसलिए हमारी संस्कृति में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। हमारे किसान अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए और खेती के साथ साथ अलग से आमदनी के लिए काफी लंबे समय से गोपालन से जुड़े हुए हैं। भारत में करीब 8 करोड़ किसान गाय पालन कर रहे हैं। देश के सीमांत और छोटे किसानों की कुल आय का करीब 25% हिस्सा इन्हीं से मिलता है। 2019 पशु गणना के आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में गायों की संख्या 14,51,20,000 है, जो पिछली गणना की तुलना में करीब 18% ज्यादा है।
2: अगर आप देखें तो लगभग 535.8 मिलियन टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, जिसमें कि लगभग 302 मिलियन जानवर जो कि गोवंश से रिलेटेड हैं, और इसमें 192.8 मिलियन हमारे गोवंश हैं, जो कि लगभग जो है ये 36% होते हैं पूरे लाइव स्टॉक पॉपुलेशन के देश के। गोवंश का हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे वो खेती हो, बाड़ी हो, चाहे हमारे गांव वालों के जो बहुत स्मॉल होल्डर्स होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में और उनके लेवलीहुड को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है।
1: भारत साल 1997 से दूध उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश में दूध और दूध के उत्पादों की मांग पूरी तरह से घरेलू उत्पादन से ही पूरी की जाती है। पिछले 6 सालों के दौरान दुग्ध उत्पादन हर साल 6.3% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है, जबकि विश्व दुग्ध उत्पादन 1.5% की दर से। दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 2013-14 में जहां 307 ग्राम थी, वहीं 2019-20 में ये 406 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गई है। बदलते वक्त और आधुनिक तकनीक के साथ गौपालन का दायरा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही है, लोग देसी गाय के दूध और अन्य उत्पादों के फायदों को जानने लगे हैं। लोगों के बीच बढ़ती हुई मांग को देखते हुए अब पशुपालकों के बीच देसी गाय पालन लोकप्रिय हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण गाय के दूध और गौमूत्र जैसे अन्य उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। वैज्ञानिक देसी गाय के A2 दूध को विदेशी नस्ल के A1 दूध से बेहतर बता चुके हैं, जिसके कारण देसी गाय के दूध की मांग भी बढ़ी है और कीमत भी। इसलिए किसानों को अब देसी गाय पालन में मुनाफा नजर आने लगा है।
0: सवाल दूध की गुणवत्ता का हो या फिर पशु स्वास्थ्य का, कई बातों में देसी नस्ल की गाय विदेशी नस्लों से 20 ही साबित होती हैं। तो आइए आपको बताते हैं कौन कौन सी हैं हमारी देसी नस्लें और क्या है इनकी खासियत।
1: गाय हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में नंदी, कामधेनु जैसे जो नाम आते हैं। बंसी बजाकर कान्हा जिस गैया को चराते दिखते हैं, कभी इन पशुओं के बारे में आपने सोचा है? गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये तो हमारी स्वदेशी नस्लें ही हैं। इनकी पहचान है इनमें पाया जाने वाला कूबड़।
3: किसी ने गिर गाय लेनी है, जब उसका दूध ही लेना है, तो उसकी पहचान क्या है? पहले नंबर पे तो क्या है, ये चीज जो है ये सबसे ज्यादा ऊपर उठी हुई होगी। हब जो है इसका, ये सबसे ऊपर है, और इसी में बोलते हैं कि इसमें जो सूर्य की रोशनी पड़ती है तो इसी का कारण इसके दूध में जो है वो सोने के तत्व आते हैं। ये पहचान है एक। तो दूसरा जो है, गिर गाय के ये कान जो है वो सबसे लंबे होते हैं। इतने लंबे कान आपको किसी के नहीं मिलेंगे। इसके कान जो है बकरी की तरह है लंबे, देखिए आप। और इसका माथा देखिए ध्यान से, माथा जो है पूरा गणेश जी का है।
1: दुग्ध क्रांति के कारण अधिक दूध उत्पादन पर जोर दिया जाने लगा, तो देश में विदेशी नस्लों और संकर नस्लों की तादाद बढ़ने लगी। ऐसे में देसी गाय पालन के लिए सही नस्ल का चुनाव करना बहुत जरूरी हो जाता है। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां गाय की सबसे ज्यादा नस्लें पाई जाती हैं। आंकड़ों पर नजर डाले तो हमारे देश में इस समय गाय की 50 नस्लें पंजीकृत हैं। गोपालक अगर अपने स्थान की नस्ल की गाय पालें तो वो अधिक फायदा पहुंचाती हैं। क्षेत्र के अनुसार अच्छा दूध उत्पादन देने वाली कुछ मुख्य नस्लें हैं: गुजरात की गिर, पंजाब राजस्थान की साहिवाल, राजस्थान की राठी, कर्नाटक की हल्लीकर, गुजरात राजस्थान की कांकरेज, पंजाब हरियाणा कर्नाटक तमिलनाडु की लाल सिंधी, हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान की हरियाणवी, राजस्थान की थारपारकर, राजस्थान की नागौरी, महाराष्ट्र कर्नाटक की खिल्लारी। देसी गाय के कई फायदे हैं। देसी नस्लें भारत की जलवायु के हिसाब से अच्छी तरह तालमेल बिठाने में सक्षम हैं। यही वजह है कि विदेशी नस्लों की अपेक्षा अगर देसी गाय पालन किया जाए तो इनमें रोग और बीमारियां होने की आशंका कम रहती है। देसी गाय का दूध सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। घी, गौमूत्र का इस्तेमाल आयुर्वेदिक औषधि बनाने में होता है, तो पशुओं से मिलने वाला गोबर और गौमूत्र से जैविक खेती की जाती है। इससे खेती में लागत कम आती है और पशुपालकों को मुनाफा ज्यादा मिलता है। देसी नस्ल की गाय का जो दूध होता है वो काफी पौष्टिक होता है, इसलिए इसे संपूर्ण आहार कहा जाता है। दूध की गुणवत्ता की बात की जाए तो हाइब्रिड नस्ल की गायें A1 क्वालिटी का दूध देती हैं, जबकि देसी नस्ल की गायों का दूध A2 किस्म का होता है। इसमें कुछ खास तरह के प्रोटीन और एमिनो एसिड पाए जाते हैं जो कई तरह से शरीर को फायदा पहुंचाता है। गोपालकों को देसी गाय के सिर्फ दूध से ही आर्थिक लाभ नहीं हो रहा, बल्कि उससे प्राप्त गोबर, पंचगव्य, गौमूत्र वगैरह से भी हो रहा है। इसलिए किसानों और देश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को देखते हुए इन उत्पादों के व्यवसायीकरण और विपणन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि विशेष में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि सरकार देसी गाय पालन को किस तरह से बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही मिलवाएंगे आपको उत्तराखंड की शान बद्री गाय से। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर।

0: क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं अपने विशेषताओं के लिए उत्तराखंड में एक अलग ही स्थान रखने वाली बद्री गाय के बारे में। विशेषज्ञ इसे उत्तराखंड की धरोहर बताते हैं। वैज्ञानिक विधि से अगर इसका पालन किया जाए तो पशुपालक इससे अच्छी कमाई कर सकते हैं।
2: बद्री की पहचान पहाड़ी गाय के रूप में रही है। अब इसे बद्री गाय का नाम दे दिया गया है। छोटा शरीर और खुरों की विशेष बनावट इसे पहाड़ों में रहने योग्य बनाती है। वयस्क बद्री गाय का शारीरिक भार आमतौर पर 230 किलो और नवजात बच्चे का भार 17 किलो के आसपास होता है। हालांकि ये नस्ल 2 किलो से लेकर 5 किलो तक ही दूध दे पाती है, लेकिन सस्ता पालन पोषण और दूध की बेहतर गुणवत्ता बाकी कमियां दूर कर देती है।
3: ये जो नस्ल है बद्री नस्ल, ये नस्ल कम उच्च गुणवत्ता वाला भोजन खा के भी कुछ मात्रा जो है दूध की वो अच्छी मात्रा दूध उत्पादन कर देती है। ये इस नस्ल की खास बात है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इसके दूध के अंदर जो गुणवत्ता है वो हमारे देसी नस्ल की जो गायें हैं उनके अंदर भी वो गुणवत्ता नहीं है जो बद्री नस्ल की गाय में है। इसकी जो कंपोजिशन है दूध की वो हमने जो मेटाबोलूम्स होते हैं मोलिकुलर जो करेक्टराइजेशन है उसके लिए हमने NBHGR के लिए साथ में हमने उनके साथ टाई अप किया हुआ है। आगे आने वाले समय में जब उसकी साइंटिफिक वैलिडेशन हो जाएगी तो इस नस्ल से ऊपर की नस्ल इस विश्व के अंदर कहीं भी नहीं है। ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही अच्छी बात है।
2: उत्तराखंड का ज्यादातर इलाका पहाड़ी है, इसलिए यहाँ ऐसी गायों की जरूरत थी जो पहाड़ों पर जीवन यापन कर सके। वैसे भी यहाँ के पशुपालक दूध निकालने के बाद गायों को चरने के लिए छोड़ देते हैं। अपने भोजन की तलाश में इन्हें पहाड़ों पर चढ़ना होता है। आकार में छोटी होने की वजह से यह आसानी से पहाड़ों पर चढ़ सकती है। विशेष प्रकार के बने बद्री के पैर इन्हें पहाड़ से खिसकने नहीं देते। वैसे देसी गायों में पहाड़ पर चढ़ने का हुनर कुछ ही नस्लों के पास है, बद्री उनमें से एक है।
4: हमारे भारतवर्ष में लगभग 33 गौ प्रजाति हैं, जिसके अंदर एक उत्तराखंड जो राज्य है उसमें हमारी जो देसी गाय है जिसको इंडिजिनियस काउ बोलते हैं हम, वह पहाड़ी गाय है और उस पहाड़ी गाय को ही हमने अभी पंजीकृत कराया है जिसका नाम बद्री गाय रखा है। यह बद्री गाय आकार के हिसाब से बहुत ही छोटा 3 या 4 फीट की होती है और इस गाय का शरीर है वो बहुत ही छोटा है और इस गाय के जो सींग हैं वो थोड़े ऊपर और अंदर की ओर होते हैं। इस गाय का रंग है वो काला सफ़ेद व ग्रे रंग की होती है। इस गाय के जो थन है वो बहुत ही छोटे होते हैं और शरीर से सटे हुए होते हैं। इस गाय के शरीर पर आगे की ओर एक कुबड़ भी होता है। यह गाय बहुत ही अच्छी गाय है पर्वतीय इलाकों के हिसाब से।
2: जैव प्रौद्योगिकी परिषद वैज्ञानिक विधि से बद्री पालन के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है। इसके लिए उसने प्रशिक्षण का इंतजाम किया है। प्रशिक्षण का काम गाय मालिक के घर जाकर भी हो रहा है और संस्थान में भी। विशेषज्ञों का कहना है कि गाय पालन के दो फॉर्मूले हैं। पहला है कि मादा गाय से हर साल एक बच्चा मिल जाना चाहिए और दूसरा जन्म के ढाई साल के भीतर बछिया दूध देने की अवस्था में आ जानी चाहिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो गर्भकाल के आखिरी दिनों में गाय की सही देखभाल करनी होगी, क्योंकि यही वो समय है जब बच्चे के भार में सबसे अधिक बढ़ोतरी होती है और गाय ज्यादा दूध देने के काबिल बनती है।
3: किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब कम से कम एक या डेढ़ महीना ब्याने का बच जाए, उसके आसपास उनको आप जो दाना मिश्रण है वो एक से डेढ़ किलो दाना मिश्रण शारीरिक भार के और अक्षमता के अनुसार वो देना शुरू कर देना चाहिए। उससे जो अंदर बच्चा है उसके शारीरिक भार में वृद्धि होगी और जब जन्म होगा तो अधिक शारीरिक भार का बच्चा पैदा होगा। अधिक शारीरिक भार का बच्चा पैदा होगा तो उसकी दिन बर बढ़ोतरी ज्यादा होगी। और हम ये बताते हैं कि हर रोज नस्ल के हिसाब से 250 से 300 ग्राम या शारीरिक भार में हर रोज वृद्धि हो जानी चाहिए। ये एक वैज्ञानिक अनुमान है और इसके ऊपर किसानों को ध्यान देना चाहिए।
2: ज्यादातर किसान गौपालन में वैज्ञानिक तरीके नहीं अपनाते। मिसाल के तौर पर नवजात को बहुत से किसान जरूरत से ज्यादा दूध पिला देते हैं, इससे दस्त लगने का खतरा बना रहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि नवजात बच्चे के भार का दसवां भाग ही पहले दूध के रूप में पिलाएं। पहला दूध बहुत महत्वपूर्ण है, ये बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दूसरी ओर किसान अक्सर पहला दूध पिलाने के लिए जेड डालने तक का इंतजार करते हैं, जबकि हकीकत में ब्याने के एक घंटे के अंदर अंदर पहला दूध पिला देना चाहिए। उसके बाद इसकी पोषकता में कमी आने लगती है।
3: थनैला की बीमारी से बचाव करने के लिए एक छोटा सा नुस्खा है, कहते हैं इलाज से परहेज अच्छा। परहेज करने के क्या है कि दूध निकालने के उपरांत 6-7 मिनट तक उस जानवर को खड़ा रखें, और खड़ा करने के लिए क्या रखें करें उसको कोई ऐसा चारा और दाना दे दें कि ताकि वो खड़ा होकर खाता रहे। उसके बाद उसके थन के अंदर का जो सुराख है वो बंद हो जाएगा और जो इन्फेक्शन अब बाहर से अंदर जाने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी।
2: उत्तराखंड में बद्री गाय को कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूध A2 क्वालिटी का होता है जिसमें वसा की मात्रा 4% होती है। इससे आप छाछ, घी, मक्खन या फिर पनीर कुछ भी बना सकते हैं। विदेशी नस्लों की तुलना में देसी गायों की अधिक उपयोगिता को देखते हुए देसी गौपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है। जहां एक तरफ पशु स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देसी नस्ल के दुधारू पशुओं के विकास और संरक्षण का काम किया जा रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं योजनाओं के बारे में। दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य संरक्षण और संवर्धन की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध है, इसलिए इस दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाएं व कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुधन किसानों के लिए KCC, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण। राष्ट्रीय पशुधन मिशन की बात करें तो इसे साल 2014-15 के दौरान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य चारा और आहार विकास संबंधी उपमिशन पशु चारा संसाधनों की कमी संबंधी समस्याओं का समाधान करना है, ताकि पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं 2014 में शुरू किए गए राष्ट्रीय गोकुल मिशन का सीधा उद्देश्य दुधारू पशुओं की स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। इस मिशन के जरिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम को केंद्र में रखा गया है और इसके तहत स्वदेशी गायों और भैंसों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत नस्ल सुधार के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस योजना में गिर, साहिवाल, राठी, देवनी, थारपारकर, ड्रेड सिंधी जैसी उच्च कोटि की नस्लों का उपयोग करके नॉन डिस्ट्रिक्ट या गैर विवरणात्मक गो पशुओं का उन्नयन किया जा रहा है।
5: पिछले 5-7 सालों में हमने इस पर विशेष, या पिछले कहेंगे 10-15 सालों में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है और अपनी देसी नस्ल की गायों के संरक्षण संवर्धन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये नस्ल की गायें हमारी खासतौर से जो गिर हैं, साहिवाल हैं, थरपाकर हैं, कंकरेज हैं, राठी हैं, ये वो गायें हैं जिनका की दूध का की उत्पादकता अच्छी है और इसमें अभी और उत्पादकता बढ़ाने के जैसे इसमें बहुत सारे पोटेंशियल हैं जिसको कि हम लोग ICR में इसको हम लोग काम कर रहे हैं और देश की और सरकार की और जो योजनाएं चल रही हैं उसमें भी इन नस्ल के पशुओं को संवर्धन के लिए काम किया जा रहा है।
2: कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की व्यवस्था कर नस्ल में सुधार किए जा रहे हैं। पशुपालकों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए इस मिशन के तहत ग्राम स्तर पर पशु केंद्र खोले गए हैं। हर केंद्र पर सभी पंजीकृत नस्लों के उच्च कोटि के अनुवांशिक देसी पशुओं को रखा गया है। इसके अलावा पशुओं में होने वाली बीमारियों पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के तहत सितंबर 2019 में खुरपका मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। 13,343 करोड़ रुपए का ये कार्यक्रम 5 वर्षों 2019-20 से 2023-24 तक के लिए शुरू किया गया है। तो आज आपने विस्तार से जाना कार्यक्रम कृषि विशेष में देसी गाय पालन की विशेषताओं के बारे में और इसकी उपयोगिता के बारे में। हमें उम्मीद है कि ये जानकारियां आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dd.krishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक लेकर नया विषय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

साल 1947, देश को आजाद हुए मुश्किल से कुछ महीने ही हुए थे जब पाकिस्तान ने कबीलाई लश्कर घुसपैठियों के साथ श्रीनगर पर हमला बोल दिया था। मकसद था श्रीनगर एयरबेस पर कब्जा करना। तब 700 से ज्यादा दुश्मनों को हमारे 50 जवानों ने न सिर्फ घंटों तक रोके रखा बल्कि 200 घुसपैठियों का काम तमाम कर दिया और जिनको इस मिशन की जिम्मेदारी मिली थी उन्होंने अपनी जान देकर वतन की रक्षा की। और बन गए देश की शान पहले परमवीर पाने वाले योद्धा। ये कहानी है मेजर सोमनाथ शर्मा की। 22 फरवरी 1942 को भारतीय सेना में चौथी कुमायूं रेजिमेंट में बतौर कमीशन्ड अधिकारी प्रवेश लिया। मेजर सोमनाथ शर्मा का फौजी कार्यकाल शुरू ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ जब उन्हें मलाया के पास के रण में भेजा गया था। सोमनाथ शर्मा की टुकड़ी को कश्मीर घाटी के बड़गाम मोर्चे पर जाने का आदेश जब मिला था तब उनका बायां हाथ चोटिल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे मैगजीन में गोलियां भरकर सैनिकों को देते गए, लेकिन दुर्भाग्य से वे दुश्मन के एक मोर्टार का निशाना बन गए और वीर गति को प्राप्त हुए। अंतिम समय में भी वे दुश्मनों का सामना करने के लिए अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। मेजर सोमनाथ परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: हेलो, मेरा नाम नीलम है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं घर में रहती हूँ। मुझे यहाँ पे एक बार रीड इंडिया वाले हमारे उधर सर्वे करने आए थे, उनके थ्रू मुझे रीड इंडिया के बारे में पता लगा, फिर मैं इधर आने लग गई, मैं रीड इंडिया से जुड़ गई। यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ से पार्लर भी सीखा है और कंप्यूटर भी। इस टैग के कोर्स में मैंने IT बनाना और किसी की लोकेशन सेंड करना, और पहले मैं घंटों उसकी लाइन में, बैंक की लाइन में खड़ी रहती थी, बट जब से फ़ोन मतलब इसकी नॉलेज मुझे हुई है कंप्यूटर की, तब से मैं अपने फ़ोन में ये डाउनलोड करके कहीं भी पैसे सेंड कर सकती हूँ, पैसे भेज सकती हूँ, और उससे मतलब कैब करके मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। अब मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और सबसे बड़ी बात जो रीड इंडिया से जुड़ने के बाद मेरे साथ हुई है वो ये कि मैं घर में रह के डिप्रेशन में रहने लग गई थी, अब मैं फ्री माइंड हो गई हूँ, मैं मतलब आज़ाद होकर सोच सकती हूँ और थोड़ा मेरा दिमाग भी मतलब सही रहने लग गया है। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी घर में रह के, मैं बाहर भी कहीं नहीं जाती थी, और घर में रह के यही रहने लग गया था, बस डिप्रेशन नहीं रहने लग गया था। अब यहाँ आके मैं बिल्कुल ठीक रहने लग गई हूँ। हाँ, मैं हाउसवाइफ के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बाहर आइए, आपको नहीं सीखना नहीं है वो ठीक है, बट आप आइए, सीखने के बहाने से ही आइए, ताकि आप मतलब मेंटली तौर पर सही रह सकें और आपको एक दूसरे से बात करके कुछ नया पता लगे। मतलब किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो कुछ अच्छा ही पता लगे अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में, बहुत कुछ आप यहाँ आके जान सकते हैं। थैंक यू रेड इंडिया।
2: Hello everyone, my name is Lancy and I passed 10th class. Then I think to join Read India Academy to improve my condition. मैंने अकेडमी ज्वाइन की रीड इंडिया, और उसमें हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ TEG, टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग गर्ल्स। ये एक कोर्स है जो वुमेन और गर्ल्स के लिए है। ये वुमेन और गर्ल्स की बैड कंडीशन को इम्प्रूव करता है। जैसे पहले घरों में महिलाएं निकलती नहीं थी और कोई निकलने नहीं देता था, भाई और उनके पिता, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ये प्रोग्राम चला है तो इसके लिए सब यहाँ पे वुमेन और गर्ल्स आती हैं, कंप्यूटर कोर्स करती हैं और सिलाई करती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हैं जिनसे वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, और आगे भी एक प्रोग्राम चल रहा है। मैंने एक कंप्यूटर कोर्स किया है 21 डेज का भी, और मैं बेसिक कंप्यूटर भी कर रही हूँ, और मैंने इंटरनेट के थ्रू मेलिंग सीखी है, वेबसाइट से लिंक बनाना सीखा है, और मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी है। पहले मतलब मुझे कुछ नहीं करना आता था, मुझे किस सबकी ज़रूरत होती थी, लेकिन आज कल मैं खुद कर रही हूँ ये सब और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती। बस मैं बहुत इंडिपेंडेंट फील करती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया एकेडमी।
3: Good afternoon. My name is Tanu Tanwar. I passed 10th class and I joined Read India Academy in Shahabad, Mohammadpur. This is only one academy who teach us computer. This academy helps to be a woman independent. Read India starts tag program for girls and women only to improve the bad condition for women. And it helps us in form filling, and also we help our parents. Then we also reserve tickets. Thank you.
4: I am Shweta. I study in IGNOU University, or I done NPTT course for Polytechnic Institute, Rajouri Garden. और हमारे जो यहाँ पे शाहबाद में ये है ना NGO, मैं यहाँ से क्लासेस ले रही हूँ टैग की, तो इससे मेरे को काफ़ी चेंजेस आए हैं, और थोड़ा सा लगा के भाई यहाँ पे आके हाँ बाकी को भी करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफ़ी हेल्प है, मतलब टीचर्स अच्छे से समझाते हैं, कोई दबाव नहीं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, और दूसरा फिर इससे ये है कि नॉलेज बढ़ती है यहाँ पे आके एक दूसरे को, मतलब हम जाके जैसे हम आ रहे हैं किसी को बता रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं, तो इससे काफ़ी चेंजेस आते हैं, मतलब किसी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो पास में है, और ऊपर से यहाँ पे कोई ऐसे प्रेशर वाली बात नहीं, जैसे कोई मतलब फोर्स कर रहा है किसी चीज़ के लिए या कोई बता नहीं रहा, इसमें ये होता है। और मतलब होना चाहिए कि हर घर से कोई एक भी आए ना, तो ये नहीं मतलब कि सिर्फ घर में या एक फैमिली में, इसमें पूरे एरिया में चेंजेस आ सकते हैं अगर हम लाना चाहें तो। और उसके बाद जैसे होती है ना फैमिली, टाइम से पहले मतलब लड़कियों को मतलब घर बिठा लेते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल कंडीशन लगा लो, कुछ भी हो, जिससे लड़कियां घर बैठ जाती हैं, पढ़ाई कर नहीं पाती, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे, इस लाइन में आने से, क्योंकि इसमें मतलब इतना कोई ज़्यादा हाई फाई फीस वगैरह भी नहीं लगती कि जिससे भाई कोई अफोर्ड नहीं कर पाए। इसमें नॉर्मली होता है फाइनली, मतलब ये कि जैसे नॉर्मली फैमिली होती है वो भी कर सकती है, और जो मतलब बिल्कुल लो होती हैं वो भी कर सकती हैं। और जैसे मतलब भाई होती है कुछ फैमिली जो लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ लड़कों को करती हैं कि भाई लड़के ही आगे बढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं बढ़ सकती, और शादी वादी कर देते हैं, उनकी पढ़ाना नहीं चाहते उनको आगे, तो उनके लिए भी मतलब है कि भाई वो कर सकती हैं आके, तो उनको लगेगा, खुद ही लगेगा मतलब चेंजेस आ जाते हैं। और इससे मतलब इतना कुछ सिखाते हैं हमें यहाँ पे ये कि मतलब हमें खुद लगता है कि हम अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग वर्क में, और हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना या ऑनलाइन मतलब कुछ भी वर्क है वो हम कर सकते हैं। तो इससे हमें हमारी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं और घर वालों के में भी आते हैं, और इससे ये आगे हमारा जो फ्यूचर होता है ना वो सेव हो जाता है, क्योंकि अगर हम आज अपने पैरों पर खड़े तो तभी तो अपने बच्चों को हम बना सकते हैं मतलब इंडिपेंडेंट। अगर बच्चों को कुछ सिखाना तो उसके लिए पहले खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, इससे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि उससे पहले हमें कुछ जानकारी होगी, हमें कुछ डिटेल्स होंगी, तभी हम किसी के सामने मतलब रख सकते हैं। एक शादी करना और मतलब लाइफ को घर में दबा के रखना, ख़त्म कर देना, सब कुछ नहीं होता आज के टाइम में। मतलब जितना बढ़ो आगे उतना कम है, और हर किसी को बढ़ना चाहिए, किसी एक को नहीं, हर किसी को, जहाँ से जैसी हेल्प मिलती है, जो मिलती है वो करनी चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है कि सिर्फ यही कर सकता है, यही बोल सकता है, मैं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। सबको है मतलब एक फ्रीडम होती है अपने आप में, लाइफ अपनी है, किसी का प्रेशर नहीं होता कोई के मतलब हम किसी के प्रेशर में आके अपनी लाइफ ख़राब कर दें, या मतलब बोल ले नहीं, कुछ नहीं करें, आगे नहीं बढ़े। एक दो बार मतलब होता है भाई, डर होता है एक, लेकिन बार बार निकलने से ना सब डर खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है, ख़त्म करने से ख़त्म होएगा, ऐसे डरने से तो डर बढ़ता ही है, कोई मतलब दूसरा उसको ख़त्म नहीं कर सकता आके। अब हम हैं जैसे कुछ होती हैं लड़कियाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की को फ्रीडम होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे सिर्फ पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया है, बाकी फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि मतलब मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि सबको ये था ट्वेल्थ कर लिया, पास आउट हो गया, स्कूल शादी कर दो, ये है वो। लेकिन मेरे पेरेंट्स शुरू से वर्किंग है, तो वो चाहते हैं, उनको पता है पैसे की कीमत क्या है, तो वो चाहते हैं मतलब तो बच्चे कुछ अच्छा करें, ताकि उनको इस लाइन में ना जाना पड़े, और वो अपने पैरों पे खड़े हो, मतलब अच्छे से अच्छा काम करें, और दुनिया में मतलब उनकी एक अलग पहचान हो। तो इसलिए उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया और आज मैं यहाँ हूँ। और एक शादी की तो एक लास्ट में एक वो होता है कि भाई अब तो करनी है, वो तो एक लास्ट मोमेंट होता है कि अब तो भाई स्टेप लेना ही है। उससे पहले ना सिर्फ स्टडी के बारे में सोचना चाहिए, कैसे लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। ज़रूरी नहीं होता कि मतलब घर वालों ने बोल दिया आप सुन के बैठ गए, चलो भाई कोई नहीं, उनको समझाना चाहिए अपने तरीके से, ऐसे भी नहीं कि लड़ लो, ये कर दो वो कर दो, नहीं, प्यार से समझाओ, पढ़ाई की इम्पोर्टेंस बताओ, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी इम्पोर्टेंस है। और वैसे भी आजकल तो हर कोई लड़का भी अच्छा नहीं मिलता, हर कोई फैमिली भी अच्छी नहीं मिलती, वो तो किस्मत की बात है, सुख दुख तो किस्मत का होता है। तो इसलिए हमें जितना हो सके ना अपने पैरों पर खड़ा होकर इंडिपेंडेंट होकर मतलब सोचना चाहिए, लास्ट एक मोमेंट होता है जो स्टेप लेना है, उससे पहले अपनी लाइफ बनाओ, जो करना है वो करो, बाकी करो सिर्फ ऐसा ही कि घर वालों को भी अच्छा लगे और खुद का भी एक स्टैंड हो और दुनिया में अपनी पहचान हो।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज हम स्मरण कर रहे हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण का।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

झंझा सोई तूफान रुका, प्लावन जा रहा कगारों में, जीवित है सबका तेज किंतु अब भी तेरे हुंकारों में। सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां संबोधित हैं उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक और राजनेता को, आधुनिक भारत के इतिहास में जिनकी उपस्थिति अविस्मरणीय है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वो महान राष्ट्रभक्त थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। राष्ट्र सदैव उनके जीवन के केंद्र में रहा। देश के तीन महत्वपूर्ण आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। आजादी के बाद 50 और 60 के दशक में भूदान आंदोलन में भाग लेकर उन्होंने बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन लाने की दिशा में योगदान किया और 70 के दशक में भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। तत्कालीन परिस्थितियों के विरुद्ध विपक्ष को एकजुट कर उन्होंने देश के नेतृत्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। संपूर्ण क्रांति का उनका दर्शन और आंदोलन भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव तो लाया ही, साथ ही देश के सामाजिक ताने बाने को बदलने में भी कारगर साबित हुआ। आजादी के बाद वो देश के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हो सकते थे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद के प्रस्ताव उनके समक्ष रखे भी गए, किंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। दरअसल जयप्रकाश नारायण हमेशा स्वयं को राज सत्ता से अलग रखकर लोक सत्ता को मजबूत करने में लगे रहे। वे राजनीति और राज सत्ता के ऊपर लोकनीति और लोक सत्ता का अंकुश रखने के पक्षधर थे, ताकि राज सत्ता को भ्रष्ट होने से बचाया जा सके। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर सन 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में विजयदशमी के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम हरसू दयाल और माता का नाम फूल रानी देवी था। मां की

अंग्रेजी शिक्षा के बहिष्कार पर भाषण सुना जिसने उन्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। सन 1920 में पटना में हुई गांधी जी की सभा का भी उन पर गहरा असर हुआ। स्वदेशी का प्रभाव ऐसा हुआ कि उन्होंने खादी पहनना शुरू कर दिया, चरखा चलाना भी सीख लिया। चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया तब जयप्रकाश नारायण के कई साथी वापस कॉलेज जाने लगे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों में वापस जाना उन्हें स्वीकार्य नहीं था। इसलिए जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया और आईएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अनुग्रह नारायण सिंह, रामचरित्र सिंह, पांडे रघुनंदन, पांडे हरिनंदन और शंभु शरण वर्मा जैसे देशभक्त मित्रों के सानिध्य का भी उन पर प्रभाव पड़ा। देश से उनके सरोकार बढ़ते चले गए। भारत भूमि से उनका आत्मिक जुड़ाव बचपन से जो था।

सन 1920 में जब जयप्रकाश नारायण 18 वर्ष के थे तब उनका विवाह प्रभा देवी के साथ संपन्न हुआ। बिहार विद्यापीठ से पढ़ाई करने के बाद सन 1922 में अपनी पत्नी प्रभा देवी को गांधी जी के साबरमती आश्रम में छोड़कर जयप्रकाश नारायण कैलिफोर्निया के बर्कले विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने चले गए। यहां अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्होंने खेतों, कंपनियों, होटलों में काम भी किया। इन सालों में उनके विचार और दृष्टिकोण में सबके लिए समान अधिकार की बात स्पष्ट रूप से अंकित हो चुकी थी। अमेरिका में रहते हुए ही उन्होंने बीए और एमए की डिग्री हासिल की, लेकिन माताजी की तबीयत खराब होने के कारण अपनी पीएचडी अधूरी छोड़कर सन 1929 में वो भारत वापस लौट आए। संपूर्ण जीवन देश को समर्पित करने का संकल्प अब उनके मन में था। इसी शुभ भावना के साथ उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और देश के स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय हो गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण सन 1932 में जयप्रकाश नारायण मद्रास में गिरफ्तार किए गए। ये उनकी पहली जेल यात्रा थी। यहां से वे मुंबई आर्थर रोड जेल और फिर नासिक जेल लाए गए। नासिक जेल में ही वो राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, मीनू मसानी और अच्युत पटवर्धन जैसे नेताओं के संपर्क में आए। सन 1939 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में उन्होंने आह्वान किया कि द्वितीय विश्व

युद्ध का फायदा उठाते हुए भारत से अंग्रेजी सरकार को उखाड़कर फेंक दिया जाए। उनकी सघन सक्रियता को देखते हुए उन्हें 9 महीने कारावास की सजा हुई। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। 9 अगस्त की सुबह गांधी जी के साथ साथ सभी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन का लगभग संपूर्ण नेतृत्व ही जेलों में डाल दिया गया। ऐसे समय में जयप्रकाश नारायण ने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर इस आंदोलन को महत्वपूर्ण नेतृत्व दिया। हालांकि उन्हें भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया। लेकिन जयप्रकाश नारायण जानते थे कि जेल के बाहर रहकर ही इस आंदोलन को गति दी जा सकती है। इसलिए 8-9 नवंबर 1942 की रात दीपावली के त्योहार का फायदा उठाते हुए अपने 6 साथियों को लेकर वो फरार हो गए और उसके बाद भूमिगत रहकर आंदोलन को गति देते रहे। इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन में वो एक नायक की तरह उभरे। अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने वाले को 5,000 रूपये के इनाम की घोषणा की गई, जिसकी राशि बाद में बढ़ाकर 10,000 रूपये कर दी गई। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में आजाद दस्ते का गठन किया। पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। इन परिस्थितियों में उनके नेपाल पहुंचने का किस्सा भी अत्यंत रोचक है। बम्बई से मद्रास और फिर कलकत्ता होते हुए वो बिहार आए। यहां से सहरसा जिले को पार कर उन्हें नेपाल पहुंचना था। पुलिस को धोखा देने के लिए शादी के बाद दुल्हन को वापस घर लौटाने का नाटक रचा गया। हाथी पर सज धज कर बैठे जयप्रकाश जी आगे आगे चले और पीछे पीछे पालकी में चली अच्युत पटवर्धन की छोटी बहन विजया पटवर्धन। इस तरह सन 1943 में नेपाल में आजाद दस्ते का गठन हुआ। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो के शंखनाद की गूंज बढ़ती गई। कुछ महीनों बाद सितंबर 1943 में रेल यात्रा करते समय जयप्रकाश नारायण को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1945 में उन्हें लाहौर से आगरा जेल भेज दिया गया, जहां राम मनोहर लोहिया भी उनके साथ थे। स्वाधीनता आंदोलन की जानकारी प्राप्त करने के लिए जेल में उन्हें असहनीय यातनाएं दी गईं, लेकिन जयप्रकाश जी पहाड़ की तरह अटल रहे।

11 अप्रैल सन 1946 को 31 महीने के कारावास के बाद जयप्रकाश नारायण रिहा हुए। 15 अगस्त 1947 को देश में स्वर्णिम विहान जागा, भारत स्वाधीन हुआ। लेकिन आजादी के बाद उन्होंने कोई भी पद ग्रहण करने से इनकार कर दिया। दरअसल गांधी जी के बाद ऐसे आदर्श प्रस्तुत करने वालों में वो एकमात्र व्यक्ति थे। गरीबों के लिए उनकी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई और यही संकल्प उन्हें आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के करीब ले गया। विनोबा जी से उनकी पहली मुलाकात सन 1950 में हुई थी। विनोबा जी से मिलकर उन्होंने महसूस किया कि विनोबा जी अद्भुत प्रतिभा संपन्न मौलिक विचारक हैं और उनके व्यक्तित्व में दूसरों को अनुप्राणित करने की अनोखी शक्ति है। इस तरह जयप्रकाश जी के मन में ये विश्वास जागा कि सर्वोदय योजना के द्वारा ही गांधी जी के सपने को साकार किया जा सकता है। उन्होंने कहा भी था, आई सी सम लाइट हियर। इस तरह विनोबा जी से उनका आत्मीय जुड़ाव जीवन पर्यंत रहा। जयप्रकाश जी ने देश से कभी कुछ मांगा नहीं, सिर्फ दिया ही। इसीलिए देश स्वयं उनके नैतिक अधिकार को हमेशा मानता रहा। ये उनके व्यक्तित्व का ही प्रभाव था कि चंबल के लगभग 500 डाकुओं का हृदय परिवर्तन करने में वो सफल रहे और उनका आत्मसमर्पण करवाया। एक संत की तरह देश को सब कुछ सौंपकर वो राजनीति से संन्यास ले चुके थे। लेकिन 70 के दशक की शुरुआत में उनके जीवन का तीसरा चरण आरंभ हुआ। तत्कालीन परिस्थितियों से परेशान गुजरात के छात्रों ने उनसे नवनिर्माण आंदोलन के नेतृत्व का आग्रह किया। खराब स्वास्थ्य के बावजूद देश हित में जयप्रकाश जी फिर उठ खड़े हुए। 5 जून सन 1974 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। 5 लाख से भी अधिक लोग इस सभा में जुटे थे। जेपी की हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ा। बिहार से उठी क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में प्रचंड अग्नि बनकर भड़क उठी। देश में आपातकाल लागू हो गया। जयप्रकाश नारायण सहित सैकड़ों नेता गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिए गए। इस आंदोलन का ही परिणाम था कि अंततः देश के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा में 7 क्रांतियां शामिल थीं: राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान ही जयप्रकाश नारायण का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया। आपातकाल के दौरान उनकी तबीयत अचानक 24 अक्टूबर सन 1976 को बिगड़ गई और 12 नवंबर सन 1976 को उन्हें रिहा कर दिया गया। जांच करने पर मालूम हुआ कि उनकी किडनी खराब हो गई थी, जिसके बाद वो डायलिसिस पर ही रहे। 8 अक्टूबर सन 1979 को पटना में उन्होंने अंतिम सांस ली। देश में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर विनोबा जी ने अत्यंत विह्वल स्वर में कहा, लोगों ने उन्हें लोकनायक की उपाधि दी, परंतु उन्होंने कभी अपने को लोकनायक माना नहीं था, लोक सेवक ही माना। यदि वे चाहते तो प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति बन सकते थे, किंतु ऐसी कोई इच्छा उनके मन में कभी उत्पन्न नहीं हुई। वो लोगों के बीच रहकर ही आम लोगों की सेवा करते रहे। उनके निधन का समाचार सुनकर 36 देशों ने संवेदना संदेश भेजा और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी झंडा झुका दिया गया। उनकी देश सेवा के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र ने सन 1998 में उन्हें भारत रत्न से विभूषित कर अपना आभार व्यक्त किया। ऐसे निस्वार्थ कर्मयोगी लोकनायक जयप्रकाश नारायण को हमारा शत शत नमन।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: तकदीरी के साथ बदलते भारत की शान।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जी हाँ, हम हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, पर ये दिल हमारा हमेशा हिंदुस्तानी ही रहता है।

नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू आशियो कृषि स्टार्टअप। हमारे देश में आज भी पशुपालन को पढ़े लिखों का काम नहीं माना जाता है, लेकिन दुष्यंत भाटी इस माइंडसेट को तोड़ रहे हैं। कौन है दुष्यंत भाटी और क्या है उनकी स्टार्टअप जर्नी, ये जानने के लिए आज हम आए हैं नोएडा के सेक्टर 61 में। तो चलिए मेरे साथ।

0: Hello and welcome to our show, Krishi Startup Dushyanti. तो दुष्यंत भाटी जी अब मेरे साथ हैं यहाँ पर और मैं चाहूंगी दुष्यंत जी आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को खुद दें।
1: देखिए मैं मेरा नाम दुष्यंत भाटी है। मैंने अपना जो एजुकेशन करी है वो लंदन से करी है MBA और वहां से आकर के हम लोगों ने 2018 में अपनी डेयरी फार्मिंग शुरू करी थी और उसके साथ ही जो उसके साथ के और जो ब्रांचेज हैं उनको भी स्टार्ट किया है।
0: स्टार्टअप में आपने डेयरी फार्मिंग को चुना है, क्या रीजन रहा इसके पीछे?
1: वर्ल्ड में जैसे हम 2 साल लंदन में रहे तो हमने देखा कि वहां पर बड़े फार्म्स का सारा ही जितना भी मिल्क इंडस्ट्री वहां पे है वो बड़े फार्म्स के ऊपर है। तो एक ये था कि भी फार्म्स की एक शुरुआत करी जाए और उस हिसाब से जो बेस्ट प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में ला सकते हैं विद इन आवर्स, उसकी एक सोच थी और उसकी वजह से हम लोगों ने डेयरी फार्मिंग को चुना और कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हमको लेके जाने थे मार्केट के अंदर, ताकि जो आज मिलावटी प्रोडक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा एड्रेस करना था कि भाई अच्छा काम भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने सोचा कि भाई डेयरी फार्मिंग और फिर इंडियन रूट से जुड़ने का भी एक मन था, तो इसलिए इसको आके चुना कि भाई डेयरी फार्मिंग ही करनी है और इसी को आगे बढ़ाना है।
0: तो कभी मन में नहीं आया ऐसा कि नहीं व्हाइट कॉलर जॉब ही करना है भाई, 2 साल लंदन वाला लड़का हो जाता है तो मन में यही रहता है ना कि अगर वापस भी आना है तो कुछ ऐसा करेंगे कि ऑफिसर टाइप्स?
1: देखिए वो भी तरीके थे बट जब करके आए वहां से मालूम चला तो ये रहा कि भाई किसी भी तरीके से किसानों की मदद करनी है और अपने को भी बढ़ाना है थ्रू एग्रीकल्चर, बिकॉज इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है और उसी के तहत सारी चीजें गवर्न होती हैं और जो इंडस्ट्रीज भी होंगी या प्रोसेस इंडस्ट्रीज भी चलेंगी तो जब तक मेन रॉ मटेरियल ही नहीं होगा हमारे पास तो हम प्रोसेस किस चीज को करेंगे। इसलिए यह था कि भाई डेयरी फार्मिंग ही करेंगे और बाहर से एक एक्सपीरियंस था कि भाई टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़ा जाए उसके संग। तो जो हमारे यहाँ अभी स्कैर्सिटी थी कि भाई साइंटिफिकली डेयरी फार्मिंग नहीं हो रही है, उसी को लेकर के हम लोगों ने कोशिश करी कि भाई हम डेयरी फार्मिंग करेंगे विद अ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड डेयरी फार्म।
0: सच बताइएगा कि जब आप लंदन गए थे तो मन में यही था कि मैं जब लंदन से वापस आऊंगा तो डेयरी का स्टार्टअप ही खोलूंगा?
1: नहीं, एक्चुअली में मन ये नहीं था। फादर ने तो ऑप्शन दिया था कि भाई लंदन में ही सेटल होने के लिए, बट मेरा थोड़ा इंडियन फूड से लगाव ज्यादा है तो फूड की बड़ी वहाँ प्रॉब्लम है, तो मुझे ये था कि भाई इंडिया ही वापस चलना है और मैं थोड़ा सा फैमिली बेस्ड भी ज्यादा रखता हूँ मन अपना, तो मैं बिना फैमिली के भी वहां पे मुझे सेटलमेंट में टाइम लगा था। तो फिर ये था कि भाई कम से यहाँ आकर के कुछ करेंगे तो इंडिया में ही करेंगे।
0: तो बिल्कुल यही होता है एक हिंदुस्तानी मन के, कहीं भी चले जाएं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं लेकिन जो यहाँ का जो फूड है, जो यहाँ की रूट्स है उनसे हम जुड़े रहते हैं। तो आपने बताया पापा ने कहा था लंदन में सेट हो जाइए, तो जब आपने ये डेयरी वाला प्रपोजल उनके सामने रखा तो क्या रिएक्शन थी उनकी, क्या कैसा लगा
1: उनको? उनको ये था, मतलब ही वॉज बिट डाइसी के भाई एजुकेशन डेयरी फार्मिंग से नहीं है, बैकग्राउंड डेयरी फार्मिंग से नहीं है, बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है फैमिली में, तो कैसे उसको परफॉर्म कर पाओगे, कैसे आप एफिशिएंटली डेयरी फार्म की परफॉर्मेंस, बिजनेस की जितनी भी इकोनॉमिक्स है उसको प्रॉपरली प्रॉफिट्स में लाना, तो वो मैंने कहा कि भाई अब जब करना है तो फिर करना ही है, तो तब उसको प्लान किया और आज काफी अच्छी सिचुएशन में है।
0: रिलेटिव स्पेशली जो होते हैं वो कहते हैं अरे भाई लंदन से तो लड़का पढ़ के आ गया लेकिन देखो कर डेयरी रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस मिली आपको लोगों से?
1: बहुत मतलब नेगेटिव थॉट्स मिले लोगों के कि भाई लंदन जाना था तो यही सब क्यों करना था, भाई यही कर लेते, इसके लिए तो कोई एजुकेशन चाहिए नहीं। बट मुझे ये था कि भाई कम से कम बाहर की टेक्नोलॉजी को जोड़ना और उसको प्रोफेशनली कैसे कर सकते हैं और इट इज वी कैन रन लाइक अ इंडस्ट्री ऑल्सो। तो बहुत लोगों ने डिप्राइव किया, बहुत लोगों ने डिमोटिवेट किया कि क्या कर लिया, एजुकेशन नहीं है, वेटनेरियन आप नहीं हो, साइंटिस्ट आप नहीं हो, बाकी कोई भी आपके पास प्रॉपर डिग्रीज की नहीं है, तो मेरे पास MBA इन मार्केटिंग है। तो तब भी मैंने कहा कि भाई जब मुझे करना है तो करना है, तो इसीलिए मैंने उसको ध्यान रखते हुए कि काम को आगे बढ़ाया।
0: डेयरी हम मानते हैं कि कोई भी जो कम पढ़ा लिखा आदमी है या पढ़ा लिखा नहीं भी है वो भी चला सकता है, और आप फिर जब लंदन से MBA करके आए तो कहीं ना कहीं वो एक माइंडसेट रहा होगा कि अरे भाई जब इतनी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद आपको डेयरी ही चलानी है तो कोई नहीं पूछता उसमें कि आपके पास डिग्री है या नहीं है।
1: डिग्री की बात आती है कि भाई जो हमारे पुराने किसान जितने भी आजकल इंडिया में पुराने समय से करते हुए आ रहे हैं, तो उनकी आप अगर परफॉर्मेंस देखोगे, पर एनिमल मिल्क एवरेज देखोगे, तो जब वर्ल्ड से उसे कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं डिफरेंस मिलेगा। तो उसमें क्या है कि आपके पास डेयरी फार्म को लेकर के नंबर ऑफ सेक्शंस हैं जिनको आपको साथ में लेके चलना है, वो उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना आप सोचते हो कि भाई हमने गाय को एक चारा डाल दिया और हमारा काम हो गया।
0: तो बिल्कुल, ये सवाल इसीलिए था क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि एग्रीकल्चर को भी पढ़ाई की जरूरत होती है, उसमें भी जो टेक्निक है उसको जानने की जरूरत होती है। तो आप जो पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है क्या चीज कैसे करनी है। और जैसा कि दुष्यंत जी ने बताया कि जब हम वर्ल्ड के स्टैटिस्टिक्स देखते हैं दूध को लेके, तो हमें समझ में आता है कि क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए देश में। तो ये आपने बेहद अच्छा काम किया है कि आपने इस जो डेयरी फार्मिंग है उसको छोटा नहीं समझा, लंदन से डिग्री लेने के बावजूद आपने इस स्टार्टअप को चुना है, बेहद अच्छा आपने काम किया है। तो जब आपने ये शुरू कर दिया तो इनिशियल लेवल पे चैलेंजेस क्या थे?
1: हम लोगों ने इसको एज ए इंडस्ट्री पहले दिन से अडॉप्ट करने की कोशिश करी थी। तो इंडस्ट्री में और डेयरी फार्मिंग में क्या है कि वहां पे आप मशीन से डील कर रहे हो, वो लिविंग बींग नहीं है। और ये आपके पास अगर 100 काउज हैं तो वो सारे लिविंग बींग्स हैं। तो जिस तरीके की प्रॉब्लम्स ह्यूमन वर्किंग में आती हैं वो आपको फेस करनी पड़ती है डेयरी फार्म के अंदर, क्योंकि हर काउ का बिहेवियर अलग है, उसका वेदर को फील करने का तरीका अलग है, ईटिंग हैबिट अलग है। तो पहले तो उसको जज करना और एग्जामिन करना वो बड़ी चीज थी। और जब आप मशीन में, आपको पता है कि भाई आपने मशीन का ऑन किया बटन, वो आपको परफॉर्मेंस उसी तरीके से देगी, बट इनका हर मंथ हर डे डिफरेंट है तो डिफरेंटली आपको प्रोडक्शन देगी। तो उस हिसाब को आपको उसके हिसाब से मैनेज करना है, क्योंकि मशीन में क्या है, आपने एक कोडिंग कर दी या एक तरीके से डिजाइंड है, वो आपको वैसे ही परफॉर्मेंस देगी। इसमें क्या है कि आपको काउस के साथ एडजस्ट होना है, उनके हैबिट्स को देख के आपको अपने डेयरी फार्म को चलाना है जिसको आप एक इंडस्ट्री का रूप देना चाह रहे हैं। तो उसमें प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी थी और धीरे धीरे उसको एड्रेस किया, सीखा, समझा। मुझे 3 साल लगे पूरे उसको एड्रेस करने में, बट आज की डेट में हम वेल सेटिस्फाइड हैं, वेल इक्विप्ड हैं और बहुत ही अच्छी हेल्थ है हमारी काउस की।
0: तो दुष्यंत जी, आपकी बातों से लग रहा है कि काफी अच्छी रिसर्च अब आपने इस पे कर ली है। आपने बताया कि काऊ का बिहेवियर भी अब आप समझने लगे हैं। और व्यूअर्स, सारी कहानी हमने जान ली है कि व्हाट मेक्स हिम चूज डेयरी फार्मिंग। अब हम यहाँ से सीधे चलेंगे इनकी हाईटेक डेयरी पर और जानेंगे क्या टेक्नोलॉजी ये यूज कर रहे हैं। जब तक हम वहां पहुंचे, आप ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक।

0: तो ये है आपकी हाईटेक डेयरी। तो दुष्यंत जी, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपने किसी भी गाय को बांध के नहीं रखा है।
1: ये एक लूज हाउसिंग कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें गाय के ऊपर हम लोग किसी भी तरीके का बांध के इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि उसको हम लोग चाहते हैं कि बेटर क्वालिटी उसको मिले खाने के भी, और एन नंबर ऑफ टाइम में उठ के वो खा सकती है। और प्रोडक्टिविटी का फर्क पड़ता है क्योंकि अगर बांध के रखेंगे तो वो हमारे मन से खाएगी, हमारे मन से पिएगी। और इसमें क्या है कि उसके पास अपना टाइम है कि भाई कभी भी खाना है, कभी उठना है। हमारे यहाँ दो टाइम मिलके फीडिंग होती है, तो दो टाइम में सुबह और शाम, तो सुबह के टाइम में भी वो पूरे दिन खा सकती है और शाम को भी पूरे दिन खा सकती है। और अगर हम लोग उसको बांध के रखेंगे तो पानी हमें पिलाना पड़ेगा, जिस टाइम पे हम खाना डालेंगे उसी टाइम पे वो खाना खाएगी। तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन भी डाउन जाती है और उतना बेटरमेंट भी फील नहीं होता उसको। तो आप अगर समझिए कि प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी हमें किसी आदमी से भी चाहिए तो उसको जितनी व्यवस्था देंगे उतना ही अच्छा वो परफॉर्म करके देगा, तो उसी हिसाब से इनके ऊपर भी है।
0: जी, ये लूज हाउसिंग कॉन्सेप्ट क्या इंडिया में है या ये आपने कहीं और से अडॉप्ट किया है?
1: जी, मतलब ये है तो इंडिया में भी, और खासकर इन ब्रीड्स में ज्यादा इसको अडॉप्शन लिया गया है। इंडिया के अंदर भी काफी स्टेट्स में ये अडॉप्टेड है, और वेस्टर्न कल्चर तो इसका है ही मेन।
0: और अगर हम ब्रीड्स की बात करें तो कौन कौन सी ब्रीड्स यहाँ पर हैं?
1: यहाँ पे होलस्टीन है और जर्सीज हैं और कुछ मिक्स ब्रीड्स हैं जिसमें इंडियन और वेस्टर्न ब्लड दोनों।
0: तो इन तीनों ही अगर मैं बात करूं जो आपने ब्रीड्स बताई हैं, इनके मिल्क में क्या कुछ डिफरेंस होता है, किसका ज्यादा आपके हिसाब से बेटर होता है?
1: मैं तो इस चीज को नहीं मानता हूं कि भाई कोई भी डिफरेंस है, बिकॉज सारी चीजें इनके ईटिंग हैबिट्स में है कि आप उनको कितनी साइंटिफिक और बैलेंस डाइट दे रहे हो। अगर बैलेंस डाइट हम दे रहे हैं तो उसमें दूध का कोई भी फर्क नहीं आएगा। जो भी मैंने आसपास के फार्म के डेयरी फार्म हैं उनसे भी मैंने दूध को प्रिक्योर करके अपने टेस्टिंग कराई है, हमारे अपने दूध की भी टेस्टिंग करी है, और जो A1 A2 कॉन्सेप्ट है उसमें भी हमने देखा है कि हर काउ के अंदर अवेलेबल है। और जो हम सीमन लगाते हैं इन काउज के अंदर, तो हम वही लेते हैं जिसमें A2 हो, तो इसलिए वो भी कॉन्सेप्ट इतना लागू नहीं होता है। बट लेकिन एक मार्केटिंग आजकल के ट्रेंड चल रहा है जिसको A1 A2 का बड़ा लोग मानते हैं, बट मैं इस चीज को नहीं मानता हूं कि भी कोई भी डिफरेंस है। और अगर है भी तो हम उसको भी एड्रेस करते हैं। A2 काउज भी हमारे पास है जिसका सीमन हम A2 ही लगाते हैं
0: जी।
1: तो वो चीज भी है, और टोटली ऑटोमेटिक हमारा डेयरी फार्म है। तो इंडियन ब्रीड्स थोड़ा सा जो अपनी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, ये इजीली उसमें अडैप्टेबल है, इसलिए हम लोगों ने इन्हीं ब्रीड्स को कॉमर्शियली अपने डेयरी फार्म में रखा है।
0: आपने बात की कि आप जैसा फोडर चारा इनको खिलाते हैं उसी तरह का आपको जो मिल्क प्रोडक्शन है इनसे मिल जाता है, तो फोडर पे आप इनको क्या दे रहे हैं और क्या देना चाहिए? जो किसान आपको आज सुन रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? देखिए,
1: बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है अगर आपको कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में करना है और उसको प्रॉफिटेबिलिटी मिलाना है, बिकॉज हर गाय का एक अलग कॉन्सेप्ट है, अलग ही उसका बॉडी वेट है, अलग ही उसकी मैकेनिज्म है। तो उस हिसाब से एक बैलेंस डाइट बनती है जिसमें कि कॉन्सेंट्रेट कितना है, ग्रीन फॉडर कितना है, साइलेज कितना है, विटामिन्स मिनरल्स कितने हैं और अपना हे कितना है। जिस तरीके से हम लोग इनको जो भी चारा हम डालते हैं उसमें मिक्स राशन और बैलेंस डाइट, जो टोटल मिक्स राशन मशीन है हमारे पास, उसी से हम ऑटोमेटिकली इसको डालते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पर ग्रुप वाइज जितने भी हमारे पास बॉडी वेट्स हैं, जितना भी मिल्क यील्ड है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं किस गाय को कितनी रिक्वायरमेंट है, तो उसी हिसाब से कॉन्सेंट्रेट, ग्रीन फॉडर, साइलेज और हे, जिसको हम तूड़ी बोलते हैं, और जो कॉन्सेंट्रेट को हम लोग अपनी खलचूरी चोकर बोलते हैं, तो उसकी एक हम लोग फीड लेते हैं किसी एक कंपनी की, तो वही हम बिल्कुल इसको संतुलित करके इनको डालते हैं ताकि अच्छा दूध मिल सके, नंबर ऑफ जो बीमारियां हैं वो कम हो, दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। और कहीं पे भी हम लोग ये देखते हैं कि भाई टाइम एंड टेम्परेचर मिल्क में बहुत मैटर करता है, उसको हम लोग मेंटेन करते हैं कि जितनी देर में मिल्किंग हो उतने ही देर में वो अपने चिलिंग सेंटर में पहुंच जाए। तो इसीलिए फॉडर का बहुत बड़ा रोल है डेयरी फार्मिंग में, कॉमर्शियली वायबल भी करने के लिए और इनकी हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए।
0: तो जिस तरह से ह्यूमन बींग को एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, हमारे इन कैटल्स को भी एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। आपने जान लिया इनको क्या कुछ जरूरी है। अगर बात करूं दुष्यंत जी ट्रेनिंग की, तो आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है डेयरी की?
1: देखिए, ट्रेनिंग एसस तो मैंने एक्सपीरियंस लेके ही ली है, कोई कोर्स वगैरह इसका नहीं किया है, बट लेकिन मैं नंबर ऑफ डॉक्टर्स के साथ कनेक्टेड हूँ, नंबर ऑफ साइंटिस्ट के साथ कनेक्टेड हूँ, और नंबर ऑफ जितने भी किसान हैं, चाहे यूपी के हों, पंजाब के हों, हरियाणा के हों, उन सबसे मेरा टेलीफोनिकली भी बातचीत होती रहती है, मिलते जुलते भी रहते हैं, वर्कशॉप्स भी होती रहती है, हमारी कुछ समस्याएं होती हैं तो हम उन्हें बताते रहते हैं, तो ऐसे ही करके हम लोग सीखे। एनडीआरआई में भी कई डॉक्टर्स हैं जिनके मेरे साथ कनेक्शंस हैं, उन्होंने काफी चीजें सिखाया है। बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि गाय को कैसे पालते हैं, कैसे खाना खाती है गाय, किस तरीके की उसकी हैबिट्स हैं, तो वो सारी चीजें ये 4 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है उसी से सीखने को मिला है।
0: और वैसे भी कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वही आपको सक्षम बनाती है।
1: जी, उसको भी मैं मानूंगा कि भाई वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। तो उसी हिसाब से हमें सारा ही डेटा, सारी ही चीजें वहीं से मिली हैं। जैसे एफी मिल्क से हम कनेक्टेड हैं इसराइल से, तो वहां के कुछ फार्म मैनेजर्स वगैरह हैं, उनकी विजिट हमारे यहाँ हुई हैं, उनसे हमने कंसल्ट किया है, बिकॉज वेदर बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, समर्स में कैसे मेंटेन करना है, विंटर्स में कैसे मेंटेन करना है, तो इस तरीके से उनसे भी डेटा मिला है, नंबर ऑफ एंड यूजर्स से डेटा मिला है, कुछ डेयरी फार्मर्स जुड़े हुए हैं, तो सबकी समस्या सुन के अपनी समस्या बता करके इस तरीके से इसमें सुधार आता जा रहा है दिन पर दिन।
0: इसीलिए शायद आपने जो शावर्स हैं इनको लगाया हुआ है।
1: जी, ये समर्स की रिक्वायरमेंट है, तो जब ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ती है तो शावर्स, फैंस, इसको कूलिंग सिस्टम बोलते हैं, तो ये इसराइल में बहुत इसका यूज किया जाता है, अपने पंजाब में बहुत यूज किया जाता है, तो वहीं से, ताकि गायों को क्या है कि इनके स्वेट ग्लैंड्स कम होते हैं या होते ही नहीं है, तो उसको पूरा करने के लिए, तो इनको हीट कंट्रोल करने के लिए हम लोग फैंस और फॉगर्स का यूज करते हैं, और इनको हर 3 घंटों में शावर भी देते हैं ताकि ये पूरी तरीके से कूल डाउन रहें और अपनी चारे को पूरा खत्म करें शाम तक।
0: हाँ, दुष्यंत जी, आपने एमबीए किया है, आपका स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में है, तो उस डिग्री को आप इस अपने स्टार्टअप में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं?
1: देखिए, उस चीज को हम ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम लोगों ने इसको एज अ इंडस्ट्री पहले दिन से लेके चले हैं। नंबर ऑफ डिपार्टमेंट जो एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए होते हैं वो हमने अपने यहाँ बना रखे हैं। उसके साथ साथ हमने जितने भी प्रोडक्ट्स दूध से बन सकते हैं वो सारे बनाए हैं और उसको सबको मार्केटाइज कर रहे हैं हम। तो आज हमारी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर 400 डिलीवरीज हैं जो हम ऑनलाइन डायरेक्ट फार्म टू होम कर रहे हैं, और ये लास्ट 4 ईयर से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। तो एंड यूजर तक हमने प्रोडक्ट को पहुंचाया है ताकि कोई भी बीच में मिडिलमैन ना हो, और जो हम कर रहे हैं वो सीधा कस्टमर तक पहुंचे, तो उस चीज को हमने वहां एप्लीकेबल किया है।
0: बिल्कुल, जो लंदन से डिग्री लेके आए हैं वो भी वेस्ट नहीं हो रही है, पूरी तरह से यूटिलाइज हो रही है इस डेयरी फार्म में।
1: जी बिल्कुल, तो उसी तरीके से आप देख सकती हैं कि इसका जो इंफ्रा बनाया हम लोगों ने, इनकी हैबिट्स हैं, ये टोटली ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड हैं, इनके गले में नॉब पड़ी हुई है जिससे हमें इनका डेटा मिलता है कंप्यूटर के ऊपर कि इन्होंने मास्टिकेशन, जिसको जुगाली बोलते हैं, वो कितनी करी है, तो इस काव में आप देख भी सकते हैं ये गले में डला हुआ है। इस तरीके से हमें सारा कंप्यूटर पर डेटा भी मिलता है इनका कि ये कैसे परफॉर्म कर रही है, कितने घंटे इन्होंने खाया है, किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म करा है, तो इनका हीट पे आने का सिस्टम कब है, तो वो भी इंडिकेशन हमें पहले मिलती है 12 घंटे, तो उससे हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि भाई हमारे फार्म में क्या होने वाला है, तो उसको हम पहले से ही क्योर कर लेते हैं।
0: तो दुष्यंत जी, यहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट्स बना रहे हैं अपने ही ब्रांड नेम के साथ, और यहाँ पर मिल्क किस तरह से आप निकालते हैं वो भी हम जानना चाहेंगे, क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं आप?
1: जी, तो
0: मैन्युअली होता है या
1: नहीं? मैन्युअली नहीं है, टोटली ऑटोमेटिक है, विदाउट हैंड टच है, मशीन्स लगती हैं, एक पैडॉक जोन बना हुआ है मिल्क पार्लर का, तो वहां पे गाय आती है, पहले वो उनका बेथिंग लगा हुआ है, स्प्रेज लगे हुए हैं ऊपर, तो बेथिंग करके फिर उनको उसमें जाती है मिल्किंग पार्लर में, वहां से दूध निकलता है और वो डायरेक्टली सीधा चिलिंग सेंटर में पहुंचता है प्रोसेसिंग के लिए विदाउट हैंड टच, पाइप्स के माध्यम से ही वो पहुंचता है, और LSA भी वहां रहता है हमारे, और जो मिल्कर्स हैं वो भी रहते हैं, तो वो प्रत्येक क्षण को चेक करते हैं, दूध की गुणवत्ता को देखते हैं, उस तरीके से फिर हमारे पास अपनी लैब भी है, उस लैब में हम लोग दूध की टेस्टिंग करते हैं, फिर हम उसको प्रोसेसिंग के बाद पैकेजिंग में, प्रोसेसिंग से पैकेजिंग, पैकेजिंग के बाद डिलीवरीज में जाता है कस्टमर्स को।
0: तो हम जानेंगे कि किस तरह से जो दूध निकालने का प्रोसेस है मशीनों द्वारा यहाँ पे किया जाता है, लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहे हमारे साथ डीडी किसान पर।
2: इसका जो माइंडसेट था काम के प्रति वो ये था कि भाई मुझे कुछ अलग करना है, इसीलिए उसने इस फील्ड को चुना। लोगों ने इसको बहुत कुछ बोला कि भाई ये कैसे काम है, पढ़ा लिखा के ये करा वो करा, लेकिन उसके बाद बच्चे ने अपने आप को सीधे रास्ते पे काम करते हुए, नफा नुकसान तो जिंदगी के साथ होता है, लेकिन बच्चे ने अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसको आगे ले गए हैं और आज उसको इतनी कामयाबी उसमें मिली है। उस उसके काम से, उसके काम से, उसके नाम से आज हम बहुत खुश हैं। और ये बच्चों को प्रेरणा लेना चाहिए कि भाई इस तरह के माइंड को सेट करें और इन जमीनी चीजों से, ये हमारी इंडिया का एक कल्चर है और हम लोगों को इसे आगे ले जाना चाहिए। बच्चों को काम छोटा बड़ा नहीं है, बच्चों को ईमानदारी से और सहलगन से काम करना चाहिए।
0: ये एक नई जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है, जैसे वो लंदन से पढ़ के आया है, उसने MBA किया है और अपने रूट से आके वो जुड़ा है और सारी जो चीजें उसने की हैं ये बहुत हाईटेक लेवल पे की हैं। तो इसे देख के हमको और हम पूरे घर वालों को एक बहुत मतलब खुशी मिलती है।
1: ये हमारा प्रोसेसिंग सेक्शन है जिसमें जहाँ से मिल्किंग होती है डायरेक्टली वो ऊपर आता है और उसमें चिलर में आता है फर्स्ट, वो सेकेंड पैश्चराइजेशन में आता है। पैश्चराइजेशन होने के बाद हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं और जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो बनने होते हैं, जैसे मिल्क जाना है अगर मार्केट में तो काव मिल्क, काव मिल्क का बैच बनेगा, बफलो मिल्क, बफलो मिल्क का बैच बनेगा, FCM है जो फुल क्रीम मिल्क के नाम से आता है, वो 6 लीटर की पैकिंग है हमारी, वो उसके हिसाब से बनेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स हैं जिसमें पैश्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन, क्रीम सेपरेटर, जब घी बनाना होता है तो उसके लिए क्रीम सेपरेटर है, बाकी उसकी बॉइलिंग केटल्स हैं, तो और डिफरेंट जैसे स्वीट्स के लिए जाना है तो डिफरेंट डिफरेंट मिल्क का कैटेगरीज बैच बन करके वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में अपना इन्हीं मशीनों के द्वारा चला जाता है। CIP स्टेशन है, बाकी नीचे एक पैडॉक जोन है जिससे कि जो हमारा हापुड़ वाला कलेक्शन सेंटर है वहां से भी दूध आता है तो डायरेक्टली वो यहाँ आ जाता है, उसका भी नीचे पैडॉक जोन है।
0: तो काफी सारी मशीन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, तो क्या आपने इस सेटअप को तैयार करने के लिए गवर्नमेंट से कोई एड लिया है?
1: जी, अभी हम लोग एप्लीकेबल है उसमें और प्रोसेसिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, तो उसमें यह है कि पहले आप बैंक को अप्रोच करेंगे, उसके बाद आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना प्रोजेक्ट DPR सबमिट करेंगे, आफ्टर दैट वो लोग उस पर टेक ऑफ करेंगे कि भाई कैसे लेना है, कि कितना आपको मिलेगा, किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। तो अभी हम लोगों ने 20,000 लीटर का प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है पर डे।
0: जी, और काफी बड़ा सेटअप यहाँ पर मैं आपका देख पा रही हूँ, तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कितने लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर?
1: अभी करीबन 105 लोगों को हमने एम्प्लॉय कर रखा है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और 20 गांव अलग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे लिए डायरेक्टली मिल्क को हमारे लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं।
0: तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि जब कोई स्टार्टअप शुरू होता है तो स्टार्टअप की अच्छी बात यही होती है कि आप दूसरों को भी रोजगार दे पाते हैं, क्योंकि जब हम जॉब में जाते हैं तो सिर्फ हम अपने लिए एक रोजगार डेवलप करते हैं अपनी काबिलियत के हिसाब से, लेकिन जब आप एक स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आप दूसरों का भी भला कर पाते हैं।
1: जी,
0: और जैसे कि आपने बताया था कि आपके काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ,
1: जी,
0: तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके जो यहाँ पर तैयार?
1: देखिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में सारे प्रोडक्ट्स हैं अपना, काउ मिल्क, बफलो मिल्क, FCM, और फिर छाछ है दो टाइप की, तड़का और प्लेन, घी है 4 टाइप के, काओ, बफेलो, देसी गाय, मिक्स मिल्क का जो घी है, जैसे देसी घी हम लोग मार्केट में जानते हैं वो है, खोया है, और वर्मी कंपोस्ट है, हम लोग जो गाय का गोबर है उससे वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं और वो भी मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं विद अ मोबाइल ऐप, तो ऑनलाइन हमारी ऐप के थ्रू सभी लोग उसको परचेज कर पाएंगे विद इन 5 or 10 days।
0: और जो अवेलेबिलिटी रहेगी वो ऑल ओवर इंडिया रहेगी या कुछ?
1: नहीं, वो अभी 2 districts है, गौतम बुद्ध नगर एंड गाजियाबाद, बिकॉज हमारे पास उतनी ही प्रोडक्शन है जो हम 2 जिलों को केटर कर सकते हैं अभी, और प्राइमरी फोकस हमारा क्वालिटी पे है तो उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं अभी।
0: जी बिल्कुल, हम तो चाहेंगे आपका प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी बढ़े और आप और लोगों को रोजगार दें। और अगर मैं दुष्यंत जी आपसे आपके फ्यूचर विजन की बात करूँ तो क्या है वो आपका?
1: तो फ्यूचर में हमारा प्लान ये है कि पहले तो 20,000 लीटर को प्रोसेसिंग करके ऑप्टिमाइज लेवल पे लेके आए प्लांट को, उसके बाद हमारा 1,00,000 लीटर का प्लान लगाने का भी है और FMCG प्रोडक्ट्स में भी हमारा आने का प्लानिंग है, कि जिससे कि जितने भी फार्मर्स हैं जो ऑयल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल है, दाल है, मसाले हैं, चावल हैं, सीरियल्स हैं, तो नॉन पॉलिश्ड जितने भी ऑर्गेनिकली हम लोग उसको प्रिक्योर करके पैक करके कस्टमर्स को देना चाहते हैं विद द सेम नेम ऑफ धनश्री, तो इसी के तहत हम लोग फ्यूचर प्लानिंग के चल रहे हैं।
0: तो बहुत अच्छा विजन आप लेके चल रहे हैं, बड़ा विजन आप लेके चल रहे हैं। और मैं सबसे पूछती हूँ, आपसे भी जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनके लिए स्पेशली यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: डेयरी फार्मिंग में आए और उससे क्या है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का करें, जैसे गाय का मूत्र है तो उसको खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर है तो गोबर को आप वर्मी कंपोस्ट में कर सकते हैं, वो भी एक्सपोर्ट तक जा रही है, बाकी जितने भी ठंडे प्रदेश हैं उनमें उसकी रिक्वायरमेंट है, यूरिया का अच्छा रिप्लेसमेंट है तो उसकी भी आपको कॉस्ट मिलेगी, अच्छे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उसकी भी डिमांड अच्छी है मार्केट के अंदर। देखिए, अच्छे प्रोडक्ट की हर जगह सेल्स आपको मिल जाती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है बेचने में, जहाँ आपके क्वालिटी में दम नहीं है, आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है तो वो आप कैसे भी करके उसको बेच लेंगे, और एक अच्छी लगन और मेहनत के साथ अगर कोई भी काम करना चाहेगा, वो किसी भी फील्ड में करना चाहेगा, तो वो सक्सेस जरूर करेगा। तो मेरा सभी युवा साथियों के लिए यही मैसेज है कि मेहनत करके और एक विजन को लेकर के और प्लानिंग के साथ चलें, जरूर कामयाब होंगे।
0: एक बेहद अच्छा जो मैसेज है वो यहाँ दुष्यंत जी ने आपको दिया है, और दुष्यंत जी की जो स्टार्टअप जर्नी आज हमने जानी है उसको पूरा सुनकर और जानकर दो लाइनें मुझे यहाँ याद आती है, जो यू है कि साहिल के सुकू से कब इनकार है मुझे, साहिल के सुकू से कब इनकार है मुझे, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। तो आपकी जर्नी काफी आसान थी, चाहते तो आप भी एक कोई व्हाइट कॉलर जॉब कर सकते थे, बट आपने डेयरी जैसे स्टार्टअप को चुना जो अपने आप में एक चैलेंजिंग है और मेहनत वाला काम है
1: जी।
0: तो हम तो आपको यही कहेंगे कि आपके जल्दी से सारे ड्रीम्स पूरे हों, आप अपने जल्दी से टारगेट्स को पूरा करें। वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम डीडी किसान चैनल एंड फ्रॉम आवर प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप, एंड आई एम रियली डिलाइटेड टू हैव यू इन माय शो।
1: थैंक यू सो मच। थैंक
0: यू दोस्तों, हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। साथ ही हम उम्मीद करते हैं दोस्तों जो आपका फीडबैक हमें मिलता है आगे भी इसी तरह मिलता रहेगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं सुप्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती का।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

भक्ति विराग प्रचंड ज्ञान में स्वगौरव में अन्न दान में अमृत वर्षक काव्य गान में भारत सर्वोत्कृष्ट देश है। धैर्य शक्ति में सैन्य शक्ति में परोपकार उदार भाव में सार शास्त्र के ज्ञान दान में भारत सर्वोत्कृष्ट देश है। भारत महिमा के ये अमर गायक हैं सुप्रसिद्ध तमिल महाकवि भारतियार, जिन्हें हम सुब्रमण्यम भारती के नाम से जानते हैं। वो एक महान राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षक, समाज सुधारक और पत्रकार भी थे। भारती जी राष्ट्रप्रेम के एक विलक्षण गायक थे, जिन्होंने मात्र 40 वर्ष की छोटी सी अवधि का एक विराट जीवन जिया और इतने छोटे से जीवन में उन्होंने विपुल साहित्य रचा और साहित्य आकाश के सदा उदित नक्षत्र बन गए। अपनी लेखनी से उन्होंने तमिल भाषियों के मन में ऐसी स्वातंत्र चेतना जगाई कि अनगिनत नर नारी और युवा स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। समय के साथ उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि देश ही नहीं बल्कि विदेश की अलग अलग भाषाओं में भी उनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ। सुब्रमण्यम भारती का जन्म 11 दिसंबर सन 1882 को तमिलनाडु के एट्टयपुरम में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चिन्ना स्वामी और माता का नाम लक्ष्मी अम्माल था। बचपन से ही भारती जी का जुड़ाव एट्टयपुरम के राजघराने से रहा, क्योंकि उनके पिता वहां काम करते थे। 5 वर्ष की आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया, इसलिए पिताजी और नानाजी की छत्रछाया में उनका बचपन व्यतीत हुआ। भारती जी की आरंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में ही हुई, लेकिन बचपन से ही उनका मन साहित्य और काव्य जगत में विचरण करता था। बहुत छोटी सी उम्र में ही उन्होंने काव्य लेखन आरंभ कर दिया था। उनके पिता चाहते थे कि वे एक गणितज्ञ बने। कहा जाता है कि एक बार पिता के ये पूछने पर कि सवाल हल कर लिया, कविता की लय में उन्होंने जवाब दिया, सवाल गोंद की तरह मूक हैं, जड़वत हैं, सवाल भिन भिनाते हैं। वे एक नैसर्गिक प्रतिभा संपन्न कवि थे। कविताएं लिखने के लिए उन्हें कागज कलम की आवश्यकता नहीं होती थी। मन अनायास भाव सागर में गोते लगाता और वो सहज ही गा उठते। जब वो 11 वर्ष के थे तभी उनकी ख्याति राजदरबार तक पहुंच चुकी थी। राजा के आमंत्रण पर उन्होंने राजदरबार में काव्य पाठ किया तो उपस्थित विद्वान उनकी प्रतिभा देखकर सुखद आश्चर्य से भर उठे और उन्हें भारती की उपाधि प्रदान की गई। इस तरह बालक सुबैया सुब्रमण्यम भारती नाम की नई पहचान के साथ वापस लौटा। किशोरावस्था में ही उनका विवाह चिलम्मा के साथ संपन्न हुआ। जल्दी ही उनके पिता भी चल बसे, इसलिए आगे की शिक्षा के लिए वे अपनी बुआ के घर वाराणसी आ गए। यहां रहकर उन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। बनारस का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यहीं युवा होते भारती जी का परिचय अध्यात्म और राष्ट्रवाद से हुआ, जिसने उनके व्यक्तित्व को गढ़ा। इन्हीं वर्षों में बड़ी बड़ी मूछों के साथ सर पर पगड़ी धारण किए सुब्रमण्यम भारती की छवि उभरी। ये वो भारती थे जो न केवल तन से बल्कि मन और आत्मा से भी भारतीयता के रंग में पूरी तरह रंगे हुए थे।

चार वर्ष बाद जब भारती जी अपने गृह नगर लौटे तो जीविकोपार्जन के उद्देश्य से एट्टयपुरम में उन्होंने अध्यापन का कार्य आरंभ किया। यूं भारती जी की पकड़ बंगाली, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच और तमिल सहित कई भाषाओं में थी, लेकिन वो हमेशा ही मातृभाषा में शिक्षा के पक्षधर थे। साथ ही वो कहा करते थे कि हम तमिल भाषियों को हिंदी अवश्य सीखनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र के लिए हमें एक सामान्य भाषा की आवश्यकता है। आजीविका हेतु उन्हें मद्रास आना पड़ा। यहां विख्यात तमिल दैनिक स्वदेश मित्रन में वो सहायक संपादक हो गए। इस माध्यम से अब उनकी कविताएं जन जन तक पहुंचने लगीं। भारती जी तमिल काव्य की सुदीर्घ परंपरा से परिचित थे तथा लोक संगीत और लोक साहित्य के प्रति भी वे आकर्षित थे। उन्होंने अत्यंत सरल भाषा में गद्य कविता का आरंभ कर तमिल नई कविता का मार्ग प्रशस्त किया। भारती जी की लेखनी ने जैसे तमिल भाषा को पुनर्जीवित कर वहां के जनमानस को भी तंद्रा से जगा दिया। अपनी एक कविता अग्निकण में वो कहते हैं, मिला एक अग्निकण जिसे रख दिया वृक्ष के कोटर में, वहीं आग की लपटों से सारा वन हुआ भस्म। उनका आशय स्पष्ट था कि पराधीन प्राणों में अगर क्रोध

देखकर वे सिस्टर निवेदिता के संपर्क में भी आए। भारती जी के ओजस्वी लेख और कविताएं स्वाधीनता संग्राम में मानो अस्त्र बन गए थे। सन 1905 के बंग भंग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। अपने प्रखर विचारों के कारण उन्हें स्वदेश मित्रन छोड़ना पड़ा। तब उन्होंने अपना साप्ताहिक पत्र आरंभ किया जिसका नाम था इंडिया। इस पत्र में उनके क्रांतिकारी लेखों के कारण अंग्रेज सरकार बौखला गई। सन 1908 में उनकी पहली कविता की पुस्तक सॉन्ग ऑफ फ्रीडम प्रकाशित हुई। ये भारती जी का मात्र एक साहित्यिक हस्ताक्षर नहीं था, बल्कि इसमें विदेशी शासन की दासता तोड़ने का प्रबल आह्वान भी था। इस तरह सुब्रमण्यम भारती ने मद्रास में स्वाधीनता आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। आर्थिक तंगी से उनका परिवार सदा जूझता रहा, लेकिन इससे न तो उनके काव्य प्रेम पर कोई प्रभाव पड़ा और न ही राष्ट्र प्रेम पर। जीवन को लेकर उनके सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट थे। एक बार एक भिखारिन चिंदियों में लिपटी अपने बच्चे और स्वयं के लिए वस्त्र मांगने उनके द्वार पर आई। भारती जी ने इतने अर्थाभाव में भी रस्सी पर सूख रहे कपड़े उसे दान में दे दिए। पत्नी चेलम्मा के विरोध पर उनका जवाब था, इन पक्षियों को देख रही हो, कितनी प्रसन्नता से दाना भी चुगते हैं और दाना खत्म हो जाने पर चहकते हुए आपस में खेलने लगते हैं। तो फिर हम इंसान ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ऐसे संत तुल्य व्यक्तित्व को भला कब कोई अभाव सता सकता था।

भारती जी का जीवन कितने ही अभावों से गुजरा, लेकिन उनका सृजन संसार हमेशा समृद्ध रहा। प्रकृति की गोद में उन्हें अथाह शांति मिलती और ध्यान में डूबे एक योगी की तरह वो अपने आसपास को, अपने जीवन, अपने समय को सहज ही गा उठते। अपनी कविता समय एक परिकल्पना में वो कहते हैं, वो एक शक्तिशाली लहर थी, उछलती टूटती हतप्रभ करने वाली, गति से आती उग्र ताकतों जैसे, जो उद्वेलित करती है मन को,

ने देखा वो समय था, और हम कुछ ही थे जो किनारों से उसका प्रवाह देख रहे थे, जब एक बलवती इच्छा हमें घेर लेती है और हम तुमुल कोलाहल में कूद पड़ते हैं लहरों से लड़ते हुए। जीवन के ऊंचे नीचे रास्तों पर चलते हुए भी भारती जी की साहित्य साधना कभी बाधित नहीं हुई, साथ ही उनकी लेखनी राष्ट्र चिंतन से भी कभी मुक्त नहीं हुई। वो सदा जनमानस को जगाते रहे, परिणाम स्वरूप उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ और वो पौंडिचेरी चले गए, क्योंकि फ्रांसीसी उपनिवेश में होने के कारण ये स्थान उन दिनों सुरक्षित था। यहां उनके द्वारा बिताए गए 10 वर्ष साहित्य सृजन में व्यतीत हुए, लेकिन यहां भी भारती जी ब्रिटिश राज का प्रबल विरोध करते हुए श्री अरविंद के संपर्क में रहे। सन 1910 के बाद सुब्रमण्यम भारती का लेखन मात्र पत्रों में स्तंभ लेखन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं। ये सारी कृतियां प्रकाशन के बाद बहुत प्रसिद्ध हुईं। भगवद गीता का तमिल अनुवाद कन्नन पाटू यानी श्री कृष्ण गान, कोयल पाटू अर्थात कोयल गान, और उनकी कालजयी रचना पांचाली शपथम का पहला भाग यहीं प्रकाशित हो गया था। सुब्रमण्यम भारती ने गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की कहानियों का अंग्रेजी से तमिल में अनुवाद भी किया, ताकि दूसरी भाषा की श्रेष्ठ रचनाओं को तमिल भाषी भी पढ़ें और ज्ञान अर्जित करें। अपनी मातृभाषा तमिल के प्रति उनके मन में एक आंतरिक श्रद्धा थी, इसलिए मातृभाषा के उन्नयन के लिए वे आजीवन प्रयत्नशील रहे। जब पौंडिचेरी से वे वापस लौटे तो सन 1918 में कडलोर के पास गिरफ्तार कर लिए गए। 24 दिन तक वो कैद में रहे। इस दौरान उनकी तबीयत खराब रही और फिर वो रिहा कर दिए गए। सन 1919 में गांधी जी के मद्रास प्रवास के दौरान उन्हें बापू का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। उन्होंने गांधी जी को महात्मा गांधी शीर्षक की एक कविता समर्पित की। गांधी जी उनकी लेखनी से अत्यंत प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने कहा था, भारती देश का ऐसा रत्न है जिसकी सुरक्षा और संरक्षण होना चाहिए। भारती जी ने जाति प्रथा का विरोध किया, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, और सबसे बड़ी बात, उनकी कथनी और करनी हमेशा एक समान रही। मंदिर में एक हाथी द्वारा पटके जाने के कारण वे गंभीर रूप से घायल हुए। इलाज के बाद वो ठीक तो हुए, लेकिन जीवन ने फिर अधिक दिन उनका साथ नहीं दिया। 12 सितंबर सन 1921 को उन्होंने अंतिम सांस ली। मृत्यु के कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने मद्रास के सागर तट पर गीत गाया था, यही उनकी अंतिम कविता थी, जिसमें वे 30 कोटि जन के समान अधिकार और भारत पर भारत की जनता के शासन और उनकी अमरता का स्वप्न बुन रहे थे। ऐसे महान राष्ट्रभक्त दक्षिण के इस महाकवि भारतियार को हमारा शत शत नमन।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

मधुमक्खी पालन जी हाँ एक ऐसा व्यवसाय है जिससे हमारे किसानों को कई तरह के लाभ होते हैं। एक तो ये कि जो उनकी फसलें हैं उनमें परागण बेहतर होता है और अच्छी फसल प्राप्त होती है। दूसरा ये कि मधुमक्खी पालन से उन्हें शहद बेचकर लाभ होता है। इसके अलावा कई और भी उत्पाद होते हैं जिनकी बाजार में अच्छी मांग होती है, उनसे भी हमारे किसान आय अर्जित कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर सकते हैं और व्यावसायिक दृष्टि से आज के समय में इसकी क्या उपयोगिता है।

0: शहद एक प्राचीन पदार्थ है, बल्कि पत्थरों के बसेरों और जंगलों में रहने वाले लोगों ने जिस मीठे पदार्थ को पहली बार चखा वो शहद ही था। बाद में जब दुनिया ने इसके फायदों के बारे में जाना तो मधुमक्खियों को बाकायदा पालना शुरू किया। आज खेतों के बीच कुछ पेटियां रखकर इन्हें पालने का चलन बढ़ता जा रहा है। मधुमक्खियां सिर्फ शहद ही नहीं देती, बल्कि इनसे मोम, रॉयल जेली, पोपोलिस यानी रालाभ, परागकण और डंक विष भी प्राप्त होता है। ये सभी चीजें इंसान की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। भारत में प्राकृतिक और वनस्पति खेती दोनों में मधुमक्खी पालन को विकसित करने की काफी क्षमता है। यहाँ करीब लगभग 500 तरह के फूलों वाले पौधे पराग और मकरंद के स्रोत हैं। शहद की किस्म इस बात पर निर्भर करती है कि मधुमक्खियों ने उसे किस फूल से चूसा है। जैसे सरसों का शहद, नीलगिरी शहद, लीची शहद, सूरजमुखी शहद, करंज का शहद, मल्टीफ्लोरा, हिमालयी शहद, बबूल शहद, जंगली वनस्पति शहद, मल्टी और मोनोफ्लोरा शहद। भारत में मधुमक्खियों के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। हमारे किसानों ने इनका लाभ भी उठाया है। 1953 के दौरान देश में केवल 230 मधुमक्खी पालक थे, जिनके पास बक्सों में लगभग 800 कॉलोनियां थीं। तब शहद का उत्पादन बहुत कम था। आज यहां लगभग 25 लाख कॉलोनियां और 2.5 लाख पालक हैं। जंगलों से शहद इकट्ठा करने वाले इनसे अलग हैं। हम इस समय दुनिया में लगभग 83 देशों को शहद का निर्यात कर रहे हैं, बल्कि 2022-23 के दौरान देश से लगभग 80,000 टन का निर्यात किया गया। भारत में जितना भी शहद होता है उसका आधा निर्यात कर दिया जाता है। फसल उत्पादन में भी मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है। हम सब जानते हैं कि शहद की तलाश में ये एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती हैं। इस तरह जाने अनजाने ये परागण का काम करती हैं। विशेषज्ञों की माने तो इस तरह के परागण से उपज में 25% तक बढ़ोतरी हो सकती है। यही वजह है कि बहुत से किसान मधुमक्खी पालकों के बक्से अपने खेतों में रखवाते हैं और बदले में उन्हें कुछ रकम भी देते हैं।
1: इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि दर्शन।
2: भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
3: खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा।
2: इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
1: कृषि स्टार्टअप कृषि दर्शन का वो सेगमेंट है जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जिन्होंने चुनौतियों के सामने ना झुकते हुए कृषि के क्षेत्र में कुछ नया किया, कामयाबी हासिल की। इन्होंने नई तकनीक को अपनाया और साथ ही सरकार की योजनाओं का भी भरपूर लाभ लिया। आइए जानते हैं कि आप भी कैसे इनके जीवन से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो देखते हैं कृषि स्टार्टअप में आज के किसान की कहानी।
4: गर्दन तक पानी में डूबा ये शख्स कभी भारतीय वायुसेना का हिस्सा हुआ करता था। 2003 में इन्होंने नौकरी को अलविदा कहा और अपना कारोबार शुरू किया। जिस काम में भी हाथ डाला, कामयाबी में कदम चूमे। फिर एक दिन ये रांची विश्वविद्यालय में मछली विभाग के संपर्क में आए। यहीं पर इनके जहन में मछली पालने का ख्याल आया। इसके बाद इन्होंने आगरा में जमीन लीज पर ली और काम शुरू कर दिया। ये बात 2016 की है। बाद में इन्हें मछली पालन से जुड़ी कई सरकारी योजनाओं के बारे में भी पता चला। इन्हीं योजनाओं का लाभ उठाकर इन्होंने सरकार से अनुदान हासिल किया। इनकी मेहनत जल्द ही रंग ले आई और अगले ही साल यानी 2017 में इन्हें आगरा मंडल में मछली उत्पादन का पुरस्कार मिल गया।
5: मछली पालन में पहले भारतीय वायुसेना की नौकरी 2003 में छोड़ने के बाद कई अन्य व्यवसाय किया करने के बाद सब में अच्छा हुआ। उसके बाद जब हम झारखंड में रांची में किसी का यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, वहां पे हम मत्स्य विभाग के, भारत सरकार और झारखंड सरकार के मत्स्य विभाग के टच में आए और वहां जो मछली पालन हमने देखा, तो वहां देखने के बाद जब हम अपने आप को फिर वापस आगरा में सेटल किए, तो हमने आगरा में जमीन को लीज पे लेके मछली पालन 2016 में स्टार्ट किया। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो अब भारत सरकार के जो किसानों की आय दोगुनी करने का जो प्लान है, उसमें ये बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता साबित हो रहा है। मछली पालन के साथ साथ मैं किसानों से यह भी सुझाव दूंगा कि इसके साथ वो अपने डेयरी और पोल्ट्री को भी बढ़ावा दें, जिससे कि उनका ये आय में वृद्धि हो। 2016 में जब मैं आगरा आया, आगरा मत्स्य विभाग से हमें भारतीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे संबंध में पता लगा। हमें काफी सहयोग मिला। उनके सहयोग के वजह से हमें कुछ गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान भी दी गई। उसके बाद जब 2017 में जो हमने प्रोडक्शन करके दिया, उस प्रोडक्शन के आधार पे 2017 में हमें फर्स्ट प्राइज आगरा मंडल के लिए दिया गया था, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन के लिए मछली में। उसके बाद से 2020 में जब मैं कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के संपर्क में आया, तो वहां हमें और अपने कामों में सहयोग बहुत ज्यादा मिला। उनके वहां जाने से हमें पशुपालन से संबंधित जानकारी भी काफी मिली और उन्होंने यह बताया कि यदि आप पशुपालन भी साथ में करते हैं, तो मछलियों के जो फीड की समस्या है, जो हम मार्केट पे डिपेंड रहते हैं, उससे हमें हटके जो पशुपालन में गाय के गोबर होंगे, उस गोबर को भी हम डायरेक्ट मछली के फीड के रूप में प्लैंकटन क्रिएट करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि उस गोबर का हम अगर वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद बनाते हैं तो जैविक खाद को हम खेतों में यूज करते हैं और उसमें जो केचुआ का प्रोडक्शन होता है उस केचुआ को हम तालाब में भी डाल सकते हैं। इस तरह से 2020 के बाद कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के सहयोग से और उनकी मदद से या उनके गाइडलाइन के तहत हमारी यह जो मछली पालन का व्यवसाय है बढ़ता जा रहा है।
4: आनंद कुमार गिर और साहिवाल किस्म की देसी गाय पाल रहे हैं और गोबर को मछलियों के आहार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनका इरादा गोबर से कंपोस्ट बनाने का है। कंपोस्ट से दो फायदे होंगे, पहला तो ये कि खेतों के लिए प्राकृतिक खाद मिल जाएगी और दूसरे मछलियों के लिए पर्याप्त मात्रा में केंचुए। मछलियों को बढ़वार के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और केंचुए में काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है।
1: तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि दर्शन।
2: आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से एक वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की।
3: इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है।
2: एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है।
6: लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए।
2: राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है।
7: ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರ್ತವಾದಂತಹ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ।
2: ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಭಟ್ಟರ್ ನೇ ಜೀರೆ ಕಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಲಗಾಕರ್ ಆಸ್ ಪಾಸ್ ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣೋ ಕೋ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರತಾ ಪ್ರದಾನ್ ಕಿ ಹೈ। ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ಅನೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಹತಾ ನೇ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಬನಾಕರ್ ಅನ್ನ ಭಂಡಾರಣ ಕೋ ಸುನಿಶ್ಚಿತ ಕಿಯಾ ಹೈ। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

0: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं बासमती धान की उन खास किस्मों की जो कम पानी में भी शानदार पैदावार देती हैं। मौजूदा समय में जल संकट और सिंचाई लागत बढ़ने के कारण किसानों के लिए ऐसी किस्मों को अपनाना न सिर्फ जरूरी हो गया है बल्कि लाभदायक भी। ऐसी ही कुछ प्रमुख किस्में हैं पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509, स्वर्ण शुष्क पूसा बासमती 1121, 140 से 145 दिनों में पककर तैयार होती है और इसकी उपज 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। इसका दाना लंबा पतला होता है और इसमें सुगंध भी बेहतरीन होती है। यह किस्म कम पानी वाले क्षेत्रों में भी अच्छा उत्पादन देती है। पूसा बासमती 1509 सबसे जल्दी पकने वाली किस्म है जो सिर्फ 120 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी खासियत है कि इसमें 3 से 4 बार कम सिंचाई की जरूरत होती है और यह 33% तक पानी बचाती है। वहीं स्वर्ण शुष्क 110 से 115 दिनों में पकती है और 40 से 45 क्विंटल तक उपज देती है। यह किस्म रोग प्रतिरोधक होती है और कम पानी में भी अच्छा विकास करती है। कुल मिलाकर इन सभी किस्मों की खासियत यही है कि ये कम सिंचाई में भी अच्छी उपज देती है और पानी की 3 से 4 बार तक बचत कराती है। इससे आपकी खेती की लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, इस बार बासमती की खेती में इन कम पानी वाली किस्मों को जरूर आजमाएं और जल संरक्षण के साथ अपनी आय भी बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
1: फार्मिंग इंडिया में सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एआई एंकर कृष की, जो कि खेती किसानी से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां हमारे किसानों के लिए लेकर आते हैं। तो आइए रुक करते हैं एआई एंकर कृष का।
0: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद जरूरी योजना की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। यह योजना किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देती है। इस योजना के तहत यदि आपकी फसल को बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, कीट या बीमारी से नुकसान होता है तो सरकार आपको बीमा राशि देती है। यहां तक कि फसल कटाई के बाद भी अगर बारिश या तूफान से नुकसान होता है तो भी इसका कवरेज मिलता है। लेकिन इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले अपने बीमा के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी और जमीन से जुड़ा दस्तावेज या खसरा नंबर। अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो इन सभी को स्कैन करके अपलोड करना होगा, और अगर आप ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं तो अपने नजदीकी कृषि विभाग, बैंक या सीएससी केंद्र पर जाकर ये दस्तावेज जमा कर सकते हैं। ध्यान रखें, हर सीजन की एक तय सीमा होती है, उसी के अंदर ही आवेदन करें। तो किसान भाइयों, इस बार की फसल बीमा योजना का लाभ जरूर उठाएं, समय रहते आवेदन करें, दस्तावेज पूरे रखें और अपनी मेहनत की फसल को आर्थिक सुरक्षा दें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
1: फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए, जो कि हमारे किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रहा है। जी हाँ, इससे मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में उन्हें उचित जानकारी मिल पाती है, जिससे वो सही अनुपात में ही पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। इससे न सिर्फ लागत कम होती है बल्कि मिट्टी की सेहत भी बेहतर होती है। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान सॉइल हेल्थ कार्ड से जुड़ सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं।
2: मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है, साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90-95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85-90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8-10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं।
1: तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया।

टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के एक नए अंक में और कुछ ऐसी नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।

सुझाव हमें कृषि दर्शन को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। चलते चलते ये भी बता दें कि आप हमारे ये कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के एक नए अंक में और कुछ ऐसी नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।

0: कृषि विशेष एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम जानकारी और कृषि शोध हम आपके साथ साझा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए एक ऐसे औषधीय पौधे की जानकारी लेकर आए हैं जो हमारे खान पान से लेकर हमारी जीवन शैली और इसके साथ ही हमारे जीवन के हर हिस्से में एक अलग ही महत्व रखता है। बात करें अगर रीति रिवाजों की या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तो इसका विशेष महत्व है। हम बात कर रहे हैं हल्दी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, मैं हूं मोनालिसा। आइए कृषि विशेष में आज विस्तार से जानते हैं हल्दी के बारे में। शादी विवाह की बात हो या फिर सौंदर्य की, हल्दी का प्रयोग होता ही है। वहीं किसी भी चोट या घाव को हल्दी जल्द ही भर देती है, इसलिए इसे मैजिकल हर्ब भी कहते हैं। यही वजह है कि हल्दी की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और किसान भी बड़े पैमाने पर इसकी खेती को अपनाने लगे हैं।
1: भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है जिसकी अर्थव्यवस्था में कृषि रीढ़ की हड्डी के समान है। हमारे देश प्रदेश में हमारी आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। कृषि किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है क्योंकि यह न केवल लाखों करोड़ों लोगों को भोजन प्रदान करती है बल्कि जीडीपी के समग्र विकास में भी योगदान देती है। और इस नए दौर का किसान अब सिर्फ परंपरागत खेती के ऊपर निर्भर नहीं है। किसान अब अपने खेत में विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाकर अच्छा मूल्य प्राप्त कर रहा है और ऐसी ही एक फसल है हल्दी। हल्दी एक औषधीय पौधे के रूप में जानी जाती है। हमारे भारत देश में बड़े स्तर पर हल्दी की खेती की जाती है। भारत देश के हर परिवार में हल्दी का स्थान महत्वपूर्ण है। घरों में खाना बनाने से लेकर किसी भी शुभ कार्य जैसे पूजा, शादी विवाह आदि में हल्दी का उपयोग पुराने जमाने से लेकर आज के आधुनिक युग तक हो रहा है। मसाला, औषधि, गृह उपयोग, फेस क्रीम बनाने में बड़े स्तर पर हल्दी का उपयोग किया जाता है। औषधीय गुण होने के कारण ये कई प्रकार की बीमारियों में भी लाभकारी है। यही कारण है कि हल्दी की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी को देखते हुए आने वाले समय में हल्दी की खेती फायदेमंद साबित हो सकती है। भारत विश्व में सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन करता है और हल्दी की सबसे ज्यादा खपत भी भारत में ही होती है। अर्थात हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन और इसका सबसे

0: बड़ा बाजार भारत में ही है। हल्दी अदरक की प्रजाति का 5 से 6 फुट तक बढ़ने वाला पौधा है, जिसकी जड़ की गांठों में हल्दी मिलती है। हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है, इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का नंबर आता है। वैसे हल्दी की खेती कहीं कम या कहीं ज्यादा, लेकिन होती तो पूरे भारत में ही है। हल्दी को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है।
1: हल्दी एक महत्वपूर्ण मसाले की फसल है और हमारे देश में हल्दी की खेती व्यापक रूप से की जाती है और मुख्य रूप से ये एक बड़ी लंबी अवधि की फसल है। इसको बुआई से लेकर कटाई तक तकरीबन 8 से 10 महीने का कार्यकाल की आवश्यकता होती है। हमारे देश में हल्दी के ऊपर अनुसंधान कार्य किए गए और उसमें उन्नत किस्मों का विकास किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जो संस्थान इसमें काम किए हैं उसमें नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, दूसरा जो है हमारा केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश और अन्य कई संस्थानों के द्वारा। हमारा संस्थान है केरल में CTCRI जिसको बोलते हैं, वहाँ से भी हल्दी की किस्मों का विकास किया गया है।
0: भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद के अनुसार हल्दी एक औषधीय पौधा है और कोरोना संकट काल में इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए बहुत सारे नए किसानों ने हल्दी की खेती की शुरुआत की है। हल्दी एक ऐसा मसाला है जिसके बिना हम खाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, अगर आपकी सब्जी में हल्दी ना हो तो कितनी बेरंग लगेगी। लेकिन खाने में इसके उपयोग के साथ साथ इसके कुछ अलग विशेष फायदे औषधि के रूप में भी है, जैसे पाचन तंत्र को सुधारना, सूजन कम करना और अन्य कई बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती रही है। हल्दी त्वचा के लिए भी काफी लाभदायक है, इसी के चलते हल्दी को हम मेडिकल हर्ब भी बोल सकते हैं और हल्दी की इस फसल से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: हल्दी एक बहुत महत्वपूर्ण मसाले की फसल है और इसके अंदर मिलने वाला जो तत्व है कुरकुमिन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी रोग रोधन क्षमता का विकास करने के लिए, और ये एंटी फंगल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखता है। इसके निरंतर इस्तेमाल करने से हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है और पिछले हमने कई वर्षों में देखा है, जब कोरोना का बुरा समय हमारे देश को देखने को मिला या कहूँ मैं पूरी दुनिया ने देखा, तो उसमें हल्दी का बहुत बड़ा रोल रहा। हल्दी हमारी जो इम्यूनिटी है उसको सुधारता है, इसका निरंतर इस्तेमाल करना हमारे लिए आवश्यक है। हालांकि हमारी भारतीय खान पान जो पद्धति है उसमें हम अधिकांश सब्जियों की तैयारी में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसकी तुलना करें यूरोप के देशों में, वहाँ पे हल्दी का कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसे जैसे विश्व स्तर पर इसकी व्यापकता बढ़ी है तो भारतीय हल्दी की मांग भी बढ़ी है।
0: तो अब तक आपने जाना हल्दी के महत्व के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि विशेष में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हल्दी की खेती के बारे में और जानेंगे कि किसान किस तरह से इससे लाभ ले रहे हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।

0: दो दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम भरोसे का नाम तरका सुपर।
1: कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मैजिकल हर्ब हल्दी के बारे में। आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हल्दी की खेती के बारे में। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से किसान हल्दी की बुआई कर सकते हैं और हल्दी की बुआई के लिए किस तरह की मिट्टी, जलवायु और बीज की जरूरत होती है। अगर हम बात करें हल्दी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उचित रहती है, तो आपको बता दें कि हल्दी की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु उत्तम मानी जाती है। इसकी खेती के लिए 225 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। हल्दी की फसल के लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस अच्छा होता है। और अगर हम हल्दी की अच्छी फसल के लिए मिट्टी की बात करें, तो ऐसी मिट्टी अच्छी मानी जाती है जिसमें जल निकासी की क्षमता अच्छी हो। अतः हल्दी की खेती बलुई दोमट या मटिया दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है। हल्दी की खेती के लिए मिट्टी को अच्छी तरह तैयार करना जरूरी होता है, क्योंकि हल्दी जमीन के अंदर ही फलती फूलती है। जमीन को अच्छी तरह से भुरभुरी बनाया जाना आवश्यक होता है। हल्दी के खेत में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होनी जरूरी है।
1: सामान्यतः इसकी बुआई किसान भाई अप्रैल के मध्य या मई के प्रारंभ तक करते हैं, और उसके लिए उन्नत किस्म के जो कंद होते हैं, राइजोम्स होते हैं, उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। बुआई से पूर्व उनको कुछ दिन के लिए नमीयुक्त स्थानों में रखते हैं या थैलों से लपेट के रखते हैं कपड़े से, ताकि उसमें अंकुरण प्रारंभ हो जाए और बुआई और खेत में जमाव में समय को कम किया जा सके। इसके लिए उष्ण ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जलवायु उपयुक्त रहती है, और क्योंकि ये एक राइजोम की फसल है, तो इसके बेहतर विकास के लिए संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल के साथ साथ प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, अच्छी गुणवत्ता के ये जो खाद हों, उनका इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है।
0: वर्षा होने पर हल्दी की फसल के लिए भूमि को तैयार कर लेना चाहिए। खेत को हल्दी की फसल के लिए 3 से 4 बार गहराई से जोतना जरूरी होता है। दोमट मिट्टी में कृषि विशेषज्ञ या अनुभवी किसान की सलाह से 400 से 500 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से चूने के पानी का घोल डालकर अच्छी तरह जुताई करने से भूमि हल्दी की खेती के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाती है। हल्दी की बुआई के लिए अच्छी तरह विकसित और रोग रहित संपूर्ण या प्रकंद के टुकड़े हल्दी के बीज के रूप में उपयोग करते हैं। प्रकंद एक प्रकार का पौधे का तना है, जो या तो मिट्टी की सतह पर या भूमिगत स्थित होता है। ध्यान रहे कि बीज रोग रहित होना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में हल्दी की फसल की बुआई क्यारियों या मेड़ बनाकर की जाती है। इसके बाद 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हाथ से खोदकर छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं। हल्दी की बुआई के लिए 250 किलोग्राम हेक्टेयर प्रकंद बीज की आवश्यकता होती है।
1: किस प्रकार से किसान भाई हल्दी की बेहतर उपज लें, उसमें जैसे पोषण का अपना महत्व है, खेत का चयन, बुआई का समय, किस्म विशेष की उत्पादकता, उसकी उत्पादन क्षमता, इन बातों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आप अपनी फसल का प्रबंधन करते हैं। यानी कि अगर फसल को पानी की आवश्यकता है तो पानी देना है, उसमें पत्तियों को मुरझाने की अवस्था नहीं आने देनी है। अगर आपकी वानस्पतिक बढ़वार मध्यम दर्जे की होगी, अधिक वानस्पतिक बर्बाद होने की स्थिति में, जैसे इस बार मैं कह सकता हूं कि बहुत अधिक वर्षा के कारण वानस्पतिक वृद्धि अधिक हुई है, और जहां पे अब इसकी फसल लगाई हुई हमारे किसान भाइयों ने, उसमें आप पानी को कम कर सकते हैं, ताकि उसमें और वानस्पतिक बढ़वार को कम कर सके। क्योंकि वनस्पतिक बढ़वार अगर ज़्यादा होगी तो उसमें जो राइजोम बनने की प्रक्रिया है वो देरी से होगी या कम मात्रा में राइजोम बनेंगे। तो ये एक आपस में संतुलन बैठाने की बात है कि अगर हमको बेहतर उत्पादकता लेनी है तो इस बात पे ध्यान देना आवश्यक है। साथ ही अगर अच्छी गुणवत्ता के कंद बने तो उसमें आपको पोटेशियम उर्वरकों का इस्तेमाल भी करना आवश्यक है। अगर आपने पोटेशियम उर्वरक में पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया है तो निश्चित रूप से आपको बेहतर कंद राइजोम मिलेंगे। अगर नहीं किया है तो आप इसका 2-3% का पर्णीय छिड़काव भी अपनी खड़ी फसल में कर सकते हैं और उसका राइजोम के विकास में और उसकी गुणवत्ता के सुधार में उसकी मददगार हो सकती है। तीसरी बात आपको ध्यान रखने की है कि क्योंकि अधिक वर्षा की स्थिति में खेत में अगर लंबे समय तक पानी रहता है तो इसे वानस्पतिक बढ़वार और कंदों के विकास को, जो अपने सलकंद या राइजोम में कह रहा हूँ, उनको विकास को प्रभावित करते हैं। तो आपको वर्षा बंद होने के बाद खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था भी करना आवश्यक है। अगर खेत में लंबे समय तक पानी खड़ा रहता है तो जमीन के अंदर कंपैक्शन आता है और पौधे की बढ़वार में रुकावट आती है।
0: हल्दी की खेती वैसे तो सुरक्षित होती है, लेकिन फसल संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी है। हल्दी की फसल तैयार होने के बाद खुदाई का समय आता है। हल्दी की खुदाई प्रजातियों के अनुसार बुआई के 7-9 महीने में किया जाता है। अल्प अवधि की प्रजातियां 7-8 महीने में, मध्य अवधि की प्रजातियां 8-9 महीने में और दीर्घकालीन प्रजातियां 9 महीने के बाद तैयार हो जाती है। खेत को जोतकर प्रकंदों को हाथ से इकट्ठा कर बड़ी सावधानी पूर्वक मिट्टी से अलग करते हैं। हल्दी की खेती के लिए हल्दी के बीज का भंडारण एक जरूरी प्रक्रिया है। इसके लिए ताजे निकले कंदों को ठंडे व सूखे स्थान पर भंडारण किया जाता है। हल्दी की खेती के बारे में जानने के बाद अब बारी आती है इसके प्रसंस्करण की, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।

0: रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले
1: जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले
2: कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।

कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें अब तक हमने बात की हल्दी की विशेषता और इसकी खेती के बारे में। आइए अब जानते हैं इसके प्रसंस्करण के बारे में। आइए देखते हैं कि किस तरह से हल्दी का प्रसंस्करण किया जाता है और किसान इससे अधिक मुनाफा कमाते हुए आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
1: व्यावसायिक सूखी हल्दी बनाने के लिए इसके कंदों को जमीन से निकालकर एक सप्ताह के अंदर उबाला जाता है, जिसे क्योरिंग कहते हैं। क्योरिंग एक महत्वपूर्ण काम है। इसके तहत हल्दी का व्यावसायीकरण होता है। हल्दी की फसल को घरेलू स्तर पर भी लोहे के बर्तन में उबाला जाता है और रासायनिक विधि द्वारा बड़े पैमाने पर क्योरिंग की जाती है। क्योरिंग करने से प्रकंद का आकर्षक नारंगी या पीला रंग विकसित होता है। हल्दी के प्रसंस्करण के लिए सबसे पहले खेतों से लाई गई हल्दी को धूप में सुखाया जाता है। लगभग एक हफ्ते तक सुखाने के बाद हल्दी प्रसंस्करण के लिए तैयार हो जाती है। हल्दी जब प्रसंस्करण यूनिट पर लाई जाती है तो सबसे पहले उसकी सफाई की जाती है। मशीन हल्दी में लगी मिट्टी और छिलकों को साफ करती है और उसे प्रसंस्करण के लायक बनाती है। मशीन को हाथ से चलाया जाता है। इसके हैंडल को 10-15 मिनट तक घुमाया जाता है। कुछ समय इसे सीधा तो कुछ समय इस मशीन को उल्टा घुमाया जाता है। इस मशीन को बिना बिजली के चलाया जाता है। मशीन के अंदर एक बार में 10 से 15 किलो तक हल्दी डाली जाती है। मशीन के नीचे एक तिरपाल बिछाया जाता है ताकि सारी गंदगी वहां गिर जाए। उसके बाद हल्दी को मशीन से निकाला जाता है, जिससे उसे पीसा जा सके। हल्दी को पीसने के बाद

0: प्लास्टिक, ये हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या हमारे आईसीआर के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसमें ऐसे उद्यमियों को या ऐसे किसानों को, युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण दे करके उनको तैयार करते हैं किस प्रकार से मूल्य संवर्धन करके और हल्दी का बेहतर व्यापार और इसका निर्यात में बढ़ावा दे सकते हैं।
1: बाजार में हल्दी की बढ़ती मांग को देखकर हल्दी की खेती के बाद किसान इसका प्रसंस्करण करके भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इससे किसानों की कमाई तो बढ़ती ही है, साथ ही वो आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और दूसरे किसानों को रोजगार भी दे रहे हैं, जिससे वो भी संपन्न बनते जा रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं।
2: तो ये थी हल्दी से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमें उम्मीद है कि कृषि विशेष का आज का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dd.krishivishesh@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय, जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।

0: गुड आफ्टरनून,
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। काफी हम लोग बात कर चुके हैं लाइफ स्किल्स के ऊपर, और कुछ सेशंस आई बिलीव आप लोग खुद कर रहे हैं, खुद से बना के, या कुछ सेशंस जो हम लोगों ने दिए हैं उनको भी आप शायद यूज करते होंगे। क्योंकि ये नॉन यूनिक है, और ज्यादातर हम चाहते हैं कि जितने लोगों के साथ आप ये कुछ शेयर कर सकें, उनकी सॉफ्ट स्किल्स बिल्डअप हो सकें। इंटरनेट से भी वीडियोस आप ऐड कर सकते हैं सेशंस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट है। एक मेजर लाइफ स्किल जो हमें एज ए इंडिविजुअल भी आनी चाहिए और एज अ यू नो फैमिली पर्सन भी आनी चाहिए, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर हम मनी को लेके हम सबको कुछ ना कुछ इश्यूज रहते ही हैं, चैलेंजेस रहते ही हैं। चाहे आज हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम आज अर्न कर रहे हैं, चाहे हम हाउसवाइफ हैं, चाहे हम स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं। सो वी थॉट दैट इट कुड बी इम्पोर्टेंट टू हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू अ लाइफ स्किल, बिकॉज ज्यादातर स्कूल्स में, कॉलेजेस में इस पे बात होती है, लेकिन ये लाइफ स्किल ऐसी है जो जब हम लाइफ में जब इस इसके अंदर उतरते हैं तभी वो धीरे धीरे करके बिल्डअप होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें प्रॉबेबली हैं जो अगर हम शुरू से ही अपने दिमाग में रखें तो हम एक बेटर फंड मैनेजर या बजट मैनेजर या इंडिविजुअल जो अकाउंट की जो हमारी अपनी वेल्थ मैनेजमेंट है उसको हम बेटर कर सकते हैं। सो टेकिंग दैट आई कैन शेयर सम स्लाइड्स।

0: यहाँ पे मैंने अपनी जो एक फोटो है वो लिखी, एक लगाई हुई है, बट आई बिलीव जब आप ये सेशन अपने बेनिफिशरीज के साथ करेंगे, उसमें बच्चे भी होंगे, उसमें औरतें भी होंगी, उसमें यूथ भी हो सकता है, उसमें हो सकता है बुजुर्ग भी होंगे. सो सबसे पहले हमें ये जरूरत है उस चीज की मैपिंग की कि मुझे एज एन इंडिविजुअल मनी चाहिए क्यों. सो कैन एनीबडी टेल कि मनी हमें लाइफ में चाहिए क्यों होता है. पहले जब रुपए नहीं आए थे तभी भी तो जिंदगियां चलती थी ना, बार्टर सिस्टम से चलती थी या फिर उसके अलग तरीके होते थे. अब क्योंकि मनी है, करेंसी आई है, तो ये और अब हम क्रिप्टो करेंसी में जा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में जा रहे हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि सैलरीज बैंक में क्रेडिट होती है, हम मनी को फिजिकल फॉर्म में तो देख ही नहीं पाते. वो आती है ईएमआईज में चली जाती है, पेमेंट्स में चली जाती है, स्कूल फीस में चली जाती है. सो एज एन इंडिविजुअल मनी हमें चाहिए क्यों, कोई बता सकते हैं? एज एन इंडिविजुअल इसमें कुछ सही कोई गलत नहीं है, हमारी जिंदगी में मनी हमें क्यों चाहिए, इफ समबडी कैन यू नो डिफाइन दैट.
1: हेलो मैम, इट्स संगीता फ्रॉम बायरेड्डीपल्ली.
0: हेलो जी,
1: एक बेहतर जिंदगी के लिए चाहिए मैम,
0: मनी हमें बेहतर जिंदगी के लिए चाहिए. वेरी गुड
1: अच्छे से
0: सर.
1: कंफर्टेबल
0: मैं
1: लाइफ
0: सत्यम फतेहपुर
1: जी.
0: मैम. मनी की हमें आवश्यकता मैम हमारी बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए भी बहुत जरूरी थी आज के टाइम में, क्योंकि एक तौर पर ये एसेट के तौर पर इसे आइडेंटिटी दी गई है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. सो बेसिक नेसेसिटी यानी कि खाना, कपड़े हो गए, हमारी एजुकेशन हो गए. एजुकेशन तो राइट टू एजुकेशन के अंदर फ्री है, लेकिन फिर भी हमें क्वालिटी एजुकेशन के लिए काफी मनी चाहिए होता है. डू वी अग्री ऑन दैट? यस मैम.
0: तो एनीथिंग एल्स? एक तो बेहतर लाइफ के लिए हमें चाहिए, बेसिक लाइफ के लिए चाहिए, जो कि अभी हमारे दोस्त ने हमें बताया, संगीता जी ने बताया कि बेटर लाइफ के लिए चाहिए. और किस चीज के लिए मनी चाहिए हमें?
1: मैम प्रिया वर्मा, बाराबंकी सेंटर. मैम जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, उसके लिए
0: हाँ
1: हमें
0: जी
1: मनी की नीड होती है.
0: बिल्कुल बिल्कुल. जैसे कि हमारे फतेहपुर सेंटर से किसी ने बताया था शायद कि बेसिक नीड्स, और आप भी वही बोल रहे हैं, दैनिक दैनिक नीड्स जो हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनके लिए हमें चाहिए पैसा चाहिए, यानी कि पेट भरा होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, बेसिक जो हमारी नीड्स हैं उसके लिए हमें मनी चाहिए होता है. ये दो चीजों के अलावा किसी और चीज के लिए हमें मनी चाहिए होता है? आप अपनी जिंदगी में किसी और चीज के लिए पैसा चाहते हैं? दैनिक नीड में क्या हमारे और कुछ जरूरतें आती हैं, या ऐसी कोई चीज जिसके लिए आपको मनी चाहिए होता है?
1: इसमें हमारा
0: हेल्थ
1: स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुई.
0: हेल्थ के लिए चाहिए. वेरी गुड.
1: एक्चुअली मैम,
0: एजुकेशन
1: इनफैक्ट हर एक चीज के लिए हमें मनी चाहिए ही है एट प्रेजेंट, सब कुछ के लिए. इवन पानी भी अभी तो पैसे से ही है, सब कुछ के लिए.
0: तो वो तो बेसिक नीड्स में कवर हो जाता है ना, पानी हो गया, रोटी, कपड़ा, मकान हो गया, राइट?
1: मैम
0: जी बताएं.
1: मैम सत्यम फतेहपुर
0: बिल्कुल
1: मैम, हमें मैम मनी की आवश्यकता मैम कोई स्टार्टअप करने के लिए भी पड़ती है, जैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप
0: बिल्कुल
1: क्रिएट करने के
0: बिल्कुल.
1: लिए.
0: तो हमें बेसिक से उठ के अगर हमें कोई रोजगार शुरू करना है, बहुत ही अच्छा. थैंक यू सो मच. मैं इसी तरह के
1: मैम
0: इनपुट्स की कोशिश कर रही थी. जी
1: फार्मिंग के
0: बताइए. हाँ
1: लिए भी चाहिए होती है. मैंने हमारे
0: फार्मिंग के लिए,
1: घर
0: बिजनेस के लिए चाहिए. ठीक है, और
1: में
0: बताएंगे क्या आपको? अगर अच्छा फोन चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं. यहाँ तो सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम मनी खर्च किन किन चीजों पे करते हैं आजकल? हम एक्सपेंसिव कपड़ों पे खर्च करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अलग अलग जगह पे घूमने जाएं, उसके लिए हमें मनी चाहिए होता है. हम चाहते हैं कि कभी कभी की अच्छी अच्छी जगह पे खाना खाने जाएं, करीबन मतलब कभी कभी तो हम जाएं अच्छी जगह पे, कोई हमें बहुत फैंसी सा रेस्टोरेंट पसंद है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास मनी हो. क्या ऐसा होता है हमारे साथ?
1: यस मैम. पर्सनल ग्रूमिंग पर भी मैम इस टाइम पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, क्योंकि जो बहुत जरूरी है आपको प्रेजेंटेबल लगना जब आप बाहर जा रहे हो, तो इन सब चीजों पे काफी एक्सपेंसेस आते हैं.
0: बिल्कुल. तो ये जो सना ने बोला, ये बहुत हटके है हमारी बेसिक जरूरतों से. बेसिक जरूरतें यानी कि हमारा रोटी, कपड़ा, मकान हो गया, एजुकेशन हो गई, इसके लिए तो हमें ये तो हमारी बेसिक नीड्स में आ जाता है. जो सना ने बोला या जो फतेहपुर से बोला था अभी किसी ने कि हमें एंटरप्राइज शुरू करने के लिए, अपना बिजनेस या लघु उद्योग शुरू करने के लिए सीड मनी चाहिए होता है, यानी कि हमें अपना कुछ ऐसा पैसा चाहिए जो हम अपना उद्योग शुरू कर सकें या अपना बिजनेस शुरू कर सकें। और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो कि सना ने बोली है कि आजकल हम बेसिक से उठ के अपनी एक इमेज मैनेजमेंट, जिसको कह सकते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं तो हमें क्या लगता है कि हमें अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करना चाहिए, उसके लिए भी हम काफी पैसे खर्च करते हैं एज एन इंडिविजुअल। हो सकता है सभी नहीं करते हो, बट बहुत आजकल ये जो सोशल मीडिया की वजह से ना, हमें ये बहुत लगता है कि अच्छा ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसा मेकअप होना चाहिए, इस तरह का फोन होना चाहिए, इस तरह के कपड़े, इस तरह की जगहों पे मुझे जाके फोटोज लेना है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक बेसिक जरूरत नहीं है, लेकिन आज के दौरान में ये एक फैशन या फिर एक ऐसी जरूरत बन गई है जो कि हमारी शायद इमेज मैनेजमेंट, इसको हम कह सकते हैं कि हम चाहते हैं हमारी इमेज ऐसी हो, तो हम उस इमेज मैनेजमेंट के लिए भी बहुत पैसा खर्च करते हैं। उसकी जरूरत है नहीं है वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, उसमें सही या गलत कुछ भी नहीं हो सकता या है। तो अब जब हम मनी की बात करते हैं ना, तो अभी देखिए सबने अलग अलग जवाब दिए, तो मनी की वैल्यू मेरे लिए कुछ और हो सकती है, सना के लिए कुछ और हो सकती है, संगीता जी के लिए कुछ और हो सकती है, हमारे जो और दोस्त जुड़े हैं सभी के लिए मनी की जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है। आज मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरी जरूरत हो सकता है कुछ और होगी, आज मैं हाउसवाइफ हूँ या मैं एज ए मदर हूँ तो मेरी जरूरत कुछ और हो सकती है। तो मनी की जो नीड है वो समय समय पर चेंज होती है, और अमाउंट ऑफ मनी क्या चाहिए वो भी चेंज होता है। तो जब हम अपने बेनिफिशरीज के साथ मनी की बात करेंगे, ये बहुत जरूरी है कि हर इंडिविजुअल इसकी विशेषता अपने हिसाब से डिफाइन करे, और इसमें कोई सही या कुछ गलत नहीं है, बिकॉज किसी के पास थोड़ा है तो उसमें भी शायद वो खुश है या ना खुश है, किसी के पास बहुत है तो उसमें भी वो खुश है ना खुश हो सकता है। सो मनी इज टू बी डिफाइंड फॉर योर सेल्फ, द नीड ऑफ दैट मनी इज ऑल्सो टू बी डिफाइंड फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, योर फ्यूचर, यू नो पेरेंट्स और योर फ्यूचर एंड द फ्यूचर ऑफ योर नियर एंड डियर वंस। एवरीबडी अग्रीज, या इसमें किसी की कोई और सोच है या कोई और हेल्प करना चाहता है इसको डिफाइन करने के लिए? तो पहले तो हमें इम्पोर्टेंस ऑफ मनी समझना है। यहाँ पे थोड़े बच्चे भी हैं, ये प्रिया वर्मा के जो सेंटर से हैं,
2: मैम 12 बंकी सेंटर।
0: बाराबंकी से हैं, ओके फाइन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एटलीस्ट दिस एज ग्रुप टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। ये टीओटी सेशन ज्यादा है, सो आई बिलीव जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं वो इस बात को समझ पाएंगे, और अगर इन बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम उस पर आज बात कर सकते हैं, या फिर आपके सेशंस के दौरान भी आप इन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। सो जैसे अगर हम अपना एक मंथली बजट बनाएंगे, मनी मैनेजमेंट की बात हम ये कर रहे हैं कि ठीक है एज ए स्टूडेंट मुझे क्या मैनेज करना है, कितना मुझे बजट चाहिए, एज ए हाउसवाइफ मुझे क्या चाहिए, एज ए एंटरप्रेन्योर अगर हम अपना कोई उद्योग शुरू करना चाह रहे हैं तो मुझे किस तरह का बजट चाहिए, वो बजट बनाना बहुत जरूरी होता है। तो हम जब एक महीने का भी बजट बनाएंगे ना, तो मोटा मोटा हमें पता चलेगा कि हमारा मेजर खर्चा वो किस चीज के लिए रहा है। कभी किसी ने बजट बनाया यहाँ पे अपने, जेन्युइनली बताना कि किसी ने भी बजट बनाया है अपने घर का या फिर बिजनेस का या फिर सेंटर का, तो आप बनाते ही होंगे, सेंटर का बजट बनाया है। कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश करी है कि मेरी जो सैलरी आती है या मेरी जो इनकम आती है वो जाती कहाँ? जब जब मैं 10 साल पहले काम कर रही थी या कर रहा था तो शुरुआत में जो मेरी इनकम थी मुझे वो भी कम लगती थी, आज भी जो इनकम है वो भी कम लगती है, आगे आने वाले मुझे जो चीजें हैं उनके लिए भी जरूरतें कम पड़ रही हैं। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ? बनाया है किसी ने बजट अपने घर का या अपना खुद का एज ए स्टूडेंट आपने कभी बनाया है कि ठीक है मुझे
2: यस
0: अपनी
2: मैम।
0: हायर एजुकेशन के लिए? कोई कोई एग्जाम्पल आप शेयर करना चाहते हैं
2: जी मैम।
0: बताएं।
2: मैम क्योंकि मैम कभी कभी मैम ऐसा होता कि मैम हम जो बनाते अचानक से कोई जरूरत पड़े, जैसे मैम कॉलेज की फीस हो गई, सेमेस्टर वही पड़ जाती है, जिम की फीस अलग जाती है, ये सब मैंने बना कर रखा है, और कभी कभी अचानक भी ज्यादा पैसों की जरूरत लग जाती है, तो
0: बिल्कुल बिल्कुल सही,
2: थोड़ा मैनेजमेंट करना।
0: बिल्कुल सही। हम पूरा बजट बनाते हैं, कभी कभी ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं जो हमने शायद प्लान भी नहीं करी होगी। तो बहुत जरूरी है पहले तो अपनी नीड्स को समझना, नीड्स
1: हो गई जो बेसिक हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, कितना कितना बजट की जरूरत है। पहले तो हमें वो समझना है अपनी लाइफ में, अपने इंडिविजुअल लाइफ में। और फिर दूसरी आ गई वॉन्ट्स, जिसकी वॉन्ट्स मतलब जिसकी हमारी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हम जी सकते हैं, लेकिन एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा आउटलुक मेंटेन करने के लिए हमें वो चीजें चाहिए। मुझे अच्छा फोन चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा जगह पे खाना खाना चाहती हूँ। खाना तो मैं बेसिक भी खा सकती हूँ, घर पे बना हुआ, खुद का बनाया हुआ, मम्मी के हाथ का बनाया हुआ, या बहन के या भाई के हाथ का, किसी के भी हाथ का बनाया हुआ खाना मैं खा के खुश रह सकती हूँ। लेकिन मुझे चाहिए कि मैं एक रेस्टोरेंट में जाऊँ, वहां जाके अच्छे कपड़े पहनूं और फिर वहां जाके अच्छा सा खाना खाऊं और टाइम स्पेंड करूं, थोड़ी सेल्फीज लूं, वो सेल्फीज को मैं पोस्ट करूं, तो वो हो गई मेरी वॉन्ट। तो ये नहीं कहना है कि नीड्स और वॉन्ट्स जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं। नीड्स मतलब अगर मेरी जरूरतें पूरी हैं तो मैं जी सकती हूँ, मैं वॉन्ट्स पे तब जाती हूँ जब मेरी नीड्स पूरी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जरूरतों को कम करके अपनी वॉन्ट्स को पूरा करूँ। जब हम वो करना शुरू करते हैं तब हमारा बजट जो है वो हिल जाता है कि भाई बेसिक नीड, राशन तो घर में आया नहीं महीने का, लेकिन हमने जाके बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा लिया और एक ही बारी में 10,000 रुपए खर्च हो गए, तो अब राशन तो आएगा नहीं क्योंकि वो हमने पैसा खर्च कर दिया। तो एक दिन तो मैंने अच्छी जगह पे खा लिया, मेरे पास फोटोज भी आ गई, मैंने उसको पोस्ट भी कर दिया, मेरे पास 10,000 लाइक्स भी आ गए, बट क्या वो मेरी जरूरत थी या नहीं थी, ये आप इंडिविजुअली डिफाइन करेंगे अपने लिए। इसमें अगेन कुछ सही या कुछ गलत नहीं है, आपकी जिंदगी की क्या क्या नजरिया है आपकी जिंदगी के लिए वो यू कैन ओनली डिफाइन, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल टू अंडरस्टैंड। ये बहुत जरूरी है एक लाइफ स्किल होना कि पैसे की अहमियत आज समझिए, कल बेहतर, आज और बेहतर कल के लिए। चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम अभी नया नया जॉब शुरू किया है, या चाहे हम एक लघु उद्योग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे हम हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, काम भी कर रहे हैं और एक हायर एजुकेशन भी करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं अपनी कुछ बिजनेस यहाँ पे कर रही हूँ और थोड़े टाइम में मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पर्सनल ग्रोथ हो और मैं कुछ आगे जाके एडवांस कोर्सेज करूँ, तो मुझे उसके लिए भी सेविंग्स करनी है। तो बहुत जरूरी है हम एक बजट बनाएं। कुछ लोग मंथली बनाते हैं, कुछ लोग 2-3 महीने का बना सकते हैं, कुछ लोग साल का बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट डू मेक अ बजट एंड डू ट्राई एंड ट्रैक कि जो बजट आपने बनाया एट द एंड ऑफ द मंथ आप कहाँ पे थे, तब आप अपने आप को पहचान पाएंगे। कभी कभी हम क्या कहते हैं, इम्पल्स इम्पल्स खर्चे भी कर देते हैं, कभी कभी इमरजेंसी खर्चे हो जाते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो हमारे फ्रेंड फतेहपुर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि कभी कभी वो कोशिश करते हैं कि इन इन चीजों पे खर्चा करें, बट ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है या ऐसी कोई फीस आ जाती है जो उन्होंने शायद प्लान नहीं करी थी और इमिडिएटली उनको पे करना पड़ा, तो उस चीज में उनका बजट हिल जाता है। जब आप ये 3, 4, 5, 6 बारी करेंगे ना, तो आप खुद इफेक्टिवली अपना बजट, जो मंथली बजट्स हैं या जो साल के या 6 महीने के आपका जो एक प्लान है बजट को लेके, वो आप अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे और जो भी मनी आपके पास है उसको आप एक बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे किसी के पास सैलरी आती है, मान लीजिए जो काम कर रहे हैं, जब सैलरी आती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, कोई एग्जाम्पल्स दे सकते हैं?
2: मैम, सबसे
1: हेलो
2: पहले
1: मैम।
2: जो नमस्ते मैम
1: नमस्ते जी।
2: जी, गजराज बोल रहा मैम, बारा से। वैसे
1: हाँ जी, गजराज सर।
2: मैम, अभी जो सेशन चल रहा बड़ा अच्छा, अभी तक किसी अभी तक जो योजना है बजट को लेकर, पारिवारिक खर्चों को लेकर किसी मैं मेरी बताऊं तो मैंने अभी फोकस नहीं किया। बाकी ये आज का सेशन से आगे के लिए काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और जिनके साथ हम काम करेंगे उनको भी ये समझाने की जरूरत है मैम। अब जो
1: जी
2: आज अभी आप पूछ रहे हो कि क्योंकि जैसे जो सैलरी मिलती है तो सबसे पहले तो जो राशन पर खर्चा कितना होता है, राशन पर खर्च होता है नंबर एक, तो 1 महीने में जितना भी जो अपन को जरूरत
1: बिल्कुल
2: होती
1: बिल्कुल,
2: है,
1: पेट
2: और
1: भरना
2: दूसरा
1: सबके लिए
2: पानी और
1: जरूरी।
2: बिजली,
1: ठीक है, पानी हो गया और बिजली हो गया।
2: और फिर एजुकेशन बच्चों के उस पर, क्योंकि ये तो मनुष्य की जो अति जरूरत चीजें हैं। जब तक राशन नहीं होगा जब तक उसका जीवन नहीं चलेगा, तो
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: ये है मैम। इसलिए सबसे पहले राशन, यानी कि 1 महीने का कितना खर्च, जो सैलरी मिलती है वो उस पर नॉन तेल घी जो भी है
3: जरूरतों पर चला जाता हूँ मैं।
1: बिल्कुल
3: दूसरा
1: बिल्कुल
3: फिर फोकस करते हैं कि क्योंकि बिजली नहीं है तो भी अंधेरा है, तो वो बिजली का बिल जो भी चुकाना होता है, पानी पर खर्च है, फिर उसके बाद में बच्चों के एजुकेशन पर मिनिमम जो भी जितना बचता है वो धीरे धीरे ऐसे मतलब इस खर्चे होते चले जाते हैं मैम।
1: बिल्कुल सही बोला आपने। और कोई बताना चाहेगा? थैंक यू गजराज सर। गजराज सर ने बहुत सिंपल और सरल तरीके में बताया कि सबसे पहले तो जरूरतों को हम पूरा करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जैसे सैलरी आती है या जिनका कोई बिजनेस है कुछ मनी आता है, तो महीने में सबसे पहले वो अपना राशन पूरा कर लेते हैं कि ठीक
3: जी
1: है, पूरा राशन, पूरे परिवार का पेट भरा होना चाहिए, तो हमने उसको राशन पूरा कर दिया। उसके बाद बिजली पानी होना चाहिए, हमारे ऑब्वियसली घरों में बिजली पानी का खर्चा है, वो खर्चे पूरे हो जाते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, तो ये तीनों चीजें पूरी हो जाती हैं। हमारा हर मंथ मंथ दर मंथ ऐसे चलता रहता है, महीने दर महीने, महीने दर साल बिल्कुल इन जरूरतों को हम पूरा करते रहते हैं। कोई और एग्जाम्पल शेयर करना चाहेगा इसके बाद, इसके साथ साथ किसी का कोई अलग नजरिया है, कुछ कोई अलग तरीके से अगर अपनी सैलरी को मैनेज करते हैं, कोई शेयर करेंगे?
2: मैम, हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं पहले हम उनको पूरा कर लेते हैं, जो फिर मनी बचती है उसको हम अपने पास सेविंग्स रखते हैं, क्योंकि वो जो आगे मनी आएगी वो आगे भी काम कभी आ सकती है।
1: वेरी गुड। सो पहले हम बेसिक्स पूरा कर लेते हैं और जो बचा हुआ मनी है उसको सेविंग्स में रख लेते हैं। तो सेविंग्स में आप क्या सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसमें रखते हैं, या कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं?
2: सेविंग अकाउंट में
1: सेविंग अकाउंट में रखते हैं, भाई कभी भी जरूरत पड़े तो हम उस सेविंग अकाउंट में से वो मनी निकाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, कुछ 3% के करीब हमें सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट भी मिलता है। तो जो जो सैलरी हमारी आई उसमें हमने बेसिक खर्चे निकाल लिए और जो बचा हुआ पैसा है वो हमारा सेविंग में पड़ा रहा। बहुत ही बढ़िया आई। और कोई कुछ बताना चाहेगा? थैंक यू।
4: मैम, सबसे पहले प्रायोरिटी सैलरी आने के बाद होती है कि फीस जमा करनी है बच्चों की।
1: बिल्कुल
4: मैम, वो एक प्रायोरिटी है जो करना ही करना है, उसके अलावा जो ईएमआई है वो पे करना है। प्लस मैम, 5% मेरी सैलरी का हम एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख देते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, कभी भी कोई फंक्शन हो गया स्कूल में या किसी भी चीज के लिए जरूरत पड़ गई या बच्चों की कोई हेल्थ का इश्यू हो गया, तो वो अर्जेंट नीड के लिए वो पैसे सेव करके रखने पड़ते हैं, 5% ऑफ द सैलरी
1: इमरजेंसी, आप उसको
4: इमरजेंसी के
1: इमरजेंसी
4: लिए।
1: फंड कह सकते। तो ठीक है, अब हमारे पास एक तीसरा पहलू आ गया जो सना ने बोला। अभी तक हमारे पास सिर्फ दो पहलू थे कि पहले हम अपनी बेसिक नीड्स जो है रोटी कपड़ा मकान उसके उसके ऊपर करते हैं, दूसरा था एजुकेशन, अभी तीसरा आ गया इमरजेंसी फंड, यानी कि एजुकेशन से बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि सना एक यंग कपल है तो वो अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई कुछ भी खर्चा आए तो बच्चों के लिए एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो अब हमारे पास मोटे मोटे तीन पहलू आ गए, पहला रोटी कपड़ा मकान, दूसरा हमारी एजुकेशन, तीसरा इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड हेल्थ के लिए भी हो सकता है, एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, कुछ भी। एक हमने इमरजेंसी फंड के लिए खुद से, वो कह रही है कि हमने बाय डिफॉल्ट 5% अपनी इनकम का, सेविंग्स का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक इमरजेंसी फंड में उसको रख देते हैं 5%। बहुत ही बढ़िया। और कोई कुछ, किसी और का कोई और तरीका है अपनी सैलरी को मैनेज करने का, कुछ अलग, इससे कुछ अलग, अगर इसके कुछ एडिशन में अगर कोई कुछ बताना चाहता है, कुछ भी सही या गलत नहीं है, हम कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके तरीके से, जैसे मैं कभी इमरजेंसी फंड में शायद नहीं करती हूँ, लेकिन आज सना की बात सुन के शायद मैं आज से 2%, 1%, 3%, 5% इमरजेंसी फंड में हो सकता है रखना शुरू कर दूं। कोई कुछ और करता है अलग सा, ऐसा कोई डब्बे के नीचे छुपाता है पैसे हस्बैंड से, आटे के अंदर, चावल के अंदर, ऐसा नहीं करते? ऑल
4: ऑल द लेडीज मैम,
1: द लेडीज डू दैट। सो उसको उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको उसको भी हम एक सेविंग के तौर में, मतलब हमने कहीं बैंक में नहीं रखा, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, लेकिन एज ए वो भी एक इमरजेंसी फंड ही है, लेकिन वो हमने एज ए सेविंग की तरीके से उसको अपने बचत की तरीके से रखा। यानी कि हो सकता है हमने घर की इनकम के लिए 100 रुपया निकाला हो सैलरी में से, लेकिन हमने घर को इतने अच्छे तरीके से चलाया कि 80 रुपये में उस महीने के खर्चे हो गए और जो 20 रुपये बचे उसको हमने एक बचत के तौर पे रख दिया, यानी कि बजट बनाया और उसको भी बजट के तौर पे रख दिया। ये हम सब करते हैं, खासकर लेडीज करती हैं, शायद जेंट्स नहीं करते हो या करते हो या इससे भी इफेक्टिवली करते हो, तो ये भी एक सेविंग्स का तरीका है।
3: चंद्र प्रकाश बोल रहा हूँ
1: जी सर,
3: मैं, तो खुद तो मेरे
5: बस बचत करता ही हो, पर लेकिन जो मेरे व्यूवर स्टाफ है जो भी साथ काम के, सबको 20% राशि की आरडी का पोस्ट ऑफिस में आरडी करवा रखी मैंने सबकी।
1: वेरी गुड। सो पोस्ट ऑफिस में जो कि सेफ भी माना जाता है, अच्छा इंटरेस्ट भी मिलता है उसके ऊपर, और एक कंपल्सिव सेविंग भी हो जाती है,
5: स्वीपर से लगा,
1: दैट इज
5: स्वीपर
1: अनदर।
5: भी स्वीपर करता है, उसकी भी मैंने उसके हिसाब से आरडी करा रखी है। भी वाले महिला है उनकी भी आरडी करा रखी है, तो सबकी जितना पैसा आता है एजेंट वही बुला लेता हूँ सेंटर पे, सबको जमा करवा देता हूँ। तो उनके लास्ट में 100 रुपये में उनको 6,500 करीब मिलेंगे उनको 5 साल में। तो एक उनकी सबकी सेफ बचत आदत पड़ गई, सबकी बचत होने की।
1: तो छोटी छोटी बजट से आपने देखा किस तरीके से स्मॉल सेविंग्स कैन यील्ड टू अ बिग अमाउंट। एक 5 साल के हमें सोचने में लगता है कि 5 साल बहुत दूर है, लेकिन वो छोटी छोटी छोटी छोटी सेविंग्स करते करते लमसम मनी हमको एंड में मिल जाता है। थैंक
4: मैम
1: यू जर्नी
4: कैन आई
1: प्रकाश
4: से
1: जी।
4: समथिंग मैम?
1: जी जी मैम बिल्कुल।
4: मैम आई डोंट नो इफ आई कैन से लाइक दिस, आई सेव एवरी मंथ सम मनी टू गिफ्ट माय डॉटर एवरी ईयर समथिंग इन गोल्ड मैम, सो एवरी मंथ आई सेव।
1: तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप एक अलग से फंड क्रिएट करते हैं, बिकॉज आपकी प्रायोरिटी वो है कि यू हैव टू गिव समथिंग टू योर डॉटर, राइट? अभी आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो शायद आप प्रोबेबली उस एज में पहुंच गए हैं, उस स्टेज में पहुंच गए हैं आपकी लाइफ में जहां पे बेसिक नीड्स के बियॉन्ड, क्योंकि आपके बच्चों की एजुकेशन पूरी हो चुकी है, यू हैव मेड कमिटमेंट्स टू देयर यू नो मैरिज एंड अदर अदर थिंग्स दैट यू हैव, यू माइट हैव सेविंग्स फॉर योर हेल्थ एंड एमरजेंसी। तो आपको लगा कि आपको एक ऐसा फंड क्रिएट करना है जो कि लमसम हो एंड यू कैन गिफ्ट टू योर डॉटर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये जो हम गोल की बात कर रहे थे कि आपको मनी क्यों चाहिए, ये आपको खुद को डिफाइन करना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उसका। शायद मेरी जिंदगी में अभी वो नीड नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, जैसे सना ने बोला उनके बच्चे छोटे हैं, तो हमारी नीड्स अभी इस वक्त है उनके एजुकेशन को लेके, फ्यूचर को लेके। बट शायद जो हमसे थोड़े बड़े हैं, जो हमसे थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी नीड बदल गई है क्योंकि उनको एक अलग लेवल की जरूरत है। सो आई थिंक, थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग, इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल जो मैं कहना चाह रही थी कि नीड हम सबकी मनी को लेके हर वक्त अलग होती है और वो नीड बदलती रहती है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दैट नीड एंड वर्क योर बजट अकॉर्डिंग टू योर नीड। एज ए स्टूडेंट हमारी नीड अलग हो सकती है, हमें उसे पहचान के अपना डिफाइन करना है कि मुझे लाइफ में कितना मनी चाहिए अपनी स्टूडेंट या अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। जब वो हो जाता है, हमें कितना बजट चाहिए अपने घर
4: हेलो,
1: परिवार को चलाने के लिए। हाँ जी
4: नमस्ते मैम, कैसे
1: नमस्ते जी,
4: हो मैम? ठीक
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
4: है मैम, हम भी, और आपको देख के और ज्यादा ठीक हो गए।
1: अरे हाँ, हम भी आपको देख के खुश हो गए, और आप
4: अच्छा
1: बोल रहे हैं ये
4: मैम,
1: सबसे अच्छी बात है जी।
4: मैं सुन सेंटर से बोल रही हूँ। हाँ जी, मोबिलाइजेशन का काम करती हूँ मैम, शोभा नाम है मेरा।
1: जी जी जी
4: मैम
1: बताओ
4: हमने
1: शोभा
4: जो
1: जी,
4: हमारी सैलरी मिलती है ना, हम उसमें से अपने पैसे निकाल के हम बचत जमा करते हैं मैम।
1: कहाँ पे करते हैं आप बचत जमा?
4: हमने 10 महिलाओं का ग्रुप बना रखा है,
1: अच्छा ठीक है,
4: 10 महिलाओं का ग्रुप बना के हम उसमें से 200 रुपये पर मंथ निकाल के अपनी बचत जमा करते हैं, सेव करते हैं
1: तो फिर वो आपको मिलता कैसे है, वापस कैसे मिलता है?
4: मैम। वो पैसा हमको, जैसे हमें कभी कोई इमरजेंसी आ जाए घर में, जरूरत पड़ती हो, तो हम एक प्रस्ताव बनाते हैं मिलके 10 लेडीज इकट्ठा होके, तो उसमें से जिसको जितनी जरूरत होती है उसमें से पैसे निकालते हैं और अपना काम चलाते हैं हम। और फिर
1: वेरी
4: वो
1: गुड,
4: 200 रुपये बचत तो हमेशा ही जमा होती है, लेकिन पर उसकी किस्त बन जाती है,
1: वेरी गुड।
4: एक परसेंट का
1: अच्छा
4: ब्याज है मैम इसमें।
1: 1% का ब्याज। तो
4: हाँ
1: आपने
4: जी,
1: ये एक लोकल लेवल पे जो सेविंग स्कीम है अपनी महिलाओं के साथ, एक महिला ग्रुप के साथ वो शुरू किया है, राइट?
4: हाँ जी,
1: तो ये जो है ये आपको एट ए टाइम ऑफ जो इमरजेंसी है या ऐसी कोई बेसिक जरूरत है जो यकायक आ जाती है, उसके लिए आप उसको, इस फंड को यूज कर लेते हैं,
4: हाँ जी,
1: राइट? बहुत बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये आपने दिया। तो जब हम अपने बेनिफिशियरीज के साथ बात करेंगे, जैसे चंद्र प्रकाश जी ने भी बताया कि हर किसी को ये जो स्किल है एज ए लाइफ स्किल आना बहुत जरूरी है, स्पेशली आने वाली जेनरेशन को, क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना वो इससे भी ज्यादा जो है स्ट्रेसफुल होने वाला है इमेज मैनेजमेंट के ऊपर, कि अच्छा मुझे किस तरीके से अपने आप को दुनिया को दिखाना है, उस चीज में कहीं ना कहीं हम अपनी बेसिक जरूरतों को काट के हम अपनी इमेज मैनेजमेंट में लग जाते हैं, और हम फिर क्रेडिट कार्ड्स पे या फिर लोन्स लेके या फिर ऐसे एक विशेष सर्कल में फंसते चले जाते हैं जहां पे हम कितना ही कमा लें हमको वो कम ही पड़ता है। सो इट इज वेरी वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मनी को मैनेज करना सीखें अपने लेवल पे। हम किस लेवल पे हैं आज, लेवल एज इन हम स्टूडेंट हैं, हमारी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, हमारे घर में बुजुर्ग पेरेंट्स हैं जिनकी हो सकता है हेल्थ कंडीशन ऐसी हो कि हमें उनके लिए भी सेविंग्स करना है। तो समय समय पे ये चीजें चेंज होती हैं और उस समय के अनुसार हमें अपना घर परिवार बजट मैनेज करना सीखना है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल जो कि हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को समझना हमसे भी शायद ज्यादा जरूरी रहेगा। जैसे कि चंद्र प्रकाश जी ने बताया, अभी हमें सुन से जो एग्जाम्पल मिला है, सना ने जो बताया एंड शैलजा मैम ने बताया, स्टार्ट स्मॉल। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम 10,000 रुपए की एफडी करें या 50,000 की एफडी करें या बहुत बड़े म्यूचुअल फंड में, आजकल हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही है, बहुत बहुत आसान है, ऐसे करके एड्स आती हैं। अगर इस समय पे हमें वो बड़ी चीजें नहीं समझ में आ रही या हम नहीं कर पा रहे, इट डज नॉट मैटर। हमारी पहले की जो पीढ़ी थी, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी दादी या उनकी जो मदर थी, उनको उनकी कहानियां सुनेंगे तो ये होगा कि अच्छा, उन्होंने अपनी जो मंथली उनके पैसे आते थे, उनको मिलते थे हाथ में, उस टाइम पे तो लेडीज अर्न नहीं करती थी ना ज्यादा, उनको जो भी उनके हस्बैंड्स ने दिया या कुछ दिया वो घर के खर्चों में से बचत करके साल 2 साल 10 साल में इतने पैसे इकट्ठे कर लेती थी कि कभी कभी उनको खुद नहीं रियलाइज होता था कि इतने पैसे उनके पास पड़े हुए हैं। कहने का मतलब है कि स्टार्ट स्मॉल। आज आप छोटा भी अगर सेविंग कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स भी हैं आजकल गवर्नमेंट के अंदर। हम स्कीम्स के ऊपर बात नहीं कर रहे, आज हम एटीट्यूड के ऊपर बात कर रहे हैं, पैसे को लेके जो एटीट्यूड है हमारा, उस लाइफ स्किल की बात कर रहे हैं। लेकिन उसकी बात करते करते भी हमें इतने सारे एग्जाम्पल्स मिल गए हैं कि कुछ जो अभी फतेहपुर से थे, उन्होंने बताया कि वो सेविंग बैंक में रखते हैं, सना ने बताया वो इमरजेंसी फंड में रखते हैं, शैलजा मैम, संगीता हमारे साथ और चंद्र प्रकाश जी जो और 2-3 लोगों ने बताया कि वो अलग अलग तरीके के कुछ उन्होंने नॉन फॉर्मल या फिर फॉर्मल जो सेविंग स्कीम्स हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गई, प्रोविडेंट फंड है, आजकल तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो हम छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा लेवल एज इन अगर आज हम 100 रुपए भी बचा सकते हैं, 200 रुपए भी बचा सकते हैं, तो 5 साल 10 साल के बाद हमें वो मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है। कई स्कीम्स ऐसी होती हैं, कई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट भी देते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स स्कीम्स है, उनको अगर अभी हम नहीं भी समझ पा रहे हैं तो हम सिंपल सेविंग, जो सिंपल सेविंग स्कीम्स हैं उनके उनको समझ के उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें रिस्क कम है और अगर जब हमें इमरजेंसी में जरूरत हो तो हम वो फंड निकाल सकते हैं। लेकिन आदत सेविंग्स की होनी चाहिए। सेविंग्स की आदत ऐसे पड़ सकती है कि हम कंपल्सरीली कुछ परसेंट, 1%, 2%, 5%, 10% अपनी सेविंग्स का, अपने इनकम का सेविंग्स में रखें ही रखें। उस एटीट्यूड को बनाने की आज हम कोशिश कर रहे हैं, उस एटीट्यूड पे बात करने की आज कोशिश कर रहे हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो करीबन मतलब एक ऐसी एज पार कर चुके हैं जहां पे उनको सेविंग्स की आदत लग गई है, बट ये सेशन हम अपने बेनिफिशियरी के साथ करेंगे जो 15 से लेके हो सकता है 30 तक की एज में होंगे। वो एज ग्रुप जो है ना वो बहुत वनरेबल है। मैं अपने बेटे को भी देखती हूँ, उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके भी जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स स्पेंडिंग, ठीक है अर्बन है, यहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा है, बट ये एक्सपोजर हर जगह पे है क्योंकि जो फोन के जरिए से मीडिया है ना वो सब तरीके से फैला हुआ है। तो ये चीज जो मनी को लेके हमारा एटीट्यूड है ना कंजम्पशन का, मतलब आज अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसे कंज्यूम करके खुश हो जाएं, कहीं ना कहीं वो हैबिट आ रही है कुछ हमारी जनरेशन में भी है, कुछ हमारी आने वाली जनरेशन में भी है। हमारे से पहले वाले जनरेशन तो पूरा ही बचत की तरफ चलते थे, कभी कोई नीड उन्होंने पूरी करी ही नहीं। एक नई शर्ट लेने के लिए भी मुझे लगता है वो 100 बार 10 बार सोचते थे, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स। मतलब बहुत ही सेविंग्स की तरफ वो उनका रुझान अलग ही लेवल का था। जब हमारी जनरेशन आई तो हमने एक मिक्स्ड, कुछ हम कंज्यूम करते हैं, कुछ हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं और कुछ हम सेविंग्स करते हैं। तो अगेन, सही या गलत कुछ भी नहीं है। द आइडिया इज टू आइडेंटिफाई योर नीड्स एंड वॉन्ट्स। पहले नीड्स को पूरा करके हम कुछ सेव करेंगे इमरजेंसी के लिए या ऐसी कोई प्लानिंग के लिए, जरूरी नहीं है इमरजेंसी के लिए हम सेव करेंगे। अगर मेरा शौक है कि मुझे आज से 20 साल के बाद मुझे किसी बाहरी देश में घूमने जाना है, तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते। छोटा छोटा छोटा छोटा इन्वेस्ट करें कहीं, स्मॉल स्मॉल सेविंग्स करें, 5 साल 10 साल के बाद एक फंड ऐसा आ जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, हो सकता है आपका यही ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि शारजा मैम ने बोला, उनका एक ऑब्जेक्टिव है, वो एक गिफ्ट करना चाहती हैं हर साल के एंड पे अपनी डॉटर को। सो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका फंड है, आप उसे मैनेज करेंगे, बट तभी कर पाएंगे अगर आप अपने फंड को तरीके से समझ पाए, अपनी नीड्स और वॉन्ट्स को दो मोटे मोटे भागों में बांट पाए। कभी कभी ना हम किसी चीज को देखते हैं और हमारे पास पैसा है, हमारे पास सेविंग्स भी है, कभी कभी लगता है हमें ना ये चीज खरीद लेनी चाहिए। तो जब मैं ये सेशन बना रही थी, बहुत प्यारी सी 30-day rule मेरे सामने आई। सो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, हो सकता है किसी को ये हेल्पफुल हो। तो ये रूल ये कहता है कि अगर मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो गई, मेरा खाना पानी बिजली, मेरी एजुकेशन भी हो गई, बच्चों की एजुकेशन भी हो गई, अब मेरा दिल कर रहा है कि एक बड़ी सी कोई चीज लेने का। मान लीजिए मोबाइल फोन है, बहुत अच्छा सा नया मोबाइल फोन आया मार्केट में और मुझे वो लेना है, या एक बहुत सुंदर सी साड़ी आई है वो लेनी है, या एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट खुला है, सब उसमें जा रहे हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं, मुझे भी उसमें जाना है, लेकिन वो बहुत खर्चा हो जाएगा उसमें। जितनी मेरी सेविंग्स है, करीबन उसकी आधी जो सेविंग्स है वो निकल जाएगी। तो ये 30-day rule ये कहता है, बचत का ये रूल है कि आप जो ये डिसीजन लेना चाहते हैं ना, 30 दिन के लिए रुक जाइए। 30 दिन आज आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ ये चीज मेरे को लेनी है, वो पैसा आप अलग से 30 दिन के लिए डाल दीजिए, किसी एक FD में डाल दीजिए, तो 30 दिन की FD भी आती है आजकल। 30 दिन के बाद आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, आप सिर्फ उसका ध्यान नहीं करेंगे। आपको ये पता है कि 30th day ही मैं उसके बारे में सोचूंगा। तो 30-day rule ये कहता है कि अगर 30 दिन के बाद भी आपकी वो जरूरत उतनी ही प्रोमिनेंट है, तब तो आप उस चीज में इन्वेस्ट करिए। अगर आपके 30 दिन के बाद वो जो जरूरत है वो कम हो जाती है, या आपको नहीं लगता कि ठीक है ये तो वेस्ट हो सकता है, इसे बोलते हैं इम्पल्सिव परचेज। इम्पल्सिव मतलब मुझे, मेरी जो आज की सोच है या आज के इमोशंस है ना, कभी कभी हम उससे बहुत बड़ा खर्चा कर देते हैं, जो आगे जाके हमें अफसोस होता है कि अरे इसकी शायद इतनी जरूरत नहीं थी। इसके बारे में, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, आई वॉन्टेड टू लीव दिस विद यू, बट अगर आप चाहें तो बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज हैं इसके बारे में, ऑनलाइन स्टोरीज हैं 30-day savings rule के बारे में। आप चाहें तो ये स्टोरीज आप देख सकते हैं अपने बेनिफिशरीज के साथ। जब आप ये सेशन करेंगे, यू कैन शेयर दो स्टोरीज। एंड मुझे लगता है ये वाकई, मैंने खुद भी कभी ऐसा प्रैक्टिस नहीं किया, तो ये बहुत आई थिंक प्यारा रूल है कि अगर कोई चीज हमें आज लग रहा है कि मुझे वो खरीद लेनी चाहिए, या मुझे उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, मुझे घूमने चले जाना चाहिए, इस जगह पे तो मुझे जाना ही जाना है, सारे लोग जा रहे हैं, 30 दिन के बाद भी अगर आपका दिल, आपका मन, आपकी जरूरत अभी भी वैसी ही है। ये हम इम्पल्सिव परचेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ की हमारी सेविंग्स जो है वो खर्च हो जाती है, कभी कभी हमारा बजट पूरा हिल जाता है, उस चीज के बारे में हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। किसी के कोई एग्जाम्पल्स, कभी किसी ने ऐसा किया हो, कोई बहुत जरूरत की चीज लग रही हो और उसको 5 दिन के लिए रख दिया कि नहीं अच्छा 5 दिन के बाद सोचूंगी या सोचूंगा, ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? नेक्स्ट टाइम लेट्स ऑल ट्राई, अगर ऐसा होता है, अगर हमें लगता है तो वी कैन ट्राई दिस, एंड दिस माइट हेल्प अस बिल्ड आवर सेविंग्स अलॉट, और हम उस मनी को हो सकता है किसी और अच्छी चीज पे खर्च करने के लिए बचा लें। सो दिस इज वन टेक्निक। दूसरा एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आया कि जो हम जो हमारी इनकम है उसको हम खर्च करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जो ट्रेडिशनल तरीका है कि जैसे ही हमारी सेविंग्स आती है हम अपने बेसिक खर्चों में उसे खर्च कर देते हैं और जो बचा हुआ है उसको सेविंग्स में डाल देते हैं। ये एक ट्रेडिशनल वे है अपनी बजट मैनेजमेंट का। एक प्रोग्रेसिव वे और एक ऑल्टरनेट वे ये है कि जैसे ही हमारी इनकम हमारे पास आती है हम कंपल्सरीली सबसे पहले बचत में डालें उसको और जो बचा हुआ पैसा है उससे हम खर्चे पूरे करें। तो ये अब अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं इसके बारे में, बट जो सेविंग्स करने का तरीका है वो उल्टा होना चाहिए। पहले हम अपने 100 रुपए में से 5 रुपए 10 रुपए जो जितना भी मेरा जितने भी मुझे लगता है कि मैं सेव करना चाहती हूँ या चाहता हूँ पर मंथ वो एंड में नहीं करेंगे, वो सबसे पहले करेंगे। जिसका एग्जाम्पल सना ने भी हमें दिया कि इनकम आते ही हम सबसे पहले अपना बचत का जो पोर्शन है उसको अलग कर लेंगे और खर्चे बाद में करेंगे। दैट इज अनदर वे ऑफ यूजिंग आवर मंथली बजट या हमारे साल दर साल का जो हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। देयर वाज अनदर रूल कि ये 50-30-20 का रूल है। इसके अलावा मुझे 70-20-10 का भी रूल मिला है। इसका कहने का मतलब वही है कि किस चीज पे हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग हो सकता है। तो 50% जो है हमारी बेसिक नीड्स के लिए हम हमेशा उसको रखें, यानी कि रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ हो गया इंश्योरेंस हो गया, इन सब चीजों पे आप समय समय पे अपना जो है एक्सपेंसेस जो भी आपकी सालाना इनकम है उसका 50% आप खर्च करते हैं। हम सब खर्च करते हैं। 20% सेविंग कर सकते हैं, 10% सेविंग कर सकते हैं, 5% सेविंग कर सकते हैं। और कुछ आप देखिए हर वक्त सेविंग करते रहेंगे इतना तो कोई हम साधु का जीवन नहीं जी रहा, कोई भी नहीं जी रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त सेविंग मोड में ही रहना है। हमें कुछ अपने शौक भी पूरे करने हैं, हमें कुछ अपने इच्छाएं भी पूरी करनी है उस मनी के लिए, क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ समय समय पे अपने आप को अपनी फैमिली को या अपने जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं उनको मैं कुछ अलग रिवॉर्ड सा दूं। वो आती है बॉन्ड्स में, वो आती है हमारी लग्जरी में। हो सकता है कुछ लोग दिवाली पे नए कपड़े खरीदते हैं, कुछ लोग ईद पे नए कपड़े खरीदते हैं, हो सकता है कुछ लोग मंथली बोलते हो कि ठीक है मुझे कुछ ना कुछ बचत करके अपने लिए या अपने बच्चों के लिए नया खरीदना ही है। तो उसके लिए भी आप पहले से प्लानिंग करके चलें। जब आप प्लानिंग करके चलेंगे तो आप इफेक्टिवली यूज करेंगे, इंपल्सिवली नहीं यूज करेंगे। इंपल्सिव में फिर हमारा 30 डे रूल आ जाएगा कि अगर इम्पल्स बाय है तो 30 दिन के लिए मैं रुक जाऊं, 15 दिन के लिए मैं रुक जाऊं, अगर 15 दिन के बाद भी मुझे वो जरूरत लगती है तो हम वो चीज को परचेज कर सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं। अगेन आई वुड से कि हम हो सकता है कर रहे हों इसको, लेकिन ये सेशंस हमने अपने बेनिफिशरीज के लिए भी बनाए हैं जिसमें कि बच्चे भी हैं, यूथ भी है, शायद उन्होंने अभी कमाना शुरू नहीं किया, लेकिन 20-25 साल की उम्र में जो कमाने लगेंगे अगर पहले से ही शुरू से ही वो आदत डल जाए कि हाँ हमें बचत करते हुए चलना है। तो आप ये सोचिए जो 20 साल में सेविंग्स करना शुरू कर देगा जब तक कि वो 50 साल का या 60 साल का हो जाएगा कितनी सारी सेविंग्स उनके पास इकट्ठी हो जाएंगी। सो दिस इज अ हैबिट मैनेजमेंट, दिस इज अ बिहेवियर मैनेजमेंट जो कि हमें खुद से अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना है। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट सेशन। आई थॉट कि दिस इज वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल जिसके बारे में हमने फॉर्मली कभी बात नहीं करी है। सो दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर। आई जस्ट स्टॉप शेयर। ऑल राइट, सो दिस वॉज अ वेरी स्मॉल सेशन ऑन फाइनेंस मैनेजमेंट। कुछ टिप्स थी, कुछ टेक्निक्स थी, दिस यू कैन शेयर विद द बेनिफिशरीज, स्पेशली जैसे कि चंद्र प्रकाश जी ने बोला वो उन्होंने आदत डलवाई है ना कि सिर्फ अपने ना कि खुद को बल्कि अपने स्टाफ को भी इंक्लूडिंग एवरीबॉडी जितने लोग उनके साथ जुड़े हैं सेंटर पे। सेविंग्स की अहमियत उन्होंने वहां पे हाईलाइट करी है। आई वुड से सेविंग्स जो है हम छोटे से शुरू कर सकते हैं, जितना जल्दी शुरू करें जितना इनफॉर्मल करें फॉर्मल करें? इनफॉर्मल मतलब हम सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखें, एफडी में उसको रखें, या फॉर्मल तरीके से किसी इन्वेस्टमेंट में रखें? अगर किसी इन्वेस्टमेंट में रख रहे हैं तो पूरी जानकारी के साथ आप अपना फंड इन्वेस्ट करिए, पूरी समझ बूझ के साथ करिए, क्योंकि वो आपका हार्ड अर्न्ड मनी है। किसी के बहकावे में आके या किसी के कहने के ऊपर किसी गलत स्कीम में मत उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं अच्छा 30% का इंटरेस्ट मिलेगा, इतना हमें रिटर्न मिलेगा, उसके धोखे में आके गलत जगह पे इन्वेस्ट करने से अच्छा है हम कम इन्वेस्ट करें, कम इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करें, लेकिन जो हमारे को समझ में आता है उस चीज पे हम इन्वेस्टमेंट करके चलें। और जितना हम प्लानिंग से चलेंगे उतना हम लोन्स की तरफ कम हमारा रुझान रहेगा, जितना लोन्स की तरफ कम रुझान रहेगा उतना हम इंटरेस्ट कम पे करेंगे, और उतनी हम मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड, कभी हमने सुना है? तो जितना हम सेविंग्स और जितना हम अपने से सक्षम होके चलेंगे उतना हमारा आगे आने वाला वक्त सही तरीके से गुजरेगा। सो दिस वाज सम टिप्स, सम सेशन ऑन दैट। कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहता है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, दे आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं, वी कैन टेक दैट आल्सो।
6: मैम, इट वॉज सच अ वंडरफुल सेशन मैम, एंड मोस्ट नीडेड ऑफ द आवर मैम. वी कैन रियली, एज यू सजेस्टेड, वील रियली टेक इट टू द बेनिफिशरीज ऑल्सो.
1: यस, क्योंकि मैम सभी लोग काम इसीलिए करते हैं कि अपना फ्यूचर ब्राइट करके चल सके, खुद का फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर, अपनी फैमिली का, कोई इमरजेंसी हो तो हमेशा पैसे को लेके हर किसी का चैलेंज ही रहता है, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, हमेशा चैलेंज ही रहता है। सो दिस इज वन थिंग जिसमें हम कितनी ही बात कर लें वो बात कम ही, मतलब उसमें कोई श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है, लेकिन हम जितना आपस में शेयर कर सकते हैं तरीके, उससे हमें कुछ ना कुछ टिप्स ऐसी मिलेंगी शायद कि हम बेटर फंड मैनेज कर सकें अपने खुद के, अपने परिवार के। एंड दिस शुड बी अ हैबिट, मोर मोर ऑफ अ हैबिट टू मैनेज, टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज आवर नीड्स, बिकॉज आजकल काफी इम्पल्स परचेजेस बहुत ज्यादा हो रही हैं, स्पेशली यूथ यूथ को लेके ये कंसर्न है, काफी पेरेंट्स का, जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनका भी ये कंसर्न रहता है, हमारा खुद का ये कंसर्न रहता है कि आगे जो बच्चे हैं वो बहुत मनी की जो रियल वैल्यू है उसको समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, उस पर काफी डिबेट चलता है। तो दिस इज अ बिहेवियर चेंज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट मनी फॉर अस, फॉर एज ए इंडिविजुअल। थैंक यू मैम, मैं बहुत बोल चुकी हूँ, अभी कोई और बोलना चाह रहा है? एनीबडी वॉन्ट्स टू एड प्लीज डू दैट।
6: गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड आफ्टरनून अर्चना जी।
6: जी मैम, मैम अभी आपने बात करी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे सेंटर पे मेकअप आर्टिस्ट की ट्रेनिंग हुई थी, तो उसमें से तीन बच्चे बहुत ही अच्छी तरह, उसमें उनको पहले से भी आता था कुछ, और फिर उन्होंने ट्रेनिंग ली तो उनको बहुत अच्छे से आ गया। तो अभी तो जो बात हुई कि घर में हम किस तरह से मैनेज करते हैं, सबका अपना अपना नीड है, बेसिक नीड के अलावा भी बहुत सारे नीड होते हैं, फिर बहुत सारे वे हैं जहाँ पे वो सेविंग कर सकते हैं, करते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत अच्छा है लगा, और ये सुन के कि हमारे पास नए आइडियाज भी आए। और मैम वो आपने अभी बात करी थी तो हम मेट्रो सिटी का तो नहीं पता, लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें मैं उनकी बात बता रही हूँ, फिर मैं अपनी बेनिफिशरीज की बात बताऊंगी कि उन्होंने क्या किया है। तो मैम मेरे सोसाइटी में, मैंने आपने भी बात जो की हुई थी उससे ही है कि पहले के जो हमारे पहले के जनरेशन के थे, पिछले जनरेशन के, वो अपनी सारी नीड को किल करके, मतलब जो जो बहुत जरूरी है, सर्वाइव करना, खाना पीना, ये सब, यहाँ तक कि मैंने देखा वो कपड़े भी नहीं पहनते थे, अपने सारे नीड को किल करके और पैसे जमा करते थे।
1: बिल्कुल
6: फिर जो हमारा जनरेशन है उन्होंने देखा कि अरे वो तो सारे कुछ भी नहीं करते थे और फिर ऐसे ही चले गए दुनिया से। नहीं, हम लोग को ना अपना भी करना चाहिए और सेविंग भी करना चाहिए, यानी हम खाएंगे पियेंगे अच्छे से रहेंगे और थोड़ा सा सेविंग भी करेंगे। तो
1: बिल्कुल
6: हमें लगता है अभी का जो जनरेशन है ये दोनों चीज और इंजॉय भी कर रहे हैं ठीक ठाक। मैं मैम मिडिल क्लास, और मतलब मैं जो कम्युनिटी में रहती हूँ उसकी बात कर रही हूँ, और दूसरे जगह मुझे उतना नहीं पता, लेकिन कहीं कहीं से मैथ्स तो करता ही होगा, तो उसने करी। अब जो हमारा अगला जनरेशन आने वाला है उनको तो मनी वैल्यू पता ही नहीं है, वो जो भी अर्न करेंगे वो सारा का सारा खर्च करेंगे जैसे दिख रहा है। तो मैम हमें, मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों को और जो भी हमारे आसपास जुड़े हैं उनको ये सिखाना चाहिए कि वैल्यू क्या होती है, मनी वैल्यू। इसके लिए तो हमको घर से लेकर के और जहां भी हम काम करते हैं वहां तो दिखाना पड़ेगा ना कि मैम, मतलब ऐसे ही हम कहीं भी किसी भी चीज के लिए एक बार मन किया खरीद लिए, तो हमको जो खुद
1: बिल्कुल
6: वैल्यू नहीं है तो वो बच्चे क्या सीखेंगे। वो तो मेरी मेरी सिंगल चाइल्ड है तो वो तो यही समझेंगी ना, मम्मी को जब जरूरत होता है तब खरीद लेती है तो मेरे भी पास ही आ जाएगा, क्योंकि पैसा इसके पास है तभी तो आ रहा है। जब हम अपने
1: बिल्कुल
6: ऊपर नहीं कमांड करेंगे तो बच्चे तो यही सीखेंगे कि अच्छा मम्मी ने 20,000 का फोन लिया, ठीक है मैं भी जब कभी बोलूंगी मुझे तो 10,000 का आ जाएगा। तो मैं बच्चों के लिए भी ये करती हूँ कि मैं अपने, मेरी सिंगल चाइल्ड है, मैं फिर भी देर करती हूँ थोड़ा सा कि देखो अच्छा ठीक है आ रहा है, आ जाएगा 1-2 महीने में आ जाएगा या 15 दिन में, बहुत ज्यादा नीड है, एजुकेशन से जुड़ी है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ इंजॉय करने की चीज है तो आ जाएगा। तो ये हुई, तो मैम सबके अलग अपने अपने वो नीड है और अपने अपने तरीके हैं, तो सब करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मैं करती हूँ वो करते हैं एक ही पर्टिकुलर, सभी आजकल करते हैं सेविंग जो अपना स्टेज वो पार कर चुके हैं 25 वाला, क्योंकि 25 तक तो सब। हाँ हाँ जी मैम, तो मैंने बेनिफिशरीज को मैम देखा वो मैं कर रही हूँ, और मैं सभी से, आपसे भी मैम गुजारिश करती हूँ कि यदि कोई बहुत अच्छा टिप हो तो वो आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो बेनिफिशरीज ने तो हमारे यहाँ क्या हुआ, मैंने वो एसटीएस से शेयर किया हुआ था, जो हम 4 जन जिसमें से 3 बच्चे बेनिफिशरीज और एक मैं हूँ, 4 का ग्रुप बनाई और फिर हमने प्लान किया और हमने अपना पार्लर खोल लिया।
1: अरे वाह,
6: हाँ हाँ मैम, तो पार्लर में खोल लिया। अब इसका ये आया कि भाई सेटअप तो मेरे पास पहले से जो सेंटर का ये दिया हुआ है तो सेटअप सारा मेरे पास पहले से था, उसमें कुछ प्रोडक्ट लाने थे और जैसे बोर्ड बनाना, कुछ बेसिक जो होता है थ्रेडिंग वगैरह के लिए, फेशियल के लिए, वो सारे प्रोडक्ट लाने थे, और फिर थोड़ा सा वो एडवर्टाइज के लिए कुछ पैसे खर्च करने थे। तो हम लोगों ने प्लान किया कि घर से यदि लाओगी तो बेनिफिशरीज के तो गार्जियन पूछेंगे कि भाई तुम क्या कर रही हो, ये वो सब कुछ तो है, हमारे यहाँ रूम है, इलेक्ट्रिसिटी है और बच्चे भी आ रहे हैं। तो हम लोग ये काम करते हैं, कुछ पैसे हम लोग अपने में जितना भी सेविंग है 500 या 1,000, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट की हूँ मैम, तो हम लोग ले आते हैं। इसके बाद हमारा जो पैसा आएगा तो उसमें से एक बेनिफिशियरी जो ग्रेजुएट है वो बोली कि हमारे पास जो कमाई के कुछ पैसे आएंगे, जैसे कि अभी दिवाली छठ चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो आएंगे ही हमारे पार्लर में, क्योंकि अभी उतना ज्यादा मैम प्रचार नहीं हुआ है, बहुत कम लोगों तक पहुंचा है कि यहाँ की पार्लर खुल गया है। तो उस पैसे से हम और प्रोडक्ट जो भी मतलब जरूरी है थोड़ा बड़ा करेंगे उसको, फिर हम पैसे शुरू करेंगे अपने पास रखना। तो मुझे आइडिया ये अच्छा लगा मैम, और इस छठ में मुझे लगता है उन लोगों ने 500 कुछ अर्न किया है और उससे वो सामान ही लाई है, कभी फेशियल का कुछ तो मैनिक्योर का, पेडिक्योर का कुछ प्रोडक्ट सभी। तो मुझे लगा कि वो ग्रेजुएट बच्ची है, गांव की है, लेकिन फिर भी इतना मतलब कि सोच रही है, तो मुझे अच्छा लगा कि आजकल के बच्चे भी थोड़ा सा ये ध्यान दे रहे हैं कि मुझे अभी उसमें से खर्च नहीं करना है, अभी मुझे अपना वो पार्लर सेट करना है।
1: वेरी नाइस अर्चना जी, थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली जो मैंने कोशिश कर रही थी, मुझे लगा कि मैं जो बोल रही हूँ शायद मैं सही से नहीं समझा पा रही, लेकिन आपकी इनपुट से मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि यही बात हम लोग करना चाह रहे हैं कि जनरेशन दर जनरेशन एक तो नीड्स और वांट्स बदलती जा रही हैं, और जब हम खुद पे नहीं कंट्रोल कर पाते हैं कभी कभी खर्चा करने के लिए, तो हम अपने बच्चों को कैसे बोल सकते हैं, या अपने जो हम जो जो हमें अपना एज ए मॉडल देखते हैं, या जो हमें सोचते हैं कि ठीक है अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी फिर ऐसा ही करना है, चाहे वो बेनिफिशरीज हो गए, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे आप सेंटर में अगर एक लीडर के आप सभी लीडर हैं अपने अपने सेंटर्स के, तो चाहे आप सेंटर पे एज ए लीडर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो वेरी ब्यूटिफुली शेयर्ड एग्जाम्पल की किस तरीके से हम एक तो खुद को एज ए रिप्रेजेंटेटिव मान के हम खुद से अपनी मनी मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से करें, और दूसरा जो आपने एग्जाम्पल दिया कि छोटे से ग्रुप ने कैसे एक फंड क्रिएट किया आपस में मिल के और एक छोटा सेंटर शुरू किया, लेकिन आइडिया है कि उसको धीरे धीरे करके उसी फंड से कैसे हम बड़ा करेंगे।
6: हाँ जी
1: दैट इज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ यू नो बजट मैनेजमेंट। घर का भी आपने बता दिया और अपने एंटरप्राइज का भी बता दिया। थैंक यू अर्चना जी।
6: थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैम प्लीज सजेस्ट कीजिएगा आप इसमें कि बच्चे कर रहे हैं इससे भी कोई अच्छा होगा कि हम कैसे उसको आगे ले जा सकते हैं, तो मैम इसके लिए बहुत ये रहेगा।
1: ठीक है जी, ठीक है, विल टॉक सेपरेटली फॉर दैट।
6: थैंक यू
1: थैंक
6: मैम।
1: यू। ओके, सो आई होप दिस सेशन वॉज अ लिटिल हेल्पफुल टू समबडी। हो सकता है शायद किसी ने कुछ सीख के इससे कुछ अपने आज से या पहले से कर रहे हों तो उसको रीइंस्टेट करें और उसको अपने बिहेवियर में लेके आए. एंड आई होप यू शेयर दिस सेशन विद योर बेनिफिशरीज, स्पेशली टू द यूथ, क्योंकि जैसे अर्चना जी ने कहा जो 25 साल से ऊपर है उनको तो कहीं ना कहीं हैबिट लग गई है, लेकिन ये हैबिट हमें शुरू से ही अपने, मैं सेविंग्स की बात नहीं कर रही, मैं आइडेंटिफिकेशन और उसमें फर्क की बात कर रही हूँ कि हमारी जरूरतें क्या हैं और हमारी इच्छाएं क्या हैं. इन दोनों चीजों में, जरूरतों में और इच्छाओं में फर्क करना बहुत जरूरी है. और अपने लेवल को पहचानते हुए, लेवल एज इन अपने सिचुएशन को, एज ए स्टूडेंट, अपने सिचुएशन एज अ होम मेकर या एज अ एंटरप्रेन्योर या फार्मिंग को लेके जो हमारी जरूरत है उसको पहचानते हुए अपने बजट्स को कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर हमने आज बात करी है. सो थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इट एट शॉर्ट नोटिस. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई होप दिस इज हेल्पफुल. बाय बाय. थैंक यू.
6: वेरी हेल्पफुल मैम. थैंक यू सो मच.
7: थैंक यू मैम.
4: थैंक यू मैम.
1: थैंक यू.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर निधि गुलाटी रीड इंडिया लखनऊ से आपके साथ आपके लिए कुछ सिखाने और सीखने के लिए ये कार्यक्रम आओ सीखे के अंतर्गत आप तक लाया गया है। श्रोताओं, आज का विषय है स्ट्रेस यानी कि तनाव। तनाव क्या होता है, तनाव का क्या कारण है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। श्रोताओं, जैसे कि हम जानते हैं कि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में तनाव हम सब के लिए बहुत आम हो गया है और बहुत सारे लोग इस तनाव से जूझ रहे हैं। हर रोज़ हम सभी अपनी ज़िंदगी में तमाम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कई बार ऐसी हालत आ जाती है कि हम चाहकर भी संभाल नहीं पाते हैं। तनाव होना एक सामान्य बात है। ये तब महसूस होता है जब किसी स्थिति से निपटना मुश्किल हो जाता है। तनाव होने पर हमारे शरीर में एड्रेनलिन, जो एक किस्म का हार्मोन है, वो पूरे शरीर में दौड़ने लगता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, मानसिक और शारीरिक चेतना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमें पसीना आने लगता है, सनसनी महसूस होने लगती है और कई बार शरीर में रोएं भी खड़े हो जाते हैं। श्रोताओं, अक्सर हमने ये सब देखा होगा पर हमें महसूस नहीं होता है कि हम तनाव में होते हैं। अगर तनाव लंबे समय तक रहता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और हृदय को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके अलावा हमारी बीमारियों से भी निपटने की क्षमता कमज़ोर होती है। इसका मतलब साफ है कि तनाव उस वक्त और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब आपको हर 5 मिनट में करो या मरो की स्थिति में जाना पड़ता है। क्या इस स्थिति में निपटने का कई आसान तरीका हो सकता है? ये काम हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम ये पता लगा सकें कि जो हम महसूस कर रहे हैं उसका कारण क्या है, तो हम मुश्किलों से अधिक स्पष्ट तरीके से निपट सकते हैं। आइए श्रोताओं, जानते हैं अब कि ज़्यादा तनाव लेने से क्या होता है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है, गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है और उम्र कम हो सकती है। तनाव के कारण कई गंभीर मानसिक समस्याएं हो जाती हैं। यही वो कारण है जिसकी वजह से कई बार हम लोग काम करते हुए भी लंबे वक्त तक काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्यों होता है स्ट्रेस। आजकल जैसी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में तनाव एक आम बात हो गई है। इंसान एक दूसरे को देखकर भी तनाव पैदा कर लेते हैं। तो क्यों होता है ये तनाव? आपके काम को लेकर आपको तनाव होता है, बेरोजगारी पे पैसा, नौकरी में बदलाव होना, बच्चों का घर छोड़ना, मौसम, आपके मूड को लेकर आपको तनाव होता है, बुरी आदतों का शिकार होना, हिंसा या बुरे व्यवहारों का शिकार होना, ऐसे कई कारण हैं जिससे हमें तनाव होता है। थोड़ी देर के लिए जीवन में उतार चढ़ाव आना बहुत आम बात है, लेकिन अगर ये लंबे वक्त तक बनी रहे जो ये जीवन से जुड़ी बाकी चीज़ों को भी ख़राब कर सकती है। वैसे भी तनाव

0: खुद को बदलने की ज़रूरत होती है।
1: श्रोताओं, अगर हम तनाव में होते हैं तो अक्सर हम उनको ढूंढते हैं जिनके साथ हम अपने दिल की बात को बांटते हैं या अपने दिल को हल्का करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है। जब तक हम अपनी दिल की बात किसी को बताएंगे नहीं, तो हमारे दिल में से तनाव या हमारे मन में से तनाव ख़त्म नहीं होगा। हम सभी जानते हैं, जब हम किसी के साथ बहुत मिले हों, जुड़े हों या उनसे बहुत प्यार करते हों और उनके साथ अपनी दिल की बात शेयर करने में हमें बहुत अच्छा लगता है। यकीन मानिए, कई बार जब हम तनाव में होते हैं तो आसान से भी उपाय हमारे दिमाग में नहीं आते हैं, लेकिन दूसरे वही बात सुनकर हमें ऐसे रास्ते सुझा देते हैं जो हमारी हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। इसलिए दूसरों के सामने ईमानदारी से बात रखिए और दोस्तों को हर वो बात बता दीजिए जो आपको परेशान कर रही हो। श्रोताओं, अब हम जानते हैं कि तनाव के प्रबंध क्या होते हैं, इसके कुछ टिप्स होते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ वो क्या होते हैं। सभी एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में रहते हैं, चाहे उसकी कीमत तनाव भरी ज़िंदगी के रूप में चुकानी पड़ती है। तनाव हमारे स्वास्थ्य और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालता है और धीरे धीरे खोखला बनाता चला जाता है। तनाव हमारे मन पर, हमारी सोच पर प्रभाव डालता है। तनाव हमारे शरीर और दिमाग पर भी जोर डालता है। हर वो इंसान जो तनाव में है, उसको कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके लिए उसका तनाव कम हो सके। आइए जानते हैं, तनाव पर विजय पाने के लिए सबसे पहला उपाय है आत्मविश्वास। हर इंसान को अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि वो कोई भी काम गलत नहीं कर रहा है, और अगर गलत कर भी रहा है तो उसको सही करने में उसको कोई संकोच नहीं होगा। हर वो इंसान जो तनाव में है, उसको सुबह सुबह सूर्य नमस्कार या कुछ योग आसन करने चाहिए जिससे उनका मस्तिष्क शांत रह सके और वो आगे का अपना दिनचर्या अच्छे से कर सके। हर वो इंसान को गायत्री मंत्र का जाप भी करना चाहिए। गायत्री मंत्र का संबंध सूर्य से है। यदि नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो मन को बल प्राप्त होता है और व्यक्ति कठिन समय में विचलित नहीं होता है। गायत्री मंत्र आत्मा की शुद्धि करता है। ये वो गुण है जो किसी भी समस्या को लड़ने की और परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने की ताकत देता है। हमें अपने लिए जीना चाहिए। अपनी इच्छाओं और अधिकारों के प्रति हमें सजग रहना चाहिए, ना कि हमें दूसरों की इच्छाओं और अपेक्षाओं के लिए जिए, क्योंकि दूसरों की इच्छाओं पर आप कभी भी पूरे नहीं उतर सकते। खाने का रखे ध्यान। तनाव को कम करने के लिए थोड़ा खाएं और आराम से खाएं। भाग दौड़ कर खाना, बेसमय खाना, अधिक खाना, शराब का सेवन लेना तनाव को बढ़ाता ही है, कम नहीं करता। अगर आप तनाव में हैं तो चाय कॉफ़ी का सेवन अधिक ना करें। चाय कॉफ़ी में पाया जाने वाला निकोटिन तनाव बढ़ाता है। आपने तनाव को कम करने के लिए कोई भी बुरी आदत ग्रहण ना करें। इससे अच्छा ये है कि व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, यानी कि ध्यान लगाएं। इससे तनाव कम होता है। गाने सुनें। गाने सुनने से भी मस्तिष्क को आराम मिलता है और वो शांत रहता है। हल्का शांतिदायक गाना सुनने से और उस पर नृत्य करने से तनाव अपने आप ही दूर हो जाता है। क्या है आपका मनपसंद काम? जब भी स्वयं को काम से बोझ तले दबाव महसूस करें, सभी काम छोड़कर सोचें कि इसमें से मेरा मनपसंद काम क्या है। पहले उसे पूरा करें, दूसरा काम बाद में करें, ताकि बोरियत ना हो। आप तनाव प्रबंधन तकनीक अपना कर अपने बर्ताव और अपने लाइफस्टाइल और अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आपने स्थितियों को बदलने की शक्ति नहीं है, तो आप कम से कम अपना नज़रिया तो बदल सकते हैं। बिना बदलाव के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। अच्छी आदतों को अपना कर और पॉजिटिव सोच रख कर और कमज़ोरियों को दूर करने की कोशिश करें। हर चीज़ को लेकर पॉजिटिव रहें। तनाव को अपने आप से दूर करने की कोशिश करें। टहलने जाएं और अपने दोस्तों से मिलें। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं जिसका मुकाबला हम नहीं कर पाते हैं। हमें मालूम होता है कि इसका सामना हमारे बस में नहीं है। ऐसी चीज़ों के बारे में अधिक सोचना व्यर्थ है, क्योंकि चाहकर भी हम कुछ नहीं खास कर सकते। किसी दूसरे का

0: में अपना मन लगाएं और तनाव से दूर रहें। लंबी सांस लें, इससे आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं और गलत निर्णय लेने से खुद को बचा सकते हैं। शांत रहें। कई इंसान बेवजह बोल रहे होते हैं, उनकी बातों को ना सुने, उनका तनाव अंदर से बोल रहा होता है, तो ऐसे में आप शांत रहें और वहाँ से कहीं और चले जाएं। विटामिन सी का प्रयोग करें, ये एक हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट है जो प्राकृतिक रूप से तनाव को हराता है। गाजर, संतरा, मौसम्बी, नींबू, खट्टे फल अपने आहार में शामिल करें। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगे और आप अपने ज़िंदगी में तनाव से दूर रह सके और दूसरों को भी बता सके कि तनाव से दूर रहना कितना ज़रूरी है और सेहत के लिए अच्छा है। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: बिना एसी का नाम
1: इसे क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बबलू?
0: ऑफ कोर्स, मुझे क्या हुआ है? एनीवेज, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस कोकिला एमबीबीएस। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ?
1: तुम्हें तो रातों रात ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं।
0: हाँ, एक्चुअली लाइफ में पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि किसी के काम आने में कितना आत्मिक सुख मिलता है।
1: अच्छा,
0: एक्चुअली मेरे एक दोस्त को बहुत जरूरी काम से अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया, तो पूरे एक हफ्ते मुझे उसकी बूढ़ी दादी की देखभाल करने का मौका मिल गया। अभी मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना कोकिला, वृद्धावस्था में पहुंच चुके लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? गठिया। दादी जी भी इसी की मरीज हैं।
1: ओ तो ये बात है। और अगर मैं ठीक गेस कर रही हूं तो आज शायद तुम गठिया यानी आर्थराइटिस के बारे में विस्तार से जानना चाहोगे, राइट?
0: ऑफ कोर्स।
2: हर रोज ना जाने कितनी बार आप झुकते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं। आप कभी नहीं सोचते आप ये सब इतनी आसानी से कैसे कर पाते हैं। सच मानिए, जब सब कुछ ठीक से चल रहा होता है तो आप चाहे जैसे अपने शरीर का इस्तेमाल करते रहते हैं, और इस लापरवाही का नतीजा निकलता है उफ, आह, आउच। हमें ये मोबिलिटी यानी गतिशीलता और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जॉइंट से। चलिए एक बड़ी मशीन के जरिए समझते हैं हमारे जॉइंट्स यानी जोड़ों की बनावट।
3: बड़ी बड़ी मशीनें भी हमारे जॉइंट्स की नकल करके बनाई गई हैं। मशीन ठीक से काम करे इसलिए इसकी रेगुलर ऑयलिंग की जाती है। ऑयलिंग नहीं की तो मशीन के जॉइंट्स घिस जाएंगे और काम ठप हो जाएगा।
2: ग्रीस के इस्तेमाल से मशीन के जॉइंट स्मूथली काम करते हैं। इस मशीन की तरह हमारे जॉइंट्स को भी ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है, और ये ऑयलिंग हमारे जॉइंट्स में नेचुरली होती है।
3: हमारे शरीर के जॉइंट्स को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है बॉल और सॉकेट जॉइंट्स, जैसे शोल्डर और हिप जॉइंट्स। दूसरा वर्ग है हिंज जॉइंट्स, जिनमें शामिल हैं एल्बो, नी और एंकल जॉइंट्स। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स में जहां रेंज ऑफ मूवमेंट अधिक होती है, वहीं हिंज जॉइंट्स में रेंज ऑफ मूवमेंट लिमिटेड है।
2: इसको समझने से पहले आइए समझते हैं हमारे जॉइंट्स की संरचना। हमारे शरीर में दो हड्डियां जहां एक दूसरे से जुड़ती हैं, उनके जॉइंट्स पर एक नाजुक कवर होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। इस गद्देदार कार्टिलेज से जॉइंट्स का लचीलापन भी बना रहता है, जिससे जोड़ों को मोड़ने में आसानी होती है। हड्डियों का जोड़ एक कैप्सूल जैसी संरचना में सुरक्षित रहता है। इस कैप्सूल पर पतली टिश्यू की परतें होती हैं, जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम भी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन ही करते हैं। दरअसल साइनोवियल मेम्ब्रेन एक चिकना फ्लूइड पैदा करते हैं जो जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम करता है और हड्डियों को रगड़ से बचाता है, और इसके साथ साथ कार्टिलेज और हड्डी को नरिशमेंट यानी पोषण देता है। अगर किसी वजह से कार्टिलेज घिस जाए या उसमें किसी तरह का बदलाव आ जाए तो जोड़ों में स्टिफनेस यानी अकड़न और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होने लगती है, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। जोड़ों को कई वजहों से नुकसान पहुंच सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कई बार आर्थराइटिस से जॉइंट्स की शेप ही बदल जाती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और इससे बेहद दर्द भी होता है। गठिया या आर्थराइटिस का शाब्दिक अर्थ है जोड़ों की सूजन या इन्फ्लेमेशन। बुढ़ापे की दहलीज पर तो आर्थराइटिस जैसे हमारा इंतजार करते मिलती है। उम्र के साथ शरीर जर्जर होता जाता है, जोड़ों के सिरों की कार्टिलेज भी घिस जाती है। कार्टिलेज के घिसने से जॉइंट्स के जोड़ों में रगड़ से दर्द होता है। संतुलित आहार न लेने से शरीर में कैल्शियम की कमी से बोन की डेंसिटी यानी घनत्व कम हो जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फैटी फूड खाने से शरीर का वजन बढ़ने लगता है, मतलब जोड़ों को ज्यादा और ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है, और एक वक्त आता है जब शरीर में हड्डियों के ये जोड़ जवाब देने लगते हैं। इसके अलावा कुछ और किस्म की आर्थराइटिस भी हैं, जो किसी भी उम्र के लोगों में पाई जा सकती हैं।

0: वेलकम बैक। एपिसोड के इस भाग में हम बात करेंगे आर्थराइटिस के टाइप्स की। हालांकि आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन
1: कोकिला मुझे अब तक एक बात समझ में नहीं आई, आखिर आर्थराइटिस होने की वजह क्या है?
0: बिल्कुल ठीक पॉइंट पर आए तुम बबलू। एक्चुअली एजिंग आर्थराइटिस की एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे रीजंस हैं जो आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी की बड़ी वजह बन सकते हैं।
2: आर्थराइटिस के ज्यादातर मामले क्रॉनिक होते हैं, यानी लंबे समय तक इस बीमारी से जंग लड़नी पड़ती है। जोड़ों में दो हफ्ते से ज्यादा दर्द या स्टिफनेस और सूजन का मतलब है जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेने की चेतावनी। हो सकता है आप आर्थराइटिस के निशाने पर हों। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इस बीमारी की ज्यादा शिकार होती हैं। महिलाओं में ये बीमारी पुरुषों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा पाई जाती है। समय पर इलाज से इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इस बीमारी के लक्षण कभी तो अचानक सामने आते हैं और कई बार सिम्टम्स लंबे समय में धीरे धीरे दिखाई देते हैं। आर्थराइटिस के प्रमुख लक्षण हैं जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न। लेकिन सिर्फ डॉक्टर ही तय कर सकता है कि आर्थराइटिस है या नहीं, और अगर है तो किस तरह की, और फिर तय किया जाता है ट्रीटमेंट प्लान। आर्थराइटिस वैसे तो कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर आर्थराइटिस 4 तरह से हड्डियों पर हमला बोलती है। पहला ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा गॉटी आर्थराइटिस, तीसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस और चौथा इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। पहले बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। इसे बुढ़ापे की बीमारी भी कहते हैं। बुढ़ापे में जॉइंट्स भी बूढ़े हो जाते हैं। हड्डियों में कैल्शियम की कमी से बोन डेंसिटी यानी हड्डियों में मिनरल्स कम होने लगते हैं और हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। कार्टिलेज भी सालों के इस्तेमाल से घिसती जाती है और बची खुची कसर कमजोर मसल्स पूरी कर देते हैं। वीक मसल्स जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव को ज्यादा रोक नहीं पाते, जिससे कार्टिलेज रगड़ खाते हैं और घिस जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में शरीर के बड़े जॉइंट जैसे कंधे का जॉइंट्स, घुटनों का जॉइंट, हिप जॉइंट और रीढ़ की हड्डी पर यह बीमारी ज्यादातर असर डालती है। लगातार हड्डियों में रगड़ होने से जोड़ों में टूट फूट या रिसाव भी होने लगता है। कभी कभी तो कार्टिलेज असामान्य रूप से हड्डियों के किनारे पर बढ़ जाता है, जिसे बोनी स्पर्स कहते हैं। और अब बात करते हैं गाउटी आर्थराइटिस की। ये आर्थराइटिस हमारे मेटाबॉलिज्म में होने वाली गड़बड़ी से पैदा होती है। मेटाबॉलिज्म में खराबी के चलते हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये यूरिक एसिड जब किसी जॉइंट पर जमा हो जाते हैं तो वहाँ तेज दर्द होता है। इस आर्थराइटिस का असर ज्यादातर छोटे जॉइंट्स पर जैसे पैर और हाथ के अंगूठे पर होता है। अक्सर किसी पैर के अंगूठे के जॉइंट में बहुत तेज दर्द होता है, रोगी को पसीना आता है और शिवरिंग महसूस हो सकती है। जॉइंट के ऊपर की त्वचा बाद में काफी नाजुक और लाल हो जाती है। खाने पीने की कुछ चीजों से ये बीमारी बढ़ सकती है, जैसे कि अधिक शराब पीने से गाउटी आर्थराइटिस के पेशेंट्स में बीमारी और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इन्फेक्टिव आर्थराइटिस की। इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट्स में सूजन होने लगती है और इसे इन्फेक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। अक्सर जो जॉइंट इस बीमारी का शिकार होते हैं वहाँ पहले कभी चोट लगी होती है, जिस कारण वहाँ जर्म्स इन्फेक्शन फैलाने में कामयाब हो पाते हैं। अगर समय पर इस पर काबू ना पाया जाए तो ये बीमारी लंबे समय तक परेशान कर सकती है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आर्थराइटिस कितना गंभीर रूप धारण कर सकती है। आप लोगों को एक बात बता दूं, हम में से बहुत से लोग आर्थराइटिस को वृद्धावस्था में होने वाला रोग समझते हैं, जबकि ये बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। और तो और, ये कोई एक बीमारी नहीं बल्कि 100 से अधिक बीमारियों का एक बड़ा समूह है। आइए देखते हैं क्या है आर्थराइटिस के सिम्टम्स और इस बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशंस यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं।
1: आर्थराइटिस का एक ऐसा प्रकार भी है जिसकी वजह हमारे इम्यून सिस्टम में आई गड़बड़ी होती है। दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में आने वाले किसी भी फॉरेन पार्टिकल पर हमला करता है और उसे खत्म कर हमें रोगों से बचाता है। लेकिन कई बार हमारा इम्यून सिस्टम शरीर के किसी अंग को ही फॉरेन बॉडी मानकर उस पर हमला कर देता है। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब जॉइंट्स पर असर करता है तो इसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी के बाद जॉइंट कैविटी और साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। जॉइंट की इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है, अकड़न पैदा होती है और जॉइंट के आसपास का एरिया गर्म और लाल हो जाता है। जैसे जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस का असर बढ़ता है, कार्टिलेज खिसती जाती है, कभी कभी हड्डियाँ आपस में फ्यूज होने लगती हैं। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि अर्थराइटिस केवल बुढ़ापे की समस्या है, पर ये रोग बच्चों और युवाओं को भी अपनी चपेट में ले सकता है। अगर सही समय पर इसके टेस्ट और ट्रीटमेंट नहीं कराए गए तो बच्चों को आगे चलकर चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। जुवेनाइल रिमेटॉइड अर्थराइटिस ऐसी ही एक आर्थराइटिस है जो बच्चों और युवाओं को शिकार बनाती है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस पर और बात करने से पहले जानते हैं ये बीमारी किस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस से अलग है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को शिकार बना सकती है। इस बीमारी का असर शरीर पर छोटे जॉइंट्स पर होता है, जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है और इसका असर बड़े जॉइंट्स पर होता है, जैसे कंधे का जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट आदि। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में शुरू से ही सूजन और दर्द होता है और ये समय के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन और दर्द काफी बाद में होता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में जॉइंट्स में दर्द अक्सर सुबह होता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द मूवमेंट करने से जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव से होता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। पेशेंट को दर्द कहां पर हो रहा है और दर्द कितना सीवियर है और कितने वक्त से है, ये अच्छे से समझा जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर दर्द वाली जगह की त्वचा, जोड़ और मसल स्ट्रेंथ का सही आकलन करते हैं। रिमेटॉइड अर्थराइटिस के डायग्नोसिस में एक खास तरह के ब्लड टेस्ट की भी मदद ली जाती है। दरअसल रिमेटॉइड फैक्टर, जिसे आर फैक्टर कहते हैं, एक खास तरीके का एंटीबॉडी प्रोटीन होता है जो कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट के ब्लड में पाया जाता है। हालांकि बीमारी की शुरुआत में ये आर फैक्टर एब्सेंट भी हो सकता है। इसके अलावा WBC और ESR टेस्ट के जरिए भी रिमेटॉइड अर्थराइटिस का डायग्नोसिस किया जाता है। ब्लड में सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से इन्फ्लेमेशन की प्रेजेंस का पता चलता है, इसलिए सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से भी RA की डायग्नोसिस में काफी मदद मिलती है। लेकिन ये टेस्ट रिमेटॉइड अर्थराइटिस होने के कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इस टेस्ट से सिर्फ ये पता चलता है कि शरीर में इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चल रही है। एक्सरे से रिमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण हुई सूजन और जॉइंट्स को हुए नुकसान का आकलन किया जाता है। एक्सरे से सूजन काफी हद तक निर्धारित कर इलाज के निर्णय में डॉक्टर को आसानी होती है।
0: अब तो आप समझ ही गए होंगे, आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सही ट्रीटमेंट एक सामान्य जीवन की संभावना को बढ़ा सकता है।
1: ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य कारण हैं बढ़ती उम्र, ज्यादा वजन, असंतुलित आहार और व्यायाम की कमी।
2: व्यायाम करने से जो है, जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब शरीर की मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाती हैं तो वो जोड़ों को आपस में घिसने से बचाती हैं। तो एक प्रकार से ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने के लिए और जल्दी उसको तकलीफ न होने देने के लिए उसमें काफी फर्क पड़ जाता है। और मांसपेशियां अगर अच्छी होती है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी लेटर स्टेज में कम होती है। एक तो ये कि अपना वजन संतुलित रखें और इस प्रकार का आपके जो खान पीन है उसमें इस प्रकार की है कि आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नियमित रूप से व्यायाम कीजिए ताकि मांसपेशियां आपकी स्ट्रांग हो जाएं और वो जोड़ों को घिसने से बचाएं। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो कि अपना पोस्चर ठीक रखें, आपका बैठने का तरीका, आपका लेटने का तरीका या इस तरह की चीजें जो हैं उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगा।
1: गौटी अर्थराइटिस में चूंकि मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसलिए इसे दवाइयों और खानपान में बदलाव कर काबू में किया जाता है। मरीज को शराब पीने से परहेज करना होगा और कुछ खाने की चीजों से परहेज करना होगा। गौटी अर्थराइटिस के पेशेंट्स को NS8 के अलावा कुछ खास दवाई दी जाती है, जैसे कि एलोप्रिनॉल और कॉल्चाइसिन। आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन कम करने की नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NS8 जैसे एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन दी जाती है। कुछ पेशेंट्स को स्टेरॉयड्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर जॉइंट्स में स्टेरॉयड्स के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज भी करने के लिए बताया जाता है। इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में पेशेंट्स को NS8 दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में NS8 दवाओं के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स को हीट थेरेपी भी दी जाती है। हीट थेरेपी से रक्त का प्रवाह तेज होता है और मरीज की दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ती है। आर्थराइटिस के बहुत बढ़ जाने पर कुछ पेशेंट्स को ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ती है जिनसे जोड़ों को सपोर्ट मिलता है और जॉइंट्स मूवमेंट में दर्द कम होता है। इन डिवाइसेस की जरूरत तब पड़ती है जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं। इन सर्जरीज में आती हैं नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। जॉइंट्स हमारे शरीर को मोबिलिटी यानी गतिशीलता प्रदान करते हैं। हमारे जॉइंट्स पर मौजूद नाजुक कवर को कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज से जॉइंट्स में लचीलापन आता है और मूवमेंट आसान होती है। कार्टिलेज के घिसने, उसमें बदलाव आने और इन्फ्लेमेशन होने को आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस को मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है। ज्यादातर इसका असर बड़े जॉइंट्स जैसे कंधे और घुटने के जोड़ों पर होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को अपना शिकार बना सकती है। ज्यादातर इसका असर शरीर के छोटे जॉइंट्स जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स पर होता है। संतुलित भोजन, एक्सरसाइज और वजन को नियंत्रण में रखकर ऑस्टियोआर्थराइटिस को काफी हद तक काबू में रखा जा सकता है। आर्थराइटिस के पेशेंट का सामान्यतः NSAID और स्टेरॉयड से इलाज किया जाता है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं, जैसे नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में NSAID के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है।
3: कोकिला, आर्थराइटिस पेशेंट्स की पेनफुल लाइफ को देखकर दुख होता है, क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं?
0: क्यों नहीं कर सकते, वही कर सकते हैं जो तुम कर रहे हो। यस, ह्यूमन सपोर्ट। दोस्तों, मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, मगर हम और आप भी आर्थराइटिस से जूझते लोगों की मदद कर सकते हैं। तो बस, बबलू जी की इस लाइफ के प्रति पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
3: बाय।

0: నా పేరు సరిత. మా గ్రామం పేరు కలుగుట గ్రామం. నేను కడతెట్లపల్లి గ్రామంలో రీడ్ ఇండియా ఫౌండేషన్ ద్వారా సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్స్ నేర్చుకున్నాను. దానివల్ల నాకు చాలా లాభం జరిగింది. ఎందుకంటే ఫేక్ కాల్స్ నమ్మకూడదని, ఈమెయిల్ ఐడి, గూగుల్ పే, బ్యాంక్ అకౌంట్ లాంటివి చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవచ్చు. ఇంకా దీనిని నేను మా ఫ్రెండ్స్ కి, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి, మా చుట్టుపక్కల వాళ్లకు నేర్చుకోవాలని చెప్పాను. దీనివల్ల మనకు చాలా లాభం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ రీడింగ్. మా
1: ఊరు వెళ్ళండి. మా ఊరు నుంచి నేను 5 కిలోమీటర్స్ వరకు నడిచి కడపనకంకి వెళ్లి చదువుకునేదాన్ని. అప్పుడు మా కడపనక పక్కనే కడతటపల్లి ఉంది. మా ఊరు నుంచి 2 కిలోమీటర్లు. అక్కడికి వెళ్లి నేను కంప్యూటర్ నేర్చుకున్నాను. అంతకుముందు అయితే అసలు నాకు ఓపెన్ చేయడం అసలు టైపింగ్ చేయడం అసలు ఏమీ రాదు. మా స్కూల్లో ఉంది కానీ అది ఎక్కువగా యూజ్ చేయరు, అసలు నేర్పిరు. నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా నాలెడ్జ్ పెరిగింది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 9th లో ఉన్నప్పుడు నేను నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ కాబట్టి మాకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో చాలా యూజ్ అవుతా ఉంది. నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది వెళ్లారు, వాళ్ళకు కూడా నేను అర్థమయ్యేలా చెప్పాను. కాబట్టి కంప్యూటర్ క్లాసెస్ వెళ్ళినందుకు చాలా యూజ్ అవుతూ ఉంది నాకు. ఎంఎస్ ఆఫీస్ ద్వారా పెయింటర్, పవర్ పాయింట్ ఇంకా చాలా నేర్చుకున్నాను. నాకు కంప్యూటర్ నేర్చుకున్న ద్వారా చాలా యూజే ఉంది, కానీ ఏమీ నష్టం లేదు. కాబట్టి నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది చెప్పాను. చెప్పి వాళ్ళని కూడా అక్కడికి తీసుకెళ్లి ఇంకా చాలా మంది. రీడ్ ఇండియా సెంటర్ మాకు పక్కనే ఉంది కాబట్టి మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. దానివల్ల మాకు చాలా యూజ్ ఉంది కాబట్టి మా ఫ్రెండ్స్ తో పాటు మేము అందరూ వెళ్ళి కంప్యూటర్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ రీడ్ ఇండియా.
2: హలో ఎవ్రీవన్, దిస్ ఈజ్ షాన్వి ఫ్రమ్ బారెట్పల్లి. డ్యూరింగ్ కోవిడ్ పీరియడ్ ఐ అటెండెడ్ ది సైబర్ సెక్యూరిటీ క్లాస్ కండక్టెడ్ బై రీడ్ ఇండియా. Before this class, we had no idea about such thoughts. This class helped me and surrounding people a lot. We got to know that we should not share the OTP and passwords with others. Before this class, one of my friend lost 2000 rupees, but now we all are aware of such thoughts. This class was really very helpful. We all are thankful to Read India. Thank you very much.
3: मेरा नाम रेखा सिंह है. हम कटहरी गांव में रहते हैं. हमारी उम्र 40 साल है. हम हाई स्कूल तक पढ़े हैं. जी, हमारे यहाँ रीड इंडिया का सेंटर खुला है. वहाँ पर कंप्यूटर सिलाई सबसे जुड़ा है. हम लोगों को पता चला तो हम लोग अपना भी रजिस्ट्रेशन कराए और पढ़े सीखने भी आते थे. वैसे हम लोगों को बहुत सारा चीज सिलने और काटने का आ गया. हम लोग कुछ नहीं जानते थे तो इतना सब बहुत कुछ आ गया है. मास्क वगैरह, फ्राक, कुछ बेबी मेकर और बहुत से सलवार, कुर्ता, कुर्ती, ब्लाउज, पेटीकोट बताया गया. सब कुछ काटे, अच्छे से सिले, अपना भी सिले, अपने घर वालों का सिले. थोड़ा सा हम लोगों का बचत भी हुआ.
4: मेरा नाम आकांक्षा शुक्ला है. मेरी उम्र 20 साल है. हमने यहाँ रीड इंडिया के सेंटर समराइज से सिलाई सीखी है. पहले हमें थोड़ी बहुत सिलाई आती थी. उसके बाद हम जब यहाँ सीखने आए तो हमें पूरी तरह से सिलाई आने लगी है. और पहले अपने कपड़े कहीं टेलर के यहाँ सिलवाते थे, अब हम अपने आप सिल सकते हैं. इससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आया. जब हम यहाँ सिलाई सीखने आए तो हमें कई सारी ट्रेनिंगें मिली और उससे मेरे जीवन में व्यक्तित्व में सुधार भी आया. और हम अब अपने जैसी लड़कियों को ट्रेनिंग देना चाहती हूँ.
5: मेरा नाम नैन्सी गुप्ता है. मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ. मेरी उम्र 16 साल है. रीड इंडिया सेंटर के जो कटहरी में खुला है उस पे मुझे पर्चे के द्वारा पता चला. जो रीड इंडिया सेंटर के पर्चे छपे थे वो मेरे तक पहुँचे तो मैं यहाँ पर आई और इससे जुड़ी. मेरा एडमिशन हो गया और फिर मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ, जिससे मुझे फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलने पर मैं इससे जुड़कर काम कर सकती हूँ. पहले मुझे कंप्यूटर बहुत डिफिकल्ट लगता था क्योंकि मेरे आसपास कहीं भी कंप्यूटर सेंटर नहीं थे. लेकिन जब यहाँ रीड इंडिया सेंटर खुला तो मैं कंप्यूटर में सीखी और मुझे लगा कंप्यूटर बहुत आसान होता है और मुझे कंप्यूटर के सारे डर खत्म हो गए। और मैं रीड इंडिया सेंटर का बहुत बहुत थैंक यू सो मच करती हूँ और यहाँ पर जो मैम है और टीचर है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
6: मैं विनीता मौर्य है, मैं ग्राम कटहरी में रहती हूँ, मेरी उम्र 35 साल है, एक अच्छा तक पढ़ी हूँ। मेरे गांव में रीड इंडिया सेंटर खुला है, जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ आई, अपना एडमिशन कराया और फिर सिलाई सीखना शुरू कर दिया। मुझे सिलाई करना लगभग आ चुका है, जैसे कि मास्क बनाना, बच्चों के कपड़े सिलना, औरतों के ब्लाउज सिलना, ये सब मैं कर लेती हूँ। अगर अवसर आया तो ये सब मैं सिलकर बाहर को निर्यात कर सकती हूँ।
7: कोमल पाल है, मेरी उम्र 17 साल है, मैंने रीड इंडिया सेंटर सिमराई बाराबंकी ट्रेनिंग ली है। पहले मुझे मतलब सिलाई के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, उसके बाद मैंने मतलब अपने कपड़े स्वयं सिल सकते हैं अपने पूरे घर परिवार के, और जो मतलब जो पहले था जो पैसे दूसरे को देते थे, अब वो पैसे मतलब खुद मतलब बचत कर सकते हैं। और मेरे ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया।
8: मेरा नाम विंदेश सिंह है, हमें अनेक प्रकार के हमारे जीवन में बदलाव आए हैं इस सिलाई को लेकर। और जब मैं जो भी चाहती हूँ सिलाई से संबंधित जो ग्रुप बनाकर वो आगे काम भी कर सकती हूँ, अपना सिलाई का कोई सेंटर खोल सकती हूँ या समूह बनाकर मैं इकट्ठे कपड़े सिल सकती हूँ, सिलकर मार्केट में भेज सकती हूँ, जो भी चाहती हूँ सिलाई संबंधित कार्य कर सकती हूँ।
9: असम है, मेरी उम्र 21 ईयर है, मैं बी ए द्वितीय वर्ष में पढ़ती हूँ, मेरे ग्राम का नाम कटारी चंदार है। जैसा कि मुझे पता चला कि मेरे गांव में रीड इंडिया का सेंटर खुला, उसके बाद हमने इसमें एडमिशन लिया और आज हम अच्छे से कंप्यूटर का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों को कंप्यूटर सीखने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि हम लोगों के घर से 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर सेंटर है और वहाँ पे हम लोगों को जाना पड़ता था, इसलिए घर के पेरेंट्स भी इसकी इजाज़त नहीं देते थे। उसके बाद जब से ये सेंटर खुला तब से हम लड़कियाँ आत्मनिर्भर हुए और कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जान सके। और आज स्थिति ये है कि हम लोग कंप्यूटर को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, अच्छे से चला भी रहे हैं, और ऐसा रीड इंडिया सेंटर की वजह से हुआ। कंप्यूटर को सीख कर हम आगे में रोजगार के अवसर अच्छे से खोज सकते हैं।
10: आई एम राखी फ्रॉम केलवाड़ा, मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है और इसे लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। निधि मैम ने हमें बहुत कुछ सिखाया इस ट्रेनिंग में, जैसे कि हेल्थ वर्कर क्या होते हैं, वह समूह जो हेल्थ की जानकारी रखता है उसे हेल्थ वर्कर कहते हैं। इसमें हेल्थ वर्कर का कार्य रहता है कम्युनिटी डेटा इकट्ठा करना, उसमें मतलब जन्म और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब जानकारियाँ ली जाती हैं। हमारे आसपास की सफाई भी जरूरी होती है, शारीरिक हाइजीन में होता ही है। और मैम ने बताया था कि हमें हैंड वॉश कैसे करना चाहिए, तो हैंड वॉश के मैम ने 5 चरण बताए थे जिसका हमें रेगुलर यूज करना चाहिए। यदि हम रेगुलर हाथ धोएंगे तो हमें कोई बीमारी भी नहीं होगी, हम स्वच्छ रहेंगे। तो मैम ने बताया कि हमें वो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए, लो ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर में हमें कॉफ़ी की मात्रा लेनी चाहिए क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा पाई जाती है जो हमारे लिए अच्छी होती है। मैम ने बताया शारीरिक मतलब शारीरिक क्रियाएं वगैरह जो होती हैं हमारे शरीर में, उसके बारे में बहुत कुछ बताया है जो हमने अच्छे समझाए, सबको समझाया भी है। हमारे आसपास जो व्यक्ति थे हमने उनको हमारे मतलब संपर्क में उनको बताया कि मैम ने हमें ये बताया है, आप भी इसका उपयोग करें, समय पर एंटीबायोटिक दवाएँ लें। मैम ने हमें ये जल्द से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया है, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, ORS घोल हैजा में लिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसे हमें लेना चाहिए, ये अच्छा होता है। और मैम ने COVID-19 के बारे में भी बताया था, जो चल रहा है इसे हमें बचना चाहिए, ये खांसी और छींक के माध्यम से फैल रहा है, इसलिए हमें मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा होगा। मैम ने एस्थमा के बारे में बताया था कि ये सांस की बीमारी होती है जिससे मतलब हमारी जो श्वास नली होती है वो उसमें सूजन आ जाती है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है और बलगम आता है तो मतलब सांस लेने में मतलब सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो इसके उपचार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और एंटीबायोटिक दवाओं का यूज करना चाहिए। और बस मैम ने बहुत कुछ बताया है कि हमें बहुत अच्छा लगा और मैं इस संस्था को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा है और हमें बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू।
11: आई एम पूनम कश्यप फ्रॉम जेलवाड़ा। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है और हमें इस ट्रेनिंग में कई प्रकार की बीमारियों के बारे में बताया गया है और उनकी रोकथाम के बारे में और हमें किस प्रकार से उनका उपचार करना चाहिए वो भी बताया गया है। रीड इंडिया संस्था द्वारा हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है। इसमें हमें मीना दीदी ने कई प्रकार की बातें समझाई हैं। उन्होंने हमें संस्था पर बुला करके कई प्रकार से बीमारियां जो चल रही हैं कई प्रकार की उनके बारे में जानकारी दी है। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी बट हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू। मैं रीड इंडिया का धन्यवाद करती हूँ।
12: मेरा नाम सरोज सुमन है, मैं खाकरा की रहने वाली हूँ। मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। इसमें दीदी ने बताया कि हमें किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए और कैसे हमें बीमारियों से लड़ना है और कोरोना के बारे में भी बताया और हमें ब्लड प्रेशर हाई व लो के बारे में बताया। कोरोना काल में हमें किस प्रकार से अपनी सावधानी बरतनी है, साबुन से हाथ धोना है, मास्क लगाना है, इस प्रकार हमें बताया। इससे हमें बहुत कुछ लाभ हुआ है और हमने गांव में जो लोग जानते नहीं थे उन्हें जाकर घर घर जाकर उन्हें बताया समझाया किस प्रकार हमें रहना है। धन्यवाद।
13: मेरा नाम मीना पांचाल है, मैं खाकरा गांव से रहने वाली हूँ। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है। इसमें दीदी ने कोरोना के बारे में जानकारी दी है, कोरोना काल में कैसे हमें अपना सावधानियां रखनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बताया है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, उसके बारे में बताया दीदी ने। और हमें ब्लड प्रेशर में बीपी लो हाई कैसे चेक करना चाहिए उसके बारे में, पल्स रेट के बारे में भी बताया कि हमें कैसे नापनी चाहिए, पल्स रेट का पता कैसे लगता है वो बताया। और उन्होंने पानी से होने वाली बीमारियां, हवा से होने वाली बीमारियां, घर की सफाई आदि के बारे में हमें बताया है, शारीरिक स्वच्छता के बारे में भी जानकारी दी है और हमें बहुत अच्छे से समझ में आया और इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। धन्यवाद।
14: हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशी ठाकुर है, विलेज कांकरा राजस्थान से हूँ। मैंने रीन इंडिया के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है जो डॉक्टर निधि गुलाटी द्वारा ली गई थी। निधि गुलाटी मैम ने हमें सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ वर्कर क्या होता है और कम्युनिटी से कैसे जुड़ना होता है इसके बारे में हमें बताया। साथ ही मैम ने हमें कोरोना काल में स्टे सेफ के बारे में बताया। फिर मैम ने हमें हाउ टू हैंड वॉश के बारे में बताया और फर्स्ट एड इसके हमें अच्छे से डिटेल्स में समझाए और हमें पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया और अगर हम पर्सनल हाइजीन नहीं करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स बढ़ाए। शारीरिक क्लीनिंग एंड हाइजीनिंग के बारे में हमें डिटेल में समझाया और ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया। उसके बाद मैम ने हमें पल्स कैसे चेक करते हैं इसके बारे में समझाया। मैम ने हमें अच्छे से बताया कि हमें 2 फिंगर्स को थंब के नीचे रखकर कैसे हमारी 1 मिनट तक हमें हमारी पल्स चेक करनी चाहिए। साथ ही अपना बीपी बढ़ने पर हमें ज़रूरी पल्स चेक कराने के बाद ही अपना बीपी के बारे में श्योर होना चाहिए और नॉर्मल बीपी कितना होता है, हाई बीपी कितना होता है इसके बारे में बताया। साथ ही उन्होंने हमारे बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताया और बॉडी टेम्परेचर हमारा 2 तरीके से नापे जाता है, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट से। इसके बारे में हमें मैम ने बहुत डिटेल से बताया और इसके बाद मैम ने हमें ब्लड प्रेशर के बारे में बताया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, कब होता है। मैम ने हमें बताया कि ब्लड प्रेशर हमें 1 मिनट तक चेक करवाना चाहिए और हमारा दिल 1 मिनट में 60 से 80 बार धड़कता है। साथ ही वर्कआउट या कॉफ़ी टी पीने पर हमारा ब्लड प्रेशर हमें नहीं चेक कराना चाहिए क्योंकि ये एज यूजली सही नहीं आएगा, ये गलत ही आएगा। और साथ ही हमें बताया कि ब्लड प्रेशर 2 तरीकों का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके साथ ही मैम ने हमें बताया कि ग्रामीणों में नॉर्मल क्या क्या बीमारियां होती है और उनके बारे में डिटेल से समझाया, जैसे टीवी, शुगर, पीलिया, चिकन पॉक्स, निमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, ऐसी कैंसर जैसी और भी कई बीमारियों के बारे में बताया। उसके बाद मैम ने हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया, हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है, लीवर किडनी इसके बारे में मैम ने हमें बताया। साथ ही हमारी बोन्स किस तरह से काम करती है और ये कैसे हमारी बॉडी में जुड़ी हुई है और भी काफ़ी सारी जानकारी मैम ने हमें डीपली समझाई। और ये बहुत ही अच्छी जनरेशन, अच्छे से मैम ने हमें समझाया एंड थैंक यू वेरी मच हमें इतनी सारी डिटेल्स।
15: मैं निर्मला पांचाल बोल रही हूँ और गांव भवरगढ़ की रहने वाली हूँ। और इसमें जो लॉकडाउन के दौरान रेड इंडिया की तरफ से जो ट्रेनिंग कराई गई थी उसमें हम लोगों ने भी भाग लिया था और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। हमें टेली के बारे में पहले कुछ भी मालूम नहीं था कि टेली क्या होती है, इसमें क्या सिखाया जाता है, क्या नहीं सिखाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई सूचना मतलब कोई जानकारी नहीं थी हमें। लेकिन उस ट्रेनिंग में हमें बहुत सारी जानकारी मिली है और हमने बहुत कुछ सीखा है, ऐसे बहुत कुछ सीखा है। और मैंने बीए कर रखी है और जैसे कि इसमें लागत मूल्य के बारे में सिखाया गया। लागत मूल्य वह होता है जिसमें कोई माल अथवा सेवाएं से जो करे वह प्राप्त किया जाता है, उसको लागत मूल्य कहा जाता है। वसूली मूल्य वह होता है वसूली मूल्य जिसे बाजार में कोई चीज या कोई संपत्ति को बेचकर जो राशि प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, उसको वसूली मूल्य कहा जाता है। और जैसे कि संपत्तियां के बारे में बताया गया था, संपत्ति तीन चार प्रकार की होती है जैसे कि चल अचल धरस्य अधरस्य। धरस्य संपत्ति वह होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो धरस्य संपत्ति होती है। अधरस्य संपत्ति उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सांस नहीं कर सकते, तो वह अधरस्य संपत्ति होती है। बहुत सारी चीजें की जानकारी दी गई मैम ने और बाद में हमें सभी प्रकार के जो अकाउंट होते हैं उनकी एंट्री करना सिखाया है मैम ने।
16: हेलो, मेरा नाम रिंकू कुमारी है, मैं बारा जिले के मुसिन माता गांव की रहने वाली हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन के चलते ना तो कोई कहीं जा सकता है और ना ही कहीं से आ सकता है, तो इस माहौल में रीड इंडिया के द्वारा टेली हमें जूम ऐप पर घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई गई और उसमें हमें खाता खोलने के बारे में, लेन देन के बारे में, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, इन सब के बारे में बताया गया। और मान लो जैसे कोई बिजनेस करना हो या फिर दुकान खोलनी हो तो उसका हिसाब किताब कैसे रखते हैं, और साथ ही ये भी बताया गया कि डेली डायरी मेंटेन करनी चाहिए। और भी टेली के बारे में जैसे हमें पहले कुछ नहीं आता था और कुछ समझ में नहीं आता था, फिर हमसे पहले जो लड़कियां थी उन्होंने इसके बारे में सीखा और हमें इसके बारे में बताया विस्तार से सब कुछ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कि परचेज कैसे करते हैं, माल खरीदा कैसे जाता है, बेचा कैसे जाता है, और लेन देन के बारे में बताया और उसकी एंट्री कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हमें बहुत विस्तार से और बहुत बढ़िया तरीके से बताया। और हमने उनसे क्वेश्चन भी किए और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमें सब कुछ बताया, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी रीड इंडिया को, टेली को और मैम्स को जिन्होंने हमें घर बैठे ही कोरोना काल में भी ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई। थैंक यू।
17: हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते और रीड इंडिया को मेरा धन्यवाद। मेरा नाम वर्षा है और बारा जिले के पास ही के गांव की मैं रहने वाली हूँ, समरानिया से। रीड इंडिया को मेरा धन्यवाद इसलिए क्योंकि ऐसे लॉकडाउन में टेली की ट्रेनिंग घर पर ले पाना बहुत मुश्किल था, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन फिर भी हमने टेली की ट्रेनिंग करी रीड इंडिया की तरफ से, जो कि बहुत अच्छे से कर पाए हम लोग। इतना सब कुछ सीखने को मिला हमें घर रहकर, कैसे क्या खरीदना है, कैसे क्या बेचना है, क्रय विक्रय, परचेज करना, लेन देन कैसे करना चाहिए, कैसा क्या देखना चाहिए, जो कि हम पहले नहीं सीख पाए थे। मैंने बहुत कोशिश करी थी सीखने की, लेकिन मैं नहीं सीख पाई थी। लेकिन इसमें रीड इंडिया की तरफ से जो ट्रेनर थे हमारे मैडम, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से सिखाया। जो हम भूल जाते थे वो भी बार बार उन्होंने हमें बताया। उनकी मदद से हम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर पाए। पता भी नहीं चला कि इतना टाइम कैसे निकल गया। मैडम सर सभी ने बहुत अच्छे से सिखाया। रीड इंडिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूछे सवाल, जिनके ट्यूशन जो कि हम नहीं कर पाते थे वो ट्यूशन उन्होंने पूछकर हमारी कमियां भी दूर करी हैं, जिससे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मिली है।
18: हेलो, मेरा नाम मुस्कान मलर्जी है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ रही हूँ, और मैंने जब रीड इंडिया के बारे में सुना, मेरे पापा ने आके मुझसे बोला कि वहाँ पर रीड इंडिया की ट्रेनिंग हो रही है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आई। यहाँ पे आके मैंने फॉर्म भरा और एडमिशन किया। एडमिशन करने के बाद मुझे पहले से कंप्यूटर की कुछ बेसिक जानकारी थी, फिर भी मैंने यहाँ पे फोटोशॉप और भी कई चीज़ें सीखी है। सीखने के बाद मैं यहाँ से लैपटॉप लेके गई थी। मुझे बोला गया कि यहाँ से लैपटॉप ले जाओ, और तुम और भी बच्चे, रिश्तेदार, तुम्हारी मम्मी, इनकी जो भी महिलाएं हैं उनको तुम सिखाओ। तो मैं यहाँ से ले गई और उनको मैंने सिखाया। मैंने भी उनको वही सिखाया जो मैंने सीखा था, जैसे कि यहाँ से फोटोशॉप के अंदर जैसे फिल्टर, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर करना, उसके बाद शरीर को अलग करने करके वहाँ पे चेहरा लगाना, ये सब मैंने सिखा था। जो जो मैंने वो सब अपने बच्चों को, इनके अपने स्टूडेंट को मैंने सिखा दिया।
19: हेलो नमस्कार रीड इंडिया वाले, मैं मंजू हूँ। मैं गांव परैया की रहने वाली हूँ, और मैं कक्षा 12वीं तक पढ़ी हुई हूँ। मैं महिला समूह की सदस्य हूँ, और मैं राजविका से जुड़ी हुई हूँ। हमें पता चला है कि ये रीड इंडिया वाले फ्री में कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना सिखा रहे हैं महिलाओं को, लड़कियों को। हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर कुछ सीखा है, हमने जानकारी ली है यहाँ पर, हमने यहाँ पर फोटोशॉप वगैरह सीखा है हमें, और मुझे राजीविका वालों ने CSC ID बनाकर दे दी है। तो हम मैं पैसे की लेन देन कर रही हूँ। थैंक यू रीड इंडिया।
20: रीड इंडिया माध्यम से मैं जुड़ी हुई थी, और ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया था, जो उसमें मुझे बहुत जानकारी मिली है, जैसे कि मोबाइल के बारे में, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, और बैंक का जो है, जो उसमें खाता नंबर, आधार कार्ड का नंबर किसी को नहीं देना चाहिए, उसमें नुकसान हमको ही होगा, इसलिए इसका जानकारी हमको मिला है। हम पहले से, मान लो किसी ने फोन कर दिया कि जे तुम्हारा मोबाइल में इतना पैसा है, लॉटरी लग गया तुमको, जो नंबर दे दो बैंक का या आधार कार्ड का नंबर, इसे नहीं देना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जैसे मोबाइल में फोन आए कि तुम्हारा फोटो भेजो या कुछ और भी भेजो, नहीं भेजना चाहिए, उसमें हमारा ही खराब होगा, इसलिए हम नहीं भेजते, हम इसमें सतर्क रहते हैं। और भी है बहुत सारे, जो अभी मीटिंग में हम मिला हुए थे, जो ट्रेनिंग में, जो उसमें अभी हम बढ़िया तरह से सीख गए। और मोबाइल में ऐसा करना चाहिए, उसमें इसको पासपोर्ट लगाना चाहिए, जो कोई लेके छेड़छाड़ी ना करे, और कहीं पे भी जाओ फिर भी नेट मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत खांसी भी आए, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा कम करो और अपने मोबाइल को सुरक्षित रखो। ट्रेनिंग से हमें बहुत सारी जानकारी मिला है, जो इसलिए आप सबको धन्यवाद।
21: नमस्ते, मेरा नाम काजल बाला, गांव नाटे से। मैं रीड इंडिया संस्था साइबर सेफ्टी से मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे हमें हमारे जैसे पर्सनल नंबर, मैसेज, OTP ये सब किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग नहीं करनी चाहिए। हमें बैंक संबंधी ऐसे कोई मैसेज आए उस पर हमें क्लिक नहीं करनी चाहिए। हमें जैसे और भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिले, जो भविष्य में हमारे काम आएंगे। और इसके अंतर्गत हमने जैसे हम जैसे शॉपिंग करते हैं उसके लिए अलग अलग वेबसाइट का हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए जो हमें पता ना हो, और ना ही हमें इंटरनेट पे ज़्यादा कुछ जानकारी ऐसी मतलब जो ज़रूरत ना हो ऐसी चीज़ की जानकारी भी नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत ही काम की चीज़ हमने इस संस्था में सीखी है, और ये खुद मैंने भी मतलब ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है, और मैं इसके बारे में जैसे अपनी फैमिली को अपने फ्रेंड सभी को मैं इसके बारे में जागरूक करूँगी कि कैसे सेव रखा जा सकता है हमारे बैंक अकाउंट हमारी OTP ये सब, मैं उनको भी इस सब कैसे जागरूक करवाऊँगी।
0: मेरा नाम अंकिता बंसल है, मैं भवरगढ़ 12 राजस्थान से हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन में अभी तक BSc किया है। मैंने रीड इंडिया से साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी है। इस ट्रेनिंग में मुझे साइबर क्राइम से कैसे बचे के बारे में बताया गया था, और हम किस तरह से अपने मोबाइल के डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं इसके बारे में बताया था। हम जैसे कि हमें किसी भी फर्जी ईमेल को नहीं खोलना चाहिए। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे लिंक्स आते हैं जिनमें होता है कि तुम इस लिंक पे क्लिक करो तो तुम्हें वाउचर मिलेगा, कोई गिफ्ट फ्री मिलेगा, लेकिन वो सब कुछ फर्जी होता है। कुछ हैकर्स होते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी को हार्म पहुंचाना चाहते हैं। उन लोगों के द्वारा बनाई गई साइट होती है जो कि आपके फोन में आपके डाटा को चुरा सकती है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उनके पास पहुंचा के वो आपको एक साइबर क्राइम के थ्रू ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपसे किसी भी तरह का कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से आपको कोई भी लिंक या फिर ईमेल जो भी है उन्हें नहीं खोलना चाहिए। इस ये लिंक से कभी कभी हमारे फोन में एंटीवायरस भी ला देते हैं। इसके अलावा जो हमारा पासवर्ड होता है वो लंबी डिजिट का होना चाहिए, लाइक तुम्हारा नाम हमें भी छोटा मोटा नहीं होना चाहिए। उसमें #@ ऐसे वर्ड्स यूज किए जाने चाहिए ताकि कोई उन्हें हैक ना कर सके। और इसके अलावा हमें सोशल मीडिया के सभी जो भी एप्स होते हैं उनमें प्राइवेसी रखनी चाहिए ताकि आपके बारे में ज्यादा लोगों को पता ना चले। इस तरह से हम हमारे मोबाइल डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू।
1: राठौरे, मैं भवरगढ़ की रहने वाली हूँ, और रीड इंडिया से हमें होम मेकिंग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी गई थी, और इसमें हम घर पर बैठकर इस ट्रेनिंग से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, और इससे हमें रीड इंडिया पर हमें बॉडी बैग्स और बॉडी बटर ये चीज़ें हमको सिखाई गई थी, और इनमें वो शहद, घी और वो ग्रीसलीन और डिबाम ये चीज़ों से हमने वो प्रोडक्ट बनाया था। इसको पैकिंग किया था और इसको 3 तरीके से हमने पैकिंग किया था, लिपस्टिक के शेप में और डिब्बी में और वो पोटली वाले में और रीड इंडिया में। यह सब चीज़ हमको रिया दीदी ने सिखाया था, और इसमें मीना दीदी भी थी, और हम 8-10 लड़कियों ने ये चीज़ सीखी थी। थैंक यू रीड इंडिया।
22: मेरा नाम लीना यादव है, ग्राम हरिद्वार पोस्ट बोयल तहसील सावा डिस्ट्रिक्ट 12 से बिलोंग करती हूँ। मैंने रीड इंडिया ऑनलाइन सेलिंग से ट्रेनिंग ली थी, जिसमें हमें बहुत सारे प्रोडक्ट शेयर करना, प्रोडक्ट सेलिंग करना, उन सारी चीजों के बारे में बताया गया था। हमको प्रोडक्ट कैसे सेल करना चाहिए ये हमें आना चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा कैसे शेयर कर सकते हैं, इन सब चीजों को लेके हमको उस ट्रेनिंग के बारे में बताया गया था। जैसा कि हमको सीखने को मिला, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कई सारे वेबसाइटें होती हैं जिनसे हमको ये सब कुछ शेयर करना होता है। फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर डालकर हम उसको शेयर कर सकते हैं, किसी भी जानी मानी वेबसाइट से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम अनजानी वेबसाइटों से ऑनलाइन शॉपिंग ना करें, और सार्वजनिक वाईफाई से बचें। और भी कई सारी चीजें थी उसमें, पेज बनाना ये सब कुछ था उसी में, और अपना ऑनलाइन अपना मोबाइल लैपटॉप वगैरह सब अप टू डेट रखें, और OTP वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें। ये कई सारी चीजें हम लोगों को उसी के अंतर्गत सीखने को मिली। मैं बताना चाहूंगी कि ऑनलाइन सेलिंग के बारे में हमको बहुत कुछ जानकारियां मिली हैं। थैंक यू।
23: मेरा नाम जया बंसल है,
2: और मैंने रीड इंडिया से सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखा है। उसमें मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सब पर किस तरह से मार्केटिंग की जाती है वो सब सीखी है, और फेसबुक पर पेज बना कैसे बनाया जाता है ये सब सीखा है, किस तरह से फेसबुक पर मार्केटिंग की जाती है और व्हाट्सएप पर किस तरह से प्रोडक्ट डाले जाते हैं, किस तरह से सेलिंग की जाती है और इस तरह से, और मैं करती भी हूँ, प्रोडक्ट्स डालती भी हूँ, इससे मेरी इनकम भी बढ़ी है। और इस तरह से मैंने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू रीड इंडिया।
3: मेरा नाम सुनीता, मैं ग्रेटर नोएडा से आती हूँ। मैंने सीखा है यहाँ पे तुड़पाई करना सीख लिया, प्लाजो बनाना सीख लिया और पेंटिंग बनाने के लिए बेबी पेंटिंग ये बना ली मैंने, और अब वो बना के आई अम्ब्रेला वाले बाद वो प्लाजो।
4: अभी जो यहाँ पे रीड के माध्यम से राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो भी उसमें भी आप थे?
3: हाँ, दो बार ले गए थे।
4: दो बार आप लेके गए।
23: मेरा नाम मीसा सिंह गौतम है और मैं तुगलपुर की रहने वाली हूँ, और यहाँ मैं सिलाई मशीन सीखना चाहती थी पर वहाँ कहीं दुकान वकान भी नहीं थी। अब ये तो बहुत महंगे होंगे, उसमें सिखाते थे। आसपास की लड़कियाँ सिलाई मशीन सीखने के लिए जाती थी और मैंने उनसे पूछा अभी कि आप कहाँ जाती है, तो उन्होंने बताया कि एक केंद्र खुला पड़ा है विनटेक केंद्र, तो मैं भी उनके साथ जाने लगी यहाँ से सीखने लगी। और मुझे आता भी कुछ नहीं था, मैंने तुरपाई से स्टार्ट किया था और मुझे अब सूट सलवार में बना लेती हूँ। और यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है कि अनजान इंसान मतलब अनजान जो लड़कियाँ बढ़ती आती हैं वहाँ कैसे रहा जाता है, और कोई भी मतलब बुरा बुरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं और यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब सही है। जब लॉकडाउन लगा था तो यहाँ से हमें मतलब बहुत काम वाम भी मिला था, और मैं जब भी सीखने आती थी क्योंकि यहाँ मतलब बहुत कम उसमें सिखाया था, और हमें अच्छी बातें सिखाई जाती हैं कि बाहर जाके क्या करना है। और यहाँ से मैंने अपनी एक मैंने सोचा है कि मैं जब यहाँ से पूरी मशीन सीख लूंगी, जब मुझे वो डिप्लोमा मिल जाएगा तो मैं एक दुकान भी खोलूंगी अपनी, जिस पर मैं औरों को भी सिखा सकूँ और अपना काम भी वो कर सकूँ।
24: नमस्ते आप सभी को, मेरी तरफ से मैं तनु सैफी, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने यहाँ के बहुत कुछ सीखा है। पहले मुझे कुछ नहीं आता था और यहाँ सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि यहाँ मतलब बहुत अच्छे सिलाई सिखाते हैं और यहाँ सबकी केयर भी बहुत अच्छे से होती है, सबकी हैप्पीनेस का भी ध्यान रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें सीख ली बनाने में, कपड़े में बहुत सारे कपड़े सीख लिए, जैसे सूट सलवार प्लाजो पैंट बहुत सारे।
4: खुद कटिंग कर लेती हूँ? पहले आपको कटिंग आती थी या पहले सिलाई आती थी?
24: कैंची भी चलाने नहीं आती थी।
4: कैंची भी चलाने नहीं आती थी। अच्छा, तो अभी सीखने के बाद आपका क्या है कि मैं क्या करना चाहती हूँ आप लाइफ में?
24: मैं ये दूसरों की हेल्प पहले करूँ।
4: हाँ,
24: और फिर अपनी एक छोटी सी शॉप
4: बुटीक टाइप। अच्छा, बुटीक खोलना चाहती हैं आप यहाँ सीखने के बाद?
25: मेरा नाम गीता है और मैं यही पास से तुगलपुर गांव से आती हूँ। पहले मैं यहाँ पढ़ने के लिए आती थी और लेडीजों के साथ, बहुत लेडीज पढ़ती थी, मैं भी पढ़ती थी यहाँ, और फिर पढ़ते पढ़ते एक साल सा हो गया, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे मुझे सिलाई का शौक था, थोड़ा थोड़ा घर में ही मतलब करती रहती थी और मैंने सीखा भी था कहीं थोड़ा बहुत। रीड इंडिया की तरफ से

0: इसके बारे में पहले मुझे कुछ नहीं पता था, बट अब बहुत कुछ पता है, अब मैं इसके बारे में सीख रही हूँ, सीख चुकी हूँ और जानकारियां मैं देती रहूंगी। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब पे कैसे हम ऑनलाइन सेविंग कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में मुझे पता चल रहा है।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली से हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पूना मैम का, जिन्होंने मुझे 3 इंडिया सेंटर से जुड़ने का मौका दिया। फिर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ महिपाल सर का, जिन्होंने मुझे रीड इंडिया फैमिली का हिस्सा बनाया और उससे जोड़ा, सभी को जानने का एक मौका दिया। रीड इंडिया के बारे में मैं नहीं जानती थी, बट जब यहाँ पे जुड़ी मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और जो जो मैंने सीखा वो एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि फोटोज वगैरह, एडिटिंग वगैरह, वीडियोस, शॉर्ट्स, फोटोज, ये सब लेना मुझे नहीं मालूम था। जब मैं रीड इंडिया सेंटर से जुड़ी मुझे मालूम हुआ, इन सब चीजों से मैं अनजान थी, पर जुड़ी तो मैंने एडिटिंग सीखी, वॉइस स्किल। जरूरी नहीं कि हमारे बोलने का तरीका कैसा है, हमारी वॉइस स्किल कैसे, ये मायने रखता है हम कैसे बोलते हैं, कितना उतार चढ़ाव हमारी आवाज में है, किस तरीके से हम बोल रहे हैं, जरूरी ये है। जैसा कि अब वॉइस स्किल में मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ कितना ठहराव रखना है, लेकिन जब महिपाल सर ने हमें इतना सब कुछ सिखाया, हमने सीखा भी और बहुत कुछ किया भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक में हम सभी के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। हम सभी ने आज से पहले ऐसा जीवन कभी नहीं देखा था, बट इस दौर में हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला। जैसे कि सब अपने घर में हैं, हम भी हैं, हमने इस समय में हम खाली नहीं बैठे, रीड इंडिया सेंटर से हम लोग जुड़े, फिर हमने सीखा कि ऐसे दौर में हर इंसान जब घर में बैठता है तो हर इंसान बोर होता है, दम घुटने लगता है लोगों का घर में बैठ के, लेकिन इस दौर में हमने घर में बैठ के नहीं बल्कि हमने सीखा, ऑनलाइन क्लास ली, सर से हमने बहुत कुछ सीखा। अब जैसा कि हमने बहुत सारे FM रेडियोज को सुना होगा, बट हमने सुना ही था लेकिन कभी उन्हें करीब से नहीं जाना था, लेकिन रीड इंडिया सेंटर के जुड़ने के कारण हमने इसे करीब से जाना और उसे देखा और किया। और जैसा कि हम जानते लोगों की आवाजों को सुनते हैं पर ये नहीं जानते कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, जब हम इससे जुड़े तो हमने किया तो हमें पता चला कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। हम लोगों को सिर्फ वॉइस के थ्रू हम सुनते हैं बट कभी जाना नहीं, जब किया तो लगता है कि हाँ कितनी मुश्किल है ये चीजें। बहुत अच्छा लगा ये सब चीजें जानकर, करने के बाद बहुत मतलब कि हमने किया तो बहुत एक्सपीरियंस मिला। अब जो मैं आपके सामने जो बोल पा रही हूँ ये सब महिपाल सर, पूना मैम की, इन सभी की बदौलत है कि मैं इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर बोलने का ला पा रही हूँ आप सभी के सामने। इससे पहले मैं बहुत नर्वस हुआ करती थी, बोलने मेरी आवाज भी नहीं निकलती थी। इसी के साथ मैं आप सभी से धन्यवाद लेना चाहती हूँ और रीड इंडिया सेंटर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना सब कुछ सीखने का मौका मिला।
2: हेलो, मेरा नाम तनु है, मैं शाहबाद में रीड इंडिया सेंटर से बोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो और ऑडियो एडिटिंग का कोर्स किया है। पहले हमें नॉलेज थी बट इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी अभी हमारी डेवलप हो गई है। अभी हमें यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स सीखने को मिली है जिससे हमें बहुत सारी चीजें आई हैं। अब हम यहाँ से वीडियो खुद बना सकते हैं और बहुत सारी चीजें खुद कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे आकर बहुत फायदा हुआ है, सीखने को मिला है। थैंक यू।
3: मेरा नाम रितिका है, मैं 16 साल की हूँ और मैं शाहबाद मोहम्मदपुर की हूँ। मैंने रीड इंडिया से एडिटिंग का कोर्स किया है। ये कोर्स करने के बाद मैंने इसको अपनी स्कूल लाइफ में यूज किया है। जितनी हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और जितनी भी वीडियोस एडिटिंग होती हैं क्लास की, वो सब मैं ही करती हूँ। इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। अब मैं कोई भी काम आसानी से कर लेती हूँ। हमारी स्कूल असेंबलीज होती हैं, हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो सब मैं ही देखती हूँ एडिटिंग करने के लिए। और फ्यूचर में मैं इसको अपनी करियर में यूज करना चाहूंगी। थैंक यू।
4: मेरा नाम माया श्री है, मैं 32 साल की हूँ। मैं रीड इंडिया सेंटर द्वारका सेंटर से टैली का कोर्स कर रही हूँ। मुझे टैली के बारे में पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन यहाँ रीड इंडिया सेंटर पर आने के बाद टैली के बारे में मेरी नॉलेज इम्प्रूवमेंट हुई है। इसलिए मैं अब अपनी नॉलेज को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आती हूँ।
5: मेरा नाम रंजिता जैन है, मैं 17 साल की हूँ। मैं यहाँ रीड इंडिया द्वारका सेंटर में

0: शिल्प में मैंने यहाँ बहुत सारी ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सीखा और मैं अपने फोटोज एडिटिंग आसानी से कर सकती हूँ और मैंने पोस्टर डिजाइनिंग करना सीखा और पैम्पलेट्स बनाना सीखा। मैं इसको अपनी डेली लाइफ में यूज कर रही हूँ और मैं अपना करियर ग्राफिक डिजाइनिंग में बनाना चाहती हूँ और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग बनाना चाहती हूँ।
1: मेरा नाम उपासना है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर के बारे में अपनी एक फ्रेंड से सुना। यहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स मैंने किया जहाँ पे मुझे सिखाया गया कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इन सब के थ्रू अपना प्रोडक्ट कैसे सेल किया जाए, वो भी सेफली। थैंक यू।
2: मेरा नाम रेशमा वर्मा है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। जब पहले मैं यहाँ रीड इंडिया सेंटर में एडवांस्ड कोर्स कर रही हूँ। पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती थी पर मेरे हाथ में सफाई नहीं थी और ना मुझे इतनी ज्यादा चीजें आती थी जो आजकल चल रही है। अब मेरे हाथ में सफाई भी आ गई है, जैसे जिप लगाना और चैन वगैरह लगाना, सर प्लाजो में जेब लगाना, इन सब चीजों में। और अब मैं मुझे यहाँ आके बहुत सारा कुछ नया सीखने को मिला है, जैसे पैंट प्लाजो फ्रॉक सूट ये सब। और अब मैं बहुत खुश हुई सीखने के बाद। मैं अपने सूट अपने आप सिलती हूँ और मैं अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताती हूँ कि मैं हमारी रीड सेंटर से सिलाई सीखी है और वहाँ के मैडम और बाकी स्टाफ सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे से बिहेवियर करते हैं और बहुत अच्छे से सिखाते हैं, चाहे कितनी बार भी पूछो बहुत अच्छे से बताते हैं। और अब मैं बहुत खुश हूँ, आगे जब मुझे कहीं जॉब मिलेगी तो मैं जॉब करूंगी और नहीं तो मैं अपना घर बैठ के सिलाई भी करूंगी, अपने भी बाहर के भी। और आगे कभी फ्यूचर में मिला तो कहीं और अप्लाई जरूर करती रहूंगी, जहाँ नौकरी मिले वहाँ मैं करूंगी। धन्यवाद।
3: मेरा नाम गरमा है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। मुझे पहले थोड़ा बहुत आता था और अब यहाँ पे आने के बाद मुझे सब कुछ आ गया है लगभग। अभी बस फिनिशिंग थोड़ी बहुत बाकी है, वो भी मेरी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद मैं अपना एक बुटीक खोलना चाहूंगी जिसमें मेरे पास थोड़े बहुत पैसे या कुछ भी होगा जिससे मैं अपना कुछ कर सकूंगी, अपना काम निकाल पाऊंगी और अपना कुछ करियर कर पाऊंगी। जॉब भी करना चाहूंगी, अगर मेरे को फैसिलिटी मिलेगी आगे चल के तो मैं उसको जरूर अप्लाई करूंगी।
4: मेरा नाम अर्चना तिवारी है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर गांव में रहने वाली हूँ। मैंने रेड इंडिया से स्टिचिंग एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। पहले मुझे फिनिशिंग नहीं आती थी, अब मैंने सब कुछ सूट वगैरह गले की डिजाइन बाजू सब कुछ करना सीख लिया है। अब मैं खुद से अपना कुछ करना चाहती हूँ।
5: मेरा नाम बेबी श्वेता है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रेड इंडिया सेंटर से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। पहले भी मुझे सिलाई आती थी लेकिन जब से मैंने एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है जब से मेरे कपड़ों में और अच्छी फिनिशिंग आती है, मुझे बहुत कुछ नया नया सीखने के लिए मिला, जैसे कि चोली कट ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज, अम्ब्रेला कट बाजू, बोट नेक। और पहले मुझे गले की डिजाइन वगैरह, सूटों के डिजाइन ये सब अच्छे तरीके से सिलना नहीं आता था। जब से मैंने ये एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है मुझे बहुत अच्छे से सिलना आता है, मेरे कपड़े में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब मैं अपने फैमिली मेंबर्स के कपड़े खुद ही सिलती हूँ। मेरे पास बाहर से भी कुछ कपड़े सिलने के लिए आते हैं जिससे मेरे अपने खुद की जरूरतें पूरी हो जाती है। इस एडवांस स्टिचिंग करने से मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। थैंक यू।
6: मेरा नाम मंजू है, मेरी उम्र 28 साल है। रीड इंडिया से मैंने एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी निजी जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। पहले मेरे पास स्टिचिंग के लिए कपड़े आते थे लेकिन उनमें अच्छे से फिनिशिंग नहीं हो पाती थी, लेकिन रीड इंडिया में आने के बाद मैंने फिनिशिंग के साथ साथ बहुत सारे नए नए डिज़ाइन बनाने सीखे। हाँ, मुझे नए नए डिज़ाइन सीखने को मिले जो मुझे पहले नहीं आते थे, लेकिन ये कोर्स करने के बाद मेरे पास बाहर से कपड़े सिलने के लिए भी आने लगे। रेड इंडिया में आने से पहले मुझे पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन स्टिचिंग सीखने के बाद मुझे दूसरों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि अब मैं अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ और खुद ही अपना पैसे कमा सकती हूँ। और अब मैं बाहर से गारमेंट स्टिचिंग करके अपने इनकम पा रही हूँ। रेड इंडिया में आने के बाद मुझे बहुत खुशी और सफलता मिली है।
7: मेरा नाम नीनू है, मैंने रीड इंडिया सेंटर से ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है। पहले मैं इतनी कैपेबल नहीं थी जो मैं किसी के पास बोल नहीं पाती थी, बट मैं बोलती भी हूँ और मैं एक रिसेप्शन की जॉब भी करती हूँ शाहबाद मोहम्मदपुर में। थैंक यू सो मच।
8: मेरा नाम किरण राजपूत है, मैं 49 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैंने रीड इंडिया से मार्केटिंग ऑनलाइन का कोर्स किया था, जिसका बेनिफिट ये हुआ है मुझे कि मैं अपने जो काम मैं कर रही थी उसको मैं अच्छी तरह से और प्रेजेंट कर पाई हूँ और मार्केटिंग स्केल को और अच्छे से समझ पाई हूँ कि किस तरह से हम लोग मार्केटिंग को ऑनलाइन के साथ क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स और अपनी क्वालिटीज़ को किस तरह से हम और ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों के आगे प्रेजेंट करने में हमें मुझे आसानी हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ रीड इंडिया का, जिन्होंने ऑलरेडी ये कोर्स चलाया जिससे कि हम मुझे बहुत बहुत बेनिफिट फ़ायदा हुआ है। थैंक यू फॉर द रीड इंडिया।
9: हेलो, मेरा नाम आशु है, मैं शाहबाद की रहने वाली हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के बारे में मेरे फ्रेंड से पता लगा। मैं यहाँ आई, फिर मेरी सुमन मैम से बात हुई। सुमन मैम ने मुझे बताया यहाँ पर मैं पार्लर एंड सिलाई सेंटर का भी काम सिखाया जाता है। फिर मैंने हर्बल के प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैंने हर्बल के प्रोडक्ट में लिप स्क्रब, लिप बाम एंड बॉडी लोशन, फेस क्रीम और साबुन बनाना सीखा। मैंने उसको खुद घर पे यूज़ किया और मेरी फैमिली में भी यूज़ किया। उसके बहुत ही बेटर रिजल्ट आया। एंड थैंक यू सुमन मैम एंड थैंक यू रीड इंडिया सेंटर। थैंक यू सो मच।
10: नमस्कार, मेरा नाम सरिता सुबेदी, मैं शाहबाद की रहने वाली हूँ। मुझे अपने फ्रेंड से पता चला रीड इंडिया के बारे में। जैसे मैं वहाँ जाके पता करी तो वहाँ मुझे पता चला कि हर्बल प्रोडक्ट के अलावा वहाँ पर सिलाई, कंप्यूटर और पार्लर के कोर्स भी सिखाई जाती है। जैसे मैं सुमन मैम से मिली और सुमन मैम से जानकारी ली कि यहाँ पर हर्बल प्रोडक्ट बनाने सिखाई जाती है, तो मैंने ज्वाइनिंग किया और हर्बल प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैम ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से नेचुरल, बिल्कुल बिना केमिकल के प्रोडक्ट बनाना सिखाया, हर्बल प्रोडक्ट, जिसमें से बॉडी सोप, बॉडी वाटर, लिप बैम, लिप स्क्रब, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाना सिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बॉडी लिप बाम, बॉडी स्क्रब एंड फेस क्रीम मैंने बनाया भी खुद और यूज किया, मेरे फैमिली को भी यूज कराया। सबको बहुत अच्छा लगा और सब ने मतलब बहुत तारीफ किया। इसलिए थैंक यू सो मच सुमन मैम एंड थैंक यू सो मच रीड इंडिया इतने अच्छे प्रोडक्ट सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच।
11: मेरा नाम सोनिया है और मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना था तो मैं ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए पूछने गई तो मुझे वहाँ फीस बहुत महंगी बताई जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाती। तो मुझे किसी से रीड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला तो मैं रीड इंडिया सेंटर में गई और मैंने वहाँ जाके मैम से पूछा कि मैम मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। तो मैम ने मुझे ब्यूटिशियन के कोर्स के बारे में बताया और साथ में वहाँ स्टिचिंग, कंप्यूटर और हर्बल प्रोडक्ट बनाना सिखाया जाता है। तो मैंने वहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स करना स्टार्ट कर दिया और मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं ब्यूटिशियन का कोर्स करते करते और मुझे बेसिक पार्लर पूरा आ चुका है। तो मैं रीड इंडिया सेंटर को और सुमन मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिसके वजह से मुझे मेरा ब्यूटिशियन का कोर्स पॉसिबल हुआ हो पाया है, क्योंकि महंगी फीस की वजह से मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो थैंक यू सो मच सुमन मैम एंड थैंक यू सो मच रीड इंडिया सेंटर।
12: हाय, माझं नाव सामी आहे, मी जगेश्वर आहे। माझं शिक्षण 11वी पर्यंत झालेलं आहे। मी रीड इंडियामध्ये 3 महिन्यामध्ये कोर्स करते। त्यामध्ये मी ब्लाऊज, साधा ब्लाऊज, कटोरी ब्लाऊज, परत प्रिन्स कटोरीवाला ब्लाऊज वगैरे सर्व शिकते।
13: हाय, मेरा नाम है रेशमा अरोरा जोगिनकर, मैंने 12वी की हूँ सायन्स से, गोरेगाव से, और मैं 3 महीने से रीड इंडिया से कोर्स कर रही हूँ, बेसिक टेलर कोर्स का। और उसके बाद मैंने उसमें सीखी हूँ झबला, बिनबाही का, सादी चड्डी, फैंसी बॉनेट, उसके बाद प्रिंस कटोरी ब्लाउज, फ्रॉक और पंजाबी सूट। थैंक यू।
14: हाय, माझं नाव अक्षता अशोक कांबळे, मी ऍग्रीकल्चर डिग्रीमध्ये डिग्री करत आहे आणि इथे खामगाव मंडी इंडियामध्ये मशीन शिवण क्लास करत आहे। त्याच्यामध्ये जे दररोजच्या लग्नासाठी जे कपडे आहेत त्याच्यामध्ये शिकवलं जाते आणि इथे खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या, रेड इंडियामध्ये खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या मिळाल्या, त्यामुळे त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करते। थँक्यू।
15: नमस्कार, माझं नाव मनवा जीवन अडवीलकर, माझं शिक्षण टी वाय बी टी शिवाय बीए मधून झालेला आहे. मी इथे रीड इंडिया सेंटरमध्ये 3 महिन्यापासून कोर्स करत आहे. त्या कोर्समध्ये मी बिनबाईचा झबला, कटोरी ब्लाऊज, प्रिन्स कटोरी, साधा ब्लाऊज, ड्रेस हे सगळं शिकली आहे. थँक्यू रीड इंडिया.
16: माझं नाव नौशीन वजीर जोगिरकर. माझा शिक्षण 12वी. मी रीड इंडिया सेंटरमध्ये कोर्स केला आहे शिवण क्लास. 3 महिन्याचा कोर्स आहे. त्याच्यामध्ये बिनभाईचा झबला, चड्डी, सलवार कमीज, ब्लाऊज हे सर्व शिकवले गेले आहे. हा कोर्स भेटण्यामधून तुमचे आम्ही आभारी आहोत.
17: आपकी उम्र
18: 22.
17: रीड इंडिया सेंटर से आपने कौन सी ट्रेनिंग ली?
18: कंप्यूटर के पालन की.
17: ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में बताएं.
18: ट्रेनिंग लेने से हमें ये फायदा हुआ है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, उससे हमारी इनकम बढ़ सकती है, ट्रेनिंग बच्चों को दे सकते, कोचिंग ले सकते हैं.
17: आप आगे क्या करना चाहती हैं?
18: कंप्यूटर ही कोचिंग ले रही हूँ. कंप्यूटर में स्कोप है, कंप्यूटर से ही जॉब कर रही हूँ
17: यहाँ पे. आपका नाम क्या है?
18: स्वाति.
17: आपकी उम्र?
18: 24.
17: रीड इंडिया सेंटर से आपने कोई ट्रेनिंग ली?
18: यस मैम, हमने 2 ट्रेनिंग ली थी, पार्लर का और कंप्यूटर का.
17: तो आपने कंप्यूटर में क्या क्या सीखा?
18: कंप्यूटर में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, नेटवर्किंग
17: बेसिक सीखा आपने. और पार्लर में?
18: पार्लर में मैम कटिंग, फेशियल, ब्लीच, वैक्सिंग.
17: ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं?
18: कंप्यूटर सीखने के बाद घर पे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोचिंग पढ़ाता है कंप्यूटर के बारे में, उससे अच्छी खासी इनकम मिल रही है.
17: और पार्लर का?
18: पार्लर में मैम बस साइड में चल रहा है.
17: अच्छा. जीवन के निर्णय और पारिवारिक निर्णय लेने की आपकी क्षमता में कोई सुधार हुआ?
18: यस मैम, पहले से ज्यादा इनकम होने लगी है, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया.
17: गुड. आप आगे क्या करना चाहती हैं?
18: मैम पार्लर में करना है, पार्लर खोलना है.
17: अपना पार्लर खोलना है? अच्छा. तो पार्लर की पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद मतलब आप चाहते हो अपना पार्लर?
19: जी. माझे नाव आदिती संजय वाळंदकर. माझ्या गटाचे नाव महालक्ष्मी गट, गाव विनेरे. आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड मेणबत्ती बनविण्याचे प्रशिक्षण घेतले. तिथे टाटरे मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले, मार्केटिंगचे आश्वासन दिले. त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवी उमेद मिळाली. रीड इंडिया सेंटर विनेरे व टाटरे मॅडम यांचे आम्ही आभार मानतो.
20: जय बजरंग महिला बचत गट, गाव विनेरे. आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले. तेथे ताठे मॅडमनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे सुद्धा मार्गदर्शन केले. मार्केटिंगचे आश्वासन मॅडमनी आम्हाला दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आम्हाला नवीन उमेद मिळाली आहे. त्यामुळे आम्ही ताठे मॅडम आणि रीड इंडिया संस्थेचे विनेरेकडून आभार मानत आहोत.
21: माझे नाव शर्मिला मंगेश विसापूरकर. माझ्या गटाचे नाव जय बजरंग महिला बचत गट, गाव विनेरे. आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले. तेथे टाटरे मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले, मार्केटिंगचे आश्वासन दिले. त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवीन उमेद मिळाली. या वतीने टाटरा मॅडम रीड इंडिया व टाटरा मॅडम यांचे मी आभार मानतो.
22: माझे नाव श्वेता संतोष सकपाळ, वय 24 वर्ष. रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथून मी ग्राफिक डिझाईनचा कोर्स केला. यामध्ये मला फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझाईन आणि व्हिडिओ बनवायला शिकवलं. त्याचा आम्ही नक्कीच भविष्यात उपयोग करू व रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला जे फ्रीमध्ये कोर्स प्रोव्हाइड केले त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद.
23: माझं नाव श्वेता रोशन सक्पा, वय 29 वर्ष. रेड इंडिया सेंटर विनेरेकडून आम्हाला ग्राफिक डिझायनिंगचा कोर्स शिकवण्यात आला. या कोर्समध्ये आम्ही फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझायनिंग आणि व्हिडिओ कशा बनवायचा हे शिकलो. या शिक्षणाचा उपयोग आम्ही भवितव्यात नक्कीच करू. रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला हा जो कोर्स फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केला त्याबद्दल त्यांचे मनापासून धन्यवाद.
24: मेरा नाम लक्ष्य है.
0: मैं रीड इंडिया पटवाई सेंटर सिलाई सीखी है। मैं पटवाई में रहती हूँ और मैं सेंटर में आती जाती रहती हूँ। इस सेंटर से मैंने अच्छी सिलाई सीखी है। अपने घर के कपड़े सिलती हूँ और मोहल्ले के भी कपड़े सिलती हूँ। इस रीड इंडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। इस रीड इंडिया में सिलाई सीखकर और सिलाई करती हूँ मैं और कपड़े सिलती हूँ। उससे जो पैसा आता है मैं अपने कॉलेज की फीस करती हूँ, जमा करती हूँ। मेरा नाम निशा है। मैं पढ़वाई रीड इंडिया से सिलाई सीखी है। मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ और तरह तरह के डिजाइन के कपड़े सीना चाहती हूँ। और मेरा एक सपना यह है कि मैं एक सेंटर खोल सकूँ जिससे बच्चों को अच्छे से डिजाइन के कपड़े सिखा सकूँ। मेरे तरफ से सेंटर को धन्यवाद।
1: मेरी एज 21 है। मैं लास्ट डे पर रहती हूँ। मैं रीड इंडिया सेंटर में एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। मुझसे काफी कपड़े सिलाई के आ गए हैं, जैसे कि डिजाइनिंग कुर्ती, डिजाइनिंग पेंट, प्लाजो, गरारा, फरारा, लहंगा, चोली वगैरह वगैरह काफी सिलाई आ चुकी है। और मेरे डिजाइनिंग मैं अपने डिजाइन खुद करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने डिजाइन सिलाई करना। और मेरे डिजाइन सिलाई के लोग भी मतलब कहते हैं मेरे भी सीधे, इस वजह से मेरे मतलब काफी सिलाई आती है घर पर। और मैं सिलाई की वजह से अपने घर में काफी हेल्प कर सकती हूँ। और मैं पहले मतलब अपनी कुछ नहीं कह सकती थी अपने बारे में, पर अब मैं सबसे कुछ भी कह सकती हूँ और मैं अपना खर्च खुद ही उठा सकती हूँ। पढ़ाई वगैरह का भी काफी कुछ अपने लिए कर सकती हूँ। मैं एडवांस सिलाई सीख के मुझे काफी लाभ हुआ है।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिजा है। मैं कलघर में घोसियान मोहल्ले में रहती हूँ। या कलघर सेंटर हर्बल कॉस्मेटिक का कोर्स कर रही हूँ जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, जैसे कि लिप बाम, बॉडी वैक्स, बॉडी बटर और वगैरह काफी कुछ सीखने मिला है और इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैं रेड इंडिया कलघर सेंटर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ।
3: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनब है और मेरी एज 18 ईयर्स है और मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर रीड इंडिया सेंटर आने से पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी यहाँ आने के लिए भी बहुत ज़्यादा, और मेरी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा इनकम की प्रॉब्लम थी। मेरे पापा प्लम्बरिंग का काम करते हैं, मम्मी सिलाई करती हैं, तो मैं सोचती थी कि शायद मैं कुछ कर सकूँ अपने मम्मी पापा के लिए या अपने खुद के लिए, कि मैं अपना खुद खर्च अपना खुद लूँ, मम्मी पापा से नहीं लूँ। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपने खुद काम करूँ, खुद कुछ भी करके अपना खुद ही निकालूँ खुद भी। फिर मैंने मुझे यहाँ पर रीड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पर आई। मैंने यहाँ पर आके बेसिक सिलाई का भी कोर्स किया है और ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है। इसके वजह से मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन और लाइफ स्किल्स और मेंटल हेल्थ का कोर्स है और ये सब लेने के बाद मेरा माइंड बहुत फ्री रहता है। पहले मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, बिल्कुल ही बात नहीं कर पाती थी और अब अच्छे से मैं सबसे बोल पाती हूँ, बात कर पाती हूँ। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंट जागा है, दूसरों के सामने बोलने का, कुछ करने का एक हिम्मत आई है। पहले मुझे कुछ नहीं आता था बिल्कुल। यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है मुझे, बहुत अच्छा लगता था यहाँ आके। और अब भी मैं पूरी कम्प्लीट स्टिचिंग कर चुकी हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। इससे मैं अपनी इनकम भी अच्छे से काम कर लेती हूँ और मैं अपना खर्च खुद निकालती हूँ, किसी से कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और पहले मैं मेरी पढ़ाई रुक चुकी थी इस काम पैसों की वजह से ही और पापा की मजदूरी के काम की वजह से ही, मगर जब से मैंने अपना काम शुरू किया है या मैंने स्टिचिंग का कोर्स किया है उसके बाद मैं अपने खर्च और स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई खुद में करती हूँ, खुद अपना खर्च निकालती हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैंने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक से मैंने अपने डिज़ाइन अपलोड किए और मैं उसको अब सेल करती हूँ उस पर। उससे मुझे बहुत अच्छी इनकम हो जाती है और अपने मैं इस वजह से अपने घर में भी पूरी हेल्प देती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई वगैरह भी खुद कर लेती हूँ। और मेरे रीड इंडिया सेंटर आने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है और मैं रीड इंडिया सेंटर को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच रीड इंडिया सेंटर।

0: एंड वेलकम टू जीते रहो।
1: हाय फ्रेंड्स।
2: कुहू, मैं बहुत दिनों से एक बीमारी के बारे में जानना चाह रहा था, पर
1: ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके बारे में जानने से तुम झिझक रहे हो?
2: एक्चुअली थोड़ा पर्सनल हो जाता है। इस बीमारी के बारे में सोचते ही मुझे मासी का दर्द याद आ जाता है।
1: ओ, यू मीन कैंसर? आई नो, ये बीमारी एक साथ कई जिंदगियां बदल देती है।
2: हाँ, हमेशा सुनता रहता हूँ, रेगुलर आर्टिकल्स भी निकलते रहते हैं, पर मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये है क्या और इसका नाम कैंसर कैसे पड़ा।
1: आइए देखते हैं।
3: कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका संबंध हमारे शरीर की मूलभूत इकाइयों से है। हमारे शरीर की ये मूलभूत इकाइयां हैं कोशिकाएं यानी सेल्स। शरीर में इनकी संख्या अरबों में होती है। ये कोशिकाएं शरीर के हर एक अंग के आधार पर अलग अलग होती हैं, जैसे लिवर सेल्स, ब्रेन सेल्स, ब्लड सेल्स इत्यादि। इन्हीं कोशिकाओं के विकास के आधार पर हमारा शारीरिक विकास होता है और इन्हीं से बनते हैं उत्तक यानी टिश्यूज। टिश्यूज असल में कोशिकाओं का एक समूह है। हम सबके शरीर में स्टेम सेल्स पाई जाती हैं, जो विभाजित होकर अलग अलग ऑर्गन्स की सेल्स में बदल सकती हैं और उस ऑर्गन का विशेष काम करने लगती हैं, जैसे किडनी और लिवर की सेल्स। कुछ स्टेम सेल्स किडनी सेल्स में परिवर्तित होती हैं तो कुछ लिवर सेल्स में। वहीं कुछ स्टेम सेल्स ब्रेन सेल्स में बदल जाती हैं तो कुछ मसल्स की सेल्स में। सामान्य स्थिति में कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा नई कोशिकाएं बनती हैं। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। नई कोशिकाएं बनती हैं और पुरानी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। कोशिकाओं के विकास चक्र में जब संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है तो उसे कैंसर कहते हैं। इस परिस्थिति में कोशिकाओं का विभाजन बहुत तेजी से होने लगता है और इसी वजह से नई कोशिकाएं भी बहुत तेजी से बनने लगती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोशिकाओं के नष्ट होने की प्रक्रिया पर लगाम कस जाती है। इससे टिश्यूज में अतिरिक्त कोशिकाएं जमा होने लगती हैं, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। जहां तक इस बीमारी के नामकरण का सवाल है तो इसके पीछे भी इन्हीं ट्यूमर्स का हाथ है। आज से हजारों साल पहले हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें मेडिकल साइंस का जनक कहा जाता है, ने जब एक ममी के ट्यूमर को देखा तो उन्हें जो आकृति दिखी वो केकड़े यानी क्रैब के पैरों से मिलती जुलती थी। लैटिन में केकड़े को कैर्सिनोस कहा जाता है, लिहाजा उन्होंने इसका नाम रखा कैर्सिनोमा, जो आगे चलकर कैंसर कहलाने लगा। कैंसर दो तरह से शरीर में फैलता है। इनमें एक तो इन्वेजन है और दूसरा मेटास्टेटिस। इन्वेजन के तहत कैंसर सेल्स अपने ओरिजिनेटिंग यानी उत्पन्न होने वाले अंग के पड़ोसी टिश्यूज में घुस जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में बनने वाली गांठ इसका एक उदाहरण है। लेकिन मेटास्टेसिस में कैंसर सेल्स ओरिजिनेटिंग अंग के साथ साथ दूसरे अंगों के सेल्स में भी प्रवेश कर जाते हैं। मेटास्टेसिस में कैंसर सेल्स पहले लिम्फ यानी लसिका और ब्लड वेसल्स में प्रवेश करते हैं। उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए शरीर के दूसरे अंगों तक फैल जाते हैं। कैंसर के सिम्टम्स यानी लक्षण कई बार कैंसर से प्रभावित अंग की ओर इशारा करते हैं, इसलिए इन्हें स्पेसिफिक सिम्टम्स कहा जाता है, जैसे कोलन कैंसर में दस्त, कब्ज और मल के साथ खून का आना, और ब्लैडर कैंसर में पेशाब में खून आ सकता है। लेकिन कुछ सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ये सिम्टम्स कैंसर से प्रभावित अंग की ओर इशारा नहीं करते, जैसे हमेशा थकान लगना, क्योंकि कैंसर सेल्स शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल अपने विकास के लिए करने लगते हैं। इसके अलावा वजन का घटना, भूख न लगना, बुखार आना, त्वचा का काला हो जाना, खुजली होना और असहनीय दर्द होना नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के उदाहरण हैं। लेकिन शुरुआती दौर में इन सिम्टम्स का या तो पता नहीं चलता या फिर उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है।

0: वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कैंसर के सिम्टम्स की। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि कैंसर शरीर में फैलता कैसे है। लेकिन शायद आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि 100 से अधिक बीमारियों का एक जटिल समूह है जो शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, चाहे वो मस्तिष्क हो, चाहे पाचन तंत्र, हड्डियां या फिर कोई और अंग।
1: मोटे तौर पर कैंसर को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, मसलन कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा ये कैंसर का सबसे सामान्य रूप है। शरीर के किसी भी अंग की बाहरी या अंदरूनी सतह यानी एपिथेलियल टिश्यूज में होने वाले कैंसर इस श्रेणी में आते हैं। लंग्स, ब्रेस्ट, कोलन कैंसर, सर्वाइक्स यानी बच्चेदानी का कैंसर और माउथ कैंसर कार्सिनोमा के प्रमुख उदाहरण हैं।
2: कैंसर की दूसरी कैटेगरी है सार्कोमास। इस कैटेगरी में कैंसर सपोर्टिव या कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाओं में होते हैं, जैसे हड्डी, कार्टिलेज, वसा और मांसपेशियां। कैंसर की अगली कैटेगरी है लिम्फोमास। लिम्फ नोड्स में होने वाले कैंसर को लिम्फोमास कहा जाता है।
1: लिम्फोमा के बाद आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है।
2: अब सवाल उठता है कि कैंसर होता कैसे है। आम धारणा तो यही है कि इसका कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं है। कुछ प्रमुख कारणों के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। इनमें एक तो शरीर के अंदरूनी कारण है, जैसे हेरिडिटी, असंतुलित भोजन और हॉर्मोन्स। कुछ बाहरी कारण भी हैं, जैसे सिगरेट और तंबाकू का सेवन, शराब, कुछ कार्सिनोजेनिक रसायन, अल्ट्रावायलेट किरणें और न्यूक्लियर रेडिएशन इत्यादि। इन दोनों वर्गों के अलावा कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया भी हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से कुछ खास किस्म के कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं।
0: अब बात आती है इनके डायग्नोसिस की। कैंसर के केस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब अर्ली स्टेज में इसका पता लगाया जा सकता है।
3: अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर अर्ली स्टेजेस में सिर्फ पता ही लगाते हो या फिर ठीक भी करते हो तुम लोग?
0: जी हाँ बबलू जी, अर्ली स्टेजेस में पता चलने पर कैंसर काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। लेकिन आइए पहले ये तो देख लें कि कैंसर का पता कैसे चलता है, यानी क्या है इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट्स।
2: कैंसर का पता अगर शुरुआती अवस्था में ही लग जाए तो इलाज में काफी फायदा होता है और इसे जड़ से भी मिटाया जा सकता है। अक्सर कैंसर के मरीज डॉक्टर के पास एडवांस स्टेज में पहुंचते हैं, जब किसी अंग में कैंसर के कारण सूजन हो जाती है या कोई अल्सर जब लंबे समय तक ठीक नहीं होता या ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसे में इलाज के विकल्प सीमित हो जाते हैं, मगर अब कुछ ऐसे स्क्रीनिंग मेथड्स उपलब्ध हैं जिनसे अर्ली स्टेजेस में ही कुछ खास तरह के कैंसर का पता चल जाता है। ऐसा ही एक टेस्ट है पैप स्मियर। ये एक ऐसी स्क्रीनिंग टेक्निक है जो सर्वाइकल कैंसर के अर्ली डायग्नोसिस में मील का पत्थर साबित हो रही है। इस प्रोसेस में एक छोटे ब्रश या स्क्रेपर से सेल्स का सैंपल ले लिया जाता है, फिर इन सेल्स को एक स्लाइड में रखकर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर यदि किसी तरह की असामान्यता यानी एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है तो ये कैंसर का इंडिकेटर हो सकता है। ठीक इसी प्रकार मैमोग्राफी भी एक तरह की एक्सरे तकनीक है जो खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस में काफी कारगर है। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई के जरिए भी कैंसर का पता चल जाता है। अगर पेशेंट को नॉन हीलिंग ओरल इन्फेक्शन है तो माउथ कैंसर के लिए उसकी जांच की जाती है। लंग कैंसर में मरीज को लंबी खांसी हो सकती है, बलगम के साथ खून भी आ सकता है और मरीज की सांस भी उखड़ी रहती है। ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने पर मरीज की लंग कैंसर के लिए जांच की जाती है। अगर बार बार दस्त या कब्ज हो जाए जो 3 सप्ताह से ज्यादा चले तो बाउल कैंसर के लिए जांच जरूरी हो जाती है। उल्टी के साथ खून आने पर लिवर कैंसर की जांच जरूरी होती है।
1: अगर 2 और 3 सप्ताह से ज्यादा लो ग्रेड फीवर हो और उसकी वजह का पता न चले तो ब्लड कैंसर के लिए टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि लो ग्रेड फीवर कई तरह के कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है। इसके अलावा बार बार किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो या बगैर किसी वजह से वजन घटे तो भी ब्लड कैंसर के लिए जांच करवाई जा सकती है।
2: अगर पेशेंट में कैंसर जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो FNAC करते हैं। FNAC यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें एक बारीक पतली सी सुई ट्यूमर स्थित जगह पर डालकर कुछ कोशिकाएं निकालते हैं। पैथोलॉजिस्ट फिर इसका परीक्षण करते हैं। ट्यूमर, लिम्फ नोड और बोन मैरो कैंसर का पता लगाने के लिए FNAC या बायोप्सी की मदद ली जाती है। बायोप्सी के लिए कैंसर वाली जगह से टिश्यू का एक छोटा टुकड़ा लिया जाता है, फिर इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। माइक्रोस्कोप में देखने पर कैंसर टिश्यूज नॉर्मल टिश्यूज से एकदम अलग दिखते हैं। नॉर्मल टिश्यूज जहां सुव्यवस्थित होते हैं वहीं कैंसर टिश्यूज का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये टेढ़े मेढ़े अव्यवस्थित से लगते हैं। कैंसर सेल्स जितने अव्यवस्थित होते हैं कैंसर उतना ज्यादा जानलेवा होता है।
4: एक बार डायग्नोसिस हो जाए कि ये गांठ, जैसे गले में गांठ है और गांठ के अंदर कैंसर का डायग्नोसिस आया है, तो ये गांठ का कैंसर कहां से आया है इस विषय में हम फिर कुछ और जांचें की जाती हैं, जैसे हम CT स्कैन करते हैं, एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि ये कैंसर किस स्टेज का है, कहां तक गया है। पहले कैंसर का डायग्नोसिस होने के बाद उसका स्टेजिंग किया जाता है। स्टेजिंग के लिए कुछ जांचें होती हैं जो मैंने अभी बताई, वो की जाती है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है।
1: कैंसर को मोटे तौर पर 4 भाग में बांट सकते हैं। कैंसर जिस अंग में हुआ है अगर उसमें ही रहे और उसका फैलाव और गहराई थोड़ी हो तो इसे फर्स्ट स्टेज का कैंसर कहते हैं। कैंसर का फैलाव अगर बढ़ जाए और आसपास के अंगों में फैल जाए तो इसे सेकेंड स्टेज का कैंसर कहते हैं। कैंसर फैलकर आसपास के रीजन और लिम्फ नोड्स में फैल जाए तो इसे थर्ड स्टेज का कैंसर कहा जाता है। फोर्थ स्टेज में कैंसर भयानक रूप ले चुका होता है। अब कैंसर सेल्स लिम्फ नोड्स के जरिए शरीर के दूसरे अंगों जैसे लिवर, हड्डी और फेफड़ों तक फैल जाते हैं।
4: यदि कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो इससे पूरे बचने की पूरी पूरी संभावना है। अर्ली स्टेज में कैंसर पकड़ने के बहुत से फायदे हैं। एक, कि आप बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं। दो, इसका इलाज बहुत सरल है। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, खर्चा इलाज का, वो भी बहुत कम हो जाता है। तीसरा, डिसफिगरमेंट, यानी कि अगर बड़ा ट्यूमर होगा तो उसको निकालने के लिए उतना बड़ा ऑपरेशन की जरूरत है, उतना ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस रहते हैं। और यदि छोटा सा ट्यूमर है तो उसका छोटा सा ऑपरेशन है, 2 दिन 2-3 दिन अस्पताल में रहना है, उसके बाद घर चले जाना है, नॉर्मल लाइफ आपकी जल्दी आ जाती है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं उसमें भी कोई फर्क नहीं आता। आजकल कई टेस्ट आ गए हैं जिससे हम कैंसर को बड़ी अर्ली स्टेज में, इवन स्टेज 1 से पहले की स्टेज में भी हम पकड़ सकते हैं। जैसे कि आजकल हम मैमोग्राफी करते हैं, मैमोग्राफी में छोटा सा छोटा लीजन भी हमें दिखाई दे जाता है, जब तक गांठ बनी ना हो उससे पहले भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं है। दूसरा, हम स्त्रियों में करते हैं पैप टेस्ट, जो गर्भाशय यानी बच्चादानी के मुंह के कैंसर को डिटेक्ट करने में बहुत फायदेमंद है।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स। कोकिला, एक बात बताओ, अगर अर्ली स्टेजेस में कैंसर का पता चल जाए तो क्या वाकई कैंसर का इलाज संभव है?
0: देखो बबलू, ये दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे मरीज की उम्र क्या है, उसकी सेहत कैसी है, बीमारी किस स्टेज में है और
3: ये सब तो ठीक है मैडम कुहू जी, लेकिन ये तो बताइए कि कैंसर का इलाज क्या है?
0: बबलू, एक सवाल का जवाब खत्म नहीं होता तुम दूसरा सवाल दाग देते हो। खैर, आइए देखते हैं क्या है कैंसर का इलाज।
2: कैंसर का मरीज कितना ठीक होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर किस तरह का है और किस स्टेज में पहुंच चुका है। कैंसर के शुरुआती स्टेज में इलाज का मुख्य उद्देश्य होता है पूर्ण उपचार। एडवांस स्टेज में पहुंच जाने के बाद प्राथमिकता होती है बीमारी की रोकथाम कर मरीज की जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा आरामदायक बनाना। इसी आधार पर कैंसर के इलाज को चार वर्गों में बांटा गया है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी।
1: सर्जरी में ट्यूमर और उसके आसपास जिन जगहों पर कैंसर सेल्स होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। कुछ कैंसर के एडवांस स्टेजेस में सर्जरी का इस्तेमाल रेडिएशन और कीमोथेरेपी के साथ भी किया जाता है। रेडियोथेरेपी लगभग 6 दशक से कैंसर के इलाज का एक प्रमुख विकल्प बन गया है। चाहे कैंसर फर्स्ट स्टेज में एक अंग तक सीमित हो या एडवांस स्टेज में शरीर के कई अंगों तक फैल चुका हो, और शायद यही वजह है कि आज कैंसर के 50% मामलों में रेडियोथेरेपी का उपयोग हो रहा है। रेडिएशन एक खास तरह की ऊर्जा है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से मशीनों के जरिए बीम के रूप में प्रवाहित की जाती है। गामा रेज कैंसरस सेल्स को मार देती हैं।
4: इसमें ना ऑपरेशन की जरूरत है ना कोई डिसफिगरमेंट होता है, सिर्फ रेज आती हैं और ट्यूमर को बर्न करती हैं और ट्यूमर खत्म हो जाता है। रेडियोथेरेपी का उपयोग मुंह के कैंसर्स, गले के कैंसर्स, टट्टी के मार का कैंसर, स्वरपेटी का कैंसर, इनमें बहुत ज्यादा, और कभी कभी छाती स्तन के कैंसर में भी यूज किया जाता है। रेडिएशन बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में भी यूज की जाती है। रेडिएशन के अपने बहुत से फायदे हैं, बिना ऑपरेशन बिना किसी के आप ट्यूमर को ट्रीट करते हैं। दूसरा, ऑर्गन सेव होता है, जैसे कि स्वरपेटी आपकी बच सकती है, आप आवाज बोल सकते हैं, मगर इसके साथ साथ कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म में मुंह में लार बननी बंद हो जाती है, पेशेंट को सॉलो करने में प्रॉब्लम आती है, कभी कभी खाने का स्वाद नहीं आता है, और लंबे टर्म में ये फाइब्रोसिस वगैरह करती है जिससे पेशेंट को बाल, जहां जहां रेडिएशन लगती है वहां बाल चले जाते हैं जो आजीवन चले जाते हैं, दोबारा कभी नहीं आते वो लाइफ में बाद।

0: जीते रहो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कैंसर के इलाज की। तो कैंसर के विरुद्ध हमारी लड़ाई कई फ्रंट्स पर जारी है और यकीन मानिए इसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं।
1: कैंसर के इलाज की अगली कैटेगरी है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी असल में एक ड्रग थेरेपी है। इसके तहत मरीज को जो दवाइयां दी जाती हैं, वो मैलिग्नेंट सेल्स के विकास यानी ग्रोथ और विभाजन यानी डिवीजन को प्रभावित करती हैं। कीमोथेरेपी की दवाइयां किसी भी स्टेज में कैंसर की कोशिकाओं को मारकर उनका विभाजन रोक देती हैं। इस प्रक्रिया की वजह से कई बार कैंसर सेल्स के साथ साथ स्वस्थ कोशिकाएं भी खत्म हो जाती हैं। तुरंत दिखने वाले साइड इफेक्ट्स हैं वॉमिटिंग टेंडेंसी, चक्कर आना, कमजोरी, कभी डायरिया या कभी कब्जियत, बालों का झड़ना, मुंह आना, मुंह में छाले पड़ना। ल्यूकेमिया, लिम्फोमास और टेस्टिकुलर कैंसर के मामलों में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल सर्जरी और रेडिएशन के मुकाबले ज्यादा किया जाता है। कुछ खास परिस्थितियों में सर्जरी या रेडियोथेरेपी के बाद मरीज को कीमोथेरेपी दी जाती है ताकि कैंसर फिर से न हो। हार्मोन थेरेपी भी कीमोथेरेपी का एक प्रकार है। कुछ कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में हमारे शरीर के हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ही कैंसर सेल्स को बढ़ने में मदद करने लगते हैं। इसलिए हार्मोन थेरेपी में ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो उन हार्मोन्स के बनने को कम करती हैं जो कैंसर को फैलाने में मदद कर रहे होते हैं।
2: जानती हो कोकिला, मुझे अंकुश फिल्म का वो गाना याद आ रहा है।
0: अच्छा, कौन सा गाना? जरा हम भी तो सुने।
2: इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
0: तुमने ठीक कहा बबलू। दोस्तों, इस बीमारी के विरुद्ध जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है पेशेंट का आत्मविश्वास। इसीलिए अपना विल पावर स्ट्रांग रखिए और हाँ, एक अच्छी जीवन शैली अपनाइए। अपने खान पान में हरी सब्जियों के साथ साथ फलों का सेवन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि हाल ही में ये स्पष्ट हो चुका है कि एक अच्छी जीवन शैली, अच्छे खान पान से हम काफी हद तक इस भयावह बीमारी से बचाव कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।
2: बाय एंड डू टेक केयर। जीते रहो।
1: हमारे शरीर में लगातार नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं। कोशिकाओं के विकास चक्र में जब संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है तो उसे कैंसर कहते हैं। मोटे तौर पर कैंसर को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, मसलन कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। कैंसर का पता अगर शुरुआती अवस्था में ही लग जाए तो इसे जड़ से भी मिटाया जा सकता है। अगर पेशेंट में कैंसर के लक्षण दिखाई देते हैं तो FNAC या बायोप्सी करते हैं। कैंसर का इलाज चार तरीकों से किया जाता है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी।

एवरीबॉडी इज वेलकम ऑन दिस सेशन। तो आज हम सेशन जो है, आप सबको पता है, लीडरशिप पे ही मैं सेशन लेती हूँ। और सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी कि सबके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। एवरीबॉडी शुड एक्नॉलेज कि हाँ, मैं एक लीडर हूँ, किसी ना किसी रूप में मैं लीडर हूँ। तो ये सब एग्री करते हैं इस बात पे कि लीडरशिप तो है, हम उसको इनवोक करते हैं कि नहीं करते, वो हमारा डिफरेंट कंसर्न है, बट एवरी बॉडी हैज अ लीडरशिप क्वालिटी इन दैट। एग्री करते हैं आप सब मेरे से? तो चैट में थोड़ा यस लिख दीजिए या हैंड रेस कर दीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, एवरीबॉडी एग्रीज दैट एवरीबॉडी हैज द लीडरशिप क्वालिटीज। किसी में परसेंटेज वेरी कर ज्यादा है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, बट एवरीबॉडी हैज दैट, राइट? तो मुझे लगता है कि आप सब लोग मेरी इस बात से सहमत करते हैं कि हर एक में लीडरशिप क्वालिटीज होती है, पर हमें क्या करना होता है, उस लीडरशिप क्वालिटीज को इनवोक करना होता है। इनवोक मतलब कि पहचानना होता है और उसको जागरूक करना होता है, जो हम नहीं कर पाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। मे बी कोई भी सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं, कोई चैलेंजेस ऐसे होते हैं, या हम अनइंटेंशनली भी नहीं कर सकते। इंटेंशंस तो सब में होती है कि हमें लीडर बनना है, पर हम अनइंटेंशनली भी उसको इनवोक नहीं कर सकते। इनवोक मतलब कि उनको पहचानना, उनको रिकग्नाइज करना, और उनको एवरी टाइम वी हैव अ फीलिंग इन आवर माइंड, यस वी आर लीडर्स विद इन आवर सेल्व्स। सबकी कम्युनिकेशन स्किल्स अलग अलग होती है, कोई बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन करता है, कोई डरता है कि मैं बात बोलूं तो मेरी बात पता नहीं पहचानी जाएगी कि नहीं पहचानी जाएगी, शायद मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, क्या मैं ठीक लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है जो स्मिता उसके ऊपर लाइफ स्किल्स का सेशन लेती है, और वो कल इस बात को भी हाईलाइट करेगी कि हाउ कम्युनिकेशन स्किल हेल्प अस इन डेवलपिंग आर लीडरशिप स्टाइल, आर लीडरशिप विद इन आवर सेल्स। इफ वी हैव लीडरशिप, हाउ टू इनवोक दैट थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो, दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट विच स्मिता विल हाईलाइट टुमारो। द सेकेंड पॉइंट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम जो कहना चाहते हैं अपने, जब हम लीडरशिप का रोल प्ले करते हैं, कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। सबको पता है कि बातचीत के दौरान कम्युनिकेशन के तीन प्रकार के हम यूज करते हैं टूल्स। एक तो हम वर्बली बोलते हैं, दूसरा हम लिख के बताते हैं, और तीसरा 80% ऑफ आर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो स्पीक्स अबाउट आर लीडरशिप क्वालिटीज। कि हम किसी के सामने अगर टिमिड बन के बैठ जाते हैं, टिमिड मीन्स कि हम अपने आप को कमजोर साबित करते हैं कि हम कमजोर हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हम वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस फुली व्हाट वी वांट टू से, दैट इज द बॉडी लैंग्वेज। बट यस, रिटन एंड ओरल आर द टू टूल्स नॉर्मली वी यूज फॉर शोइंग आर लीडरशिप क्वालिटीज एंड ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। दो साइलेंटली ऑल्सो, जो बहुत सारे लोगों का ये भी विचार है और मैं भी सहमत करती हूँ उससे, कि साइलेंट कम्युनिकेशन ऑल्सो प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट साइलेंट कम्युनिकेशन इज कन्वेड थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो। सो जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा बात, हम ये होते हैं सोचते हैं कि क्या हम ठीक है या गलत है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, कि क्या मैं जो कम्युनिकेट कर रही हूँ, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, ये एक्सपीरियंस से, पढ़ने से, सुनने से और
अपने आप को एक्सपोजर देने से इन राइट सोसाइटी, मेरे वर्ड्स अंडरलाइन करिए, इन राइट सोसाइटी, अगर हम बैठ के कुछ भी बात बोलते हैं या कुछ सुनते हैं या सीखते हैं, तो हमारे अंदर का जो लीडरशिप सैंक्टिटी है, मैं इसको सैंक्टिटी बोलती हूँ, मैं भी पहले ऐसे नहीं थी जो आज जो आपके सामने हूँ, तो इसलिए मैं बहुत क्लियरली आपको समझा पा रही हूँ कि लीडरशिप हर एक में होती है क्वालिटी, पर उसको उसको पॉलिश करना, उसके ऊपर जो धूल मिट्टी पड़ी है उसको हटाना और अपनी बाकी के स्किल्स को एनहांस करना ही हमें हेल्प करता है अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को एनहांस करने में। तो एक तो हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो हम कॉन्फिडेंट हो कि हम राइट बोल रहे हैं, राइट वे में कन्वे कर रहे हैं, जो हमारी लैंग्वेज है वो भी ठीक है, और जो हम बोल रहे हैं जिसको हम कंटेंट बोलते हैं वो भी ठीक है। तो ये कैसे आता है? पढ़ने से, सुनने से, आंखों से देखने से, कानों से सुनने से, और सोसाइटी में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, उसको जानने से हमारा कॉन्फिडेंस, हमें क्लैरिटी भी आती है, हमें करेज भी मिलता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जो थर्ड पॉइंट है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, सब लेते हैं, सुबह उठते ही चाहे छोटा डिसीजन हो और रात के सोने तक चाहे छोटा डिसीजन हो, चाहे बड़ा डिसीजन हो, चाहे घर के बारे में हो, चाहे समाज के बारे में हो, चाहे बच्चों के बारे में हो, चाहे ऑफिस के बारे में हो, चाहे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके बारे में हो, या हम कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं पहले कि ठीक है या नहीं, वो प्रैक्टिस से हमें आता है जब हम उसको एनालाइज करते हैं कि वेदर वी आर राइट और रॉन्ग, और फिर हम डिसीजन अपना कन्वे करते हैं। और बहुत बारी हमें एक्सपीरियंस ये होता है कि हम डिसीजन शायद इमोशनली ले रहे हैं या हम अपना दिमाग इस्तेमाल करके डिसीजन ले रहे हैं। तो ये जो कश्मकश है हमारे दिल में, जो हम ये इसके बारे में सोचते रहते हैं, वो एक आर्ट है, उसको हमें प्रैक्टिस से ही आता है और उसको हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि हम वैरायटी ऑफ पीपल के साथ डील करते हैं और हमारा डिसीजन डिपेंड करता है कि हम उसको एनालाइज कैसे कर रहे हैं, उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उसको हम ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन अपना कन्वे करें या नहीं करें। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, और अगर हम इनको ध्यान में नहीं रखते हैं तो शायद हम कहीं ना कहीं अपने डिसीजन गलत भी ले सकते हैं। हम जब अपनी बात किसी के सामने रखते हैं, कोई उसको एक्सेप्ट करता है, कोई उसको क्रिटिसाइज कर देता है, या कोई उसको डिस्कार्ड कर देता है। सिमिलरली मैं आज अगर सेशन ले रही हूँ, तो अगर यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं, 29-30 लोग लाइन पे हैं, उनमें से हर कोई 100% एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ये हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। जब भी मैं किसी को सोचती हूँ तो मैं एक कुछ हद तक, मे बी 90%, मे बी 80%, मे बी 70% मेरी एब्जॉर्प्शन लेवल होता है। क्यों होता है, ऐसे वेरिएशन क्यों आता है? क्योंकि हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे बहुत डिपेंड करता है कि हम कितने अलर्ट हैं। हमारे माइंड में कुछ और चल रहा है, शायद घर की टेंशन है, चाहे ऑफिस की टेंशन है, चाहे मैं आई रास्ते में मुझे बस नहीं टाइम से मिली, या मुझे ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, या मेरे बच्चे के स्कूल का कुछ है, या हस्बैंड के साथ कोई बात है, एनी रीजन जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है, वो हमारे एब्जॉर्प्शन लेवल को
उसका असर होता है, राइट। तो हम तभी कहते हैं कि हमें अपनी सोच को उस हद तक ही एक्सटेंड करना चाहिए, स्ट्रेच करना चाहिए कि हम उसका उसका असर हमारी दिनचर्या पे नहीं हो। प्रॉब्लम सबके साथ है, चैलेंजेस सबके साथ हैं, पर ये प्रैक्टिस के साथ आता है। अगर हमारे अंदर कुछ लीडरशिप की शक्तियां हैं या कुछ लीडरशिप के भावना है अपने अंदर लीडरशिप को डेवलप करने की, तो विद प्रैक्टिस हम ये जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं हमारे ऊपर जो डे टू डे लाइफ में आते हैं, हम किसी हद तक उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हमें ये हमेशा ये लेसन हमें मिलता है कि हम अपने पास्ट को एनालाइज करें, अपने प्रेजेंट को उसी तरीके से एक्शन लें और अपने फ्यूचर को एनविजन करें। ये लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं, क्योंकि लीडरशिप थोड़ा हटके होता है, वो दिनचर्या के साथ हम रोजमर्रा की जिंदगी के साथ उसको नहीं जोड़ सकते हैं। और मैं क्यों बार बार इस पे एम्फसाइज कर रही हूँ कि हमें अपनी लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं, जो सो रही हैं, उनको जगाने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे आपको ये भी कहना चाहूंगी कि आज मैं आपको 10 E's की फिलॉसफी समझाऊंगी कि 10 E's क्या है। E मतलब कि कैपिटल E। एक तो हम बहुत ज्यादा, मैं जिस भी गांव में जाती हूँ, जिस सेंटर में जाती हूँ, हम बहुत ज्यादा इमोशनली एंटैंगल होते हैं, और हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इमोशनली एंटैंगल होते हैं किसी भी सिचुएशन के साथ। तो जब हम बहुत ज्यादा इमोशनली एंटैंगल होते हैं, तो हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल कम करते हैं। दिस इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट कि अगर हम इमोशनली बह जाएंगे तो हमें अपने दिमाग से जो सोचना है वो शक्ति हमारी कम हो।

इसके जो स्टेप्स हैं मैं आज आपको समझाऊंगी कि क्या स्टेप्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है कि ऑलवेज अगर कोई हमारे पास सेंटर में आ रही है कोई इशू लेके, अपना पर्सनल इशू है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और हम उसको सुनते नहीं हैं, हम अपना बिना सुने, बहुत 90% लोग क्या होते हैं, सुनने की क्षमता कम रखते हैं और अपना डिसीजन करने हम बहुत जल्दी करते हैं। इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि हम बिना सोचे समझे, बिना सुने, बिना उसको एनालाइज करे हम अपनी बात पहले रखने की कोशिश करते हैं, और ये घर में भी होता है। हमें सिंपथी से ज्यादा एम्पथी अपनानी चाहिए। एम्पथी मीन्स, एम्पथी का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को उस सिचुएशन में रख के उस इंसान की प्रॉब्लम को रियलाइज करें। शायद आप उस प्रॉब्लम से ना गुजरे हो और दूसरा इंसान उस प्रॉब्लम से गुजर रहा हो और वो, उसके पास एक ही उम्मीद है कि मैं सेंटर में जाऊंगी, मैं अपनी टीचर से ये बात करूंगी, या अपने पीयर ग्रुप में ये बात करूंगी, या मैं अपने कोऑर्डिनेटर के सामने ये बात रखूंगी, और हम लोग इतने बिजी होते हैं कि हम उनको टाइम नहीं दे पाते। पर हमेशा हमें उनकी सिचुएशन में अपने आप को रख के अगर हम वो प्रॉब्लम को एनालाइज करें, उस प्रॉब्लम को इमोशनली ना देख के, जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ्स हैं लीडरशिप की या लाइक किसी की सिचुएशन को समझने की, उसको सामने रख के अगर हम उसको हेल्प करें तो हम बहुत ही रियलिस्टिक वे में उसकी मदद कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने दो चीजों को यहाँ पे एम्फेसाइज किया, जो भी मैंने अभी बोला है, कि इमोशंस को कंट्रोल में रख के और एम्पैथी के साथ अगर हम दूसरे की प्रॉब्लम को सुनते हैं, समझते हैं और उसको हम ठीक ढंग की सलाह देते हैं, तो वो इंसान भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा और हमको भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी कि हमने किसी के लिए कुछ किया। तो यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रही हूँ? ठीक है, आगे चलो। और हम हमेशा ये सोचते हैं कि वी शुड ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू ब्रेन बट वी कैन नॉट बी रथलेस। इसमें भी फर्क है। देखिए, एक तो मैं बोल रही हूँ कि आप 100% इमोशनली कोई डिसीजन कन्वे नहीं करें। दूसरा, मैं बोल रही हूँ कि आप अपने दिमाग का, ब्रेन का इस्तेमाल करें, उसको सोचें, उसकी सिचुएशन में अपने आप को रखें, बट हमें बहुत हार्श, बहुत रथलेस जो होते हैं, रथलेस मीन्स विदाउट, मैंने कम्युनिकेशन की पहले बात करी थी आपके साथ कि विदाउट विदाउट एनालाइजिंग व्हाट वी आर कन्वेइंग, हाउ वी आर कन्वेइंग, व्हाई वी आर सेइंग दिस, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर नॉट मैनेजर्स, वी आर लीडर्स। हम यहाँ पे लीडर्स की बात कर रहे हैं। मैनेजर तो ये बोलते ना कि मुझे नहीं पता तेरे घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, इट्स योर कंसर्न, मुझे तो ये काम चाहिए चाहिए, मुझे आज ही करके दो, नहीं तो कल से जॉब पे नहीं आना। ऐसे कभी सेंटर्स में बात हुई है? नेवर एवर। मुझे नहीं पता कि आज तक हमने कभी इस लहजे में किसी से बात की है, हम कभी भी नहीं करते हैं। दैट इज द वन ऑफ द मेजर वैल्यू ऑफ रीड इंडिया विच वी पास ऑन टू आर कोऑर्डिनेटर्स, आर टीम, आर स्टेक होल्डर्स, एवरीबॉडी। एम आई राइट? तो रथलेस बिल्कुल नहीं होना। एम्पैथी इज द आंसर, पुटिंग योर सेल्फ इन टू देयर शूज एंड एनालाइज व्हाई शी इज सफरिंग, व्हाई शी इज हैविंग दिस प्रॉब्लम टुडे, और उसको पूरा टाइम देना है उसकी प्रॉब्लम सुनने का। और ये मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती

0: मैं जब भी सेंटर में जाती हूँ, कोई भी लेडी मेरे पास आती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको टाइम देती हूँ, उसकी बात सुनती हूँ। बट हाँ, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जिसमें मैं नहीं जा पाई हूँ, जैसे बिहार के सेंटर्स है, मैं नहीं जा पाई। बैंगलोर का सेंटर है, कोविड की वजह से मैं नहीं जा पाई। बागेपल्ली मैं पहले बहुत बार गई हूँ, आंध्रा भी गई हूँ, श्री सिटी भी गई हूँ, पर जितना फ्रिक्वेंटली मुझे जाना चाहिए उतना फ्रिक्वेंटली मैं नहीं ट्रैवल कर पाती हूँ। अर्लियर बिकॉज ऑफ द कोविड, एंड सेकेंडली अभी इतने सारे सेंटर्स बढ़ गए हैं कि वो ट्रैवल करना ही थोड़ा सा टफ हो जाता है। नाउ जब हम एम्पैथी की बात कर रहे हैं, तो हमारे हमें अपनी एक प्रैक्टिस ये भी शार्प करनी चाहिए कि हम उस सिचुएशन को एनालाइज करें, इवैल्यूएट करें कि व्हाई दिस हैज हैपेंड टू हर। ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। उन रीजंस को हम नजरअंदाज कर देते हैं, हम उनको एनालाइज नहीं करते हैं, हम उनके बारे में सोचते नहीं हैं, और हम जल्दी से अपना डिसीजन लेके हम अपनी लाइफ को आगे ले जाते हैं। जब हम इस तरीके से अपनी लाइफ को आगे ले जाते हैं, या अगर हम इस तरीके से दूसरों को सलाह देते हैं, तो ये इसका इम्पैक्ट बहुत शॉर्ट टर्म होता है, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होता। हम उस प्रॉब्लम को नजरअंदाज करके उस दिन के लिए अपना सोल्यूशन निकाल रहे हैं, पर वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। हमें हमेशा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में सोचने की आदत डालनी चाहिए अपने आप को। जितना हम इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, उतना हम अपने आप को ये जो वेब है चैलेंजेस का, प्रॉब्लम्स का, डे टू डे लाइफ का, वेब का मतलब क्या होता है, जाला, उससे हम अपने आप को आस्ता आस्ता बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने चौथा ई यहाँ पे क्या बोला, इवैल्यूएट करना, उस सिचुएशन को परखना, उस सिचुएशन को जांचना। और ये हम अगर आदत डाल लेंगे अपने, तो ये हमारी एक रूटीन बन जाएगी कि व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस, व्हाई आई एम एक्टिंग लाइक दिस, व्हाई व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट एक्शन आई एम टेकिंग। ये हमें आदत पड़ जाएगी, और कोई ना कोई नेचुरल फिनोमिना हमें आगे स्टॉप करेगा कि लेट अस नॉट बी वेरी एग्रेसिव इन कन्वेइंग आवर डिसीजंस, इन यूजिंग द रथलेस लैंग्वेज, इन यूजिंग द वर्ड्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड टू से। तो ये हमें क्या है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश भी करता है, और ये डे टू डे लाइफ में हमारे रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत असर करती है ये चीज। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। फिर अगर हमारे में लीडरशिप का स्पार्क है, तो हम उस दूसरे पर्सन जो हमारे पास आया है अपनी प्रॉब्लम को लेके, हम उसको एनेबल करते हैं कि अपनी सिचुएशंस को खुद ही एनालाइज करो। हम अपना डिसीजन उनपे नहीं थोपे, हम अपना डिसीजन नहीं कन्वे करें कि यस आप तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो अगर हम उनके अंदर एक आदत डालते हैं कि हम उनको एनेबल करते हैं कि आप अपनी सिचुएशन को खुद एनालाइज करो, और उनको बहुत ही हलीमी से हम उनको समझाते हैं, तो शायद हम उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद एनालाइज करें, खुद अपने जीवन में आगे बढ़े, और अपनी प्रॉब्लम्स को उलझाना की बजाय उनको रिजॉल्व करने की आदत डालें। नेक्स्ट स्टेप है कि हम इस प्रोसेस से अगर हम चलते हैं, हम उसको एनेबल करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको एम्पावर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उनके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है उसको किसी ना किसी तरीके से बातचीत करके, समझा के, उसको हेल्प करके उस शक्ति को भी हम उभारने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उसको एम्पावर भी कर रहे हैं। एम्पावर किसके लिए कर रहे हैं? जो सिचुएशन में वो फंसी हुई है, जो सिचुएशन से वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, उस सिचुएशन को एनालाइज करके कामली कंपोज मैनर में वो अपने सॉल्यूशंस खुद ही ढूंढ रही है और हम उसको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्पावरिंग। हम भी ऐसे ही करते हैं। रीड इंडिया क्या करती है? एंगेज करती है, एनकरेज करती है, एम्पावर करती है और आपको आगे बढ़ने का खुद ही आप अपना रास्ता ढूंढते हो। मैं खाली जो आप लोग करते हो उसी को आपके सामने रख रही हूँ। मैं कोई नई चीज आपके सामने नहीं रख रही हूँ। ठीक है, जब हम एम्पावर करते हैं तो वॉट यू आर डूइंग, यू आर इनकलकेटिंग दी हैबिट ऑफ टेकिंग राइट डिसीजंस फॉर राइट एक्शन एट राइट टाइम। आप तीन चीजों को नोट करिए कि जब आप उसको एम्पावर एनेबल कर रहे हो, उसको एम्पावर कर रहे हो, तो आप उसमें एक आदत इनकलकेट कर रहे हो। इनकलकेट का मतलब उसको एक आदत उसमें ये बहुत अच्छे से डाल रहे हो कि वो राइट डिसीजन ले, राइट एक्शन ले उस डिसीजन के ऊपर और राइट टाइम पे ले। ठीक है, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। तो वो कैसे आती हैं? जब हम पिछले जो 5 स्टेप्स मैंने बताए हैं उनपे हम रेगुलर प्रैक्टिस करने की आदत डालें, उसको रोज प्रैक्टिस करें, अपने दिनचर्या को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को उसके साथ हम जोड़ें। तो मैंने आपसे अभी तक जो बात की है वो इमोशंस की बात की है, एम्पैथी की बात की है, इवैल्यूएट करने की बात की है, एनेबलिंग करने की बात की है, एनकरेज करने की बात की है और उनको एम्पावर करने की बात की है। तो ये पॉइंट्स आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो मैं सबको मेल भी कर दूंगी। ठीक है, सो विद दीज 5 E's यू आर एनेबलिंग द अदर पर्सन टू एनलाइटन हिज और हर ओन पाथ ऑफ ग्रोथ। तो उसको एक रोशनी की किरण मिलती है कि हाँ, अरे ये तो ठीक ही है, इन्होंने मुझे बताया कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकल सकती हूँ, मुझे इन्होंने रास्ता दिखाया, डिसीजन मेरा है, उन्होंने खाली मुझे रास्ता दिखाया है कि आप इस रास्ते पे भी चल सकती हैं, सेकंड लेन में भी जा सकती हैं, थर्ड में भी जा सकती हैं, फोर्थ में भी जा सकती हैं, चॉइस आपकी है, क्योंकि आपने उसको डिस्कस किया है, उसको एनालाइज किया है, उसको इवैल्यूएट किया है और आपने अपना राइट डिसीजन राइट टाइम पे लिया है आगे बढ़ने के लिए। अगर हम इसी बात को आगे लेके चलें तो मैं ये कहूंगी कि ये इतना आसान नहीं है। चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो कभी तो वो विजिबल हैं सरफेस पे और कभी वो इनविजिबल भी हैं। विजिबल ये है कि हाँ, सामने सिचुएशन खड़ी है, सामने पहाड़ गिर गया है और मुझे सड़क पार करनी है और जब तक मैं उस पहाड़ को, पत्थर को अपने रास्ते से नहीं निकालूंगी, नहीं आगे धकेलूंगी, तो मैं सड़क पार नहीं कर सकती। कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में होती हैं जो बिल्कुल इनविजिबल है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, बट प्रॉब्लम्स तो हैं। उन प्रॉब्लम्स के ये भी हमारे को रास्ता ढूंढना है। उन प्रॉब्लम से हम कैसे निकलेंगे, उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल है अपनी लाइफ का व्हीकल आगे बढ़ाने के लिए। और वो कैसे बढ़ेगा? हमें अपने आप को सेल्फ एनकरेज भी करना है आगे बढ़ने के लिए। जब तक हम अपने आप को सेल्फ एनकरेज नहीं करेंगे, हम अपने आप को वीक ही समझेंगे और हम कहेंगे कि वी विल गिव अप, नहीं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई कैन नॉट डू दिस, आई शुड नॉट डू दिस। जब ये थॉट्स हमारे माइंड में आने शुरू हो जाएंगे तो हम वेवरिंग माइंड हो जाएगा हमारा, हम फिर भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो शुरू में मैंने क्या बोला कि हम अपने आप को इमोशनली वीक करें या हम अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को दिमाग से सोच के हम अपने आप को स्ट्रांग करें। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू। और उसको किसने करना है? आप लोगों ने करना है। कोई भी लीडर आपके दिमाग में घुस के आपकी सोच नहीं बदल सकता है, कोई भी लीडर आपके इमोशंस को नहीं बदल सकता है, कोई भी लीडर आपको उंगली पकड़ के चलाना नहीं सिखाएगा। लीडर खाली आपको रास्ता दिखा सकता है, उस रास्ते पे चलना किसने है? आपने चलना है। ठोकरें भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, इमोशनली वीकनेस भी आएगी, बट लीडरशिप सेज दैट यू हैव टू ब्रेक द बैरियर्स। ब्रेक द बैरियर्स मीन्स जो भी रास्ते में उलझने आ रही हैं, उनको सही दिमाग से, बहुत हलीमी से, पेशेंस से, परसिवरेंस से उनके सॉल्यूशंस निकाल के आगे बढ़ना है। बिकॉज देयर इज अ सेइंग दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, बट बिकॉज हमारा माइंड इतना वेवरिंग होता है, हमारे पे इतने प्रेशर्स होते हैं माइंड पे, हम राइट डिसीजन एट राइट टाइम नहीं ले पाते हैं, इसलिए हम कंफ्यूजिंग स्टेट में आ जाते हैं। अनलेस वी हैव क्लैरिटी इन आर माइंड, वी कैन नॉट डेवलप द करेज फॉर शेपिंग आर ओन लाइफ टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। इज इट राइट? अगर हम हमेशा कंफ्यूज ही हैं, हमें क्लैरिटी नहीं है माइंड में, और क्लैरिटी प्रैक्टिस से आती है। अगर आप अपनी दो सिचुएशंस को एनालाइज करके उसका ठीक टाइम पे उसका सलूशन निकाल लेंगे तो आपकी क्लैरिटी अपने आप ही शार्प हो जाएगी। ये मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पर अगर हम हमेशा रट में ही रहेंगे, हम अपने आप को वीक ही समझेंगे, हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस भी नहीं आए। अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे अपने बारे में, दूसरों के बारे में, समाज के बारे में, कि मुझे समाज ने दिया क्या है, मेरे परिवार ने मुझे क्या दिया है, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे बच्चों ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे परिवार ने मेरे लिए क्या किया है, अगर हम ये क्वेश्चन मार्क की जिंदगी जिएंगे तो हमें क्लैरिटी नहीं आएगी। हमें इस क्वेश्चन मार्क की जिंदगी से एफर्मेशन की जिंदगी में आना है कि हाँ, ये चैलेंजेस हैं मेरे सामने, इन चैलेंजेस को मुझे रिजॉल्व करना है, और इन चैलेंजेस की प्रायोरिटी भी आपने तय करनी है। कई बार हम क्या करते हैं, एक बहुत प्रायोरिटी सिचुएशन हमारे सामने है, हम उससे आंखें छुपा के हम दूसरी प्रायोरिटीज को रिजॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये हम लोग सब करते हैं, इंक्लूडिंग मी। आज मैं ये सेशन आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं एक लाइफ सिचुएशन आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। पर हमें प्रायोरिटीज भी अपने आप ही तय करनी है कि ये 100% प्रायोरिटी है, ये 80% है, ये 60% है, ये 40%। ये हमारे दिनचर्या, ऑफिस में भी यही होता है कि हम अपने पूरे 8 घंटे ऐसे ही पास कर देते हैं, हम मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीजों को छोड़ के लेस प्रायोरिटी वाली चीजों के ऊपर फोकस कर देते हैं, और मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीजें हमारी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देती हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है जो हम बाकी चीजों को हैंडल नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, और इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। और अब हम बात करें कि हमने अपने आप को एनकरेज भी किया और हमने अपनी लाइफ में एनविजन भी किया। जो मैंने आपको बोला था ना, मोस्टली स्टेटमेंट ये होती है कि यू लिव इन योर प्रेजेंट, राइट, इन अ मैनर दैट योर पास्ट गिव्स यू द हैप्पीनेस। आज का पल जो प्रेजेंट है वो पल अगले मोमेंट में वो पास्ट बन जाएगा, बनेगा। जब वो पास्ट बन जाएगा, प्रेजेंट को इस तरीके से जिया है कि आपका पास्ट आपको खुशी नहीं देगा, तो आप दुख को ही लेकर आगे बढ़े। तो आपने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को यूज नहीं किया, आपने अपने प्रेजेंट को इस तरीके से नहीं जिया कि जब वो पास्ट बने तो आपको उसमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, आपको उसमें खुशी मिले। और खुशी अगर हम खाली अपने लिए ढूंढेंगे तो बहुत छोटी सी खुशी होगी, वो एक बिंदु होगा। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि यू लिव योर प्रेजेंट इन अ मैनर, व्हेन इट बिकम्स पास्ट यू फील हैप्पी अबाउट दैट। ये बहुत चार अक्षर की स्टेटमेंट है, पर बहुत पावरफुल है। इस स्टेटमेंट को अगर हम इग्नोर करते हैं, इस स्टेटमेंट को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं, और हमारा फ्यूचर तो कभी एनलाइटन फिर हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसमें तो पास्ट का भी इफेक्ट आएगा, प्रेजेंट का भी आएगा, और वो हमारा फ्यूचर बनेगा। सो वी हैव टू एनालाइज व्हाट वी आर डूइंग। हम एक समाज में रहते हैं, हमें हमेशा अपने दुख का गाना नहीं गाना है। वी लिव इन अ सोसाइटी, वी कैन नॉट जस्ट सिंग आवर ओन सॉन्ग्स, चाहे हमारी दुख हो चाहे हमारी खुशी हो। वी ऑल्सो हैव टू लेंड आवर इयर्स टू लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ अदर्स। हमें अपने कान जरूर दूसरों के लिए रखने हैं कि हम उनका भी गाना सुन सके, चाहे वो दुख सैड सॉन्ग हो, चाहे वो खुशी का सॉन्ग हो, चाहे वो स्ट्रगल्स का सॉन्ग हो, चाहे वो ग्लोरी का सॉन्ग हो। हमें दूसरों को भी स्पेस देनी चाहिए उनके बारे में सुनने की, विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में। वी जस्ट रिएक्ट, दूसरे इंसान की बात ही खत्म नहीं होती है और हमारा सोचने का स्केल इतना हाई हो जाता है, वो हमें रिएक्ट करने के लिए इतना मजबूर कर देता है कि दूसरे इंसान की बात वो किस लहजे में कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या चीज उसको अंदर से प्रोत्साहित कर रही है ये बात कहने की, हम बिल्कुल उसके ऊपर क्रॉस मार देते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये जो जर्नी है ये लाइफ की, हमारे हाथ में है। अब हमने डिसाइड करना है कि हम किस रास्ते पे चलें, कौन सा रास्ता अपनाएं, और अपनी लाइफ की डायरेक्शन हम कौन सी रखें। वी शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन आर अचीवमेंट्स एंड कीप ऑन रिड्यूसिंग द लिस्ट ऑफ चैलेंजेस। ये हमारा मिशन होना चाहिए। ये आसान नहीं है, प्रैक्टिस से आता है। जितना हम दूसरों की मदद करेंगे उतना जो सुपर पावर है वो हमारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर हम अपना ही दुख को इतना बड़ा और इतना एनहेंस कर देंगे, तो जो हमारी क्षमता है दूसरों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की वो खत्म हो जाएगी। तो इस बात को भी बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर हम ये आदत डाल लेते हैं, आप अगर मैं कल भी परसों रामपुर में मैं लड़कियों को बोलकर आई थी कि आप अपनी एक डायरी बनाएं और जो भी अच्छी चीज आपने सीखी, आपने समझी और आपने करी, उसको अपनी डायरी में लिखें, और मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी मैं वो डायरी देखना चाहूंगी। एंड दैट डायरी इज ए बाइबल फॉर यू, दैट डायरी इज ए कुरान फॉर यू, बिकॉज हमें स्पिरिचुअल बुक्स भी क्या कहती हैं, हम अपने आप को सुधारें, हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, हम अपना सुख भी लोगों के साथ बांटें, खाली दुख नहीं बांटें, और दूसरों के दुख में शामिल होके, उनके चैलेंजेस में शामिल होके उनको भी हेल्प करें उसमें से बाहर आने की। यही कहते हैं हमारी स्पिरिचुअल होली बुक्स। और अगर हम अपनी एक होली बुक लिखना शुरू कर दें तो कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा आपका, जब एक साल के बाद आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप में कितनी अच्छाइयां हैं, है ना, कितना अच्छा लगेगा आपको वो पढ़ के। तो आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ये आपको हेल्प करेगा जब आप पेपर पे लिखेंगे, ये आपको हेल्प करेगा अपने अंदर की नेगेटिविटी को भगाने के लिए और पॉजिटिव चीजों को इंवाइट करने के लिए। जो आपकी नेगेटिव चीजें हैं वो आपसे आस्ता आस्ता दूर जाना शुरू कर देंगी और पॉजिटिव चीजें आपके आसपास रहेंगी और आपको हमेशा एक सुकून मिलेगा, एक खुशी मिलेगी, एक आत्मविश्वास मिलेगा जिससे आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं। बस मैं आज इतना ही कहना चाह रही थी। अगर किसी के कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहता हो तो हमारे पास 10 मिनट हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जो मैंने इतने सारे ईज की आपके साथ आज बात करी है वो मैं शिवानी को दे दूंगी या मैं इसी मेल पे लिख दूंगी सबको। मैंने बात करी है इमोशंस की, एम्पैथी की, इवैल्यूएशन की, एनकरेजमेंट की, एम्पावरमेंट की, एनेबलमेंट की, एनलाइटनमेंट की, एनविजन करने की, लाइफ्स को एनरिच करने की, और लास्टली जब आप अपनी डायरी लिखना शुरू करेंगे तो आप एम्फेसाइज करेंगे दूसरों के सामने में कि इफ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू, बिकॉज यू हैव जस्टिफिकेशन, यू हैव प्रूफ विद यू दैट यू हैव डन दिस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई कोई कमेंट और कोई शेयर करना चाहता है कुछ, तो प्लेटफॉर्म आपके पास है। हमारे पास 10 मिनट हैं और हम 10 मिनट में फिर इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम, अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच, हमें इनक्रेज करने के लिए, इतनी अच्छी बातें बताने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच।
2: मैं सुवर्णा बोल रही हूँ मैम, पूना सेंटर से। बहुत अच्छा सेशन लिया मैम आपने, ऐसा मोटिवेट किया, मतलब हम भी आपके सेशन से हम भी बहुत अच्छा मतलब स्ट्रांग बन जाते हैं आपका सेशन अगर सुना तो।
0: बहुत अच्छी बात है। और एक पॉइंट आप एक वर्ड शेयर कर दीजिए सबके साथ, जिस जो वर्ड ने आपको मोटिवेट किया है।
2: इमोशनली हम भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं मैम आपका सेशन अगर सुना ना।
0: हाँ, वेरी गुड,
2: यस मैम, थैंक यू मैम।
0: थैंक
3: मैम, अंजू द्वारका सेंटर से।
0: हाँ जी अंजू,
3: आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मैम, आपका लीडरशिप की क्वालिटी जो आपने बताई है।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रैक्टिस करिए उसको, स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन सरपास एवरीबॉडी।
3: जी मैम,
0: ये बहुत जरूरी है। इसको खाली सुनने से तो समझ में आता है, पर प्रैक्टिस करने से और भी ज्यादा अच्छे से।
3: थैंक यू मैम,
0: थैंक यू अंजू
4: मैम। इस पे चलने के लिए भी हमें पावर चाहिए, थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे जरूर इम्प्लीमेंट करने की,
0: हाँ
4: क्योंकि बहुत कुछ है जिसपे प्रैक्टिस करना है ऐसा लगता है। चीज टूट जाती है, कुछ चलती रहती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि इसके बाद हमें लगता है कि हमें किस किस जगह चीज को इम्प्लीमेंट करना है, इससे हमें पता चलता है कि हमें अभी और क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
4: जी मैम,
0: पहले अपनी लाइफ को स्ट्रांग बनाना है, फिर दूसरों की लाइफ को भी स्ट्रांग बनाना है। दोनों
4: जी मैम, जी मैम,
0: चीजों का दारोमदार आपके कंधों पे है।
4: जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम।
5: गुड आफ्टरनून मैम, फरहा बोल रही हूँ रामपुर से।
0: जी फरहा, कैसी हो आप?
5: ठीक है मैम। आपने बताया कि हमें कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है करना, कभी भी अगर हम सेंटर पे बेनिफिशियरीज को सिखाते हैं तो यही नहीं होना चाहिए कि उसका एडमिशन किया और सिर्फ हमारा मतलब है उसको सिखाने से कि आज उसने क्या सीखा, कल क्या सीखा, वो क्या सीख रहा है, बट उसके साथ हमारा एक अंदर से बर्ताव भी अच्छा होना चाहिए कि वो फैमिली में कैसा चल रहा है उसका, उसके अंदर की क्या प्रॉब्लम है वो हमसे शेयर कर सके। अभी एक ही अभी मैंने लाइब्रेरी के सेशन में भी ये शेयर किया था और यहाँ भी शेयर करना चाहती हूँ। एक बेनिफिशियरीज मेरे पास आ रही थी और वो आती थी, कंप्यूटर सीखती थी और चली जाती थी। काफी लड़कियां थी जो हंसती भी थी, बोलती भी थी, बट उसको किसी से कोई मतलब नहीं। आई और उसने सीखा और वो चली गई। तो मैंने नोट किया 15 दिन 20 दिन, एक दिन मैंने उसे याद करने के लिए कुछ दिया कि आपको ये याद करके लाना है, तो वो अगले दिन याद नहीं करके लाई और बहुत रोने लगी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि मैम आप हमें डांटेंगी। मैंने कहा आपने मतलब देखने से पहले ही सोच लिया कि हमें मैं डांटूंगी। मैंने कहा डांटूंगी नहीं, आप मुझे बताओ कि आप रो क्यों रही हो, कि मैंने ये स्पेलिंग याद नहीं की। तो मैंने कहा आपने याद क्यों नहीं की कि वो मेरी ना मम्मी मुझे बहुत परेशान करती है। मैंने उससे ऐसी धीरे धीरे बात निकलवाई, मम्मी क्यों परेशान करती कि मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली, मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी और वो कहती है अब तुम्हें कहीं पढ़ने नहीं जाना है, घर का काम करना है और भैंसों को देखना है, दूध वूध बेचना है और तुम्हें कुछ नहीं करना है और मुझे पढ़ना है मैम। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी मम्मी से बात करने आऊंगी घर पे और उनको समझाऊंगी और आप सेंटर पर आओ, आपको जो सीखना है वो सीखो, बट ऐसे परेशान रहने से कुछ नहीं होगा, आपको भी बात करनी होगी खुद के लिए घर पर। तो उसको ये बात काफी समझ में आई, उसने अपने मम्मी तो नहीं सुन रही थी उसके बाद, लेकिन उन्होंने अपने पापा से वो बात की और हम उसके गाँव गए, हमने उसकी मम्मी से जब फेस टू फेस बात की तो वो बहुत तेज किस्म की थी, वो यही बोल रही थी कि नहीं अब ये क्या करेगी, पढ़ के नहीं पढ़ना है, इसकी शादी करनी है हमें और ये है और वो, और वो जो उनकी सगी बेटी थी उनको पढ़ा रही थी। मतलब गाँव में ये होता है कि वहां पर सगा सौतेले का थोड़ा सा रखते हैं कि इनको नहीं करना है, तो वहां उनको हमने बहुत इनकरेज किया और बोला कि शादी से पहले अगर आप 1-2 महीने हमारे सेंटर पे भेज दो, पूरी हमारी जिम्मेदारी रहेगी, आप सीखने दो जो वो सीखने के लिए बोल रही है, आप फीस मत देना, आपको लगता है कि मेरी बेटी के लिए वहाँ फीस जा रही है और मैं नहीं दे सकती, आप फीस मत दीजिएगा लेकिन इसको भेजो क्योंकि ये सीखना चाहती है। तो वो उस चीज से बहुत खुश हुई और उसकी मम्मी ने ठीक है आधे पौन घंटे के लिए सेंटर पे भेजना शुरू किया। तो वो जो उसकी बातें दिमाग से थी और जो वो सोचती थी, डरती थी, वो टेंशन में रहती थी, तो वो धीरे धीरे दूर हुई। तो वो सारी चीजें आपने हमें बताई कि हमें कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है सेंटर पे, अगर हमारे पास एक एक बेनिफिशियरी आ रहा है तो हमें उससे हर एक बेनिफिशियरी से बात करना चाहिए, क्या पता हम अपनी बात समझा के उसको कुछ इनकरेज करें उसकी लाइफ के लिए, क्या पता उसकी सोच चेंज करें, उसके जितने भी दिमाग में निगेटिव पॉइंट है उसको दूर करके उसको पॉजिटिव सोच में बदले। तो ये बात आपका ये पॉइंट हमेशा हम नोट भी करते हैं, करते भी आगे, और आज आपने जो बताया वो काफी हमारे लिए काम आता है। थैंक यू
0: फरा, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और मैं सबको ये बोलना चाहूंगी जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, मैं परसों मैं कब थे हम फरा के सेशन में, ऑन ट्यूसडे राइट, ऑन ट्यूसडे मैं स्मिता टिम्पल मैम फरा और अकबर के सेशन में सेंटर में थे और इट वॉज अमेज्ड, 50 से ऊपर लड़कियां थी जो इनके सेंटर में बैठी थी और सबने बुर्का पहना हुआ था, बहुत गर्मी थी, मेरी हालत एकदम खराब थी बिकॉज मुझे बहुत पसीना आता है वहां पे, तो आई वॉज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, पर वो माहौल देख के ना मैं अपने आप को रोक पाई, ना स्मिता अपने आप को रोक पाई, ना डिम्पल अपने आप को रोक पाई, ना फरह रोक पाई और ना ही अकबर रोक पाया। हम पांचों ने इतना उन लोगों के साथ बातचीत की, इतना उन लोगों को समझाया और वो ना वर्ड्स अपने आप आते हैं उनसे बात करने के लिए. एंड फरा, अकबर इज नॉट हियर टुडे, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे ऑनलाइन. आज आपका फेस्टिवल है पर फिर भी आप सेशन मिस नहीं कर रही हैं. और उस दिन मेरे सामने से वो आंखों के आगे से वो सीन ही नहीं जा रहा है कि इतनी सारी लड़कियां वहां पे हमें सुनने के लिए आई हुई थी और पीछे की लड़कियां स्टूल्स पे खड़े होके हमारी शक्ल देख के हमें सुनना चाह रही थी. दैट वॉज अमेजिंग फरा. You are a real leader and you are working in the community.
5: Thank you.
0: Very well, very
5: ये
0: well.
5: सब आपसे ही सीखा है मैम, जो आप सिखाते हैं वो हम आगे करते हैं.
0: बहुत अच्छा. डिम्पल ने अपने सेंटर के, स्मिता ने अपने एक्सपीरियंसेस, फरा ने अपने एक्सपीरियंसेस, जो मैं हमेशा फरा को कोट करती हूँ कि फरा को मैं जब फर्स्ट टाइम मिली थी तो दरवाजे की एक पार्टीशन थी, फरा उधर से बोल रही थी और मैं इधर से बोल रही थी. आज फरा सबके सामने इतनी कॉन्फिडेंटली बात करती है. दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. और अगर हमने ऐसे 10,000 या 20,000 भी लड़कियों को तैयार कर दिया तो वो लड़कियां कभी भी पीछे मुड़ के अपनी लाइफ को नहीं देखेंगी. और आप लोगों की भी गारंटी है बिकॉज यू पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड दैट, राइट? ठीक है, थैंक यू फॉर दैट.
5: गुड आफ्टरनून मैम.
0: गुड आफ्टरनून
6: मैम. मैं गरिमा ग्रेसी शशि.
0: हाँ जी शशि.
6: यस मैम. मैम लड़कियां आपसे बात कर जाती मैम, वो आपका सेशन सभी सुन रही हैं और मैम सभी लड़कियां अभी आपके सामने हैं लाइव में, वे कुछ बात करना चाहती हैं मैम.
0: हाँ जी बोलिए. गुड
7: आफ्टरनून मैम. हम जो ट्यूशन भी सीख रहे हैं ना मैम, बहुत अच्छा सीख रहे हैं और सचिन मैम हमें बहुत अच्छा सिखा रही है और हम चाहते हैं कि हमें और भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिले. आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम. मैम हमने कभी सोचा भी था कि हम ट्यूशन भी सिखाया जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ गरिमा ग्रेस सेंटर में ट्यूशन आगे बहुत अच्छा काम हुआ है मैम. एक और तो कहना आता है ना, सुन हमें वो पहचानने के लिए मिला है मैम से, सचिन मैम से. हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिल से बहुत खुशी आ रही है मैम.
0: वेरी नाइस. थैंक यू फॉर शेयरिंग. बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के. गरिमा ग्रह एक ऐसा सेंटर है, मैं सबको बताना चाहूंगी कि कीर्ति नगर में एक एमसीटी का टॉयलेट कॉम्प्लेक्स था जिसको पीवीआर नेस्ट ने बिल्कुल रेनोवेट कर दिया और उसमें दो कमरे हमें दिए हैं जिसमें हमने लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेक्शन और स्टिचिंग सेक्शन और ब्यूटी एंड वेलनेस का सेक्शन बनाया है. और पैर रखने की जगह नहीं होती है, ये सब औरतें इतने उत्साह से उस सेंटर में आती हैं. कोई इनहिबिशन नहीं है कि वो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, वहां पे हमें नहीं बैठना, वहां पे हमने नहीं सीखना. जहाँ सीखने की इच्छा होती है वहां पे राह भी निकल आती है, ये मेरा विश्वास था. तभी हमने पीवीआर नेस्ट के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पे सेंटर खोला था. थैंक यू सो मच. मेरा बहुत बहुत धन्यवाद फरजाना. आप कैमरे में आई और फिर चली गई, आप कुछ कहना चाहती हूँ?
8: थैंक यू मैम.
0: बोलिए.
8: थैंक यू सो मच. आपका सेशन लेकर हमें ये महसूस होता है कि लीडरशिप सबके अंदर होती है, लेकिन आपका जब हम सेशन लेते हैं ना, हम अपने अंदर से उसे जगा पाते हैं. तो बात है तो सिर्फ उसे जगाने की है मैम, और फिर आपकी बातों से और आपके समझाने के तरीके से, आपके सेशन से हमें इतना अच्छा लगता है कि हमको ये अपने ऊपर कर पाते हैं कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं. थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से मैं भी बहुत कुछ हूँ.
0: फरजाना बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये शेयर करने का. और ईद मुबारक, आज आपका त्योहार है और फिर भी आप सेशन अटेंड कर रही हैं. और फरजाना एक ऐसी लड़की है जो इतने रिमोट एरिया से और आगे इतनी बढ़ गई है और इसका थॉट प्रोसेस इतना चेंज हो गया और ये इतनी औरतों को एम्पावर करती है. तो अभी ये अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के कभी नहीं देख सकती है, ये मेरे को पूरा विश्वास है ना फरजाना
8: जी। मैम मुझे तो ना हर बार और अच्छा लगता है मैम, ऐसा लगता है नहीं। पिछली जब मैं याद करती हूँ ऐसा लगता है मैं वो फरजाना हुई नहीं, पता नहीं कैसे ऐसे हो गई। मैं बात करने का तरीका मतलब जो भी पहले था, तो मैं ये कहना चाहती हूँ मैम सिर्फ जो भी है आपकी वजह से है और हम बहुत अच्छा कर पाए और आगे भी इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा करेंगे रीड इंडिया के लिए।
0: थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना। सना यू ऑल्सो केम ऑनलाइन एंड देन यू क्लोज्ड। यस
9: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून,
9: हाउ आर यू मैम? हैप्पी ईद।
0: हैप्पी ईद टू यू ऑल, सबके परिवार को बहुत बहुत मुबारक। और सबने बहुत अच्छी खीर भी बनाई होगी आज मुझे पता
9: है। यस मैम। थैंक यू मैम फॉर द सेशन, फॉर टेकिंग आउट टाइम हम लोगों के लिए, इतना टाइम निकालने के लिए थैंक यू।
0: नहीं नहीं ये तो मेरा फर्ज है और मेरा काम है
9: मैम। एक्चुअली जिस सेशन होता है इसकी वजह से हम लोग इंटरेक्ट भी कर पाते हैं, ऐसे हमारी बात हो वीडियो कॉल पर, हम एक दूसरे से बात भी कर पाते हैं, सारे सेंटर्स के लोग इकट्ठा होते हैं, सबके एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, तो हमें भी लगता है बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है जो अदर सेंटर से भी सीखने को मिलती रहती है कि हम अपने अंदर क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी लर्निंग्स बढ़ती है, तो ये सारे सेशन बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। और मैम कल का सेशन पता मैम का है, वो भी बहुत अवेटेड सेशन है।
0: और बहुत अवेटेड सेशन है, और मैं आपको बताऊं स्मिता और मैं इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। इट्स नॉट दैट आई स्पीक एक्सटेम्पोर, मैं पहले अपने थॉट्स को कोलेट कर लेती हूँ, एक पेपर पे लिख लेती हूँ और स्मिता के साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि हम कैसे यू नो एम्पावरमेंट जो है या लीडरशिप है हम हवा में बात नहीं कर सकते, हमें बहुत ही पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करके उसको समझा के उसको कैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में ला सकते हैं वो डिस्कस करने में हमें भी एम्पावरमेंट मिलती है, हमें भी एनकरेजमेंट मिलती है। प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में है पर उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे एड्रेस करना है, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इट्स ए कलेक्टिव सेशन फॉर एवरीवन। हम सारे इकट्ठे तो एक ही प्लेटफॉर्म पे थैंक्स टू टेक्नोलॉजी की हम आ सकते हैं, अदरवाइज फिजिकली मिलना तो बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बोला कि मैं फरा के सेंटर पे हम लोग गए थे, इट वॉज इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी मैं आपको बता नहीं सकती। एंड थैंक्स टू ऑल द गर्ल्स हु केम देयर, मोर देन 50 to 60 गर्ल्स वर देयर एंड दे वर बबलिंग विद एनर्जी कि हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है, हमें अपनी लाइफ में कुछ करना। तो वो प्रोत्साहन देख के हमें भी एनर्जी मिलती है, हमें भी खुशी होती है और फिर हमारा और करने का दिल करता है। ठीक है,
9: थैंक
0: यू सर।
10: मैम मैं सेशन आपका पूरा सुना है, फिलहाल मैं बस में ट्रैवलिंग पे हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखा सभी लोगों ने और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए। और आपसे सीख के कुछ आगे बढ़ने की कोशिश है लाइफ में, जो हम अपने टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम।
0: सुमन इज अनदर एग्जाम्पल, जो मैंने आज एक पिक्चर आपकी आंखों के आगे दिखाने की कोशिश की है, सुमन इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, फरा इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, सना इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, फरजाना इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट। तो ये हमारे सामने इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं और शायद ये लोग ही मुझे इनकरेज करते हैं ये सब बातें करने के लिए, क्योंकि ये सारी बातें अगर हम सब तक पहुंच जाए तो एक्चुअली रियल माने में हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बस में सेशन सुनने का, थैंक यू सो मच।
10: थैंक यू मैम। थैंक यू।
0: थैंक यू।
6: थैंक यू मैम।
0: थैंक यू जी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट सबको, फिर से ईद मुबारक और सब लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: भगवान ने अगर बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे और बड़ा करके तुम सामने वाले को घूरते रहो।
1: क्या क्या कह रहे हो तुम?
0: मैं कह रहा हूँ कि अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों को थोड़ा छोटा कीजिए और प्रोग्राम शुरू कीजिए।
1: राइट, फिर आज किस बारे में जानना चाहोगे तुम बबलू?
0: ये आंखें उफ युम्मा।
2: खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, मगर आंखें खोलते ही देखने की प्रक्रिया जितनी सरल प्रतीत होती है उतनी है नहीं। इसके पीछे विज्ञान है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट या अपवर्तित होकर कॉर्निया पर पड़ती है। कॉर्निया के बाद लाइट एंटीरियर चेंबर से होकर गुजरती है, जिसमें एक तरल पदार्थ होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये तरल पदार्थ इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर पैदा करता है, जिससे आई बॉल्स की शेप बनी रहती है। कॉर्निया के बाद लाइट आयरिस पर पड़ती है, जो लाइट की तीव्रता के हिसाब से कम या ज्यादा खुलता है। कैमरे का अपर्चर कुछ ऐसे ही काम करता है। अगर रोशनी ज्यादा होती है तो कैमरे का अपर्चर और हमारी आंख का आयरिस कुछ बंद हो जाता है, और कम रोशनी में अपर्चर और आयरिस ज्यादा खुल जाते हैं। आयरिस से होकर लाइट प्यूपिल और लेंस से होती हुई रेटिना पर पड़ती है, और इससे रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी होती है। इन इमेजेस को आंखों से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है ऑप्टिक नर्व्स। ब्रेन में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनकी मदद से रेटिना पर बनने वाले इमेज को ब्रेन पढ़ता है। ब्रेन इमेज को सीधा करके देखता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि आंखें सामने देखते वक्त अपने दोनों तरफ भी देख पाती हैं, और इसे आंखों का फील्ड ऑफ विजन कहते हैं। अक्सर जब आंखों के देखने की क्षमता कम हो जाती है तब फील्ड विजन कम हो जाता है। कई बार आंखों में डिफेक्ट आ जाते हैं, जिससे देखने की प्रक्रिया में मुश्किल होने लगती है। कभी लेंस में दिक्कत आने से रेटिना तक रोशनी पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। कई बार इमेज रेटिना पर ना बनकर उसके आगे और पीछे बनने लगती है, जिससे हमें चीजें साफ नहीं दिखती और चश्मा लगवाना पड़ता है। कई बार आंखों के इन्फेक्शन या आंख में चोट लगने से भी हमारी दृष्टि पर असर पड़ता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। इस बीमारी में धीमी लाइट में और अंधेरे में दिखना बहुत कम हो जाता है। इसके इलाज के लिए जरूरी है कि मरीज को विटामिन ए से भरपूर भोजन दिया जाए। इन बीमारियों का इलाज तो हो सकता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें लापरवाही करने से आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। वजह कुछ भी हो, पर आंखों की बीमारी यदि गंभीरता से ना ली जाए तो नतीजा एक ही निकलता है, दृष्टिहीनता। गंभीरता से ना लेने की एक बहुत बड़ी वजह होती है इन बीमारियों का धीरे धीरे बढ़ना।
1: ये तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एक चमत्कारिक शक्ति है सेल रिपेयर करने की, यानी किसी भी अंग द्वारा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिपेयर या रिप्लेस करने की क्षमता। मगर आंखों की स्थिति जरा भिन्न है। इसके लेंस की कोशिकाओं को ना तो रिपेयर किया जा सकता है और ना ही रिप्लेस। इसलिए अगर लेंस को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो यह धीरे धीरे जमा होकर बीमारी का रूप धारण कर लेता है। यह बीमारी है कैटरैक्ट, यानी मोतियाबिंद। इस बीमारी में आंखों से धुंधला दिखाई देता है। आइए देखते हैं यह बीमारी होती कैसे।
2: मोतियाबिंद की बीमारी में लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है और लेंस क्लाउडी यानी कि धुंधला होता जाता है। इसकी वजह से लेंस से होकर जाने वाली रोशनी रेटिना तक पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस के प्रोटीन में बदलाव आता है, जो लेंस को अपारदर्शी बना देता है। इसे अंडे के उबलने और ऑमलेट के बनने जैसी साधारण प्रक्रिया से समझा जा सकता है। अंडे की सफेद जर्दी प्रोटीन से बनी होती है और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जब अंडे को उबाला जाता है या पकाया जाता है तो अंडे के प्रोटीन में बदलाव आ जाता है जिससे वो अपारदर्शी हो जाता है। कैटरेक्ट में भी लेंस के प्रोटीन में आया बदलाव उसे अपारदर्शी बना देता है। कैटरेक्ट के बहुत अधिक बढ़ जाने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। मोतियाबिंद के सामान्य लक्षण हैं धुंधला दिखना, और ये धुंधलापन बीमारी के साथ बढ़ता जाता है। अगर इलाज न किया जाए तो पूरी तरह दिखना बंद भी हो सकता है। रात में रोशनी वाली जगह पर चमकीले स्पॉट्स दिखना, चश्मे के नंबर में बार बार बदलाव आना और डबल विजन यानी हर चीज दो दिखना। बढ़ती उम्र के साथ होने वाला मोतिया सिनाइल कैटरेक्ट कहलाता है। इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति में लेंस के प्रोटीन में बदलाव के कारण प्रोटीन के क्लंप यानी थक्के रेटिना तक पहुंचने वाली इमेज की शार्पनेस को कम कर देते हैं। प्रोटीन के क्लंप के कारण लेंस की पारदर्शिता खत्म हो जाती है जिससे रेटिना तक समुचित मात्रा में रोशनी नहीं पहुंच पाती। दूसरी स्थिति में पूरे लेंस की पारदर्शिता धीरे धीरे खत्म होने लगती है जिससे दृष्टि में धुंधलापन आने लगता है। जैसे जैसे लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है वैसे वैसे धुंधलापन बढ़ता जाता है। जब आंख की किसी दूसरी बीमारी की वजह से आंख के लेंस में होने वाले इन्फेक्शन से कैटरेक्ट होता है तो इसे सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। अगर कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद हुए इन्फेक्शन से दोबारा कैटरेक्ट हो जाता है तो इसे भी सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में किसी चोट जैसे फायर क्रैकर के स्प्लिंटर्स या चिंगारियों से हुआ घाव और बिजली के झटकों से होने वाले कैटरेक्ट को ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में गहरी चोट जो कॉर्निया से होते हुए लेंस को भी नुकसान पहुंचा दे उससे ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट हो सकता है।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं और कुहू आपका स्वागत करते हैं। ये आंखें उफ यम्मा। अरे कोकिला, तुम मुझे दो क्यों दिख रही हो?
1: पता नहीं एपिसोड के अंत तक दिखूंगी भी कि नहीं। जाओ जाकर अपना इलाज करा लो, वरना आंखों की एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें शुरुआत में इलाज ना कराने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है।
0: वो तो मैं करा लूंगा, मगर आपने तो सिर्फ बीमारी के बारे में बताकर छोड़ दिया मैडम कुहू MBBS। इलाज नहीं है क्या?
1: बबलू, मैं इलाज के बारे में ही बताने जा रही थी। जानते हैं फ्रेंड्स, पुराने जमाने में मोतियाबिंद का इलाज करने के लिए उसके पूरे पकने का इंतजार करते थे, मगर आज किसी भी स्टेज में उसका इलाज किया जा सकता है। असल में इसे तीन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। शुरुआती दौर में इसे ट्रेस कैटरैक कहते हैं, फिर माइल्ड या मॉडरेट, और जब मोतियाबिंद पूर्ण रूप से बढ़ जाता है तो उसे पक्का मोतिया कहते हैं।
0: अब इलाज की बात करें।
2: मोतियाबिंद का डिटेक्शन व्यापक जांच के बाद होता है। इनमें आते हैं विजुअल एक्यूटी टेस्ट, डायलेटेड आई एग्जाम और अल्ट्रासाउंड। विजुअल एक्यूटी टेस्ट में एक चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट के दौरान व्यक्ति 6 मीटर की दूरी से चार्ट के अक्षरों को पढ़ता है। इसकी रीडिंग फ्रैक्शन में लेते हैं। फ्रैक्शंस के आधार पर आंखों के पावर का निर्धारण ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है। ये टेस्ट आंखों की दूसरी बीमारियों की जांच के लिए भी किया जाता है।
3: जांच के दौरान डायलेशन में आंखों में ऐसे आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं जो प्यूपिल को बड़ा कर देते हैं। इससे प्यूपिल के पीछे का हिस्सा जांचना आसान हो जाता है। पिछला हिस्सा देखने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप नामक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इससे किसी भी प्रकार की आंख की बीमारी पकड़ में आ जाती है।
4: ओपेक लेंस को सर्जिकली रिमूव करके ही कैटरेक्ट का पूरा इलाज किया जाता है। कैटरेक्ट के शुरुआती दिनों में डॉक्टर कई बार चश्मा लगाने की सलाह देते हैं। इसके पश्चात सर्जरी की जाती है, जिसके जरिए लेंस को हटाकर उसकी जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। ये सर्जरी दो तरह की होती है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी और फैको इमल्सिफिकेशन सर्जरी।
2: एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी में कॉर्निया में चीरा लगाकर खराब हो चुके लेंस को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद निकाले गए लेंस की जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, जहां लेंस निकाल लिया जाता है। इसके बाद निकाले गए लेंस की जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। जहां लेंस नहीं लगाया जाता, वहां मरीज को सर्जरी के बाद चश्मा लगाया जाता है। दूसरी सर्जरी है फैको इमल्सिफिकेशन सर्जरी, जो एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है। इसमें कॉर्निया में एक बहुत छोटा सा सुराख किया जाता है, फिर इस सुराख के जरिए अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रवाहित की जाती हैं। इन अल्ट्रासाउंड वेव्स के कारण मोतिया यानी कि अपारदर्शी लेंस मुलायम होकर टूट जाता है और उस जगह पर कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट की मदद से लेंस लगाने से पहले लेंस का पावर और साइज तय किया जाता है। कैटरेक्ट सर्जरी आजकल लगभग आधे घंटे का मामूली ऑपरेशन है, जिसमें मरीज को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स. मोतियाबिंद तो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है, लेकिन आंखों की एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें अगर एक बार आंखों की रोशनी चली गई तो फिर उसे वापस नहीं लाया जा सकता. ये बीमारी है ग्लॉकोमा. आइए देखते हैं ये बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है.
1: ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद, ये आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाने से ऑप्टिक नर्व्स के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है. ऑप्टिक नर्व ही इमेज को आंखों से ब्रेन तक पहुंचाती है. दरअसल कॉर्निया और लेंस के बीच एक्वस ह्यूमर नामक एक तरल पदार्थ मौजूद होता है जो कि आई बॉल का आकार मेंटेन रखने के लिए एक दबाव आंखों में पैदा करता है जिसे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर कहते हैं. प्राकृतिक रूप से एक्वस ह्यूमर आंख के एक हिस्से में लगातार बनते रहते हैं और दूसरे हिस्से से लगातार निकलते भी रहते हैं. इससे आई प्रेशर संतुलित रहता है, लेकिन कभी कभी एक्वस ह्यूमर का निर्माण जरूरत से ज्यादा होने लगता है या इनका निकलना बाधित होने लगता है. ऐसी स्थिति में आई प्रेशर बढ़ जाता है. एक्वस ह्यूमर के बहाव में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ग्लूकोमा दो तरह का होता है. पहला ओपन एंगल ग्लूकोमा, ट्राबेक्युलर मेशवर्क जिससे होकर एक्वस ह्यूमर बाहर निकलता है उसमें धीरे धीरे आने वाली रुकावट से ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है तथा दोनों आंखों को प्रभावित करता है. दरअसल ट्राबेक्युलर मेशवर्क टिश्यूज कॉर्निया के पास होते हैं और इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर मेंटेन करने के लिए एक्वस ह्यूमर को बाहर निकालते हैं. अगर इनमें कोई रुकावट आ जाती है तो एक्वस ह्यूमर का लेवल बढ़ने लगता है और इससे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर भी बढ़ जाता है जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है. दूसरी तरह का ग्लूकोमा है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, जिसमें आयरिस एक्वस ह्यूमर के फ्लो में रुकावट पैदा करता है. नतीजतन एक्वस ह्यूमर के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है और इससे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर भी बढ़ जाता है जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है.
2: क्लोज्ड एंगल ग्लॉकोमा में आंख का

0: बिल्कुल ठीक हो। और अब बात सेकेंडरी ग्लूकोमा की। इन्फ्लेमेशन, आंखों का ट्यूमर और वेनस प्रेशर के बढ़ने से होने वाले ग्लूकोमा को सेकेंडरी ग्लूकोमा कहते हैं। आमतौर पर क्रॉनिक ग्लूकोमा में कोई निश्चित लक्षण नहीं दिखाई पड़ते और ये किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। लेकिन कुछ लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो, जिनके परिवार में ग्लूकोमा की फैमिली हिस्ट्री हो, डायबिटीज, माइग्रेन या हाइपरटेंशन के मरीज हों, लंबे समय से स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे लोग या जिनकी आंखों में चोट लगी हो। ग्लूकोमा के डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें प्रमुख है टोनोमेट्री। इसमें मोतियाबिंद के टेस्ट की ही तरह एक विशेष इंस्ट्रूमेंट द्वारा आंखों के प्रेशर को नापा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण टेस्ट है ऑप्थैल्मोस्कोप टेस्ट, जिसके जरिए आंखों के पीछे ऑप्टिक नर्व की जांच की जाती है। तीसरा टेस्ट है विजुअल फील्ड असेसमेंट। इस टेस्ट में एक स्क्रीन पर रोशनी की छोटी छोटी स्पॉट्स डाली जाती है और मरीज को रोशनी वाले स्थान को पहचानने के लिए कहा जाता है। इससे पता चलता है कि मरीज के विजन पर कितना असर पड़ा है। ग्लूकोमा का इलाज उसके वर्ग पर निर्भर करता है। ओपन एंगल ग्लूकोमा का आई ड्रॉप्स या खाने वाली दवाओं से इलाज किया जाता है। यदि दवाओं से इलाज न हो सके तब सर्जरी से इसे कंट्रोल करते हैं। सर्जरी में एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो के लिए एक नया रूट बनाया जाता है। इसको ट्रैबेक्यूलोक्टोमी कहते हैं। क्लोज एंगल ग्लूकोमा का इलाज कारगर रूप से सर्जरी के द्वारा होता है। सर्जरी में आयरिस की बाहरी सीमा पर एक छोटा छेद करते हैं। इससे एक्वस ह्यूमर बाहर निकल जाता है। इसके लिए ज्यादातर लेसिक सर्जरी या फिर मामूली ऑपरेशन किया जाता है और एक्वस ह्यूमर के निकलने के लिए दूसरा रास्ता बना दिया जाता है।
1: यो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद हम लाए हैं कुछ खट्टी मीठी बातें। चलिए बताइए कि हम एक मिनट में कितनी बार पलकें झपकाते हैं। कोकिला, तुम शुरू करो।
2: यही कोई 15 बार।
1: क्या आप जानते हैं कि आंसू क्यों बहते हैं?
2: बबलू, तुम वही बताओगे जो सबको पता है, कुछ नया नहीं बता सकते।
0: विजन लॉस का एक और कारण है कॉर्नियल अल्सर या कॉर्नियल डैमेज। दरअसल कॉर्निया शीशे जैसा एक पारदर्शी टिश्यू है। इसका व्यास लगभग 11 से 12 मिलीमीटर होता है। ये आंख के काले हिस्से का आवरण है। किसी भी प्रकार की चोट, इन्फेक्शन या अधिक ताप से कॉर्निया डैमेज हो जाने पर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है। अगर कॉर्निया के उस हिस्से में डैमेज हुआ है जहाँ से विजन पर असर नहीं पड़ता तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। चूंकि कॉर्निया का पोषण रक्त से नहीं होता है बल्कि आंख के गोले के भीतर द्रव से होता है, इसलिए मृत्यु के पश्चात भी इसे ट्रांसप्लांट के लिए निकाला जा सकता है। आई डोनर की मृत्यु के 3 से 4 घंटों के भीतर कॉर्निया को निकाल लिया जाता है। सर्जन केवल कॉर्निया बदलता है, न कि आंख का पूरा गोला।
3: नेत्रदान महादान है। अगर आप नेत्रदान के इच्छुक हैं तो अपने पास के आई बैंक से संपर्क करें।
0: आंखों का एक और गंभीर इन्फेक्शन है जिसे पैन ऑप्थल्माइटिस कहते हैं। इसमें लेंस, कॉर्निया, आयरिस और रेटिना पर असर पड़ सकता है। अगर समय पर इसका इलाज न हो तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है और कई मामलों में पूरी आंख को ही निकालना पड़ सकता है। ट्रैकोमा आंखों का एक और इन्फेक्शन है जो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे में एक दूसरे के सामान के इस्तेमाल से फैल सकता है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे में और माँ से बच्चे में ट्रैकोमा का इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है। ये इन्फेक्शन अक्सर वहाँ होता है जहाँ गंदगी फैली होती है और साफ सफाई के लिए पानी की कमी होती है। ड्रायर क्लाइमेट्स यानी अति शुष्क जलवायु वाले इलाकों में ये इन्फेक्शन ज्यादा होता है। अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है।

0: कैसा रहा? खूब सारी बातें बता दी, नहीं?
1: अब बातें ही करते रहोगे या कुछ कंक्लूजन भी होगा?
0: ओहो, मेरे डायलॉग की चोरी। खैर, बच्चों को भी कभी कभी छूट दे देनी चाहिए।
1: बबलू,
0: बाय फ्रेंड्स,
1: तुमसे मैंने
0: नेक्स्ट वीक मिलेंगे, बाय।
1: सॉरी फ्रेंड्स, मुझे ना इसके बड़बोलेपन पर रोक लगानी पड़ेगी, इसलिए आपसे इजाजत चाहूंगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। बबलू,
2: आइए अब एक नजर इस एपिसोड की कुछ खास बातों पर। आंख में लाइट कई जगह पर फोकस होती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कॉर्निया पर पड़ती है। रेटिना के ऊपर उल्टी इमेज बनती है। मस्तिष्क में हमें सीधा दिखाई देता है। मोतियाबिंद में धुंधला दिखने लगता है। ऐसा आंखों के लेंस में मौजूद प्रोटीन के आकार में परिवर्तन के कारण होता है। मोतियाबिंद का इलाज एक छोटे से ऑपरेशन से किया जाता है। ग्लूकोमा में आंखों की ऑप्टिक नर्व्स क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ग्लूकोमा काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसका तुरंत इलाज कराना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए।

0: ओजेर के पास कुछ इनपुट्स आए थे, उन इनपुट्स के बेसिस पे हमने जब काउंट किया तो स्टेज फियर या फिर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही कॉमन इश्यू निकल के आया था, जिसपे कि सभी लोगों को लगा कि एक सेशन होना चाहिए। तो ये जो सीरीज में हमारा ये सेशन में नया सेशन है आज, और दिस इज फोकस्ड ऑन स्टेज फियर एंड फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। किसी को पता है ये किसी के साथ होता है स्टेज फियर या पब्लिक स्पीकिंग का, मतलब किसी के सामने अगर बात करनी है, एक जन या दो जन से ज्यादा अगर लोग हैं और बात करनी है, खड़े होके बात करनी है, किसी को लाइफ में कभी घबराहट हुई या किसी ने कोशिश करी है स्टेज पे बोलने की, या फिर जब शुरू में स्टेज में क्लास में बोलते थे, स्कूल में करते थे?
1: मेरा नाम फातिमा है। मुझसे बात नहीं होती है, घबराहट होती है सबके सामने बात करने में, बात
0: तो अभी तो आप
1: करनी
0: इतने अच्छे से
1: पड़ती
0: बात कर रहे हो, घबराहट क्यों होती है फातिमा जी?
1: है। स्टेज पे जाकर मुझसे बात नहीं हो पाती है।
0: स्टेज पे जाके बात नहीं हो पाती, ठीक है? अभी हम ये आप मानते हैं कि स्टेज पे जाके बात करने में घबराहट होती है, लेकिन अभी देखो आपको मिला के शायद 51 लोग आपको सुन रहे हैं, 51 people are listening to you। अभी क्यों घबराहट नहीं हो रही है आपको?
1: हो तो रही थी अभी, लेकिन अब
0: हो
1: आपसे बात
0: रही
1: हुई
0: थी?
1: तो कम हो गई।
0: अच्छा, घबराहट हो रही थी, फिर भी हिम्मत करा आपने और आप आगे आई और आपने उसको ओवरकम किया और फिर भी
1: जी
0: अपनी बात कहने की कोशिश करी। तो क्या फरा मैम ने इनकरेज किया आपको? क्या उन्होंने कहा कि यू नो यू कैन टॉक, ऐसा नहीं है कि तुम भी अपनी बात आगे रख सकती हो? तो अगर कोई हमें इनकरेज करे या अगर हम थोड़ा सा उस पर काम करें, तो शायद धीरे धीरे करके हम उस स्टेज फियर या लोगों के सामने बात करने का जो फियर होता है उसको ओवरकम कर सकते हैं। क्या हम सभी ये बात मानते हैं? अगर
1: जी
0: हम
1: मैम,
0: मानते हैं तो हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे।
1: जी मैम, उसे पराही मैम ने कहा था आपको घबराहट होती है, आप मैम को बोलिए, वो आपको सोल्यूशन बताएंगी।
0: देखिए, सॉल्यूशन किसी के पास नहीं होता, लेकिन टिप्स और टेक्निक्स होती हैं जिसके ऊपर हमें खुद काम करना पड़ेगा। ऐसा कोई गोली नहीं है कि मैं आपको बोलूं आप इसकी दो डोज सुबह ले लीजिएगा, दो डोज शाम को ले लीजिएगा, तो आपका जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स हैं और आपको खुद पे अपनी मेहनत करना होगा, जिससे कि ये कोशिश करके धीरे धीरे हो सकता है ये फियर कम हो जाए। आप इतने अच्छे से बात करती हैं, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आप जब बात करती हैं तो आपकी आंखों में एक चमक रहती है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको खुल के बात करना चाहिए। और कोई है हमारे साथ जिसको डर लगता
1: थैंक
0: है स्टेज फियर? कभी अभी नहीं, हो सकता है पहले लगता हो। मुझे बहुत डर लगता था, स्टेज फियर बहुत ज्यादा था एकदम, मैं किसी के सामने तो शायद बिल्कुल ही नहीं बोल पाती थी, स्कूल से ही ऐसा फियर था। इवन रीड में आके भी बहुत फियर था, वो तो मैम ने इनकरेज किया लगातार कि नहीं तुम लोग कर सकते हो, यू कैन डू। तो अगर कोई इनकरेज करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है, हम खुद पे काम करते हैं, तो वो काम आसान होता है धीरे धीरे। क्या कोई और कुछ कहना चाहता है? किसी और को ये फियर है या हम ये टॉपिक पे नहीं बात करना चाहते? गुड
1: मैम,
0: आफ्टरनून।
1: आविदा रामपुर के तरफ
0: अच्छा आबिदा जी,
1: से। जी मैम, जैसे आपने अभी बोला कि सेम यही मेरे साथ होता था कि जब मैंने न्यू न्यू रीड ज्वाइन किया था, उस टाइम में लड़कियों तक से बात नहीं कर पाती थी, बहुत घबराहट फील होती थी कि मैं लड़कियों से अपनी बात समझा पाऊंगी या नहीं। लेकिन जब मैं रीड के साथ लगातार जुड़ी रही, बात करती रही, लाइफ स्किल्स के सेशन लेती रही, तो मेरे अंदर काफी घबराहट दूर हुई। और फिर अकबर सर ने काफी मुझे इंकरेज किया, बताया कि आबिदा आपके अंदर इतनी स्किल्स है और आप क्यों नहीं बताते हो, क्यों नहीं बोलते हो। तो फिर मैंने कोशिश की और आज मैं अच्छे से बात कर पाती हूँ आपसे।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने कहा आपको ये फीडबैक मिला और आपने उस पर कोशिश करी। अच्छा, आपको ये पता है कि सभी से मैं बात कर रही हूँ कि ये जो स्टेज फियर है या फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है रिसर्च का। और एक स्टडी हुई थी फॉरेन कंट्री में, इंडिया से बाहर ये स्टडी हुई थी, शायद इंडिया में भी हुई हो। ये 75% लोगों में रहता है किसी ना किसी लेवल पे, यानी कि 100 में से 75 लोग ऐसे होंगे। कुछ लोग पैदा होते हैं और उनको कॉन्फिडेंट होता है, वो शुरू से ही बहुत आउटस्पोकन होते हैं, उनको कोई झिझक नहीं होती अपनी बात रखने में, वो एक कैटेगरी है। बट उसके अलावा 75% लोग हैं, अगर 100 लोगों में गिनती करेंगे, उनको किसी ना किसी लेवल पे स्टेज फियर जरूर होता है। और इसका एक साइंटिफिक नाम है, कोई मुझे बता सकता है बिना गूगल करे कि उसका नाम क्या है? किसी को पता है? इस फियर का नाम है ग्लॉसोफोबिया। ग्लॉसो फोबिया, यानी कि ये कोई, आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आपको ही है या सिर्फ गिने चुने लोगों को ही है, इसको एक साइंटिफिक नाम भी दिया गया है, इसका नाम है ग्लॉसोफोबिया। अगर आप सर्च करेंगे तो ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ये बहुत ही कॉमन एंजाइटी है या फियर है ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है जब आप स्टेज पे जाते हैं, कोई बता सकता है क्या होता है अगर आपको स्टेज पे भेज दिया गया है, माइक दे दिया गया है, तो क्या फियर होता है? क्यों आपको लग रहा है कि आपको स्टेज फियर है? क्या ऐसी चीजें होती हैं? हाथ कांपने लगते हैं, सांसें भारी होने लगती हैं, लोगों से आई कांटेक्ट करने में मुश्किल होता है, जो बोलना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, ऐसा होता है किसी के साथ?
1: जी मैम, अर्चना बोल रही हूँ
0: हाँ जी,
1: मैम। एक्चुअली वो क्या होता है, पैर एकदम से कांपने लगता है और हम जो बोल रहे होते हैं ना, तो बस पता नहीं लाइन गैप होने लगता है, उसके वर्ड जो है हम भूलने लगते हैं, पीच का लेवल हाई हो जाता है और अजीब बहुत ही नर्वस फील होने लगता है।
0: वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड, एग्जैक्टली ऐसा।
1: अभी अभी मैं आपको, इवन मैं अभी आपको बोल रही हूँ तो मुझे गूज बम्स हो रहे हैं कि मैं, यदि आप सामने रहते तो शायद मैं नहीं इतना बोल पाती।
0: अच्छा, बिल्कुल, ये बिल्कुल यही बात होती है कि जब हम किसी से बात करने जाते हैं तो हमें लगता है कि मुंह सूख रहा है और क्या बोलना चाह रहे हैं ना, जो बोलना चाह रहे थे वो भूल गए हैं हम। अच्छा, बात जो है आधी ही बीच में रह जाती है और हम उस पॉइंट से कहीं और डाइग्रेस हो जाते हैं, ऐसा होता है। फिर हाथ एकदम कांपते हैं, पैर एकदम ठंडे ठंडे होने लगते हैं कि आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, किसी से आंख मिलाते हुए डर लगता है। अच्छा, भी ऐसा होता है कि ये टीचर ना मुझसे क्वेश्चन ना पूछे, मैं पीछे बैठ के आराम से, मतलब मुझे बस आई कांटेक्ट नहीं करना, जैसे आई कांटेक्ट होगा तो टीचर मुझसे क्वेश्चन पूछ लेगी। ये भी एंजाइटी हुई है किसी को? ये भी पार्ट ऑफ ग्लॉसोफोबिया ही है। तो हमें ये स्टेज फियर होता क्यों है, या पब्लिक स्पीकिंग में जो ये फियर होता है हमें क्यों होता है? ज्यादातर अगर मोटे मोटे उसको भागों में बांटा जाए तो हमें ये लगता है कि जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन, जो हमारा फर्स्ट या सेकंड सेशन था लाइफ स्किल्स का, कम्युनिकेशन स्किल, वो हमारी वीक है। यानी कि हम बोलते हुए घबराते हैं, या हमें बोलने में कौन से शब्दों को इस्तेमाल करना है उसमें हम घबराते हैं, हमारी प्रैक्टिस नहीं है बोलने के लिए, तो हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि जो बात हम रखना चाह रहे हैं दूसरे के सामने वो दूसरे के इंटरेस्ट की है, वो दूसरे को, हम ये जजमेंटल होना शुरू कर देते हैं कि क्या पता उसको मेरी बात पसंद नहीं आए, क्या पता वो मुझे जज जज करना शुरू कर दे, और इस चीज से घबरा के हम एंग्शियस हो जाते हैं, और फिर जो है हम शब्द भूलने लगते हैं और हमें लगता है कि शायद जो मैं बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ ये दूसरे के सामने मैं बोलने की काबिल नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ। ये भी हो सकता है कि शुरुआत में या बचपन में हमने कभी कोशिश करी हो और मजाक बना दिया गया हो हमारा, हमारी बात का मजाक बना दिया हो, तो वो दिमाग में ना कहीं सबकॉन्शियस में यहाँ पे पीछे फिट हो जाता है कि अगर मैं बात करूंगा या बात करूंगी लोगों के सामने तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो पुराने बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से भी कभी कभी हमें वो स्टेज फियर पैदा होने लगता है। शुरुआत में हो सकता है ना हो, लेकिन आप कभी स्टेज पे गए अपनी असेंबली में, या अगर आप ट्रेनर हैं, आप ट्रेनिंग करते हुए कुछ ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ है, या आपको माइक दिया है स्टेज पे कुछ बोलने के लिए और आपके साथ कुछ आप नहीं बोल पाए, तो वो भी हमारा कॉन्फिडेंस और कम कर देता है। ऐसा होता है किसी के साथ या हुआ है किसी के साथ? मुझे लग रहा है आप लोग बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, शायद इसी वजह से ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं आपके साथ। और किसी वजह से स्टेज फियर आपको लगता है होता है बच्चों में, हम में, या फिर इन जनरल पब्लिक में स्टेज फियर होता है? किसी के पास कोई इनपुट है? क्योंकि यही 5 रीजंस नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी रीजंस हैं। कई बार हमें बोलने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया जाता जब हम छोटे होते हैं, या हमारे घर में, या हमारे स्कूल में अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो सबको तो कॉमन नहीं दिया जाता ना, जो वॉलेंटियर करेगा, हाँ बेटा तुम बोलो असेंबली में, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में शुरुआत से छोटे से ही शुरू होती होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये जो फियर ऑफ टॉकिंग इन पब्लिक है ये और बढ़ता जाता है कम होने की बजाय, अगर हम इस पे काम नहीं करें या हम प्रैक्टिस नहीं करें। क्या सब मानते हैं इस चीज को?
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते ईशा जी।
2: मैम कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चों को खड़ा करते हैं जैसे प्रेयर वगैरह में कुछ बोलने के लिए असेंबली में, कि कुछ पोयम सुनाओ, तो बच्चों को आने के बावजूद भी वो नहीं बोल पाते, अपने घर पे तो सुना देते हैं लेकिन हम लोगों को नहीं सुना पाते, क्योंकि उनमें एक डर सा पैदा होता है कि हम सबके सामने बोलेंगे तो हमसे बोला नहीं जाएगा, या मैम से डर लग रहा है, इस चक्कर में बच्चे बोल ही नहीं पाते, एक फियर सा रहता है हर समय।
0: तो वो फियर ऑफ जजमेंट है, यानी कि दूसरों का ओपिनियन जो है, जो नेगेटिव ओपिनियन है, उसको हम पहले से ही सोच लेते हैं हम बोलेंगे और लोग हमें नेगेटिव जज करेंगे, है ना। फियर ऑफ जजमेंट जो होता है दूसरे लोगों के ओपिनियन, नेगेटिव ओपिनियन को हम ज्यादा बढ़ावा देते हैं, बल्कि जो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस है, आप कह रहे हो कि बच्चे को पोयम आती भी है तभी भी वो सुनाने में झिझकता है, क्यों? क्योंकि वो जब आसपास के बच्चों को देखता है या दूसरे टीचर्स खड़े हैं या और पेरेंट्स खड़े हैं असेंबली में, तो उसको लगता है कि ये मेरे अंदर जो है मेरे को जज करेंगे, और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो वो मुझे हंसेंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे या कुछ करेंगे। इसे कहते हैं फियर ऑफ जजमेंट। अभी तो आप बच्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना, ये फियर ऑफ जजमेंट मतलब दूसरों की ओपिनियन की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती रहती है, और हम अपने कॉन्फिडेंस पे काम नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि हम बोले ही नहीं ताकि हमें जज ही ना किया जाए। क्या ऐसा होता है? जब हम बोलेंगे तो हमें जज कौन करेगा? नहीं, बात सही है। जब हम हाथ ही नहीं खड़ा करेंगे आंसर देने के लिए तो हमें कोई जज ही नहीं करेगा। तो हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की बजाय वो फियर को और बढ़ावा देते हैं। बट हमारा मकसद यही है कि जब हमारे यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं या जो हमारे यहाँ से महिलाएं आगे काम करने जा रही हैं, एटलीस्ट वो अपनी बात को कह सकें। पब्लिक स्पीकिंग मतलब अगर 10 लोग भी खड़े हैं, जरूरी नहीं है कि पूरी रैली हो या पूरा ऑडिटोरियम भरा हो, उन लोगों के सामने ही बात करनी है। अगर 10 लोग भी खड़े हैं और अपनी बात को अगर हम सही से नहीं रख पा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं फेयर है, मतलब हम कहीं ना कहीं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है। इस फियर को कम कौन करेगा? अगर ये हमारे अंदर है तो हमको ही इस पे काम करना पड़ेगा, राइट? इसके लिए हम कुछ टिप्स और टेक्निक्स कर सकते हैं कि पहले तो हम इसकी बहुत ज्यादा ये ना करें कि हम जो दूसरे हमें देख रहे हैं या जो दूसरों का ओपिनियन है वो वही सच है। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे पैदा होगा? पहले तो ये है कि जो टॉपिक पे आपको बात करनी है, मान लीजिए कोई टॉपिक अगर ऐसा है जिसपे कि आपको पता है आपको बोलना है, तो आप उस टॉपिक पे अच्छे से रिसर्च करके जाइए। अगर आपको पता है आपने क्या बोलना है, अगर 10 पॉइंट्स आपने बनाए हुए हैं, तो आपको पता है कि एक एक मिनट आप इन 10 पॉइंट्स पे बोलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन करना है ऑडियंस से तो क्वेश्चन करेंगे और आपका स्पीच खत्म हो जाएगा। अगर डिबेट है या अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आपको अपनी व्यू पॉइंट देने हैं, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से रिसर्च करके जाइए। जब आपको पता है आपने क्या बोलना है तो आप स्टैमर नहीं करेंगे, यानी कि सोचेंगे नहीं। ऐसा होता है ना, हम बात बात करते करते ऊपर देखने लगते हैं, फिर हमें याद नहीं आता, फिर हम करते ये सब चीजें भी हम अवॉइड करेंगे, कर सकते हैं अगर हम अपने टॉपिक, जैसे मुझे आज आपके साथ ये वाला टॉपिक पे बात करना था, तो मैं 2 दिन से रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक के ऊपर, और इस टॉपिक के ऊपर मेरे को लगा कि हम एक बिगनर्स लेवल के लिए कितने पॉइंट्स हम कवर कर सकते हैं। अब एक दिन के अंदर किसी का कॉन्फिडेंस तो बिल्ड नहीं हो सकता कि वो स्टेज पे जाके और पूरा अपना स्पीच दे दें, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स छोड़ सकते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स छोड़ सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस छोड़ सकते हैं। तो मैंने अपने टॉपिक पे रिसर्च करी, अब मुझे पता है, और फिर मैंने प्रैक्टिस करी कि अच्छा इस पॉइंट पे मुझे क्या बोलना है, अगले पॉइंट पे मुझे कौन सा एग्जाम्पल देना है। तो इससे क्या है, आपको भी आसानी है और मैं टाइम भी वेस्ट नहीं कर रही, और मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि मैंने क्या बोलना है आपके साथ। तो फर्स्ट इज कि आप अपने टॉपिक पे रिसर्च करेंगे। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है और आपको इम्प्रॉम्प्टू नहीं, पहले से पता है आपका टॉपिक, तो आप उस पर रिसर्च करके जा सकते हैं, ठीक है। जब आप बात कर रहे हैं, अपने पॉइंट्स को सिंपल रखिए, बहुत बड़े बड़े शब्द और बहुत सारा डेटा मत यूज करिए, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े शब्द और डेटा हमें कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। जब आप अच्छे स्पीकर बन जाएंगे तब आप कोशिश करके उसको अपने टॉक में इंक्लूड कर सकते हैं, बट अगर आप शुरुआत में पब्लिक स्पीकिंग पे या स्टेज पे बोलने पे काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो आपकी बात आप रखना चाह रहे हैं उनको छोटे छोटे सरल सेंटेंसेस में तोड़ के आगे बोलने की कोशिश करें। अगर आप अपनी जो बात कहना चाह रहे हैं उसको आपने लिख लिया छोटे छोटे शब्दों में, उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में तोड़ दिया, तो अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मैंने पहले भी कहा था कि शीशे के सामने प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि शीशे में आप देख पाते हैं कि आप कैसे लग रहे हैं। आजकल तो आप मोबाइल में भी अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो, और देख सकते हैं कि जब मैं अपनी बात कह रही हूँ स्टेज पे या पब्लिक स्पीकिंग में, कुछ मेरे को किसी बात पे चर्चा करनी है तो मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ। और हो सकता है मैं हाथ ज्यादा मूव कर रही हूँ, जैसे मेरी आदत है मैं हाथ काफी मूव करती हूँ, तो क्या वो अच्छा लग रहा है, क्या वो बुरा लग रहा है। कई लोग होते हैं वो ऐसे पेन को भी, पेंसिल को भी ऐसे ऐसे करते हैं या ऐसे ऐसे भी करते हैं, तो इवन स्टेज पे भी, या माइक पकड़ा है तो माइक को ऐसे ऐसे कर लेंगे, तो माइक पे आप जो बोल रहे हैं ना वो लॉस्ट हो जाता है। जब आपने माइक छोड़ा तो माइक इधर उधर करा, क्योंकि हाथ का मूवमेंट का आदत होता है, तो वो माइक से जो आप कहना चाह रहे हैं वो लॉस्ट हो जाएगी आवाज। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी किसी भी चीज को आप माइक बना लीजिए, इसको माइक बना लिया, अब मैं शीशे के बात करना है। तो पहला हो गया कि हमने अपने पॉइंट्स बना लिए कि जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी है, वो टॉपिक कि मैंने अच्छे से डेटा बनाया, उसको सिंपल पॉइंट्स में लिखा, बहुत बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो शब्द बोलने में ना टंग ट्विस्ट हो जाती है, जब आप बहुत लोगों के सामने है, जबान सूख रही है और आप में थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो बड़ा शब्द आया तो आप डर गए, अरे बाप रे मैं इसको कैसे बोलूंगा या बोलूंगी, तो उसको सरल रखिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने शब्दों को आराम से बोलिए, बहुत जल्दीबाजी में बोलने से भी फंबल हो जाता है। फंबल पता है क्या होता है, मतलब जो कहना चाह रहे हैं वो शब्द ठीक से बन के बाहर नहीं आता, फंबल हो जाता है। अगर आप किसी स्टेज पे पहुंच बोलने वाले हैं ना, तो कोशिश करिए कि वेन्यू, वेन्यू मतलब जहां पे आपने बोलना है, स्कूल का वेन्यू है या कोई इंटरव्यू है, इंटरव्यू में पहले से पहुंच जाइए, ताकि आप एनवायरमेंट को पहले से देख लें। अच्छा जगह कैसी, कई बार क्या होता है जगह इतनी इंटिमिडेटिंग, इंटिमिडेटिंग मतलब वो प्रभावित कर लेती है आपकी सोच को, और आपको जो है आप जो कहना चाह रहे हैं उसको आप नहीं कह पाते ठीक तरीके से, क्योंकि आप इंटिमिडेट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं उस एनवायरमेंट से। बट अगर आप पहले से ही वहां पहुंच जाएं, 5-7 मिनट पहले पहुंच जाएं, वहां बैठ जाएं, बैठ के आप देखें अच्छा अच्छा यहाँ से लाइट आ रही है, तो यहाँ से मेरे को यहाँ पे खड़े होके बोलना है, ये 10 लोग हो सकता है सामने, अगर 10 चेयर्स पड़ी हैं तो अच्छा ये 10 लोग यहाँ से देखेंगे, तो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बन जाता है। क्या आप मानते हैं इस चीज को कि अगर पहले से ही आप चले जाते हैं कहीं किसी जगह पे और फिर धीरे धीरे 1 घंटा पहले ही पहुंच जाइए, कहने का मतलब है कि अगर आपको बात करनी है या कुछ बोलना है तो इमीडिएटली, कभी कभी हम एंटर करते हैं किसी रूम में ना तो वो रूम के एनवायरनमेंट से भी हम कंफर्टेबल नहीं होते, तो जाकर आप चाहें तो अपने वेन्यू पे पहले से पहुंच जाइए, उसके साथ आप एक अपना रिश्ता बना लीजिए कि हाँ मेरे को पता है कि ये इस तरह से दिखाई देता है और इस तरीके से लाइटिंग है और यहाँ पे खड़े होके मुझे बोलना होगा और ये मेरा टॉपिक है, इसको मैंने प्रिपेयर करा है, प्रैक्टिस करा है। अपनी सांस, ब्रीदिंग को हमने पुराने कई सेशंस में, मेंटल हेल्थ के सेशंस में, इवन जो योगा का सेशन था उसमें ब्रीदिंग के ऊपर बात करी थी कि ब्रीदिंग से जो हमारे नेगेटिव एनर्जी है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो कई हद तक कम हो जाता है। अगर आपको किसी टॉपिक पे बोलने को बोला जा रहा है और आपको घबराहट हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम ब्रीदिंग पे भी काम कर सकते हैं, यानी कि लंबी सांस ली, लंबी सांस छोड़ी, इससे क्या होगा कुछ हद तक हमारी जो एंजाइटी है वो कम हो सकती है। हमने प्रिपेयर तो पहले ही कर लिया, हमारे पास हमारे पॉइंट्स भी हैं बोलने के लिए, हमने प्रैक्टिस भी कर ली शीशे के सामने, हमने ये भी देख लिया कि वेन्यू कैसा है, मैं कहाँ जाके बोलना है मुझे, या बोलना किस जगह पे खड़े होके बोलना है, और अब अगर घबराहट कम करनी है तो हम आंखें बंद करके या वैसे डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, इससे भी कई हद तक हमारा जो है मेंटल एक स्टेबिलिटी आ जाती है। कभी कभी हाथ ठंडे हो जाते हैं तो आप हाथ को भी ऐसे रब कर सकते हैं, जब आपका शरीर कंफर्टेबल होगा ना तो आपका जो घबराहट है कई हद तक कम हो जाएगा। समझ आ रही है सभी को?
2: यस मित्र जी, वेरी नाइस
3: जी मैम।
4: यस मैम।
0: लग रहा है कि कुछ हेल्पफुल है ये टिप्स?
3: यस मैम,
4: काफी है मैम।
0: अच्छा, आपने देखा होगा बड़े बड़े स्पीकर्स जो होते हैं, जो काफी इनफैक्ट अच्छे स्पीकर्स होते हैं, वो कभी कभी ना अगर उनको काफी डेटा देना है या कोई फैक्ट्स फैक्ट्स मतलब जो सत्य है उसको कोट करना है, तो वो क्यू कार्ड, छोटे क्यू कार्ड्स देखे आपने? छोटे क्यू कार्ड्स होते हैं, मतलब पेपर को छोटा छोटा काट के वो अपने हाथ में रखते हैं। कभी देखा है आपने? कोई स्पीकर्स हैं या फिर जो जो मास्टर ऑफ सेरेमनी यानी कि जो होस्ट कर रहे हैं वो अपने हाथ में क्यू कार्ड्स रखते हैं, किसी ने देखा है क्यू कार्ड? क्या होता है क्यू कार्ड?
4: नहीं, देखा नहीं कभी।
0: क्यू कार्ड क्या होता है? छोटा कार्ड होता है, उसपे आप जो बोलने वाले हैं उसके मेन मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं। मान लीजिए आज मुझे लाइफ स्किल्स पे बोलना है, तो लाइफ स्किल्स पे मुझे कौन सा टॉपिक कवर करना है? पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग पे मुझे कौन से टॉपिक कवर करने? पब्लिक स्पीकिंग क्यों होता है, पब्लिक स्पीकिंग के लिए हम कौन से टिप्स एंड टेक्निक्स कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है, फियर ऑफ पीपल जजिंग यू, फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हमने अभी पढ़ा था ना, ग्लॉसोफोबिया, ग्लॉसोफोबिया बोलते हैं इसको, है ना? तो ये चीजों को हम क्यू कार्ड पे लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन हो सकता है हर किसी के पास वो ना हो, आप जहाँ पे बोलने जा रहे हैं हो सकता है वहां पे पीपीटी ना हो, अगर मेरे पास पीपीटी नहीं होती तो मैं छोटे छोटे क्यू कार्ड माने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पे अपने की पॉइंट्स को छोटे शब्दों में और जो मैं कहना चाह रही हूँ उसके अलग अलग पॉइंट्स बना के मैं छोटे छोटे 5 या 6 क्यू कार्ड्स रख लेती ताकि जो पॉइंट मैं बोलना चाह रही हूँ वो मिस ना हो जाए। आप अपने जैसे अगर सेशन ट्रेनर्स हैं जो हमारे, वो ट्रेनर्स अपने सेशन को प्लान करते हैं, सेशन को प्लान करते हुए वो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, आज मुझे ब्लाउज बनाना सिखाना है तो मैं कटिंग सिखाऊंगी, मैं उसकी ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी और मैं उसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी, फिर उसको मेजर कैसे करना है और अलग अलग ब्लाउज कैसे बनाना है, ये 5 पॉइंट लिखते हैं अपने दिमाग में रखते हैं, उसी को अगर हम एक छोटे कागज पे लिख रहे हैं तो उसे क्यू कार्ड बोलते हैं। क्यू कार्ड मतलब अगर मैं पॉइंट भूल रही हूँ तो वो मुझे क्यू कार्ड एक क्यू एक एक आइडिया दे देगा कि अच्छा मुझे इस पॉइंट पे भी बात करनी थी, कहीं मैं भूल ना जाऊं। समझ में आया? अदरवाइज मैं एग्जाम्पल्स या फोटोग्राफ्स के थ्रू और भी बता सकती हूँ। किसी को समझ में आया क्या? कोई बता सकते हैं क्यू कार्ड्स क्या होते हैं? कभी किसी ने यूज करा है क्यू कार्ड अपनी ट्रेनिंग सेशन में? हमारे साथ बहुत सारी टीचर्स जुड़ी हुई हैं, क्या टीचर्स ने यूज किया है क्यू कार्ड कभी?
4: हेलो जी मैम, सुमन
0: जी। सुमन जी,
4: हाँ जी मैम, जैसे अगर हमें कहीं पे बोलना होता है तो पहले मैं क्यू कार्ड का मतलब तो मुझे खैर आज ही पता लगा है, हाँ जी, पर मैं अपने नोट्स हमेशा लिख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या बोलना है वहां पे, ये मैं हमेशा करती हूँ उस चीज के लिए, हाँ जी। और बोलते हुए थोड़ा सा मुझे लगता है मैं ना बीच बीच में रुक जाती हूँ कभी कभी, हाँ जी।
0: कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस से होता है, जितना ज्यादा आप खुल के कोशिश करेंगे वो रुकना पॉज इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, अगर आप अपनी बात कह रहे हैं और अननेसेसरी पॉज नहीं है, एक पॉज दिया है आपने अपने थॉट्स को कलेक्ट करने के लिए तो वो गलत नहीं माना जाता, वो माना जाता है कि आप अपनी सोच को 2 सेकंड दे रहे हैं और उसको रिकलेक्ट करके फिर से उस मुद्दे पे आ रहे हैं, है ना? और क्यू कार्ड मतलब वो आपको इशारा देता है, क्यू का मतलब होता है इशारा देना कि अच्छा ये टॉपिक था, इस पे ये वाला पॉइंट भी आपको बोलना था, तो अगर आपके टॉपिक में 6 पॉइंट्स हैं तो आप हर एक पॉइंट को अलग अलग क्यू कार्ड पे लिख सकते हैं बड़ा बड़ा, ताकि आपको मेहनत ना लगे उसको पढ़ने में, क्योंकि इतने सारे 50 लोग आपको घूर रहे हैं और ऐसे सबकी आंखें ऐसे हो रही कि अच्छा ये क्या बोलने वाला है, आगे क्या बोलेगा या बोलेगी, तो घबराहट हो जाती है। अगर बड़ा बड़ा लिखा हो कि अच्छा अब मुझे ये बोलना है, तो वो आपका जो अगर ध्यान भटक रहा है या कॉन्फिडेंस कम हो रहा है ना, तो यू कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये तो मैंने रिहर्सल करी थी, इसके तो मैंने बात करी थी, तो मैंने प्रैक्टिस
4: की मैम,
0: तो मैं ये बात कह सकती हूँ। तो वो क्यू, क्यू का मतलब इशारा करना कि अच्छा ये जो है आप ये वाला पॉइंट भूल रहे हैं और ये भी आपको बोलना है।
4: जी मैम, इसीलिए मैं लिख लेती हूँ हमेशा।
0: हाँ एब्सोल्युटली, हाँ आप लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ होती है। अगर प्रेजेंटेशन नहीं है तो जरूर लिख लीजिए या क्यू कार्ड्स का यूज करिए, क्योंकि क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है आपको सारी बात कवर करने में और सारे की पॉइंट्स कवर करने में. अगर प्रेजेंटेशन है भी तभी भी आप लिख के जाएगा, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में भी ऐसा होता है कि आपने प्रेजेंटेशन बनाई, मेहनत करके 2-3 दिन लगा के प्रेजेंटेशन बनाई, प्रैक्टिस भी करी, और जब प्रेजेंटेशन को लगाया तो टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया, वो प्रेजेंटेशन चली ही नहीं या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो फिर आप घबराने लग जाएंगे, अरे अब मैं क्या बोलूं, मुझे तो पता ही नहीं है मुझे क्या बोलना है, मेरे तो पॉइंट्स ही लॉस्ट हो गए. तो अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है या आपके पास ऐसे छोटे छोटे कार्ड है, क्योंकि बड़ा सा पर्चा लाएंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में कि अच्छा ये तो लिख के लाए हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट टू बिकम अ बेटर स्पीकर या टू बिकम अ मतलब अच्छा और अच्छा स्पीकर बनने के लिए आप क्यू कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख के भी ला सकते हैं, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं.
4: थैंक यू मैम.
0: और कोई कुछ शेयर करना चाहता है एक्सपीरियंस?
5: जी एक बार मेरे साथ क्या हुआ, हम लोग का यहाँ पे 26 जनवरी का फंक्शन था हमारे सेंटर पे, तो मैंने कोई स्पीच प्रिपेयर नहीं करी थी, बट मेरे स्टाफ ने और गांव वाले सब इकट्ठे थे, देयर वाज ऑलमोस्ट 800-1000 पीपल वर देयर, और चेयर सब भर गई, लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इधर, तो मेरे को एकदम से माइक पकड़ा दिया गया, एंड आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, आई वॉज अबाउट टू स्पीक, तभी मैंने देखा मेरे जो जेठ हैं वो सामने खड़े हैं, उनको देख के मैं एकदम घबरा गई, पता नहीं मुझे क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत खिंचाई करते हैं, वो ना बहुत मजाक बनाते हैं चीजों को लेकर,
0: फियर ऑफ जजमेंट.
5: राइट राइट. तो मैंने एकदम से इमेजिन किया वो सामने है ही नहीं.
0: Absolutely.
5: और मैंने उनको बिल्कुल नजरअंदाज करके आई स्पोक सो वेल, सारी चीजें मैंने उसमें कलेक्ट करी और पूरा सबको डिटेल में बताया कि हु वी आर, व्हाट वी आर डूइंग हियर, सब कुछ सबको बताया. दैट वाज रियली वेरी नाइस, बट वो एक मिनट के लिए तो मैं घबरा गई थी. तो फिर मैंने वही अपनी चीज मैंने सोचा वो है ही नहीं सामने,
0: है ही नहीं, बिल्कुल. जो चीज आपको घबराहट दे रही है, यहाँ पे सीमा जी के साथ क्या हुआ, उनको वो फियर ऑफ जजमेंट आ गया कि तो मेरी फैमिली है, अच्छा ये मेरी खिंचाई करेंगे बाद में जाके, लेकिन अब इतनी बड़ी ऑडियंस थी, 800,000 लोग थे, उनको भी लगा कि भाई वो इम्पोर्टेंट है या मेरा कॉन्फिडेंस, जो मेरी नॉलेज है, जो मैं दिन रात काम करती हूँ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. डेफिनेटली वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपकी फैमिली है, लेकिन उस वक्त वो क्या कर रहे थे, वो नेगेटिव फियर आप में पैदा कर रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, आपके ही दिमाग ने आपको बोला कि सीमा देखो हो सकता है वो कल को तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, बट यू हैड दैट कॉन्फिडेंस, आपने वो कॉन्फिडेंस था जिसने उसको ओवरपावर किया. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. दिस इज व्हाट द स्टेज फियर इज, कि दूसरे के जजमेंट को लेके हम इतना बड़ा अपने दिमाग में खवा बना लेते हैं कि हम अपना जो बात कहना चाह रहे हैं उसको भूल जाते हैं. दूसरी बात ये भी होती है कि हमें पता ही नहीं हमें क्या कहना, तो नेचुरली स्टेज फियर होगा ही, अगर हमें पता ही नहीं हमें बोलना क्या है तो स्टेज फियर आ ही जाता है. तो इस पे पैनिक नहीं करें, इस पे वर्क करें. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू वर्क ऑन इट स्लोली, स्टेप बाय स्टेप. कुछ टिप्स जो हमने अभी शेयर करी हैं उसको फॉलो करें. जब आप कहीं बोलने जा रहे हैं उससे पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं शीशे के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने. कोशिश करिए कि छोटे ग्रुप से स्टार्ट करिए, अगर आप न्यू स्पीकर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो छोटे ग्रुप से स्टार्ट करिए, और ये मत सोचिए कि आपका दूसरे लोग कितना हंसेंगे या कुछ. जो आप कहना चाह रहे हैं प्रिपेयर इट वेल एंड ट्राई एंड डिलीवर इट. और फीडबैक आप ले सकते हैं, फीडबैक से डरिए मत, फीडबैक पे काम करना सीखिए. अगर आपके दोस्त ने या आपके फैमिली में किसी ने बताया है कि आप बात करते हुए ऐसे, ये कुछ भी पॉइंट्स आपको अगर बताए हैं तो आप उस पर काम कर सकते हैं, उससे घबराना नहीं है. सो स्टार्ट विथ स्मॉल ऑडियंसेस, टेक पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक लीजिए और उस पर काम करिए. बहुत हद तक अगर आप दूसरे लोगों को बोलते हुए सुनते हैं तो हम जरूर सीखते हैं, क्योंकि हम जो सीखते हैं ना वो हमारी एक इंद्री है बोलने वाली, बट और जो बाकी की इंद्रियां हैं जब हम सुनते हैं तो वो भी हमारे काम में आती हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं. तो हम जब दूसरे लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं ना, उससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है. आप किसी को हिंदी में बोलते हुए सुन सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हुए सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उनका टॉकिंग स्टाइल क्या है और एक अपना टॉकिंग स्टाइल डिवेलप कर सकते हैं. तो अगर आपको फियर ऑफ टॉकिंग इन पब्लिक है तो आप जरूर जो मोटिवेशनल वीडियोज हैं, फ्री वीडियोज हैं ऑनलाइन, उनको देखिए, उससे काफी हद तक आपको टिप्स मिलेंगी कि आपको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, जब आप कहीं पे बोलने जा रहे हैं, आप अपने आप को कंफर्टेबली ड्रेस करिए। अगर आपका ड्रेस अप कंफर्टेबल नहीं है ना, अगर आप उस ड्रेस अप में कंफर्टेबल नहीं है, आप कभी भी अच्छी बात नहीं रख पाएंगे। आप हमेशा कॉन्शियस रहेंगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसी दिख रही हूँ। दैट डजंट मीन कि बहुत मेकअप करके या बहुत डेकअप होके जाइए। अगर आप प्रोफेशनली बोल रहे हैं, तो हमने आई थिंक फिफ्थ या सिक्स सेशन में टिप्स दी कि हाउ टू ड्रेस अप प्रोफेशनली। प्रोफेशनली ड्रेस अप होके जाइए और अवॉइड करिए ऐसी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। बड़ी बड़ी बालियां, चूड़ियां जब आप पहनेंगे ना, तो वो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। आई एम नॉट सेइंग डोंट डू दिस, आई एम सेइंग कि अगर वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या आपको लग रहा है वो आपको स्पीकिंग में या जो स्टेज शो है उसमें प्रॉब्लम देगा, तो आप अपना कंफर्ट पहले देखिए कि मैं किस चीज में कंफर्टेबल हूँ। ऐसा भी नहीं है कि चप्पल में चले जाएं, प्रोफेशनल ड्रेसअप में जाएंगे, लेकिन एक कंफर्टेबल चीज में जाएंगे। कोई बहुत टाइट कपड़े, बहुत ऐसे कपड़े जो पब्लिकली हम नहीं पहनने चाहिए या एक प्रोफेशनली नहीं पहनने चाहिए, वो अवॉइड करने चाहिए। जब आप कहीं बोलने जा रहे हैं, तो खाना अच्छे से खा के जाइए, क्योंकि अगर आपका शरीर जो है वो कंफर्टेबल होगा, अगर उसे भूख लग रही है या आपने बहुत ज्यादा चाय कॉफी पी लिया है और एसिडिटी हो रहा है, तो जब आप कंफर्टेबल फिजिकली नहीं है, तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे पब्लिक स्पीकिंग के लिए। एम आई राइट? अगर आप बहुत सारा खाना खा लेंगे तो क्या होगा, नींद आने लग जाएगी, हमारी एनर्जी खुद ही कम हो जाएगी। अगर हमारी एनर्जी कम हो गई, तो हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो उतने अच्छे से हम नहीं कह पाएंगे। खाना खाइए, हल्का खाना खाइए। अगर आप एक लार्ज गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हैं, या अगर आपको पता है कि आप में नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, आलस आ सकता है, उबासी आ सकती है, अब आप स्टेज पे बात करें और बीच में ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, नहीं। तो कोशिश करिए कि बहुत हैवी ऑयली खाना ना खाएं। अगर आप नेक्स्ट स्पीकर हैं या आप आपका जल्दी ही बारी आने वाला है, लेकिन भूखे भी मत रहिए। पेट में गुड़गुड़ हो रही होगी तो वैसे ही हाथ पांव सब ठंडे हो जाएंगे, बिल्कुल हम बोल नहीं पाएंगे। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, प्रैक्टिस वेल, दैट इज द ओनली, मैंने पहले भी बताई, कोई गोली नहीं है कि दो डोज सुबह लीजिए, दो डोज शाम को लीजिए और अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। नहीं, हमें खुद पे काम करना होगा। टिप्स हमने शेयर करी, इन टिप्स पे काम करेंगे डेफिनेटली, मैं बता रही हूँ कि ये प्रैक्टिस से ही बेटर हो सकता है। अपने टॉपिक पे रिसर्च करेंगे तो ही आप अच्छे से बात कर सकते हैं। कभी कभी जो अच्छे स्पीकर होते हैं ना, वो ऑडियंस के साथ एंगेज करते हैं, मतलब जैसे हम कोशिश करते हैं आप लोगों से बात करने की, ताकि ऐसा ना हो कि ये बोरिंग हो जाए। हो सकता है आपके ऑडियंस आपसे एंगेज नहीं करना चाहते, तो उसमें आपकी कोई कमी नहीं है। हो सकता है टॉपिक उनका इंटरेस्ट का ना हो, हो सकता है उनको समझ नहीं आ रहा, या उनके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं वो उस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके साथ इंटरेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो घबराइए मत, अगर आप अपने कोई क्वेश्चन पूछते हैं और कोई आंसर नहीं आता है, तो घबराइए मत, स्टिल ट्राई एंड एंगेज विद योर ऑडियंस। सो उससे क्या होगा, आपको एक इंटरेक्टिव सेशन करने में आसानी होगी और कंफर्टेबल एनवायरमेंट होगा। बट ये सब चीजें तब पॉसिबल नहीं है अगर आपको एक टॉपिक पे बोलने को बोला जाए, ये तभी पॉसिबल है अगर आप ट्रेनिंग में हैं या आप टीचर हैं, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है। बट अगर आपको एक लेक्चर, मतलब एक टॉपिक पे बोलना है, डिबेट है, या फिर किसी टॉपिक पे आपको सिर्फ बोल के जाना है, तब आप एंगेज नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ ऑडियंसेस को सुनना है और वो दैट इज अबाउट इट। तो अपने जो ऑडियंस है ना, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आप जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं वो किसके लिए कह रहे हैं। जैसे अभी मुझे पता था कि ये हमारे लाइफ स्किल का जो सेशन है वो किस एज ग्रुप के लिए है, तो जो हमने अपने सेशंस प्रिपेयर करे और जो इसका नंबर ऑफ स्लाइड्स रखा, वो इसी हिसाब से रखा कि हम इसको एक घंटे में खत्म भी कर ले, ये सरल भाषा में भी हो, इसमें जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स, वो कवर हो जाएं। बहुत इसमें पता है लोगों ने बहुत रिसर्च करी है पब्लिक स्पीकिंग पे, इसके बहुत सारे टूल्स एंड टिप्स हैं। अगर हम इसी से एक फर्स्ट सेशन में ही वो सारी चीजें करेंगे ना, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमारे ऑडियंस कौन है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी हमें हेल्प करता है हमारे टॉपिक पे प्रिपेयर करने के लिए। मेरी आदत है जैसे कि अगर मैं ट्रेनिंग सेशन में हूँ तो मैं लोगों के बीच बीच में जाके भी क्वेश्चन पूछती हूँ. अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपके आसपास 10-15 लोग 25 लोग बैठे हैं और आप कंफर्टेबल हैं लोगों के बीच में जाके बोलने का, तो वो भी एक सही तरीका है. अगर आप कंफर्टेबल हैं एक पोजीशन पे खड़े होके बोलने का, वो भी कंफर्टेबल है. इसमें कोई सही या गलत नहीं है. बट आप ये देखिए कि अगर आप ज्यादा मूव अराउंड कर रहे हैं तो कहीं वो डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा. कभी हॉल इतना बड़ा होता है कि पीछे के लोग क्या सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं, या अगर आप स्टेज पे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता. तो जैसे मैंने कहा, आप अपना एक तरीका अपना सकते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के टाइम आपको किस तरीके का तरीका अपनाना है. एक जगह पे खड़े होकर बोलना आपके लिए कंफर्टेबल है. अगर आप ट्रेनिंग सेशन में हैं तो एंगेज कर रहे हैं अपने ऑडियंसेस के साथ, तो आप थोड़ा बहुत चल के भी जा सकते हैं उनके पास, उनको माइक दे सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको एंगेज कर सकते हैं. जैसे कि अभी सीमा जी ने कहा कि उनको आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम आया कि उनके जो फैमिली मेंबर थे वो आए और उनसे वो आई कांटेक्ट करा जब उन्होंने, तो उन्हें लगा कि मैं सब कुछ भूल रही हूँ. अगर आई कांटेक्ट मतलब दूसरे की आंखों में डायरेक्टली देखने से आपको डर लगता है और आप शुरुआत में काम करना चाहते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, तो ज्यादा देर तक किसी एक आई कांटेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप किसी को लगातार देखते रहते हैं ना, तो थोड़ी घबराहट होने लगती है, आप ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, आप ये मेरे बारे में कुछ तो गलत ही सोच रहा है. वो इतना ब्लैंक फेस, कभी कोई कुछ बोल रहा होता है और हम लोग ऐसे देख रहे होते हैं, होता है ऐसा, तो हमें लगता है अब ये पता नहीं क्या सोच रहा है. अगर ऐसा है तो आई कॉन्टेक्ट मोर देन 5 सेकेंड्स आप अवॉइड कर सकते हैं. आपके सामने अगर ऑडियंस है तो आप एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ, फिर आप अवॉइड करके जब आप पे कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप आई कॉन्टेक्ट करिए, उनके साथ इंटरेक्ट करिए. ये धीरे धीरे ही बिल्ट हो सकता है. कभी कभी बहुत अच्छे स्पीकर्स जो होते हैं ना, वो कोई शेरो शायरी या कोई कोट, जैसे बड़े बड़े लोगों ने जो कोट बोला है उससे या तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं या अपने टॉपिक को एंड करते हैं. तो अगर आप में कॉन्फिडेंट है, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि पहले के 30 सेकेंड बहुत जरूरी है कि आप क्या बोलने वाले हैं, और आखिरी के जो 2 मिनट है वो बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से उसको एंड कर रहे हैं. बीच का भी जरूरी है, बट अगर आपने पहले के 30 सेकेंड या 1 मिनट में अपने ऑडियंसेस को अच्छे से इंगेज करा है, तो ज्यादातर आपका जो स्टेज फियर है वो कंट्रोल में रहेगा. खत्म तो नहीं होता, किसी का भी खत्म नहीं होता, कंट्रोल में होता है, उसको हम मैनेज करना सीख सकते हैं. अगर आप चाहते हैं शेरो शायरी, लेकिन टॉपिक से हटके नहीं, कि टॉपिक तो कुछ और है और आप प्यार मोहब्बत पे शेरो शायरी करें, ऐसा भी मत करिएगा. एजुकेशन का टॉपिक है तो एजुकेशन पे बात करिए, स्किलिंग का टॉपिक है तो स्किलिंग पे बात. ये बात नहीं करेंगे कि वो आज ये हो गया था, आज वो हो गया, ऐसे कहानी नहीं डालेंगे, नहीं तो लगेगा कि हम बेफालतू में ऐसे ही बोल रहे हैं खाली बोलने के लिए. पता चल जाता है कि हमने फिर प्रैक्टिस नहीं करी है, खाली हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं बस ऐसे, तो वो भी मत करिएगा. बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी की कोट है, और मतलब पॉलिटिकल नहीं हो लेकिन मोटिवेशनल हो, ऐसे लोगों की कोट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन वो कोट को सही तरीके से बोलना, एग्जैक्टली जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही बोलना, अपने शब्द उसमें मिक्स ना करना, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा. ओके हाँ, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी हमें धोखा दे देती है. हमने पीपीटी भी बना लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया और जो हम कहने आए थे हमने पीछे पीपीटी देखी, पीपीटी तो चल ही नहीं रही और हम ब्लैंक, अब मैं क्या बोलूं. तो उसके लिए हम कुछ चीजें, कुछ चिट्स होते हैं ना, उसी को क्यू कार्ड बोलते हैं, क्योंकि हमने लिख के रखा हुआ है. अगर टेक्नोलॉजी नहीं भी चली तो मेरे पास मेरे जो पॉइंट्स हैं वो मेरे लिखे हुए हैं कि मुझे इन पॉइंट्स पे बात करनी है. तो दिस वॉज द फर्स्ट सेशन ऑन स्टेज फियर पब्लिक स्पीकिंग. कुछ टिप्स थी, कुछ टेक्निक्स थी जो मैंने करीबन 2 दिन लगाए इसको क्रिएट करने में. आई होप दिस इज हेल्पफुल. ये प्रैक्टिस से ही जाएगा. और ये समझना कि सिर्फ मुझे स्टेज फियर है ऐसा गलत है. 75-80% लोगों को ये फियर रहता है और वो उस पे काम करते हैं और उसको अपने कॉन्फिडेंस में बदल के लाते हैं. तो डोंट थिंक दैट यू आर अलोन. ये सब में होता है, हर लेवल पे होता है, लेकिन हम जितना बात करते हैं दूसरे से ये फियर कम हो जाता है या मैनेज हो जाता है और हमें कॉन्फिडेंस आता है. आई होप दिस इज हेल्पफुल. मेरे पास कोई शेरोशायरी नहीं है और कोई कोट नहीं है ये बंद करने के लिए सेशन को, बट एनी क्वेश्चन, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, मोस्ट वेलकम. एंड प्लीज आप ये सेशन बच्चों के साथ करिए, बेनिफिशियरीज के साथ करिए, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, आई होप सो.
6: नमस्ते मैम, फ्रॉम बायरेड्डीपल्ली.
0: यस यस अंकल.
6: हाँ मैम, मुझे भी बहुत स्टेज फियर था मैम, अभी भी है, पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है. और आपका लाइफ स्किल्स के लिए पहले जो मैंने सेशन अटेंड किया था मैम, मुझे आई कॉन्टेक्ट बहुत प्रॉब्लम है मैम, ये आदत ही नहीं थी. अभी मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ, इम्प्रूव कर रही हूँ अपने आप को. रियली वेरी हेल्पफुल मैम, थैंक यू सो मच.
0: मोस्ट वेलकम संगीता जी. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन, कि हम आपस में बातचीत करके हम ये महसूस कर सकें कि ये कॉमन इश्यूज हैं, कॉमन चैलेंजेस हैं. और ये इसलिए है कि कहीं हम जब बचपन में थे तो छोटे होते हुए हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उतनी अपनी बात को कहने के लिए, या हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमें जजमेंटल बना दिया हमें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या हमें उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है जिस टॉपिक पे बोलने को बोला गया है. इन तीन या चार मोटे मोटे वजहों से ही हमें स्टेज फियर आता है हमारे दिमाग में. पर बहुत सारी ऐसी वजह हो सकती है, जरूरी नहीं है, बट दिस इज द मोस्ट कॉमनली स्टेटेड सिंड्रम्स और कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टेज फियर. सुनीता जी कुछ कहना चाह रही हैं?
7: गुड आफ्टरनून मैम, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. मुझे याद आया अभी जब भी हमारे 2018 में आपके साथ ही इनोग्रेशन था हमारे स्कूल का, दैट वाज द फर्स्ट टाइम टू होल्ड द माइक इन माय हैंड एंड आई एम वेरी नर्वस एट दैट टाइम एंड यू आर विद मी एट दैट टाइम. आई रिमेम्बर दैट, सो दैट आई एम फेंट मैम, बट आई कैन से देन यू हेल्प मी सो मच. Even speak your name, your family, about all that. And after that day, ma'am, I am very confident to handle a mic in any place.
0: कई बार ऐसा होता है कि ना माइक हमने पहली बार लाइफ में पकड़ा होता है, ऐसा होता है. जब मैंने पहली बार माइक अपने हाथ में पकड़ा, मुझे लगा ये क्या है. और ऐसा बहुत बार होता है कि हम जब फर्स्ट टाइम माइक पकड़ते हैं तो हमें लगता है ये आवाज हमारी अपनी ही है, क्योंकि हमें आदत नहीं है सुनने की अपनी आवाज को. तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो आपने फर्स्ट टाइम जब बोला तो वो एक फियर था, लेकिन वहां से आज आप इस स्टेज पे आ गई हैं कि खुद ही पेरेंट मीटिंग करती हैं, खुद ही बात करते हैं बच्चों की पेरेंट्स से, तो वो एक पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट ही है. आप इतने अच्छे बड़े फोरम पे बात कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आपने काफी वर्क किया है. रेखा ने कुछ कमेंट दिया, तो रेखा जी ने बताया कि है स्टेज फियर है, जैसे मैंने बताया सभी को ही होता है, तो उनको भी है. वो अपनी बात, हमने अभी कुछ सेमिनार किया था, वो कह रही कि वो अपनी बात रखना चाहती थी लेकिन वो इसी फियर की वजह से वो अपनी बात नहीं कह पाई. तो रेखा क्यों डर लगता है आपको माइक पकड़ने से या इस चीज से कि लोगों के सामने बोलना, क्यों डर लगता है?
8: मैम वैसे लोगों के सामने बोलने से डर नहीं लगता, क्योंकि जैसे हम मोबिलाइजेशन करने जाते हैं तो हम लोगों से बातें करते हैं. बट पता नहीं वो फर्स्ट टाइम था मेरा, तो बस थोड़ा सा नर्वस हो गई. मैंने जैसे आपने बोला अपने पॉइंट लिखो, तो मैंने अपने पॉइंट भी लिखे थे, बट मैं सामने जाके और बोल नहीं पाई.
0: मैं आपको एक मतलब पर्सनल टास्क दे सकती हूँ कि अब आप जाओगे ना, ये जो पॉइंट्स आपने लिखे थे प्लीज इसका वीडियो बनाओ या फिर मिरर के सामने जाके इसको प्रैक्टिस करो और देखो कि रेखा कैसी लगती है. क्योंकि मैंने आपको बोलते हुए देखा है रेखा, आप साफ बोलती हो, आप सरल शब्दों का इस्तेमाल करती हो और जितनी बात कहनी है उतनी ही बात कहती हो, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं. सो यू ट्राई एंड नेक्स्ट टाइम वेन एवर हम कोई ऐसा सेशन कर रहे हैं, आई विल मेक श्योर दैट यू आर देयर टू टॉक नाउ. डोंट बी वरीड, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है. वहां सभी लोग अपने थे और वहां पे कोई भी आपको जज नहीं करने वाला था, और अगर जज कर भी रहा था तो वो उस इंसान के अंदर की भावनाएं हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज वो आपके रिलेशन में नहीं है. उनकी जजमेंट का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. रेखा तो वैसे ही रहेगी,
6: होगी, उसकी लाइफ वैसे ही चलेगी।
8: हाँ जी मैम, इस बात का डर लगता है पता नहीं मेरी बात कुछ वैल्यूएबल है भी कि नहीं।
6: एग्जैक्टली
8: exactly. मेरे पॉइंट पे वो हंसेंगे किसने क्या बोल दिया, बस थोड़ा सा ये माइंड में चीज आती है तो अपनी बातें नहीं रख पाती।
6: जो आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना वो दूसरे के पास नहीं है, जो आपके चैलेंजेस थे या जो पॉइंट्स आपके पास थे रेखा, वो आपके ग्राउंड चैलेंजेस थे, उसको शेयर करने के लिए दूसरा बंदा जज ही नहीं कर सकता सही से, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि जो आप कह रहे हो कि वो सही है कि गलत है। फॉर एग्जाम्पल जो और लोग थे जिन्होंने शेयर, जैसे फरा थी उन्होंने शेयर करा, सीमा जी ने शेयर करा था, उनकी जो बातें हैं वो उनको पता है कि उनकी कम्युनिटी में क्या चैलेंजेस हैं, तो आप जज भी कर लोगे तो क्या कर लोगे, सही और गलत तो है ही नहीं उसमें कुछ भी, है कि नहीं।
8: हाँ जी मैम,
6: तो वो कॉन्फिडेंस रखो कि जो आप कहना चाह रहे हो वो वैल्यूएबल है, लेकिन वो तभी हो सकता है अगर आप पहले से अपने पॉइंट्स लिख के रखोगे और आपको उसमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बात मैं कहना चाह रही हूँ, दो ही लाइनें बोलो, जरूरी नहीं है कि 10 लाइनें बोलोगे तभी इफेक्टिव होगा, अपनी बात को 2 लाइनों में करो, देखना धीरे धीरे करके वो 2 लाइनें 4 लाइनें 6 लाइनें और फिर बोलना पड़ेगा रेखा चुप कर जाओ बस करो और मत बोलो, ऐसा भी सिचुएशन आएगा। सो अभी आप बोले इतने सारे लोगों के बीच में बोले, कोई आपको झिझक नहीं थी, तो आई कॉन्टेक्ट से डरना नहीं है, आई कॉन्टेक्ट से अगर आपको डर लगता है तो अपनी आईज को आप 5-7 सेकंड के बाद मूव आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर 1-to-1 डिस्कशन हो रही है तो आई कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है। ये बातें हमने इंटरव्यू स्किल्स में करी थी कि अगर इंटरव्यू स्किल्स चल रही हैं और सामने बैठ के कोई बात कर रहा है तो आई कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है, बट पब्लिक स्पीकिंग में क्या है ना आप मूव आउट मूव इन कर सकते हो, अगर कोई कोई इंसान आपको लग रहा है कि अजीब से एक्सप्रेशन दे रहा है या बोरिंग उसको लग रहा है उसकी तरफ देखो ही मत, नहीं देखोगे ना तो वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, उसकी तरफ देखो जो आपकी बात को समझ रहा है। कुछ लोग होते हैं करते हैं उनको देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो उनकी तरफ देखो, ये धीरे धीरे करके आप में आ जाएगा।
9: गुड इवनिंग मैम, मैं ही बोल देती हूँ, कोई नहीं बोल रहा है तो।
6: गुड इवनिंग सारा।
9: तो स्टेज पे जाते हुए तो मुझे भी बहुत डर लगता था, अब नहीं लगता है, फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी स्टेज पे तो ऐसे दिल हो रहा था बहुत दगदग, और जो अपनी बात में कहना चाह रही थी वो भी नहीं कह पा रही थी कि मैं कुछ कहूंगी, मतलब इतना डर लगता था कि स्टेज पे जाके जो बात कहनी थी वो सब भूल जाया करती थी। बट अब जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो बहुत कॉन्फिडेंस होता है अपने आप में कि मैं वहां जाके अपनी बात भी रख लेती हूँ और बहुत अच्छे से लोगों को शायद समझा भी पाती हूँ।
6: एब्सोल्युटली फरा, तो आपने उसके ऊपर काम किया, ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में वो हुआ, वही बात हमें अपने बेनिफिशियरी से भी बतानी कि घबराओ मत, दूसरे के जजमेंट से डरो मत, जो बात तुम कहना चाह रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंस रखो और इधर उधर की बात ना, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बोलने लग जाओगे और दूसरे टॉपिक को मिक्स कर दोगे तो नेचुरली यू नो इट विल बी नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड स्पीकर। तो इसलिए क्योंकि आप पॉइंट्स लिख लेते हो, आपको क्या बातें करनी है आपके दिमाग में रहती है या नोट्स में रहती है, इसलिए आप अच्छा बोल पाते हैं। सेम
5: आई थिंक शायरी भी करती है
6: परा शायरी,
5: अब तो परा शायरी की शायरी से बंद कर अपना टॉपिक क्लोज करती है।
6: क्योंकि उनको ये था कि उनको अपने ऑडियंसेस को एंगेज करना है
9: जी।
6: और उनकी जो
9: जो सुन भी नहीं रहा है ना मुझे, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, तो वो मेरी तरफ देखे कम से कम शायरी पसंद करके देखे।
6: Absolutely. किसी को अगर एक बात कहने में जो उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है शायरी में इंटरेस्ट हो, कई लोग गाना भी गाते हैं, मैंने ये देखा है कि शायरी के साथ वो स्टेज पे आएंगे तो मैं गाने के साथ शुरुआत करता हूँ।
9: ऐसे भी मिला था मैम हमें रमाडा में ही मिला था फर्स्ट अवार्ड मैम ने दिया था, तो वहां पर मैंने गाने से एंड किया था अपना, मैंने सोचा शायद लोग कहेंगे फरा हर बार स्टोरी ले आती है और वही स्टोरी सब कुछ, शायद कुछ लोगों को बुरा बोरिंग लगता हो, तो मैंने कहा क्यों नहीं थोड़ा सा कुछ हो जाए, तो वहां मैंने एंडिंग जो की थी वो गाने पे की थी।
6: क्या आपने प्रिपेयर किया था उसके लिए पहले से?
9: हाँ मैम मैंने प्रिपेयर किया था।
6: क्या आपने पहले अपनी दोस्त के सामने या मम्मा के सामने या भाई के सामने कभी किसी या शीशे के सामने उसको कोशिश करी
9: भाई के सामने तो नहीं, लेकिन एक दिन पहले जब हमारा दूसरे दिन को वो अवार्ड फंक्शन था तो एक दिन पहले स्वाति और ईशा मैम मेरे रूम में थी, तो मैंने उनको गा गा के सुनाया था, मतलब पहले सर्च किया फिर मैंने उन्हें गा गा के सुनाया, तो थोड़ा डर लगा लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उन्हें सुनाया तो उन्हें भी अच्छा लगा, तो फिर वो मैंने जाकर
0: अगर मुझे भी बोल दे कि गाने के लिए स्टेज पे, तो मैं तो भाग जाऊंगी वहां से. तो इट्स अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप कितने कंफर्टेबल हैं. आप जिस चीज में कंफर्टेबल हैं उस पर प्रैक्टिस करिए और उस पर काम करिए, तो जरूर अच्छे अच्छा स्पीकर बनेंगे और स्टेज फियर जो है उसको आप मैनेज कर पाएंगे, जैसे कि अभी हमने परा के एग्जाम्पल में देखा.
9: वही है ना कि एक बार गलत होगा, दो बार होगा, तीसरा आके हम लोग ठीक हो जाएगा. हमें नहीं देखना चाहिए लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे. कहीं ना कहीं उनको इतना मतलब वो कर दो कि वो मजबूर हो जाए सुनने में कि हाँ भाई कोई बंदा बोल रहा है.
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई लाइक दैट. दयाराम जी, आपने भी बताया था कि आपको मुश्किल होती थी पहले बोलने में और अभी.
10: जी मैम, जैसे ट्रेनिंग में कहा था वैसे कि जैसे प्रार्थना सत्र में जब हमारा नंबर आता था तो हम भाग जाया करते थे और घंटे लेट आया करते थे. बोलने में झिझक थी और लोगों के सामने, जैसे स्कूल में तो बहुत सारे लड़के या लड़कियां होती थी तो कुछ फ्रेंड्स भी होते थे क्लास के, तो वो के बाद में मजाक उड़ाते थे, तो ऐसे तो झिझक रहती थी. लेकिन जैसे काम किया है तो किया, जैसे कम्युनिटी में जाते हैं और महिला पुरुष रहते हैं अक्सर, शायद सभी बड़े रहते हैं, तो जैसे हम करते गए तो हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी जो कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता गया. तो भी कोई भी, जब मैं कंप्यूटर क्लास जा तो उसमें 11th और 12th की लड़कियां हैं.
0: अच्छा.
10: वो करीब 17 या 18 से ऊपर, तो कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं कुछ गलत न बताऊं, लेकिन नहीं, मेरे ऊपर मुझे विश्वास रहता कि जो मैं बताऊंगा. लेकिन उससे पहले क्या, मैं यहाँ पे भी प्रिपेयर होता हूँ कि हाँ मुझे ये आज बताना, इसलिए शायद वो भी कुछ बातें पे.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. प्रिपेयर अगर आप करके जा रहे हैं तो जरूर आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे. तो मैंने भी बताया जैसे कि जरूर आप अपने टॉपिक पे काम करिए अगर आपको टॉपिक पहले से पता है. अगर एकदम से किसी टॉपिक पे बोलने के लिए बोला गया है तो घबराहट हो सकती है, लेकिन आप 2 मिनट लगा के अपना ख्याल तैयार कर सकते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं और फिर आप अपनी बात कह. अगर किसी और को कोई शेयर नहीं करना तो वी कैन क्लोज दिस सेशन. आई होप इट इज ऑफ एनी यूज. अगर छोटा सा भी इसमें एक टिप भी अगर ऐसी थी जो आपके लिए हेल्पफुल थी, सो इट्स माई वर्क डन. सो प्लीज ये शेयर करिएगा और अपनी कम्युनिटीज के साथ प्रैक्टिस करिएगा. शीशे के सामने मुझे वीडियोस भेज सकते हैं, मैम को भेज सकते हैं फीडबैक के लिए, शिवम सर को भेज सकते हैं कि हम कैसा बोल रहे हैं, अगर किसी को सपोर्ट चाहिए.

0: नहीं नहाओगे तो वैसे ही होगा, ये सब गंदगी का नतीजा है।
1: तुम्हें तो मौका चाहिए बस। देखिए फ्रेंड्स, यहां मेरे पैर में ये छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, पर इसे कोई परवाह ही नहीं। जस्सी,
0: तो तुम खुजा के उसे और क्यों बढ़ा रहे हो? और तुम्हारे नाखून, देखो अपने नेल्स। दोस्तों आप ये गलती कतई मत कीजिएगा। अगर दाने निकल रहे हों और दाने वाली जगह पर त्वचा लाल भी हो, तो प्लीज उसे नाखून से मत खुजाइएगा। इस बुद्धू की तरह बीमारी और बढ़ जाती है।
1: तुम इतना पैरानोइड क्यों हो रही हो? छोटा सा तो है, मैं तो बस चिढ़ा रहा था।
0: मैं जानती हूं तुम क्या कर रहे हो, और हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम त्वचा की बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों ऐसा करना उचित नहीं है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील स्थान है।
2: हम एक दिन में न जाने कितने ही सेंसेशंस महसूस करते हैं। इन सेंसेशंस के महसूस होने में त्वचा का अहम रोल है। त्वचा हमारे शरीर का बहुत संवेदनशील अंग है। जाहिर है ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारी त्वचा हमेशा एक्सपोज रहती है। वातावरण में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं, जिनसे त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं। हमारी त्वचा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है प्रदूषण से। प्रदूषण और हार्मफुल केमिकल से स्किन रैशेस, डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा की परेशानियां हो सकती हैं। और अगर इतना काफी नहीं था तो परेशान करने के लिए मौजूद हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पूरा पारिवारिक समूह। जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई भी त्वचा की बीमारियों की एक अहम वजह है। इनसे एक्ने, रिंगवर्म इन्फेक्शन और हर्पिस जैसी त्वचा की बीमारियां होती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है अपनी स्किन का ध्यान रखा जाए। वैसे कुदरत ने भी कुछ हद तक त्वचा का ख्याल रखा है। त्वचा पर मौजूद बाल बाहरी तत्वों से इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारी त्वचा स्वेट ग्लैंड्स के जरिए भी बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित करती है। ज्यादा तापमान, शारीरिक परिश्रम और स्ट्रेस की स्थिति में ये स्वेट ग्लैंड्स पसीने का उत्पादन करते हैं। ये पसीना त्वचा में मौजूद पोर्स यानी रोम छिद्रों से बाहर निकलकर जब इवेपोरेट यानी वाष्पित होता है तो शरीर को ठंडक पहुंचती है। जाहिर है पसीना पसीना होना महज एक मुहावरा ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की जरूरत भी है। ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स के अलावा त्वचा में करोड़ों की संख्या में अन्य स्किन सेल्स भी मौजूद रहते हैं। ये सभी त्वचा की तीन अलग लेयर्स में बटे रहते हैं, पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा सबक्यूटेनियस टिश्यू। त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, कागज के टुकड़े जितनी मोटी होती है। एपिडर्मिस पर बाल और पोर्स यानी कि रोम छिद्र होते हैं। एपिडर्मिस की सबसे निचली लेयर में बेसल सेल्स मौजूद होते हैं। ये बेसल सेल्स टूटकर स्क्वेमस सेल्स बनते हैं जो केराटिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। यही केराटिन हानिकारक रसायन और इन्फेक्शन से त्वचा की रक्षा करता है। एपिडर्मिस के नीचे होती है त्वचा की सबसे मोटी परत जिसे डर्मिस कहते हैं। इसमें नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, मसल्स, ब्लड कैपिलरीज और डीप सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तीसरी और अंतिम लेयर को सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। इसमें मुख्यतः वसा होती है और इसके अलावा क्यूटेनियस नर्व्स और ब्लड वेसल भी होती है। क्यूटेनियस नर्व्स ही स्किन से सेंसेशन लाने और ले जाने का काम करती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू ही गर्मी कैद कर हमारे शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है और गर्मी को शरीर के अंदर रखता है। जहां तक त्वचा के रंग का सवाल है तो इसके पीछे मेलेनोसाइट्स नामक सेल्स का हाथ है जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। ये सेल्स मेलानोजेनेसिस प्रक्रिया के जरिए मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनाते हैं। जैसे ज्यादा चाय पत्ती डालने पर चाय का रंग काला हो जाता है, वैसे ही मेलानिन के ज्यादा बनने से स्किन भी डार्क हो जाती है। मेलानिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। भारतीयों में मेलानिन की मात्रा यूरोपियन से ज्यादा होने की वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेस से होने वाले स्किन कैंसर से काफी हद तक बचे रहते हैं। हमारी स्किन शरीर के किसी और हिस्से के मुकाबले सबसे तेज रिप्लेस होती है। त्वचा की एपिडर्मिस लेयर में ऑयल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं जिनमें से एक है सिबेशियस।

0: यही सेबेशियस ग्लैंड्स एक तरल पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसे सीबम कहते हैं, जो बाल और त्वचा का मॉइस्चर कंटेंट बनाए रखने में मदद करता है। गंदगी, अनुवांशिक कारणों या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार सेबम ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। यही सेबम जमा होकर मुहासे या पिंपल्स के रूप में त्वचा पर दिखाई देते हैं। सेबम के इस जमाव में बैक्टीरिया भी पैदा होने लगते हैं। जब बैक्टीरिया और सेबम त्वचा के सतह के नीचे रहते हैं तो वहाँ पर व्हाइट हेड्स दिखते हैं। त्वचा की सतह से बाहर निकलकर मेलानिन के साथ रिएक्ट कर ये जमाव ब्लैक हेड्स का रूप भी ले सकते हैं।
1: मुहासों का इलाज दो तरह से होता है, लगाने का भी है और खाने का भी है। एग्जामिनेशन जरूरी है ये देखने के लिए कि माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है। माइल्ड है जिसमें बोलते हैं सिर्फ कोमेडोन्स हैं, तो उसमें आपका लगाने का दवा जिसमें कई जेल्स आ जाते हैं, एंटीबायोटिक जेल्स हैं या बेंजोइल पेरोक्साइड जेल है या रेटिनॉइड जेल एक कैटेगरी आता है, वो जेल्स लगाएं। मॉडरेट में पस के दाने निकलते हैं जिसको पिंपल्स बोला जाता है कॉमन पार्लेंस में, उसके लिए एंटीबायोटिक्स खाने के लिए दिए जाते हैं और लगाने के लिए भी दवा दी जाती है।
0: एक्ने जैसे कॉमन डिसऑर्डर के अलावा त्वचा के कुछ और कॉमन डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे एक्जिमा जिसे डर्मेटाइटिस भी कहते हैं और सोरियासिस। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। एक्जिमा की शुरुआत होती है सूजन और खुजली से। एक्जिमा के कारण त्वचा पर ब्लिस्टर्स या फफोले भी पड़ने लगते हैं। यदि एक्जिमा लंबे अरसे तक रहे तो त्वचा सूखी, बर्तीली और बदरंग भी हो सकती है। ये एलर्जी एसिड और अन्य हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से हो सकती है। कुछ धातुओं जैसे निकल से बने चश्मों के फ्रेम और बटन के संपर्क में आने पर भी कई लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है। एक्जिमा के मूल कारण और रैशेज के आकार और जगह के आधार पर एक्जिमा के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। जैसे अटोपिक एक्जिमा, ये अमूमन उन लोगों को होता है जिनमें एलर्जी होने की जेनेटिक टेंडेंसी यानी आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है। ये नियमित रूप से आता जाता रहता है। एक ही जगह बार बार खुजलाने और रगड़ने पर भी एक्जिमा हो सकता है। जहाँ एक्जिमा के पीछे बाहरी कारणों का हाथ है, वही त्वचा की एक ऐसी बीमारी भी है जिसकी मूल वजह जेनेटिक है। इस बीमारी का नाम है सोरियासिस। त्वचा की बाहरी लेयर एपिडर्मिस में कोशिकाओं के प्रोडक्शन और रिमूवल की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब बेसल लेयर्स द्वारा निर्मित सेल्स का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है, तब शरीर पर गठीले लाल रंग के पैचेस दिखने लगते हैं। इसी अवस्था को सोरियासिस कहते हैं। अधिकतर घुटने, कोहनी, पीठ, कूल्हे और सर, इन भागों पर सोरियासिस असर करता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो सोरियासिस का इलाज उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। सोरियासिस होने पर इलाज के लिए स्किन पर मलहम या क्रीम लगाई जाती है। यदि इनसे राहत न पहुँचे तो फोटोथेरेपी भी की जाती है। इसमें ज्यादातर प्रभावित क्षेत्र पर अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। सोरियासिस के काफी बढ़ जाने पर डॉक्टर्स खाने की दवाएं और इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं।
2: अरे बबलू, तुम ये लंगड़ाते हुए क्यों आ रहे हो?
3: देखो ना, जहां मुझे खुजली हो रही थी वहां कैसे घाव हो गए हैं। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है?
2: ओह, मगर आपकी माने तो ये इन्फेक्शन वगैरह तो सब किताबी बातें हैं ना?
3: प्लीज कुहू, दर्द भी हो रहा है और जलन भी, देखने में भी कितना खराब लग रहा है, रोना आ रहा है मुझे।
2: अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर दूंगी, ठीक हो जाएगा।
3: नहीं, और भी ज्यादा दर्द होगा। नहीं, मुझे
2: कुछ नहीं होगा बबलू। घाव कैसा भी हो साफ तो करना ही पड़ेगा ना, और मर्ज कैसा भी हो इलाज तो जरूरी है ना।
0: स्केबीज एक पैरासाइट इन्फेक्शन है जिसमें तेज खुजली होती है। ये बीमारी फैलाने वाले माइट स्किन के अंदर अपने को छुपा लेते हैं। इनके काटने से तेज खुजली होती है जो रात में अक्सर बढ़ जाती है। ये माइट्स बहुत छोटे होते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिखाई देते हैं। ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड व्यक्ति के कपड़ों और बिस्तर के इस्तेमाल से फैल सकता है। स्केबीज का इलाज क्रीम या लोशन से आसानी से हो जाता है, लेकिन मरीज के कपड़ों और बिस्तर के कपड़ों को उबालना जरूरी है जिससे माइट्स मर जाते हैं।